0: का यही संकट धीरे धीरे आपकी जेब की चारों तरफ जकड़ने लगा है। वो आपके घर के सिलेंडर से लेकर रेस्टोरेंट ढाबे के सिलेंडर तक पहले दबे पांव पहुंचा, जो सबसे पहले महंगे हो चुके हैं, जिसने जनता की जेब को ढीला करना मार्च के महीने से शुरू किया, मई तक ढीला करता आया।
1: सिलेंडर का रेट ऑलरेडी इतना हाई रहेगा तो फूड एंड बेवरेजेस का भी थोड़ा हमारे को इश्यूज रहा करेगा।
2: क्या ये आपके बजट में रहेगा बाहर आना, जैसे आप पहले यूजुअली बाहर आते थे?
3: बट ऑब्वियसली वो कम ही हो जाएगा, हमारा बाहर खाना वगैरह
2: कम करना पड़ेगा,
3: हो जाएगा ऑटोमेटिकली।
0: अब महंगाई का वो संकट काल आम लोगों को सुबह से परेशान करने जा रहा है, जहां दूध की थैलियों का वजन उतना ही रहना है, बस आपकी जेब 2 रुपए प्रति लीटर अमूल से लेकर मदर डेयरी तक के दूध खरीदने पर ढीली होने लगी है।
4: बहुत गलत हुआ, बढ़ना नहीं चाहिए था, क्योंकि जो गरीब है वो कैसे खाना खाएगा।
5: जो बिल्कुल गरीब तबका है उसको सरवाइव करने के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी रोजमर्रा की चीजों के लिए जद्दोजहद करता है।
6: मुश्किल तो है हर चीज में, हर चीज महंगी हो रही है प्रॉब्लम, और दूध उसके बाद जरूरत की चीज है, बच्चों के लिए तो बहुत ही जरूरी है।
7: महीने का बजट भी इसी से निर्धारित होता है। अब 2 रुपए का बढ़ने का मतलब है कि 60 रुपए, तो उसके आधार पे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि है ना इतनी जल्दी जल्दी ना बढ़ाएं।
8: ओवर टाइम इस पे बहुत फर्क पड़ता है, स्पेशली जो लोग मेहनत करते रोज की उनके लिए बहुत मुश्किल पड़ता है।
0: मुंबई में तो सीएनजी भी 2 रुपए प्रति किलो महंगी हो चुकी है, क्या आप जल्द ही दूसरी जगहों पर सीएनजी के दाम बढ़ने की आशंका है? और तब थोक महंगाई दर अगर 42 महीनों में सबसे ज्यादा हो जाती है तो इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनियां बढ़ी हुई लागत को जल्द ग्राहकों पर डालेंगी।
9: विदेश से आने वाले उत्पादों की कीमतें भी आसमान छू रही है और सप्लाई चेन भी पूरी तरह तहस नहस हो चुकी है, और इसलिए देश पर यह दोहरा संकट है।
10: अब गाड़ियों को चलाने वाले तेल की बात अब कर लेते हैं। आपकी हमारी सबकी चिंता पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर है, क्योंकि ये जैसे ही बढ़ेंगे महंगाई क्लस्टर बॉम्ब की तरह फूटेगी। हमारे देश के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी से लेकर आरबीआई के गवर्नर तक के बयान इसी संकट की तरफ संकेत भी दे चुके हैं, और इसीलिए जनता के मन में तेल के दाम को लेकर आशंका बनी हुई है।
11: अच्छा, तेल का रेट जैसे बढ़ रहा है तो बढ़ना तो चाहिए, लेकिन अभी तक तो मुझे उम्मीद नहीं है। क्या कहते हैं, टीवी में मैं भी देखता हूँ, टीवी में नहीं बताया जा रहा है जो रेट बढ़ेगा। सब्सिडी आया था तो गवर्नमेंट अपने जेब से दिया है, तो अब क्या भरोसा बढ़ा दे।
12: अगर जो स्थिति बनती है कि डीजल या पेट्रोल का दाम बढ़ाया जाए, तो आपके हिसाब से कितना बढ़ना चाहिए?
13: बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए,
12: बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए,
13: गरीबों पे मार होती है।
12: ऐसे भारत की, देश की, हमारी जो इकोनॉमी है वो मजबूत रहनी चाहिए। कहीं पर भी अगर थोड़ा बहुत कहीं पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते भी हैं तो देश के लिए ही हैं, हमारे बढ़ रहे हैं। कोई ऐसा तो नहीं कि सरकार अगर रेट बढ़ा रही है तो कहीं और लेके जा रही है उस पैसे को, वो समाज के लिए, देश के लिए काम आ रहा है। और पीछे जो उन्होंने इतने सालों से रेट बढ़े नहीं, हमारे जो 94 रुपए कुछ पैसे चल रहे हैं आज भी वही है, और आज के समय में अगर देश के ऊपर कोई संकट आया तो हम देश के साथ खड़े हैं।
13: पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो देखो सारी अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ेगा, उसको मिडिल क्लास लोग हैं तो रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत फर्क पड़ने वाला है इस चीज से।
14: अभी तो स्थिति सामान्य है बिल्कुल, अभी किसी तरीके का स्टॉक या इस तरीके से मतलब कोई पैनिक या कुछ नहीं है लोगों में। लोगों को समझ है कि हाँ ठीक है, लोग आ रहे हैं और अपना जितना डेली रूटीन में लेते हैं उतना ही ले रहे हैं। सप्लाई में तो किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, सप्लाई तो जितनी डिमांड मतलब एज पर सेल के हिसाब से डेली सेल के उतनी सप्लाई हमारे पास आ रही है।
15: देखिए, ये देश हित के लिए लिया गया फैसला है और इस फैसले का पूर्ण समर्थन है, और मैं किसी पार्टी विशेष के लिए ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये मोदी जी ने अपने अपने पर्सनल निजी इसके लिए बढ़ाया है। बाकी बहुत सारे समृद्ध देश हैं जिनका ऑलरेडी उन्होंने बहुत पहले बढ़ा चुका, युद्ध शुरू होने के कुछ दिन बाद ही उन्होंने पेट्रोल के कीमतों में बहुत उछाल मार दिया है। हमारे देश में बहुत देर से हुआ है।
16: प्रधानमंत्री बोले हैं कि कुछ कटौती करके चले, अगर ऐसा होता है तो बढ़ भी नहीं सकता है,
17: बढ़ नहीं सकता।
18: मोदी जी हमारे देश के लिए ही कुछ अच्छा सोच करके किए होंगे।
19: सरकार ने अभी तक कंपनियों को रोक रखा है रेट बढ़ाने से। एज पर अगर कंपनी की कैलकुलेशन लगाई जाए तो दे आर बेयरिंग अ लॉस ऑफ अराउंड 20 रुपीज ऑन डीजल एंड 30 रुपीज इन पेट्रोल।
20: प्राइस के लिए देखिए, अगर मान के चलिए कुछ बढ़ भी जाता है तो जनता मजबूरन तो लेना ही है, क्योंकि जरूरत का चीज है, उससे कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मिलना चाहिए,
21: मिलना चाहिए
20: सभी को।
21: सभी को मिलना
20: जी। क्या नाम? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास।
22: जरूरत रहेगा तो आदमी ड्यूटी नहीं करेगा, ड्यूटी नहीं जाएगा, बताइए। ड्यूटी तो जाना अनिवार्य है, ड्यूटी नहीं जाएगा पेमेंट नहीं मिलेगा, घर में बैठ के थोड़ी खाएगा लोग। मोदी जी तो कहीं रहा है, लेकिन मोदी जी तो कहेंगे तो ऑफिस में ऑफिस वाले को बोले कि हाँ कष्ट नहीं बुलाए कर्मी को, अपना घर से ही काम करवाए तब ना।
23: भैया बहुत बिक्री हो रही है, वो लाइन लगती हो रही है, और जहाँ 5,000 बिकता था 8,000 बिक रहा है,
24: ज्यादा आ रहे हैं, ये सोच
23: बढ़ा रहे, टंकी फूल करा रहे हैं पूरे।
25: जिस तरीके से लड़ाइयाँ और जिस तरीके से वो चल रहा, और मतलब कंपनी को नुकसान उठा के बेच रही है माल, उसके हिसाब से तो हम लोग नहीं बता सकते ना, लेकिन ये कि जैसा लग रहा हो सकता है कुछ बढ़ जाए।
10: खबर नीट पेपर लीक कांड की। नीट लीक कांड में अब सवाल यह है कि कौन है वो बड़ा आदमी जिसका नाम अपने घर के 5 बच्चों को डॉक्टर बना देने वाले दिनेश बिवाल ले रहा है। कौन है इस पेपर लीक कांड का वो बड़ा आदमी जिसका चेहरा छिपा हुआ है, जिसके कारण से आरोपी के घर वाले ही दावा करने लगे हैं कि हर साल देश में नीट का पेपर लीक होता रहा है।
0: देश के 22,89,000 परिवारों, बच्चों की उम्मीदों पर नीट का पेपर लीक करा के सरकार के दावों पर पानी फेरने वाला, जिसे बीजेपी के विधायक राजस्थान में अपनी पार्टी का ऊर्जावान कार्यकर्ता बताते आते हैं, आखिर वो किन बड़े लोगों की बात करने लगा? कौन है वो बड़े लोग जब तक नीट पेपर लीक कांड में बचे हुए हैं? क्या कोई मंत्री, क्या कोई एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का अफसर, क्या कोई बड़ा नेता, क्या कोई बड़ा कोचिंग चलाने वाला, क्या कोई बड़ा नौकरशाह? कौन है वो बड़ा आदमी जिसको बचाने का दावा पेपर लीक कराने के आरोप में सीबीआई की गिरफ्त में आने के बाद दिनेश बिवाल ही नहीं करता, बल्कि जब इस पूरे मामले को आज तक पर सबसे पहले पड़ताल करके रिपोर्ट करने वाले संवाददाता शरद कुमार दिनेश और मांगीलाल के घर पर पहुंचकर आगे जानना चाहते हैं, तो पहले तो आज तक का कैमरा, आज तक का माइक, आज तक संवाददाता को देखकर पेपर लीक कराने के आरोपी का परिवार उन्हें पीछे हटाने लगता है। क्योंकि इस परिवार को लगता है कि आज तक पहुंच गया है तो फिर कोई ना कोई बड़ी खबर पेपर लीक खुलासे में सामने लेकर आएगा, और यही होता है जहां पेपर लीक के आरोपी भाइयों की पत्नियां कहने लगती हैं असली मास्टरमाइंड कोई और है।
26: इतना दिन से पेपर लीक हो रहे हैं और आज दुश्मन बन रहे हैं, कई साल दो बच्चा पेपर दिया जाए, दो बच्चा पेपर देर के नहीं, पेपर में भी
27: 2024 में भी लीक होगा,
26: बेटो चले मारो ऋषि,
27: कई बार हलवा कोरे
26: मारो बेटो, पहली बार नीट का पेपर दियो जाए, नीट का पेपर में पहली बार नहीं कोई मारा बेटा को पसावा का लाग रहा चाहे अन्य खेगा, मैं दिखे अन्य खेंगे।
28: आपकी बेटी भी दिया थे?
26: मेरे बेटा दिया है मेरा नीट का पेपर, उसके
28: इस बार बेटा दिया है ना?
26: हाँ मेरा बेटा पेपर दिया नीट का, पर मेरे बेटे के इतने मार्क्स नहीं आए और किसी ने फंसा दिया मेरे आदमियों को,
27: किसी ने फंसा
26: दिया है हमारे बच्चों ने, पिछली बार 3-4 बच्चों ने
27: किसी की शादी से
26: सारा उनको छोड़ रहा हूँ, पाचा पड़ गया सारा, इतना पेपर में होगा।
10: ये बात सच है, नीट पेपर लीक के पीछे एक बड़ा आदमी है, क्योंकि अब तक सीबीआई ने जिनको पकड़ा या तो जो सीधे जांच के दायरे में है उन्हें पकड़ा है, जैसे अहिल्या नगर से एक धनंजय लोखंडे पकड़ा गया, लेकिन वो कोई बड़ा आदमी नहीं है। नासिक से जो पकड़ा गया वो भी कोई बड़ा आदमी नहीं है। जितने भी लोग पकड़े गए वो बड़ा आदमी नहीं है, तो आखिर कौन है वो बड़ा आदमी?
0: दिनेश बिवाल और मांगीलाल बिवाल जयपुर के पास रहने वाले ये दो भाई प्रॉपर्टी डीलर हैं, लेकिन डीलरई करते करते ये दोनों दावा है कई वर्षों से नीट के पेपर लीक की भी डील करने लगे, जिसकी जांच में जुटी सीबीआई की टीम तफ्तीश करने इन दोनों के घर तक पहुंचती है, गाड़ी तक की जांच करती है।
29: नीट पेपर लीक 2026 में गिरफ्तार आरोपी मांगीलाल, दिनेश और विकास के घर सीबीआई की टीम पहुंची है। आप देख सकते हैं किस तरह से घर में पूछताछ हो रही है, जांच हो रही है। यहां आसपास जो इनके घर में गाड़ियां थी उन गाड़ियों की भी तलाशी ली गई है, इसके अलावा भी जो सामान है उन सारे सामान की भी तलाशी ली जा रही है, पूछताछ हो रही है। अब अब इस तरह से निकल रहे हैं, क्या आप लोगों ने देखा, कुछ पाया यहाँ कुछ आप लोगों ने जांच में?
0: सीबीआई के अफसर कई दस्तावेज और डिजिटल सबूत लेकर बिवाल ब्रदर्स के घर से निकलते हैं। वो घर जो केवल आरोपियों का घर नहीं बल्कि इस घर से इतने नीट पास करने वाले बच्चे एक साल में निकल गए कि शंका पैदा हो गई है कहीं हर साल ये पेपर लीक करा के तो खेल नहीं करते रहे। हमारी बात को ध्यान से समझिएगा। गिरफ्तार मांगीलाल बिवाल के बेटे विकास को पिछले साल 2026 की नीट परीक्षा पास करके सवाई माधोपुर मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला। मांगीलाल बिवाल की बेटी प्रगति ने भी नीट परीक्षा पिछले साल पास कर ली और मेडिकल कॉलेज में दौसा के दाखिला ले लिया। इन दोनों का तीसरा भाई जो जीवित नहीं, उस घनश्याम बिवाल की बेटी पलक बिवाल को एसएमएस मेडिकल कॉलेज में नीट निकाल के एडमिशन 2025 में मिल चुका है। दूसरी बेटी सानिया बिवाल को मुंबई के मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला और गिरफ्तार दिनेश बिवाल की बेटी गुंजन को वाराणसी के मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला था। यानी 5 बच्चे इसके घर से नीट निकाल लेते हैं। सुनकर ही चौंक जाना पड़ता है कि इतना पढ़ाकू परिवार था क्या। जहां दिनेश बिवाल ने सोशल मीडिया तक पर डाल दिया कि उसके परिवार के लिए बहुत गर्व की बात है कि उसके परिवार के 5 बच्चों का सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला हुआ। लेकिन जब इसी परिवार के इतने टॉप क्लास की पढ़ाई करने वाले बच्चों के बारे में आज तक संवाददाता शरद कुमार पूछते हैं तो इनकी माएं कुछ भी जानकारी में होने से इनकार करने लगती हैं।
1: पढ़ती है अभी?
26: पढ़ रही है हमारी तो कौन कौन सी? मैं कौन कौन सी बता दूँ क्या है क्या नहीं है?
1: तो हमने सब पढ़ाया मेहनत करके।
26: मेहनत पढ़ाया? मैं अनपढ़ गाँव और मैं पढ़ी लिखी कौन है? मैं
1: कहाँ पढ़ रही, ये तो पता होगा।
26: पढ़ रहा है जो मैं पढ़ी लिखी हूँ तो मैं नाम भी पढ़ लू ना, कहाँ पढ़ रही जवा?
1: अरे जब शहर का नाम तो पता होगा।
26: शहर का नाम भी पता होगा? मैं चले आऊँ ना, मेरा आदमी से मिलवा कोड़ा रख रखा है, कोड़ा नहीं रख रखा है, मेरा बेटा ना कोड़ा रख रखा है।
1: आपका बच्चा कहाँ कहाँ पढ़ता है ये तो बता सकती है?
26: बात क्या बात, मैं वो पढ़ी लिखी हूँ ना तो मैं कहीं बताऊँ भी? कोचिंग में पढ़ रहे थे, वो कोचिंग में पढ़ रहे
1: थे। ये बताओ ये गुंजन कहाँ पढ़ती है?
26: गुंजन कहाँ पढ़ती है कौन सी, तो मुझे पता नहीं है ना कौन सी जगह पढ़ती है गुंजन।
1: एमबीबीएस कर रही है ना?
26: नहीं एमबीबीएस कुछ नहीं कर रही मेरी तो।
1: कहाँ कर रही है?
26: क्लियर ही कौन का बच्चा को यहाँ
1: में। विकास कहाँ पड़ता है?
26: विकास को मुना कहीं पता, कोड़ा पढ़ा मैं पढ़ी लिखी हूँ तो बताऊँ ना, ये पढ़ा ये समझ वाला बतावा।
1: प्रगति कहाँ पढ़ती है?
26: मुझे कुछ ही पता नहीं है मेरे बच्चों का क्या।
1: कहाँ पढ़ती है?
26: कुछ पता नहीं है, किसी जगह पढ़ती है वो, कौन सी जगह? मैं पढ़ी लिखी हूँ तो मैं बच्चा को यहाँ फड़ारगंज में चले जाऊँ ना, मैं खुद ही चल जाऊँ आदमी से मिलवा।
1: बताता हो ना किस शहर में जाता है?
26: हाँ जाता है तो इधर ही चल जाता है, जयपुरपुर की तरफ इधर ही चल जाता है हमारे तो। ये सारा गांव से इधर आसपास का कशा कशा गांव से कशी कशी।
1: अच्छा ये पढ़ते कहाँ पढ़ते?
26: हाथ जोड़ा था भाई, मैं माथा का हाथ जोड़ा था, मन परेशान मत करो दे।
0: तो क्या ये जो राजस्थान का बिवाल परिवार है इसके पीछे असली खिलाड़ी बड़ा आदमी कोई और है? क्योंकि ये लोग हर साल पेपर लीक करा लेंगे इतनी इनकी ताकत नहीं दिखती। दावा ये है कि मांगीलाल और दिनेश तो नीट पेपर लीक में कोरियर का काम करते थे। जहां दिनेश ने अब की बार अपने बेटे ऋषि के लिए पेपर लीक कराया लेकिन उसका बेटा 600 नंबर का लीक पेपर पाकर भी आंसर की से जांचने पर पता चला 107 नंबर का पेपर ही कर पाया था।
2: तो सरकार जिस तरह से सख्ती से अभी काफी सारी गिरफ्तारियां भी हुई हैं जो करनी भी चाहिए, एक हमको ना एग्जांपल सेट करना चाहिए कि इस तरह का काम करोगे तो देश आपको छोड़ेगा नहीं।
10: और अब बात उस आंधी तूफान की जिसने यूपी में बहुत कहर बरपाया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस आंधी तूफान और आकाशीय बिजली गिरने से यूपी में 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई। भीषण आंधी में सड़कों से पेड़ उखड़ गए, गाड़ियों के ऊपर गिर गए, घरों की दीवारें ढह गईं, टिन शेड उखड़ गए और लगभग 100 लोगों की मौत हो गई।
3: कहीं तूफान में इंसान उड़ गया, कहीं पेड़ जमीन से ही उखड़ गए, कहीं पेड़ घर पर गिर गया, कहीं पेड़ के नीचे गाड़ियां फंस गई। यह है उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान और आकाशीय बिजली का कहर। बुधवार को यूपी में ऐसा तूफान आया कि सब कुछ तहस नहस हो गया। न कोई चेतावनी, न कोई पहले से जानकारी, न कोई अलर्ट, सीधा आंधी तूफान आया, बिजली गिरी और 104 लोग मारे गए। उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान और बिजली गिरने से बुधवार को कुल 104 लोगों की मौत हुई। इनमें से 4 लोग बिजली गिरने से मारे गए हैं, 52 लोग घायल भी हैं और 98 घर भी टूटे हैं। इसके अलावा 130 जानवरों की भी जान गई है। और ये तो सरकारी आंकड़े, तस्वीरें बता रही हैं कि स्थिति इससे कहीं ज्यादा बदतर है। सबसे बड़ी बात कि मॉनसून से पहले का आंधी तूफान इतनी तबाही लेकर आएगा किसी ने सोचा नहीं था। लोग हर रोज की तरह अपने कामों में व्यस्त थे, तूफान आया और कई लोगों की जान ले ली। बदायूं में भीषण आंधी तूफान से अलग अलग जगहों पर 6 लोगों की मौत हुई है। भदोही जिले में अलग अलग घटनाओं में 16 लोगों की मौत हुई। मिर्जापुर में भी आंधी तूफान की वजह से पूरे जिले में 17 लोगों की मौत हुई। फतेहपुर में 5 महिलाओं समेत कुल 11 लोग मारे गए। प्रयागराज में कल आए आंधी तूफान की वजह से कुल 21 लोगों की मौत हुई है। और इसके अलावा 1-2 मौतें तो ज्यादातर जिलों में हुई ही हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली तस्वीरें आई हैं बरेली से। आंधी में छत उड़ जाती है, तिरपाल उड़ जाता है, कपड़े उड़ जाते हैं, पेड़ भी उखड़ जाता है, लेकिन इंसान उड़ते शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा। बरेली में कल जो तूफान आया उसमें नन्हे मियां उड़ गए। जब से ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है तब से ये सवाल उठ रहा है कि कहीं ये कोई AI वीडियो तो नहीं है, क्योंकि ऐसी तस्वीरें बहुत कम देखने को मिलती हैं। लेकिन हकीकत यही है कि बरेली में नन्हे मियां तूफान से बचने के लिए बारात घर की छत पकड़े हुए खड़े थे। तूफान इतना तेज था कि छत ही उड़ गई और नन्हे मियां फिल्मी स्टाइल में 50 फीट ऊपर हवा में उछल गए और उछलकर एक खेत में जा गिरे। इस हादसे में नन्हे मियां बुरी तरह से घायल हो गए, उनके हाथ और पैर में चोट आई है।
4: बहुत तेज लगूरा आ रहा था, लगूरे के सामने ऊपर मतलब 30-40 फीट ऊंचा चले गए। हमें ना पता कहाँ गिरे, क्या हुआ, कम से कम 50 फीट दूरी से।
5: नहीं तो आपने उसको पकड़ रखा था, क्या था?
4: हाँ मतलब पकड़ा नहीं था, मतलब गाड़ी के जोड़े खड़े हम बाद में रस्सी पड़ी हुई थी।
5: अच्छा।
4: हाँ रस्सी पकड़ी थी।
3: पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसी हैरान कर देने वाली तस्वीरें नजर आ रही हैं। उन्नाव में तेज आंधी के चलते एक नीम का पेड़ उखड़ गया और कार के ऊपर गिर गया। कार के अंदर बैठे शख्स ने बड़ी मुश्किल से भागकर अपनी जान बचाई। पेड़ गिरने से कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। बदायूं में ये आंधी तूफान जानलेवा रहा। यहां अलग अलग स्थानों पर 2 मासूमों समेत 6 लोगों की मौत हुई है। आंधी के कारण कई जगहों पर पेड़ और दीवारें टूट कर गिर पड़ी, जिसके नीचे दबकर 2 मासूम बच्चों समेत 6 लोगों की मौत हुई। एक ट्रक ड्राइवर ट्रक लेकर उत्तराखंड के बाजपुर से बुलंदशहर जा रहा था। बदायूं के बिसौली में तेज आंधी से सड़क किनारे यूकेलिप्टस का पेड़ टूटकर ट्रक पर आ गिरा। इसके नीचे दबकर 29 साल के ट्रक ड्राइवर योगेश की मौत हो गई। पुलिस ने पेड़ को कटवाकर जैसे तैसे उसके शव को बाहर निकलवाया। यही हाल भदोही का भी रहा। यहां पूरे जिले में कुल 16 लोगों की मौत हुई है। एक महिला का पूरा परिवार इस त्रासदी की जद में आ गया। महिला के घर पर पेड़ गिरने के कारण उसकी और उसकी 2 मासूम बेटियों की मौत हो गई। एक बेटा और बेटी गंभीर रूप से घायल है, जिनका उपचार चल रहा है। पति मुंबई में काम करते हैं।
6: इन्होंने बताया कल जो घटना हुई है, क्या घटना है पूरी बात?
7: भाई वही आंधी तूफान आई थी सर, और वहाँ पे पेड़ गिर के दब के खत्म हो गए।
6: कौन खत्म?
7: मेरी बहन थी और 2 भतीजी थी, वो लोग खत्म हो गए। 2 बच्चे हैं, 1 भर्ती है अस्पताल में।
6: क्या आपको वहाँ से जानकारी बताया गया परिवार?
7: वहाँ पे ये बताया गया कि नीम का पेड़ गिर गया है, वो लोग दब गए हैं। तब हम लोग नहीं थे, तब हमारे चाचा के लड़का लोग आए यहाँ पे, फिर उसको लेके निकाले, फिर 2 तो बच गए, 3 मर गए।
6: कितने बच्चे हैं?
8: जो तूफान चक्रवाती तूफान आया था उसी में जो है नीम का पेड़ गिर जाने से हरिजन बस्ती के 5 लोग, मतलब माँ थी और 4 लड़कों लेके उसी घर में घुस गई अपने घर में। जो मौके पर वो पेड़ गिर गया जो है घर के ऊपर, और उसी में लोग दब गए, तो 3 लोगों की तो मौके पे मौत हो गई, 2 लोगों गंभीर लोग घायल हो गए हैं, उनको जिला अस्पताल या कहीं रेफर किया गया है बनारस ट्रामा सेंटर।
3: एक और घटना, उगापुर सरौली में मंदिर गई एक परिवार की 3 महिलाएं विशालकाय पेड़ गिरने के दौरान उसकी चपेट में आ गई, जिससे 3 की मौत हो गई।
9: तेज आंधी तूफान आने की घटना के कारण अलग अलग थाना क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की घटनाएं हुई, जिसमें पेड़ गिर जाने के कारण अथवा बिजली का खंभा घरों के ऊपर गिर जाने के कारण अथवा एक मंदिर के ऊपर गिर जाने के कारण कई सारी कैजुअल्टीज हुई हैं। कुल मिलाकर के अभी तक प्राप्त सूचना के क्रम में लगभग 15 लोगों की मृत्यु हुई है। इसके अलावा 8 लोग इन घटनाओं में घायल हुए हैं अलग अलग।
3: बहुत से लोग बिजली गिरने की वजह से भी मारे गए हैं, जो और ज्यादा भयावह है, क्योंकि गंगा के बेसिन में बिजली गिरने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। पूरे यूपी में कल बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हुई। आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले 5 सालों में देश में बिजली गिरने की घटनाओं में 400% का इजाफा देखा गया है। भारत में हर साल बिजली गिरने की घटनाओं में 7-14% की वृद्धि दर्ज की गई है। रिसर्च बताती है कि अगर तापमान सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो बिजली गिरने की घटनाएं 8-10% बढ़ जाती हैं। पिछले कुछ वक्त में बिजली गिरने की घटनाएं भारत के पूर्वी, उत्तरी और तटीय इलाकों से उत्तर पश्चिमी और हिमालय की तलहटी तक पहुंच चुकी हैं। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात बिजली गिरने के नए हॉटस्पॉट्स, जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और ओडिशा में भी बिजली गिरने की घटनाओं में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये भी देखा गया है कि जहां जहां से नदियां गुजरती हैं, वहां ये घटनाएं ज्यादा हो रही हैं। जैसे गंगा, यमुना, महानदी, गोदावरी, ताप्ती और नर्मदा की घाटियों में ज्यादा बिजली गिरती है। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि नदियों की घाटियों पर बहुत ज्यादा अतिक्रमण और शहरीकरण हो गया है, जिसकी वजह से वहां गर्मी बढ़ गई है। इससे ज्यादा वाष्पीकरण होता है और बिजली गिरती है। अगर समय की बात करें तो बिजली गिरने की घटनाएं अब लगभग पूरे साल होती हैं। आमतौर पर पूर्वी भारत में मानसून के पहले के आंधी तूफान में बिजली गिरती है। इसे काल बैसाखी भी कहा जाता है। आज तक ब्यूरो।
10: इंदौर में शादी की खुशियां मातम में बदल गई। हल्दी की रस्म के दौरान दुल्हन को चेहरे और शरीर में तेज जलन शुरू हुई। कुछ ही देर में चेहरे पर लाल धब्बे और सूजन बढ़ने लगी। परिजन तुरंत दुल्हन को लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन उसकी स्थिति बिगड़ती चली गई। जांच में आशंका व्यक्त की गई कि मिलावटी हल्दी ने जानलेवा रिएक्शन कर दिया। इलाज के दौरान दुल्हन की मौत हो गई।
0: मध्य प्रदेश का खरगोन, दुल्हन की हल्दी का कार्यक्रम चल रहा है। हंसी खुशी संगीत के बीच अचानक दुल्हन राखी परेशान होने लगती है। चेहरे, हाथ पैर पर घर वालों, दोस्तों की तरफ से लगाई जाती हल्दी से उसके चेहरे पर जलन तेज महसूस होती है। वो दौड़ती है। हालत ये हो जाती कि दुल्हन को इंदौर के अंबाई अस्पताल में ले जाकर तुरंत भर्ती तक कराना पड़ता है। लेकिन क्या मिलावटी हल्दी की वजह से दुल्हन की मौत हो गई? क्या हल्दी की रस्म में मिलावटी केमिकल वाली हल्दी जान ले रही है? क्या हल्दी की रस्म में जहरीले केमिकल की मिलावट अब मार दे रही है? इस सवाल की वजह 22 साल की ये दुल्हन है। ये इसकी शादी की तैयारी से पहले की तस्वीर है, जिसकी शादी में हल्दी की रस्म के दौरान हल्दी लगाने से दावा है इतनी भयानक एलर्जी हुई कि उसे इंदौर के अस्पताल में जब तक भर्ती कराया गया हालत बिगड़ चुकी थी। चेहरे पर सूजन आने लगी, हाथ पैर में लाल धब्बे पड़ने लगे।
11: सर, उसके हल्दी लगी हुई थी और अचानक से कुछ ऐसा हुआ तो गले में सूजन आ गया, मुंह सूज गया उनका, होठ। उसके बाद में लड़की से बोला भी नहीं जा रहा, तो फिर अब दुल्हन थी सर, सब घबरा गए। हल्दी ये बाजार में से लेके आए थे सर, बेचने वाले आए थे तो उसके लिए ले ली थी, तो उसी से गड़बड़ हो गई सर।
12: एलर्जिक रिएक्शन था काफी उसके शरीर में, अर्टिकेरिया और होठों पे भी कुछ स्वेलिंग वगैरह थी। और जब उसकी हिस्ट्री निकाली गई तो ये पता चला कि उसको कोई शादी का उनके यहाँ प्रोग्राम था, उसमें हल्दी लगाई गई थी, जिसके कारण उसके कुछ ही देर के बाद उसको सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हुआ और उसको लाके वार्ड में भर्ती किया था। और चूंकि उसके साथ साथ उसको सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी, तो प्रिकॉशनरी हम लोगों ने उसको आईसीयू में रखा था। उन्होंने बाजार से कुछ हल्दी खरीदी थी, हो सकता है उसमें किसी तरह का कोई केमिकल्स कई बार हल्दी को कलर बढ़ाने के लिए डाल के रखते हैं, उसके कारण ये एग्जैजरेटेड रिएक्शन उसके लिए एलर्जिक रिएक्शन हुआ।
0: इसके बाद दावा है कि स्थिति न सुधरने पर घर वाले एक दूसरे अस्पताल ले गए और बाद में फिर राखी की तबीयत ऐसी बिगड़ी कि जान चली गई।
13: जहाँ जहाँ भी सोर्सेस प्राप्त हुए वहाँ से नमूने हमने संग्रहित किए गए और लेबोरेटरी प्रयोगशाला को भेजे गए। हल्दी लगाने से ऐसा रिएक्शन हुआ ऐसा बता रहे, बाकी हमने भी जांच करी है और हमने लेबोरेटरी सैंपल के लिए भेज दिए।
0: 14 दिन में जांच से पता चलेगा राखी की मौत किस तरह की मिलावटी हल्दी की वजह से हुई। क्या केवल मिलावटी केमिकल वाली हल्दी इसकी वजह है या फिर कुछ और भी कारण हो सकता है? अब सवाल आपसे जुड़ा है, हल्दी का इस्तेमाल खाने में होता है, हल्दी का इस्तेमाल शादियों में रस्म निभाने में होता है, तो क्या हल्दी अगर मिलावटी है, केमिकल वाली है, तो रिएक्शन से लेकर जानलेवा तक हो सकती है?
14: खाने की और यदि चेहरे पे भी लगा रहे हैं तो मेरा तो सुझाव यही है कि जो खाने की हल्दी है और ब्रांडेड है वो बारीक हल्दी, उसका ही उपयोग करना चाहिए। ड्रेस एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंतर्गत कई बार जो है जो हल्दी है जो पैक करके दे रहे हैं उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव या अन्य रंग या गुलाल जैसा बना के भी उसको किया सकता है, उससे काफी हानि हो सकती है। वो जो हल्दी होगी या तो उन्होंने कहीं लूज हल्दी जो है यूज किया होगा बाजार में जो खुलेआम ठेले पे बिकती है। देखिए हल्दी को यदि हम पानी में घोल के कुछ देर रख देते हैं तो आप देखेंगे कि जो मूल हल्दी है वो पानी में घुलती नहीं है, जो हल्दी जो है नीचे बैठ जाएगी। और जो यदि उसमें कलर है तो कलर जो है गाढ़ा कलर यदि मिलाया गया है तो वो कलर ऊपर तैरने लगता है।
15: पीसी हल्दी में मिलावट की ज्यादा संभावना होती है?
14: पीसी हल्दी में ही ज्यादा संभावना है, हम जांच कर रहे हैं। और यदि फूड के माध्यम से इस तरह की हल्दी बेची जा रही है जो चेहरे पे लगा के और यदि कलर यूज हो रहा है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करेंगे।
16: आशंका है कि हल्दी में मेटानिल येलो नाम का जहरीला सिंथेटिक डाई मिलाया गया, वो भी इतनी मात्रा में जो जानलेवा बन गया। इस मेटानिल येलो का इस्तेमाल कपड़ा रंगने में किया जाता है, स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होने के कारण भारत में FSSAI समेत विश्व स्तर पर खाद्य पदार्थों में इसके उपयोग पर कड़ा प्रतिबंध है। खरगोन की दुल्हन राखी, जिसको घर परिवार के 15 से ज्यादा लोगों ने हल्दी लगाई, उनके हाथ में कोई रिएक्शन नहीं होने का दावा है। दुल्हन राखी को ही पहले रिएक्शन हुआ और फिर जान तक चली गई।
10: थोड़ा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।
17: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

नीट पेपर लीक को लेकर एक्शन में सरकार। धर्मेंद्र प्रधान के घर देर रात आला अधिकारियों की बैठक। जल्द हो सकता है परीक्षा की तारीखों का ऐलान। महाराष्ट्र से दो और गिरफ्तारी। आज हो सकता है तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान। पेट्रोल गैस पर संसदीय कमेटी की अहम बैठक। पीएम मोदी की अपील के बाद मंत्रियों मुख्यमंत्रियों ने चलाया तेल बचाने का अभियान। हॉर्मुज संकट के बीच विदेश मंत्री जयशंकर करेंगे अराकची की मेजबानी। द्विपक्षीय बातचीत में ऊर्जा और कनेक्टिविटी पर समझौते की उम्मीद। पीएम मोदी के पांच देशों की यात्रा पर दुनिया की नजर। आज यूएई के लिए होंगे रवाना। नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का भी करेंगे दौरा। देश में निर्यात के लिए निर्णायक फैसलों की उम्मीद। दिल्ली कथित शराब घोटाले में सुनवाई के दौरान जस्टिस स्वर्णकांता पर टिप्पणी को लेकर बढ़ी आपकी परेशानी। कोर्ट ने माना अवमानना। केजरीवाल और सिसोदिया समेत पांच नेताओं को नोटिस।

नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। सुबह के 6 बज चुके हैं और दिन के सबसे पहले बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की तमाम खबरों में शुरुआत करेंगे उस खबर से जिसका सीधा सरोकार हमसे आपसे है। नीट पेपर लीक मामले में बढ़ते आक्रोश के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर देर रात अहम बैठक बुलाई गई। इस बैठक में हायर एजुकेशन सचिव, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA के महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति के आयुक्त समेत बड़े अधिकारी मौजूद थे। बीती रात हुई इस बैठक में सूत्रों के मुताबिक करीब 2 घंटे तक नीट परीक्षा के तमाम पहलुओं पर चर्चा हुई। हालांकि बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। नीट पेपर लीक मामले में NTA आरोपों के घेरे में है। 22 लाख से ज्यादा मेडिकल उम्मीदवारों का भविष्य दांव पर है और ये दांव NTA के भरोसे है। परीक्षा की नई तारीख का ऐलान अब तक नहीं हुआ है। NTA ने परीक्षा रद्द होने के 7 से 10 दिन में दोबारा परीक्षा कराए जाने का आश्वासन दिया था और अब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर बीती देर रात अहम बैठक हुई। NTA के डायरेक्टर जनरल के साथ एजुकेशन सेक्रेटरी और तमाम ऐसे बड़े अधिकारी जिनका सीधा सरोकार परीक्षा पद्धति से है, इसको लेकर के हुआ है और इस बैठक के बाद क्या फैसला लिया गया है इसकी जानकारी आगे मिलेगी। तो वहीं नीट पेपर लीक मामले में CBI भी एक्शन में है। पिछले 24 घंटे में देश भर में CBI ने 14 जगहों पर छापेमारी की है। महाराष्ट्र से 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अहिल्यानगर से धनंजय लोखंडे, पुणे से मनीषा वाघमारे को CBI ने गिरफ्तार किया है। इसी के साथ अब कुल गिरफ्तारियां लगभग 7 हो चुकी हैं। संदिग्धों से इस मामले में लगातार पूछताछ कर रही है CBI।

0: कोचिंग सेंटर्स पर भी सीबीआई ने रेड की है। लातूर कोचिंग हब के रूप में जाना जाता है महाराष्ट्र का लातूर। दरअसल एक बड़ा इलाका, अगर इसको ऐसे समझें, चाहे दिल्ली का मुखर्जी नगर आप देख लें, ये कुछ कुछ वैसा इलाका है जहां बहुत सारे कोचिंग सेंटर हैं। तो अब वहां पर एक्शन में एक छात्र की शिकायत के बाद हुआ है, जिसमें दावा किया गया कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट में पूछे गए करीब 42 प्रश्न नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र में शामिल थे, जो पेपर लीक के बाद रद्द कर दी गई। इसके पहले पुलिस ने लातूर में 6 लोगों से पूछताछ की थी। महाराष्ट्र से अब तक 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें खैरनार भी शामिल हैं। नीट केस में गिरफ्तार 5 आरोपियों को कल सीबीआई ने अदालत में पेश किया, जिसके बाद उन्हें 7 दिन के रिमांड में भेजा गया है। और इन 7 दिनों की रिमांड में सीबीआई कोशिश करेगी कि इस पेपर लीक की परत दर परत को खोला जा सके। तो अब तक के घटनाक्रम में क्या हुआ है? अब तक के घटनाक्रम में दरअसल मामला सामने आने के बाद से लेकर के शिकायत के बाद सीबीआई ने मामला दर्ज किया। सीबीआई का मामला दर्ज किए जाने के बाद छापेमारी हुई है। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री के घर बीती रात एक अहम बैठक हुई, जिसमें नीट के महानिदेशक और उसी के साथ साथ शिक्षा सचिव के साथ तमाम बड़े अधिकारी शामिल थे। एनटीए महानिदेशक समेत तमाम बड़े अधिकारी पहुंचे। 2 घंटे ये बैठक चली है, माथापच्ची हुई है, क्योंकि इस पेपर लीक को लेकर के सरकार के खिलाफ गुस्सा है, नाराजगी है, क्योंकि पहला वाकया नहीं है, एनटीए लगातार फेल रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ 24 घंटे में देश भर में सीबीआई के छापे भी पड़े हैं, क्योंकि सीबीआई ने इसमें जांच के आदेश सरकार ने दिए, सीबीआई जांच कर रही है। 14 जगहों पर पूरे देश में सीबीआई ने छापे मारे हैं। और उसी के साथ साथ अहिल्यानगर पुणे से वहां से भी 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इन आरोपियों को भी अदालत में पेश किया जाएगा। धनंजय लोखंडे अहिल्यानगर से, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। सीबीआई की कोशिश दरअसल ये जानने की कि पेपर का एक्सेस कहां कहां तक था। पुणे से मनीषा वाघमारे, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। सीबीआई पूछताछ में पता चलेगी कि आखिर इस पेपर लीक में इनकी भूमिका क्या थी। महाराष्ट्र के लातूर में कई कोचिंग सेंटर हैं, और इन पर भी जब शक हुआ तो जांच के दौरान वहां भी छापेमारी की गई है, ताकि पूरी परत, और उसी के साथ साथ एक रिटायर्ड प्रोफेसर से भी पूछताछ की गई है, क्या उसकी भी भूमिका पेपर लीक में या पेपर सेट करने से लेकर कहीं तक थी। लातूर में एक छात्र ने शिकायत की थी कि दरअसल एक कोचिंग सेंटर में जो सवाल पूछे गए थे, उसके कई सारे सवाल, लगभग 42 प्रश्न ऐसे थे जो कि नीट परीक्षा में पूछे गए थे। तो अब सीबीआई यह जानने की कोशिश करेगी कि उसमें 22 सवाल, दरअसल 42 सवाल वो कहां से आए। अब महाराष्ट्र से अब तक 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, इसके पहले राजस्थान से गिरफ्तारी हो चुकी है। 5 आरोपियों को दिल्ली की अदालत में कल पेश किया गया, जहां उन्हें 7 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया गया, और इसी रिमांड के दौरान पुलिस पूछताछ की कड़ियों को आगे जोड़ेगी। तो अब तक गिरफ्तारियां कहां से हुई है? राजस्थान से, महाराष्ट्र से। अब जांच में क्या मिला है? टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैट से पुलिस, जो सीबीआई है, उसको सबूत मिले हैं, ये उन्होंने अदालत में जिरह की। जब चैट थे, जो चैट पुलिस ने एक्सेस किया सीबीआई ने, उसमें वो कह रहे हैं कि नीट परीक्षा में जो सवाल पूछे गए थे वो टेलीग्राम की चैट में उनको मिले हैं। अब इसी के साथ साथ महाराष्ट्र में नीट पेपर लीक मामले में एक नया एंगल भी सामने आया है, जिसने जांच एजेंसियों को सतर्क कर दिया है। गिरफ्तार आरोपी शुभम खैरनार का कंसल्टेंसी का दफ्तर है, वो भी अब सवालों के घेरे में है, जिसके जरिए सिर्फ मार्गदर्शन का दावा किया जा रहा था। आशंका यह जताई जा रही है कि इसके जरिए संगठित तरीके से परीक्षा में गड़बड़ी की साजिश रची जा रही थी।
1: डॉक्टर शुभम खैरनार, जो कि नीट पेपर लीक केस का मुख्य आरोपी और वही कड़ी कही जा रही है जिसने ये पेपर लीक किया, आपको बता दें कि ये देख रहे हैं आप मेरे पीछे SR एजुकेशन कंसल्टेंसी, ये डॉक्टर शुभम खैरनार की कंसल्टेंसी है, और इसमें लिखा है वी हेल्प स्टूडेंट्स फॉर करियर, अवर सर्विसेज MBBS, BAMS, BDS, BHMS और UGPG कोर्सेज, ये बच्चों को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए मदद करा रहा था। और आप देख सकते हैं कि ये नासिक के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में अपना ऑफिस चला रहा था। शुभम खैरनार का ये कहना था कि वो प्रैक्टिस कर रहा था, वो खुद थर्ड ईयर का स्टूडेंट है, पर यहाँ पर उसने बोर्ड लगाया हुआ है जिसमें वो दिखा रहा है कि वो एक डॉक्टर बन चुका है। आपको एक और बोर्ड दिखाते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है डॉक्टर एडमिशन कोर्सेस गाइडेंस मैनेजमेंट एंड सपोर्ट, ये तीनों भी चीजें यहाँ पर मेंशन की है, और इस ही एजेंसी के थ्रू वो एडमिशन करवा रहा था बच्चों के, और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए एक कंसल्टेंसी चला रहा था। शुभम खैरनार अब सीबीआई की गिरफ्त में है, उसके तार धनंजय लोखंडे, मनीषा वाघमारे से जुड़े हैं, पर ये आप देख सकते हैं कि ये आज तक का पहला खुलासा है कि यहाँ पर एक SR एजुकेशन कंसल्टेंसी नामक कंसल्टेंसी डॉक्टर शुभम खैरनार, या शुभम खैरनार जो आरोपी है नीट पेपर लीक केस का, वो चला रहा था। कैमरा पर्सन आशीष धुआंपुरकर के साथ दिवेश।

0: नाशिक आज तक।
1: नीट पेपर लीक मामले में आरोपी मांगेलाल और दिनेश के घर फार्म हाउस पर सीबीआई ने छापेमारी की। सीबीआई की दो अलग अलग जांच के लिए पहुंची थी ये टीमें और टीमों ने करीब चार घंटे तक घर फार्म हाउस को खंगाला। दूसरी टीम परिवार के सदस्यों के बयान दर्ज कर रही थी। मोबाइल फोन सहित अन्य जरूरी सामान भी सीज किया गया है। नीट पेपर लीक मामले में नाम आने के बाद प्रगति बिम्बाल गायब है। प्रगति दौसा के पंडित नवल किशोर शर्मा आयुर्ज्ञान महाविद्यालय में एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की छात्रा है, तो मांगीलाल के बेटे विकास अब पुलिस की गिरफ्त में है। दरअसल जैसे ही मायूस परिवार का नाम आया है बिम्बाल, लगातार वहां पर सीबीआई की जांच चल रही है और अब छापेमारी भी हुई है।
2: यहाँ पर अभी अभी सीबीआई आई थी, घर से चार फोन, एक लैपटॉप और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण थे वो जब्त करके ले गई। अभी हम उसी घर पे खड़े हैं जहाँ पर तीन जयपुर के एक ही परिवार के तीन लोग दिनेश, मांगीलाल और विकास की गिरफ्तारी हुई है। ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए थे और कई सालों से जुड़े हुए थे। आप देख लीजिए कि धनंजय हो या फिर यश हो या फिर वानखेड़े हो, ये सारे लोग आपस में एक दूसरे से कई सालों से जानते थे और ये पुराना काम था इनका। इसी बारे में सबूत इकट्ठा किया जा रहा है। सीबीआई ने इस बार पहल करते हुए जितने बच्चों को हिरासत में लिया था सबको छोड़ दिया है कि किसने किसने पेपर खरीदा है उसमें समय बर्बाद नहीं करना है, किसने किसने पेपर बेचा है उस पर फोकस करना है। और सीबीआई की अभी दो टीम यहां से निकली है जमुआ रामगढ़ से और सीकर में भी कार्रवाई चल रही है। इस पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। सबसे ज्यादा नेटवर्क जो है महाराष्ट्र में बताया जा रहा है और यहां से जो पूछताछ हो रही है, कहा जा रहा है कि मांगीलाल हो, दिनेश हो, कई साल से इस नेटवर्क में है। 2021 से के आसपास से कहा जा रहा है कि इस परिवार की दशा बदलनी शुरू हुई थी। आपको दिखाना चाहेंगे, यहां से देख लीजिए, यहां से आप पीछे पूरा फार्म हाउस तक, ये सारा पिछले 5-10 सालों में इस परिवार का हुलिया बदला है। जहां पर इतना बड़ा फार्म हाउस और घर इन्होंने बनाया है और परिवार के 5 बच्चों को डॉक्टर बनाया है। सिर्फ 5 बच्चों को डॉक्टर बनाया है ऐसी बात नहीं है, ये कुरियर का काम करते थे, बाकी जगह भी सप्लाई करते थे और इसीलिए पिछले 4-5 सालों से सीकर में फ्लैट लेकर रह रहे थे। और सीकर के जरिए इन्होंने ही, मांगीलाल दिनेश नहीं, ये जम्मू कश्मीर में, बिहार में, आंध्रा में, तेलंगाना में, केरला में ये पेपर भिजवाए हैं। इसलिए सीबीआई की एक टीम हमेशा जयपुर में कैंप करेगी और यहां से महाराष्ट्र एंगल पर तलाशा जा रहा है, बिहार का जो पुराना गुट है उसे भी तलाशा जा रहा है। बिहार मॉडल भी रहा है यहां पर जो 2025 में पूरी तरह से खुल नहीं पाया था। तो जैसे ही जैसे जो जो इनपुट मिल रहे हैं उसके आधार पर यहां पर कार्रवाई जारी है।
1: मांगीलाल की पत्नी से भी जो हमारे सहयोगी ने बात की, उन्होंने क्या कहा सुनवाते हैं आपको।
3: गुलशान को सत्यानाश चलेगा,
4: कौन पीछे पड़ेगा आपके,
3: कौन पीछे पड़ेगा, तो काई से काई मतलब कोई पता कौन मने जो मैं काई करता मखान को आदमी को पकड़ लेगा बिना वो बताए, पकड़ लेगा,
4: इसलिए पकड़ लेगा कि 5 बच्चे यहाँ आपके घर से इमिग्रेशन
3: हुए। 5 बच्चा फर्म होगा तो कई मेहनत करेगा तो दुनिया का बच्चा पैदा होगा। मेरे बेटा दिया है मेरा नीट का पेपर, उसे
4: इस बार बेटा दिया है ना।
3: हाँ, मेरा बेटा पेपर दिया नीट का, पर मेरे बेटे के इतने मार्क्स नहीं आए और किसी ने फंसा दिया मेरे आदमी को,
4: किसी ने फंसा
3: दिया हमारे बच्चों ने पिछली बार 3-4 बच्चों ने
5: किसी की शादी से, किसी की शादी से ये पता चला।
4: बेटी कहाँ पढ़ती है अभी?
5: पढ़ रही है हमारी तो कौन कौन सी, मैं पढ़ी लिखी थोड़ी ना हूँ जो मैं कौन कौन सी बता दूँ क्या है क्या नहीं है।
4: तो हमने सब पढ़ाया मेहनत करके,
5: मेहनत पढ़ाया, मैं अनपढ़ गाँव और मैं पढ़ी लिखी कौन है, मैं
4: पढ़ रही ये तो पता होगा।
5: पढ़ रहा है तो मैं पढ़ी लिखी हूँ तो मैं नाम भी पढ़ लू ना, कहाँ पढ़ रही जवा।
4: अरे जग शहर का नाम तो पता होगा,
5: शहर का नाम भी पता होगा। मैं चले आऊँ ना, मेरा आदमी से ही मिलवा, कोड़ा रख रखा है, कोड़ा नहीं रख रखा है, मेरा बेटा ना कोड़ा रख रखा है।
1: नीट पेपर लीक मामले के बाद उत्तर प्रदेश में होने वाले सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी को सख्त कर दिया गया है। यूपी पुलिस ने 32,679 पदों पर यह भर्ती परीक्षा 8 से 10 जून के बीच आयोजित की जाएगी। नीट पेपर लीक के बाद यूपी स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ ने सभी यूनिट्स को अलर्ट पर रखा है। नोएडा, बरेली, झांसी, आगरा यूनिट को विशेष रूप से निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। एसटीएफ को पेपर लीक करने वाले गैंग, सॉल्वर गैंग, परीक्षा के नाम पर ठगी करने वाले गिरोहों पर नजर रखने को कहा गया है। परीक्षा को लेकर के जारी एसओपी का कड़ाई से पालन कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही ड्यूटी पर लगे हर राज्य कर्मचारी का ई वेरिफिकेशन भी अनिवार्य किया गया है। किसी भी बाहरी व्यक्ति का परीक्षा केंद्र में प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज से विदेश दौरा शुरू हो रहा है। थोड़ी देर बाद पीएम मोदी अबुधाबी के लिए उड़ान भरेंगे। आज से 20 मई के बीच प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे।
6: पीएम मोदी का ये विदेश दौरा खास है, इसमें भारत की तरक्की के ख्वाब है, इसमें विदेश नीति को मजबूत करने की बात है। पीएम मोदी सबसे पहले सुबह 11 बजे अबू धाबी के प्रेसिडेंशियल एयरपोर्ट पर उतरेंगे। 11 बजे से सवा 11 बजे के बीच अबू धाबी में पीएम को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। सवा 11 से 11:30 के बीच पीएम यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मिलेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों और ऊर्जा सहयोग पर बात करेंगे। व्यापक रणनीति साझेदारी को लेकर एमओयू साइन होंगे। 11:35 से 12 बजे के बीच पीएम मोदी और यूएई के राष्ट्रपति के बीच चाय का कार्यक्रम है। 12 से 12:30 बजे के बीच लंच का कार्यक्रम है। करीब 1:30 बजे पीएम नीदरलैंड के लिए निकल जाएंगे। नीदरलैंड में पीएम 15 से 17 मई तक रहेंगे। ये यात्रा नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के आमंत्रण पर हो रही है। इस यात्रा का मकसद दोनों देशों के बीच पहले से मजबूत हो रहे सहयोग को और आगे बढ़ाना है। इसमें रक्षा, सुरक्षा, नवाचार, ग्रीन हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर और पानी से जुड़ी रणनीतिक साझेदारी जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री 17 से 18 मई के बीच स्वीडन के गोथेनबर्ग में रहेंगे। ये यात्रा स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के निमंत्रण पर हो रही है। यहाँ ग्रीन ट्रांजिशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नई टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, डिफेंस, स्पेस को लेकर चर्चा होगी। इसके बाद पीएम मोदी 18 से 19 मई तक नॉर्वे की यात्रा करेंगे और तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, साथ ही कई द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी की पहली नॉर्वे यात्रा होगी और पिछले 43 वर्षों में भारत के किसी प्रधानमंत्री की ये पहली आधिकारिक नॉर्वे यात्रा होगी। वे नॉर्वे के राजा हेराल्ड वी और क्वीन सोंजा से भी मिलेंगे। प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। इसके बाद अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 19 से 20 मई तक इटली में रहेंगे। ये यात्रा इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के आमंत्रण पर हो रही है। इस दौरान वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मेटेरेला से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ बातचीत करेंगे। आज तक ब्यूरो।
1: इसी के साथ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से।
8: Morning people wake up for peace and quiet. McDonald's breakfast people, we wake up for the sweet rush of getting that warm, delicious breakfast right before it ends.
9: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
10: Ba-da-ba-ba-ba.
9: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
11: हो रहा है सूर्य देव का राशि परिवर्तन। किस राशि के व्यक्ति को रहना होगा सावधान और किस राशि को सूर्य देव से मिलेगा वरदान, किसकी समस्याओं का होगा समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र।
12: TuneIn has the music.
9: Take a vacation with poolside hits on TuneIn.
13: TuneIn Poolside has the music I love.
9: Vibe out in your poolside cabana with hits from iconic artists like Calvin Harris, Avicii, Bloom, and more. Listen to the best blend of house, techno, trance, and more from the hottest DJs and get your pool party started. Just search Poolside or ask your device to play Poolside on TuneIn. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.

तूफानी तबाही की ये पहली और सबसे हाहाकारी तस्वीर है। यूपी के अलग अलग हिस्सों में जो तूफान आया उसकी हैरान करने वाली ये तस्वीर बरेली से आई। हवाओं की रफ्तार कितनी खतरनाक थी उसका अंदाजा इस तस्वीर को देखकर लगाया जा सकता है। देखिए कैसे एक शख्स हवा में करीब 50 फीट तक उड़ जाता है। ऐसा लग रहा है मानो किसी फिल्म की शूटिंग चल रही हो। बरेली में तूफान आया तो उससे बचने के लिए एक शख्स ने टीन शेड का सहारा लिया, लेकिन तूफान का प्रकोप ऐसा कि ये टीन शेड खुद भी तिनके की तरह उड़ने लगा। जानकारी के मुताबिक ये टीन शेड बारात घर के ऊपर बना था। उसी टीन शेड की आड़ में जान बचा रहा शख्स भी उसके साथ साथ हवा में करीब 50 फीट से ज्यादा ऊपर तक उड़ गया। तूफान की चपेट में आकर हवा में उड़ने वाला शख्स गंभीर रूप से जख्मी हो गया। यूपी के उन्नाव में भी खौफनाक मंजर दिखे। वहां मौसम की अचानक करवट लेते ही तेज आंधी के चलते सड़क पर खड़ी कार के ऊपर एक विशाल नीम का पेड़ टूट कर गिर पड़ा। इस हादसे में कार के ठीक ऊपर पेड़ गिरा, लेकिन गनीमत कहिए कि ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए फौरन कार से भागकर अपनी जान बचा ली। अब पेड़ गिरने का ये लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूपी के भदोही में भी हालात बेहद गंभीर दिखे। वहां भीषण आंधी तूफान से अलग अलग घटनाओं में 15 लोगों की जान चली गई, कई लोग जख्मी हो गए, कहीं पर पेड़ पौधे टूट कर बिखर गए। एक ऐसा ही मंजर वहां रेलवे स्टेशन पर दिखा। ट्रैक पर भी जमींदोज पेड़ का हिस्सा पड़ा रहा। बुधवार की शाम आए तूफान से भदोही में ये तबाही मची। इससे बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की भी मौत हो गई। कई जगहों पर बिजली के खंभे टूट गए जिससे बिजली सप्लाई ठप हो गई। भीषण तूफान की चपेट में आकर प्रयागराज में 20 से ज्यादा लोग जान गंवा बैठे। इस गाड़ी की हालत देखिए। जिस वक्त आंधी तबाही मचा रही थी उसी वक्त ये गाड़ी सड़क से गुजर रही थी, तभी ये पेड़ जमींदोज हो गया। पेड़ की चपेट में आकर लग्जरी गाड़ी तबाह हो गई। बदायूं में बुधवार को आई तेज आंधी कुछ लोगों पर कहर बनकर टूटी। तूफानी हवाओं की वजह से कई जगहों पर पेड़ और दीवारें टूट कर गिर पड़ी। अलग अलग घटनाओं में वहां 6 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल भी हुए। तूफान के दौरान सड़कों पर ट्रैफिक बाधित हो गया और गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। मिर्जापुर में भी आंधी तूफान के कहर से 17 लोगों की जान चली गई। वहां सदर तहसील में 7 लोगों की मौत हुई तो चुनार तहसील में 3 लोग जान गंवा बैठे। शहर में बीच सड़क पर पेड़ धराशायी हो गए, बिजली के पोल टूट कर बिखर गए। पोल की चपेट में वहां एक ऑटो वाला भी आ गया। इसे लेकर सीएम योगी ने प्रशासन को जान माल के नुकसान का तुरंत आकलन करने और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने के निर्देश दिए। सख्ती बरतते हुए मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया कि पीड़ितों की अनदेखी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बरेली से कृष्ण गोपाल राज, भदोही से महेश कुमार जायसवाल, प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव और बदायूं से अंकुर चतुर्वेदी के साथ आज तक ब्यूरो।

0: मिडिल क्लास की रसोई से लेकर आपकी गाड़ी की रफ्तार तक, सभी पर महंगाई का बड़ा झटका लगने का डर बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल पश्चिम एशिया के सुलगते हालातों ने कच्चे तेल की कीमतों में ऐसी आग लगाई है कि भारतीय बाजारों में भी इसकी तपिश महसूस होने लगी है। ग्लोबल मार्केट में मचे इस कोहराम की वजह से आपकी जेब पर सीधा बोझ पड़ने का खतरा है। तेल और गैस की कीमतों को लेकर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो डराने वाले हैं, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के वजह से सरकारी तेल कंपनियों को हर दिन 1700 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि जल्द ही पेट्रोल डीजल के दाम 5 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ सकते हैं। वही रसोई गैस यानी LPG सिलेंडर की कीमतों में भी 50 रुपए तक का इजाफा मुमकिन है। सरकार महंगाई के इस झटके को एक साथ लगाने की जगह धीरे धीरे लोगों को देने की प्लानिंग कर रही है, जिससे जनता को एकदम से तगड़ा करंट ना लगे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कीमतें एक साथ बढ़ाने के बजाय किश्तों में बढ़ाई जाएगी। भारत की सबसे बड़ी मुश्किल आयात पर निर्भरता है, क्योंकि देश में जरूरत का करीब 88% कच्चा तेल और 7% LPG इम्पोर्ट की जाती है। इस वजह से युद्ध के हालात सीधे हमारे बजट को बिगाड़ देते हैं। ईंधन महंगा होने का मतलब है फल, सब्जी और राशन की ढुलाई भी महंगी होगी, जिसका असर सीधे आम आदमी की थाली पर पड़ेगा। तेल कंपनियों पर बढ़ते इसी दबाव को लेकर दिग्गज बैंकर उदय कोटक ने भी बड़ी चेतावनी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद देशवासियों से ईंधन की खपत कम करने और वर्क फ्रॉम होम जैसे तरीके अपनाने की अपील कर चुके हैं। ऐसे में साफ है कि ग्लोबल तनाव के बीच आने वाले दिन मिडिल क्लास के लिए चुनौतियों भरे रहने वाले हैं। आज तक ब्यूरो।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
3: Morning people wake up for peace and quiet. McDonald's breakfast people, we wake up for the sweet rush of getting that warm, delicious breakfast right before it ends.
4: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's, limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
5: Ba-da-ba-ba-ba.
6: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
7: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
8: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
9: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
10: We have not seen the impact in the last 2 months of the Middle East war in terms of energy price transmission. It's coming. And it's coming big. It's the shock is coming.
5: देश के बड़े बैंकर और कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक के मुंह से ये चेतावनी सुनकर हर कोई पूछ रहा है कि मिडिल क्लास को लगने वाला वो बड़ा झटका क्या है। क्या इसका संबंध तेल के दाम में इजाफा है जिसने तेल कंपनियों को लहूलुहान कर दिया है।
11: My oil companies are losing 1000 crores a day. They are under recoveries at in the tune of nearly 198,000. So we will have to start worrying about these things.
5: तो पेट्रोलियम मंत्री भी कह रहे हैं कि चिंता करना तो बनता है, लेकिन चिंता की बात कितनी बड़ी है और उसका असर कितना बड़ा होने वाला है इस पर एक खामोशी है। लेकिन ये तय है कि समस्या का केंद्र अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा युद्ध ही है, जिसकी आग ने तेल के दाम में उबाल मार रखा है। युद्ध की वजह से तेल के दाम में इजाफा भारत जैसे देश को किस हद तक प्रभावित कर सकता है, उसे समझने के लिए आपको 1990 में लड़े गए हर युद्ध और उसके भारत पर असर को समझना होगा। 1990-91 में पेट्रोलियम आयात बिल 2 अरब डॉलर से बढ़कर सीधा 5.7 अरब डॉलर हो गया। ऐसा तेल की कीमतें बढ़ने की वजह से हुआ था, जिसने भारत को तब दिवालिया होने की कगार तक धकेल दिया था। 21 जून 1991 को पीवी नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री बने तो ऐसा लग रहा था कि भारत विदेशी कर्ज तय तारीख पर नहीं चुका पाएगा और दिवालिया घोषित हो जाएगा। लेकिन नरसिम्हा राव ने आर्थिक सुधार करके हालात संभाल लिए। 35 साल बाद खाड़ी में चल रही जंग की वजह से तेल के दाम उबाल मार रहे हैं। भारत का आयात बिल तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। 1990 के मुकाबले भारत आर्थिक तौर पर कई गुना ज्यादा मजबूत है। 700 बिलियन डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है। फिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बचत की अपील बार बार करनी पड़ रही है? क्या पीएम को कुछ और खतरा भी दिख रहा है? जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना काफिला छोटा करके बचत की मिसाल पेश की, उससे आगे क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है, ये सवाल गहराता जा रहा है। क्या अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध नए सिरे से शुरू होकर और घातक होने जा रहा है, जिस असर को लेकर सरकार ने खुद ही बचत करनी शुरू कर दी? क्योंकि युद्ध शुरू होने के समय डॉलर के मुकाबले रुपया 91 के आसपास था, जो अब गिरकर अपने ऐतिहासिक स्तर 95.74 रुपए तक पहुंच गया। फरवरी में तेल की कीमत 78 डॉलर प्रति बैरल थी। ईरान पर हमले के बाद 126 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गई। अभी करीब 105 और 110 डॉलर प्रति बैरल के करीब है। इसकी वजह से भारत का आयात बिल काफी बढ़ गया है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का तेल आयात बिल 176 अरब डॉलर हो गया, जो और बढ़ने की आशंका है। इसीलिए उदय कोटक की तरफ से चेतावनी दी गई है। पिछले वित्त वर्ष में आयात बिल 775 बिलियन डॉलर का था, जिसमें सबसे ज्यादा 175 बिलियन डॉलर का बिल कच्चे तेल का है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स का 116 अरब डॉलर का है। तीसरे नंबर पर 74 बिलियन डॉलर का बिल गोल्ड का था। इन तीनों का विदेशी मुद्रा भंडार पर सबसे ज्यादा दबाव होता है। ये ना बढ़े इसीलिए सरकार की तरफ से सोने चांदी पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई। इसीलिए सरकार की तरफ से चुनौती को लेकर खबरदार किया जा रहा है। तो सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पीएम को लेकर अफरा तफरी मचाना बेकार है। पीएम की बातों को ध्यान से सुने और उसका मनगढ़ंत मतलब ना निकाले, क्योंकि हालात सिर्फ युद्ध खत्म होने से ही सुधरेंगे, जिसकी उम्मीद पिछले काफी दिनों से ही की जा रही है।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

नीट पेपर लीक को लेकर एक्शन में सरकार। धर्मेंद्र प्रधान के घर देर रात आला अधिकारियों की बैठक। जल्द हो सकता है परीक्षा की तारीखों का ऐलान। महाराष्ट्र से दो और गिरफ्तारी। आज हो सकता है तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान। पेट्रोल गैस पर संसदीय कमेटी की अहम बैठक। पीएम मोदी की अपील के बाद मंत्रियों मुख्यमंत्रियों ने चलाया तेल बचाने का अभियान। हॉर्मुज संकट के बीच विदेश मंत्री जयशंकर करेंगे अराकची की मेजबानी। द्विपक्षीय बातचीत में ऊर्जा और कनेक्टिविटी पर समझौते की उम्मीद। पीएम मोदी के पांच देशों की यात्रा पर दुनिया की नजर। आज यूएई के लिए होंगे रवाना। नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का भी करेंगे दौरा। देश में निर्यात के लिए निर्णायक फैसलों की उम्मीद। दिल्ली कथित शराब घोटाले में सुनवाई के दौरान जस्टिस स्वर्णकांता पर टिप्पणी को लेकर बढ़ी आपकी परेशानी। कोर्ट ने माना अवमानना। केजरीवाल और सिसोदिया समेत पांच नेताओं को नोटिस।

0: आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। बड़ी खबर इस समय, पश्चिम एशिया क्राइसिस का असर अब हिंदुस्तान पर दिखा है। तेल की कीमतों में बम्पर इजाफा हुआ है। इसके पहले रसोई गैस की कीमतें बढ़ी, कमर्शियल गैस की कीमतें बढ़ी और अब पेट्रोल डीजल के दाम में सीधे 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल और डीजल 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। सरकार लगातार यह हवाला दे रही थी कि ऑयल कंपनियों को नुकसान हो रहा है और बीते कई दिनों से इस बात के माहौल पूरी तरह बनाए जा रहे थे कि यह परिस्थिति आएगी, पश्चिम एशिया क्राइसिस के चलते हो रही किल्लत। हालांकि सरकार यह भी कहती रही कोई किल्लत नहीं है, लेकिन उस किल्लत के बाद धीरे धीरे बचत की बात हुई और अब सीधा आपकी हमारी जेब को झटका। पेट्रोल और डीजल के दाम में 3 रुपए की बढ़ोतरी, मध्यम वर्ग को सबसे बड़ी चोट। जाहिर है डीजल की कीमतें बढ़ने के चलते लगभग सब कुछ महंगा होगा, यानी महंगाई का ट्रिपल बम। आपको बता दें आरबीआई गवर्नर ने भी कहा था कि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ेंगी और इसी के साथ साथ ही डब्ल्यूपीआई इंडेक्स में पहले ही हमने देखा कि महंगाई के आंकड़े अप्रैल में बढ़े हैं और अब पेट्रोल से ज्यादा डीजल की कीमतें बढ़ने के चलते ट्रांसपोर्टेशन पर इसका असर पड़ेगा, यातायात पर इसका असर पड़ेगा, परिवहन पर इसका पड़ेगा, माल ढुलाई पर इसका असर पड़ेगा और जिसके चलते अब महंगाई का विस्फोट, उसका असर सीधे सीधे हिंदुस्तान में भी दिखाई देगा। पेट्रोल और डीजल के दाम में 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, यानी जो पेट्रोल आप 94 रुपए का खरीदते थे वो अब सीधे सीधे 97 रुपए का होगा। डीजल की कीमतें अगर सही से समझें तो 87.67 रुपए का डीजल अब 90.71 रुपए में मिलेगा, जबकि 94.77 रुपए का पेट्रोल अब 97.81 पैसे में मिलेगा। और आज से ही ये कीमतें लागू हो रही हैं। पेट्रोल और डीजल 3 रुपए महंगा हो चुका है। हालांकि इसे बिल्कुल न माना जाए कि ये यहीं पर रुक जाएगा। अगर क्राइसिस लगातार जारी रही, परिस्थितियां ऐसी ही रही तो ये कीमतें और भी ज्यादा हो सकती हैं। तो आज सुबह की सबसे बड़ी खबर, पेट्रोल के दाम में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी और डीजल के दाम में, यानी दिल्ली में अगर आप रहते हैं तो आप पेट्रोल 97.77 रुपए प्रति लीटर आपको देने होंगे। 94.77 रुपए के बजाय आपको 97.77 रुपए देने पड़ेंगे प्रति लीटर पेट्रोल के लिए। तो डीजल की कीमतों में भी 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी लगातार ये कह रहे थे कि ऑयल कंपनियां जो हैं उन पर दबाव बढ़ रहा है। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, लगातार सरकार की ओर से ये इशारा दिया तो जा रहा था, लेकिन आज सुबह वो झटका लग चुका है।
1: देखिए बिल्कुल आशुतोष, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से मिडल ईस्ट एशिया में हालात बने हुए हैं उसके बाद लगातार भारतीय पेट्रोलियम कंपनी को पर डे 1,000 करोड़ का जो है वो नुकसान हो रहा था। आपको याद होगा पिछले महीने सरकार की तरफ से पेट्रोलियम कंपनीज को जो है पेट्रोल और डीजल पे 10 रुपए के लिए जो है वो उसमें सब्सिडीज जो दे रही थी पेट्रोलियम कंपनी उसकी भरपाई की गई थी। 30,000 करोड़ रुपए जो है दिए गए थे, लेकिन अब क्योंकि लगातार इस तरीके के जो हालात बने हुए थे उसमें रोज 1,000 करोड़ रुपए का नुकसान जो है पेट्रोलियम कंपनियों को हो रहा था। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है इस मान कर चल रही थी कि ना बढ़ाए जाए, लेकिन जो हालात लगातार बने हुए हैं उसके बाद जो है पेट्रोलियम और डीजल के जो प्राइस हैं उनको बढ़ाया गया है, जिससे पेट्रोलियम कंपनी को जो घाटा है वो कम हो। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि हम 85% पेट्रोलियम प्रोडक्ट यानी कच्चा तेल जो है वो विदेशों से आयात करते हैं और ऐसे में भारत का जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर निर्भरता है वो विदेशों पर है और मिडल ईस्ट एशिया के कारण लगातार जो है वो सप्लाई चेन में कमी है और प्राइस बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में इंटरनेशनल प्राइस को देखते हुए भारत सरकार की तरफ से भी जो है इन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई।
0: एक चीज और जानना जरूरी होगा हिमांशु, क्या ये कीमतें यहीं रुक जाएंगी या माने कि अभी ये शुरुआत है, अभी ट्रेलर है, अभी और भी झटके इस तरह के लगने बाकी हैं? और दूसरा, चूंकि डीजल की कीमतें बढ़ रही है जो प्रत्यक्ष रूप से महंगाई बढ़ाती है, सरकार के पास कोई ठोस नीति इस समय है कि महंगाई को किसी तरह रोका जाए?
1: देखिए सरकार ने एक तरीके से, प्रधानमंत्री ने जब जनता से अपील की और ये कहा कि आपको गाड़ी का कम से कम उपयोग करना है, आप कूल करके चलिए, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कीजिए, वर्क फ्रॉम होम कीजिए, वर्चुअल मीटिंग्स पे ज्यादा ध्यान दीजिए, सोने को कम खरीदिए, विदेश कम जाए, विदेश के जो आपके टूर है उनको कम कर लीजिए। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत अपने फॉरेन रिजर्व को जो है वो मेंटेन रखना चाहता है, कहीं ऐसा ना हो फॉरेन रिजर्व अगर मेंटेन ना कर पाए तो उसका नुकसान होगा, और अगर इसी तरीके से मिडल ईस्ट एशिया में हालात बने रहे तो फिर इंटरनेशनल जो क्रूड ऑयल प्राइजेस हैं उसको मैच भी करना होगा, और ये भी ध्यान देना होगा कि भारतीय पेट्रोलियम कंपनीज को जो है इसका नुकसान ना हो, और कुछ नुकसान भारतीय पेट्रोलियम कंपनी जो है वो वाहन करें और कुछ जनता, जैसा मैंने पहले भी बताया कि भारत सरकार की तरफ से 30,000 करोड़ रुपए जो है वो दिए गए थे कि पेट्रोल और डीजल पे पर 10 रुपए पेट्रोलियम कंपनी को जो 30 रुपए से नुकसान था उसको 10 रुपए जो है भारत सरकार की तरफ से उसमें टैक्सेस को कम करके दिए गए थे, सेंट्रल टैक्सेस को।
0: ठीक है मानशु, आप बने रहे हमारे साथ। एक बार अपने तमाम दर्शकों को फिर बता दें जो अभी अभी सीधे इस ब्रॉडकास्ट में जुड़े हैं, अगर आप सुबह के उठे हैं तो जानिए कि कीमतें आज से लागू होंगी। पेट्रोल के दाम 3 रुपए प्रति लीटर, तो डीजल की कीमतों में भी 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी है। पश्चिम एशिया संकट गहराने के बाद सीधा असर तेल कंपनियों को हुआ है। सरकार का हवाला है कि जो तेल कंपनियां हैं उनको 1,000 करोड़ रुपए लगभग की नुकसान झेलना पड़ रहा है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में। ये पहली बढ़ोतरी है पश्चिम एशिया संकट के बाद, ये अब तक की पहली बढ़ोतरी है। हालांकि चर्चा इस बात की भी थी कि पेट्रोल और डीजल जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं वो चाहती हैं कि 10 रुपए प्रति लीटर बढ़ाया जाए, लेकिन पहला झटका सिर्फ 3 रुपए प्रति लीटर को लेकर के है। जाहिर है जो संकट है उसके असर से भारत भी अछूता नहीं है। इतना ही नहीं, दुनिया के तमाम देशों में लगातार बचत के कार्यक्रम शुरू कर दिए थे, यहां तक कि जो दक्षिण एशियाई देश हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, ये तमाम देशों ने मार्च महीने से ही किफायत के कदम उठाने शुरू कर दिए थे। एक तरह का वर्चुअल लॉकडाउन था, तमाम वो कोशिशें की जा रही थी कि न सिर्फ अपना विदेशी मुद्रा भंडार बचाया जाए बल्कि तेल के जो खर्च, जो खपत है उसको कम किया जाए। अब मई के महीने से भारत सरकार भी ये कार्यवाही कर रही है, लोगों से अपील की जा रही है कि वो भी वॉलंटरली सामने आए ताकि तेल की खपत कम हो। जितनी खपत कम होगी उतना ही आयात कम करना पड़ेगा, जितना आयात कम होगा उतना ही विदेशी मुद्रा भंडार खर्च होगा, और जितना विदेशी मुद्रा भंडार बचेगा जाहिर है उसका सीधा सा असर भारतीय रुपए पे होगा। यानी सरकार की ये सारी कवायद भारतीय रुपए की गिरती हुई जो वैल्यू है उसको संभालने की है ताकि रुपया डॉलर के मुकाबले और कमजोर ना हो। तो आज सुबह सबसे बड़ा झटका पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी। हिमांशु हमारे साथ, हमारे सहयोगी तमाम जुड़े हुए हैं। हिमांशु, पेट्रोल की कीमतें आप समझ सकते हैं कि जो छोटे शहर हैं या ग्रामीण इलाके हैं वहां पर जो लोग हैं, आम लोग हैं, उनको उतना फर्क संभवतः एक बार फिर भी ना पड़े, लेकिन डीजल 3 रुपए प्रति लीटर, हम जानते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से ट्रांसपोर्टेशन हो, सामान ढुलाई हो, इन सब पर असर पड़ेगा, जिसका सीधा सा असर जो खाद्य महंगाई दर उस पर पड़ सकता है। क्या कोई प्लान, कंटिजेंसी प्लान सरकार के पास है कि खाद्य महंगाई दर को वो रोके, क्योंकि कल ही WPI इंडेक्स जो है उसमें काफी बढ़ोतरी देखी गई है।
1: देखिए आशुतोष, क्योंकि अगर पेट्रोल और डीजल की कीमत पड़ती है और खासतौर से डीजल, क्योंकि जितना जो सप्लाई चेन है वो डीजल की गाड़ियों के द्वारा किया जाता है, और अगर डीजल की कीमत बढ़ेगी तो जाहिर तौर है कुछ खाद्य पदार्थों के जो है इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है कि जो रेट है उनके वो बढ़ सकते हैं खाद्य पदार्थों के। लेकिन पिछले कई समय से सरकार ये कोशिश कर रही थी कि मिडल ईस्ट एशिया में यानी पश्चिमी एशिया के अंदर जो हालात हैं वो थोड़े सुधरें और सप्लाई चेन जो है और ज्यादा स्मूथ हो और अच्छी सामान्य तौर पर चले जैसा पहला चला करता था, लेकिन वो बन नहीं रहे हैं। और इससे पहले भी पेट्रोलियम कंपनियों को भारत सरकार की तरफ से जो है 10 रुपए पेट्रोल और डीजल पे जो सब्सिडीज दी जा रही थी उसको टैक्स के रूप में कम किया गया था, लेकिन हरदीप पुरी जो पेट्रोलियम मंत्री हैं उन्होंने लगातार स्टेटमेंट दिया कि इंटरनेशनल प्राइस बढ़ रहे हैं और इंटरनेशनल प्राइस बढ़ने के कारण भारतीय पेट्रोलियम कंपनियों के ऊपर जो है वो दबाव है रेट बढ़ाने का। ये फैसला भारतीय पेट्रोलियम कंपनी कभी भी ले सकती है, क्योंकि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना और घटाना वो केंद्र सरकार का फैसला नहीं होता है। ये जब डिसेंट्रलाइज किया गया है पेट्रोल और डीजल की प्राइस को, तब से इसका फैसला जो है वो पेट्रोलियम कंपनीज लेती है, तो पेट्रोलियम कंपनीज की तरफ से जो है इन पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं इसकी बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है, क्योंकि लगातार उनको पर डे 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था। तो इस नुकसान को बहुत ज्यादा दिन तक भारतीय पेट्रोलियम कंपनी जो है वो नहीं वहन कर सकती थी, इसीलिए ये पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई गई। और अगर इंटरनेशनल प्राइस लगातार बढ़ेगा तो पेट्रोलियम कंपनियों के ऊपर भी दबाव रहेगा कि इंटरनेशनल प्राइस के अकॉर्डिंग भी जो है भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बढ़ाया जाए या घटाया जाए। लेकिन एक चीज जरूर है, क्योंकि भारत पेट्रोल प्रोडक्ट जो है 85% जो है विदेशों से आयात करता है कच्चे तेल के रूप में, और उसको यहाँ रिफाइन करने के बाद जो है मार्केट में लाया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके का दबाव भी है, लेकिन आप ये भी देखना है सरकार इसके लिए कोई अल्टरनेट विकल्प भी ढूंढ सकती है। राज्य सरकारें जो वैट लगाती हैं वो वैट बहुत ज्यादा होता है, क्या भारत सरकार की तरफ से सभी राज्यों के विदेश मंत्री मुख्यमंत्रियों से बातचीत करके जो राज्य सरकारों के द्वारा जो वैट है उसको कम करके जो आम उपभोक्ता है उसको राहत देने का टाइम भी है, क्या अपील जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने देश की जनता से की, उसके बाद हम सब ने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने राज्यपालों ने अपने जो कैबल गेट है उनमें गाड़ियां कम की हैं, तो क्या इस तरीके की राहत के लिए सरकार एक कदम राज्य सरकारों के साथ मिलकर भी उठाएगी, जो वैट जो है राज्य सरकारों की तरफ से पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे लगाया जाता है।
0: ठीक है मांझू, आप बने रहे हमारे साथ, हम इसी खबर पर लगातार बने हुए हैं। आज सुबह पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है, लगातार बने हुए हम इस खबर के साथ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, खबरें जारी, आप देखते रहिए आज तक।

0: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
2: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: TuneIn has got your favorite podcast, from sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
4: जंग में हिंदुस्तान की जेब तंग है और जिस तरह देश के प्रधानमंत्री मंत्री नेताओं के पैगाम है आवाम सहमी हुई कि ना जाने आगे कैसा वक्त आने वाला है। ये इशारे आवाम समझे या ना समझे हालात दिखने लगे हैं। दूध 2 रुपए लीटर बढ़ गया, घरेलू LPG 60 रुपए पहले बढ़ चुकी है, कमर्शियल सिलेंडर 1300 रुपए बढ़ चुका है, खाने का तेल 15 रुपए लीटर बढ़ चुका है, विदेशी दाल के दाम 35% बढ़ गए, मेवों के दाम 80% चढ़ गए, सोने चांदी की इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ गई, घर बनाने का सामान 10% महंगा हो गया, विदेश यात्रा का टिकट महंगा हो गया, डॉलर के मुकाबले रुपया सेंचुरी के करीब घिसटता जा रहा है। यूं ही पीएम मोदी पिछले 2 हफ्ते से भारतवासी भाइयों और बहनों को बचत का पाठ नहीं पढ़ा रहे। भारतवासी पीएम मोदी की अपील पर गौर करें या नहीं, नेता मंत्री जरूर संदेश दे रहे हैं। पीएम खुद 20 कारों के काफिले से 2 कार के काफिले पर आ गए। लोकसभा स्पीकर ने अपने काफिले में कारों की संख्या घटा दी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह सिर्फ 1 कार के साथ पीएमओ पहुंचे। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कार छोड़ ई रिक्शे की सीट थाम चुके हैं। महाराष्ट्र के सीएम बुलेट से विधानसभा पहुंचते दिखे। पंजाब के गवर्नर चंडीगढ़ के अफसरों को हर बुधवार बिना वाहन के दफ्तर आने का आदेश दे चुके हैं। कर्नाटक के गवर्नर थावर चंद गहलोत ने काफिले में कार घटा दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने भी काफिले में कारों की तादाद घटा दी। बिहार के सीएम 3 कारों के काफिले में चलने लगे। सम्राट के मंत्री अशोक चौधरी 1 कार में JDU दफ्तर पहुंचे। यूपी के मंत्री सुरेश खन्ना साइकिल से विधानसभा आए। बंगाल में बीजेपी की विधायक पूर्णिमा चक्रवर्ती स्कूटी से विधानसभा आई। वैसे तो पीएम मोदी के आह्वान पर पूरी बीजेपी एकजुट होकर देश के सामने संदेश रख रही है और यही संदेश अब तो आंकड़ों में नजर आने लगा, क्योंकि मार्च के 3.88% के मुकाबले अप्रैल में थोक महंगाई दर 8.30% पर पहुंच चुकी है। इसमें ईंधन की महंगाई 1% से बढ़कर 24.71% तक है। कंज्यूमर आर्टिकल 3.39% से बढ़कर 4.62%, खाद्य महंगाई 1.85% से बढ़कर 2.31%, प्राइमरी आर्टिकल 6.36% से बढ़कर 9.17% तक हो गए। मतलब ईरान की जंग में फूंकते बारूद ने तेल गैस की सप्लाई में ऐसी आग लगाई कि अब हर हिंदुस्तानी की जेब जलने लगी। बात महंगाई तक रहे तो और, अब तो जानकार आगाह कर रहे हैं, अच्छे दिन में बचा लो वरना आने वाला है दुर्दिन। संकट दोधारी तलवार वाली है, एक तो तेल गैस की महंगाई, ऊपर से तेल गैस की सप्लाई पर आफत, क्योंकि अब तो ईरान झंडा देखकर भी हमला करने लगा। हॉर्मुज से गुजर रहे भारत के झंडे वाले एक मर्केंडाइज शिप को ईरान ने हमला करके समंदर में ही दफन कर दिया। गनीमत रही कि 14 भारतीय क्रू ने किसी तरह अपनी जान बचाई। ऐसी सूरत में भारत को खाड़ी से कितना तेल गैस कैसे मिल पाएगा, ये संकट दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। विपक्षी चाहे जो कहें, लेकिन पीएम मोदी ने आने वाले संकट को देखते हुए जो अपील देशवासियों से की है, अंदाजा देश की जेंजी तक को है। देश की जनता ईरान की जंग की शुरुआत से किफायत करने को मजबूर है। महंगे हो चुके तेल गैस का इस्तेमाल सूझबूझ के साथ कर रही, लेकिन अब नेताओं की कार छोड़ साइकिल, रिक्शा, बग्घी, पैदल वाली सवारी देखकर सहमने लगी है कि जब हुक्मरानों का यह हाल दिखने लगा तो आने वाले दिनों में आवाम का क्या होगा। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिखाई डगर पर अब गृह मंत्री तुरंत निकल पड़े हैं, जिन्होंने अपना काफिला 10 से 11 गाड़ी से घटाकर 5 गाड़ियों में बदल दिया। ये बुधवार को अमित शाह के काफिले का वीडियो है, जिन्होंने अब अपने काफिले में 50% गाड़ियां कम कर दी, ताकि सुरक्षा के साथ देशवासियों के बीच बचत वाला संदेश ऊपर से नीचे तक पहुंचे। अपने काफिले को आधा करके अमित शाह इस बात पर जोर दे रहे हैं कि आर्थिक संकट के समय केवल जनता ही नहीं बल्कि सरकार भी जिम्मेदारी निभा रही है। प्रधानमंत्री अगर 2 गाड़ी से अब केवल चलने लगे तो गृह मंत्री ने 50% गाड़ी काफिले में घटाई। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी जो जेड प्लस सुरक्षा में चलते हैं, जिनके साथ पहले 11 गाड़ियों का काफिला चलता रहा, अब वो केवल 4 गाड़ी लेकर चलेंगे। स्वास्थ्य मंत्री और पूर्व बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी 11 गाड़ियों का काफिला छोड़कर 4 गाड़ियां लेकर कैबिनेट की बैठक में पहुंचे। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, केंद्र के तमाम मंत्रियों की तरफ से क्या ये सारी कवायद इसलिए ताकि जनता तक संदेश भी पहुंचे और वो भी कम गाड़ी से चलकर तेल बचाएं, साथ ही उस सियासत को जवाब मिले जो अब तक सरकार की कोशिश पर सवाल उठाती रही। सिर्फ केंद्र ही नहीं बल्कि तमाम राज्यों तक नरेंद्र मोदी की खींची लकीर पर अब सब चलने लगे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का निर्देश है, मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, अफसर सब 50% गाड़ियां अपनी फ्लीट में कम करेंगे। ये निर्देश मुख्यमंत्री ने बैठक करके दे दिया है, उस पर अमल करना शुरू हो चुका है। अपने काफिले से लेकर मंत्रिमंडल के काफिले तक को हाफ कर दिया है। जैसे ये देखिए, योगी सरकार में कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल नई दिल्ली से मेरठ तक की यात्रा अपने काफिले के साथ नहीं करते हैं, मेट्रो ट्रेन और नमो भारत ट्रेन से करते देखते हैं। ऐसे ही मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने काफिला कम कर दिया, 13 की बजाय 8 गाड़ी लेकर अब मोहन यादव निकले हैं।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

देश में महंगा हुआ पेट्रोल और डीजल। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3-3 रुपए की बढ़ोतरी की। दिल्ली में पेट्रोल 97.77 रुपए प्रति लीटर तो डीजल 99.67 रुपए प्रति लीटर हुआ। प्रधानमंत्री मोदी के 5 देशों की यात्रा पर दुनिया की नजर। आज यूएई के लिए होंगे रवाना। नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का भी करेंगे दौरा। देश में निर्यात के लिए निर्णायक फैसलों की उम्मीद। हॉर्मुज संकट के बीच विदेश मंत्री जयशंकर करेंगे अराक्षी की मेजबानी। द्विपक्षीय बातचीत में ऊर्जा और कनेक्टिविटी पर समझौते की उम्मीद। दिल्ली शराब नीति की सुनवाई के दौरान जस्टिस स्वर्णकांता पर टिप्पणी को लेकर बढ़ी आम आदमी पार्टी की परेशानी। कोर्ट ने माना अमानना। केजरीवाल और सिसोदिया समेत 5 नेताओं को नोटिस। नीट पेपर लीक को लेकर एक्शन में सरकार। धर्मेंद्र प्रधान के घर देर रात आला अधिकारियों की बैठक। जल्द हो सकती है परीक्षा की तारीखों का ऐलान। महाराष्ट्र से 2 और गिरफ्तारी। जयपुर से लातूर तक 14 जगहों पर सीबीआई की रेड।

के साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। सुबह के 7 बजे की सबसे बड़ी खबर उन तमाम दर्शकों के लिए, आज से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ चुकी हैं। आप सुबह सोकर उठे हैं और सो के उठते ही देश के लोगों को बड़ा झटका लगा है। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3-3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आज से पेट्रोल की कीमत 97 रुपए 77 पैसे चुकानी पड़ेगी प्रति लीटर के लिए, और वहीं डीजल के लिए

रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 10:30 से लगभग 12 बजे तक पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सूर्य देव का राशि परिवर्तन हो रहा है। सबसे पहले जानते हैं कि सूर्य देव के राशि परिवर्तन की पूरी स्थिति क्या है। सूर्य देव 15 मई को वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं और जिस समय सूर्य देव प्रवेश कर रहे हैं उस समय वृषभ लग्न का उदय हो रहा है। राशि परिवर्तन के समय सूर्य देव बुध के साथ लग्न में आ रहे हैं और शनि देव चूंकि मीन राशि में बैठे हैं तो शनि देव की तीसरी दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है। सूर्य इस परिवर्तन के समय राहु और केतु से केंद्र में हैं, तो मुख्यतः सूर्य, बुध, राहु, केतु और शनि इनकी भूमिका थोड़ी ज्यादा है। राजनैतिक रूप से बहुत बड़े उतार चढ़ाव दुनिया भर में हमारे देश में दिखाई देंगे। राजनैतिक रूप से बड़े परिवर्तन इस समय हो रहे हैं और होंगे आगे। सूर्य देव के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव लगभग 1 महीने तक बना रहेगा और सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन देश और दुनिया पर प्रभाव डालेगा, अलग अलग राशियों पर प्रभाव डालेगा, ये संभावनाएं फिलहाल दिखाई दे रही हैं। सूर्य देव के राशि परिवर्तन का देश और दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा आगे उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, ये बताएंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ है और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल।

आएगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में शुभ कार्य होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वृषभ राशि।

आज के लिए होगा गुलाबी। मिथुन राशि, संतान पक्ष की उन्नति होगी, नए काम की शुरुआत हो सकती है, धन की समस्या दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। अब ये जानते हैं कि सूर्य देव के राशि परिवर्तन का सामान्य जीवन पर, देश दुनिया पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, शेयर बाजार में, फाइनेंशियल मार्केट में बड़ा उतार चढ़ाव घट सकता है। एक संभावना बनती है कि बाजार में उतार चढ़ाव आ सकता है। सामान्यतः इस समय लोगों के स्वास्थ्य में समस्याएं आ सकती हैं, इन्फेक्शन वाली बीमारियां, हीट स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम लोगों को हो सकती है। बीमारियों के मामले में, रोगों के मामले में वृद्धि हो सकती है। लोगों की बीमारियां इस समय बढ़ सकती हैं। अगर राजनीति की बात करें तो देश में और दुनिया में ये समय बड़े परिवर्तन का और उतार चढ़ाव का समय रहेगा। पूरी दुनिया में पॉलिटिकली और सत्ता शासन में बड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है। सामान्य लोगों को इस समय वाहन चलाने में,

से लाभ होगा। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज

रखनी होगी। जिनकी कुंडलियों में मंगल और सूर्य की स्थिति फेवरेबल नहीं है, ऐसे लोगों को इस समय चोट चपेट दुर्घटना और आग से सावधान रहना होगा, क्योंकि इन मामलों में प्रॉब्लम आने की संभावना बनती है। सूर्य देव के राशि परिवर्तन पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, पारिवारिक समस्याएं दूर होंगी, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। सिंह राशि, मानसिक चिंता हल होगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, किसी मित्र का सहयोग प्राप्त होगा। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न मनीषा जी ने हमें लिखा है और मनीषा जी हमें कानपुर से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 15 फरवरी 1989। जन्म का समय रात में 8:30। जन्म स्थान है कानपुर। ये पूछ रही हैं कि मेरा विवाह कब तक होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। मनीषा, आपकी कुंडली में विलंब से विवाह होने के योग जरूर बनते हैं, लेकिन विवाह की संभावनाएं हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी शादी नहीं होगी। ज्योतिष के हिसाब से साल 2027 में अप्रैल से नवंबर के बीच में आपका विवाह होना चाहिए और वैवाहिक जीवन कुल मिला जुला के ठीक दिखाई देता है। कानपुर या कानपुर के आसपास ही विवाह का प्रयास करिए, वहां पर विवाह होने की संभावना ज्यादा है। एक मोती बनवा के पहन लीजिए, 10-12 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करें और हर रविवार को एक बार पार्वती मंगल का अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत
बेहतर होगा। तो देश दुनिया पर सूर्य देव के राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव पड़ेगा ये आपने समझा। अब अलग अलग राशि के लोगों पर सूर्य देव के राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव होगा अगले एक महीने तक, अब वो समझते हैं। अगर मेष राशि की बात करें तो मेष राशि के लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें और पैसे रुपए के मामले में, आर्थिक मामलों में सावधानी रखें, नहीं तो धन का नुकसान हो सकता है। वृषभ राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन से इस समय सर दर्द की और आंखों की समस्या हो सकती है। पारिवारिक समस्या, फैमिली प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। मिथुन राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन से धन के मामले, कर्ज के मामले, धन खर्च के मामले आपको परेशान करेंगे और इस समय अगर लंबी यात्रा पर जाना चाहते हैं तो सोच समझ कर यात्रा करिएगा, वही आपके लिए बेहतर होगा। कर्क राशि, सूर्य देव का राशि परिवर्तन अच्छा है आपके लिए, आपके रुके हुए तमाम काम पूरे होंगे और करियर में पॉजिटिव बदलाव, सकारात्मक बदलाव हो सकता है, करियर में लाभ होता दिखाई दे रहा है। सिंह राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन से आपको करियर में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, स्वास्थ्य लगातार अच्छा होता चला जाएगा। कन्या राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन से अगले एक महीने तक सतर्क रहें, दुर्घटनाएं हो सकती हैं, चोट चपेट लग सकती है, संतान को लेकर, उसके जीवन को लेकर समस्याएं आ सकती हैं, सावधानी बनाए रखिएगा। बाकी की बची हुई छह राशियों पर सूर्य देव के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा वो आगे आपको बताएंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल।

ई धन लाभ के योग बन रहे हैं, अतिथि का आगमन होगा। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की समस्याएं हल होंगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी।

रहेगा, करियर में बड़ा लाभ होगा, यात्रा में सावधानी बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। तो हमने आपको बताया मेष राशि से लेके कन्या राशि तक के लोगों पर सूर्य देव के राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव पड़ेगा। अब जानते हैं तुला राशि से लेके मीन राशि तक के लोगों पर सूर्य देव के राशि परिवर्तन का क्या असर होगा। बात करते हैं तुला राशि की। सूर्य देव का राशि परिवर्तन अच्छा नहीं है, करियर के मामले में और स्वास्थ्य के मामले में आपको समस्या हो सकती है। पारिवारिक समस्याएं इस समय आपको परेशान कर सकती हैं। वृश्चिक राशि। सूर्य देव के राशि परिवर्तन से आपके कारोबार में, आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं। कारोबार और वैवाहिक जीवन का ध्यान रखें। व्यर्थ के किसी भी तरह के वाद विवाद से इस समय बचाव करें। धनु राशि। सूर्य देव का राशि परिवर्तन अच्छा है आपके लिए, करियर के मामले में, धन के मामले में आपको लाभ होगा, धन की प्राप्ति होगी, धन की सफलता मिलेगी। मनचाहा स्थान परिवर्तन भी इस समय आपका हो सकता है। मकर राशि। सूर्य का राशि परिवर्तन आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, अपने स्वास्थ्य का, खास तौर से अपने डाइजेशन का, अपने पाचन तंत्र का बहुत ध्यान रखिए। और करियर में किसी भी तरह का रिस्क मत लीजिए, करियर में जोखिम लेने से बचाव करिए। कुंभ राशि। सूर्य का राशि परिवर्तन आपका क्रोध बढ़ा सकता है, आपको एग्रेसिव बना सकता है, तो क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखें। स्वास्थ्य के मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही मत करिएगा। मीन राशि। सूर्य देव का राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा है, तमाम रुके हुए काम इस समय आपके पूरे होंगे, करियर में नए अवसर मिल सकते हैं और करियर में आपको बड़ी सफलता मिल सकती है, ये संभावना आपके लिए बन रही है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा।

योग हैं, स्वास्थ्य की समस्याएं कम होंगी, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी।

चिंताएं समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वक्त हो गया है आज की जिज्ञासा का, ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि अगर आप अपने घर में बेल का या बेलपत्र का पौधा लगाते हैं तो इससे आपकी कुंडली का सूर्य बेहतर होता है। क्या ऐसा है? देखिए, हर ग्रह के लिए कुछ पौधे बताए गए हैं और अलग अलग पौधों के संपर्क में आने से वो ग्रह आपका बेहतर होता है। बेलपत्र का या बेल का पौधा सूर्य से संबंध रखता है, इसीलिए अगर आप अपने घर में बेलपत्र यानी बेल का पौधा लगाएंगे तो सूर्य आपका बेहतर होगा। लेकिन बेलपत्र या बेल का पौधा घर के मेन डोर पर लगाना चाहिए। वहां पर लगाने से सूर्य तो प्रबल होगा ही, साथ ही साथ आपकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं।

नंबर तीन, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर चार, मानसिक तनाव हो सकता है। नंबर पांच, पारिवारिक विवादों से बचाव करें। नंबर छह, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर सात, चोट चपेट से सावधान रहें। नंबर आठ, किसी मित्र की सहायता मिलेगी। और नंबर नौ, धन लाभ के योग बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया

मिनट तक इस समय में माता लक्ष्मी की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से आपकी आर्थिक समस्याएं हल होंगी। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो दही खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है तो मिश्री खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करके जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास इलाज के लिए, चिकित्सा के लिए जाना है तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, तो गुलाबी रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज सावधान

राशि वालों के लिए काम में सफलता मिलेगी, चिंताएं दूर होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा। मिथुन राशि के लोगों के लिए धन का लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज सावधान रहना होगा। कन्या राशि के लोगों को सेहत बिगड़ सकती है, तनाव बढ़ सकता है। अब जान लेते हैं कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज त्रयोदशी तिथि है। आज शीघ्र विवाह के लिए काम देव की पूजा करिएगा और आज सफेद मिठाई या दही का दान करिएगा, आपके लिए शुभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: तो सबसे पहले बात करते हैं सुबह सुबह देश के लोगों को लगे बड़े झटके की। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है, 3-3 रुपए की बढ़ोतरी प्रति लीटर। यानी दिल्ली में अब पेट्रोल 97.77 रुपए होगा तो वहीं डीजल की कीमत 90.67 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई है। ये बढ़ोतरी आज से ही लागू होगी। यानी अगर आज अपने घर से निकल रहे हैं आप पेट्रोल डीजल बढ़ाने के लिए, भरवाने के लिए, तो आज आपको बढ़ी हुई कीमतों का सामना करना पड़ेगा। इस बढ़ोतरी की प्रमुख वजह क्या, आपको भी बताएं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार और चढ़ाव। ईरान और अमेरिका की जंग शुरू होने से पहले क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल $70 प्रति बैरल था, जिसकी कीमत अब बढ़कर $100 प्रति बैरल पहुंच गई है। आपको याद रहे कि भारत समेत दुनिया के तमाम देश डॉलर में ही कीमत अदा करते हैं, और ऐसे में $30 प्रति लीटर अगर पहुंच जाती है तो आप समझ सकते हैं कि इसका असर पूरी दुनिया पर होगा। क्रूड की कीमतें बढ़ने से तेल कंपनियां दबाव में थी, इसलिए घाटे की भरपाई के लिए कीमत बढ़ी है।
1: थोड़ा बहुत तो असर पड़ता ही है सर।
2: ₹3
1: के आसपास पड़े आई थिंक, आज ही बढ़े हैं सुबह मेरे ख्याल से। अब रेट तो सर हर चीज़ के बढ़ ही रहे हैं, ये वार चल रहा है तो उसके उससे जो प्रॉब्लम हो रही है तो ऑल ओवर ही हो रही है।
3: CNG के दाम तो दिन बढ़े जा रहे हैं, पेट्रोल भी तो बढ़ना नहीं चाहिए ना। पेट्रोल डीजल जो भी है गाड़ी चल रहा है तो अभी ख़त्म होने वाले हैं, लग रहा है कि स्टॉक ख़त्म हो रहा है। मोदी जी कह रहे हैं कि अब कम चलाओ गाड़ी, कम पेट्रोल खर्च करो, इसके बारे में क्या
4: करते हैं? पेट्रोल पर दाम तो बढ़े, ठीक बढ़े, क्योंकि महंगाई देश में इतनी हो गई है कि पीछे से जो तेल सप्लाई आता है वो महंगा ही आ रहा है। गवर्नमेंट इतने दिनों से वो कर रही है, अपनी तरफ से दे रही है।
5: ये तो बहुत ज्यादा हमारी जेब पर फर्क पड़ेगा, डेली का है, डेली भरवाते हैं अब, डेली तो हमारे लिए तो बहुत महंगा पड़ेगा। हम तो सोच रहे सस्ता हो कुछ हो, ये तो और बढ़ते जा रहे हैं। क्या बताएं, मोदी जी कुछ देखे इस चीज के लिए, कुछ सोचे कि अभी आम आदमी जो है उनकी जेब पे ज्यादा फर्क पड़ रहा है चीज का, तो थोड़ा सोचे उसके लिए।
6: मोदी जी ने भी अपने काफिला में अपनी गाड़ियां कम की हैं और लोगों से अर्ज किया है कि आप एक काम कीजिए, आप अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज कीजिए। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो ये जरूरी है ईवी व्हीकल्स को यूज करना, क्योंकि पेट्रोल अब जैसे प्राइस बढ़ रहे हैं तो अब ये ऑब्वियस सी बात है, और अभी ये 3 रुपए अभी बढ़े हैं, आने वाले टाइम में और रुपए भी बढ़ेंगे।
0: दरअसल सरकार की दलील है कि क्रूड की कीमतें बढ़ने से तेल कंपनियां दबाव में थी, इसलिए कंपनियों ने घाटे की भरपाई के लिए कदम उठाए हैं, लेकिन कीमत तो बढ़ी है और कीमत बढ़ी है तो लोगों पर इसका असर हुआ है। दिल्ली में अब आज सुबह की स्थिति कैसी है, हमारे सहयोगी अंशुल की ये रिपोर्ट दिखाते हैं आपको।
7: कितना असर पड़ेगा आपके डेली बजट पर और क्या क्या कहना चाहेंगे इस राइस पे जो हुआ है पेट्रोल का?
8: प्रधानमंत्री जी ने देश से अपील की थी कि अपना तेल बचाओ, तो उसके तहत हम लोग तो आजकल कहां जहां भी जा रहे हैं तो हम कार पूल कर रहे हैं। और देखो संकट तो है ही पूरे विश्व के ऊपर, क्योंकि युद्ध चल रहा है और जो खाड़ी देशों से हमारे पास तेल आता है तो उसमें दिक्कत तो आई है, तो पूरे देशवासियों को पता है। तो कहीं ना कहीं जब किसी देश का युद्ध होगा, किसी देश में पूरे विश्व में युद्ध होगा, तो कहीं ना कहीं इसकी मार जो है वो आम जनता पे तो पड़ेगी, महंगाई तो होगी, बाकी जो भी होगा देखा जाएगा,
7: तो
8: झेलेंगे।
7: सरप्राइज की तरह नहीं आया, ये आप झेलने के लिए तैयार थे, आपको पता था कहीं ना कहीं कि ऐसा असर पड़ सकता है जेबों पर?
8: बहुत दिन से चल रहा था, पहले से ही मतलब मोदी जी अपील कर रहे हैं, पूरे देश में सब मीडिया के माध्यम से सूचना मिल रही थी कि तेल के पैसे बढ़ने वाले, वो तो पहले से ही पता था कि पैसे बढ़ेंगे, तो ये एक सरप्राइज नहीं था, इसके लिए हम पहले से ही तैयार थे। और जिस दिन युद्ध शुरू हुआ था अमेरिका से, उसी दिन से हम तैयार थे कि इस युद्ध का सबसे ज्यादा असर ईंधन पर पड़ेगा, चाहे वो गैस हो चाहे वो तेल हो।
0: तो दिल्ली में अब दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, चार शहरों में नए दाम क्या हैं? पुराने दाम अगर 87.67 रुपए थे दिल्ली में, तो अब 90.67 रुपए डीजल के नए रेट होंगे। मुंबई में अब प्रति लीटर डीजल के लिए 93.14 रुपए चुकाने होंगे, जो कि पहले 90.03 रुपए था। वहीं चेन्नई में 92.39 रुपए पुराना रेट था डीजल का, जो कि आज से 95.25 रुपए। कोलकाता में भी डीजल की कीमत 95.13 रुपए आज होगी। अंशुल हमारे सहयोगी सीधे दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंशुल, आज सुबह है, हम जब सो के उठे होंगे लोग तो उन्होंने टीवी देखा होगा, उन्हें पता चला कि 3 रुपए प्रति लीटर, लोगों की जेब पर कितना असर पड़ा है, उनकी किचन, उनका जो बजट है उस पर कितना असर पड़ रहा है, क्या कह रहे हैं लोग?
7: जी हाँ बिल्कुल, अगर हम देखें पिछले दो दिनों से जिस तरीके से कल दूध के दामों में वृद्धि आई और आज पेट्रोल डीजल और सीएनजी के दामों में वृद्धि आई, कहीं ना कहीं लोगों पे असर तो पड़ ही रहा है। भैया आज सीएनजी के दाम जो है बढ़ गए हैं, उम्मीद थी पहले से कि बढ़ने वाले, कितना असर पड़ेगा आपके?
2: कोई नहीं जानते थे भैया बढ़ने के लिए।
7: कितना असर पड़ेगा भैया आपको दाम बढ़ने का?
2: काफी पड़ेगा सर, 2 रुपए से भी काफी पड़ेगा सर, क्यों नहीं पड़ेगा।
7: आप कल देखा हमने कि दूध के दाम बढ़ गए, आज पेट्रोल के दाम बढ़ गए,
2: पेट्रोल के दाम बढ़ गए और क्या, हमारे दाम तो बढ़ेंगे नहीं अभी, तो असर तो बहुत काफी पड़ेगा सर। क्या
7: आप
2: काम है? नहीं, काम भी नहीं है इस टाइम पे।
7: आप क्या ये ओला उबर
2: चलाते
7: हैं, तो ओला उबर से किसी तरह की?
0: अंशुल एक चीज बताइएगा, क्या सीएनजी की कीमत भी बढ़ी है? अगर आप मिशन पा रहे हैं ये भी बताइएगा, क्या सीएनजी की कीमत भी 2 रुपए प्रति किलो बढ़ी है क्या?
2: दिक्कत हो गई बहुत ज्यादा।
7: जी बिल्कुल, जो सीएनजी की कीमत है वो भी करीब 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ी है, प्रति किलो बढ़ी है। अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं सीएनजी के दाम, जो कल तक 85 रुपए के आसपास था, आज 87 रुपए 70 पैसे हो गया है। यानी कि सीएनजी जो कि कमर्शियल व्हीकल्स में ज्यादातर यूज होता है, ओला उबर में, रोजमर्रा के जीवनी में लोगों के यूज होता है, वो कहीं ना कहीं उसके दामों में आज वृद्धि आई है। तो इम्पैक्ट जो है ये एक मल्टी प्रॉन्ग्ड इम्पैक्ट है, जहां पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े ही हैं, वहीं पर सीएनजी के दाम भी बढ़े हैं, जिससे काफी जो ओला उबर और अन्य तरह की सर्विसेज देते हैं उन लोगों पर भी कहीं ना कहीं जो है ये अफेक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है। जो पेट्रोल के दाम बढ़े, डीजल के दाम बढ़े, इससे भी जो लॉजिस्टिकल कॉस्ट है उसमें वृद्धि होगी, तो कहीं ना कहीं जो इन्फ्लेशन है वो एक बार फिर से हमें भारत में बढ़ता हुआ अभी दिखेगा। जैसा मैंने बताया कल दूध के दाम बढ़े, भैया आज सीएनजी के दाम बढ़ गए हैं 2 रुपए, आपको उम्मीद थी, क्या कहना चाहेंगे इस पर?
9: अगर 2 रुपए बढ़े हैं तो इसमें कमी किसकी है? पब्लिक की कमी नहीं है, न अफसर की कमी है, कमी है हमारे लीडर की। पिछले 12 साल में हमारी सरकार ने करा क्या है? कुछ नहीं करा। और रही दूसरी वाली बात, जब पेट्रोल डीजल का कच्चा ऑयल जब सस्ता था $20 से $25, जब कंपनी को प्रॉफिट हो रहा था, तब इस कंपनी ने ये प्रॉफिट शेयर नहीं करा हमारे साथ, क्यों नहीं करा जब कंपनी सुख में थी?
7: सरकार का ये कहना है कि पिछले 3-4 साल से इनके रेट में बढ़ोतरी नहीं हुई, तो वो जो प्रॉफिट था वो उसमें मैनेज हो गया, पिछले 2 महीने से भी मैनेज हो गया।
9: आंकड़ा कहा है?
7: आंकड़ा सरकारी आंकड़ा है।
9: आंकड़ा है कहाँ, किसने देखा है?
7: तो अभी आपका ये 2 रुपए बढ़े हैं, आपको कितना अफेक्ट पड़ेगा आपके आपके रोजमर्रा की जिंदगी?
9: अगर इस पर 2 रुपए बढ़े हैं और कंपनी रेट हमें 9 रुपए पर किलोमीटर दे रही है, उसका कोई सोल्यूशन है हमारे पास? कुछ भी नहीं है। अगर रैपिडो हो गया, ओला हो गया, उबर होगी, अगर हम किसी को भी बोलते हैं रेट बढ़ाने के लिए, हमारा रेट नहीं बढ़ रहा है। जैसे कंपनी ने 2 रुपए रेट बढ़ा लिए क्योंकि इनको महंगा मिल रहा है, इनके पास इनका अधिकार है।
0: ठीक है अंशुल, आप इस खबर पर नजर बनाए रखें। तो आज सुबह पेट्रोल डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन झटका सिर्फ यही नहीं लगा है, पेट्रोल डीजल के बाद दिल्ली में सीएनजी की कीमतें भी बढ़ चुकी हैं, 2 रुपए प्रति किलो सीएनजी की कीमतें भी बढ़ी हैं। जाहिर है अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर इसका असर होगा, ऑटो के किराए में भी इसका दबाव देखने को मिलेगा, टैक्सी के किराए में भी, ओला उबर रैपिडो तमाम कंपनियों पर अब ये दबाव होगा, क्योंकि जो ड्राइवर है जो उसकी कीमत झेल रहे हैं, अब ये दबाव चौतरफा होगा और सीधा असर हमारी आपकी बचत और जेब पर होगा। पेट्रोल डीजल के बाद सीएनजी भी महंगा। इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरें जारी, आप देखते रहिए आज तक।

0: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
2: All sports, all the time, right here on TuneIn. Catch live sports talk, expert analysis, and nonstop discussion from your favorite stations, like ESPN Radio.
3: Not missed out on one player that the Yankees wanted.
2: Big 12 Radio.
4: Today is Big 12 Insiders game day. We're breaking
2: and
4: down.
2: Talk sports.
5: I just can't see a turnaround in the way that we're going to perform and result.
2: And much more. Get your head in the game and never miss a minute of the action. Just search sports or ask your device to play your favorite sports talk station on TuneIn.
6: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना. गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत. गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो.
7: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले, ढूंढ नहीं पाएगा.
8: ए प्रिया, कैसा लगा मेरा स्टंट?
9: एक हिंट तो देते.
10: हिंट बड़े आराम से.
11: बहुत टायर्ड हो गई.
12: Take a date, not bites.
13: No added sugar, preservative के बिना. डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स.
12: लायन डेट नट बाइट्स.
14: सर, हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है.
15: पर मार्केट की समझना बाउंसर जा रही है.
14: आप कैसे कर लेते हो?
15: मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ. म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का
16: नहीं
15: और म्यूचुअल फंड्स है
16: सही.
17: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें.
18: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो. E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
19: मुख्य समाचार. मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है और धूप में सीधा काम करने को टालिए.
3: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रही.
9: और वही कहाँ गए थे घूमने?
7: जीके मैक्स.
10: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
7: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी.
10: जेके वॉल मैक्स
7: बेस्ट पेंट.
10: जेके मैक्स.
7: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स. जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग.
2: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं?
8: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा. रुंगटा स्टील TMT से बना.
0: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं. रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड.
16: Like I said before, we better own the sin.
17: Character, the taste of success.
18: JK मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है. ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद. JK मसाले, जहां स्वाद वहां JK.
10: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
6: इसमें माइक्रोफाइबर है.
10: माइक्रोफाइबर यानी
6: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत.
10: हमारे सीमेंट में नहीं है?
6: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है.
11: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़. ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है.

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
1: Punjab National Bank, Bharose ka Prateek.
2: समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े. समर कूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल.
0: हिंट, बड़े आराम से.
3: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस.
4: 23 और 29 अप्रैल वोटिंग.
5: 90% क्रॉस कर गई बंगाल की वोटिंग.
6: ये बढ़ा हुआ मतदान आखिर किस तरफ जाएगा?
4: 4 मई काउंटिंग.
5: भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी पीछे हो गई है
7: रुझानों में, बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए.
4: 8 मई सीएम का ऐलान.
8: शुभेंदु अधिकारी बंगाल के मुख्यमंत्री होंगे.
4: 9 मई शपथ.
9: शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते थे.
4: यूट्यूब पर सबसे ज्यादा व्यूअर्स, सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा एंगेजमेंट, सर्च में नंबर 1, गूगल ट्रेंड्स में नंबर 1, लाइव स्ट्रीम में सबसे आगे. टीवी हो, डिजिटल हो, यूट्यूब हो या सोशल मीडिया, हर प्लेटफॉर्म पर आज तक रहा चुनाव में सबसे आगे. चुनाव मतलब सिर्फ आज तक.

0: बकैतों में श्रेष्ठतम, असफल डकैतों के सरताज, मास्टरों के मास्टर, यक्ष युधिष्ठिर, पक्षीराज गरुड़ और काग भुशुंडी के कॉम्बो, बतरस के तीरंदाज अवध ओझा सर के साथ।
1: भैया हम झूठ सुनी थे, हमारे दहिया जर जाती। नहीं कहते लोग
0: जीवरा संताप लग जाते हैं। सर आप कुछ लाइसेंस ही रखे हैं कुछ?
2: नहीं नहीं, ऑटोमेटिक जरूरत नहीं है, पहले से पड़ा है।
1: जो आदमी बैठ के बना लेता है उसको लाइसेंस लेने की क्या जरूरत है।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
1: एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया
2: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Tune in is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn. Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
5: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले ढूंढ नहीं पाएगा
6: ए प्रिया कैसा लगा मेरा स्टंट
7: विक्रम एक हिंट तो देते
8: विक्रम
7: हिंट
6: बड़े आराम से
7: बहुत टायर्ड हो गई
9: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स बादाम पिस्ता काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स
10: लायन डेट नट बाइट्स
11: मुख्य समाचार मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है और धूप में सीधा काम करने को टाल दिए
12: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रही
13: और वही कहाँ गए थे घूमने
14: जीके मैक्स
15: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है
14: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी
15: जेके वॉल मैक्स
14: बेस्ट पेंट
15: जेके मैक्स
16: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स जेके मैक्स पेंट्स खुशियों के रंग
17: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद जेके मसाले जहां स्वाद वहां जेके
15: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं
18: इसमें माइक्रोफाइबर है
15: माइक्रोफाइबर यानी
18: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत
15: हमारे सीमेंट में नहीं है
18: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है
19: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़ ड्यूरागार्ड सीधी बात है ड्यूरागार्ड खास है

0: इस ट्रंप ने ऐसी आग लगाई है कि ईरान की जंग में हिंदुस्तान की जेब तंग है और जिस तरह देश के प्रधानमंत्री मंत्री नेताओं के पैगाम है आवाम सहमी हुई कि ना जाने आगे कैसा वक्त आने वाला है। ये इशारे आवाम समझे या ना समझे हालात दिखने लगे हैं। दूध 2 रुपए लीटर बढ़ गया, घरेलू LPG 60 रुपए पहले बढ़ चुकी है, कमर्शियल सिलेंडर 1300 रुपए बढ़ चुका है, खाने का तेल 15 रुपए लीटर बढ़ चुका है, विदेशी दाल के दाम 35% बढ़ गए, मेवों के दाम 80% चढ़ गए, सोने चांदी की इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ गई, घर बनाने का सामान 10% महंगा हो गया, विदेश यात्रा का टिकट महंगा हो गया, डॉलर के मुकाबले रुपया सेंचुरी के करीब घिसटता जा रहा है। यूं ही पीएम मोदी पिछले 2 हफ्ते से भारतवासी भाइयों और बहनों को बचत का पाठ नहीं पढ़ा रहे। भारतवासी पीएम मोदी की अपील पर गौर करें या नहीं, नेता मंत्री जरूर संदेश दे रहे हैं। पीएम खुद 20 कारों के काफिले से 2 कार के काफिले पर आ गए। लोकसभा स्पीकर ने अपने काफिले में कारों की संख्या घटा दी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह सिर्फ 1 कार के साथ पीएमओ पहुंचे। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कार छोड़ ई रिक्शे की सीट थाम चुके हैं। महाराष्ट्र के सीएम बुलेट से विधानसभा पहुंचते देखे। पंजाब के गवर्नर चंडीगढ़ के अफसरों को हर बुधवार बिना वाहन के दफ्तर आने का आदेश दे चुके हैं। कर्नाटक के गवर्नर थावर चंद गहलोत ने काफिले में कार घटा दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने भी काफिले में कारों की तादाद घटा दी। बिहार के सीएम 3 कारों के काफिले में चलने लगे। सम्राट के मंत्री अशोक चौधरी 1 कार में JDU दफ्तर पहुंचे। यूपी के मंत्री सुरेश खन्ना साइकिल से विधानसभा आए। बंगाल में BJP की विधायक पूर्णिमा चक्रवर्ती स्कूटी से विधानसभा आई। वैसे तो पीएम मोदी के आह्वान पर पूरी BJP एकजुट होकर देश के सामने संदेश रख रही है और यही संदेश अब तो आंकड़ों में नजर आने लगा, क्योंकि मार्च के 3.88% के मुकाबले अप्रैल में थोक महंगाई दर 8.30% पर पहुंच चुकी है। इसमें ईंधन की महंगाई 1% से बढ़कर 24.71% तक है। कंज्यूमर आर्टिकल 3.39% से बढ़कर 4.62%, खाद्य महंगाई 1.85% से बढ़कर 2.31%, प्राइमरी आर्टिकल 6.36% से बढ़कर 9.17% तक हो गए। मतलब ईरान की जंग में फूंकते बारूद ने तेल गैस की सप्लाई में ऐसी आग लगाई कि अब हर हिंदुस्तानी की जेब जलने लगी। बात महंगाई तक रहे तो और, अब तो जानकार आगाह कर रहे हैं अच्छे दिन में बचा लो वरना आने वाला है दुर्दिन। संकट दोधारी तलवार वाली है, एक तो तेल गैस की महंगाई, ऊपर से तेल गैस की सप्लाई पर आफत, क्योंकि अब तो ईरान झंडा देखकर भी हमला करने लगा। हॉर्मुज से गुजर रहे भारत के झंडे वाले एक मर्केंडाइज शिप को ईरान ने हमला करके समंदर में ही दफन कर दिया। गनीमत रही कि 14 भारतीय क्रू ने किसी तरह अपनी जान बचाई। ऐसी सूरत में भारत को खाड़ी से कितना तेल गैस कैसे मिल पाएगा, ये संकट दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। विपक्षी चाहे जो कहें, लेकिन पीएम मोदी ने आने वाले संकट को देखते हुए जो अपील देशवासियों से की है, अंदाजा देश की जेंजी तक को है। देश की जनता ईरान की जंग की शुरुआत से किफायत करने को मजबूर है। महंगे हो चुके तेल गैस का इस्तेमाल सूझबूझ के साथ कर रही, लेकिन अब नेताओं की कार छोड़ साइकिल रिक्शा बग्घी पैदल वाली सवारी देखकर सहमने लगी है कि जब हुक्मरानों का यह हाल दिखने लगा तो आने वाले दिनों में आवाम का क्या होगा। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिखाई डगर पर अब गृह मंत्री तुरंत निकल पड़े हैं, जिन्होंने अपना काफिला 10 से 11 गाड़ी से घटाकर 5 गाड़ियों में बदल दिया। ये बुधवार को अमित शाह के काफिले का वीडियो है, जिन्होंने अब अपने काफिले में 50% गाड़ियां कम कर दी ताकि सुरक्षा के साथ देशवासियों के बीच बचत वाला संदेश ऊपर से नीचे तक पहुंचे। अपने काफिले को आधा करके अमित शाह इस बात पर जोर दे रहे हैं कि आर्थिक संकट के समय केवल जनता ही नहीं बल्कि सरकार भी जिम्मेदारी निभा रही है। प्रधानमंत्री अगर 2 गाड़ी से अब केवल चलने लगे तो गृह मंत्री ने 50% गाड़ी काफिले में घटाई। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी जो Z+ सुरक्षा में चलते हैं, जिनके साथ पहले 11 गाड़ियों का काफिला चलता रहा, अब वो केवल 4 गाड़ी लेकर चलेंगे। स्वास्थ्य मंत्री और पूर्व BJP अध्यक्ष JP नड्डा भी 11 गाड़ियों का काफिला छोड़कर 4 गाड़ियां लेकर कैबिनेट की बैठक में पहुंचे। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, केंद्र के तमाम मंत्रियों की तरफ से क्या ये सारी कवायद इसलिए ताकि जनता तक संदेश भी पहुंचे और वो भी कम गाड़ी से चलकर तेल बचाएं, साथ ही उस सियासत को जवाब मिले जो अब तक सरकार की कोशिश पर सवाल उठाती रही। सिर्फ केंद्र ही नहीं बल्कि तमाम राज्यों तक नरेंद्र मोदी की खींची लकीर पर अब सब चलने लगे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का निर्देश है, मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, अफसर सब 50% गाड़ियां अपनी फ्लीट में कम करेंगे। ये निर्देश मुख्यमंत्री ने बैठक करके दे दिया है, उस पर अमल करना शुरू हो चुका है। अपने काफिले से लेकर मंत्रिमंडल के काफिले तक को हाफ कर दिया है। जैसे ये देखिए, योगी सरकार में कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल नई दिल्ली से मेरठ तक की यात्रा अपने काफिले के साथ नहीं करते हैं, मेट्रो ट्रेन और नमो भारत ट्रेन से करते देखते हैं। ऐसे ही मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने काफिला कम कर दिया, 13 की बजाय 8 गाड़ी लेकर अब मोहन यादव निकले हैं।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: पर पड़ेगा, हमारी आपकी जेब पर पड़ेगा। तो शहर शहर क्या असर है, आपको लिए चलते देश के अलग अलग शहरों में। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अमित भारद्वाज दिल्ली से जुड़ रहे हैं, कमलजीत संधु चंडीगढ़ से जुड़ रही हैं, संतोष लखनऊ से जुड़ रहे हैं और रोहित पटना से जुड़ रहे हैं हमारे तमाम सहयोगी। सबसे पहले अमित के पास लिए चलते हैं दिल्ली। अमित, दिल्ली के लिए सीएनजी का भी झटका, डीजल पेट्रोल का तो झटका है ही, और अभी अभी जब सरकार ने कहा कि आप यातायात का परिवहन जो सार्वजनिक यातायात है उसका प्रयोग करें, कब तक हम ये मान के चलें ये झटका वहां पर भी लगने वाला है?
1: देखिए आशुतोष, सीधा लिंक है। आज अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है तो आपके किचन तक ये दस्तक कल सुबह तक दिखाई देने लगेगी, इतना फास्ट रहता है आमतौर पे, क्योंकि जैसे ही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऊपर जाएगा आपकी जेब पर असर पड़ेगा। एक बार तस्वीर देखते और समझते हैं, दिल्ली में अगर आज की सुबह कंज्यूमर्स डीजल खरीदेंगे तो 90 रुपए 71 पैसे उनको देना पड़ेगा, और अगर आप पेट्रोल खरीद रहे हैं तो 97 रुपए 81 पैसे आपको देना पड़ेगा। तकरीबन 3 रुपए 18 पैसे 3 रुपए 11 पैसे का इजाफा है। और यही बात अगर आप सीएनजी की करेंगे तो सीएनजी के भी कीमतों में 2 रुपए का इजाफा हुआ है। जो सीएनजी कल तक 77 रुपए का प्रति केजी था वो बढ़कर अब 79 रुपए प्रति केजी हो गया है, और कंज्यूमर्स भी एक तरह से इस क्राइसिस के लिए तैयार थे। मैम, आप लोग क्या मेंटली प्रिपेयर्ड थे कि कीमतें अब बढ़ने वाली हैं?
2: सर थे तो, बट एकदम में इतनी बढ़ जाएगी ये हमें नहीं पता था। सीधा 3 रुपए लीटर बढ़ा दिया, कल दूध इतना महंगा हो गया, तो महंगाई तो बढ़ती ही जा रही है हर तरह से, खर्चे बहुत ज्यादा ही होते जा रहे हैं। आम आदमी क्या करे समझ ही नहीं आ रहा है।
3: इसके अंदर जो बिजनेसमैन है ना, सबसे ज्यादा मार उस पे है, क्योंकि गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज को तो सब्सिडी दे देती है, उनको कैंटीन में सब्सिडी मिल जाती है, उनको हर तरह से पर्क्स मिल जाते हैं, उनका पेट्रोल फ्री हो जाता है, पर जो बिजनेसमैन है ना उसको।
0: ठीक है अमित, आप बने रहे हमारे साथ, आपको मुंबई लिए चलते हैं। दीपेश त्रिपाठी हमारे सहयोगी मुंबई से जुड़ रहे हैं। दीपेश, एमजीएल ने तो गैस की कीमतें जो सीएनजी हो तो कल ही बढ़ा दी थी 2 रुपए, आज पेट्रोल डीजल का भी झटका लग चुका है, मुंबई पर कितनी मार?
4: जी आशुतोष, बिल्कुल, देखिए मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है देश का। हम इस वक्त मुंबई के साइन पेट्रोल पंप पर हैं, जहां पर फिलहाल इक्का दुक्का ही गाड़ियां देखने को मिलेंगी जो पेट्रोल भरने आ रही हैं, लेकिन जैसे जैसे समय दिन चढ़ेगा लोगों की भीड़ यहां पर देखने को मिलेगी। यहां पर पेट्रोल के दामों में 3 रुपए 14 पैसे और डीजल के दामों में 3 रुपए 11 पैसे की वृद्धि हुई है। हमारे साथ कुछ लोग हैं। सर, पेट्रोल के दामों में 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई है 11 पैसे की, क्या कहेंगे? सर, पेट्रोल के दामों में 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, क्या कहेंगे?
5: अब उस पर क्या कहना है, जो गवर्नमेंट जो कर रही है ठीक ही है, क्या कर सकते हैं उसमें।
4: बिल्कुल, तो हताशा लोगों के चेहरे पर साफ देखने को मिल रही है, लेकिन जो दिन जो रोज के काम है, जो जरूरत के काम है वो तो करने ही पड़ेंगे, जिसके लिए पेट्रोल डीजल जो है वो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। इसके पहले कुछ लोगों से हमने बात की, जो यहाँ पर कुछ लोग थे, तो उनका कहना था कि वर्क फ्रॉम होम अभी तक शुरू नहीं हुआ है, जिसकी वजह से ऑफिस जाना पड़ रहा है, और इसीलिए
0: ऑफिस जाने वालों के लिए लंबी मार पड़ती है, खासकर मुंबई में। अगर देखें जो सबर्बन से, कल्याण से, नवी मुंबई या थाने से आते होंगे, उनके लिए सबसे बड़ी मांग है। बड़े शहरों की स्थिति हमने देख ली है, अब आपको उन छोटे शहरों में लिए चलते हैं। आपको पता है हम यहाँ पर 1000-2000 का तेल बढ़ा लेते हैं, लेकिन दाम क्यों बढ़े? सबसे पहले ये आपको बढ़ा देते, इसके बाद आपको दूसरे शहरों में लिए चलेंगे हमारे तमाम सहयोगियों के पास। दरअसल कच्चे तेल की ऊंची कीमत हो चुकी है, 70 रुपए प्रति बैरल जो कीमत थी, $70 प्रति बैरल युद्ध शुरू होने के पहले, वो 100 तक 110 तक पहुंच गई। यूएस ईरान युद्ध के चलते दाम बढ़े, अब अगर $30 प्रति बैरल सब कीमत बढ़ जाती है तो आप 95 से 30 का गुणा कर लीजिए, इतना वो कंपनियां प्रति बैरल को दे रही हैं, तो तेल कंपनियों को घाटा होने लगा, इसका हवाला दे रहे हैं। हालांकि ये सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि 10-12 साल जो तेल कंपनियों ने फायदा कमाया उसका क्या किया, अब घाटे की भरपाई करना मकसद है, इसलिए कंपनियों की घाटे का बोझ हमारे आपके कंधों पर आया है, हम उसकी कीमत चुकाएंगे ताकि कंपनियों का नुकसान कम हो। कच्चे तेल की ऊंची कीमत है, जिसके लिए पिछले एक महीने से लगातार बताया जा रहा था, लेकिन बड़े शहरों में हम आप 1000-2000 का पेट्रोल बढ़ाते हैं। जरा लखनऊ पटना लिए चलते हैं, यहां पर रोहित, मुझे पता है छोटे शहरों ने देखा है कि लोग 50 रुपए 60 रुपए 100 रुपए का भी तेल भरा लेते हैं, वो इसलिए कि अपने गंतव्य तक चले जाए, चौराहे तक, बाजार तक चले जाए, बच्चों को स्कूल छोड़ दें। जरा पटना का माहौल बताइए कि वहां पर क्या, और क्या राज्य सरकारों की ओर से अब कोई कोशिश होगी कि किसी तरह से जो अपने स्तर पर टैक्स को कम करके वो कुछ राहत दें?
6: देखिए जाहिर सी बात है, राज्य सरकार जो है अगर टैक्स में कटौती करेंगी तो कुछ कीमतें कम हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल तो अभी रेट बढ़ाई है, तो अब देखने वाली बात होगी कि आज कल में कोई सरकार फैसला लेती है कि नहीं। लेकिन जो

0: रेट बढ़े हैं, पटना में भी 3 रुपए के आसपास जो है पेट्रोल का दाम भी बढ़ा है, डीजल का भी दाम जो बढ़ा है। तो उसके बाद पेट्रोल पंप पे देखिए बहुत ज़्यादा कोई ऐसा नहीं है कि कोई मारामारी हो गई है या लोग बहुत परेशान या लाइन लगा कर खड़े हैं। कल तक पटना में जो है पेट्रोल 105 रुपए के करीब मिल रहा था प्रति लीटर, आज 108 रुपए हो गया है, और डीजल 91 रुपए के आसपास था तो आज 94 रुपए हो गया है। यानी 3 रुपए की बढ़ोतरी ज़रूर देखने को मिल रही है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि पीछे 2-4 दिनों से जैसे ही संकेत मिलना शुरू हुआ था कि रेट बढ़ सकता है पेट्रोल डीजल का, तो ये भी चर्चा शुरू हो गई थी कि क्या 15-20 रुपये लीटर प्रति लीटर क्या डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ जाएगा, तो वैसा तो नहीं हुआ है। झटका ज़रूर लगा है, लेकिन ये हल्का झटका ज़रूर कह सकते हैं कि 3 रुपये प्रति लीटर का झटका जो है वो पटना वासियों पर भी लगा है। और जाहिर सी बात है इसका इस पर महंगाई पर तो इसका असर पड़ेगा ही, और जो कीमतें जो हैं वो पटना में जो सामग्री की चीज़ों की होती हैं वो आने वाले दिनों में ज़रूर बढ़ेंगी। जी
1: ठीक है रोहित, लखनऊ लिए चलते हैं। संतोष हमारे साथ जुड़े हैं। संतोष, लखनऊ इसलिए भी लिहाज है क्योंकि अब तो वहाँ चुनावों की तैयारियाँ हो रही हैं, बढ़ी हुई कीमत राजनीतिक तौर पर भी बहुत मुश्किल ला सकती है। एक तो बताइए लखनऊ में सुबह सुबह कतारें हैं लोगों की पहुँची हैं।
2: देखिए बिल्कुल, लखनऊ में कतारें हैं। पेट्रोल और डीजल के दामों की बढ़ोतरी के साथ जो असर आपने पॉलिटिकल कहा उस पर उसकी बात करें तो पेट्रोल और डीजल के दाम 3 रुपए लगभग बढ़े हैं जो पूरे देश में। उससे पहले ही प्रधानमंत्री ने संकेत दे दिए थे कि तैयार रहें, कार पूलिंग के लिए कह दिया था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के यूज के लिए बात किया था। मैं इस समय पर लखनऊ के एक पेट्रोल पंप पर ही मौजूद हूं। सबसे बड़ी बात कि जो 3 रुपए जो बढ़ाया गया उसको मेंशन पेट्रोल पंप के लोगों ने भी कर दिया। पहले जो प्राइसेस होते थे वो यहाँ पे लिखे होते थे, अब ये बढ़ा दिए गए हैं। अब 97.51 रुपए ये पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। तो ये पेट्रोल का दाम है, ये दोनों ही पेट्रोल के नोजल हैं, तो ताकि लोगों को बताया जा सके कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। ज्यादा मतलब कहा जाए कि जो ग्राहक हैं उनके साथ ज्यादा बहस ना होने पाए। 3 रुपए पेट्रोल के दाम बढ़ने से आप लोगों के बजट पे भी असर
3: बिल्कुल पड़ेगा। हम लोग लिमिटेड कमाने वाले आदमी, बिल्कुल पड़ेगा असर, क्यों नहीं पड़ेगा भाई।
2: ये 10-15 सालों से पेट्रोल जो कंपनी ऑयल कंपनीज थी फायदा कमा रही थी, अब ये कहा जा रहा है कि उनके घाटे को कम करने के लिए ये दाम बढ़ाए गए हैं।
3: अब ये तो सरकार जो भी चाहे कर ले, पब्लिक उसी के भरोसे है। अब हम लोग पेट्रोल डीजल अगर मोटरसाइकिल नहीं चलेंगे या साइकिल चलना पड़ेगा, यही हम लोग का, हम लोग की मजबूरियां हैं लेना, कमाई उतनी है हम लोग की, खर्चे ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं।
2: प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करिए, बसेस को यूज करिए।
3: चलो बसेस का सर, उसमें हम लोग के भाई अलग अलग रूट होते हैं, अलग अलग रास्ते होते हैं, और क्या उसमें किराया नहीं लगेगा? हो सकता है उससे ज्यादा हमको कन्वेंस में देना पड़े। प्रधान जी सही कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी, मगर हम लोग को सकता कन्वेंस हो उसमें ज्यादा खर्चा होना पड़े, पेट्रोल उससे कम लगे।
1: आम आदमी की अपनी तकलीफें तो है संतोष, इसको इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। अगर वो कारोबार में है उनको असर पड़ेगा, हमारी आपकी जेब पर पड़ेगा। चंडीगढ़ लिए चलते हैं, कमल जी संधू हमारे साथ जुड़े हैं। कमल जी, हरियाणा पंजाब, लेकिन चंडीगढ़ इसलिए क्योंकि अगर वहां ज्यादातर लोग कार पूलिंग करेंगे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट मान लीजिए ओला रैपिडो उबर भी लेते हों या दूसरे साधन हों, ये डीजल और सीएनजी का असर तो उस पर भी पड़ेगा। कितने तैयार हैं चंडीगढ़ के लोग?
4: देखिए ये जोर का झटका जोर से ही लगा है, और आपको बता दें कि चंडीगढ़ अमीरों का शहर माना जाता है, लेकिन यहाँ पे अमीर हो गरीब हो सबको इसका असर पड़ेगा, क्योंकि सारी चीजों पे पेट्रोल और डीजल की जो कीमत है उसका एक रिपल इफेक्ट होता है, यानी बाकी चीजें भी उनके दाम भी बढ़ेंगे। लोग हमारे साथ बात करने के लिए तैयार हैं, सीधा उन्हीं से बात करते हैं। सर आप ये बताइए कितना आपको लगता है कि असर पड़ेगा इन फ्यूल प्राइसेस का बढ़ने का? 3 रुपए लगभग बढ़े हैं।
5: हाँ जी, 3 रुपए आज सुबह 6 बजे से बढ़ गए हैं। तो मतलब कि ये देखिए, जैसे पहले हम 4000 का डलवाते थे तो अब 4200 का पड़ा है, 200 रुपए के करीब का फर्क पड़ गया है हमारे को। तो लेकिन जैसा मोदी जी का कहना है, तो मोदी जी के कहने से पहले हम जैसे अलग अलग गाड़ी पे जाते थे 5 मेंबर्स, तो अब हमने क्या किया है, 5 मेंबर्स एक ही गाड़ी में जाएंगे, एक दिन वो उठाएंगे एक दिन वो उठाएंगे, तो इस साल
4: कार पूलिंग आप पहले से ही कर रहे हैं?
5: हाँ बिल्कुल।
4: लेकिन आपको लग रहा है कि बजट टाइट भी होगा?
5: हाँ जी बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, फर्क तो पड़ता ही है। देखो फर्क तो पड़ता है,
4: दूध के दाम बढ़ गए हैं बोल रहे हैं, सोना नहीं खरीदे हैं।
5: हाँ जी, 2 रुपए या 3 रुपए मेरे हिसाब से दूध का भी रेट बढ़ा है, और सोना खरीदने के लिए भी उन्होंने मना किया है मोदी जी ने, तो सोना तो नहीं खरीद रहे। लेकिन ये
4: एक आम आदमी का जो बजट है वो कहीं ना कहीं हिला जरूर है। हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जो पेट्रोल पंप है वहां पर हम इस वक्त हैं, और खास तौर पे आपको दिखाएं आम आदमी की जेब पर है उस पर काफी असर पड़ा है। बात करने की कोशिश करते हैं, आप ये बताइए कितना असर पड़ा है, आपको लगता है कि पड़ेगा एक गरीब आदमी पे ये 3 रुपए से जो दाम बढ़े हैं?
6: तो पता नहीं सर, उनसे बात कर लो।
4: तो आपको हम बता दें, तांता लगा हुआ है इस वक्त, और खास तौर पे जो आम आदमी है एक बजट लेके चलता है, और कहीं ना कहीं खाड़ी देशों में जिस तरह से युद्ध लंबा चल रहा था, अंदेशा जरूर था कि कहीं ना कहीं जेब पे असर जरूर पड़ेगा, कभी ना कभी सरकार ये दाम जरूर बढ़ाएगी। लेकिन अब क्योंकि ये बिल्कुल मुसीबत आन पड़ी है, प्राइसेस बढ़े हैं, यानी हर चीज महंगी हो जाएगी खासतौर पे एक आम आदमी के लिए। बात करने की कोशिश करते हैं, जो दाम बढ़े हैं उससे क्या आपको लगता है कि आम आदमी के बजट पे?
1: ठीक है कमल जीत, आप तमाम सहयोगी हमारे साथ बने रहे। देखिए जनता का की बात है, सीधा असर हमारी आप पर जेब पर है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू सियासी भी है। जब बीजेपी या एनडीए विपक्ष में थे तो तत्कालीन सरकार को घेरते थे, तो अब कांग्रेस की बारी आ गया। सोशल मीडिया पोस्ट, सुबह सुबह कांग्रेस ने सीधे मोदी सरकार पर हमला बोला है, कहा है महंगाई मैन मोदी ने आज फिर जनता पर हंटर चलाया है, पेट्रोल और डीजल 3-3 रुपए महंगा कर दिया है, सीएनजी के दाम भी 2 रुपए बढ़ा दिए हैं, चुनाव खत्म मोदी की वसूली शुरू। ये कांग्रेस की ओर से सुबह सुबह पहली प्रतिक्रिया, सोशल मीडिया पोस्ट पर सीधे सरकार को आड़े हाथों लिया है। विपक्ष ने सवाल पूछा है, इसके पहले 28 अप्रैल को राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट किया था कि चुनाव खत्म हो चुके हैं, चुनावी राहत खत्म हो चुकी है, 5 राज्यों के चुनाव खत्म, 29 अप्रैल के बाद देखिएगा पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे। जब तेल सस्ता था तब मोदी सरकार ने मुनाफा रखा था, ये सोशल मीडिया पोस्ट राहुल गांधी ने 28 अप्रैल को किया था। और जैसे ही आज कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान हुआ है, सुबह सुबह कांग्रेस की ओर से सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट आता है कि चुनाव खत्म मोदी की वसूली शुरू है। लेकिन इस महंगाई का डबल अटैक और उसका असर आम जनता पर क्या होगा, सुनिए सीधे जनता की जुबानी, पब्लिक क्या कह रही है।
7: थोड़ा बहुत तो असर पड़ता ही है सर।
8: कितने रुपए दाम बढ़े हैं?
7: 3-3 रुपए के आसपास बढ़े हैं, आई थिंक आज ही बढ़े हैं सुबह मेरे ख्याल से। अब रेट तो सर हर चीज़ के बढ़ ही रहे हैं, ये वार चल रहा है तो उससे जो प्रॉब्लम हो रही है तो ऑल ओवर ही हो रही है।
9: सीएनजी के दाम तो दिन पर दिन बढ़े जा रहे हैं, पेट्रोल भी तो बढ़ना नहीं चाहिए ना, पेट्रोल डीजल जो भी है गाड़ी चल रहे हैं तो अभी ख़त्म होने वाले हैं, लग रहा है कि स्टॉक ख़त्म हो रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि अब कम चलाओ गाड़ी, कम पेट्रोल खर्च करो, क्या इसके बारे में क्या कर सकते हैं?
10: पेट्रोल पर दाम तो बढ़े, ठीक बढ़े, क्योंकि महंगाई देश में इतनी हो गई है कि पीछे से जो तेल सप्लाई आता है वो महंगा ही आ रहा है। गवर्नमेंट इतने दिनों से वो कर रही है, अपनी तरफ से दे रही है,
11: ये तो बहुत ज्यादा हमारी जेब पे फर्क पड़ेगा। डेली का है, डेली भरवाते हैं हम, डेली तो हमारे लिए तो बहुत महंगा पड़ेगा। हम तो सोच रहे सस्ता हो कुछ हो, ये तो और बढ़ते जा रहे हैं। क्या बताएं, मोदी जी कुछ देखे इस चीज के लिए, कुछ सोचे हैं कि अभी आम आदमी जो है उनकी जेब पे ज्यादा फर्क पड़ रहा है चीज का, तो थोड़ा सोचे उसके लिए।
12: मोदी जी ने भी अपने काफिला में अपनी गाड़ियां कम की हैं और लोगों से अर्ज किया है कि आप एक काम कीजिए, आप अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज कीजिए। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो ये जरूरी है ईवी व्हीकल्स को यूज करना, क्योंकि पेट्रोल अब जैसे प्राइस बढ़ रहे हैं तो अब ये ऑब्वियस सी बात है, और अभी ये 3 रुपए अभी बढ़े हैं, आने वाले टाइम में और रुपए भी बढ़ेंगे।
1: और जाहिर है अगर जेब पर असर पड़ा है तो इसका सीधा प्रत्यक्ष असर जो होता है वो हर व्यवस्था पर होगा, हमारे किचन पर होगा, यातायात पर होगा, आने जाने पर होगा। और इसीलिए हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, दीपेश त्रिपाठी मुंबई से जुड़े हुए, संतोष शर्मा लखनऊ से, रोहित पटना से। दीपेश, मुंबई में ज्यादातर की आबादी हम मानते हैं सबर्बन से लेकर तमाम वो रेल का इस्तेमाल करते हैं, मुंबई मेट्रो भी है, लेकिन बहुत सारी आबादी ऐसी है जो ऑटो का इस्तेमाल करती है, रैपिडो, ओला, उबर। अब ये जो पब्लिक सार्वजनिक सेक्टर है वो क्या कह रहे हैं, क्या वो भी कीमतें बढ़ाएंगे या वो ये झटका सहने को तैयार है?
13: जी आशुतोष, बिल्कुल ये देखने वाली बात होगी कि अब उनका क्या निर्णय होता है, क्योंकि जैसा कि आपने कहा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पर ज़्यादा यूज होता है, लेकिन कई बार देखा गया है कि जो ऑफिसेज हैं वो स्टेशन से थोड़ी दूर हैं, जिसकी वजह से लोगों को पर्सनल बाइक्स या जो शेयर टैक्सीज या जो शेयर ट्रांसपोर्ट होता है उसका इस्तेमाल करना पड़ता है, तब उन पर अब क्या असर होता है ये भी देखना पड़ेगा। साथ ही जैसा कि आपने पहले कहा था कि राज्य सरकार की तरफ से क्या इसमें कोई ढिलाई दी जाती है या कोई टैक्स कम किए जाएंगे पेट्रोल डीजल पर, तो ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल तो जो लोग हैं वो इस महंगाई को किस तरीके से देखते हैं उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। सर, पेट्रोल के दाम 3 रुपए से बढ़ गए हैं, क्या कहेंगे?
14: मोदी सरकार है तो सब कुछ पॉसिबल है। जो अच्छे दिन थे अच्छे दिन देखने मिल रहा है हमें, और क्या है।
13: लेकिन क्रूड ऑयल के दाम बढ़ गए, इसके लिए शायद दाम बढ़े हैं ऐसा कहना है।
14: दाम बढ़ गया तो आखिर साहब अपने गवर्नमेंट को पॉलिसीज है ना सब चीज़ें।
13: बिल्कुल, तो लोगों में थोड़ी सी नाराजगी जाहिर तौर पर देखने को मिल रही है, क्योंकि जाहिर तौर पर जैसे ही पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे वैसे ही जो अन्य चीजें हैं
1: हमारे साथ इसका सीधा असर, एक तरफ हम जहां राजनीतिक प्रतिक्रिया देख रहे हैं वहीं लोगों में भी, क्योंकि सीधा असर हमारी आपकी बचत और जेब पर भी है। अंशुल हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंशुल, अब एक नजर ये भी होगी कि क्या जो है ऑटो रिक्शा हो, टैक्सी हो, ओला उबर रैपिडो, वो अपनी कीमत बढ़ाएंगे। दूध की कीमत पहले बढ़ी है, पेट्रोल डीजल की कीमत आज बढ़ चुकी है, सीएनजी की, यानी महंगाई का चौतरफा अटैक है। पब्लिक क्या इसे समझ रही है, जिस परिस्थितियों को सरकार समझाना चाहती है, या वाकई कहते हैं कि जब अपने पेट पर बात आएगी दरअसल उस दर्द को कोई नहीं समझता, जनता क्या कह रही है?
15: जी, अभी तक जो हमें जो प्रतिक्रियाएं मिली हैं वो काफी मिली जुली प्रतिक्रिया है, जहां एक तरफ लोग कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड था और पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो बढ़ने ही थे, और उसके बाद कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि ये अचानक से चौतरफा हमला जो हुआ है। हम बात करने की कोशिश करेंगे, सर आज पेट्रोल डीजल के दाम करीब 3 रुपए बढ़ गए हैं, क्या कहेंगे, कितना इफेक्ट पड़ेगा सर आपके डेली रोजमर्रा की जिंदगी में?
16: बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा, प्रधानमंत्री के जो मिशन है उसको ध्यान में रखा जाएगा।
15: तो उम्मीद थी कि महंगाई बढ़ सकती है?
16: हाँ बिल्कुल बढ़ सकती है, इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कदम उठाया है।
15: तो अब कार पूलिंग जैसी जो है, ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कार पूलिंग करनी चाहिए और वर्क फ्रॉम होम करना चाहिए, तो
16: किया जाएगा। हाँ बिल्कुल,
15: तो आप बिल्कुल सहमत है? ये
16: बिल्कुल सहमत है, 100% सहमत है।
15: तो जैसा आपने सुना कि ऐसे कुछ लोग हैं जो बिल्कुल सहमत है, और उम्मीद थी इन्हें कि कहीं ना कहीं जो पेट्रोल डीजल के दाम है वो बढ़ेंगे, जो आज यहाँ पे रेट है करीब 3 रुपए पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है, वहीं करीब 2 रुपए के आसपास जो है सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी हुई है। और
1: ठीक है, तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं हमने सुनी, हमारे तमाम सहयोगी देश के अलग अलग शहरों से हमें जानकारी देते हैं, लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, जाहिर इस पर सियासत भी होगी और सियासी प्रतिक्रिया आनी शुरू है। इस पूरी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, खबर जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
17: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
18: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एकजे द नंबर 1 कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: एक्सपेक्टेशन से बेटर प्लेसमेंट मिली है तुझे, अब सब सेट है ना?
1: सब सेट है, बस अब चाहिए एक सैलरी अकाउंट जो मैच करे मेरी लाइफस्टाइल से।
2: तो सोचना क्या है, मेरा अपना बैंक है ना,
0: मतलब
2: पंजाब नेशनल बैंक, जो दे तुम्हारी चॉइस का सैलरी अकाउंट नंबर, OTT सब्सक्रिप्शन, लाउंज एक्सेस एंड मेनी मोर बेनिफिट जो तुम्हारे लाइफस्टाइल को मैच करे।
3: वाओ दी, मैं कल ही बैंक जाता हूँ।
2: पर जाना क्यों है, सब ऑनलाइन ही हो जाता है। PNB, मेरा अपना बैंक।
4: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले, ढूंढ नहीं पाएगा।
5: प्रिया, कैसा लगा मेरा स्टंट?
6: विक्रम, एक हिंट तो देते।
7: विक्रम!
6: हिंट
7: बड़े आराम से।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: और वही कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
5: जेके वॉल मैक्स
6: बेस्ट पेंट,
7: जेके मैक्स।
8: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
9: JK Maxx Paints.
8: JK Maxx Paints. खुशियों के रंग।
10: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
11: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
12: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
13: करेक्टर, the taste of success.
14: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके।
15: सर, हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है,
16: पर मार्केट की समझ ना बाउंसर जा रही है।
15: आप कैसे कर लेते हो?
17: मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ।
16: म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो, और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो, तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का
18: नहीं
16: और म्यूचुअल फंड्स है
18: सही।
19: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़े।
20: अर्जुन कुछ भी पढ़े मेमोरी में नहीं रहता।
21: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
22: लायन डेट नट बाइट्स।
23: ये मिट्टी सिर्फ फसल नहीं उगाती, देश का भविष्य भी बनाती है, और इस भविष्य को संभालते हैं ये हाथ, हमारे देश के असली हीरो के हाथ, जिनके हाथ की ताकत है क्रिस्टल के उत्पाद। तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल के उत्पाद। देश का किसान, देश का हीरो।
24: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
25: इसमें माइक्रोफाइबर है।
24: माइक्रोफाइबर यानी
25: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
24: हमारे सीमेंट में नहीं है?
25: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
26: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
14: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके।
27: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
28: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है, और धूप में सीधा काम करने को टालिए।
29: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रही।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
1: Punjab National Bank, Bharose ka Prateek.
2: समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े. समर कूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल.
0: हिंट, बड़े आराम से.
2: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस.
3: 23 और 29 अप्रैल वोटिंग.
4: 90% क्रॉस कर गई बंगाल की वोटिंग.
5: ये बढ़ा हुआ मतदान आखिर किस तरफ जाएगा?
3: 4 मई काउंटिंग.
4: भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी पीछे हो गई है
6: रुझानों में, बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए.
3: 8 मई सीएम का ऐलान.
7: शुभेंदु अधिकारी बंगाल के मुख्यमंत्री होंगे.
3: 9 मई शपथ.
8: शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते थी जे.
3: यूट्यूब पर सबसे ज्यादा व्यूअर्स, सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा एंगेजमेंट, सर्च में नंबर 1, गूगल ट्रेंड्स में नंबर 1, लाइव स्ट्रीम में सबसे आगे. टीवी हो, डिजिटल हो, यूट्यूब हो या सोशल मीडिया, हर प्लेटफॉर्म पर आज तक रहा चुनाव में सबसे आगे. चुनाव मतलब सिर्फ आज तक.
9: You and I have known each other now for a long time. In fact, the longest relationship of our two countries that any president and president has had. And that's to me an honor. We've had a fantastic relationship. We've gotten along. When there were difficulties, we worked it out. I would call you and you would call me. And whenever we had a problem, people don't know, whenever we had a problem, we worked that out very quickly. We're going to have a fantastic future together. Such respect for China, the job you've done. You're a great leader. I say it to everybody. You're a great leader. Sometimes people don't like me saying it, but I say it anyway because it's true. I only say the truth.
10: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी.
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा.
0: इन एसोसिएशन विद
12: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो.

देश को लगा महंगाई का तगड़ा झटका। पेट्रोल डीजल की कीमतों में 3-3 रुपए की बढ़ोतरी। सीएनजी 2 रुपए प्रति किलो महंगी। दिल्ली में पेट्रोल 97.77 रुपए प्रति लीटर तो डीजल 90.67 रुपए प्रति लीटर हुआ। हॉर्मुज संकट और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से लगा महंगाई का करंट। सरकार पर कांग्रेस का बड़ा हमला। कहा महंगाई मैन मोदी ने हंटर चलाया। चुनाव खत्म और महंगाई शुरू। आज से 5 देशों की यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी। यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का होगा दौरा। देश में निर्यात के लिए निर्णायक फैसलों की उम्मीद। हॉर्मुज संकट के बीच विदेश मंत्री जयशंकर करेंगे अराकची की मेजबानी। द्विपक्षीय बातचीत में ऊर्जा कनेक्टिविटी पर समझौते की उम्मीद। नीट पेपर लीक कांड पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर। देर रात सभी शिक्षण संस्थाओं के प्रमुखों की बैठक। परीक्षा की तारीखों के ऐलान जल्द हो सकते हैं। महाराष्ट्र से 2 और गिरफ्तारियां। लातूर तक सीबीआई की रेड। तो सबसे पहले बात करते हैं सुबह सुबह देश के लोगों को लगे बड़े झटके की। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3-3 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। प्रति लीटर 3 रुपए महंगा हो गया है पेट्रोल और प्रति लीटर 3 रुपए महंगा हो गया है डीजल। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपए प्रति लीटर तो डीजल की कीमत 90.67 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई है। इस बढ़ोतरी की मुख्य वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव है। ईरान और अमेरिका की जंग शुरू होने से पहले जो क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल $70 प्रति बैरल बिकता था उसकी कीमत अब $100 प्रति बैरल पहुंच चुकी है। और क्रूड की कीमतें बढ़ने से तेल कंपनियां दबाव में थी। लेकिन सिर्फ पेट्रोल डीजल ही नहीं बल्कि झटका सीएनजी को भी लगा है। अगर आप सीएनजी गाड़ी चलाते हैं तो याद रखिए सीएनजी की कीमत भी 2 रुपए प्रति किलो बढ़ चुकी है। लेकिन जरा ठहरिए, सिर्फ पेट्रोल डीजल की कीमतें अभी और भी बढ़ाई जा सकती हैं क्योंकि सरकार हवाला दे रही है कि तेल कंपनियों को 1,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है और उस नुकसान की भरपाई अब आपकी जेब से होगी। दिल्ली में सीएनजी के दाम 79.09 रुपए प्रति किलो हो चुके हैं और इसीलिए महंगाई को लेकर के अब विपक्ष के निशाने पर है सरकार। कांग्रेस ने कहा है कि महंगाई मैन का हमला जारी। चुनाव खत्म, महंगाई शुरू। कांग्रेस की ओर से पोस्ट किया गया है, इन्फ्लेशन मैन मोदी ने एक बार फिर महंगाई का हमला किया है। महंगाई मैन मोदी ने जनता पर हंटर चलाया है। चुनाव खत्म, मोदी की वसूली शुरू। ये कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रिया आई है और तमाम विपक्षी दल अब सरकार पर आक्रामक हैं कि चुनाव खत्म तो महंगाई शुरू, पेट्रोल डीजल सीएनजी महंगा कर दिया। ये कांग्रेस की ओर से सुबह सुबह प्रतिक्रिया आई है। तो पेट्रोल डीजल सीएनजी की कीमतों बढ़ने के बाद सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी भी हमलावर। उन्होंने लिखा है कि देखिए एक टून डाल के, हमने तो पहले ही कहा था कि साइकिल से बेहतर कुछ नहीं है, पेट्रोल कम खर्च करें। तो अखिलेश यादव ने कहा है कि आगे बढ़ना है तो साइकिल ही विकल्प है। वो इसलिए क्योंकि तेल की बढ़ती कीमतों का असर उत्तर प्रदेश भी उससे अछूता नहीं रहेगा और उत्तर प्रदेश अब जहां चुनाव की हलचल, राजनीति, सियासत तेज है तो अखिलेश यादव ने भी चुटकी ली है सरकार पर, बीजेपी पर निशाना साधा है। और ये ग्राफिक, एक एनिमेटेड फोटो डालकर उन्होंने कहा है कि साइकिल से बेहतर कुछ नहीं है। जाहिर है जैसे जैसे दिन बीतेगा सियासत तेज होगी, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज होती जाएंगी। और अब देखते हैं नॉनस्टॉप 100 presented

डीजल 3 रुपया से प्रति लीटर महंगा हो चुका है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल की कीमत 90.67 रुपए प्रति लीटर पर हो चुकी है। दिल्ली एनसीआर में महंगाई का एक और झटका लगा है। पेट्रोल डीजल के बाद सीएनजी की कीमतों में भी 2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई है। कांग्रेस महासचिव कुमारी शैलजा ने महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि चुनाव के बाद जनता पर बोझ डालना बीजेपी सरकार की पहचान है। उधर शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी तंज कसते हुए लिखा है कि रुपया डीजल और पेट्रोल सबसे पहले सेंचुरी कौन लगाएगा। ईंधन की खपत पर संसदीय समिति की आज एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। तेल मार्केटिंग कंपनियां भी इस बैठक में शामिल होंगी। प्रधानमंत्री मोदी पीएम मोदी आज से 5 देशों के दौरे पर होंगे। यूएई नीदरलैंड स्वीडन नॉर्वे और इटली में सबसे अहम समझौते होने की संभावना है। भारत यूरोप रिश्तों को नई मजबूती भी देंगे प्रधानमंत्री। व्यापार रक्षा एआई और ग्रीन एनर्जी पर भी फोकस रहेगा। यूएई से इटली तक प्रधानमंत्री मोदी का डिप्लोमेटिक मिशन होगा। ऊर्जा निवेश और टेक्नोलॉजी साझेदारी को भी इससे बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। 43 साल बाद कोई भारतीय पीएम नॉर्वे का दौरा करेंगे। इंडिया नॉर्डिक समिट में टेक्नोलॉजी और रक्षा पर भी चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्रा से व्यापारिक रिश्तों को भी रफ्तार मिलेगी। भारत ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद यूरोप के साथ सहयोग बढ़ेगा। सरकार ने ड्यूटी फ्री गोल्ड इंपोर्ट के नियम अब कड़े कर दिए हैं। एक लाइसेंस पर सिर्फ 100 किलो सोना आयात किया जा सकेगा। गोल्ड इंपोर्ट पर डीजीएफटी की सख्ती बढ़ा दी गई है। नए आवेदकों के लिए फैक्ट्री का निरीक्षण अनिवार्य है तो सोना आयात करने वाले निर्यातकों पर भी नई शर्त लागू है। 50% एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरा करने पर ही नया लाइसेंस मिलेगा। गोल्ड ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स को हर 15 दिन पर अब रिपोर्ट देनी होगी। सीए सर्टिफाइड डेटा के जरिए निगरानी भी रखनी होगी। सोने के बढ़ते आयात बिल पर सरकार ने बड़ा कदम उठाया। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के बाद नियम में भी सख्ती की गई है। नीट पेपर लीक केस में सीबीआई की कार्रवाई तेज हो चुकी है। 2 और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और जांच अब कई राज्यों में फैल चुकी है। सीबीआई ने 5 आरोपियों को 7 दिन की कस्टडी में भेजा। सीबीआई की अदालत ने रिमांड को मंजूर किया है। पेपर लीक का बड़ा नेटवर्क होने का सीबीआई ने दावा किया है। व्हाट्सएप और टेलीग्राम से पीडीएफ फैलाने का भी आरोप है। जयपुर गुरुग्राम नासिक से पहले 5 गिरफ्तार थे। सीबीआई ने कई जगहों पर एक साथ छापेमारी भी की है। सीबीआई ने लगभग देश भर में 14 ठिकानों पर रेड की है। जांच एजेंसी लगातार सबूत जुटाने में जुटी है। तमिलनाडु चुनाव में फर्जी दस्तावेजों से वोट डालने के आरोप में 10 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें श्रीलंका बिट्रेन इंडोनेशिया और कनाडा के लोग भी शामिल हैं। सभी मतदान के बाद चेन्नई एयरपोर्ट से विदेश भागने की कोशिश कर रहे थे तभी अधिकारियों ने इन्हें पकड़ लिया। गिरफ्तार लोगों में 4 महिलाएं भी शामिल हैं। जांच के दौरान ये बात सामने आई कि इन सभी लोगों के पास विदेशी नागरिकता है। इनमें से कोई भी भारत का नागरिक नहीं है। गैर कानूनी तरीके से अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे थे। धार के विवादित भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद पर आज अदालत का फैसला आएगा। निर्णय पर सबकी नजर टिकी है। प्रशासन अलर्ट है। सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। इस फैसले को लेकर तनाव की आशंका के बीच जिले में अतिरिक्त 1500 पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। कलेक्टर समेत एसपी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। विवादित फैसले को लेकर प्रशासन ने एहतियातन धार में 163 धारा लागू कर दी। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल हुए हैं। 84 PCS अधिकारियों के तबादले किए गए। आज तक की खबर का एक बार बड़ा असर हुआ है। सौभाग्य सिंह ठाकुर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है जो सैकड़ों गाड़ियों के साथ उज्जैन से भोपाल तक काफिला निकाल चुके थे। मध्य प्रदेश सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए नोटिस का जवाब देने तक पाठ्यपुस्तक नगम के दफ्तर जाने पर रोक लगा दिया है। उन पर प्रतिबंध लगा दिया। योगी सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है। प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वाले के परिजनों को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया गया है। ट्रंप और शी जिनपिंग की बैठक में बड़ा दावा किया गया है। चीन 200 बोइंग विमान खरीदेगा। ट्रंप ने कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने में चीन ने भी मदद की है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर अमेरिका चीन सहमति। ईरान को परमाणु हथियार न मिलने पर भी सहमति बनी है। ताइवान के मुद्दे पर चीन की अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी गई है। शी जिनपिंग ने कहा कि गलत तरीके से संभाला तो संघर्ष तय है। ईरान ने चीनी जहाजों को हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति दी है। 30 जहाजों की आवाजाही का दावा। क्षेत्र में हलचल भी बढ़ी है। ट्रंप के चीन दौरे पर दुनिया की नजर थी। न्यूक्लियर डील, व्यापार और ताइवान पर अहम बातचीत की भी संभावना। अमेरिका का बड़ा दावा है कि ईरान के 90% समुद्री माइंस को नष्ट कर दिया गया है। सेंटकॉम ने 700 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की भी बात कही है। ईरान ने यूएई पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अमेरिका और इसराइल के ऑपरेशन में यूएई ने काफी मदद की है। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत जारी है लेकिन तनाव कम नहीं हुआ। जेडी वैंस ने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं मिलना चाहिए। अमेरिकी सीनेट ने ट्रंप के युद्ध अधिकार सीमित करने वाले प्रस्ताव को फिर खारिज कर दिया है। 50 वोटों से बिल पास नहीं हो सका।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की। ये जानेंगे कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज के दिन को बेहतर बनाने के उपाय क्या हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 15 मई 2026 दिन शुक्रवार, तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, सुबह 8:31 तक। नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र, रात के 8:14 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः 10:30 से लगभग 12 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।

आएगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में शुभ कार्य होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वृषभ राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जीवन साथी की सहायता से लाभ होगा। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। मिथुन राशि, संतान पक्ष की उन्नति होगी, नए काम की शुरुआत हो सकती है, धन की समस्या दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा।

समस्याएं हल होंगी, पारिवारिक समस्याएं दूर होंगी, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। सिंह राशि, मानसिक चिंता हल होगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा।

स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, किसी मित्र का सहयोग प्राप्त होगा। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। तुला राशि, काफी व्यस्तता रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, अतिथि का आगमन होगा। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की समस्याएं हल होंगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा, करियर में बड़ा लाभ होगा, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा।

रोग हैं, स्वास्थ्य की समस्याएं कम होंगी, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी।

ये मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके।
3: अर्जुन कुछ भी पढ़े मेमोरी में नहीं रहता।
4: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
5: लायन डेट नट बाइट्स।
6: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है और धूप में सीधा काम करने को टालिए।
7: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रही है।

0: मांगीलाल बिवाल, दिनेश बिवाल, जयपुर के जमवारागढ़ के इन दो भाइयों का नाम आज देश भर के लोगों की जुबान पर है। वजह, नीट पेपर लीक कांड। नीट पेपर लीक की जांच में अब तक जो खुलासा सामने आया है उसने जमवारागढ़ का बिवाल परिवार चर्चा में आ गया है। जांच के दौरान खुलासा हुआ है कि 2025 में परिवार के चार बच्चे नीट में सेलेक्ट हुए और इस साल एक और बच्चे ने नीट का पेपर दिया और उसी के लिए मांगीलाल और दिनेश बिवाल ने गुरुग्राम के यश यादव से 30 लाख रुपए में लीक पर्चा खरीदा था। मांगीलाल और दिनेश गिरफ्तार हो चुके हैं जबकि नीट की पेपर देने वाला परिवार का बच्चा अंडरग्राउंड है। इस खुलासे के बाद सवाल उठ रहा है कि बीते साल परिवार के चार बच्चों का नीट में पास होना महज इत्तफाक है या फिर चारों का सिलेक्शन पेपर लीक की वजह से हुआ था। आज तक संवाददाता शरद कुमार जब जमवारामगढ़ में पेपर लीक कांड में गिरफ्तार बिवाल परिवार के घर पहुंचे तो मुलाकात आरोपी दिनेश की पत्नी रजनी और उनके केयरटेकर से हुई। रजनी ने आज तक के कैमरे पर कबूल किया कि चार बच्चों ने पिछले साल नीट की परीक्षा पास की थी।
1: पिछले साल भी नीट में पास हुए हैं?
2: हाँ हुए ना।
1: कितने लोग?
2: चार लोग।
1: चार लोग? हाँ। तीन लड़कियां और एक लड़का?
2: हाँ।
1: वो किसके थे?
2: ये मेरे बहन के और मेरे जेठ के हैं।
1: मांगीलाल जी के?
2: हाँ।
1: उनको भी साथ में ले गए हैं दिनेश के?
2: कहाँ?
1: एसओ जी?
2: मुझे पता नहीं है मैडम।
1: वो भी वो उनसे कब मिली थी आप?
2: मुझे पता ही नहीं है कब मिली थी मैं तो।
0: दिनेश बिवाल और उसका बड़ा भाई मांगीलाल नीट पेपर लीक कांड से जुड़े अहम किरदार हैं। आरोपी दिनेश की पत्नी रजनी ने आज तक के कैमरे पर कबूल किया कि बीते साल हुई नीट की परीक्षा में परिवार के चार बच्चे सेलेक्ट हुए थे जबकि इस साल सीकर में नीट की तैयारी कर रहे परिवार के एक अन्य सदस्य ने परीक्षा दी थी। हम उसका नाम और पहचान नहीं बता रहे क्योंकि वो नाबालिग है। पेपर लीक के खेल से बिवाल परिवार का कनेक्शन क्या है समझने से पहले बिवाल परिवार की ये कुंडली देखिए। बिवाल परिवार में तीन सगे भाई हैं, मांगीलाल, घनश्याम और दिनेश। मांगीलाल बीते साल हुई नीट परीक्षा और इस साल हुई नीट परीक्षा का आरोपी है। बीते साल मांगीलाल की बेटी प्रगति और बेटे विकास ने नीट की परीक्षा पास की तो वहीं घनश्याम की दो बेटियों यानी पलक और सानिया ने भी नीट का एग्जाम क्लियर किया। सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। इस साल भी बिवाल परिवार के एक बेटे ने नीट की परीक्षा दी थी। घनश्याम की मौत हो चुकी है जबकि मांगीलाल, दिनेश और विकास नीट पेपर लीक कांड में गिरफ्तार हो चुके हैं। ये कोठी पेपर लीक कांड में गिरफ्तार मांगीलाल और दिनेश की है। दोनों भाइयों पर कानूनी शिकंजा कस चुका है। मांगीलाल और दिनेश से पूछताछ में पेपर लीक सिंडिकेट के एक एक राज उगलवाने में जांच एजेंसियां जुटी हैं। जांच एजेंसियां दिनेश के जरिए पेपर लीक के काले खेल से जुड़े बड़े बड़े चेहरों को बेनकाब करना चाहती हैं। शरद कुमार, जयपुर, आज तक।
3: गाड़ी नंबर एक, गाड़ी नंबर दो, केवल दो कार का काफिला लेकर प्रधानमंत्री को क्यों निकलना पड़ा? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो बार अपील करने के बाद अब देश को खुद अलर्ट करने के लिए अपना काफिला 90% तक घटा दिया है? आखिर क्या होने वाला है जिसके लिए सिर्फ दो कार में निकलकर प्रधानमंत्री सबको सावधान सतर्क कर रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री अपनी सुरक्षा में कमी करके देश को सजग कर रहे हैं कि बचत करिए तभी आर्थिक संकट से लड़ पाएंगे?
4: मैं आप सबसे, देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टाले, गोल्ड की जरूरत नहीं है।
3: पहले 10 मई को हैदराबाद, फिर 11 मई को वडोदरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नागरिकों से तेल की बचत करने और सोना एक साल नहीं खरीदने की अपील कर चुके हैं। इसके तीन दिन के भीतर जब कैबिनेट की मीटिंग के लिए प्रधानमंत्री मोदी निकलते हैं, देश से केवल तेल बचाने की अपील नहीं बल्कि उस डगर पर खुद चलकर दिखाते हैं जहां पर नरेंद्र मोदी के काफिले के साथ न तो उनकी पायलट कार दिखी, न तो एम्बुलेंस दिखी, न जैमर कार दिखी, न पहले जैसी वो सुरक्षा कारें जो किसी खतरे के वक्त प्रधानमंत्री के सुरक्षा काफिले में रहकर हर चुनौती से रक्षा करती आई हैं। केवल दो गाड़ी में बैठकर प्रधानमंत्री कैबिनेट की मीटिंग में निकलते हैं, लेकिन क्यों?
4: इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें, जिनके पास कार है वे एक गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ लेकर चले।
3: असल में प्रधानमंत्री उस डगर पर खुद चलकर देशवासियों को दिखा रहे हैं जिस पर चलने की अपील उन्होंने देश के नागरिकों से की है जहां राजनीति नहीं बल्कि सबके मिलकर तेल बचाने वाली जुगत लगाने की जरूरत है।

0: इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।

67 पैसे प्रति लीटर। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से लगा महंगाई का करंट, सरकार पर कांग्रेस का बड़ा हमला, कहा महंगाई मैन मोदी ने हंटर चलाया, अखिलेश का पोस्ट, साइकिल ही विकल्प है।

ऊर्जा संकट के समाधान की उम्मीद, जयशंकर करेंगे ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची की मेजबानी, द्विपक्षीय बातचीत पर दुनिया की नजर। देशों की यात्रा पर रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी, यूएई, नेदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का दौरा, देश में निर्यात के लिए निर्णायक फैसलों की उम्मीद। नीट पेपर लीक पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर सभी शिक्षण संस्थाओं के चीफ की बैठक, परीक्षा की नई तारीखों का जल्द होगा ऐलान, महाराष्ट्र से दो और गिरफ्तारी।

नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। आज सबसे प्रमुख खबर का सबसे पहले रुख कर लेंगे क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम आज सुबह तड़के बढ़ गए हैं। शुरुआत करेंगे इसी बड़ी खबर के साथ। 5 देशों की यात्रा पर प्रधानमंत्री चले गए हैं और सीधे आबू धाबी आपको लिए चलेंगे, फिर नेदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की आधिकारिक यात्रा पर प्रधानमंत्री रहेंगे। 5 देशों के दौरे पर प्रधानमंत्री हैं। 20 मई को इटली में उनकी यात्रा का समापन होगा और आज जब एयरपोर्ट पर वो रवाना हुए तो उनके काफिले में सिर्फ 2 ही गाड़ियां नजर आईं। पेट्रोल डीजल बचाने की व्यापक अभियान को प्रधानमंत्री ने खुद शुरू किया, उसकी अगुवाई करते हुए वो अब भी दिखाई दे रहे। सबसे पहले यूएई की यात्रा है, इसके बाद नेदरलैंड, स्वीडन का दौरा प्रधानमंत्री करेंगे। 5 देशों की यात्रा है लेकिन आज जब उनका काफिला पहुंचा तो एक बार फिर से सिर्फ 2 ही गाड़ियां उनके काफिले में नजर आएंगी।

0: बढ़कर 103.67 रुपए हो गए। कोलकाता में यही दाम 105.45 रुपए थे, अब बढ़कर 108.74 रुपए हो गए। तापस सेन गुप्ता मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। ब्रजेश दोषी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं अहमदाबाद से। सबसे पहले तापस आपका रुख करते हुए, चार मेट्रो शहरों में सबसे ज्यादा दाम तो पहले ही कोलकाता में था, अब 3 रुपए का इजाफा, किस तरीके से वहां कोलकाता वासी और जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल में अभी भी चुनाव पूर्ण हुए हैं उसके बाद ये इजाफा, किस तरीके से लोग इसे देख रहे हैं?
1: जी देखिए, ये एक बहुत बड़ा झटका है क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें थी वो पहले से ही काफी ज्यादा थी बाकी शहरों की तुलना में। आज यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि ये जो पेट्रोल पंप है अमूमन काफी यहाँ पर भीड़ हुआ करती है, लेकिन आज देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी लोग बड़े तादाद में नहीं आ पहुंचे, लेकिन आज जो पेट्रोल की कीमतें हैं यहाँ पर कोलकाता में आपका तकरीबन 108.70 रुपए का आ गया है और डीजल की जो कीमतें हैं वो 95 रुपए प्रति लीटर आ चुका है। तो कुल मिलाकर जो स्थिति है लोगों में काफी परेशानी लोगों को झेलना पड़ रहा है। मैं किसी से बात करता हूँ, आज पेट्रोल की कीमतों में तो बढ़ोतरी हुई है?
2: नहीं, हमने तो डीजल खरीदता है।
1: आप डीजल में भी तो बढ़ाया था
2: तो चलो,
1: कितना परेशानी हो रहा है अभी
2: हम लोगों का? हम तो ऑफिस में काम करता है, कंपनी लोग खरीदता है, हम लोगों को उतना तो फर्क नहीं पड़ता, जो अपना घर का गाड़ी चलाता है उसको फर्क पड़ेगा।
1: तो आप समझ सकते हैं कि मतलब जो यहाँ पे रेगुलर खरीदते हैं, मैं यहाँ कुछ लोग आए हैं, मैं उनसे दोबारा एक बार बात करने की कोशिश करता हूँ। ये बताएं कि आप लोग पेट्रोल लेने आ पहुँचे हैं, पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, पता है आपको?
3: नहीं नहीं, वो जो बढ़ा है ठीक है, और बढ़ेगा तो कुछ नहीं होगा।
1: क्यों, ऐसा क्यों, कभी पॉकेट में असर नहीं?
3: पॉकेट का असर पड़ेगा, देश में मोदी है तो सब मुमकिन है।
1: तो समझ सकते हैं कि कुछ लोगों को लगता है कि ये बढ़ोतरी जो हो रही है, कम से कम तकरीबन 3 साल बाद ये प्राइस हाइक हुआ है, अगर पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो। हम बात करते हैं भाई, यहाँ पर पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है 3 रुपए का, पता है आपको?
4: नहीं, हम तो आज ही लेने आए हैं, हमको अभी पता नहीं चला, पता चले तो देखा जाएगा। अब क्या कर सकते है, सरकार बढ़ा रहा तो कुछ कर नहीं सकते,
1: लड़ाई की वजह से बढ़ रहा है
4: सरकार का कहना। अब क्या कर सकते है, उसमें हम लोग कुछ बोल भी नहीं सकते, जरा सा बोलने जाओ तो फिर कुछ बड़ा ही हो जाता है, इससे अच्छा कुछ बोल के फायदा ही नहीं है। इससे अच्छा जैसा जो रेट चल रहा है वही चले, क्या ही कर सकते उसमें।
1: आप समझ सकते हैं कि सरकार ने रेट बढ़ाया तो लोगों के पास और कोई उपाय भी नहीं है, तो इसलिए वो मान ले रहे हैं। और कुछ लोगों का ये भी मानना है, आपने अभी सुना कि अगर बढ़ रहा है तो ये बढ़ोतरी होना भी चाहिए, क्योंकि जो तमाम स्थिति समय बनी हुई है पूरे विश्व भर में, वैसे में अगर दाम बढ़ता है तो बड़े तकरीबन 3.5 साल के आसपास के वक्त के बाद इस तरीके का बढ़ोतरी हुआ है। लेकिन साफ तौर पर पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म हुआ, लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, तो ऐसे में जब बीजेपी सरकार है केंद्र में और राज्य में बीजेपी सरकार है, लोगों को उम्मीद थी कि चीजें बेहतर होंगी, लेकिन ये जो विश्व भर में जो स्थिति है इसका एक कास्केडिंग इफेक्ट देखने को मिल रहा है, जो भारत में भी देखने को मिल रहा है, पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिल रहा है। नया
0: इस बीच ब्रजेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, वहां पर पेट्रोल पंप पे सन्नाटा सही पसरा हुआ है कोलकाता की तरह, या फिर लोगों को मालूम नहीं है, या फिर धीरे धीरे मालूम चलेगा तो किस तरह का रिएक्शन आएगा सामने, बताइए।
5: देखिए नेहा, आज सुबह से ही दाम बढ़े हैं तो ज्यादातर लोगों को पता नहीं था, हालांकि सब लोग प्रिपरेशन कर रहे थे। पेट्रोल पंप पे जो है अभी जो व्हीकल है उनकी संख्या बहुत कम है, इक्का दुक्का व्हीकल जो है वो देखने को मिल रहे हैं, और पेट्रोल पंप पे लोग जो है यहाँ पे पहुंचे हैं, ज्यादातर लोगों को जो है शुरुआत में मालूम नहीं होता है कि किस तरीके की स्थिति थी। एक दो लोगों से बात करने की कोशिश भी हम लोग करेंगे कि क्या उनको पता था या नहीं। आप पेट्रोल भरवाने आए, पता था आपको कि दाम बढ़े हैं?
6: नहीं।
5: क्या फर्क पड़ेगा, 3 रुपए बढ़ाए सरकार ने पेट्रोल डीजल दोनों में?
6: मालूम नहीं, जस्ट चले वो भी क्राइसिस है उस हिसाब से भाव बढ़े तो।
5: देखिए लोगों को पता है क्राइसिस है, उस हिसाब से दाम बढ़े हैं, तो लोगों का यही कहना है, क्योंकि आम तौर पे ज़्यादातर लोगों को पता नहीं था, सुबह 6 बजे जो मैसेज आया कि दाम बढ़ाए गए हैं तो लोगों को जानकारी नहीं थी। अभी जैसे हमने बाइक चालक से बात की, उनको पता ही नहीं था, उन्होंने जब देखा तब उनको पता चला कि 3 रुपए बढ़े हैं, तो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है, धीरे धीरे आज दिन आगे बढ़ेगा उसके बाद उनको पता चलेगा।
0: ठीक है, अमित मेरे सहयोगी भी दिल्ली से जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अमित, अमूमन हमने देखा है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें रात तकरीबन 12 बजे बढ़ाई जाती हैं, इस बार ये ऐलान तकरीबन सुबह 6 बजे के आसपास हुआ है, ऐसा क्यों, कुछ वजह है खास?
7: नया देखिए, अब अगर आप इंडियन ऑयल की बात करें या ऑयल कंपनियों की बात करें, सुबह 6 बजे अब उन्होंने तय किया है कि ये ऑयल प्राइसेस अपडेट होंगे, और यही वजह है कि आज सुबह 6 बजे जब संभवतः कंज्यूमर्स अनअवेयर तरीके से भी पहुंचे होंगे तो उन्हें

0: एक दो मिनट के फर्क में ही 3 रुपए का फर्क पेट्रोल या डीजल खरीदने में पड़ गया होगा, क्योंकि अलग अलग शहरों में अलग अलग कीमतें हैं। इसलिए हम अपने दर्शकों को बता दें कि दिल्ली में क्या हालात बने हुए हैं। अगर आज की तारीख में दिल्ली में कोई डीजल खरीदेगा तो 90 रुपए 71 पैसा उसको पड़ेगा डीजल प्रति लीटर, और पेट्रोल की कीमतें अब दिल्ली में 97 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर हो गए, यानी कि तकरीबन 3 रुपए से ज्यादा का इजाफा दिल्ली में देखने को मिल रहा है। प्रतिक्रियाएं अलग अलग तरह की है। लोग इसको एंटिसिपेट करके चल रहे थे कि ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे, क्या स्थिति होगी, और यही वजह है कि पेट्रोल पंप पे आपको लोग दिखेंगे अभी बड़ी तादाद में जो ऑफिस जा रहे हैं। कई सारे लोग इसमें प्रिपेयर्ड थे कि ऐसी स्थिति बनेगी। कई सारे लोग अभी भी सोच रहे हैं कि उनकी जेब पर तो सीधा असर है ही है, इसके अलावा घर का बजट भी हिल सकता। आप 3 रुपए पेट्रोल डीजल की प्राइसेस बढ़े, बजट पे कितना असर पड़ेगा?
1: बजट पे पूरा असर पड़ेगा भाई, इससे तो पूरे महीने की जगह ले चलेंगे, ऑफिस जाना, सारा काम करना, सब पे इफेक्ट पड़ेगा पूरा, और अपना आना जाना कहीं रिलेशन में।
0: फ्रॉम होम मोड कहीं पे अभी तक शुरू हुआ है आपके ऑफिसेज में?
1: अभी तक तो नहीं है,
0: अभी नहीं है।
1: हाँ, अभी
2: ठीक है। मैं लौटूंगी आपके पास। सत्यजीत मेरे सहयोगी सीधे रांची से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यजीत, वहाँ पर क्या रिएक्शंस आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं वहाँ के लोग इस इजाफे को लेकर?
3: नेहा जी, पहले तो ये समझ लीजिए कि जो दामों में वृद्धि हुई है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ 11 पेट्रोल पंप रांची के अंदर ड्राई हो गए हैं और पूरे झारखंड में पेट्रोल और डीजल की किल्लत है। 5 दिन का रिवॉल्विंग क्रेडिट जो होता था वो ऑयल कंपनीज ने बंद कर दिया, यानी उधारी जो तेल मंगवाते थे वो पेट्रोल पंप अब वो उधारी मंगवा नहीं पा रहे हैं और उनका सरकार पे बकाया है। लिहाजा आप देखें, जहां तक देखेंगे लोगों की भीड़ है, पावर पेट्रोल भी लेने को लोग तैयार हैं, सिर्फ मिल जाए ये इनकी ख्वाहिश है। और देखिए लंबी कतारें लगी हुई है कि किसी तरह से इनके गाड़ियों में रिफ्यूलिंग हो जाए, किसी तरह से जो है इनको मिल जाए। और कीमत क्या है उससे हमको नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ता होगा। दाम बढ़ गया है पेट्रोल का? कोई
4: बहुत
3: तो मिल रहा है पेट्रोल?
4: देखिए ना आपके सामने है, देखिए मिल तो रहा है पेट्रोल अंकल।
3: तो ये भीड़ लग रही है?
4: भीड़ तो लगेगी अंकल, काहे की गाड़ी सब इतना ज्यादा आ चुकी है, भीड़ तो लगना कंपलसरी
3: है। देखिए दृश्य, देखिए आपको दृश्य दिखाते हैं यहाँ पे। सबसे पहले देखिए कितनी भीड़ है, बिल्कुल जो है उहापोह स्थिति है, पैनिक की स्थिति है। लोग पहुंचे हुए हैं भारी तादाद में, चूंकि ये बड़ा आउटलेट है इसलिए यहाँ पे पेट्रोल मिल रहा है। देखिए आप जुडिशियरी की गाड़ी, बाकी गाड़ियां, टू व्हीलर्स जो है वो भारी तादाद में लगे हुए हैं। मारामारी इस बात की है कि पेट्रोल किसी तरह से मिल जाए, रिफ्यूलिंग इनके गाड़ी में हो जाए। कीमत चाहे जो भी अगर वृद्धि हो गई है उससे उनको अभी फर्क ही नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे रिवॉल्विंग क्रेडिट बंद होने के बाद धनबाद से वैसी स्थिति आ रही है, धनबाद से वैसी जानकारी मिल रही है, जमशेदपुर से वैसी जानकारी मिल रही है। सबसे बड़ी बात है कि टैंक ही नहीं पहुंच रहा है, इतनी भीड़ क्यों है?
2: कमलजीत संधु भी मेरी सहयोगी जुड़ी हुई है तमाम जानकारी के साथ। कमलजीत, वहां पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, लोगों को फर्क पड़ रहा है या फिर वो तैयार थे इस तरह के इजाफे के लिए?
5: देखिए मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है, हम सीधा लोगों से ही बात करते हैं क्योंकि यहाँ पे लगातार सुबह से तांता लगा हुआ है, लोग आ रहे हैं फ्यूल भरवा रहे हैं। आप ये बताइए, आप अभी आपने बिल भरा है, आपको लगता है कि आम आदमी पे फर्क पड़ेगा?
6: पड़ेगा मैम, क्यों नहीं पड़ेगा। एक ही दिन में आपने 3-3.5 रुपए रेट बढ़ा दिया इन्होंने, तो फर्क तो पड़ेगा।
5: आपको क्या लगता है इससे चीजें महंगी होंगी?
6: महंगी तो हो ही नहीं है मैम, कम कहाँ हो रहा है। आप ये बताएं कहाँ लग रहा है, हमें तो कहीं नहीं दिख रहा, हर जगह आपका हर चीज का रेट बढ़ रहा है, महंगाई तो हो ही रही है।
5: मगर ये आपसे पूछना चाहेंगे, क्या तैयारी थी पहले आप लोगों ने फुल करा के रखा था कि आपको लग रहा था कि आपको अचानक से ही पता चला इसका?
6: नहीं, मेरे को तो अचानक से पता चला,
5: अचानक से पता चला। तो आपको बता दें कि हम इस वक्त जो पेट्रोल पंप पे खड़े हैं, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं असर जरूर पड़ रहा है लोगों की जेब पर। तो लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। अगर हम बात करें जो प्राइसेस हैं वो बढ़े हैं, तो वहाँ पर अगर हम बात करें सुबह सुबह हमने देखा कि काफ़ी भीड़ भी हुई और इसी बीच में जो आम आदमी है उसकी जेब पे एक बड़ा असर पड़ा है। आपसे बात करने की, पेमेंट करने की कोशिश करें, कितना आपको लग रहा है असर पड़ा है, क्योंकि दाम बढ़े हैं तो ये एक पेमेंट कर रहे हैं, एक मिनट अगर रुक जाते हैं हम, दाम बढ़े हैं उनसे बात कर लेते। दाम बढ़ गए, कितना असर पड़ा है?
7: बहुत असर पड़ा है, बहुत असर पड़ा है।
5: क्या बजट खराब हो जाएगा?
7: सब कुछ खराब हो जाएगा।
5: हाँ, जो मोदी जी बोल के गए हैं कि भाई कार पूलिंग भी करना चाहिए या बाहर कम करें, वर्क फ्रॉम होम करें, बहुत सारी चीजें बताई, तो उससे लगता है कि उस जो उपाय है वो काम करेगा?
7: कोई काम नहीं करेगा।
2: ठीक है,
5: आपको
2: ठीक है। लॉटरी में आकाश शरद मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ सीधे जयपुर से। राजस्थान में भी दाम बढ़ गए हैं शरद, लेकिन वहां पर तो अभी नीट सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, क्या पेट्रोल अब उस पर हावी दिखाई देगा?
8: देखिए नीट तो चल ही रहा है, लेकिन सुबह सुबह आज हालांकि जोर का झटका नहीं है, लोग बहुत ज़्यादा पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की उम्मीद कर रहे थे और सोच रहे थे कि कब बढ़ेगा और इसी इंतजार में थे। बहुत सारे लोग आए हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं
9: जी सर।
8: क्या करते हैं आप?
9: सर कलर का पेंटर काम करता हूँ, कामदा है नहीं और हम बहुत परेशान हैं इस टाइम, कामदाई बहुत टाइम काम नहीं है और सरकार ने आगे से आगे पेट्रोल डीजल बढ़ा रही है सरकार।
8: असर पड़ेगा आपके बजट?
9: बहुत पड़ रहा सर, खाने पीने की बहुत परेशान चल रही है इस टाइम तो।
8: काम की कमी हो गई है वैसे भी, देखिए अखाड़े युद्ध की वजह से काम की कमी हो गई है। महिला भी हमसे बातचीत करते, क्या नाम है आपका?
10: जी काजल चौहान।
8: काजल, पेट्रोल डीजल के दाम 3 रुपए बढ़ गए हैं, असर पड़ेगा बजट पर?
10: पड़ेगा तो, पर कोई बात नहीं है, पड़ेगा तो क्या है, अपनी सरकार के लिए ही जाएगा ना, कोई प्रॉब्लम तो रही ना है,
8: क्योंकि बाहरी वजह से बढ़ रही है।
10: जी बिल्कुल।
8: देखिए कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि देखो बाहरी वजह है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की, इसलिए हम इसको बर्दाश्त कर सकते हैं। रेट देख लीजिए पहले आप, नेहा 107.96 रुपए पेट्रोल का दाम है और डीजल है 93.22 रुपए जयपुर में, ये नई रेट है। कुछ कार सवार भी आए, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, ये क्या कहना है उनका, क्या करते हैं?
11: सर गाड़ी चलाते हैं।
8: नाम क्या आपका?
11: ईश्वर सिंह।
8: पेट्रोल और डीजल के दाम 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, आप उम्मीद कर रहे थे पहले से?
11: पहले से कहाँ से उम्मीद थी कि अचानक से बढ़ गई है, तो
8: बजट पर असर पड़ेगा?
11: बिल्कुल पड़ेगा सर।
8: क्या करते हैं?
11: मैं तो तैयारी कर रहा हूँ, स्टूडेंट हूँ।
8: स्टूडेंट हैं तो माँ पिताजी के भी से पैसे लेने पड़ेंगे ज्यादा?
11: बहुत ज्यादा।
8: देख सकते हैं यहाँ पर पेट्रोल पंप पे ये नजारा है नेहा, जहाँ पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया है। कुछ लोग कह रहे हैं काम नहीं है, पहले से खाड़ी युद्ध की वजह से पेंट वगैरह से जुड़े हुए बिजनेस के कारोबार से मजदूर से बात कराए मैंने, उन्होंने कहा कि असर पड़ेगा। बहुत सारी महिलाएं भी, उन्होंने कहा कि देश के लिए हम देने के लिए तैयार हैं। कुछ
2: ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। संतोष मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ सीधे लखनऊ से। लखनऊ वासी क्या कह रहे हैं संतोष?
12: देखिए लखनऊ वालों के लिए भी वही क्राइसिस है कि बजट बिगड़ गया है। 3 रुपए एक मामूली सी रकम भले ही नजर आती हो, लेकिन जब 3 रुपए आप महीने में जब 10 लीटर 20 लीटर भरवाते हैं, और उस आम आदमी के लिए जो रोजमर्रा रोज कमाता रोज खाता, उसके लिए दिक्कत है। अचानक से बढ़ गए 3 रुपए, कुछ असर पड़ेगा आप लोगों
13: को? तो नहीं पड़ेगा भैया, कोई बेटा तो बढ़ा नहीं, न पेंशन का कोई पैसा बढ़ा है, तो महंगाई कहाँ से बढ़ रही है भाई? वो तो पैसा देना चाहिए ना बढ़ा करके, भाई सचिवालय का आदमी कोई पैसा बढ़ा नहीं, कहीं नहीं बढ़ा, ना तनख्वाह बढ़ी ना पेंशन वालों को बढ़ी, तो महंगाई कहाँ से बढ़ रही है?
12: महंगाई पेट्रोल डीजल ईरान युद्ध हो रहा है,
13: बढ़ रही है, तो कम से कम उनको सोचना चाहिए कि बढ़ा रहे, सरकारी कर्मचारियों को बढ़ा के दिया जाए। बट
12: सरकारी कर्मचारी हैं?
13: हाँ,
12: सरकारी कर्मचारियों को वेतन बढ़ाया जाए, ये एक नया एक डिमांड बढ़ गई है। लेकिन इतना जरूर है कि इस क्राइसिस की वजह से लोगों को परेशानियां उनके आम बजट में, जो लोग अब जैसे ये खोले बैठे हैं कि कितने का पेट्रोल भरवाना है आपको?
14: 87
12: का ही भरवाना।
14: हाँ जी,
12: तो ये 3 रुपए से कुछ बजट गड़बड़ा गया, आप डेली पॉकेट में नहीं है कुछ?
14: हाँ वो तो रहता ही है, क्योंकि हम लोगों का सैलरी तो बढ़ नहीं रहा है और महंगाई तो बढ़ ही रहा है, और पेट्रोल क्राइसिस तो मैं समझ रहा हूँ उसकी वजह से हो ही रहा है, लेकिन सैलरी भी तो हल्की फुल्की बढ़ानी चाहिए।
12: प्रधानमंत्री जी ने तो पहले ही कह दिया था कि हमें तैयार रहना,
2: चुनाव होने के बाद
14: तो उसकी वजह से
2: क्या क्या बढ़ गया है, यानी कि किस चीज के दाम कितने बढ़े हैं, ये आपको दिखा रहे थे। पेट्रोल डीजल तकरीबन 3 रुपए महंगा हो गया है, सीएनजी के दाम 2 रुपए प्रति किलो बढ़ गए हैं, दूध की कीमतें 2 रुपए का इजाफा, अमूल और मदर डेयरी दोनों, इसके अलावा सोना चांदी लगातार ऊपर की ओर ही ट्रेंड कर रहे हैं, यानी कि इसमें दिन ब दिन बढ़ोतरी होती जा रही है। तो महंगाई का झटका चौतरफा है। रोजमर्रा की चीजों की कीमतों पे भी इजाफा हो रहा है, क्योंकि अगर डीजल के दाम बढ़ते हैं तो इनकी ढुलाई या फिर माल भाड़ा जो होता है वो बढ़ जाता है, और यही वजह है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स में भी इजाफा हुआ है जो ताजा आंकड़े आए हैं। महंगे पेट्रोल डीजल का असर बस वाले भी किराया बढ़ा सकते हैं, यानी कि जो डीजल से बसें चलती हैं वो अब अपना किराया बढ़ा सकती हैं। माल ढुलाई अब महंगी हो जाएगी, जिसकी वजह से रोजमर्रा की चीजें यानी कि सब्जी फल इत्यादि भी महंगे हो सकते हैं। ढुलाई महंगी हुई तो जरूरी सामान महंगे होंगे, कार बाइक से अगर आप दफ्तर जाते हैं तो आपका खर्च बढ़ेगा। यही वजह है कि वर्क फ्रॉम होम कई राज्यों में लागू कर दिया गया है। ऑटो टैक्सी कैब भी अब महंगी हो सकती है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल दोनों के दाम बढ़ गए हैं, और साथ ही सीएनजी जिससे ज्यादातर टैक्सियां चलती हैं वो भी अब महंगी हो गई है।

0: तो खाड़ी देशों में युद्ध के चलते और हॉर्मुज पर ठीक से आवाजाही नहीं होने या फिर आवाजाही बाधित होने के चलते इस वक्त क्रूड ऑयल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा हो रही हैं। थोक महंगाई ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अप्रैल 2025 में थोक महंगाई दर 0.85% थी। 5 अप्रैल की अगर तुलना कर लें तो 42 महीनों में अब तक की सबसे ज्यादा थोक महंगाई दर है। दिल्ली से अंशुल मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अंशुल, वहां पर लोगों की क्या रिएक्शन है, क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है इस इजाफे को लेकर?
1: जी, अगर लोगों की प्रतिक्रिया की बात करें तो आज सुबह से जो है मिली जुली प्रतिक्रिया मिल रही है, जहां कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये एक्सपेक्टेड था और ये उन्हें पता था कि ये पेट्रोल डीजल के दाम जो है कभी भी बढ़ सकते हैं। वहीं कुछ लोग स्पेसिफिकली जो लोग सीएनजी पे चलते हैं, ये लोग कुछ ऐसे हैं जिनको ज्यादा इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि सीएनजी जनरली कमर्शियल व्हीकल्स में यूज होता है और कमर्शियल व्हीकल में यूज होने से ये मतलब हुआ कि उनकी जो लागत है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगी। अभी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आज पेट्रोल डीजल की कीमतें करीब 3 रुपए बढ़ गई हैं, सर कितना इफेक्ट पड़ेगा सर आपके बजट पे, आपकी जेब पे कितना असर पड़ेगा?
2: नहीं पड़ेगा, और कम चला लेंगे, क्या फर्क पड़ेगा इससे? 3 रुपए में कोई देश थोड़ी लुट जाएगा, जो मोदी जी ने कहा वो मानेंगे।
1: तो पहले से उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं डीजल पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं?
2: ये हमेशा बढ़ते आए, 50-55 साल के होले हमेशा बढ़ते आए। 10 रुपए लीटर था मेरे सामने, आज 97 हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। सैलरी बढ़ी है, सब कुछ बढ़ा है, ये तो पार्ट है लाइफ का, क्या घबराना है इससे?
1: जी, जैसा कि आपने सुना कि लोगों को ये कहीं ना कहीं पता था कि ये होने वाला है और इसके वजह से जो है तैयारी थोड़ी बहुत थी भी। यहाँ बात करेंगे सर, आज पेट्रोल डीजल के दाम जो है करीब 3 रुपए बढ़ गए हैं, कितना इफेक्ट पड़ेगा सर आपकी जेब पे, कैसे दिखते हैं
3: सर? फ्रेंकली स्पीकिंग, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हम तो एज्यूम कर रहे थे एटलीस्ट 115-120 के हिसाब से 3 रुपए हैं, क्योंकि क्राइसिस इतनी जगह है। तो हम ठीक है, गवर्नमेंट जहां कुछ कंट्रीज ऐसी है जहां पे मिल भी नहीं रहा है, और जहां मिल रहा है तो वहां पे अप्रोक्स 55 रुपीज ज्यादा पे मिल रहा है। 3 से 4 रुपए ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पहले ये होता था 1000 रुपए में 11 लीटर आता था, अब 1000 रुपए में अप्रोक्स 10 लीटर आएगा, तो ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है। ओके,
1: तो जैसा आपने सुना कि लोग इसके बारे में बिल्कुल तैयार थे कि ये होने वाला है और उन्हें उम्मीद थी कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, और अभी जिस तरह की प्रतिक्रिया आई है आप ये समझ सकते हैं कि लोग इस वक्त भी खड़े हैं, सरकार के साथ ही खड़े हैं, और जिस तरीके से खाड़ी देशों में युद्ध के चलते जो क्राइसिस हुआ है उससे लड़ने के लिए पूरा देश कहीं ना कहीं एकजुट दिख रहा है।
0: ठीक है, मैं लौटूंगी आप सभी के पास। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा है कि महंगाई बैन, मोदी ने आज फिर जनता पर हंटा चलाया है, पेट्रोल डीजल 3-3 रुपए महंगा कर दिया है, सीएनजी के दाम 2 रुपए बढ़ा दिए गए हैं, मोदी की वसूली शुरू हो गई है। ये एक्स पर पोस्ट कांग्रेस के हैंडल से किया गया है। आज सुबह इस इजाफे के बाद कांग्रेस ने निशाना साधा सरकार पर, और ये किस तरीके से उन्होंने पोस्ट लिखा है ये आप देख सकते हैं, इलेक्शन ओवर, मोदीज रिकवरी बिगिंस। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सरकार पर निशाना साधा, लिखा आगे बढ़ना है तो साइकिल ही विकल्प है। हमने तो पहले ही कहा था कि साइकिल से बेहतर कुछ नहीं है, यानी कि हर कोई इसे अपने तरीके से बनाने की कोशिश कर रहा है। यहां पर अखिलेश भी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, उनका कहना है कि महंगाई में इजाफा तो होना ही था, क्योंकि अब चुनाव खत्म हो गए हैं और अब सरकार को मौका है कि वो अपने तरीके से दामों में इजाफा कर रहे हैं। तापस मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। तापस, ये तो प्रत्याशित माना जा रहा था कि जैसे ही पश्चिम बंगाल के चुनाव खत्म होंगे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए जाएंगे, और शायद यही वजह थी कि प्रधानमंत्री ने दो दो बार सार्वजनिक मन से अपील की कि पेट्रोल डीजल पर अपना खर्च कम करें और इसे बचाएं।
4: जी बिल्कुल, देखिए ये राजनीति तो होना ही था। मैं जब थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, कोई साइड पे खड़े होकर ये कह रहा था कि देखिए राजनीतिक दल अब क्या कहते हैं। अखिलेश यादव ने एक सैंडल में पोस्ट किया कांग्रेस ने किया है। डेरिक ओब्रायन ने तृणमूल कांग्रेस की ओर से एक सैंडल में पोस्ट करते हुए निशाना साधा है मोदी सरकार पर। लेकिन ये जितने लोगों से हम बात कर रहे थे, आम लोगों से, एक एक्सपेक्टेशन थी लोगों की कि शायद बढ़ोतरी हो सकती है, शायद इससे ज्यादा हो सकती है। तो 3 रुपए की जो बढ़ोतरी है ये लोगों के जेब पे असर तो जरूर डालेगा, लेकिन लोगों को उम्मीद था कि कहीं ना कहीं ये प्राइस हाइक होगा। ये जो संकेत है पिछले 1-2 हफ्ते से प्रधानमंत्री के अलग अलग बयानों से, ये लोगों को लग रहा था कि शायद पेट्रोल डीजल में की कीमतों में बढ़ोतरी होगी, और आखिरकार आज ये बढ़ोतरी हुई। लेकिन लंबे टाइम पे, लॉन्ग रन पे देखना होगा कि इसका कास्केडिंग इफेक्ट चीजों पर कितना पड़ता है, कितना या जो आवाजाही में कितना खर्च ज्यादा बढ़ता है, उसके ऊपर महंगाई भी बढ़ेगी, इसकी उम्मीद की जा रही है। लेकिन राजनीति जोरों से हो रहा है। पश्चिम बंगाल में चुनाव था एक बार, और भारी तादाद में लोग इस बार मतदान किए हैं और भाजपा के पक्ष में मतदान किए हैं, और ये खत्म, चुनाव खत्म होने के हफ्ते भर बाद ये फैसला लेना, ये एक राजनीति का करार दिया जा रहा है विपक्षी दलों की ओर से। लेकिन जो पूरे स्थिति को अगर का जायजा लिया जाए, पूरे विश्व भर में जिस तरीके से, पश्चिम एशिया में जिस तरीके से लगातार ये लड़ाई छिड़ी हुई है, और
0: संतोष उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं और ऐसे में पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा होना ये कहीं ना कहीं एंटी साबित हो सकता है।
5: देखिए बिल्कुल, ये आम आदमी के ऊपर इसका जरूर असर पड़ा है, बजट का असर पड़ा है। लेकिन एक और बात भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि अभी इस जो इलेक्शन का मोड जिसका आप जिक्र कर रही हैं उसमें 1 साल बाकी, 2027 में चुनाव होने हैं, 6 महीने के बाद चुनावी माहौल शुरू होगा। लेकिन 6 महीने के बाद प्रधानमंत्री की तरफ से जो अपील की गई कि लोग अंतर्राष्ट्रीय बाजार के दबाव के चलते, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ी कीमतों के चलते लोगों को तेल और पेट्रोल और डीजल के खर्च में कटौती करनी होगी, सोना नहीं खरीदना होगा, तो ऐसे में लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा। उनको उम्मीद थी कि कहीं ऐसा ना हो कि 10 रुपए 15 रुपए 20 रुपए बढ़ा दिया जाए, ये जरूर लोगों की एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन अब 3 रुपए बढ़ा है तो एक तरीके से लोग भी समझ रहे हैं, जैसे हमारे साथी बता रहे थे कि जो ईरान युद्ध हुआ, हरमूज से लोग जो तेल वाहक जहाज निकल पाने में दिक्कत हो रही है, तो उसका जो चीजें हैं वो लोग भी समझ रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ी हैं, तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड है।
0: ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बिना ब्रेक के खबरों का सिलसिला लगातार 9 बज गए में जारी रहेगा। वक्त हो गया है हेडलाइंस का।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से पर इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एकजे द नंबर 1 कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: पेट्रोल 97 रुपए 77 पैसे और डीजल 90 रुपए 67 पैसे में बिकेगा। कर्जे दिल की बढ़ती कीमतों से लगा महंगाई का करंट, सरकार पर कांग्रेस का बड़ा हमला, कहा महंगाई मैन मोदी ने अंडा चलाया, अखिलेश कपूर साइकिल ही विकल्प है। दिल्ली में चल रहे ब्रिक्स समिट से ऊर्जा संकट के समाधान की उम्मीद, जयशंकर करेंगे ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची की मेजबानी, द्विपक्षीय बातचीत पर दुनिया की नजर। पांच देशों की यात्रा पर रवाना हुए पीएम, यूएई, नेदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का दौरा, देश में निर्यात के लिए निर्णायक फैसलों की उम्मीद। पेपर लीक पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर सभी शिक्षण संस्थाओं के चीफ की बैठक, परीक्षा की नई तारीखों का जल्द होगा ऐलान, महाराष्ट्र से 2 और गिरफ्तारी। साढ़े 9 बज गए हैं, बुलेटिन में वक्त हो गया है 100 शहर 100 खबर का।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर।
0: पेट्रोल डीजल की कीमतों में 3 रुपए का इजाफा, दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 97 रुपए 77 पैसे, डीजल की कीमत 90 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर हो गई है। दिल्ली एनसीआर में महंगाई का झटका, सीएनजी कीमतों में 2 रुपए प्रति किलो का इजाफा। इसके साथ ही देश के अन्य राज्यों में पेट्रोल की डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी, मुंबई में पेट्रोल 106 रुपए 68 पैसे, डीजल 93 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर, कोलकाता में पेट्रोल 108 रुपए 74 पैसे और डीजल 95 रुपए 13 पैसे प्रति लीटर, चेन्नई में पेट्रोल 103 रुपए 67 पैसे और डीजल 95 रुपए 25 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल जैसे कुछ राज्यों में पेट्रोल की कीमतें 110 रुपए के पार। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए ट्वीट कर लिखा, महंगाई मैन मोदी ने आज फिर जनता पर हंटर चलाया, चुनाव खत्म, मोदी की वसूली शुरू। अखिलेश यादव ने तस्वीर के जरिए तंज कसते हुए कहा, आगे बढ़ना है तो साइकिल ही विकल्प है। कांग्रेस महासचिव कुमारी शैलजा ने महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा चुनाव के बाद जनता पर बोझ डालना बीजेपी की पहचान। शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने तंज भरे लहजे में किया ट्वीट, लिखा पेट्रोल डीजल सबसे पहले सेंचुरी कौन लगाएगा। ईंधन खपत प्रसंस्करण समिति की आज अहम बैठक, तेल मार्केटिंग कंपनियां भी होंगी शामिल। पीएम मोदी आज 5 देशों के दौरे पर, यूएई, नेदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली में होंगे अहम समझौते। भारत यूरोप रिश्तों में नई मजबूती देंगे मोदी, व्यापार, रक्षा, एआई और ग्रीन एनर्जी पर रहेगा फोकस। यूएई से इटली तक मोदी का मेगा डिप्लोमेटिक मिशन, ऊर्जा निवेश और टेक्नोलॉजी साझेदारी को मिलेगा बढ़ावा। 43 साल बाद भारतीय पीएम का नॉर्वे दौरा, इंडिया नॉर्डिक समिट में टेक्नोलॉजी और रक्षा पर चर्चा। मोदी की विदेश यात्रा से व्यापारिक रिश्तों को रफ्तार, भारत ईयू एफटीए के बाद यूरोप संघ बढ़ेगा सहयोग। सरकार ने ड्यूटी फ्री गोल्ड इंपोर्ट के नियम कड़े किए, अब 1 लाइसेंस पर से 100 किलो सोना आयात होगा। गोल्ड इंपोर्ट पर डीजीएफटी की सख्ती, नए आवेदकों के लिए फैक्ट्री निरीक्षण अनिवार्य। सोना आयात करने वाले निर्यातकों पर नई शर्तें लागू, 50% एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरा होने पर ही मिलेगा नया लाइसेंस। गोल्ड ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स को हर 15 दिन में देनी होगी रिपोर्ट, सीए सर्टिफाइड डेटा के जरिए होगी सख्त निगरानी। सोने के बढ़ते आयात बिल पर सरकार का बड़ा कदम, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के बाद अब नियम सख्त। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की कार्रवाई तेज, 2 और आरोपियों की गिरफ्तारी कई राज्यों में फैली। सीबीआई ने 5 आरोपियों को 7 दिन की कस्टडी में भेजा, राव जानी कोर्ट ने रिमांड मंजूर किया। पेपर लीक का बड़ा नेटवर्क होने का सीबीआई का दावा, व्हाट्सएप और टेलीग्राम से पीडीएफ फैलाने का आरोप। जयपुर, गुरुग्राम और नासिक से 5 गिरफ्तारियां, सीबीआई ने कई जगहों पर एक साथ छापेमारी की। सीबीआई की 14 ठिकानों पर देश भर में रेड जारी, जांच एजेंसियां लगातार सबूत जुटाने में लगी। तमिलनाडु चुनाव में फर्जी दस्तावेजों से वोट डालने के आरोप में 10 विदेशी नागरिक गिरफ्तार, इनमें श्रीलंका, ब्रिटेन, इंडोनेशिया और कनाडा के लोग शामिल। सभी मतदान के बाद चेन्नई एयरपोर्ट से विदेश भागने की कोशिश कर रहे थे, तभी अधिकारियों ने उन्हें पकड़ लिया, गिरफ्तार लोगों में 4 महिलाएं शामिल। जांच दौरान सामने आया कि इन सभी लोगों के पास विदेशी नागरिकता, इनमें से कई भारत के नागरिक नहीं, गैर कानूनी तरीके से अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। धार के विवादित भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद पर आज फैसला, निर्णय पर सबकी निगाहें टिकी हुई। फैसले को लेकर तनाव की आशंका के बीच जिले में अतिरिक्त 1500 पुलिस जवानों की तैनाती, कलेक्टर समेत एसपी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। विवादित फैसले को लेकर प्रशासन ने एहतियातन धार में धारा 163 लागू की, 5 जून तक आदेश प्रभावी, सोशल मीडिया पर पुलिस की पैनी नजर। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर फेरबदल, 84 PCS अधिकारियों के तबादले। आज तक की खबर का एक बार फिर बड़ा असर, सौभाग्य सिंह ठाकुर को जारी किया गया कारण बताओ नोटिस, सैकड़ों गाड़ियों के साथ उज्जैन से भोपाल तक निकला था काफिला। एमपी सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए नोटिस का जवाब देने तक पाठ्य पुस्तक निगम के दफ्तर जाने का लगाया प्रतिबंध। योगी सरकार का बड़ा फैसला, प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वालों के परिजन को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का फैसला। ट्रंप शी जिनपिंग बैठक में बड़ा दावा, चीन खरीदेगा 200 बोइंग विमान। ट्रंप बोले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने में चीन ने मदद की। हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर अमेरिका चीन सहमति, ईरान को परमाणु हथियार न मिलने पर बनी सहमति। ताइवान मुद्दे पर चीन की अमेरिका को बड़ी चेतावनी, शी जिनपिंग बोले गलत तरीके से संभाला तो संघर्ष तय। ईरान ने चीनी जहाजों को हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति दी, 30 जहाजों की आवाजाही का दावा, क्षेत्र में बढ़ी हलचल। ट्रंप के चीन दौरे पर दुनिया की नजर, न्यूक्लियर डील, व्यापार और ताइवान पर अहम बातचीत। कोर्ट बोली असंगठित साजिश का मामला हो सकता है, जांच शुरुआती चरण में, कई एंगल पर जांच जारी। 10 लाख रुपए में हुई नीट पेपर खरीद, अभ्यर्थियों तक पेपर पहुंचाने की साजिश का खुलासा। पेपर लीक से जुड़े डिजिटल सबूत डिलीट करने का शक, सीबीआई सबूत नष्ट करने की आशंका जताई। नीट परीक्षा में गड़बड़ी के बाद परीक्षा रद्द, राजस्थान एसओजी की रिपोर्ट का हवाला। सीबीआई का दावा, पूरे गैंग का खुलासा, गिरफ्तारी जारी रहेगी आगे। 21 मई को होगी केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अहम बैठक, पीएम मोदी की अध्यक्षता में सभी मंत्री होंगे शामिल। मोदी 3.0 कैबिनेट फेरबदल के अटकले तेज, जून के दूसरे हफ्ते में विस्तार संभव। शिक्षा मंत्री के आवास पर देर रात चली बड़ी बैठक, नीट परीक्षा को लेकर हुई विस्तृत चर्चा। नीट एग्जाम की तैयारियां और सुरक्षा पर फोकस, पेपर लीक रोकने के उपायों पर मंथन। एनटीए और सीबीएसई समेत शीर्ष अधिकारियों की बैठक में भागीदारी, परीक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने पर जोर। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सिसोदिया पर कंटेम्प्ट केस शुरू किया, एक्साइज पॉलिसी मामले में कोर्ट पर कथित कैंपेन का आरोप। आप नेताओं पर कोर्ट के खिलाफ सोशल मीडिया कैंपेन का आरोप, जज ने इसे विलिफिकेशन बताया। जस्टिस शर्मा ने खुद को मुख्य केस से अलग किया, शराब नीति मामला दूसरी बेंच सुनेगी। कोर्ट बोली न्यायपालिका की छवि खराब करने की कोशिश हुई, कैंपेन चलाकर कोर्ट की निष्पक्षता पर उठाए सवाल। केजरीवाल बोले सच की जीत हुई है, सत्याग्रह सफल हुआ है, आपने कोर्ट के फैसले को अपनी जीत बताया। ममता बैनर्जी के वकील की भूमिका पर बड़ा विवाद, कलकत्ता हाईकोर्ट में रोप पहनकर पेश होने पर उठे सवाल। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने पश्चिम बंगाल बार काउंसिल से रिपोर्ट मांगी। बीसीआई ने 2 दिन में रिकॉर्ड देने का दिया अल्टीमेटम, 1985 से लेकर अब तक की प्रैक्टिस डिटेल मांगी गई। बीसीआई ने फर्जी वकीलों पर सख्ती की बात कही, ड्रेस और प्रैक्टिस स्टेटस की वैधता के जांच के आदेश। टीएमसी का दावा, ममता ने 1985 से बार काउंसिल की सदस्य है, विवाद को अनावश्यक बताया। बीसीआई चेयरमैन बोले लाइसेंस की जांच जारी है, फर्जी वकीलों पर कार्रवाई की बात कही। कल्याण बैनर्जी ने पुलिस पर केस और कंटेंप्ट की चेतावनी दी, कानून के अनुसार काम न हुआ तो कार्रवाई होगी। बीसीआई ने सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के निर्देश दिए, कोई बदलाव या छेड़छाड़ न करने का आदेश। वकील के तौर पर कोर्ट में ममता की उपस्थिति पर सियासी घमासान, बीजेपी और टीएमसी आमने सामने। पूरा मामला कानूनी योग्यता और नियमों की जांच तक पहुंचा, बार काउंसिल की रिपोर्ट पर आगे की कार्रवाई तय होगी। ईडी ने कोलकाता पुलिस डीसीपी संतानु सिन्हा विश्वास को गिरफ्तार किया, लैंड ग्रैब और एक्सटॉर्शन केस में कार्रवाई। ईडी की पूछताछ के बाद डीसीपी गिरफ्तार हुई, कई बार समन के बावजूद पेश नहीं हुए थे। ममता के करीबी माने जाते हैं गिरफ्तार डीसीपी, कालीघाट पुलिस स्टेशन के पूर्व ओसी रह चुके हैं। ईडी ने पहले ही लुकआउट सर्कुलर जारी किया था, एयरपोर्ट जाते हैं गिरफ्तार डीसीपी, कालीघाट पुलिस स्टेशन के पूर्व ओसी रह चुके हैं। ईडी ने पहले ही लुकआउट सर्कुलर जारी किया था, एयरपोर्ट और बॉर्डर पर अलर्ट रखा था। लैंड ग्रैब और अवैध वसूली मामले में जांच तेज, बिजनेसमैन सोना पप्पू से जुड़े मामले में नाम सामने आया। आरजी कार केस में पीड़िता के माता पिता ने कोर्ट में याचिका दाखिल की, पूर्व टीएमसी एमएलए समेत 3 लोगों की गिरफ्तारी की मांग। परिवार का आरोप, सबूत मिटाने और जांच प्रभावित करने की कोशिश हुई, पोस्टमार्टम दस्तावेजों पर उठे गंभीर सवाल। सीलदा कोर्ट में अगली सुनवाई 5 जून को तय की गई है, सीबीआई ने मामले में जवाब मांगा गया है। सीबीआई बोली गिरफ्तारी पर फैसला जांच एजेंसी का अधिकार है, कोर्ट में विस्तृत जवाब दाखिल करेगी। अभिषेक बैनर्जी का वोट चोरी का आरोप फिर दोहराया गया, कहा बीजेपी ने जनादेश को लूटा और हिंसा फैलाई। टीएमसी सांसद बोले जनादेश में गड़बड़ी हुई है, जल्द सच सामने आएगा का दावा। अभिषेक बैनर्जी ने कार्यकर्ताओं को एकजुट रहने की अपील की, पार्टी और मजबूत होकर वापसी करेगी। टीएमसी लोकसभा में नया चीफ व्हिप नियुक्त किया, वरिष्ठ नेता कल्याण बैनर्जी को जिम्मेदारी मिली। कालीघाट बैठक के बाद संगठन ने बड़ा फैसला, ममता बैनर्जी के आवास पर हुई बैठक में नियुक्ति तय। दिल्ली में मौसम ने ली करवट, तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश से लोगों को राहत। दिल्ली के कई इलाकों में बदला मौसम, आरकेपुरम क्षेत्र की तस्वीरें आई सामने। जयपुर में लू का प्रकोप जारी, शहर में तापमान 43 से 44 डिग्री सेल्सियस के पार। अजमेर में बेमौसम बारिश से फसलों पर असर, तापमान में थोड़ा सा बदलाव। गुवाहाटी में भारी बारिश के कारण कई शहरों में जलभराव, अंबारी क्षेत्र में खुली नगर निगम की पोल। गुजरात के मोरबी में प्लास्टिक गोदाम में आग, पुलिसकर्मी दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे। बेगूसराय में नकली सिगरेट बरामदगी के व्यापार में 3 लाख वसूलने के आरोप में सिपाही गिरफ्तार, दूसरे जवान की तलाश जारी। केरल के पलक्कड़ में सोते समय शख्स पर हाथी का हमला, मौके पर शख्स की मौत। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में शाहरुख नाम के युवक ने नाम बदलकर हिंदू नाबालिग को भगाया, युवती पर बनाया धर्म परिवर्तन करने का दबाव। गोरखपुर में तरबूज और मैगी बनी जानलेवा, एक ही गांव के 9 लोग बीमार।

0: इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, नीट परीक्षा मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। नई तारीख का ऐलान हो गया है, 21 जून को अब नीट परीक्षा नए सिरे से कराई जाएगी। पुरानी परीक्षा रद्द हो चुकी है, नई परीक्षा की तारीख का ऐलान हो चुका है। एनटीए द्वारा ये परीक्षा का ऐलान किया गया है। एनटीए ने कहा था कि हम जल्द परीक्षा की तारीख का ऐलान करेंगे और आज ये तारीख का ऐलान हो गया है, 21 जून को अब नीट की परीक्षा होगी। शरद मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शरद, लगभग एक महीने से ज्यादा का वक्त लिया है, ऐसे में छात्र तैयारी कर पाएंगे दोबारा से?
1: बहुत मुश्किल सवाल नेहा आपने पूछा है। जो मैं सीकर में जाकर आया और दिन भर रहा, मैं उन बच्चियों को देख रहा था कितने बड़े बड़े सूटकेस लेकर जालौर से, जोधपुर से 500 किलोमीटर 400 किलोमीटर से आ रही थी और इतने परेशान थी। वो कह रही थी कि हम कहीं मामा के यहाँ, कहीं नाना के यहाँ, कहीं घूमने चले गए थे। पढ़ाई क्या होता है, बहुत कहना आसान होता है कि पढ़े हुए तो दोबारा पढ़ लोगे, लेकिन फ्रेम ऑफ माइंड से हट जाने के बाद दोबारा कंसंट्रेट करना, फिर कोचिंग संस्थान में आना, फिर एक महीने गुजारना, ये सारा कुछ एडजस्ट करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मगर ये परेशानियां इनके सामने आई इसलिए कि पेपर लीक हुआ है। फिर भी बच्चे जो है वो सारे खुश थे, कम से कम हमें परेशानी तो हो रही है, पर ये बात तो है कि जो चोर हैं, जो पेपर लीक किए थे, वो लोग इस सिस्टम से हट जाएंगे। हमें लगता है कल जो हाई लेवल मीटिंग हुई है दिल्ली में एनटीए को लेकर धर्मेंद्र प्रधान के यहाँ, उसकी वजह से वहां पर यह फैसला लिया गया होगा, क्योंकि बच्चे परेशान थे और ज्यादातर विरोध के स्वर उठते जा रहे हैं।
0: इस बार इसे कैसे फूल प्रूफ बनाया जाएगा कि चीटिंग ना हो?
1: ये बड़ा सवाल है नया कि चीटिंग ना हो, क्योंकि देखिए पिछली बार के आप एसओपी को देखें तो इतना कड़ा एसओपी है जो पेपर लीक के बाद बनाया गया था, उसके बाद भी ये लीक हो गया है। तो यही जांच का सबसे बड़ा केंद्र है कि क्या एनटीए में कोई भेदिया है, एनटीए का इंसाइडर है जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, क्योंकि जितना फुल प्रूफ एसओपी पिछली बार तैयार किया गया था आप समझिए कहीं से गुंजाइश छोड़ी नहीं गई थी। इसलिए एनटीए पर पूरा फोकस किए हुए है इस बार सीबीआई। 167 बच्चों की लिस्ट लेकर गए थे वो, जिन तक पेपर पहुंचा था उन सबको छोड़ दिए, ज्यादातर कोचिंग से जुड़े लोगों संस्थान थे उनको छोड़ दिए, केवल ये नेटवर्क के लोगों को पकड़ रहे हैं। इस बार अपना सारा एनर्जी जो है ये नेटवर्क को तलाशने में लगे हुए हैं, किसके पास पेपर गया उनके तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। और इनका इनका कहीं ना कहीं मानना है कि एनटीए से कोई जुड़ा हुआ है जो सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्योंकि लोकलाइज पेपर छाप कर और इंक्रिप्टिंग करके आगे भेजना था, उसके बाद भी अगर किसी कहीं से लीक होता है तो किस प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ है, क्योंकि अब ये केवल सुविधा की वजह से और सुरक्षा की वजह से ये रखा गया था कि ट्रांसपोर्टेशन में, आपको याद होगा 2025 में संजीव मुखिया के गिरोह ने कहा था कि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान हमने पेपर निकाल लिए थे नया, तो इस बार उसको खत्म करने के लिए लोकलाइज छपवाया गया था और काफी कड़े नियम के तहत छपवाया गया था, फिर भी ये बाहर निकल आया है। तो आप समझ सकते हैं कितना
0: कोई ना कोई लूपहोल ढूंढ लिया जाता है। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी शरद आपसे यहाँ पर कि क्या डिटेल सामने आ रही है, जब दोबारा परीक्षा होगी तो जाहिर तौर पर परीक्षा की फीस तो नहीं देनी होगी, एग्जाम सेंटर्स क्या सेम रहेंगे या बदल जाएंगे, क्या एसओपी क्या गाइडलाइंस आएंगे? और एक बार दिखा देते हैं आपके जवाब से पहले, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने क्या ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि परीक्षा तिथि की घोषणा कर दी गई है, अब सरकार की स्वीकृति से नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा रविवार 21 जून 2026 को आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। परीक्षार्थियों एवं अभिभावकों से अनुरोध है कि केवल एनटीए के आधिकारिक माध्यम से ही विश्वास करें। जी शरद, जवाब दें।
1: बिल्कुल नेहा, ये कहा जा सकता है कि एनटीए ने बहुत जल्दी इसे संभाला है मामले को, और जिस तरह से इतना कम समय है उसमें इनकी कोशिश यही है कि पेपर जो दोबारा छपवाया जा रहा है उसमें फुल प्रूफ पेपर छपवाया जाए और जो बच्चों को कम से कम असुविधा हो इसका ध्यान रखा जाए। इस बार भी देखिए बहुत ज्यादा सुविधा का ध्यान रखा था, बच्चों के सेंटर दूर नहीं रखे गए थे, स्थानीय सेंटर पर रखे गए थे। हो सकता है कि इस बार सीकर जैसे सेंटर जहां पर पिछली बार भी काफी बदनामी हुई थी उन सेंटरों को बदला जाए और ज्यादातर जो बच्चे हैं उनके सेंटर वही रह सकते हैं, क्योंकि वहां सेंटर से कोई समस्या के बाहर आई नहीं है और सेंटर तो वैसे भी पहले परीक्षा के पहले एनटीए ने दे दिया था। अब कुल मिलाकर यह है कि इस बार पेपर लीक कैसे फुल प्रूफ हो, क्योंकि देखिए ये मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूँ नेहा कि पूछताछ में उन्होंने जो दीवाल परिवार है उन्होंने एडमिट किया है कि 2025 में भी हमें पेपर मिल गया था और इसी कुरियर के जरिए मिला था और पिछली बार तो कहा गया था कि बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आया था नीट के एग्जाम में, उसके बाद भी इसके परिवार के 5 हुए थे और न जाने कितने लोगों को इसने बांटा था, पूरे सीकर नेटवर्क में बांटने की बात आ रही है। तो 2025 का तो क्या होगा पता नहीं, मतलब 2026 ये परीक्षा रद्द हो गई है। अब जाकर बच्चों को एक तरह से कहा जा सकता है कि मनोबल भी बढ़ेगा, ऐसा नहीं है कि केवल निगेटिव ही इसमें है, पॉजिटिव भी है कि मनोबल भी बढ़ेगा कि पेपर हम जो दे रहे हैं वो सुरक्षित है, हम पढ़े हुए हैं तो हम पास हो जाएंगे।
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। इसी के साथ यहाँ रुकना होगा छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, टिकते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: नहीं, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: JK Masala ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है. ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद. JK Masala, जहां स्वाद वहां JK.
2: और वही कहां गए थे घूमने?
3: JK Max.
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: JK Max. बेस्ट पुट्टी
5: JK वॉल मैक्स.
3: बेस्ट पेंट
5: JK Max.
3: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ JK Max Paints. JK Max Paints. खुशियों के रंग.
6: करेक्ट, द टेस्ट ऑफ सक्सेस.
7: लाइक आई सेड बिफोर, वी बेटर होन द सिंस.
4: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
8: इसमें माइक्रोफाइबर है.
4: माइक्रोफाइबर यानी
8: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत.
4: हमारे सीमेंट में नहीं है?
8: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है.
9: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़. ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है.
10: मुख्य समाचार. मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है और धूप में सीधा काम करने को टालिए.
11: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रहे.
1: JK Masala ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है. ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद. JK Masala, जहां स्वाद वहां JK.

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
1: Punjab National Bank, Bharose ka Prateek.
2: समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े. समर कूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल.
0: हिंट, बड़े आराम से.
2: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस.
3: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना. कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत. कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो.
4: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश.
5: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस्ट पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है. 135 सवाल उसी गेस्ट पेपर से हूबहू मिलते हैं.
6: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं.
4: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर.
7: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ.
5: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ. हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा.
4: जहां खबर वहां खबरदार.
0: इन एसोसिएशन विद
8: मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील.
2: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
4: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश.
5: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस्ट पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है. 135 सवाल उसी गेस्ट पेपर से हूबहू मिलते हैं.
6: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं.
4: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर.
7: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ.
5: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ. हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा.
4: जहां खबर वहां खबरदार.

0: बकैतों में श्रेष्ठतम, असफल डकैतों के सरताज, मास्टरों के मास्टर, यक्ष युधिष्ठिर, पक्षीराज गरुड़ और काग भुशुंडी के कॉम्बो, बतरस के तीरंदाज अवधुजा सर के साथ।
1: भैया हम झूठ सुनी थे, हमारे दहिया जर जाती। नहीं कहते लोग।
0: जीवरा संताप लग जाते हैं।
2: सर आप कुछ लाइसेंसी रखे हैं कुछ?
3: नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, पहले से पड़ा है।
1: जो आदमी बैठ के बना लेता है उसको लाइसेंस लेने की क्या जरूरत है।
4: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
1: एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया
2: ट्यून इन हाउ टू अ ब्रीफ लुक एट ऑल द स्पेशल फंक्शंस एंड थिंग्स यू माइट नॉट नो वी हैव
3: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry, TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs, so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn. Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
5: Oh no, बहुत बोर लग रहा है.
6: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स बादाम पिस्ता काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स.
7: लायन डेट नट बाइट्स.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
3: इसमें माइक्रोफाइबर है।
2: माइक्रोफाइबर यानी
3: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
2: हमारे सीमेंट में नहीं है?
3: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
4: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
5: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है और धूप में सीधा काम करने को टाली।
6: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रही।
7: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके।
8: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
9: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस्ट पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
10: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
8: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
11: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
9: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
8: जहां खबर वहां खबरदार।
12: इन एसोसिएशन विद मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।
13: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: इस ट्रंप ने ऐसी आग लगाई है कि ईरान की जंग में हिंदुस्तान की जेब तंग है और जिस तरह देश के प्रधानमंत्री मंत्री नेताओं के पैगाम है आवाम सहमी हुई कि ना जाने आगे कैसा वक्त आने वाला है। ये इशारे आवाम समझे या ना समझे हालात दिखने लगे हैं। दूध 2 रुपए लीटर बढ़ गया, घरेलू LPG 60 रुपए पहले बढ़ चुकी है, कमर्शियल सिलेंडर 1300 रुपए बढ़ चुका है, खाने का तेल 15 रुपए लीटर बढ़ चुका है, विदेशी दाल के दाम 35% बढ़ गए, मेवों के दाम 80% चढ़ गए, सोने चांदी की इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ गई, घर बनाने का सामान 10% महंगा हो गया, विदेश यात्रा का टिकट महंगा हो गया, डॉलर के मुकाबले रुपया सेंचुरी के करीब घिसटता जा रहा है। यूं ही पीएम मोदी पिछले 2 हफ्ते से भारतवासी भाइयों और बहनों को बचत का पाठ नहीं पढ़ा रहे। भारतवासी पीएम मोदी की अपील पर गौर करें या नहीं, नेता मंत्री जरूर संदेश दे रहे हैं। पीएम खुद 20 कारों के काफिले से 2 कार के काफिले पर आ गए। लोकसभा स्पीकर ने अपने काफिले में कारों की संख्या घटा दी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह सिर्फ 1 कार के साथ पीएमओ पहुंचे। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कार छोड़ ई रिक्शे की सीट थाम चुके हैं। महाराष्ट्र के सीएम बुलेट से विधानसभा पहुंचते देखे। पंजाब के गवर्नर चंडीगढ़ के अफसरों को हर बुधवार बिना वाहन के दफ्तर आने का आदेश दे चुके हैं। कर्नाटक के गवर्नर थावरचंद गहलोत ने काफिले में कार घटा दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने भी काफिले में कारों की तादाद घटा दी। बिहार के सीएम 3 कारों के काफिले में चलने लगे। सम्राट के मंत्री अशोक चौधरी 1 कार में JDU दफ्तर पहुंचे। यूपी के मंत्री सुरेश खन्ना साइकिल से विधानसभा आए। बंगाल में BJP की विधायक पूर्णिमा चक्रवर्ती स्कूटी से विधानसभा आई। वैसे तो पीएम मोदी के आह्वान पर पूरी BJP एकजुट होकर देश के सामने संदेश रख रही है और यही संदेश अब तो आंकड़ों में नजर आने लगा, क्योंकि मार्च के 3.88% के मुकाबले अप्रैल में थोक महंगाई दर 8.30% पर पहुंच चुकी है। इसमें ईंधन की महंगाई 1% से बढ़कर 24.71% तक है। कंज्यूमर आर्टिकल 3.39% से बढ़कर 4.62%। खाद्य महंगाई 1.85% से बढ़कर 2.31%। प्राइमरी आर्टिकल 6.36% से बढ़कर 9.17%।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

21 जून को दोबारा होगी नीट की परीक्षा। शिक्षा मंत्री के साथ हुई बैठक के बाद एनटीए ने किया नई तारीख का ऐलान। थोड़ी देर में मीडिया से बात करेंगे मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। देश को महंगाई का तगड़ा झटका। पेट्रोल डीजल की कीमतों में 3-3 रुपए की बढ़ोतरी। सीएनजी 2 रुपए प्रति किलो महंगी। दिल्ली में अब पेट्रोल 97.77 रुपए और डीजल 90.67 रुपए प्रति लीटर। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से लगा महंगाई का करंट। सरकार पर कांग्रेस का बड़ा हमला। कहा महंगाई मैन मोदी ने हंटर चलाया। अखिलेश का पोस्ट, साइकिल ही विकल्प है। दिल्ली में चल रहे ब्रिक्स समिट से ऊर्जा संकट के समाधान की उम्मीद। जयशंकर करेंगे ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची की मेजबानी। द्विपक्षीय बातचीत पर दुनिया की नजर। पांच देशों की यात्रा पर रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी। यूएई, नेदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का दौरा। देश में निर्यात के लिए निर्णायक फैसलों की उम्मीद।

0: MBBS सरकारी कॉलेज में एडमिशन करा दिया, तो ये तो बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन इस सिस्टम को पकड़ा जाना एक तरह से खुशी की बात है, छात्रों के लिए भी अच्छी बात है कि सेंटर भी नहीं बदला जाएगा, एडमिट कार्ड भी नहीं बदला जाएगा, रजिस्ट्रेशन भी नहीं बदला जाएगा। सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों को रजिस्ट्रेशन होती है।
1: तो जी बिल्कुल शरद, हमारे साथ बने रहिए क्योंकि एक और बड़ी खबर अब हम लेकर आ रहे हैं इसी मामले से जुड़ी हुई। नीट पेपर लीक के बाद पहली बार मीडिया को ब्रीफ करने जा रहे हैं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। आधे घंटे बाद मीडिया से मुखातिब होंगे। नीट पेपर लीक कांड पर वो लगातार निशाने पर रहे हैं। अब उन्होंने इस मामले में कोई बयान अब तक नहीं दिया था। कल देर रात उन्होंने हाई लेवल मीटिंग जरूर की जिसमें शिक्षा सचिव उनके साथ थे और अब पहली बार वो मीडिया के सामने आने वाले हैं और पहला बयान शिक्षा मंत्री की तरफ से आएगा। लगातार निशाने पर रहे हैं। और एक और बड़ी खबर आ रही है, नीट पेपर लीक में आरोपियों से पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। मांगी लाल और दिनेश जिनकी बात पहले भी कर रहे थे, वो पहले भी नीट का पेपर लीक कर आगे बेच चुके थे। पिछले साल नीट 2025 में भी बिवाल परिवार के सभी 5 बच्चों को नीट का पेपर परीक्षा से पहले ही मिल गया था, ऐसी खबरें आ रही हैं। और नीट पेपर लीक मांगीलाल का बेटा सवाई माधोपुर मेडिकल कॉलेज से MBBS कर रहा विकास बिवाल भी आगे पेपर बेचने में शामिल हुआ था, तो पूरा परिवार इसमें लिप्त था। आगे से पेपर लाकर बेचने के लिए 65 लाख दिए गए थे। हरियाणा का यश यादव भी सीकर में रहकर पढ़ता था, तब मांगीलाल का परिवार उसके नजदीक आया था। और आइए एक बार फिर से रुक करते हैं हमारे सहयोगी शरद का, सीकर में जो हो रहा है उस पर आपने लगातार अपनी नजर बनाई हुई है शरद, लेकिन अब मांगीलाल का जो परिवार है उसमें यह पता चल रहा है कि सिर्फ पेपर उनको मिले नहीं, उनके बच्चों को, उनके बच्चे भी इस काम में साथ में मदद कर रहे थे।
0: बिल्कुल अंजलि, आप देखिएगा नीट का पैटर्न तो कई सालों बाद पिछली बार सबसे ज्यादा हार्ड पेपर नीट का आया था, उसके बावजूद ये 5 पास कर गए। मगर ये खुलासा इसलिए बहुत जरूरी था सरकार के लिए कि पिछली बार जब नीट का पेपर आउट हुआ तो जो बिहार गैंग का मुखिया था वो संजय मुखिया था, उसने कहा कि हम ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ये पेपर निकाल लिए थे, लेकिन अब पता चल रहा है कि नहीं, ये तो पेपर NTA के अंदर कोई भेदिया है जिसकी वजह से निकल रहा है। उसके बाद NTA ने एक फुल प्रूफ सिस्टम बनाया और कहा कि नहीं, ट्रांसपोर्टेशन में हम ज्यादा उलझेंगे नहीं, लोकलाइज जहां एग्जाम होगा वहीं पर पेपर छाप कर वहीं इनक्रिप्टिंग करके इसको आगे बढ़ाएंगे। मगर इस बार भी अगर आउट हो गया है तो ये पूछताछ की गई, पूछताछ में उसने स्वीकार किया है मांगीलाल, दिनेश और विकास ने कि हमें पेपर मिल गया था, मगर ये बार बार कह रहे हैं एक ही बात कि इसमें बड़े लोग शामिल हैं, हम तो केवल कोरियर हैं। कल जब मैं दिनेश के घर पर बात कर रहा था उसकी पत्नी रजनी से और मांगीलाल की पत्नी संजू से, तो दोनों यही कह रहे थे ये तो 24 में भी आउट हो रहा था, 21 में भी आउट हो रहा था, बड़े लोगों को पकड़ो ना, हमें क्यों पकड़ रहे हो। तो ये कुरियर हैं, एक कुरियर हैं, इन कुरियर के जरिए जो CBI है वो वहां तक पहुंचना चाहती है कि क्या NTA में कोई
1: छेद है। एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता देते हैं क्या है ये खबर। ब्रेकिंग न्यूज है कि महाराष्ट्र का जो नेटवर्क है जिसका खुलासा हुआ था उसी के जरिए ये पेपर लाए गए थे। ये सब पूछताछ से अब निकलकर सामने आ रहा है। महाराष्ट्र नेटवर्क के जरिए पेपर लाए थे आरोपी। ये सब बिवाल परिवार को पिछले साल भी पेपर मिला था, ये बात तय हो चुकी है। ये अब सामने आ रहा है पूछताछ में। परीक्षा से पहले नीट 2025 का पेपर बिवाल परिवार के बच्चों को मिल गया था, उन्होंने ये पेपर दिया था और पहले भी उनकी पत्नी ये बात आज तक के कैमरे पर मान चुकी है कि 4 उनके परिवार के पिछले साल भी नीट में पास हुए थे, तो बिवाल परिवार को पिछले साल भी पेपर मिल गया था। और अब रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर का, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों की मार।

0: बढ़ेगा, सीएनजी बढ़ेगी, सब चीज बढ़ेगी, तो सामान का भी ऐसा भी बढ़ेगा।
1: महंगाई की फुल मार रहेगी। देखिए
2: आम आदमी को असर तो ज्यादा पड़ेगा ही पड़ेगा मैम, सबकी इनकम पे फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा ना।
3: गवर्नमेंट के पास भी ऑप्शन लेस है,
4: मोदी जी के लिए खड़े हैं, ठीक है, और रेट तो अभी और भी बढ़ेंगे।

0: तो आज सुबह सुबह लोगों को जोर का झटका जोर से ही लगा, जिसका डर था वो हो गया। पेट्रोल डीजल सीएनजी की महंगाई वाली किश्त आ गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। दिल्ली में अब पेट्रोल 97.77 रुपए प्रति लीटर हो गया है, वहीं डीजल की कीमत अब 90.67 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई है। इसके अलावा दिल्ली में सीएनजी की कीमतों में भी 2 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। मुंबई में कल ही सीएनजी के दाम में 2 रुपए का इजाफा हुआ था। तेल की कीमतों में उछाल के पीछे बड़ी वजह अमेरिका ईरान की जंग है। हॉर्मुज से तेल की आवाजाही बंद होने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल हुआ है। अगर कच्चे तेल की कीमतों में लंबे समय तक तेजी बनी रही तो पेट्रोल डीजल की कीमतें और भी बढ़ाई जा सकती हैं। तो तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं कि किस तरह से पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों की मार देश भर में देशवासियों पर असर डाल सकती हैं। अगर पेट्रोल डीजल बढ़ता है तो उसका सीधा नाता महंगाई से भी होता है। तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं कि किस तरह से पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों की मार देश भर में देशवासियों पर असर डाल सकती हैं। अगर पेट्रोल डीजल बढ़ता है तो उसका सीधा नाता महंगाई से भी होता है। महंगाई दर उससे ऊपर जा सकती है। आम जनजीवन की जो जरूरत की चीजें हैं उनकी कीमतें बढ़ सकती हैं। फिर चाहे वो आपकी सब्जी भाजी तरकारी हो या फिर दूसरे सामान हो, हर किसी का कार्टेज बढ़ जाता है।
1: पेट्रोल बढ़ेगा, सीएनजी बढ़ेगी, सब चीज बढ़ेगी तो सामान का भी ऐसा भी बढ़ेगा, क्योंकि जो सामान अगर दूर से आता तो उसका पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप 1 रुपए बढ़ाएंगे तो वो 3 रुपए बढ़ाएंगे।
2: बिल्कुल, हम लोग तैयार हैं, मोदी जी के लिए खड़े हैं, ठीक है। और रेट तो अभी और भी बढ़ेंगे, बट ठीक है, मोदी जी ने कुछ सोच रखा होगा, बस उसी हिसाब से मोदी जी के साथ ही खड़े हैं।
3: मतलब आप लोगों को भी अंदाजा था कीमतें तो बढ़ने वाली हैं?
2: बढ़नी है सर, और लगभग 20 रुपए से ऊपर जाएगा ये।
4: इतना हमें डायरेक्टली नहीं पड़ेगा, बट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट काफी ज्यादा है। हाँ। वो तो हम सबको ही पता है, जो बाकी कमोडिटीज है उन पे जो प्राइसेस बढ़ने वाले हैं,
3: घर के राशन से लेके सब्जियां तक।
4: एग्जैक्टली, कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पे इम्पैक्ट नहीं आएगा।
5: बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा, प्रधानमंत्री के जो मिशन है उसको ध्यान में रखा जाएगा।
6: तो उम्मीद थी कि महंगाई बढ़ सकती है?
5: हाँ बिल्कुल बढ़ सकती है, इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कदम उठाया है।
7: असर तो पड़ ही रहा है, बहुत असर पड़ रहा है।
8: कल दूध के दाम भी बढ़े, आज के दाम बढ़ गए,
7: दूध के भी दाम बढ़ गए,
9: महंगाई की फुल मार रहेगी। देखिए अभी तो बड़ा लोगों में वो माहौल है कि आगे चल के कोई और ना समस्या आ जाए, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, ऊपर से रेट बढ़ रहे हैं, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है मैम।
10: इससे तो बहुत असर पेगा जी, असी तो फार्मिंग करते हैं, साढ़े तो बहुत ज्यादा प्रेशर पेगा जी। पहला असी खेतीबाड़ी के सारा ही डीजल से संबंधित है, पानी देना, पानी लाना, खेतीबाड़ी काम करना, ट्रैक्टर चलाना, गाई करना, अगे हूँ पैडी का सीजन आ रहा, उससे बहुत बुरा असर पेगा जी।
11: आम आदमी को असर तो ज्यादा पड़ेगा ही पड़ेगा मैम, सबकी इनकम पे फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा ना, सेविंग्स पे फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। बाकी जो बढ़ना है अब तो गवर्नमेंट की मर्जी है।
12: अंदेशा था कि ये बढ़ सकता है, बढ़ेगा?
11: यस बिल्कुल था।
13: ये दोनों ही बातें हैं। देखो अब गवर्नमेंट के पास भी ऑप्शन लेस है, क्योंकि कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को भी अब ना करे तो भी प्रॉब्लम है, तो कुछ ना कुछ तो देखो करना ही पड़ेगा। बाकी हमारी जेब पे तो खैर ऑब्वियसली फर्क पड़ेगा ही सही, इसमें तो कोई दो राय नहीं।
14: हाँ जी, 3 रुपए आज सुबह 6 बजे से बढ़ गए हैं, तो मतलब कि ये देखिए भी, जैसे पहले हम 4000 का डलवाते थे तो अब 4200 का पड़ा है, 200 रुपए के करीब का फर्क पड़ गया है हमारे को। तो लेकिन जैसा मोदी जी का कहना है, तो मोदी जी के कहने से पहले हम जैसे अलग अलग गाड़ी पे जाते थे 5 मेंबर्स, तो अब हमने क्या किया है, अभी 5 मेंबर्स एक ही गाड़ी में जाएंगे, एक दिन वो उठाएंगे, एक दिन वो उठाएंगे, तो इस
12: कार पूलिंग आप पहले से ही कर रहे हैं।
14: हाँ बिल्कुल।
0: तो तेल की कीमत अगर बढ़ती है तो इसका असर लगभग हर चीज पर पड़ता है। हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से और किस किस चीज पर असर पड़ेगा। पहले देखते हैं देश के 4 बड़े शहरों में क्या है पेट्रोल और डीजल की कीमतें। तो आइए सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि 15 मई को 3 रुपए प्रति लीटर का इजाफा हुआ है, ये हम जानते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, लेकिन लगभग 3, और वजह क्या रही है इसमें, यूएस और ईरान युद्ध के चलते ये दाम बढ़ रहे हैं, वहां पर जो कमी हो रही है आपूर्ति की, यहां तक उसकी वजह से ये दाम बढ़ रहे हैं। तो आइए अब हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि इलेक्शंस के बाद ही ये जो इजाफा हमने देखा, ये बढ़ोतरी जो देखी, वो जैसे ही राज्यों के चुनाव खत्म हुए उसके बाद देखा। तो क्या क्या हुआ आइए देखते हैं। तो 15 मई के बाद अचानक से पेट्रोल की कीमत में बढ़त, 3 रुपए प्रति लीटर। और चिंता की बात यह रही कि सीएनजी भी बढ़ गई, यानी कि आपका जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जिसे इस्तेमाल करने की हिदायत आपको दी जा रही है, नसीहत दी जा रही है, वो भी उसकी कीमत बढ़ सकती है क्योंकि सीएनजी 2 रुपए प्रति किलो अब महंगा हो चुका है। इसके अलावा क्या बढ़ोतरियां हुई है आइए एक नजर डालते हैं। दूध, 14 मई को हमने देखा कि अमूल का दूध भी 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया, तो आपका जो घर का बजट है वो भी थोड़ा बिगड़ सकता है। इसके अलावा सोना चांदी, ये तो खैर हमें पता चल ही रहा था, पिछले इस साल से लगातार सोने की कीमतें, चांदी की कीमतें आसमान छू रही थी, लेकिन अब आयात शुल्क 6 से 15% कर दिया गया है। इसके साथ इंपोर्ट पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगा दी गई हैं ताकि लोगों में जो सोना चांदी खरीदने की आदत है उसमें कुछ कमी आए। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि कमर्शियल सिलेंडर, जिसकी भारी किल्लत भी हुई थी जब ये मध्य एशिया का युद्ध शुरू हुआ, उसकी कीमत 19 केजी का जो कमर्शियल सिलेंडर आता है वो लगभग 1000 रुपए महंगा हुआ था, जिसका असर पड़ा था कि कई रेस्टोरेंट में खाना बनना बंद हो गया था। और आखिर में जानते हैं कि छोटा सिलेंडर, ये भी छोटे रेडी वाले इस्तेमाल करते हैं, ये भी कमर्शियली इस्तेमाल किया जाता है, वो भी महंगा हो गया था। प्रीमियम पेट्रोल, कुछ लोग पसंद करते हैं इसका इस्तेमाल करना, ये 2 रुपए से 2 रुपए 30 पैसे महंगा हुआ है। तो ये सारी जो कीमतें बढ़ी हैं वो सब इलेक्शन के बाद हुई हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि क्या इसका असर ग्राउंड पर हो रहा है, जमीनी तौर पर हो रहा है। संतोष हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ में अंशुल दिल्ली से जुड़ रहे हैं, आइए सीधा उन दोनों का रुख करते हैं। संतोष, पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्या कोई नाराजगी दिख रही है पेट्रोल पंपों में या लोगों में, या लोग इसे एक्सेप्ट करके चल रहे हैं कि हाँ भाई कीमतें बढ़नी ही थी और अब हो गई हैं?
15: देखिए, दो चीजें हैं। प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कह दिया था कि हमें तैयार रहना चाहिए, सोना नहीं खरीदना है, कार पूलिंग करना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना, तो मेंटली प्रिपेयर थे लोग कि हाँ पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर बढ़ोतरी होगी और कोई बड़ा फैसला होगा। तो लोगों के अब जब 3 रुपए बढ़े हैं पेट्रोल डीजल के दामों में तो उनको एक प्रिपेयर्ड है, लेकिन उनका बजट बिगड़ा हुआ है, अचानक से बढ़ने से बजट बिगड़ गया।
16: 3-4 रुपए में क्या है बजट बिगड़ेगा?
15: कोई नहीं।
16: प्रधानमंत्री
15: ने पहले अलर्ट,
16: हाँ पहले से सावधान थे सब लोग, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, देश चलाएं अच्छे से, बाकी यहाँ सब बढ़िया है, मस्त।
15: देश के लिए जरूरी,
16: इसके लिए जरूरी जो चीजें हैं कदम उठाएं, तो कुछ ठोस कदम में है उनको उठाना पड़ेगा। जैसे सोना खरीदने के लिए कम बोले हैं तो लोग सोना ना खरीदें, और ये पेट्रोल वाला है तो जितनी जरूरत है उतना ही लोग लें, बाकी पैसे उसे कोई ऐसी बात नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है।
15: पेट्रोल डीजल के दामों की बढ़ोतरी का पूरा महंगाई पर असर पड़ेगा आपके बजट पर?
16: हाँ, वो सामान कुछ महंगे होंगे और उनसे थोड़ी सी जेब ढीली होगी लोगों की, लेकिन इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, सब लोग समरथ हैं, कर ले जाएंगे अपना मेन है देश में।
0: ठीक है संतोष, जाहिर तौर पर लोग तैयार थे इसके लिए, लेकिन फिर भी छटका तो ये है ही। अब बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर के साथ। अब बात एमपी के धार की विवादित भोजशाला की। भोजशाला मंदिर और कमाल मौला मस्जिद परिसर को लेकर आज कोर्ट का फैसला आ सकता है, बड़ी खबर आ रही है। हाई कोर्ट ने 12 मई को सुनवाई पूरी होने के बाद मध्यकालीन स्मारक को लेकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब कोर्ट ने परिसर की धार्मिक प्रकृति के विवाद के मामले में फैसला सुनाने के लिए आज की तारीख तय कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट के वकील और हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के सीनियर अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने दी इस मामले पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच के जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की खंडपीठ ने इस मामले से संबंधित 5 याचिकाएं और 1 रिट की अपील की थी। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ धार से इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी रवीश पाल सिंह। रवीश, इस चिंता को लेकर के कि इस फैसले को लेकर दोनों ही पक्षों में से किसी में भी कोई गुस्सा ना सामने आए, इसको लेकर के वहां पर काफी इंतजाम भी किए गए हैं, तो बताइए कि किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था वहां पर है और क्या वहां पर किसी तरह की टेंशन या तनाव है?
17: देखिए, तनाव अभी समझ में नहीं आएगा अंजलि जी, अभी जब जजमेंट आ जाएगा तो उसके बाद असली तस्वीर देखने को मिलेगी। लेकिन जो ये भोजशाला विवाद है, ये जो धार शहर है, ये इसकी वजह से आपको बताएं कि मध्य प्रदेश में सबसे संवेदनशील कहा जाता है। एक तरीके से मान के चलिए कि इस जगह को मध्य प्रदेश का अयोध्या कहा जाता है, जहां पे ये विवाद लंबे समय से चला आ रहा है। और आज शुक्रवार का दिन है। आज दरअसल पुराने नियम के मुताबिक, जो यहाँ पे नियम बनाया गया था उसके मुताबिक, मंगलवार को जो हिंदू पक्ष होता है वो अंदर जाके पूजा करता है, और शुक्रवार को जो मुस्लिम समाज के लोग होते हैं वो अंदर जाके नमाज अदा करते हैं। आज शुक्रवार का दिन है और जजमेंट आने वाला है
0: जी। तो इसको जी रवीश, और इसी जजमेंट पर, इसी फैसले पर रहेगी हमारी एक नजर। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
18: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से। इन एसोसिएशन विद भारत

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: Character, the taste of success.
2: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
3: GK Max.
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: GK Max. Best putty.
5: JK Wall Max.
6: Best paint.
7: JK Max.
8: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन most beautiful walls के लिए सिर्फ
3: JK Max paints.
8: JK Max. JK Max paints. खुशियों के रंग.
9: ये मिट्टी सिर्फ फसल नहीं उगाती, देश का भविष्य भी बनाती है. और इस भविष्य को संभालते हैं ये हाथ, हमारे देश के असली हीरो के हाथ, जिनके हाथ की ताकत है क्रिस्टल के उत्पाद. तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल के उत्पाद. देश का किसान, देश का हीरो.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: सर म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे एक सवाल पूछना था।
2: सॉरी सर, मार्केट की बात करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना था।
3: ऐसे सवाल मुझे डिस्टर्ब ही नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड्स की कोई भी बात हो ना, मैं शांति को साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड में आपकी शांति और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस दोनों बनी रहनी चाहिए। अपने लॉन्ग टर्म गोल से फोकस हटाने का
4: नहीं,
3: और म्यूचुअल फंड से सही।
5: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़े।
6: Like I said before, we better hold the sins.
7: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके।
8: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
9: इसमें माइक्रोफाइबर है।
8: माइक्रोफाइबर यानी
9: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
8: हमारे सीमेंट में नहीं है?
9: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
10: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
11: कुछ भी खा नहीं पा रहा हूँ, बहुत अपसेट हूँ।
12: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
13: लायन डेट नट बाइट्स।
7: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, जेके मसाले, जहाँ स्वाद वहाँ जेके।
14: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
16: इन एसोसिएशन विद
17: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।
18: और वही कहाँ गए थे घूमने?

0: Grab some friends and an ice-cold Mountain Dew today.
1: Mountain Dew!
2: Hey, it's Billy Bush. Tune into my show, Hot Mics, Monday to Thursday at noon Eastern, 9 a.m. Pacific for the latest in politics, entertainment, tech, sports, pop culture, and much more. Just tell your device to play Hot Mics on TuneIn to listen.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
4: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
5: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
6: जेके मैक्स बेस्ट पुट्टी
5: जेके वॉल मैक्स
6: बेस्ट पेंट
5: जेके मैक्स
6: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स जेके मैक्स पेंट्स खुशियों के रंग
7: सर म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे एक सवाल पूछना था
8: सॉरी सर मार्केट की बात करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना था
9: ऐसे सवाल मुझे डिस्टर्ब ही नहीं कर सकते म्यूचुअल फंड्स की कोई भी बात हो ना मैं शांति को साथ रखता हूँ म्यूचुअल फंड में आपकी शांति और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस दोनों बनी रहनी चाहिए अपने लॉन्ग टर्म गोल्स से फोकस हटाने का नहीं और म्यूचुअल फंड से सही
10: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़े
11: Director, the taste of success.
12: JK मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद JK मसाले जहां स्वाद वहां JK
13: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं
14: इसमें माइक्रोफाइबर है
13: माइक्रोफाइबर यानी
14: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत
13: हमारे सीमेंट में नहीं है
14: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है
15: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़ ड्यूरागार्ड सीधी बात है ड्यूरागार्ड खास है
16: कुछ भी खा नहीं पा रहा हूँ बहुत अपसेट हूँ
17: No added sugar, preservative के बिना डेट्स बादाम पिस्ता काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स
18: लायन डेट नट बाइट्स
19: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश
20: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं
21: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था एनटीए को पता नहीं
19: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर
22: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ
20: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ एनटीए जागी पेपर रद्द हुआ हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है खबरदार किया है हर दल की सरकार को जगाया है बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा
19: जहाँ खबर वहाँ खबरदार
23: In association with
24: Monte Carlo, it's the way you make me feel.
25: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
26: आज तक ला रहा है आपके लिए वीडियो वाला पेपर. हर रोज सुबह आपके मोबाइल पर, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले. इसे पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर e-paper.aajtak.in टाइप करें, या फिर स्क्रीन पर दिए हुए QR कोड को स्कैन करें.
27: पत्रकारिता के गुर यहां नहीं सीखे तो क्या सीखे नाम ही काफी है इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें
28: यू एंड आई हैव नोन ईच अदर नाउ फॉर
0: a long time. In fact, the longest relationship of our two countries that any president and president has had. And that's, to me, an honor. We've had a fantastic relationship. We've gotten along. When there were difficulties, we worked it out. I would call you, and you would call me. And whenever we had a problem, people don't know, whenever we had a problem, we worked that out very quickly. We're going to have a fantastic future together. Such respect for China, the job you've done. You're a great leader. I say it to everybody. You're a great leader. Sometimes people don't like me saying it, but I say it anyway because it's true. I only say the truth.

नीट पेपर लीक के बाद थोड़ी ही देर में अब उम्मीदें की जा रही है कि शिक्षा मंत्री मीडिया को ब्रीफ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नीट की दोबारा परीक्षा को लेकर दे सकते हैं और जानकारी। ना नीट पेपर लीक कांड पर वो लगातार निशाने पर रहे हैं। अब तक उन्होंने इस मामले में कोई बयान नहीं दिया है। कल देर रात उन्होंने हाई लेवल मीटिंग जरूर की थी जिसमें शिक्षा सचिव उनके साथ थे, लेकिन उनकी तरफ से कोई बयान अब तक नहीं आया है। अब जबकि 21 जून की तारीख तय कर दी गई और उसका ऐलान कर दिया गया है, तो उम्मीद यही है कि कुछ ही पलों बाद धर्मेंद्र प्रधान मीडिया से मुखातिब होंगे और वो ज्यादा जानकारी देंगे इस रीटेस्ट को लेकर। नीट पेपर लीक की जांच फिलहाल जारी है। अब तक 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस बीच परीक्षा की नई तारीखें भी आ गई। 21 जून को फिर से नीट की परीक्षा होगी। इस बीच सरकार का एक्शन भी शुरू हो गया है। उधर नीट पेपर लीक मामले में बढ़ते आक्रोश के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर देर रात एक अहम बैठक हुई है जिसमें शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक करीब 2 घंटे तक चली इस बैठक में नीट परीक्षा के तमाम पहलुओं पर चर्चा हुई है। इस बीच लगातार एजेंसियां नीट का पेपर लीक करने वाले लोगों पर शिकंजा कस रही हैं और अब नई तारीख 21 जून की तय कर दी गई है।

0: गुस्से में है छात्र, नीट पेपर लीक को लेकर दिल्ली से संभाजी नगर तक ये गुस्सा नजर आ रहा है। नीट पेपर लीक मामले में बढ़ते आक्रोश के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर देर रात अहम बैठक बुलाई गई। उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी, माध्यमिक शिक्षा सचिव संजय कुमार, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह, केंद्रीय विद्यालय संगठन के अध्यक्ष राहुल सिंह और नवोदय विद्यालय समिति और केंद्रीय विद्यालय संगठन के आयुक्त समेत दूसरे तमाम बड़े अधिकारी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक करीब दो घंटे तक चली इस बैठक में नीट परीक्षा के तमाम पहलुओं पर चर्चा हुई। हालांकि बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। नीट पेपर लीक मामले में एनटीए आरोपों के घेरे में है। 22 लाख से ज्यादा मेडिकल उम्मीदवारों का भविष्य दांव पर है। परीक्षा की नई तारीख का ऐलान अब तक नहीं हुआ है। एनटीए ने परीक्षा रद्द होने के 7 से 10 दिन में दोबारा परीक्षा कराए जाने का आश्वासन दिया था। इस बीच नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई एक्शन में है। पिछले 24 घंटे में देश भर में सीबीआई ने 14 जगहों पर छापेमारी की है। महाराष्ट्र से दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अहिल्यानगर से धनंजय लोखंडे और पुणे से मनीषा वाघमारे को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र के लातूर से सीबीआई ने एक रिटायर प्रोफेसर और नीट एग्जाम काउंसलर को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। लातूर के एक निजी कोचिंग सेंटर पर भी सीबीआई ने छापा मारा। इसके पहले पुलिस ने लातूर में 6 लोगों से पूछताछ भी की थी। कल एक्शन राजस्थान के जयपुर में भी हुआ है। नीट पेपर लीक में पकड़े गए जमवाराम गढ़ दिनेश और मांगीलाल बेवाल के घर जांच के लिए सीबीआई पहुंची।
1: नीट पेपर लीक 2026 में गिरफ्तार आरोपी मांगीलाल दिनेश और विकास के घर सीबीआई की टीम पहुंची है। आप देख सकते हैं किस तरह से घर में पूछताछ हो रही है, जांच हो रही है। यहां आसपास जो इनके घर में गाड़ियां थी उन गाड़ियों की भी तलाशी ली गई है। इसके अलावा भी जो सामान है उन सारे सामान की भी तलाशी ली जा रही है, पूछताछ हो रही है। अब इस तरह से निकल रहे हैं। क्या आप लोगों ने देखा, कुछ पाया यहां? कुछ आप लोगों ने जांच में वो इस तरह से अभी ये सीबीआई के जो अधिकारी हैं, हालांकि ये कुछ बोल नहीं रहे हैं, मगर यहाँ पर तफ्तीश चल रही है। जो महिलाओं के फोन हैं वो भी, फोन के भी स्कैनिंग चल रही है और बाकी जो यहाँ पर कागजात हैं या जो भी सामान है उन सबकी तलाशी चल रही है।
0: नीट केस में गिरफ्तार शुभम खैरनार, मांगीराम बिवाल, दिनेश बिवाल, विकास बिवाल और यश यादव को दिल्ली की अदालत ने 7 दिनों की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। इनसे पूछताछ में और खुलासे की उम्मीद है। जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।
2: महाराष्ट्र में नीट पेपर लीक मामले में नया एंगल सामने आया है जिसने जांच एजेंसियों को सतर्क कर दिया है। नासिक से गिरफ्तार आरोपी शुभम खैरनार का कंसल्टेंसी दफ्तर भी अब सवालों के घेरे में है, जिसके जरिए सिर्फ मार्गदर्शन का दावा किया जा रहा था, लेकिन अब आशंका जताई जा रही है कि इसके जरिए संगठित तरीके से परीक्षा में गड़बड़ी की साजिश रची जा रही थी।
3: डॉक्टर शुभम खैरनार जो कि नीट पेपर लीक केस का मुख्य आरोपी और वही कड़ी कही जा रही है जिसने ये पेपर लीक किया। आपको बता दें कि ये देख रहे हैं आप मेरे पीछे एस आर एजुकेशन कंसल्टेंसी, ये डॉक्टर शुभम खैरनार की कंसल्टेंसी है और इसमें लिखा है वी हेल्प स्टूडेंट्स फॉर करियर, अवर सर्विसेज MBBS, BAMS, BDS, BHMS और UGPG कोर्सेज। ये बच्चों को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए मदद करा रहा था और आप देख सकते हैं कि ये नासिक के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में अपना ऑफिस चला रहा था। शुभम खैरनार का ये कहना था कि वो प्रैक्टिस कर रहा था, वो खुद थर्ड ईयर का स्टूडेंट है, पर यहाँ पर उसने बोर्ड लगाया हुआ है जिसमें वो दिखा रहा है कि वो एक डॉक्टर बन चुका है। आपको एक और बोर्ड दिखाते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है
4: यह ठिकाने आपन सर वही
3: डॉक्टर एडमिशन कोर्सेस गाइडेंस मैनेजमेंट एंड सपोर्ट, ये तीनों भी चीजें यहाँ पर मेंशन की है और इस ही एजेंसी के थ्रू वो एडमिशन करवा रहा था बच्चों के और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए एक कंसल्टेंसी चला रहा था। शुभम खैरनार अब सीबीआई की गिरफ्त में है, उसके तार धनंजय लोखंडे, मनीषा वाघमारे से जुड़े हैं, पर ये आप देख सकते हैं कि ये आज तक का पहला खुलासा है कि यहाँ पर एक एसआर एजुकेशन कंसल्टेंसी नामक कंसल्टेंसी डॉक्टर शुभम खैरनार जो आरोपी है नीट पेपर लीक केस का वो चला रहा था। कैमरा पर्सन आशीष धुमापुरकर के साथ दिलेश सिंह नाशिक आज तक।
2: और इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी जयपुर से शरद कुमार हमारे साथ हैं और नासिक से दिव्येश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, शुरुआत आपसे करते हैं। हालांकि अब ऐसा लग रहा है कि सोर्स या स्रोत लीक का कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में है, लेकिन सीकर या राजस्थान से ये पकड़ा गया और जो सबसे बड़ा गैंग या एक परिवार है वो यहीं से सामने आ रहा है। क्या पता चल रहा है इस वक्त इसके बारे में? और दूसरा, बच्चों की तरफ से वहां पे क्या कहा जा रहा है नई तारीख को लेकर?
1: देखिए, नई तारीख को लेकर बच्चे तो खुश हैं क्योंकि पढ़ाई जो है वो कर रहे थे, बीच में गैप आ गया था, जल्दी आ जाए तो बेहतर है, वो भी मान रहे थे। जिनकी तैयारियां अच्छी थी, जिनका पेपर अच्छा गया था, तो निश्चित रूप से खुश हैं, वो इंतजार कर रहे थे। ऊहापोह में रहना ठीक नहीं रहता है। अब 3 मई की तारीख तो इनको बहुत दिनों से पता था, 21 जून की तारीख के बारे में असमंजस में थे, वो आ गया। लेकिन देखिए, जहां तक आप जांच की बात कर रही हैं अंजलि, इसमें जो मुख्य मुद्दा है वो सीबीआई को तलाशना है कि कहां से लीक हो रहा था, एनटीए से कहां से इंफॉर्मेशन जा रहा था, कहां वो छेद है जिसकी वजह से जहां से वो पेपर निकल रहा था, और बेनिफिशियरी कौन है, एंड कौन है। कोचिंग माफिया देश भर में फैले हुए हैं, क्या वो सारे बेनिफिशियरी हैं? क्योंकि देखिए, सीकर से यह पेपर निकला है तो बिहार भी गया है, आंध्रा भी गया है, तेलंगाना भी गया है, जम्मू कश्मीर भी गया है। और जिस यश और खैरनार की बात कर रहे हैं अंजलि, ये तो आयुर्वेद से पढ़ाई कर रहे हैं, अगर इन्हें पेपर मिला होता तो ये खुद भी डॉक्टर होते। तो आप ये समझिए कि ये कुरियर हैं, सारे जितनी कंसल्टेंसी की नाम हम लोग ले रहे हैं, ये वो सही कह रहा है, दिनेश बिवाल सही कह रहा है, उसके परिवार वाले सही कह रहे हैं कि बड़े लोगों को पकड़ो, हम तो छोटे हैं। ये कुरियर हैं, ये कंसल्टेंसी वाले, ये पेपर लीक नहीं करने वाले हैं, ना ही पेपर बेचने वाले हैं। ये तो ठीक है, ये लालच में आकर इसने अपने पूरे परिवार को डॉक्टर बना दिया। और इस बार भी बड़ा दिलचस्प मामला है अंजलि, ये पेपर निकला कैसे, जो उसका दिनेश का छोटा बेटा है ऋषि, जो इस बार परीक्षा दे रहा था, वो ग्रेस मार्क से पास हुआ है 12th में और 43% लाया था 10th में, वो पेपर ले गया था डॉक्टर बनने के लिए, 107 नंबर का ही लिख कर लाया, बाप ने 600 नंबर का पेपर दे दिया था, लेकिन वो पढ़ने वाला नहीं था, वो पेपर बेचने लगा सीकर में, जिसकी वजह से खुलासा हुआ। तो सेट पैटर्न जो नेटवर्क का था, वहां से नेटवर्क में एक व्यक्ति डेविएट होता है तो ये खुलासा होता है, वरना तो ये कई सालों से चल रहा था। मुख्य काम है कि एंड कहां है और लास्ट बेनिफिशियरी, वो फर्स्ट कहां है और एंड कहां है, बीच के सारी कड़ियों का कोई मतलब नहीं है।
2: जी बिल्कुल, और इसी से जुड़ी बड़ी खबर यही है कि जो बिवाल परिवार है उसके पास पिछले साल भी ये पेपर आ गया था, 2025 का पेपर उनके परिवार वालों के पास पहले से ही था। ये पूछताछ में सामने आया है, 5 लोगों को उनके परिवार के ये पेपर मिल गया था। उसके बाद ये भी खबर आई है पूछताछ के जरिए कि ये पेपर आगे उनके परिवार के बच्चों द्वारा बेचा भी जा रहा था। तो 65 लाख रुपए विकास बिवाल ने लिए थे। तो नीट पेपर लीक को लेकर बड़ा खुलासा, और प्रगति जो कि बिवाल परिवार की लड़की जो पढ़ाई कर रही है इस वक्त, वो भी इस वक्त छुट्टी लेकर अपने कॉलेज से गायब है। तो विकास और प्रगति, इस परिवार के 2 बच्चे जो खुद MBBS के एग्जाम में बैठे और पास किया। साथ ही इसके हमें महाराष्ट्र जो खबर आ रही है वो ये कि महाराष्ट्र नेटवर्क के जरिए ये पेपर लीक हुआ था। तो तार देखिए कितने राज्यों से जुड़े हुए हैं। बिवाल परिवार जो राजस्थान का है, लेकिन कहीं ना कहीं शुभम खैरनार भी है जो महाराष्ट्र का है। कहा यह जा रहा है कि कहां से ये पेपर लीक हुआ, ये कहीं ना कहीं अब महाराष्ट्र तक पहुंच रहा है। तो चलिए महाराष्ट्र का ही रुख करते हैं, नासिक, जहां पर हमारे सहयोगी दिव्येश सिंह मौजूद हैं। बड़ा सवाल यही उठता है दिव्येश, जो कि शरद भी कह रहे हैं कि सोर्स ढूंढना ज्यादा जरूरी है, किसने खरीदा, किसने आगे बेचा, ये तो होता ही रहेगा और शायद वही पकड़े जा रहे हैं, लेकिन लीक किसने किया, किसके हाथ में ये पेपर था, सवाल थे जिसने ये लीक किया, ये ढूंढना सबसे जरूरी है।
4: बिल्कुल अंजलि, ये सोर्स, ये जो कड़ी है, जो पिन पॉइंट सोर्स है, जहां से ये पेपर लीक हुआ, जहां से ये गेस पेपर निकला जिसमें 600 मार्क के सवाल थे, ये पेपर किसने लीक किया, क्या एनटीए का कोई कर्मचारी शामिल है, क्या एनटीए या कोई ट्रांसपोर्टर शामिल है, क्या एनटीए का जो पेपर सेट किया जाता है, सेट करने वाले जो टीम होती है, जो प्रोफेसर्स की टीम होती है, क्या उसमें से कोई शामिल है? क्योंकि आपको बता दें कि महाराष्ट्र के लातूर में भी एक इंक्वायरी चल रही है, फिर बताऊंगा कि लातूर में अभी इंक्वायरी चल रही है, केस रजिस्टर नहीं हुआ है, पर वहां पर भी एक इंक्वायरी चल रही है। वहां पर एक रिटायर्ड प्रोफेसर है, उनसे पूछताछ कल सीबीआई की टीम ने की है, पर उन पर अभी केस दर्ज नहीं हुआ है, सिर्फ पूछताछ की है, शक के एक कंप्लेंट आई थी और शक के वजह से उनसे पूछताछ की गई है। अन्य कड़िया जो है वो काउंसिलर्स और कंसल्टेंसी पर जा रही है। ये जो काउंसिलर्स का नेटवर्क है, शुभम खैरनार डॉक्टर मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है पर वो कंसल्टेंसी चला रहा है। धनंजय लोखंडे डॉक्टर नहीं बन पाया, वो भी कंसल्टेंसी चला रहा है। मनीषा वाघमारे वो भी कंसल्टेंसी चला रही है। ये सारे ही लोग कंसल्टेंसी चला रहे हैं, काउंसिलिंग कर रहे हैं और बच्चों को मेडिकल परीक्षा के लिए तैयार कर रहे हैं या मेडिकल एडमिशन दिलाने के लिए तैयार कर रहे हैं। उसी में ये शॉर्टकट है।
2: बिल्कुल दिवेश, उम्मीद यही कर रहे हैं कि इन्हीं कड़ियों को जोड़ते जोड़ते कहीं ना कहीं स्रोत तक इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज पहुंच जाए। लेकिन नीट पेपर लीक मामले में अब तक 7 गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसमें से 3 महाराष्ट्र से ही हैं। माना यह जा रहा है कि इन आरोपियों से पूछताछ में कई और नामों का खुलासा हो सकता है।
5: नीट पेपर लीक के खुलासे के बाद जांच एजेंसियां एक्शन में हैं, सरकार मंथन कर रही है। तफ्तीश के बीच पेपर लीक से जुड़ी एक एक कड़ियां सामने आ रही हैं। यूं तो पेपर लीक के इस नेटवर्क के तार कई राज्यों से जुड़े हैं, कई शहरों में इसकी साजिश की सबूत मिल रहे हैं, लेकिन इस केस में अब तक सबसे ज्यादा किरदार उसी महाराष्ट्र से सामने आए हैं, जहां से नीट पेपर लीक की शुरुआत मानी जा रही है। अब महाराष्ट्र से ही इस केस में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और इन गिरफ्तार के बीच कुछ और किरदारों की तलाश की जा रही है। मामले में सबसे पहले शिकंजा शुभम खैरनार पर कसा था। बताया जा रहा है कि उसे पेपर पुणे से मिला, जिसे उसने गुरुग्राम के यश यादव को दिया और उसके पास से नीट का पेपर विवाल परिवार तक पहुंचा। इसके साथ महाराष्ट्र से धनंजय लोखंडे, मनीषा बाघमारे को भी इस केस में गिरफ्तार किया गया है। शुभम खैरनार खुद मेडिकल का छात्र है और एक डॉक्टर का बेटा है। वहीं धनंजय लोखंडे का भाई एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर है, जबकि मनीषा वाघमारे के पति डेंटिस्ट है। सीबीआई की टीम लगातार आरोपियों के ठिकानों से छापेमारी कर रही है, इनके जरिए नेटवर्क के और सदस्यों पर शिकंजा करने की कोशिश में लगी है।
6: नीट एग्जाम्स में जिस मनीषा वाघमारे का नाम आया था, उन्हीं के बिल्डिंग में हम खड़े हैं। इसी बिल्डिंग में जो कातरस के नजदीक है, वही वो छठे माले पर रहती है। हमने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उनके घर पे किसी ने दरवाजा नहीं खोला। आपको हम दिखाना चाहते हैं कि उनके जो डेंटिस्ट पति है, ये उनका नाम है, और यहीं इससे पहले भी मनीषा वाघमारे खुद रहती थी, जिसका नाम अभी लोखंडे के साथ जुड़ा हुआ है, और ये दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में थे, उनके टेलीग्राम पे चैट्स हुए थे। और सबसे अहम बात यह है कि पुलिस को अब अलग अलग, सीबीआई को अलग अलग 21 अकाउंट्स मिले हैं, जिस अकाउंट्स में अब दिखाई दे रहा है कि उन दोनों के कुछ ट्रांजैक्शंस हुए थे, और एग्जैक्टली नीट एग्जाम के पहले ही ये सब कुछ ट्रांजैक्शन सामने आए हैं। इसलिए अब जांच चल रही है कि मनीषा वाघमारे का इसमें एग्जैक्टली रोल क्या था।
5: सीबीआई ने एक दिन पहले महाराष्ट्र के लातूर के एक मेडिकल कॉलेज की रिटायर्ड फैकल्टी को इस केस में हिरासत में लिया है। सीबीआई इस बात का पता लगाने में जुटी है कि महाराष्ट्र से गिरफ्त में आए इन आरोपियों को किसने पेपर दिया, वो कौन शख्स था जिसने पहली बार 30 लाख रुपए में पेपर बेचा। जिस परीक्षा के लिए 22 लाख से अधिक बच्चे दिन रात एक कर देते हैं, उस हाई डिमांड एग्जाम पेपर तक यूं ही कोई नहीं पहुंच सकता। सीबीआई के सूत्रों का मानना है कि नीट पेपर की हार्ड कॉपी पुणे से लीक हुई। एजेंसियों को शक है कि एनटीए के अंदर भी कुछ गड़बड़ है और ये सघन जांच की मांग करती है। नीट पेपर लीक मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी लगातार जारी है। आरोपियों से पूछताछ के आधार पर जांच और तेज हो रही है। नीट परीक्षा में गड़बड़ी कर छात्रों के भविष्य से खेलने वालों पर कड़े एक्शन की तैयारी हो रही है। ओंकार वाबले के साथ आज तक ब्यूरो।
2: और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
7: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
9: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
10: एकजे, द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया। Looking for an app to hear all your favorite music, news, sports, and more? We've got all your audio all in one place right here on TuneIn. Play your favorite stations like Que Buena.
11: La Que Buena.
10: ESPN Radio.
12: We know LeBron has to be the best player on the planet to get
10: The Daily.
13: From the New York Times, I'm Katrin Benhold, and this is The Daily.
10: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
14: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.

0: मांगीलाल बिवाल, दिनेश बिवाल, जयपुर के जम्बारागढ़ के इन दो भाइयों का नाम आज देश भर के लोगों की जुबान पर है। वजह, नीट पेपर लीक कांड। नीट पेपर लीक की जांच में अब तक जो खुलासा सामने आया है उसने जम्बारामगढ़ का बिवाल परिवार चर्चा में आ गया है। जांच के दौरान खुलासा हुआ है कि 2025 में परिवार के चार बच्चे नीट में सेलेक्ट हुए और इस साल एक और बच्चे ने नीट का पेपर दिया और उसी के लिए मांगीलाल और दिनेश बिवाल ने गुरुग्राम के यश यादव से 30 लाख रुपए में लीक पर्चा खरीदा था। मांगीलाल और दिनेश गिरफ्तार हो चुके हैं जबकि नीट की पेपर देने वाला परिवार का बच्चा अंडरग्राउंड है। इस खुलासे के बाद सवाल उठ रहा है कि बीते साल परिवार के चार बच्चों का नीट में पास होना महज इत्तफाक है या फिर चारों का सिलेक्शन पेपर लीक की वजह से हुआ था। आज तक संवाददाता शरद कुमार जब जम्बारामगढ़ में पेपर लीक कांड में गिरफ्तार बिवाल परिवार के घर पहुंचे तो मुलाकात आरोपी दिनेश की पत्नी रजनी और उनके केयरटेकर से हुई। रजनी ने आज तक के कैमरे पर कबूल किया कि चार बच्चों ने पिछले साल नीट की परीक्षा पास की थी।
1: पिछले साल भी नीट में पास हुए हैं?
2: हाँ हुए ना।
1: कितने लोग?
2: चार लोग।
1: चार लोग?
2: हाँ।
1: तीन लड़कियां और एक लड़का?
2: हाँ।
1: वो किसके थे?
2: ये मेरी बहन के और मेरे जेठ के।
1: मांगीलाल जी के?
2: हाँ।
1: उनको भी साथ में ले गए हैं दिनेश के?
2: कहाँ?
1: एसओ जी?
2: मुझे पता नहीं है मैडम।
1: वो भी, वो उनसे कब मिली थी आप?
2: मुझे पता ही नहीं है कब मिली थी मैं तो।
0: दिनेश बिवाल और उसका बड़ा भाई मांगीलाल नीट पेपर लीक कांड से जुड़े अहम किरदार हैं। आरोपी दिनेश की पत्नी रजनी ने आज तक के कैमरे पर कबूल किया कि बीते साल हुई नीट की परीक्षा में परिवार के चार बच्चे सेलेक्ट हुए थे।
3: अभी एनटीए ने नीट यूजी का नई परीक्षा की तिथि घोषणा किया है। 21 जून को री एग्जामिनेशन की डेट घोषणा की है। मित्रों, मैं दो तीन विषय आपके सामने, आपके माध्यम से देशवासियों के सामने, स्पेसिफिक स्टूडेंट्स और उनके अभिभावकों के सामने रखना चाहता हूं। हमारी सर्वोपरि प्राथमिकता है छात्रों की भविष्य, उनकी परिश्रम के प्रति संवेदनशीलता सरकार की सदैव है। 3 मई को एग्जामिनेशन हुई, 7 मई तक एनटीए को, एनटीए की ग्रीवेंस रिजिस्ट्रेशन सिस्टम पे कहीं से आपत्ति आई, गेस पेपर में ऐसे कुछ प्रश्न आए हैं जो इस बार की क्वेश्चन शीट्स में था। तुरंत ही हम लोगों की वहाँ चर्चा हुई, एनटीए ने और सरकार ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तुरंत उसको प्रारंभिक थोड़ा इंक्वायरी किया, एजेंसियों को दे दिया, भारत सरकार की एजेंसियों को दे दिया। भारत सरकार एजेंसी संबंधित 2-3 राज्यों के साथ जुड़ा हुआ विषय था प्रथम दृष्टिया में, राज्यों की एजेंसियों से संपर्क किया और 12 तारीख तक, यानी 8 को सुबह प्रक्रिया एक प्रकार से, 7 रात को शुरू हुई, 8 को ही शुरू हुई, 8, 9, 10, 11 3-4 दिन में जब हमको स्पष्टता हुई, हम कंफर्म हुए हैं कि इस बार गैस पेपर की आड़ पे क्वेश्चंस बाहर गया है, हम 12 तारीख को छात्रों के हितों में, हम नहीं चाहते थे कोई गलत कैंडिडेट एजुकेशन माफियाओं के षड्यंत्र से कोई भी सही छात्र के अधिकार वंचित हो जाए, इसीलिए हम बड़ी जिम्मेवारी के साथ, हमने कहा था हम जीरो टॉलरेंस की अप्रोच में चलते हैं। हमने पिछले बार जो विसंगति आई उसमें जो हमने राधा कृष्णन कमिटी गठन हुई थी, पिछले 25 और 26 दोनों साल हमने राधा कृष्णन कमिटी को शब्दशः इम्प्लीमेंट किया, उसके बावजूद भी ये दुर्घटना हुई। इसलिए हमने पहला, हमारे निर्णय हुआ कि हम परीक्षा को इस बार रद्द करते हैं। हमने 12 तारीख को परीक्षा को रद्द किया। स्वाभाविक देश में और विशेष करके स्टूडेंट्स में उसको लेके 2 प्रकार के मत आए, हम दोनों प्रकार के मतों को स्वीकार करते हैं, हम अपना दायित्व उसको मानते हैं, उसको कैसे समाधान की रास्ता निकाले। और आज हमने 15 हमने आज नई तिथि के साथ आ रहे हैं, लगभग आज से एक महीने से थोड़ा एक दो दिन के बाद नई परीक्षा होगी। हमारी अप्रोच वही रहेगा, हम जीरो टॉलरेंस टू माल प्रैक्टिसेस, ये एक लंबी लड़ाई है परीक्षा माफियाओं के साथ साथ जो एंटी सोशल एलिमेंट अभी मित्रों टेक्नोलॉजी के समय में एक नई चुनौती बढ़ रहा है। विभिन्न प्रकार की सोशल मीडिया हैंडल से भ्रमात्मक तथ्यों को रखा जाता है, गुमराह करने की फिर कोशिश किया जाता है, फिर रीनीट की हम लोग एग्जामिनेशन तोड़ सकते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था को खुली चुनौती दिया जा रहा है। ये सारे को ध्यान में रखते सरकार ने तुरंत सीबीआई को काम सौंपी है। सीबीआई ने त्वरित कार्रवाई शुरू किया है, इस बार सीबीआई तह तक जाएगी, कहां वो कमांड चेन पे ब्रीच हुई है, राधाकृष्ण कमेटी को पूरा पालन करने के उपरांत भी कहां वो ब्रीच हुई है, उस ब्रीच को मेरा पूरा विश्वास है सीबीआई के ऊपर और जो संबंधित एजेंसी उनके साथ काम करे, सरकार की पूरी माइटी, सरकार की पूरा नेतृत्व, सभी विभाग उसमें से गंभीरता चीज को लेते हुए शीर्ष तो नेतृत्व उसके लिए खूब दायित्व लिया है, चिंता कर रहा है। हम इस बार माल प्रैक्टिस होने नहीं देंगे। जो भी दहशतगर्द घूम रहे हैं उनको मैं आपके माध्यम से विषय रखना चाहता हूं, आने वाले एग्जामिनेशन पे उसे निवृत्त रहे, नहीं तो उनको दंड भुगतना पड़ेगा। और मैं समाज को अपील करना चाहता हूँ, विशेष करके सभी विद्यार्थियों का, कोई निर्भय होकर परीक्षा में, आप ही सरकार आप ही के साथ है, आप ही के हितों में मेरिटियस स्टूडेंट्स की मेधावी छात्रों के पक्ष में निर्णय लिया गया है। मैं फिर कहूँ हम नहीं चाहते थे कोई माफिया की षड्यंत्र से कोई मनी बैग आपकी सीट को छीन ले, हम नहीं होना देना चाहते थे। इसीलिए हमने एक कठोर, हमको बहुत एक अभिभावक के नाते, एक दायित्व में रहने वाले अधिकारियों के नाते और मंत्री के नाते, हम सब उसमें से बहुत, जो घटना हो रही है उसमें से बहुत दुखी और चिंतित हैं, लेकिन हमें बड़े लक्ष्य को लेकर देश के हितों में हमें कठोर निर्णय लेना पड़ा है। हमको छात्रों को भरोसा सर्वोपरि है। मैं फिर दो तीन जो सुधार अभी इस बीच में एनटीए की पास और मिनिस्ट्री के पास और मेरे जैसे व्यवस्था तक अनेक सुझाव आए हैं, अनेक सुधार की सुझाव हैं, और सुधार मैं मानता हूँ एक कंटिन्यूस विषय है, सुधार कोई अल्टीमेट नहीं होती है। सुधार जो हम ओपन माइंड में एनटीए उस विषय में, अभी तो एनटीए बहुत योग्य व्यक्ति के हाथ में है, हमारे सचिव की बहुत अनुभव भी उस विषय में है। मैं मानता हूँ हमें एनटीए को सुप्रीम कोर्ट की आदेश कारण एनटीए बनी है। एनटीए हर एक साल 1 करोड़ बच्चों की एग्जामिनेशन कराती है अमूमन। एनटीए और निर्भुल हो, एनटीए में जीरो एरर हो, जीरो यानी जीरो एरर हो, ये हमारी दायित्व है और बाहर भारत की व्यवस्था उसको करके रहेगी। इसलिए हम ओपन माइंड पे इस परीक्षा को भी जा रहे हैं। मैंने जैसे दो तीन पहला ही नोटिफिक जिस दिन परीक्षा कैंसिल के दिन एनटीए ने एक निर्णय तुरंत कहा था कि हम जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे। हम उसमें एनटीए वचनबद्ध है और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी जीरो फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए, हम उसकी दायित्व ले रहे हैं। हमने एक बहुत जो शहर में विद्यार्थी परीक्षा देता है, एक बार एनटीए विस्तार से एनटीए एनेक्सर आपको देगा, कोरिनियम आपको आगे देगा डिटेल, शाम तक आपको एक, फिर एनटीए के पब्लिक बने प्रेस नोट के माध्यम से। लेकिन प्रथम दृष्टया जो एनटीए ने तय किया है कि हम एक सप्ताह विद्यार्थियों को अपने पसंद का शहर, क्यों कोई विद्यार्थी कहीं परीक्षा दिया होगा पिछले बार, वो परीक्षा देने के बाद उस शहर से छोड़ा भी होगा, फिर हम एक बार विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं, ये विंडो खुला रहेगा। और एक विषय आई थी कि परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी, जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाएं, 2 से शुरू होगा 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। एडमिट कार्ड, इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा। पिछले बार भी जो परीक्षा हुई, अनेक राज्यों ने अपने राज्य के विद्यार्थियों को परिवहन की व्यवस्था किया था, अनेक राज्यों ने किया था, अनेक राज्य नहीं किए थे, अनेक राज्य किए थे। हम भारत सरकार की ओर से हम बात करेंगे और मैं भी खुद बात करूंगा माननीय मुख्यमंत्रियों से, इस बार नीट की परीक्षा के समय में विद्यार्थियों के आवागमन में और कितना कम बोझिला करना पड़े उसकी दायित्व हम लेंगे। और उस समय में जून में बहुत देश की बहुत सारे राज्यों में थोड़ा मौसम का भी परिवर्तन हो चुका होगा, बारिश भी आ चुका होगा, इसको भी एनटीए फैक्टर इन कर रहा है अपने योजना में, इसको कैसे हम लोग क्या ऑल्टरनेटिव व्यवस्था किया जाए, परीक्षा तो होगा लेकिन मौसम खराब रहने से क्या करना है उसका भी हम पहले से इन एडवांस प्लानिंग हम कर रहे हैं। मित्रों, मैं फिर आपको आश्वस्त करता हूँ, विशेष करके विद्यार्थियों को मैं फिर एक बार अपील करना चाहता हूँ।

0: से होगी।
1: सर एक प्रश्न ऐसा है कि विपक्ष ने इसमें राजनीतिक आरोप किए हैं कि भाजपा से जुड़े हुए लोगों ने ये पेपर से धांधली की है।
0: मैं उसके उत्तर विनम्रता से नहीं देना चाहता हूँ, ये विषय राजनीतिक है ही नहीं। मैंने कहा एक सामाजिक व्याधि है, इस सामाजिक व्याधि से समाज को मुक्त रखना पड़ेगा, सभी की दायित्व है, मेरा भी दायित्व है, सभी राजनीतिक पार्टियों की दायित्व है।
2: एक सवाल भी रहा है सर, क्योंकि 2024 में भी इसी तरीके की खबरें आई थी, क्या एनटीए के मैकेनिज्म में सुधार की गुंजाइश है, सुधारने की जरूरत है अभी?
0: हाँ, निश्चित रूप में एनटीए को और सुधारने की आवश्यकता है, उसको हमने गंभीरता से लिया। 24 की जो लूफल्स आई थी, 24 की लूफल्स को इस बार हमने पूरा पैक किया था, पूरा ठीक किया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये फिर घटना हुई है, इसलिए एनटीए में निश्चित रूप में और सुधार की आवश्यकता है, इसको सुधार किया ही जाएगा।
3: सर सीबीआई के रिमांड नोट में बहुत स्पेसिफिकली मेंशन किया गया कि एनटीए से जुड़े हुए लोगों के लिंक्स को भी प्रूव किया जाएगा इस बार। पिछली बार ये कहा गया था कि जो मतलब ग्राउंड लेवल का जो छोटा स्ट्रक्चर था, सीबीआई ने जांच वहीं तक करके छोड़ दी थी। इस बार क्या आपका रिएक्शन है जो रिमांड नोट में सीबीआई ने बात कही है उस परिप्रेक्ष्य?
0: सीबीआई ने सही कहा है, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, वो एनटीए के अंदर हो, बाहर हो, कोई भी हो, किसी को स्पेयर नहीं किया जाएगा।
4: सर मेरा सवाल है कि जब ऑनलाइन अगर परीक्षा होती तो आपको लगता है कि इसमें एरर नहीं होगा, ये एकदम आप कहते
0: तुलनात्मक ओएमआर से सीबीटी थोड़ा प्रूफ है, थोड़ा प्रोटेक्टेड है, थोड़ा उसको ठीक किया जाए। टेक्नोलॉजी देखो, साइबर क्राइम तो एक बड़ा दुनिया बन चुकी है ना, इसको हम लोग सब नई दुनिया में रह रहे हैं, वो भी वहां भी चुनौती है, लेकिन हमारे देश की सिस्टम पे हमें भरोसा करना पड़ेगा और तुलना ये तो इम्प्रूवमेंट की चीज है।
5: चार बार अभी तक देखा गया है कि पेपर लीक हुआ है, हर बार आपने ये बात कही है कि जीरो टॉलरेंस रखा जाएगा, लेकिन बार बार ये चुप हो जाती है, आखिर में कहां थी?
0: नहीं, हर एक बार की नेचर बदल जाती है ना। देखो ये हम सब एक सिस्टम चलाते हैं, सरकार बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहे हैं हम चीजों को सुधारेंगे, फिर भी एक्सीडेंट होता है, उसको ठीक करना पड़ेगा।
6: सर एनटीए के स्ट्रक्चर में किस तरह का रिफॉर्म आप सजेस्ट कर रहे हैं, और जैसे परमानेंट एम्प्लॉइज नहीं है एनटीए में, कॉन्ट्रैक्चुअल बेस एम्प्लॉइज है, उनके लिए क्या करना चाह रहे हैं कि उससे लीक का चांसेस बढ़ जाते हैं?
0: मैंने कहा कि पहले सीबीआई को अपने काम को पूरा करने दो, इसके अलावा एनटीए को और मजबूत किया जाएगा।
7: सर जिस तरीके से आपका एनटीए को मजबूत किया जाएगा, लेकिन साल दर साल पेपर लीक होता है, तो क्या एनटीए जिम्मेदारी लेगा कि इस तरीके से गलती ना हो?
0: तो एनटीए ने दायित्व तो लिया है, ये सूचना एनटीए को ही आया है, 7 को एनटीए की ग्रीवेंस पोर्टल में आया है, एनटीए ने उसको छुपाया नहीं, एनटीए ने उसको संवेदनशीलता के साथ सरकार के सामने रखी, हमने हमारे नेतृत्व के सामने रखा, बाकी सिस्टम के सामने रखा, एजेंसियां तुरंत काम पे 8 तारीख सुबह से 7 तारीख रात को एजेंसियां काम शुरू कर दी है, 12 को हमने निर्णय कर लिया कैंसिल करने का, 15 को हमने निर्णय कर लिया परीक्षा करने का, सब एनटीए ने ही किया, एनटीए अकाउंटेबल है, एनटीए में जो कमियां उसको सुधारना पड़ेगा, जो भी गुनहगार है उसको परिधि में लाना पड़ेगा और एनटीए ही अकाउंटेबल होगा।
2: पेपर लीक के आरोपियों ने कहा है कि पिछले साल भी पेपर आउट था।
0: मैं कम से कम अफवाह में हम ना जाए, कोई विषय में हम अफवाह में ना जाए, हम सब जिम्मेवार, आप सब राष्ट्रीय मीडिया हो, आप सबकी दायित्व है, समाज में जो है हम कुछ भी चीज हम छुपा नहीं रहे, कुछ भी चीज हम मुंह फेर नहीं रहे, लेकिन जो विषय है असम्पशन, 20-25 लाख बच्चों की भविष्य की सवाल है, आपकी एक एक वाणी अनेकों के मन में उद्वेग खड़ा करता है, जो तथ्य है वो छुपना नहीं चाहिए, आपकी सहयोग में आपके सहयोग से हम यहाँ आए हैं, ये मीडिया ने यहाँ तक इसको लाया है, हम उसको आदर करते हैं, लेकिन हम ऐसा भी कुछ विषय ना करें जो अनावश्यक फिर एक बार तनाव खड़ा करे, प्रमाण है तो उसको चिंता करें। जो जो जो मेरे में कोऑपरेशन चाहूंगा, जो मित्र पूछ चुके हैं वो छोड़ दीजिए, जो नहीं पूछे वो पूछे।
4: सारा काम आउटसोर्स करती,
0: सुधारा जाएगा, नहीं नहीं कई चीज ध्यान में आया है, कई चीज आ रही है, आई अश्योर यू वी विल गो टू द लास्ट पॉइंट।
8: जैसे माफिया हैं, सब जानते हैं कि हर अलग अलग राज्य में सुनते हैं।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: और वही कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
5: जेके वॉल मैक्स
3: बेस्ट पेंट,
6: जेके मैक्स।
7: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
8: JK Maxx Paints.
7: JK Maxx Paints. खुशी

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
3: इसमें माइक्रोफाइबर है।
2: माइक्रोफाइबर यानी
3: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
2: हमारे सीमेंट में नहीं है?
3: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
4: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
5: सर हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है,
6: पर मार्केट की समझना बाउंसर जा रही है।
5: आप कैसे कर लेते हो?
7: मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ।
6: म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो, तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का
8: नहीं
6: और म्यूचुअल फंड्स है
8: सही।
9: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
10: करेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
11: JK मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, JK मसाले, जहां स्वाद वहां JK।
12: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
13: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है, 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
14: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, NTA को पता नहीं।
12: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
15: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
13: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
12: जहां खबर वहां खबरदार।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: पेपर लीक कांड के बाद पहली बार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया मीडिया के हर सवाल का जवाब। का 21 जून को होगी नीट की री एग्जाम, परीक्षा के लिए मिलेगा 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम, कोई फीस नहीं लेंगे।
1: अगले साल से कंप्यूटर से होगा नीट का इम्तिहान, पेपर माफिया को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार, धर्मेंद्र प्रधान का बयान। एनटीए पर कहा अभी बहुत सुधार की जरूरत।
0: देश को महंगाई का तगड़ा झटका, पेट्रोल डीजल की कीमतों में 3-3 रुपए का इजाफा, सीएनजी 2 रुपए प्रति किलो महंगी, बढ़ती महंगाई पर पूरे विपक्ष का हल्ला बोल।
1: दिल्ली में चल रहे ब्रिक्स समिट से ऊर्जा संकट के समाधान की उम्मीद, ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची से जयशंकर की मुलाकात।
0: 5 देशों की यात्रा पर रवाना हुए पीएम, यूएई, नेदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का दौरा, देश में निर्यात के लिए निर्णायक फैसलों की उम्मीद।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज एक और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम।
1: नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ। नीट परीक्षा में पेपर लीक पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहली बार मीडिया के सामने आए। धर्मेंद्र प्रधान ने माना कि गलती और चूक हुई है, लेकिन उनका ये भी कहना था कि कई बार तैयारियों के बावजूद हादसे हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें सीबीआई जांच पर पूरा भरोसा है और साथ ही उन्होंने कई वादे भी किए।
0: बेहद महत्वपूर्ण फैसले यहां पर नीट को लेकर लिए गए। उनका कहना है कि 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम इस बार परीक्षा में दिया जाएगा। कोई एक्स्ट्रा एग्जाम फी छात्रों से नहीं ली जाएगी। उनके मन मुताबिक एग्जाम सेंटर जो इन्हें सुविधाजनक हो वो दिया जाएगा। परीक्षा फीस जो री एग्जाम नहीं दे रहे हैं उनसे उन्हें वापस वो फीस दे दी जाएगी। तो परीक्षा सेंटर चयन की सुविधा छात्रों को देने का वादा।
2: अभी एनटीए ने नीट यूजी का नई परीक्षा की तिथि घोषणा किया है। 21 जून को री एग्जामिनेशन की डेट घोषणा की है। अगले साल से परीक्षा, इसकी जो मूल जड़ है ओएमआर, अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी। तुलनात्मक ओएमआर से सीबीटी थोड़ा प्रूफ है, थोड़ा प्रोटेक्टेड है, थोड़ा उसको ठीक किया जाए। टेक्नोलॉजी देखो, साइबर क्राइम तो एक बड़ा दुनिया बन चुकी है ना, इसको हम लोग सब नई दुनिया में रह रहे हैं। वो भी वहाँ भी चुनौती है, लेकिन हमारे देश की सिस्टम पे हमें भरोसा करना पड़ेगा। और तुलना, ये तो इम्प्रूवमेंट की चीज़ है। परीक्षा कैंसिल के दिन एनटीए ने एक निर्णय तुरंत कहा था कि हम जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे। हम उसमें एनटीए वचनबद्ध है, और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी जीरो फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए, हम उसकी दायित्व ले रहे हैं। हमने एक बहुत जो शहर में विद्यार्थी परीक्षा देता है, एक बार एनटीए विस्तार से एनटीए एनेक्सर आपको देगा, कोरिनियम आपको आगे देगा डिटेल, शाम तक आपको एक, फिर एनटीए के पब्लिक बने प्रेस नोट के माध्यम से। लेकिन प्रथम दृष्टया जो एनटीए ने तय किया है कि हम एक सप्ताह विद्यार्थियों को अपने पसंद का शहर, क्यों कोई विद्यार्थी कहीं परीक्षा दिया होगा पिछले बार, वो परीक्षा देने के बाद उस शहर से छोड़ा भी होगा, फिर हम एक बार विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं, ये विंडो खुला रहेगा। ये एक लंबी लड़ाई है परीक्षा माफियाओं के साथ साथ, जो एंटी सोशल एलिमेंट अभी मित्रों टेक्नोलॉजी के समय में एक नई चुनौती बढ़ रहा है। विभिन्न प्रकार की सोशल मीडिया हैंडल से भ्रमात्मक तथ्यों को रखा जाता है, गुमराह करने की फिर कोशिश किया जाता है, फिर री नीट की हम लोग एग्जामिनेशन तोड़ सकते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था को खुली चुनौती दिया जा रहा है। ये सारे को ध्यान रखते सरकार ने तुरंत सीबीआई को काम सौंपी है। सीबीआई ने त्वरित कार्रवाई शुरू किया है। इस बार सीबीआई तह तक जाएगी, कहाँ वो कमांड चेन पे ब्रीच हुई है, राधाकृष्ण कमेटी को पूरा पालन करने के उपरांत भी कहाँ वो ब्रीच हुई है, उस ब्रीच को मेरा पूरा विश्वास है सीबीआई के ऊपर और जो संबंधित एजेंसी उनके साथ काम करे, सरकार की पूरी माइटी, सरकार की पूरा नेतृत्व, सभी विभाग उसमें से गंभीरता चीज को लेते हुए शीर्ष तो नेतृत्व उसके लिए खूब दायित्व लिया है, चिंता कर रहा है। हम इस बार माल प्रैक्टिस होने नहीं देंगे।
0: अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अमित, तो क्या धर्मेंद्र प्रधान ने ये बात मानी है कि एनटीए के भीतर उनकी कार्यप्रणाली में या फिर उनके कुछ उच्च लोगों में जिनके हाथ में ये पेपर होता है, ये पूरा प्रोसेस होता है, उसमें गड़बड़ है, क्या उन्होंने ये बात साफ तौर पर मानी है कि वहां पर भी सब कुछ दुरुस्त करने की जरूरत है?
3: नया देखिए, मैंने सवाल एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान से पूछा था कि सीबीआई के रिमांड नोट में जिस तरह से बात कही गई है कि एनटीए के भी अधिकारियों पर जांच होगा और रिमांड नोट में बहुत स्पेसिफिकली इस बात को कहा गया है, तो उन्होंने कहा कि देखिए जो भी अधिकारी हो चाहे वो एनटीए से जुड़े हुए हों, इस बार इन्वेस्टिगेशन हम बहुत डीपली करेंगे और अगर एनटीए से भी जुड़े हुए लोग होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खासतौर पर इस वजह से सवाल उठ रहा है क्योंकि ये अनुमान लगाया जा रहा है, दावे किए जा रहे हैं कि 2024 में जो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन थी पेपर लीक में वो बहुत लोकलाइज्ड कर दी गई थी, इस वजह से मास्टरमाइंड तक संभवतः सीबीआई नहीं पहुंच पाई और इस बार इस वजह से एनटीए तक भी अधिकारी जो है वो जांच के घेरे में रहेंगे। धर्मेंद्र प्रधान खुद कह रहे हैं कि बचाया नहीं जाएगा, जो भी अधिकारी जांच के घेरे में आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई जो लेनी होगी वो ली जाएगी, ये शिक्षा मंत्री खुद कह रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ दो बहुत अहम बात भी है कि वो कह रहे हैं कि एनटीए को एक तरह से बैक करते हुए शिक्षा मंत्री दिख रहे हैं। आज उन्होंने कहा कि एनटीए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार गठित किया गया था, जो एग्जाम है उसको इररेगुलरिटी या माल प्रैक्टिस फ्री करने की तमाम कोशिशें सरकार और एनटीए द्वारा की जा रही है, एनटीए एक एबल लीडरशिप के अंडर है इस वक्त, ये बात भी धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है। एक बहुत अहम या ट्रांजिशन आप कह सकते हैं नेहा कि अब एनटीए में होने वाला है, नीट परीक्षा में होने वाला है, यूजी की परीक्षा में कम से कम, क्योंकि जो एचएलसी थी, हाई लेवल कमेटी थी या जो राधाकृष्णन कमेटी थी, उन्होंने हाइब्रिड मोड पर शिफ्ट करने के रिकमेंडेशंस दिए थे और अलग अलग कमिटीज की तरफ से, स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से भी इस तरह के तमाम रिकमेंडेशंस थे। सरकार की तरफ से एक मेजर ट्रांजिशन की बात अब कही गई है कि अगले साल नीट की परीक्षा जब होगी तो ओएमआर के बजाय कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि पीपीटी की जगह सीबीटी।
1: जी बिल्कुल, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। हमें तो बड़ा बदलाव जाहिर तौर पर होने वाला है, लेकिन बदलाव की जरूरत एनटीए की कार्यप्रणाली में भी है। तो क्या 2025 में भी नीट के पेपर लीक हुए थे? ये सवाल अब गंभीर हो गया क्योंकि नीट पेपर लीक में आरोपियों से पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। राजस्थान से गिरफ्तार मांगी लाल और दिनेश पहले भी नीट के पेपर बेच चुके हैं, ऐसा राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और एसओजी की जांच में सामने आया है। पिछले साल यानी 2025 में जयपुर के बिवाल परिवार के सभी बच्चे यानी कि 5 बच्चे को नीट का पेपर परीक्षा से पहले ही मिल गया था। मांगी लाल का बेटा और सवाई माधोपुर मेडिकल कॉलेज में MBBS कर रहे विकास बिवाल भी पेपर बेचने में शामिल पाया गया है। पूछताछ में पता चला है कि 2025 में 65 लाख में ये पेपर बेचा गया था।
0: वही हरियाणा का यश यादव भी सीकर में रहकर पढ़ता था, तब मांगीलाल का परिवार उसके नजदीक आया। ये महाराष्ट्र के नेटवर्क के जरिए पेपर लाते थे। जांच एजेंसियों का मानना है कि सारा खेल कोचिंग माफिया का है, पकड़े गए लोग केवल नेटवर्क का हिस्सा थे। सीकर के कोचिंग संस्थानों पर नजर रखी जा रही है, बड़े लोग कौन है जिनके लिए विवाल परिवार काम करता था, इसकी पड़ताल भी हो रही है। कहा जा रहा है कि दिनेश के बेटे ऋषि ने खुलकर पेपर बेचना शुरू कर दिया, जिसके चलते बात फैलती चली गई। आपसी कॉम्पिटिशन के चलते एक कोचिंग सेंटर ने एनटीए से शिकायत भी कर दी। हालांकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 2025 में पेपर लीक की खबर को अफवाह बताया।
4: पेपर लीक के आरोपियों ने कहा है कि पिछले साल भी पेपर आउट था।
2: मैं इस विषय कम से कम अफवाह में हम ना जाए, कोई विषय में हम अफवाह में ना जाए। हम सब जिम्मेवार, आप सब राष्ट्रीय मीडिया हो, आप सबकी दायित्व है समाज में जो है। हम कुछ भी चीज हम छुपा नहीं रहे, कुछ भी चीज हम मुंह फेर नहीं रहे, लेकिन जो विषय है ना, असम 20-25 लाख बच्चों की भविष्य की सवाल है। आपकी एक एक वाणी अनेकों के मन में उद्वेग खड़ा करता है। जो तथ्य है वो छुपना नहीं चाहिए। आपके सहयोग से हम यहाँ आए हैं, ये मीडिया ने यहां तक इसको लाया है, हम उसको आदर करते हैं, लेकिन हम ऐसा भी कुछ विषय ना करें जो अनावश्यक फिर एक बार तनाव खड़ा करे।
1: तो आइए इस पर ज्यादा चर्चा के लिए रुक करते हैं आज तक के शरद कुमार का जयपुर में। शरद, धर्मेंद्र प्रधान कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि 2025 के पेपर में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, लेकिन जो जांच है वो तो कुछ और ही कह रही है।
5: देखिए बिल्कुल उन्होंने सही कहा है कि 25 लाख छात्र जो हैं उनसे जुड़ा हुआ है मामला है और इस तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन हमारा हमारे जो सोर्स हैं जो कि 8 मई से लेकर और 12 मई तक ये जो जो गिरफ्तार हुए हैं जयपुर से वो SOG के पास रहे हैं और उस पूछताछ में उन्होंने कहा है कि पिछले साल जो 5 लोग उस परिवार से पास हुए थे उसमें इन्हें पेपर मिला था। अब ये पेपर आउट हुआ था, सिर्फ इन्हीं को मिला था, ये तो अब CBI बताएगी कि मास लेवल पर बटा था या नहीं बटा था। लेकिन 25 में इन्होंने पूछताछ में ये माना है कि जो विकास अरेस्ट हुआ है वो सवाई माधोपुर मेडिकल कॉलेज से MBBS कर रहा है, प्रथम वर्ष का छात्र है, उसने एडमिट किया है कि उसे पेपर मिला था। अब CBI उसे किस तरह से आगे बढ़ती है क्योंकि वो नेटवर्क वही है, नेटवर्क एंड क्या वो जब कह रहे हैं कि हम NTA की जांच, NTA को भी संदेह के घेरे में रहते हुए CBI ने कहा है तो वो कह रहे हैं कि सभी की जांच करेंगे हम, तो पहले दिन ही CBI का जब प्रेस नोट है उसमें कहा जा रहा है कि NTA भी जांच के घेरे में है, तो वो SOG ने जो 4 दिन जांच की थी उसी की वजह से पहले दिन ही NTA के बारे में CBI ने प्रेस नोट में कहा था। बेसिकली सबसे बड़ी चुनौती CBI के पास क्या है कि ये जो कुरियर हैं, जो कंसल्टेंसी हैं, इनके बजाय जो जहां से पेपर निकल रहा है वहां तक पहुंचे और एंड बेनिफिशरी क्या है। एंड बेनिफिशरी ये बिवाल परिवार नहीं है, ये हमें समझना पड़ेगा। ये एक एक व्यक्ति के लिए NTA से पेपर लीक नहीं हुआ है, ये कुरियर थे जो अपने परिवार को भी डॉक्टर बनाने लगे थे। अब ये इसमें आगे CBI को प्रेस नोट जारी करके बताना चाहिए क्योंकि यहाँ की जो पुलिस की हमारे सोर्स बता रहे हैं कि पूछताछ में उन्होंने एक्सेप्ट किया है और बाकी ये पुराना नेटवर्क का हिस्सा है, मैं बार बार कह रहा हूँ पुराना नेटवर्क का हिस्सा है, कोई नया नेटवर्क इस साल नहीं खड़ा हुआ है।
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब तक की जांच में लगातार अहम खुलासे हो रहे हैं। CBI को ये मालूम चला कि शुभान ने मांगीलाल के सामने शर्त रखी थी कि 150 प्रश्न मिलने पर 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। स्पीच बड़ी खबर आपको बता दें, आज तक के सवालों से बचे NTA के डायरेक्टर अभिषेक सिंह ने इस पर नहीं दिए जवाब और इन पूरे सवालों के प्रोसेस में अधिकारियों के सवालों पर उन्होंने जवाब नहीं दिया कि कौन कौन से अधिकारी दरअसल इस घालमेल में शामिल है, NTA उसकी जवाबदेही कब देगा। आपको दिखाते हैं क्या कुछ आज तक ने सवाल किया था और NTA के डायरेक्टर ने क्या जवाब दिया।
6: अपने रिमांड नोट पे कहा उस पर आप क्या कहेंगे, उस पर आप क्या कहेंगे सर? सर NTA के रोल पे सवाल है, इस पे तो जवाब देना पड़ेगा ना। अब तो CBI कह रही है इस बात को। अभिषेक जी रिकॉर्ड किया है।
1: तो आप देख रहे थे कि किस तरीके से अभिषेक सिंह जो कि NTA के डायरेक्टर हैं, इनकी नियुक्ति हालांकि अप्रैल 2006 में ही हुई है, ये सवालों से बचते हुए नजर आए। जैसे ही आज तक के रिपोर्टर हमारे सहयोगी उन तक पहुंचे और सवाल मुनासिब था किया कि आखिर CBI का जो रिमांड नोट है उसमें NTA के अधिकारियों की जांच की बात भी की गई है, तो इस पर वो क्या कहना चाहेंगे। इस पर कोई भी जवाब देने से वो बचे, अभिषेक सिंह अपनी गाड़ी में बैठकर चले गए, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। सवाल यही है कि आखिर अगर पेपर लीक हुआ है तो सबसे ऊपर के अधिकारियों से क्यों नहीं इस पर सवाल किया जाना चाहिए, कहां से हुई है ये लीक। और अगर जांच एजेंसी भी कहती है कि NTA के अधिकारियों से पूछा जाना चाहिए, उनकी भी जांच होनी चाहिए, तो फिर जवाब क्यों नहीं।
0: दरअसल अंजलि बड़ा सवाल ये है कि बिना NTA के अधिकारियों के मिली भगत के ये संभव नहीं था और ये बात धीरे धीरे करके जांच में भी सामने आ रही
6: सवाल है। सर CBI ने जो अपने रिमांड नोट पे कहा उस पर आप क्या कहेंगे, उस पे आप क्या कहेंगे सर? सर NTA के रोल पे सवाल है, इस पे तो जवाब देना पड़ेगा ना। अब तो CBI कह रही है इस बात को। अभिषेक जी
0: तो डायरेक्टर जनरल NTA किसी भी सवाल के जवाब से बचते रहे, उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। इससे पहले जब एक इंटरव्यू हुआ था उसमें भी उन्होंने कहा था कि NTA की भूमिका इस पूरे मामले में संदिग्ध है या नहीं ये जांच का विषय है, वो कुछ भी टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। अब अधिकारियों के सवाल पर भी जवाब नहीं दिया है, सीधे तौर पर बचने की यहाँ पर कोशिश।
1: दरअसल अभिषेक सिंह की नियुक्ति अप्रैल के महीने में ही हुई है और उसके बाद मई में इतना बड़ा बवाल।
0: तो आज के सवालों से एनटी के डायरेक्टर किस तरीके से बचेगी हमने आपको दिखाया, लेकिन इस बीच बड़ा सवाल ये भी बना हुआ है कि वो बड़े लोग, वो बड़े अधिकारी कौन है जिनका जिक्र लगातार बिवाल परिवार की ओर से किया गया है और कई अन्य जो गिरफ्तारियां हुई हैं उन व्यक्तियों द्वारा भी किया गया है कि हम दरअसल छोटे लोग हैं, कुछ और बड़े लोग इस पूरे में इन्वॉल्व हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का उछला, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
9: सिट बैक एंड रिलैक्स विद द स्मूथेस्ट हिट्स विद कॉफी हाउस स्टेशन। एंजॉय अ केयरफुली ब्रूड मिक्स ऑफ सॉफ्ट अकूस्टिक साउंड्स विद आर्टिस्ट्स लाइक जेम्स बे, नोरा जोन्स, डेनियल सीजर more as you sink into a good book or get lost in your work. Just search Coffee House or ask your device to play Coffee House on TuneIn.
10: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
11: Sokudo.
12: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
13: इसमें माइक्रोफाइबर है।
12: माइक्रोफाइबर यानी
13: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत,
12: हमारे सीमेंट में नहीं है,
13: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
14: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
15: The taste of success.
0: सर हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है,
16: पर मार्केट की समझ ना बाउंसर जा रही है।
0: आप कैसे कर लेते हो?
16: मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो, तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का
17: नहीं
16: और म्यूचुअल फंड्स है
17: सही।
18: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
19: JK मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, JK मसाले, जहां स्वाद वहां JK।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिखाई डगर पर अब गृह मंत्री तुरंत निकल पड़े हैं, जिन्होंने अपना काफिला 10 से 11 गाड़ी से घटाकर 5 गाड़ियों में बदल दिया। ये बुधवार को अमित शाह के काफिले का वीडियो है, जिन्होंने अब अपने काफिले में 50% गाड़ियां कम कर दी, ताकि सुरक्षा के साथ देशवासियों के बीच बचत वाला संदेश ऊपर से नीचे तक पहुंचे। अपने काफिले को आधा करके अमित शाह इस बात पर जोर दे रहे हैं कि आर्थिक संकट के समय केवल जनता ही नहीं बल्कि सरकार भी जिम्मेदारी निभा रही है। प्रधानमंत्री अगर 2 गाड़ी से अब केवल चलने लगे तो गृह मंत्री ने 50% गाड़ी काफिले में घटाई। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी जो Z+ सुरक्षा में चलते हैं, जिनके साथ पहले 11 गाड़ियों का काफिला चलता रहा, अब वो केवल 4 गाड़ी लेकर चलेंगे। स्वास्थ्य मंत्री और पूर्व बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा भी 11 गाड़ियों का काफिला छोड़कर 4 गाड़ियां लेकर कैबिनेट की बैठक में पहुंचे। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, केंद्र के तमाम मंत्रियों की तरफ से क्या ये सारी कवायद इसलिए ताकि जनता तक संदेश भी पहुंचे और वो भी कम गाड़ी से चलकर तेल बचाएं, साथ ही उस सियासत को जवाब मिले जो अब तक सरकार की कोशिश पर सवाल उठाती रही। सिर्फ केंद्र ही नहीं बल्कि तमाम राज्यों तक नरेंद्र मोदी की खींची लकीर पर अब सब चलने लगे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का निर्देश है, मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, अफसर सब 50% गाड़ियां अपनी फ्लीट में कम करेंगे। ये निर्देश मुख्यमंत्री ने बैठक करके दे दिया है, उस पर अमल करना शुरू हो चुका है। अपने काफिले से लेकर मंत्रिमंडल के काफिले तक को हाफ कर दिया है। जैसे ये देखिए, योगी सरकार में कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल नई दिल्ली से मेरठ तक की यात्रा अपने काफिले के साथ नहीं करते हैं, मेट्रो ट्रेन और नमो भारत ट्रेन से करते देखते हैं। ऐसे ही मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने काफिला कम कर दिया, 13 की बजाय 8 गाड़ी लेकर अब मोहन यादव निकले हैं।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: इस ट्रंप ने ऐसी आग लगाई है कि ईरान की जंग में हिंदुस्तान की जेब तंग है और जिस तरह देश के प्रधानमंत्री मंत्री नेताओं के पैगाम है आवाम सहमी हुई कि ना जाने आगे कैसा वक्त आने वाला है। ये इशारे आवाम समझे या ना समझे हालात दिखने लगे हैं। दूध 2 रुपए लीटर बढ़ गया, घरेलू LPG 60 रुपए पहले बढ़ चुकी है, कमर्शियल सिलेंडर 1300 रुपए बढ़ चुका है, खाने का तेल 15 रुपए लीटर बढ़ चुका है, विदेशी दाल के दाम 35% बढ़ गए, मेवों के दाम 80% चढ़ गए, सोने चांदी की इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ गई, घर बनाने का सामान 10% महंगा हो गया, विदेश यात्रा का टिकट महंगा हो गया, डॉलर के मुकाबले रुपया सेंचुरी के करीब घिसटता जा रहा है। यूं ही पीएम मोदी पिछले 2 हफ्ते से भारतवासी भाइयों और बहनों को बचत का पाठ नहीं पढ़ा रहे। भारतवासी पीएम मोदी की अपील पर गौर करें या नहीं, नेता मंत्री जरूर संदेश दे रहे हैं। पीएम खुद 20 कारों के काफिले से 2 कार के काफिले पर आ गए। लोकसभा स्पीकर ने अपने काफिले में कारों की संख्या घटा दी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह सिर्फ 1 कार के साथ पीएमओ पहुंचे। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कार छोड़ ई रिक्शे की सीट थाम चुके हैं। महाराष्ट्र के सीएम बुलेट से विधानसभा पहुंचते दिखे। पंजाब के गवर्नर चंडीगढ़ के अफसरों को हर बुधवार बिना वाहन के दफ्तर आने का आदेश दे चुके हैं। कर्नाटक के गवर्नर थावरचंद गहलोत ने काफिले में कार घटा दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने भी काफिले में कारों की तादाद घटा दी। बिहार के सीएम 3 कारों के काफिले में चलने लगे। सम्राट के मंत्री अशोक चौधरी 1 कार में JDU दफ्तर पहुंचे। यूपी के मंत्री सुरेश खन्ना साइकिल से विधानसभा आए। बंगाल में BJP की विधायक पूर्णिमा चक्रवर्ती स्कूटी से विधानसभा आई। वैसे तो पीएम मोदी के आह्वान पर पूरी BJP एकजुट होकर देश के सामने संदेश रख रही है और यही संदेश अब तो आंकड़ों में नजर आने लगा, क्योंकि मार्च के 3.88% के मुकाबले अप्रैल में थोक महंगाई दर 8.30% पर पहुंच चुकी है। इसमें ईंधन की महंगाई 1% से बढ़कर 24.71% तक है। कंज्यूमर आर्टिकल 3.39% से बढ़कर 4.62%, खाद्य महंगाई 1.85% से बढ़कर 2.31%, प्राइमरी आर्टिकल 6.36% से बढ़कर 9.17% तक हो गए। मतलब ईरान की जंग में फूंकते बारूद ने तेल गैस की सप्लाई में ऐसी आग लगाई कि अब हर हिंदुस्तानी की जेब जलने लगी। बात महंगाई तक रहे तो और, अब तो जानकार आगाह कर रहे हैं अच्छे दिन में बचा लो वरना आने वाला है दुर्दिन। संकट दोधारी तलवार वाली है, एक तो तेल गैस की महंगाई, ऊपर से तेल गैस की सप्लाई पर आफत, क्योंकि अब तो ईरान झंडा देखकर भी हमला करने लगा। हॉर्मुज से गुजर रहे भारत के झंडे वाले एक मर्केंडाइज शिप को ईरान ने हमला करके समंदर में ही दफन कर दिया। गनीमत रही कि 14 भारतीय क्रू ने किसी तरह अपनी जान बचाई। ऐसी सूरत में भारत को खाड़ी से कितना तेल गैस कैसे मिल पाएगा, ये संकट दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। विपक्षी चाहे जो कहे, लेकिन पीएम मोदी ने आने वाले संकट को देखते हुए जो अपील देशवासियों से की है, अंदाजा देश की जेंजी तक को है। देश की जनता ईरान की जंग की शुरुआत से किफायत करने को मजबूर है। महंगे हो चुके तेल गैस का इस्तेमाल सूझबूझ के साथ कर रही, लेकिन अब नेताओं की कार छोड़ साइकिल रिक्शा बग्घी पैदल वाली सवारी देखकर सहमने लगी है कि जब हुक्मरानों का ये हाल दिखने लगा तो आने वाले दिनों में आवाम का क्या होगा। आज तक ब्यूरो।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव TV को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया मीडिया के हर एक सवाल का जवाब। कहा 21 जून को होगा नीट का री एग्जाम, परीक्षा के लिए मिलेगा 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम, कोई फीस नहीं लेंगे।

0: है सरकार, धर्मेंद्र प्रधान का बयान, एनटीए पर कहा अभी बहुत सुधार की जरूरत है। देश को महंगाई का तगड़ा झटका, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3-3 रुपए की बढ़ोतरी, सीएनजी 2 रुपए प्रति किलो महंगा हुई, बढ़ती महंगाई पर पूरे विपक्ष का हल्ला बोल। दिल्ली में चल रहे ब्रिक्स समिट में ऊर्जा संकट के समाधान की भी उम्मीद, ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची से जयशंकर की मुलाकात। पांच देशों की यात्रा पर रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का दौरा, देश में निर्यात के लिए निर्णायक फैसलों की उम्मीद।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का।
0: नमस्कार, 12 बजे के इस खास बुलेटिन ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित चौधरी, और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से। नीट पेपर लीक से परेशान अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खबर है। पेपर लीक की बीमारी से बचने के लिए नीट परीक्षा में बड़े सुधारों का ऐलान किया गया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यह ऐलान करते हुए कहा है कि अगले साल नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड होगी, यानी अगले साल से परीक्षा ऑनलाइन की जाएगी। ओएमआर शीट से अब परीक्षा नहीं होगी, यानी अगले साल से कंप्यूटराइज तरीके से पूरी परीक्षा की जाएगी। 2027 से ऑनलाइन परीक्षा किए जाने का ऐलान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। आपको बता दें कि अब नीट से होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से ऐलान किया गया है।
2: अगले साल से परीक्षा, इसकी जो मूल जड़ है ओएमआर, अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी। तुलनात्मक ओएमआर से सीबीटी थोड़ा प्रूफ है, थोड़ा प्रोटेक्टेड है, थोड़ा उसको ठीक किया जाए। टेक्नोलॉजी देखो, साइबर क्राइम तो एक बड़ा दुनिया बन चुकी है ना, इसको हम लोग सब नई दुनिया में रह रहे हैं, वो भी वहां भी चुनौती है, लेकिन हमारे देश की सिस्टम पे हमें भरोसा करना पड़ेगा। और तुलना, ये तो इंप्रूवमेंट की चीज है,
0: यानी अब अगले साल से हमारी शीट की जगह अब कंप्यूटराइज एग्जाम होंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि नीट पेपर लीक में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यह भी कहा कि इस बार सीबीआई मामले की तह तक जाएगी। उन्होंने कहा कि नीट की पूर्ण परीक्षा यानी री एग्जामिनेशन में कोई कदाचार नहीं होगा, और उन्होंने यह भी कहा कि परीक्षा माफिया के साथ ये लंबी लड़ाई है, व्यवस्था को खुली चुनौती दी जा रही है, जिसके लिए अब सीबीआई इस मामले की तह तक जाएगी।
2: ये एक लंबी लड़ाई है परीक्षा माफियाओं के साथ साथ, जो एंटी सोशल एलिमेंट अभी मित्रों टेक्नोलॉजी के समय में एक नई चुनौती बढ़ रहा है। विभिन्न प्रकार की सोशल मीडिया हैंडल से भ्रमात्मक तथ्यों को रखा जाता है, गुमराह करने की फिर कोशिश किया जाता है,

0: नीट का पेपर परीक्षा से पहले मिल गया था। नीट पेपर लीक मांगीलाल का बेटा सवाई माधोपुर मेडिकल कॉलेज में MBBS की कर रहा है, वहीं विकास बिवाल भी आगे पेपर बेचने में शामिल हुआ था। आगे से पेपर लाकर बेचने के लिए 65 लाख दिए गए थे। हरियाणा का यश यादव भी सीकर में रहकर पढ़ता था और तब मांगीलाल का परिवार उसके नजदीक आ गया। ये महाराष्ट्र के नेटवर्क के जरिए पेपर लाते थे और आगे से इसे नेटवर्क की पड़ताल की जा रही है और बताया जाता है कि ये पेपर आगे बेच दिया करते थे। और जांच एजेंसियों का भी मानना है कि सारा खेल कोचिंग माफिया का ही है और पकड़े गए लोग केवल नेटवर्क का हिस्सा थे। सीकर के कोचिंग संस्थान पर भी नजर रखी जा रही है। बड़े लोग कौन कौन है जिनके लिए बेवाल परिवार काम करता था, इसको लेकर भी तफ्तीश की जा रही है। वहीं जब धर्मेंद्र प्रधान से जब ये पूछा गया कि आरोपियों ने कहा है कि पिछले साल भी उन्होंने नीट परीक्षा के पेपर लीक हुए थे, इस सवाल का सीधा जवाब ना देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि किसी भी अफवाह पर आप ना जाइए।
1: पेपर आउट आरोपियों ने कहा है कि पिछले साल भी पेपर आउट था।
2: मैं कम से कम अफवाह में हम ना जाए, कोई विषय में हम अफवाह में ना जाए। हम सब जिम्मेवार, आप सब राष्ट्रीय मीडिया हो, आप सबकी दायित्व है समाज में जो है। हम कुछ भी चीज हम छुपा नहीं रहे, कुछ भी चीज हम मुंह फेर नहीं रहे, लेकिन जो विषय है असम्पशन 20-25 लाख बच्चों की भविष्य की सवाल है। आपकी एक एक वाणी अनेकों के मन में उद्वेग खड़ा करता है। जो तथ्य है वो छुपना नहीं चाहिए। आपके सहयोग से हम यहाँ आए हैं, ये मीडिया ने यहाँ तक इसको लाया है, हम उसको आदर करते हैं, लेकिन हम ऐसा भी कुछ विषय ना करें जो अनावश्यक फिर एक बार तनाव खड़ा करे।
0: और देखिए लगातार शिक्षा मंत्री अफवाहों से बचने की बात कह रहे हैं, लेकिन ये भी बात सही है कि ये नेटवर्क कोई नया नेटवर्क नहीं होगा, ये लंबे समय से काम कर रहा है। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी भी जुड़ गए, हमारे साथ जयपुर से शरद हमारे साथ जुड़ गए और वहीं नागपुर से हमारे साथ दिवेश जुड़ गए। सबसे पहले शरद का रुख करता हूं। शरद, हम लगातार इस खबर को दिखा रहे हैं, आज तक लगातार प्रमुखता से दिखा रहा है कि कैसे पेपर लीक का पूरा सिंडिकेट काम करता था। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान 2025 की बातों को सिर्फ अफवाह बता रहे, लेकिन जब आप तमाम चीजों पर गौर करते हैं तो ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है कि नेटवर्क अभी हाल फिलहाल में आया हो, एक दो साल से काम कर रहा हो, लंबे समय से ये काम कर रहा हो, बहुत एक्सपर्टीज के साथ काम कर रहे थे।
3: बिल्कुल सुमित, धर्मेंद्र प्रधान ने खुद ये माना है कि हर बार हम कोशिश करते हैं और ये जो है वो एक नए तरह के तरीके से नए चैलेंज लेकर आते हैं और पेपर लीक कर लेते हैं, ये बदलते रहते हैं, ये अपने बातचीत में ये उन्होंने माना है। जाहिर सी बात है कि उन्हें अभी SOG या CBI ने ब्रीफ नहीं किया होगा कि जांच कहां तक पहुंचा है, वो जांच के लिए कहने आए भी नहीं थे। और सही बात है कि जो हालात बने हुए हैं वो उस घाव पर मरहम लगाने के लिए आए थे कि किस तरह से जो बच्चे एग्जाम दिए हैं उन बच्चों को संवेदना पहुंचाई जाए और उन्हें भरोसा दिया जाए। मगर मूल सवाल वही है, देखिए सुमित, जो सवाल पूछा जाना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान से भी और किसी से भी, किसी को भी सोचना चाहिए कि ये पेपर कौन निकाल रहा था, किस लिए निकाल रहा था और एंड बेनिफिशरी कौन है। एंड बेनिफिशरी ये दिनेश का बेटा ऋषि नहीं हो सकता जो 10th में 43% लाता है और 12th में ग्रेस पीरियड से पास होता है और पेपर बाप दे देता है फिर भी 107 नंबर का ही वो लिख कर आता है, वो एंड बेनिफिशरी नहीं है। वो तो चूंकि ये बिवाल परिवार में पेपर आ रहे थे तो अपने घर वालों को ये डॉक्टर बना रहे थे और ऋषि को भी बनाने जा रहे थे। मगर ये बार बार SOG ने कहा है कि ये कुरियर है, ये नेटवर्क का हिस्सा है, नेटवर्क का आका और नेटवर्क से फायदा पहुंचाने वाले कुछ और लोग हैं।
0: बिल्कुल, और शरद यही बात है क्योंकि अमित भारद्वाज ने भी जब नीट के डायरेक्टर से बात की तो यही पूछा कि आखिरकार कौन कौन से लोग जो नीट के सिस्टम पर भी खासतौर पर इसके अलावा जो पूरे सिस्टम पर सवाल उड़ रहे हैं उसको लेकर उनसे जब पूछा गया तो वो वहां से बचते हुए नजर आए। हमारे साथ दिवेश भी नागपुर से जुड़े, उनका रुख भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि नीट पेपर लीक मामले में अब तक करीबन 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है जिसमें 3 महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र के अहल्यानगर में धनंजय लोखंडे और पुणे से मनीष वाघमारे भी CBI ने गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र के लातूर से भी CBI ने एक रिटायर्ड प्रोफेसर और नीट एग्जाम के काउंसलर को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। लातूर में एक निजी कोचिंग सेंटर पर भी CBI ने छापा मारा है। इसके पहले भी पुलिस ने लातूर में 6 लोगों से पूछताछ की थी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी दिवेश भी जुड़ गए हैं। दिवेश देखिए

0: शरद लगातार बता रहे थे कि देखिए पूरा मामला जो उजागर हुआ वो भले ही राजस्थान से हुआ और लेकिन इसके तार लगातार महाराष्ट्र से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं, लगातार महाराष्ट्र से भी गिरफ्तारियां हो जा रही है। क्या कुछ बताया जा रहा है इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि आखिरकार कौन कौन से इलाके हैं कि कहां कहां पर इनके नेटवर्क एस्टेब्लिश थे?
1: जी बिल्कुल सुमित, आपको बता दें कि ये जो पहला अरेस्ट हुआ है शुभम खैरनार का, ये खुद एक मेडिकल स्टूडेंट है और मेडिकल स्टूडेंट होने के बावजूद वो थर्ड ईयर में पढ़ रहा है, पर वो नासिक शहर में एक एडमिशन काउंसलिंग सेंटर चला रहा था, मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग सेंटर चला रहा था। इसके अलावा उसका जो सोर्स है पेपर का, अहिल्या नगर में रहने वाला धनंजय लोखंडे जो पुणे से ऑपरेट करता था, वो भी एडमिशन काउंसलर है, वो भी बच्चों को मेडिकल कॉलेज में कैसे एडमिशन लेना है, कैसे करवाना है, उसकी काउंसलिंग करता है। मनीषा वाघमारे तीसरी व्यक्ति जो धनंजय लोखंडे के टच में थी, वो भी पुणे में एडमिशन काउंसलर है। और खास बात, तीनों ही के परिवार, शुभम खैरनार, धनंजय लोखंडे, मनीषा वाघमारे, तीनों के ही परिवार में डॉक्टर हैं। शुभम के पिता डॉक्टर हैं, धनंजय का भाई डॉक्टर है, मनीषा वाघमारे के पति डॉक्टर हैं, और ये तीनों ही मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग का बिजनेस भी चला रहे थे। शुभम तो पढ़ भी रहा था, वो मेडिकल की तैयारी भी कर रहा था। मेडिकल की तैयारी क्या, वो थर्ड ईयर BAMS में पढ़ रहा था मध्य प्रदेश के सीहोर में, पर वो छोड़कर और यहाँ पर वो नासिक में एक फुल टाइम सेंटर चला रहा था, जिसका खुलासा कल आज तक ने किया कि ये कंसल्टेंसी है जहां से शुभम खैरनार ऑपरेट कर रहा था, वहां पर स्टूडेंट्स को बुलाकर और एडमिशन काउंसलिंग के नाम पर इनके नेटवर्क उस
0: बिल्कुल दिनेश बात है। यही है कि देखिए नेटवर्क जितना बड़ा है उससे ऐसा लगता नहीं कि सिर्फ इसी बार ये पेपर लीक हुआ हो, ऐसा संभावना हमेशा बनी रहती है कि देखिए इससे पहले भी कई लोगों ने इस पेपर लीक का फायदा उठाया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दोनों संवाददाताओं का। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज एक और दूसरी बड़ी खबर जिससे आपका सबका सरोकार है, सुबह सुबह देशवासियों को लगा जोर का झटका। जी आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए का इजाफा किया गया है, साथ ही मुंबई की तर्ज पर दिल्ली में भी CNG की कीमतों में 2 रुपए का इजाफा किया गया है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमतें करीबन 97 रुपीज यानी 97.77 रुपए हो गई है, वहीं डीजल की कीमतें 90 रुपए और 67 पैसे प्रति लीटर पहुंच चुकी है। इसके अलावा आइए आपको दिखाते हैं कि देश के 4 बड़े शहरों में क्या है पेट्रोल और डीजल की कीमतें। अगर आप और देखिए, हम आपको 4 शहरों के अलग अलग तस्वीरें, हम आपको उनके आंकड़े बता रहे हैं। सबसे पहले दिल्ली की बात करते हैं, 97.77। इससे पहले पुराने रेट क्या थे, 94.77, यानी 3 रुपए का इजाफा किया गया। मुंबई की अगर आप बात करें, 106.68 रुपए इस समय मुंबई में है। इसके बाद चेन्नई की बात करें, 103.67 रुपए इस समय है। कोलकाता में अगर बात करें, 108.74 रुपए इस समय पेट्रोल के कीमतें हैं। ये हम आपको पेट्रोल की कीमतें बता रहे हैं। देखिए आपको बता रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल की दोनों की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। और ये आंकड़े बताते हैं कि पहले क्या रेट थे और अब 3 रुपए बढ़ने के बाद प्रति लीटर इनके क्या रेट हो गए। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर विपक्ष ने सरकार पर चौतरफा हमला भी बोला है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा है, महंगाई मैन मोदी ने आज फिर से जनता पर हंटर चलाया है। पेट्रोल और डीजल में 3-3 रुपए महंगे कर दिया गया, वहीं CNG के दाम में भी 2 रुपए का इजाफा किया गया है। और ये सब चुनाव खत्म होने के बाद किया गया है। चुनाव खत्म, मोदी की वसूली शुरू, किस दल ने क्या कहा है, आइए आपको दिखाते हैं।
2: इसी शुभ मुहूर्त का इंतजार था कि मोदी जी विदेश यात्रा पर जाएं, 5 राज्यों के चुनाव समाप्त हो जाएं, तो जनता की जेब पर फिर डाका डाला जाए। फॉर्मूला तो यही था ना मोदी जी, नीत तो यही है कि अगर दाम घटेगा विश्व भर के बाजार में कच्चे तेल का तो कम होगा, और जब बढ़ेगा तो बढ़ाया जाएगा, इससे ज्यादा महंगा लेकर भी मनमोहन सिंह सरकार ने दाम 60-70 रुपए पर लीटर से ज्यादा नहीं जाने दिया, पर आपने तो शतक के करीब पहुंच गए हैं। और फिर मेरी समझ में ये भी नहीं आया मोदी जी कि जब कम हुआ था तो आपने कम क्यों नहीं किया था, सिर्फ अपने पूंजीपति मित्रियों को कमाने के लिए। एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि यहां 2 गाड़ियों में चल के जो फोटो रील बननी थी बन गई, अब तो आप उसी हवाई जहाज से जा रहे हैं जिस पर राष्ट्रपति ट्रंप चलते हैं। वैसा ही हवाई जहाज विदेश यात्रा पे जा रहे हैं।
3: कुछ लोग बोल रहे हैं वार सिचुएशन है, ये तो पूरा वर्ल्ड का सिचुएशन है, तो हम लोग जानते हैं वर्ल्ड सिचुएशन है, लेकिन कोई प्लानिंग नहीं था। दूसरा, 2014 से क्या वार सिचुएशन चल रहा है? 2014 कंपेयर कीजिए प्राइस को, 2014 ये भाजपा गवर्नमेंट आने से पहले क्या था, आज क्या है। और दूसरा, स्टेट में ये जो अपोजिशन था,
0: टीएमसी और कांग्रेस दोनों ही सरकार के इस फैसले पर हल्ला बोलते हुए, और वहीं पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सरकार पर निशाना साधा है। लिखा है कि आगे बढ़ना है तो साइकिल ही विकल्प है, हमने तो पहले ही कहा था कि साइकिल से बेहतर कुछ भी नहीं है। आपको बता दें कि एक तरफ कांग्रेस और टीएमसी और वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया एक्स पर ये ट्वीट या ये सार्वजनिक किया, और उन्होंने कहा कि हम तो पहले से ही कहते थे कि साइकिल ही विकल्प है और साइकिल से बेहतर कुछ नहीं। और हमारे इस खास बुलेटिन ब्रेकिंग न्यूज का सिलसिला जारी है। अगली ब्रेकिंग न्यूज मध्य प्रदेश के थार से है, जहां पर थार गौशाला विवाद पर आज कोर्ट का फैसला आने वाला है। सरस्वती मां का मंदिर या कमाल मौला मस्जिद, इसी पर कोर्ट का फैसला सुनाया जाना है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है और चाक चौबंद व्यवस्था भी की गई है। 2024 में भारतीय पुरातत्व सर्वे यानी एएसआई ने विभाग ने भौशाला परिसर को 90 दिन तक वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया था। 6 अप्रैल 2026 से हाईकोर्ट में नियमित सुनवाई इसकी चल रही है, जो 12 मई तक चली। और हमारे साथ हमारे सहयोगी रवीश पाल सिंह भी भोपाल से जुड़ गए हैं। रवीश का रुख कर लेते हैं। रवीश, थोड़ी देर में ही फैसला आने वाला, क्या कुछ उम्मीद की जा रही है? और लंबे समय से ये पूरा मामला चल रहा था।
4: देखिए हिमांशु, दोनों ही पक्ष इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि फैसला उनके पक्ष में आने वाला है। फिलहाल कोई भी पक्ष जो है वो बहुत ज्यादा मीडिया के सामने आ नहीं रहा है, सब इंतजार कर रहे हैं कि हाईकोर्ट इस पे क्या फैसला देता है। लेकिन प्रशासन के सामने ये महज एक फैसला नहीं है जो हाईकोर्ट सुनाने वाला है। दरअसल धार जिला प्रशासन के सामने या मध्य प्रदेश सरकार के सामने ये एक ऐसी चुनौती है जिससे पूर्व में भी कई बार वो निपट चुके हैं। कई बार हालात तनावपूर्ण बने, इसी जगह पे जहां मैं खड़ा हूं यहां पे पथराव हुए, लोग घायल हुए, हिंसा हुई, आगजनी हुई थी, सिर्फ इस बात को लेके कि ये कलाम मौला मस्जिद है या फिर माँ वाग देवी का मंदिर है। अभी भी अगर आप देखें तो जो सुनवाई पूरी हुई है 12 मई को और आज जिसपे फैसला आना है, उससे पहले यहाँ पे सुरक्षा के क्या बंदोबस्त, हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। बड़ी संख्या में आपको पुलिसकर्मी यहाँ दिख जाएंगे, और ये आपको तो एक छोटी सी तस्वीर, पूरे 1200 से ज्यादा पुलिसकर्मी जो है इस वक्त सिर्फ इसी भोजशाला परिसर के इर्द गिर्द तैनात किए गए हैं, और इसके साथ ही करीब 10 से ज्यादा लेयर्स में जो सुरक्षा व्यवस्था है वो धार शहर के साथ साथ पूरे धार जिले में और इंदौर जिले में लागू की गई है, क्योंकि नजदीकी जिला इंदौर ही है और इंदौर और धार दोनों बेहद ज्यादा संवेदनशील जिले होते हैं इस तरीके के मामलों में। तो उसी को देखते हुए आज ये इंतजाम किए गए हैं। थोड़ी देर पहले हमने कलेक्टर और एसपी से भी बात की थी, उनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो फिजिकल पुलिस हो रही है इसके साथ साथ सोशल मीडिया पे खास नजर रखी जा रही है, क्योंकि जब भी माना जा रहा है 2 से 2 बजे के बाद कभी भी फैसला आ सकता है, और नमाज का समय जो है वो एक
0: रवीश यही बात है कि 2 बजे के फैसले के ऊपर क्योंकि आप बने रहिए, प्रशासन का क्या कहना है? क्योंकि प्रशासन का जिस तरीके से आप दिखा रहे थे कि वहां पर व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया, प्रशासन का क्या कहना है, ये आपको सुनाते हैं।
5: माननीय न्यायालय का जो निर्णय आज जो संभावित है उसके संदर्भ में जो आवश्यक व्यवस्थाएं हैं वो आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं, और जो जिले में शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाने के लिए जो बीएनएस 163 के अंतर्गत जो निर्देश प्रसारित किए गए हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं शहर के या जिले के महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उस पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। और जो भी खबरें जो सोशल मीडिया जो उन पर आ रही हैं उन पर भी उनकी निगरानी रखी जा रही है, जिससे कि किसी प्रकार की कोई अपुष्ट खबरें भ्रामक जानकारी को लेकर कोई ऐसे विपरीत स्थिति निर्मित ना हो।
6: धार शहर में 9 लेयर की सिक्योरिटी लगाई गई है, जिसमें आंतरिक व्यवस्था, बाहरी व्यवस्था, हाई राइज, पेट्रोलिंग, और बाकी ऐसे जो संवेदनशील क्षेत्र हैं या फिर जो धार्मिक स्थान और स्थल हैं वहाँ पे लगाई गई है। इसके अलावा जो व्यवस्था है वो सिर्फ शहर तक सीमित नहीं है, शहर के अलावा यहाँ के जो कट ऑफ हैं, अप्रोच रोड हैं, आने वाले टोल हैं, दीगर तहसील है, अनुभाग है, वहाँ पर भी व्यवस्था लगाई गई है। लगभग 1000 से ऊपर का बल सिर्फ जो ये पुरातत्व विभाग की भूमि है उसके आसपास है और बाकी सब दीगर जिले और कट ऑफ में भी लगा हुआ है। धार जिले के सभी नगरवासियों से मैं अपील करता हूँ कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का पूर्णतः पालन करना है, उसका आदर सम्मान करना है और हम लोग भी इसके लिए कटिबद्ध हैं। पर जो भी व्यक्ति इसके बारे में अफवाह उड़ाते हैं, भ्रामक जानकारी देते हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी और कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी।
0: लगातार इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। वक्त है छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से पर इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
8: मॉर्निंग पीपल वेक अप फॉर पीस एंड क्वाइट। मैकडॉनल्ड्स ब्रेकफास्ट पीपल, वी वेक अप फॉर द स्वीट रश ऑफ गेटिंग दैट वार्म डिलीशियस ब्रेकफास्ट राइट बिफोर इट एंड्स।
9: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
8: Ba-da-ba-ba-ba.
10: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads.
11: Thank God I get to wake.
10: And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
12: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
13: Sokudo.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: ये मिट्टी सिर्फ फसल नहीं उगाती, देश का भविष्य भी बनाती है, और इस भविष्य को संभालते हैं ये हाथ, हमारे देश के असली हीरो के हाथ, जिनके हाथ की ताकत है क्रिस्टल के उत्पाद। तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल के उत्पाद। देश का किसान, देश का हीरो।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
6: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
7: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
8: Character, the taste of success.
9: और वही, कहाँ गए थे घूमने?
10: जीके मैक्स।
11: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
10: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
11: जेके वॉल मैक्स
10: बेस्ट पेंट,
11: जेके मैक्स।
10: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट। जेके मैक्स पेंट, खुशियों के रंग।
12: Like I said before, we better hold the sins.
13: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके।
14: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
15: इसमें माइक्रोफाइबर है।
14: माइक्रोफाइबर यानी
15: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत,
14: हमारे सीमेंट में नहीं है,
15: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
16: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
17: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: ब्रेक के बाद ब्रेकिंग न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आखिरकार ईरान की जंग ने दुनिया का बैंड बजाना शुरू ही कर दिया। भारत की सरकार ने भी बड़ी सब्र के साथ काम लिया, लेकिन जब 39 दिन की जंग चली और 45 दिन तक जंग रोकने की कोशिशें चलती रही तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार माहौल कैसा होगा। ईरान ने हॉर्मूज का रास्ता अब भी बंद किया हुआ। तेल उत्पादन करने वाले कई मुल्क अब भी खुद इससे जूझ रहे, तो भारत तो परेशान होगा ही। भारत की सरकार ने बड़े सब्र के साथ आखिरकार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं, लेकिन बीजेपी का कहना है कि ये बहुत मामूली बढ़त है।
1: वेतन बढ़ रही है, रेट बढ़ी जा रहे हैं मार्केट के अंदर हर एक आइटम के, और जो बढ़ा है ठीक है, और बढ़ेगा तो कुछ नहीं होगा।
2: इस ट्रंप ने ऐसी आग लगाई है कि ईरान की जंग में पूरी दुनिया का तेल निकलने लगा है और हिंदुस्तान में अब लोगों की जेब भी जलने लगी है, क्योंकि एक साथ भारत में शुक्रवार की सुबह सीएनजी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए। पेट्रोल मात्र 3 रुपए लीटर महंगा हुआ है, डीजल भी मात्र 3 रुपए महंगा हुआ है, सीएनजी भी मात्र 2 रुपए किलो महंगी हुई है। कहां तो तेल कंपनियां रोज हजारों करोड़ रुपए का अंडर रिकवरी झेल रही हैं। इसकी भरपाई के लिए पेट्रोल डीजल 30 से 32 रुपए लीटर तक महंगा करना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ 3-3 रुपए की बढ़ोतरी को लेकर देश की जनता की प्रतिक्रिया क्या है सुन लीजिए।
3: तो महंगाई तो बढ़ती ही जा रही है हर तरह से, खर्चे बहुत ज्यादा ही होते जा रहे हैं, आम आदमी क्या करे समझ ही नहीं आ रहा है।
4: बढ़ोतरी तो सीएनजी वाले कर रहा है, गाड़ी वाले कर रहा है, कमाई में तो कमी हो रहा है।
5: इतना हमें डायरेक्टली नहीं पड़ेगा, बट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट काफी ज्यादा है। हाँ। वो तो हम सबको ही पता,
6: पेट्रोल बढ़ेगा, सीएनजी बढ़ेगी, सब चीज बढ़ेगी, तो सामान का भी ऐसा भी बढ़ेगा।
7: महंगाई तो बढ़ गया है, इट इज अ प्रॉब्लम फॉर एवरीवन, तो इम्प्रूव होना चाहिए।
8: साइकिल चलानी पड़ेगी भाई, अभी पैदल चलना पड़ेगा, क्या करेंगे, इतनी महंगाई में हालत खराब है। अपने को एक बार खाने को नहीं हो रहा है, गाड़ी कहाँ से चलाएगा।
1: सर देखो, सैलरियां बढ़ नहीं रही है, वेतन बढ़ नहीं रहे, रेट बढ़ी जा रहे हैं मार्केट के अंदर हर एक आइटम के, पेट्रोल गैस इतनी प्रॉब्लम है,
9: मुश्किल है इस टाइम पे ना। अभी जॉब में भी उतना है नहीं है कि बंदा कितना करता रहे।
10: महंगाई की मार तो है ही है, खासकर मिडिल क्लास आदमी पे, पर मजबूरी है, ये वार चल रही है, उसका असर तो पड़ेगा सबको।
11: ये तो देख ही रहे हैं, 5-6 साल से तो चढ़ ही रहा है। कहाँ 10 साल पहले 60 रुपए, 54 रुपए था, अभी समझ लीजिए 110 भी पार होने वाला है।
12: जिस हिसाब से जंग चल रहा है इस वक्त, हालात खराब है इस वक्त, तो बढ़ने की तो उम्मीद थी, लेकिन चलो 3 रुपए तो मेरे ख्याल में 12 रुपए का इम्पैक्ट नहीं पड़ गया, आम लोग ज्यादा सफर कर रहे हैं उससे।
0: भारत में तेल और गैस की महंगाई के पीछे ईरान की जंग का सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है, और ये जंग रोकना भारत के अधिकार और शक्ति के बाहर की बात है। जाहिर तौर पर तेल की किल्लत होगी तो दाम बढ़ेंगे, लेकिन भारत में विपक्षी दल इसे सरकार की नाकामी और चुनावी मौका परस्ती करार दे रहे हैं, जबकि बीजेपी का कहना है कि जंग के बाद दुनिया में जो हालात बने हैं उसके मुकाबले भारत में लोगों की जेब पर बहुत कम बोझ पड़ा, क्योंकि ईरान की जंग के करीब करीब 75 दिन से ज्यादा दुनिया को झेलना पड़ा है और दुनिया में पेट्रोल डीजल के दाम 2 गुना तक पहुंच चुके हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप बात करें उन तमाम देशों की जहां पर तेल और गैस के दाम बढ़े हैं, अगर म्यांमार की बात करें तो पेट्रोल की कीमतें करीबन 89.7%, वहीं डीजल 112.7% तक बढ़ गए, और इसके बाद मलेशिया की अगर आप बात करें पेट्रोल की कीमतें 56.3%, वहीं डीजल की कीमतें करीबन 71.2% तक बढ़ी है। पाकिस्तान में अगर आप बात करें 54.9% और डीजल की बात करें तो 44.9% तक वहां पर डीजल और पेट्रोल महंगा हुआ है। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में भी पेट्रोल की कीमतें 52.4% तक बढ़ी है, वहीं डीजल की कीमतों में 86% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। अमेरिका में पेट्रोल 44.5 और डीजल 48.1 महंगा हो गया। श्रीलंका में पेट्रोल 38 और डीजल जो है वो 41% महंगा हुआ। ब्रिटेन में 19.2 और डीजल की अगर बात करें तो 34.34% तक बढ़ोतरी हुई। जर्मनी की अगर बात करें तो 13% से ज्यादा महंगाई हुई है, वहीं डीजल जो है वो 19% महंगा हुआ है। जापान में भी पेट्रोल की कीमतें करीबन 9.7% और 11.2% महंगा हुआ है। यानी एशिया में लेकर अधिकार बाकी के खाड़ी देशों में और यहाँ तक यूरोप में भी पेट्रोल और डीजल के दाम बहुत तेजी से बढ़े हैं। इसके अलावा जब भारत की बात करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ 3.2% और डीजल की कीमतों में 3.4% ही इजाफा हुआ है।
2: पेट्रोल डीजल गैस की महंगाई का असर देश के बड़े शहरों के लोगों में मिला जुला देखने को मिल रहा है, लेकिन एक हिंदुस्तान छोटे शहरों और गांव वाले इलाकों का भी है, जहां पहले से पेट्रोल डीजल गैस का किफायत से इस्तेमाल करने को मजबूर लोग अब इस महंगाई में असहज दिख रहे हैं।
1: जो बढ़ा है ठीक है, और बढ़ेगा तो कुछ नहीं होगा।
13: क्यों ऐसा क्यों, कभी पॉकेट में असर नहीं
1: पड़ेगा? पॉकेट का असर पड़ेगा, देश में मोदी है तो सब मुमकिन है।
14: मैं सडनली 2 दिन में आके बोल देंगे कि फ्यूल कम खर्चा करें या तो इंजन कम खर्चा करें, गैस कम खर्चा करें, तो सब परेशानी बढ़ जाता है। अगर कुछ भी अगर प्रधानमंत्री जी बोलते हैं तो आदमी दूसरा ट्रैक पे चला जाता है।
2: पेट्रोल डीजल की महंगाई का अंदेशा देशवासियों को तभी से होने लगा था जब से पीएम मोदी ने किफायत के साथ तेल के इस्तेमाल की अपील की थी और देश के नेताओं के काफिले छोटे होने लगे थे। मंत्रियों, विधायकों, सांसदों की बाइक, रिक्शे, साइकिल की सवारी की तस्वीरें सामने आने लगी थीं और इसका असर ये हुआ कि गुजरात में बनासकांठा, महिसागर, सूरत से वलसाड तक और यूपी में नोएडा, गाजियाबाद, वाराणसी से कानपुर तक, बिहार में पटना से समस्तीपुर तो हरियाणा में सोनीपत से फरीदाबाद और राजस्थान में अलवर तक तमाम जगहों पर महंगे तेल की आशंका में पेट्रोल पंप पर भारी भीड़ उमड़ी रही। कई जगह पेट्रोल पंप वाले तेल की राशनिंग कर रहे थे। हालांकि सरकार बार बार और रोज की मीडिया ब्रीफिंग में बताती है कि देश में तेल की कोई कमी नहीं है, बस ढुलाई में पैसे और वक्त दोनों ज्यादा लग रहे हैं, इसलिए तेल कंपनियों को नुकसान हो रहा है, वरना पेट्रोल डीजल की किल्लत की अफवाह सिर्फ लोगों को परेशान करने के लिए उड़ाई जा रही है। आज तक ब्यूरो।
0: हमने आपको दुनिया भर में हुए पेट्रोल और डीजल के इजाफे की खबर भी दिखाई, उसके आंकड़े भी दिखाए। जाहिर है कि दुनिया के मुकाबले भारत में सरकार की ऐसी तैयारी रही है जिससे लोगों की जेब पर इसका असर कम से कम पड़े, लेकिन ये राहत कितनी और कब तक चलेगी ये एक बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री मोदी की अपील के मुताबिक अगर पूरा इंडिया मिलजुल कर किफायती कदम उठाएगा तो आखिरकार जंग की तपिश सरकार के खजाने पर कब तक संभाल पाएंगी, क्योंकि आखिरकार इसका असर सिर्फ महंगाई की बढ़ोतरी की शक्ल में ही नहीं बल्कि देश की विकास दर और तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी के सपने पर भी पड़ेगा।

0: इस ट्रंप ने ऐसी आग लगाई है कि ईरान की जंग में हिंदुस्तान की जेब तंग है और जिस तरह देश के प्रधानमंत्री मंत्री नेताओं के पैगाम है आवाम सहमी हुई कि ना जाने आगे कैसा वक्त आने वाला है।
1: इट इज अबाउट प्रेपरेशन, बी रेडी फॉर टफ टाइम्स रादर देन वेटिंग फॉर द शॉक टू हिट अस।
0: ये इशारे आवाम समझे या ना समझे हालात दिखने लगे हैं। दूध 2 रुपए लीटर बढ़ गया, घरेलू LPG 60 रुपए पहले बढ़ चुकी है, कमर्शियल सिलेंडर 1300 रुपए बढ़ चुका है, खाने का तेल 15 रुपए लीटर बढ़ चुका है, विदेशी दाल के दाम 35% बढ़ गए, मेवों के दाम 80% चढ़ गए, सोने चांदी की इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ गई, घर बनाने का सामान 10% महंगा हो गया, विदेश यात्रा का टिकट महंगा हो गया, डॉलर के मुकाबले रुपया सेंचुरी के करीब घिसटता जा रहा है। यूं ही पीएम मोदी पिछले 2 हफ्ते से भारतवासी भाइयों और बहनों को बचत का पाठ नहीं पढ़ा रहे। वैसे तो पीएम मोदी के आह्वान पर पूरी बीजेपी एकजुट होकर देश के सामने संदेश रख रही है और यही संदेश अब तो आंकड़ों में नजर आने लगा, क्योंकि मार्च के 3.88% के मुकाबले अप्रैल में थोक महंगाई दर 8.30% पर पहुंच चुकी है। इसमें ईंधन की महंगाई 1% से बढ़कर 24.71% तक है, कंज्यूमर आर्टिकल 3.39% से बढ़कर 4.62%, खाद्य महंगाई 1.85% से बढ़कर 2.31%, प्राइमरी आर्टिकल 6.36% से बढ़कर 9.17% तक हो गए। संकट दोधारी तलवार वाली है, एक तो तेल गैस की महंगाई, ऊपर से तेल गैस की सप्लाई पर आफत, क्योंकि अब तो ईरान झंडा देखकर भी हमला करने लगा। हॉर्मुज से गुजर रहे भारत के झंडे वाले एक मर्केंडाइज शिप को ईरान ने हमला करके समंदर में ही दफन कर दिया। गनीमत रही कि 14 भारतीय क्रू ने किसी तरह अपनी जान बचाई। ऐसी सूरत में भारत को खाड़ी से कितना तेल गैस कैसे मिल पाएगा, ये संकट दिनों दिन बढ़ता जा रहा है।
2: पहले मैं रैपिडो से आता था, लेकिन अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आता हूँ, बस वगैरह से। और घर पे कम गैस का यूज करता हूँ।
3: वी शुड मेंटेन दिस थिंग लाइक डीजल, पेट्रोल एंड गोल्ड, सिल्वर, वी शुड बी मेंटेन, लाइक वी शुड नॉट परचेज लाइक दैट ओनली, इफ इज मोर रिक्वायर्ड दैट टाइम ओनली वी शुड परचेज।
0: देश की जनता ईरान की जंग की शुरुआत से किफायत करने को मजबूर है। महंगे हो चुके तेल गैस का इस्तेमाल सूझबूझ के साथ कर रही है, लेकिन अब नेताओं की कार छोड़ साइकिल, रिक्शा, बग्घी, पैदल वाली सवारी देखकर सहमने लगी है कि जब हुक्मरानों का यह हाल दिखने लगा तो आने वाले दिनों में आवाम का क्या होगा। आज तक ब्यूरो।
4: पेट्रोल, डीजल, खाने का तेल, गैस, ये तमाम संकट ईरान की जंग के कारण ही शुरू हुए। ना ट्रंप ने ईरान पर हमला किया होता और ना ही ईरान ने हॉर्मुज पर अपना हथियार बनाकर उसे बंद कर दिया होता। अब शिकारी के मुंह पर खून लग चुका है। ईरान हॉर्मुज खोलने को तैयार नहीं दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ अफसोस की बात यह है कि ईरान और अमेरिकी ब्लॉकेट के बावजूद चीन और पाकिस्तान के जहाज तो आर पार जा रहे हैं, लेकिन भारत के झंडे वाले जहाजों पर हॉर्मुज में हमले हो रहे हैं। जब से ट्रंप चीन के दौरे पर है, ईरान ने 30 से ज्यादा चीनी जहाजों को हॉर्मुज से जाने दिया। 10 मई को ही पाकिस्तान को भी एक टैंकर गैस का मिल चुका है, लेकिन 13 मई को गुजरात के कारोबारी सुल्तान अहमद अंसार के जहाज MSV हाजी अली को ओमान के लिमहा तट पर हमला कर डुबो दिया गया। सोमालिया के बेरबेका पोर्ट में भी भेड़ बकरियां लेकर जा रहा जहाज पर सवार 14 भारतीयों को क्रू को बहुत मुश्किल से ओमान के कोस्ट गार्ड ने बचाया। हालांकि हॉर्मुज से भारत को ईंधन की सप्लाई भी कुछ ही कुछ हो पाई है, लेकिन गैस लेकर 12 जहाज और तेल 1 जहाज भारत पहुंच चुका है, लेकिन भारत की ऊर्जा जरूरतों के लिए ये ऊंट के मुंह में जीरे जैसा हिसाब है। यही वजह है कि भारत भी पूरी कूटनीतिक ताकत के साथ हॉर्मुज खुलवाने की कोशिश में जुटा हुआ है। वहीं देश और विदेश के हर मंच पर भारत ईरान संकट को सुलझाने और हॉर्मुज खोलने के लिए जतन कर रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी आज 4 दिन की 4 देशों की यात्रा पर सबसे पहले UAE पहुंचे हैं, जहां पर वो जरूरी ऊर्जा करार का अनुमान है, तो दूसरी तरफ ब्रिक्स में विदेश मंत्रियों की बैठक में ईरान के विदेश मंत्री इधर दिल्ली में मौजूद है, जहां हमारे विदेश मंत्री ए जयशंकर के साथ उनकी थोड़ी देर में मुलाकात भी हुई है। और आपको बता दें कि दोनों तरफ फोकस यही है कि कैसे तेल संकट और गैस संकट से बचा जा सके। अब इन तमाम बड़ी खबरों पर हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची से एस जयशंकर की मुलाकात का मुद्दा क्या था और ईरान के साथ क्या भारत की ऊर्जा जरूरतों को लेकर क्या कुछ बातें हुई हैं।
5: देखिए सुमित, अगर आप देखें कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से जो सैयद अब्बास अराकची ईरान के विदेश मंत्री हैं, जो कि ब्रिक्स की बैठक के लिए यहां आए थे, लेकिन द्विपक्षीय मुलाकात भी हो रही है। ये मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब अराकची जब भारत में थे, उसी दौरान ये खबर आई कि एक जो भारतीय फ्लैग वाला जहाज है उसके ऊपर हमला हुआ है। ओमानी कोस्ट गार्ड ने उसमें जो भारतीय क्रू है उसको बड़ी मुश्किल से वहां पर बचाया है। और ये जो घटनाएं हैं ये लगातार भारत की चिंता बढ़ा रही है, न केवल ऊर्जा सप्लाई के लिए बल्कि जो वहां जहाजों की सुरक्षा है, क्योंकि अभी भी 11 जहाज भारत के वहां पर फंसे हुए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के दूसरी तरफ यानी फारस की खाड़ी के अंदर। जो वहां पर नाविक हैं, सीफेयरर्स हैं, उनकी सुरक्षा का सवाल है और भारत की चिंताएं हैं। और यही मुद्दा जो था वो एजेंडा पे हाई था भारत की तरफ से, विदेश मंत्री की तरफ से, जो ईरान के सामने रखा गया पश्चिम एशिया के हालात को सुलझाने के लिए क्या कोशिशें चल रही है, क्या कवायदें चल रही है, किस तरीके से इस मामले को सुलझाया जा सकता है, समाधान का कौन सा रास्ता निकल सकता है, अमेरिका के साथ जो बातचीत चल रही है ईरान की उस बारे में भी ईरान की तरफ से एक अच्छे साझेदार के तौर पर भारत के साथ वो चीजें साझा की गई, ईरान का पक्ष रखा गया। लेकिन भारत की तरफ से आग्रह फिर दोहराया गया, न केवल द्विपक्षीय स्तर पर बल्कि बहुराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत इस चीज की कोशिश कर रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जल्द से जल्द खोला जा सके। और इसके लिए जैसा मैंने कहा कि द्विपक्षीय स्तर पर तो मुलाकात के अंदर आज ये मुद्दा उठाया ही गया, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बहरीन और अमेरिका की तरफ से जो प्रस्ताव रखा जा रहा है जिसको करीब 120 से ज्यादा देशों का समर्थन हासिल है, उसमें भारत भी शरीक है।
4: बिल्कुल, एक और बात, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अबू धाबी में है और खासतौर पर यूएई भारत का बड़ा ऊर्जा सहयोगी भी रहा है, तो क्या इस संकट के काल में एक बार फिर से भारत के लिए दो चुनौतियां जो पड़े सबसे ज्यादा है कि अपने संबंध सुधारना, नए नए रास्ते या नई नई जगहों को तलाशना जहां से ये संकट को पूरा किया जा सकता है, वहीं दूसरी तरफ अपनी क्षमताओं को भी बढ़ाना, और उसके लिए भी आपको इन्हीं देशों की मदद की जरूरत पड़ेगी।
5: बिल्कुल ठीक है सुमित, अगर आप देखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आज 5 देशों की यात्रा पर रवाना हुए हैं, यूएई के एयर स्पेस में वो पहुंच चुके हैं, F-16 जो लड़ाकू विमान है उन्होंने एस्कॉर्ट किया है प्रधानमंत्री के विमान को, और कुछ देर में वो लैंड करने वाले हैं। ऊर्जा सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। आपने यूएई का जिक्र किया, यूएई भारत का चौथा सबसे बड़ा ऊर्जा सप्लायर है, भारत के अंदर एलपीजी सप्लाई के लिहाज से भी महत्वपूर्ण भूमिका यूएई की है। और प्रधानमंत्री की ये यात्रा यूएई की भले ही बहुत छोटी हो, महज 3 घंटे के करीब की ये उनकी यात्रा है, लेकिन इसके अंदर उम्मीद की जा रही है कि लॉन्ग टर्म एलपीजी सप्लाई, इसके अलावा स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व को लेकर महत्वपूर्ण समझौते इसके अंदर हो सकते हैं, और साथ ही एक ऐसा समझौते की भी उम्मीद की जा रही है, क्योंकि ये प्रस्ताव भी एजेंडा में शामिल है कि किस तरीके से भारत और यूएई से बाहर भारत के लिए ऊर्जा रिजर्व जो है वो सुनिश्चित किए जा सके, दूसरे तीसरे देश के अंदर भी उसको तैयार किया जा सके। इस प्रस्ताव के
4: ऊपर मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा, क्योंकि ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यूएई से, जहां पे प्रधानमंत्री मोदी यूएई पहुंच चुके हैं, और देखिए तस्वीरें, जैसा पढ़े भी बता रहे थे कि उनका F-16 जो उनके विमान थे उन्हें एस्कॉर्ट किया, और अब प्रधानमंत्री मोदी लैंड कर चुके हैं, और अब आप देखें कि गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया जा रहा है।

0: और देखिए हम ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, साथ में हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय भी जुड़ के प्रणय हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी इस समय यूएई पहुंच चुके हैं, गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया जा रहा है। और खास तौर पर इस ऊर्जा संकट के दौरान भारत अपने उन तमाम देशों मित्र देशों का रुख कर रहा है जहां से लगातार हम पहले भी हमारे एक तरीके का आप कह सकते हैं पार्टनर रहे हैं, इस सहयोग रहे। तो आखिरकार यूएई में से क्या उम्मीद की जा सकती है इस दौरे को लेकर?
1: देखिए प्रधानमंत्री का ये यूएई का दौरा कई लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये कि पश्चिम एशिया के अंदर जो ईरान युद्ध का जो संकट शुरू हुआ उसके बाद ये पहली यात्रा है प्रधानमंत्री की पश्चिम एशिया के इलाके के अंदर, और वो भी उस यूएई के अंदर है जिस यूएई ने कुछ ही दिनों पहले ये ऐलान किया कि वो ओपेक से अब बाहर आ रहा है। कुजरिया के का जो टर्मिनल है वहां पर भारत का बड़ा निवेश भी है, साथ ही जैसा मैंने कहा आपसे कि भारत की ऊर्जा सप्लाई के लिहाज से चौथा सबसे बड़ा सप्लायर है भारत की ऊर्जा जरूरतों का यूएई। तो ऐसे में भारत की कोशिश होगी कि यूएई के साथ में जो ऊर्जा निर्यात है या ऊर्जा आयात है यूएई से, उसका एक बड़ा सौदा जो है वो सुनिश्चित किया जाए, जिसे लॉन्ग टर्म एनर्जी सप्लाई कहा जाता है। लॉन्ग टर्म एनर्जी सप्लाई का एक करार अपेक्षित है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म एलपीजी सप्लाई जो है, चूंकि आप जानते हैं कि कच्चे तेल से ज्यादा जो बड़ा संकट महसूस किया गया है पिछले कुछ समय के अंदर या जिसकी आपूर्ति बाधित हुई वो एलपीजी थी, यानी खाना पकाने की गैस, और उसकी आपूर्ति के लिए भी एक समझौते की अपेक्षा की जा रही है। इसके अलावा भारत का रणनीतिक जो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व है उसके अंदर भी सबसे पहले शामिल होने वाले देशों के अंदर 2018 में यूएई एक देश था, इसलिए उसमें फर्दर विस्तार किया जा सकता है। भारत के रणनीतिक जो तेल भंडारण है उसके अंदर यूएई का और निवेश हो सकता है, यूएई और तेल आपूर्ति कर सकता है भारत के रणनीतिक ऊर्जा तेल भंडार को बढ़ाने के लिए। और साथ ही जैसा मैंने आपसे कहा कि किसी तीसरे देश के अंदर भी जो भारत से बाहर भी भारत के लिए स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व तैयार किया जा सके।
0: देखिए लगातार बिल्कुल ये बहुत महत्वपूर्ण उनका विजिट है, खासतौर पर ट्रेड और एनर्जी इन्वेस्टमेंट को लेकर एक बड़ा महत्वपूर्ण उनका विजिट रहा। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देश और दुनिया के लिए आप देखते रहिए आज तक।
2: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
4: मॉर्निंग पीपल वेक अप फॉर पीस एंड क्वाइट, मैकडॉनल्ड्स ब्रेकफास्ट पीपल वी वेक अप फॉर द स्वीट रश ऑफ गेटिंग दैट वार्म डिलीशियस ब्रेकफास्ट राइट बिफोर इट एंड्स।
5: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Ba-da-ba-ba-ba.

0: Grab some friends and an ice-cold Mountain Dew today.
1: Mountain Dew!
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. Country roads. So
3: thank God I get to wake
2: and everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn. Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
4: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry, TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
6: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने.
7: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ.
8: सोच बदलो और बैंक भी.
9: अभी एनटीए ने नीट यूजी का नई परीक्षा की तिथि घोषणा किया है. 21 जून को री एग्जामिनेशन की डेट घोषणा की है. मित्रों, मैं दो तीन विषय आपके सामने, आपके माध्यम से देशवासियों के सामने, स्पेसिफिक स्टूडेंट्स और उनके अभिभावकों के सामने रखना चाहता हूं. हमारी सर्वोपरि प्राथमिकता है छात्रों की भविष्य, उनकी परिश्रम के प्रति संवेदनशीलता सरकार की सदैव है. 3 मई को एग्जामिनेशन हुई. 7 मई तक एनटीए को, एनटीए की ग्रीवेंस रिजिस्ट्रेशन सिस्टम पे कहीं से आपत्ति आई, गेस पेपर में ऐसे कुछ प्रश्न आए हैं जो इस बार की क्वेश्चन शीट्स में था. तुरंत ही हम लोगों की वहाँ चर्चा हुई. एनटीए ने और सरकार ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तुरंत उसको प्रारंभिक थोड़ा इंक्वायरी किया, एजेंसियों को दे दिया, भारत सरकार की एजेंसियों को दे दिया. भारत सरकार एजेंसी संबंधित 2-3 राज्यों के साथ जुड़ा हुआ विषय था. प्रथम दृष्टिया में राज्यों की एजेंसियों से संपर्क किया और 12 तारीख तक, यानी 8 को सुबह प्रक्रिया एक प्रकार से 7 रात को शुरू हुई, 8 को ही शुरू हुई, 8, 9, 10, 11 3-4 दिन में जब हमको स्पष्टता हुई, हम कन्फर्म हुए हैं कि इस बार गेस्ट पेपर की आड़ पे क्वेश्चंस बाहर गया है.

0: Grab some friends and an ice-cold Mountain Dew today.
1: Mountain Dew!
2: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
3: Jack FM, now playing what we want, commercial free on TuneIn Premium.
4: What about me, Jack? What about me?
3: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
4: Well played, Jack. Well played.
3: Jack FM, playing what we want.
5: Complete oral health ka sir.
6: Gaadi number 1, gaadi number 2. केवल दो कार का काफिला लेकर प्रधानमंत्री को क्यों निकलना पड़ा? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो बार अपील करने के बाद अब देश को खुद अलर्ट करने के लिए अपना काफिला 90% तक घटा दिया है? आखिर क्या होने वाला है जिसके लिए सिर्फ दो कार में निकलकर प्रधानमंत्री सबको सावधान सतर्क कर रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री अपनी सुरक्षा में कमी करके देश को सजग कर रहे हैं कि बचत करिए तभी आर्थिक संकट से लड़ पाएंगे?
7: मैं आप सबसे, देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले, गोल्ड की जरूरत नहीं है।
6: पहले 10 मई को हैदराबाद, फिर 11 मई को वडोदरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नागरिकों से तेल की बचत करने और सोना एक साल नहीं खरीदने की अपील कर चुके हैं। इसके 3 दिन के भीतर जब कैबिनेट की मीटिंग के लिए प्रधानमंत्री मोदी निकलते हैं, देश से केवल तेल बचाने की अपील नहीं बल्कि उस डगर पर खुद चलकर दिखाते हैं जहां पर नरेंद्र मोदी के काफिले के साथ न तो उनकी पायलट कार दिखी, न तो एम्बुलेंस दिखी, न जैमर कार दिखी, न पहले जैसी वो सुरक्षा कारें जो किसी खतरे के वक्त प्रधानमंत्री के सुरक्षा काफिले में रहकर हर चुनौती से रक्षा करती आई हैं। केवल दो गाड़ी में बैठकर प्रधानमंत्री कैबिनेट की मीटिंग में निकलते हैं, लेकिन क्यों?
7: इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें, जिनके पास कार है वे एक गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ लेकर चले।
6: असल में प्रधानमंत्री उस डगर पर खुद चलकर देशवासियों को दिखा रहे हैं जिस पर चलने की अपील उन्होंने देश के नागरिकों से की है, जहां राजनीति नहीं बल्कि सबके मिलकर तेल बचाने वाली जुगत लगाने की जरूरत है।

15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम, कोई फीस नहीं लेंगे। अगले साल से कंप्यूटर से होगा नीट का इम्तिहान, खत्म होगा मार्क शीट, पेपर माफिया को जड़ से खत्म करने का ऐलान। धर्मेंद्र प्रधान का बयान, एनटी की कमियां सुधार कर रहेंगे। देश को महंगाई का तगड़ा झटका, पेट्रोल डीजल की कीमतों में 3-3 रुपए की बढ़ोतरी, सीएनजी 2 रुपए प्रति किलो महंगी। बढ़ती महंगाई के खिलाफ पूरे विपक्ष का हल्ला बोल। ब्रिक्स समिट में ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची से जयशंकर की मुलाकात, मीटिंग के बाद विदेश मंत्री का पोस्ट, पश्चिम एशिया के हालात और आपसी हितों पर हुई बात।

नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लंच ब्रेक, आपके साथ हूं मैं नेहा पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों के दौरे पर पहले चरण के लिए संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के आबू धाबी पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त अरब अमीरात के आबू धाबी में लैंडिंग के बाद गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पीएम मोदी 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में यूएई पहुंच

0: ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। जल्द से जल्द शांति और स्थिरता की बहाली के लिए भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। ब्रदर, हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को निरंतर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जनवरी में आपकी भारत यात्रा के दौरान हमने आपस से सहयोग को क्वालिटेटिवली अपग्रेड करने पर सहमति जताई। इतने कम समय में भी हमने सभी विषयों में उल्लेखनीय प्रगति की। दोनों टीमों के बीच भी करीबी संपर्क रहा। आज जिस तरह की परिस्थिति है इसमें भारत और यूएई की स्ट्रेटेजिक साझेदारी इसका महत्व कई गुना बढ़ गया। अब आने वाले समय में हर क्षेत्र में साथ मिलकर के आगे बढ़ते रहेंगे। एक बार फिर आपके अभिनंदन भरे स्वागत और गहरी मित्रता के लिए मैं हृदय से आपका बहुत बहुत आभार।
1: तो यूएई का हृदय से धन्यवाद रखते हुए प्रधानमंत्री यहां पर आपको सुनाई दिए। यूएई के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात और इससे पहले गार्ड ऑफ ऑनर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। यूएई पर जो हमले किए जा रहे थे ईरान द्वारा उसकी प्रधानमंत्री ने निंदा की। उन्होंने कहा कि भारत खुले तौर पर उन देशों के साथ है जो इस युद्ध का शिकार हुए हैं। प्रधानमंत्री ने यूएई पर जो बीते दिन हमले हुए जिसकी वजह से खास तौर पर दुबई में कई बदलाव देखने को मिले, कई फ्लाइट्स रद्द की गईं, काफी दिन तक ये डिस्ट्रप्शन जारी रहा और उसी को लेकर सद्भावना प्रधानमंत्री ने व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि जो भारतीय यूएई में बसे हैं उनकी मदद के लिए सदा तत्पर रहेगा, ये देश हमेशा प्रयासरत रहा है और आगे भी रहेगा।
0: विजन का परिचय दिखाया है यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं। कठिन समय यूएई में रहने वाले भारतीय समुदाय की चिंता करते हैं और उनकी देखभाल किया। जिस प्रकार से आपने उनको अपने परिवार के सदस्यों पर संभाला है, मैं यूएई सरकार का, आपका, रॉयल फैमिली का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। ब्रदर, पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। जल्द से जल्द शांति और स्थिरता की बहाली के लिए भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। ब्रदर, हमारी कॉम्प्लेक्स

0: कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को निरंतर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जनवरी में आपकी भारत यात्रा के दौरान हमने आपस से सहयोग को क्वालिटेटिवली अपग्रेड करने पर सहमति जताई है। इतने कम समय में भी हमने सभी विषयों में उल्लेखनीय प्रगति की है। दोनों टीमों के बीच भी करीबी संपर्क रहा। आज जिस तरह की परिस्थिति है इसमें भारत और यूएई की स्ट्रैटेजिक साझेदारी इसका महत्व कई गुना बढ़ गया है। अब आने वाले समय में हर क्षेत्र में साथ मिलकर के आगे बढ़ते रहेंगे। एक बार फिर आपके आत्मीयता भरे स्वागत और गहरी मित्रता के लिए मैं हृदय से आपका बहुत बहुत आभार।
1: प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। प्रणय, जो आज प्रधानमंत्री ने कहा है यूएई को लेकर, जाहिर तौर पर सौहार्द जाहिर करने की प्रमुख तौर पर कोशिश, क्योंकि ईरान के हमलों की विभीषिका यूएई ने झेली है।
2: निश्चित रूप से निहा, अगर इस पूरे संघर्ष के दौरान इसराइल से भी ज्यादा किसी एक देश ने सबसे ज्यादा ईरान की मिसाइलों ड्रोन्स का वार झेला है तो वो यूनाइटेड अरब अमीरात यानी संयुक्त अरब अमीरात है। और प्रधानमंत्री का इस पश्चिम एशिया तनाव के बीच में यूएई पहुंचना, इससे पहले उन्होंने बात भी की थी और हर बार उनका यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को ब्रदर करके संबोधित करना, ये बताता है कि भारत अपने जो व्यापक रणनीतिक संबंध है यूएई के साथ उसको कितनी अहमियत देता है। प्रधानमंत्री ने इस चीज का भी जिक्र किया, आपने नोटिस किया होगा नेहा कि जो भारतीय वहां पर मौजूद हैं उनका ध्यान रखने के लिए धन्यवाद उन्होंने ज्ञापित किया, कृतज्ञता जताई। और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि करीब 45 लाख से ज्यादा भारतीय जो हैं वो संयुक्त अरब अमीरात के अंदर मौजूद हैं और इस दौरान उनकी जानमाल की सुरक्षा से लेकर उनका ध्यान रखने जैसे जितने भी मुद्दे थे उनका प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया। यूएई और भारत की रणनीतिक साझेदारी की अहमियत को इस बात से भी समझा जा सकता है नेहा कि इस समय भारत में भले ही ऊर्जा संकट को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हो रही हो, बात हो रही है, लेकिन यूएई भारत का चौथा सबसे बड़ा ऊर्जा निर्यातक है यानी उसका सबसे बड़ा जो है सप्लायर है और उस लिहाज से भारत के लिए यूएई का साथ महत्वपूर्ण है। अपेक्षा की जा रही है कि जो समझौते हुए हैं उनके डिटेल्स कुछ देर में सामने आएंगे, लेकिन एक महत्वपूर्ण समझौता जो है वो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व जो भारत का है उसके अंदर यूएई अपना कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ा सकता है, इसकी उम्मीद की जा रही है। इसके साथ साथ जो लॉन्ग टर्म एलपीजी सप्लाई है उसको सुनिश्चित करने के लिए भी भारत जो है वो भारत के साथ में यूएई अपना सहयोग बढ़ाएगा या यूएई उसको सुनिश्चित करेगा। इसके साथ साथ भारत से बाहर भी जो है भारत के लिए स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व बनाया जा सके, इसमें भी यूएई जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। तो ये तमाम समझौते भी हैं, महज कुछ घंटे की ये स्टॉपओवर विजिट है प्रधानमंत्री की, लेकिन ऊर्जा संबंधों के लिहाज से, निवेश के संबंधों के लिहाज से प्रधानमंत्री ने जो है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी जो आर्थिक समझौता हुआ था उसका भी जिक्र किया। और 2022 से लेकर अभी तक अगर देखेंगे तो कई गुना दोगुने से ज्यादा की वृद्धि जो है वो भारत और यूएई के द्विपक्षीय व्यापार में हो चुकी है। भारत के एक्सपोर्ट का भी महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन यूएई है। तो भारत के आर्थिक सुरक्षा के लिहाज से, भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से और भारत में लोगों के लिए कामकाज की उनकी रोजगार सुरक्षा के लिहाज से यूएई एक महत्वपूर्ण साझेदार है। लेकिन इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने इस चीज का भी जिक्र किया कि इस इलाके में शांति और स्थिरता के लिए भारत डायलॉग और डिप्लोमेसी का पक्षधर रहा है और इसलिए इसके लिए जो भी भूमिका होगी भारत उसके लिए उसे निभाने के लिए न केवल तैयार है बल्कि अपनी सकारात्मक और सक्रिय भूमिका भी भारत निभाना चाहता है।
1: तो प्रणय, लगातार अब इस बात पर फोकस रहेगा प्रधानमंत्री का कि कैसे यूएई के साथ संबंधों को और बेहतर किया जाए और ये सभी जानते हैं, सर्वव्यापी है ये कि यूएई और भारत में लगातार सामंजस्य बना रहा है, कोई भी युद्ध आए वो इसे डिगा नहीं सका है।
2: बिल्कुल नहीं है, अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री ने कहा कि हम संकट की इस घड़ी में कंधे से कंधा मिलाकर यूएई के साथ खड़े हैं, हम ये भी महसूस कर रहे हैं कि यूएई ने बड़े संयम को का परिचय दिया है इस कठिन संकट के दौर के अंदर, और इस संयम की भी हम सराहना करते हैं। लेकिन भारत के और यूएई के आर्थिक संबंधों का दायरा काफी व्यापक है, जिसे हम सही मायनों में मल्टीफेसेटेड रिलेशनशिप जो कहते हैं वो भारत और यूएई की है। जैसा मैंने कहा आपसे कि भारत के निवेश के लिए अच्छी दृष्टि से यूएई की कई कंपनियों का भारत में निवेश है, भारत की आर्थिक सुरक्षा, भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से एक महत्वपूर्ण मित्र और साझेदार के तौर पर यूएई उभरा है, और भारत की जो ऊर्जा सुरक्षा है जिसको लेकर इस समय काफी चर्चा हो रही है उसके लिहाज से न केवल यूएई का ये प्रधानमंत्री का दौरा महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके आगे जो अन्य चार देश हैं जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं, चाहे वो नेदरलैंड्स हो, चाहे फिनलैंड, चाहे नॉर्वे हो, स्वीडन हो या इटली हो, इन तमाम देशों के अंदर भी ऊर्जा ट्रांजिशन, ग्रीन टेक्नोलॉजी, जो वैकल्पिक साधन है ऊर्जा के, उनकी जो टेक्नोलॉजी है उसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, यानी ऊर्जा सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा प्रधानमंत्री मोदी की इस पांच देशों की यात्रा में, जिसकी शुरुआत ही संयुक्त अरब अमीरात से हुई है जो कि चौथा सबसे बड़ा ऊर्जा निर्यातक है भारत के लिए, भारत की ऊर्जा जरूरतों की सप्लाई के लिए, चाहे कच्चा तेल हो चाहे एलपीजी की सप्लाई हो। जी
1: इस बीच आपको तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और उन्होंने एक स्टेटमेंट के जरिए बताया कि कैसे साझा कारोबार यूएई और भारत के बीच कई सालों से रहा है, द्विपक्षीय वार्ता में अक्सर ऊर्जा किस तरीके से संयंत्र की जाएगी और कैसे आने वाले वक्त में संबंधों को और प्रगाढ़ किया जाएगा, इस पर फोकस रहता है। लेकिन उन्होंने निंदा भी करी जिस तरीके से बीते दिनों युद्ध की विभीषिका यूएई ने झेली है, उन्होंने इस बात की निंदा की और कहा कि जो भारतीय वहां पर बसे हैं उनकी सहायता के लिए प्रधानमंत्री सदैव तैयार हैं। यूएई में कई बड़े समझौते जिसमें ऊर्जा सहयोग समझौता सबसे बड़ा समझौता माना जा रहा है, इस प्रधानमंत्री का विजिट का मकसद ही दरअसल ऊर्जा समझौता है, ऊर्जा सहयोग, रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार पर समझौता किया जाएगा, ये भी इस विजिट का मुख्य फोकस रहेगा। दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग समझौता किया जाएगा, ये प्रधानमंत्री की इस यूएई यात्रा का हाईलाइट रहने वाला है। प्रणय मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। प्रणय, ऊर्जा किस तरीके से बचाई जाएगी इस पर तो फोकस है ही, लेकिन ऊर्जा किस तरीके से बढ़ाई जाएगी या बाकी देशों के साथ कैसे साझा की जाएगी इस पर भी प्रधानमंत्री का फोकस रहेगा, और यही हो सकता है कि सबसे बड़ा पर्पस हो इस विजिट का।
2: निश्चित रूप से नेहा, अगर देखें दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा आयातक है, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाली व्यवस्था वाला देश भारत है, निश्चित रूप से भारत की ऊर्जा जरूरतें बहुत ज्यादा है, और उसमें यूएई की भूमिका महत्वपूर्ण है। जैसा मैंने कहा कि चौथा सबसे बड़ा ऊर्जा निर्यातक है भारत की जरूरतों के लिहाज से यूएई, और यही कारण है कि 2018 में जब भारत ने अपना स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व बढ़ाना शुरू किया तो उसमें सबसे पहले आगे आने वाले देशों में संयुक्त अरब अमीरात वो देश था जिसने उसमें अपनी भूमिका अदा की, और इसके साथ साथ अब स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व जब भारत बढ़ाने पर सोच रहा है, आईईए जो कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है उसके मानकों के मुताबिक करीब 90 दिन का स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व होना चाहिए भारत जैसे बड़े देश के पास में, तो उसको किस तरीके से तैयार किया जा सके। 5 लाख बैरल प्रतिदिन भारत जैसे देश की खपत है और उसके लिए जरूरत है कि भारत की जो ऊर्जा सप्लाई वो निरंतर हो सके। बीते कुछ दिनों के दौरान हमने देखा, चाहे वो रूस यूक्रेन युद्ध का मामला हो, चाहे अमेरिका की तरफ से लगाए गए टैरिफ हों, भारत की ऊर्जा सप्लाई को लेकर बहुत सारी चिंताएं उभरी हैं, और इस दौरान भारत ने अपनी ऊर्जा सप्लाई को डाइवर्सिफाई भी किया है, यानी अलग अलग देशों से, करीब 40 देशों से भारत अपने ऊर्जा का आयात कर रहा है, चाहे कच्चा तेल हो, चाहे एलपीजी हो, या जो अन्य साधन है उनका भारत आयात कर रहा है। संयुक्त अरब अमीरात एक रणनीतिक साझेदार के तौर पर न केवल भारत के साथ खड़ा रहा है, बल्कि भारत के अपनी ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने की जितने भी प्रयास हैं उसके अंदर एक महत्वपूर्ण साझेदार के तौर पर भी संयुक्त अरब अमीरात की
1: बात। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। इसी के साथ यहाँ रुकना होगा छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
5: Jack FM, now playing what we want, commercial free on TuneIn Premium.
6: What about me, Jack? What about me?
5: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
7: Well played, Jack. Well played.
5: Jack FM, playing what we want.
8: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's classic rock hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search classic rock hits or ask your smart device to play classic rock hits on TuneIn.
9: Sokudo.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
5: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
6: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
7: जीके मैक्स।
8: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
7: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
8: जेके वॉल मैक्स
7: बेस्ट पेंट।
8: जेके मैक्स।
7: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ JK Max Paints, खुशियों के रंग।
9: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
10: सोच बदलो और बैंक भी।
11: सर हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है,
12: पर मार्केट की समझना बाउंसर जा रही है।
11: आप कैसे कर लेते हो?
13: मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ।
12: म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो,
13: तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का
12: नहीं
13: और म्यूचुअल फंड्स है
11: सही।
14: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
15: करेक्टर द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
8: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
16: इसमें माइक्रोफाइबर है।
8: माइक्रोफाइबर यानी
16: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
8: हमारे सीमेंट में नहीं है?
16: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
17: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
5: JK मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद। JK मसाले, जहां स्वाद वहां JK।
18: Like I said before, we better hold this in.

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
1: Punjab National Bank, Bharose ka Prateek.
2: समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े. समर कूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल.
0: हिंट, बड़े आराम से.
2: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस.
3: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना. कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत. कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो.

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
2: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
3: 15 दिन पहले से पूरे देश में बंट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
1: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
4: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
2: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
1: जहां खबर वहां खबरदार।
5: इन एसोसिएशन विद
6: मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।
7: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
8: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
5: In association with
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
10: Accuray, the number one Korean skincare brand now in India।
11: The weather in Central Ohio just got better, so why shouldn't your loan rate? CME Federal Credit Union wants to try to beat your current loan rate by 2% on autos and toys. Plus, enjoy no payments for 90 days on car loans and no payments for 60 days on motorcycles, boats, and more. With car rates as low as 4.99% APR and toy rates starting at 6.5% APR, it's the perfect time to save. Apply today at cmefcu.org.
12: Terms apply. Minimum floor rates 4.99% APR cars, 6.50% APR other vehicles. Federally insured by NCUA.
13: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Yes, sir. Classic hip-hop. Or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
14: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
15: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
13: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
8: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
5: In association with
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

यूएई ने रखा भारतीयों का ख्याल। पेपर लीक कांड के बाद पहली बार सामने आए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। 21 जून को होगी नीट की री एग्जाम। परीक्षा के लिए मिलेगा 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम, कोई फीस नहीं ली जाएगी। अगले साल से कंप्यूटर से होगा नीट का इम्तिहान, खत्म होगा ओएमआर शीट। पेपर माफिया को जड़ से खत्म करने का ऐलान। धर्मेंद्र प्रधान का बयान, एनटी की कमियां सुधार कर रहेंगे।

हुई बढ़ती महंगाई के खिलाफ पूरे विपक्ष का हल्ला बोल। ब्रिक्स समिट में ईरान के विदेश मंत्री राक्षी से जयशंकर की मुलाकात। मीटिंग के बाद विदेश मंत्री का पोस्ट, पश्चिम एशिया के हालात और आपसी हितों पर हुई बात।

0: सरकार आप ही के साथ है।
1: नमस्कार, इस विशेष पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं नेहा बात। हम बात करेंगे नीट पेपर लीक मामले की। जिस परीक्षा को पास करने का सपना लाखों बच्चे देखते हैं, उनके माता पिता देखते हैं, उस परीक्षा पेपर लीक हो जाता है, लेकिन किसी की जिम्मेदारी तय नहीं होती। आज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहली बार मीडिया के सामने लगभग 3 दिन इस लीक के खुलासे के बाद आए और नई तारीख की घोषणा करके चले गए। 21 जून को दोबारा परीक्षा होगी। पहली बार सरकार ने माना कि चूक हुई है, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। इसके अलावा पेपर लीक का महाराष्ट्र चैप्टर भी आज हम यहां इस खास पेशकश में खोलेंगे। तो जब से पेपर लीक की खबरें आनी शुरू हुई हैं, देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, छात्रों में आक्रोश है, उनके अभिभावक आक्रोशित हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पूरे मामले पर काफी समय से चुप्पी साधे रहे, लेकिन पिछले 24 घंटे में उन्होंने टॉप लेवल बैठक की, कुछ कड़े फैसले लिए और आज वो पूरी तैयारी के साथ मीडिया के सामने आए। शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया कि अब गड़बड़ी नहीं होगी और जिन्होंने सेंधमारी की वो बचेंगे नहीं। 21 जून को दोबारा परीक्षा होगी।
0: कमांड चेन में कहीं ना कहीं ब्रीच हुई है, किसी को इस बार बख्शा नहीं जाएगा। अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से।
2: नीट पेपर लीक से छात्र गुस्से में है। गुस्सा उस व्यवस्था के खिलाफ जो एक साफ सुथरी परीक्षा भी नहीं करवा सकती। गुस्सा उस सिस्टम के खिलाफ भी है जिसने 22 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। नीट पेपर लीक मामले में बढ़ते आक्रोश के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर देर रात अहम बैठक हुई, जिसमें उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी, माध्यमिक शिक्षा सचिव संजय कुमार, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह, सीबीएसई के अध्यक्ष राहुल सिंह, नवोदय विद्यालय समिति और केंद्रीय विद्यालय संगठन के आयुक्त समेत दूसरे कई बड़े अधिकारी मौजूद थे। करीब 2 घंटे तक चली इस बैठक के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान खुद मीडिया के सामने आए।
0: अभी एनटीए ने नीट यूजी का नई परीक्षा की तिथि घोषणा किया है। 21 जून को री एग्जामिनेशन की डेट घोषणा की है।
2: तो परीक्षा की नई तारीख भी आ गई है, नोट कर लीजिए। 21 जून 2026 को नीट यूजी की पुनः परीक्षा होगी। 14 जून को एडमिट कार्ड जारी होंगे। छात्रों को एग्जाम सिटी चुनने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया जाएगा। परीक्षा कक्ष में 15 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा ताकि छात्र आसानी से ओएमआर शीट भर सकें। साथ ही इस बार छात्रों से वसूली गई पूरी परीक्षा फीस भी एनटीए वापस करेगा। इसके अलावा अगले साल नीट की परीक्षा ऑनलाइन करने का फैसला लिया गया है। 2027 से नीट भी सीबीटी मोड में होगा।
0: परीक्षा कैंसिल के दिन एनटीए ने एक निर्णय तुरंत कहा था कि हम जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे। हम उसमें एनटीए वचनबद्ध है और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी 0 फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए, हम उसकी दायित्व ले रहे हैं। अगले साल से परीक्षा, इसकी जो मूल जड़ है ओएमआर, अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी।
2: शिक्षा मंत्री ने साफ किया कि धांधली में शामिल किसी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो सिस्टम के अंदर का हो, बाहर का हो या फिर कोई और। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले कानून से बच नहीं पाएंगे। नीट पेपर लीक मामले में एनटीए भी आरोपों के घेरे में है। 22 लाख से ज्यादा मेडिकल उम्मीदवारों का भविष्य दांव पर है। शिक्षा मंत्री ने देश को आश्वस्त किया कि पेपर लीक को रोकने के लिए हर कदम उठाए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री भले ही आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन उन छात्रों का क्या जो सालों साल मेहनत करते हैं, ईमानदारी से डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, लेकिन सिस्टम की नाकामी उनकी मेहनत पर पानी फेर देती है।
3: सर हमारा टाइम भी तो वेस्ट हो रहा है ना सर, नीट एग्जाम प्रिपेयर करने के लिए इतने साल लगते हैं, सिर्फ बाद में MBBS के लिए भी इतने साल लगते हैं सर, फिर हमारे करियर कब सेट होगा अगर हम बार बार एग्जाम ही देते रहे तो।
4: अभी यही तो हुआ है, अभी 2026 में, ये 2017 में भी हुआ था, 2024 में भी हुआ था,
5: वो हर बार ही हो रहा है, मतलब पेपर हर बार लीक होता है पर वो समझता नहीं, इस बार समझ में आया। अब जैसे 2025 में पेपर बहुत ही डिफिकल्ट निकला था, इस बार बहुत सारे रिपीटर के भी बच्चे रिपीट कर रहे थे तो उनका ड्रॉप ईयर हुआ, और इस बार ऐसे दो बार लीक हो रहे तो उनका कॉन्फिडेंस भी डाउन हो रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए।
6: जो हमने पेपर के लिए मेहनत की है वो आज बर्बाद हो गई, क्योंकि पेपर लीक पहले ही हो चुका था, हमारी इतनी मेहनत करके कुछ फायदा नहीं होता, डॉक्टर बनने का सपना छोड़ रहे हैं, कुछ कुछ बच्चे 4-5 साल से रिपीट कर रहे हैं, उनका तो इस बार मतलब रो रो कर ही बेहाल है।
2: 21 जून तक देश के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय हो जाएगा, विपरीत परिस्थितियों में परीक्षा केंद्र तक पहुंचना भी छात्रों के लिए नई चुनौती होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए राज्य सरकारों से बात करेंगे ताकि छात्रों को कम से कम असुविधा हो। अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक।
1: तो पेपर लीक की जांच सीबीआई के सुपुर्द है, लेकिन इस जांच की शुरुआत राजस्थान पुलिस की SOG ने की। सबसे पहले राजस्थान से ही मांगीलाल का परिवार गिरफ्तार हुआ, उसी से पूछताछ में कुछ खुलासे हुए जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। मांगीलाल ने SOG को बताया कि 2025 में भी उसने यही खेल किया था, और इस खेल का वो सिर्फ अकेला प्लेयर नहीं है, इसके पीछे पूरा नेटवर्क काम कर रहा है।

0: नीट पेपर लीक केस की जांच में सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। महाराष्ट्र के लातूर से राजस्थान के जयपुर तक सीबीआई की अलग अलग टीमें कड़ियों को जोड़ने में जुटी हैं। बिवाल परिवार सीबीआई के रडार पर है। इस बीच बहुत बड़ा खुलासा हुआ। मांगीलाल और दिनेश पहले भी नीट का पेपर लीक कर आगे बेच चुके हैं। पूछताछ में आरोपियों ने खुद ये बात स्वीकार की। पिछले साल नीट 2025 में बेवाल परिवार के सभी 5 बच्चों को नीट का पेपर परीक्षा से पहले मिल गया था। 2025 में बेवाल परिवार ने 65 लाख में पेपर लिया और आगे बेचा। ये लोग नीट का पेपर महाराष्ट्र नेटवर्क से खरीदते थे और आगे बेचते थे। हरियाणा का यश यादव भी सीकर में रहकर पढ़ता था और इसी दौरान मांगीलाल परिवार के संपर्क में आया। मांगीलाल का बेटा विकास बेवाल भी इस पेपर लीक नेटवर्क की अहम कड़ी है। अब ये बात साफ हो चुकी है कि 2025 में बेवाल परिवार के जिन 5 बच्चों ने नीट क्रैक किया उनके पास पेपर पहले था। मांगीलाल बेवाल की बेटी प्रगति बेवाल दौसा मेडिकल कॉलेज में MBBS कर रही है। पंडित नवल किशोर शर्मा मेडिकल कॉलेज से वो प्रथम वर्ष के साथ छात्रा है, लेकिन पेपर लीक में जब उसके परिवार वाले गिरफ्तार हुए तो प्रगति बिवाल ने कॉलेज जाना छोड़ दिया। कॉलेज प्रशासन ने बताया कि प्रगति बिवाल छुट्टी की एप्लीकेशन देकर चली गई है। बिवाल परिवार के वो टॉपर बच्चे जिन्होंने 2025 में नीट क्रैक किया था वो भी दायरे में है। इस बीच सीबीआई की एक टीम ने जयपुर में बिवाल परिवार के घर पर धावा बोला।
1: नीट पेपर लीक 2026 में गिरफ्तार आरोपी मांगीलाल दिनेश और विकास के घर सीबीआई की टीम पहुंची है। आप देख सकते हैं किस तरह से घर में पूछताछ हो रही है, जांच हो रही है। यहां आसपास जो इनके घर में गाड़ियां थी उन गाड़ियों की भी तलाशी ली गई है। इसके अलावा भी जो सामान है उन सारे सामान की भी तलाशी ली जा रही है, पूछताछ हो रही है। अब इस तरह से निकल रहे हैं। क्या आप लोगों ने देखा, कुछ पाया यहां? कुछ आप लोगों ने जांच में वो इस तरह से अभी ये सीबीआई के जो अधिकारी हैं, हालांकि ये कुछ बोल नहीं रहे हैं, मगर यहां पर तफ्तीश चल रही है। जो महिलाओं के फोन हैं वो भी फोन के भी स्कैनिंग चल रही है और बाकी जो यहां पर कागजात हैं या जो भी सामान है उन सबकी तलाशी चल रही है।
0: मांगीलाल बिवाल, दिनेश बिवाल, विकास बिवाल, इस परिवार के तीनों सदस्य सीबीआई की गिरफ्त में हैं। मांगीलाल के घर से सीबीआई ने कुछ पेपर और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जब्त किए। सीबीआई का पूरा फोकस अब इस बात पर है कि जिसने पेपर खरीदा उस पर नजर रखो, जिसने पेपर बेचा, जिसने सेंधमारी की पेपर निकाला उसको पकड़ो।
1: यहाँ पर अभी अभी सीबीआई आई थी, घर से 4 फोन, 1 लैपटॉप और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण थे वो जब्त करके ले गई। अभी हम उसी घर पे खड़े हैं जहाँ पर 3 जयपुर के एक ही परिवार के 3 लोग, दिनेश, मांगीलाल और विकास की गिरफ्तारी हुई है। ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए थे और कई सालों से जुड़े हुए थे। आप देख लीजिए कि धनंजय हो या फिर यश हो या फिर वानखेड़े हो, ये सारे लोग आपस में एक दूसरे से कई सालों से जानते थे और ये पुराना काम था इनका। इसी बारे में सबूत इकट्ठा किया जा रहा है। सीबीआई ने इस बार पहल करते हुए जितने बच्चों को हिरासत में लिया था सबको छोड़ दिया है कि किसने किसने पेपर खरीदा है उसमें समय बर्बाद नहीं करना है, किसने किसने पेपर बेचा है उस पर फोकस करना है।
0: जांच एजेंसियों का ये मानना है कि सारा खेल कोचिंग माफिया का है। पकड़े गए लोग केवल नेटवर्क का हिस्सा थे। सीकर के कोचिंग संस्थानों पर भी नजर रखी जा रही है, साथ ही उस बड़ी मछली की तलाश है जिसके लिए बेवाल परिवार काम करता था। एजेंसी का मानना है कि ये सामान्य पेपर लीक का मामला नहीं है बल्कि वर्षों से व्यवस्था के समानांतर संगठित नेटवर्क की साजिश है। इस नेटवर्क के एक सदस्य ने अपने टास्क से हटकर काम किया जिसकी वजह से सीकर के कोचिंग संस्थानों के बीच आपसी कंपटीशन हुआ और पूरा खेल सामने आ गया।
1: सिर्फ 5 बच्चों को डॉक्टर बनाया है ऐसी बात नहीं है, ये कुरियर का काम करते थे, बाकी जगह भी सप्लाई करते थे और इसीलिए पिछले 4-5 सालों से सीकर में फ्लैट लेकर आ रहे थे और सीकर के जरिए इन्होंने ही, मांगीलाल दिनेश नहीं, ये जम्मू कश्मीर में, बिहार में, आंध्रा में, तेलंगाना में, केरला में ये पेपर भिजवाए हैं। इसलिए सीबीआई की एक टीम हमेशा जयपुर में कैंप करेगी और यहाँ से महाराष्ट्र एंगल पर तलाशा जा रहा है, बिहार का जो पुराना गुट है उसे भी तलाशा जा रहा है। बिहार मॉडल भी रहा है यहाँ पर जो 2025 में पूरी तरह से खुल नहीं पाया था।
0: खुलासा ऐसे हुआ कि सीकर की कोचिंग में पढ़ने वाले कुछ छात्र और फैकल्टी मेंबर 3 मई के बाद कथित पेपर लीक की शिकायत लेकर शहर के उद्योग नगर थाने पहुंचे थे। उनका आरोप था कि परीक्षा से पहले शहर में एक गैस पेपर घूम रहा था और परीक्षा में उसी पेपर के हूबहू सवाल आए हैं। सीकर के उद्योग नगर पुलिस ने इस शिकायत को हल्के में लिया, जिसके बाद छात्रों ने ईमेल के जरिए एनटीए में शिकायत की। फिर एनटीए ने उस ईमेल को राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को भेजा। जब एसओजी ने 8 मई की रात सीकर समेत कई शहरों में छापा मारा तो पूरा खेल उजागर हो गया। शरद कुमार, जयपुर आज तक।
2: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से जब आरोपों के दावों पर सवाल किया गया तो उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, जबकि हकीकत यह है कि मांगीलाल परिवार के 5 बच्चे 2025 में नीट पास कर गए थे। आज वो अलग अलग सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में लगे हुए हैं, हालांकि एक जेल में भी है।
3: पेपर लीक के आरोपियों ने कहा है कि पिछले साल भी पेपर आउट था।
4: मैं कम से कम अफवाह में हम ना जाए, कोई विषय में हम अफवाह में ना जाए। हम सब जिम्मेदार, आप सब राष्ट्रीय मीडिया हो, आप सबकी दायित्व है समाज में जो है। हम कुछ भी चीज हम छुपा नहीं रहे, कुछ भी चीज हम मुंह फेर नहीं रहे, लेकिन जो विषय है असम्पशन 20-25 लाख बच्चों के भविष्य की सवाल है। आपकी एक एक वाणी अनेकों के मन में उद्वेग खड़ा करता है। जो तथ्य है वो छुपना नहीं चाहिए। आपके सहयोग से हम यहाँ आए हैं, ये मीडिया ने यहाँ तक इसको लाया है, हम उसको आदर करते हैं, लेकिन हम ऐसा भी कुछ विषय ना करें जो अनावश्यक फिर एक बार तनाव खड़ा करे।
2: और अब खोलते हैं पेपर लीक का महाराष्ट्र चैप्टर। महाराष्ट्र को आप नीट पेपर लीक का एपिसेंटर कह सकते हैं, वो जगह जहां से ये पूरा नेक्सस चल रहा था। सीबीआई को शक है कि पुणे वो जगह है जहां ये सारा नेटवर्क ऑपरेट हो रहा है। इस गिरोह के सरगना हैं धनंजय लोखंडे और शुभम खैरनार। कैसे शुभम और धनंजय ने सबसे बड़ी परीक्षा में सेंध मारी की, इनके साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए।
4: कमांड चेन में कहीं ना कहीं ब्रीच हुई है, किसी को इस बार बख्शा नहीं जाएगा। अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से।
0: नीट पेपर लीक से छात्र गुस्से में है, गुस्सा उस व्यवस्था के खिलाफ जो एक साफ सुथरी परीक्षा भी नहीं करवा सकती। गुस्सा उस सिस्टम के खिलाफ भी है जिसने 22 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। नीट पेपर लीक मामले में बढ़ते आक्रोश के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर देर रात अहम बैठक हुई, जिसमें उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी, माध्यमिक शिक्षा सचिव संजय कुमार, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह, सीबीएसई के अध्यक्ष राहुल सिंह, नवोदय विद्यालय समिति और केंद्रीय विद्यालय संगठन के आयुक्त समेत दूसरे कई बड़े अधिकारी मौजूद थे। करीब 2 घंटे तक चली इस बैठक के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान खुद मीडिया के सामने आए।
2: इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, मनीषा वाघमारे और धनंजय लोखंडे को कोर्ट में पेश किया गया है। कोर्ट में सीबीआई ने कहा कि मनीषा ने धनंजय को पेपर दिया था। सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि अपराध बहुत सीरियस है और जांच शुरुआती दौर में है। ये वही मनीषा है जिन्होंने अलग अलग खातों में इस पेपर लीक के दौरान पैसे वसूले थे, पेपर को आगे फॉरवर्ड किया था, कई लोगों को बेचा था। कोर्ट में पेशी के दौरान सीबीआई की दलील ये है कि ये एक गंभीर अपराध है, बहुत सीरियस मामला है, जांच जारी है, ये सीबीआई की दलील। इस बीच तस्वीरें आपको लखनऊ से दिखा दें, जहां पर नीट परीक्षा रद्द होने को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। छात्रों का दरअसल लगातार देश भर में यही सवाल है कि उनका समय नष्ट हुआ है, उन्हें इस पूरे मामले में अब ये आश्वासन चाहिए कि आगे फिर कभी ऐसा नहीं होगा। कम समय में दरअसल नीट की परीक्षा की तैयारी काफी ज्यादा मुश्किल भी होती है। 21 जून को अब दोबारा परीक्षा होनी है, लगभग 1 महीने से थोड़ा ही ज्यादा वक्त बचा है। ऐसे में लखनऊ में प्रदर्शन छात्र कर रहे हैं। लंच ब्रेक में मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो.
7: मॉर्निंग पीपल वेक अप फॉर पीस एंड क्वाइट. McDonald's breakfast people, we wake up for the sweet rush of getting that warm, delicious breakfast right before it ends.
8: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's, limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
9: Ba-da-ba-ba-ba.
10: Hi, I'm Kingston Bagpuse. Some people say Talk Sports is possessed by the Premier League, but that's just not cricket. We're also charmed by the Champions League, fanatical about the FA Cup, and rampantly rabid about rugby, Formula One, and boxing. Talk Sports, the brashest, boldest, best soccer and sports opinion anywhere in the known universe. Live from London, England, Europe on TuneIn.
11: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
12: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn. Jam out to your favorite songs with today's hits. TuneIn has got you covered with the top songs of today. From pop songs to EDM bangers.
1: The hits are on.
0: And hip-hop beats.
2: I'm in the game, I should have joined with this G23.
0: Today's hits will keep the party going 24-7. Listen now. Just search today's hits or ask your device to play today's hits on TuneIn.
3: ये एक लंबी लड़ाई है परीक्षा माफियाओं के साथ साथ जो एंटी सोशल एलिमेंट अभी मित्रों टेक्नोलॉजी के समय में एक नई चुनौती बढ़ रहा है. विभिन्न प्रकार की सोशल मीडिया हैंडल से भ्रमात्मक तथ्यों को रखा जाता है, गुमराह करने की फिर कोशिश किया जाता है, फिर रीनीट की हम लोग एग्जामिनेशन तोड़ सकते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था को खुली चुनौती दिया जा रहा है. ये सारे को ध्यान में रखते सरकार ने तुरंत सीबीआई को काम सौंपी है. सीबीआई ने त्वरित कार्रवाई शुरू किया है. इस बार सीबीआई तह तक जाएगी, कहाँ वो कमांड चेन पे ब्रीच हुई है. राधाकृष्ण कमेटी को पूरा पालन करने के उपरांत भी कहाँ वो ब्रिज हुई है, उस ब्रिज को मेरा पूरा विश्वास है सीबीआई के ऊपर और जो संबंधित एजेंसी उनके साथ काम करे. सरकार की पूरी माइटी, सरकार की पूरा नेतृत्व, सभी विभाग उसमें से गंभीरता चीज को लेते हुए शीर्ष तो नेतृत्व उसकी लेके खूब दायित्व लिया है, चिंता कर रहा है. हम इस बार माल प्रैक्टिस होने नहीं देंगे. परीक्षा कैंसिल के दिन एनटीए ने एक निर्णय तुरंत कहा था कि हम जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे. हम उसमें एनटीए वचनबद्ध है और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी जीरो फीस होगा. हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए हम उसकी दायित्व ले रहे हैं. हमने एक बहुत जो शहर में विद्यार्थी परीक्षा देता है, एक बार एनटीए विस्तार से एनटीए एनेक्सर आपको देगा, कोरिनियम आपको आगे देगा डिटेल, शाम तक आपको एक, फिर एनटीए के पब्लिक बने प्रेस नोट के माध्यम से. लेकिन प्रथम दृष्टया जो एनटीए ने तय किया है कि हम एक सप्ताह विद्यार्थियों को अपने पसंद का शहर, क्यों कोई विद्यार्थी कहीं परीक्षा दिया होगा पिछले बार, परीक्षा देने के बाद उस शहर से छोड़ा भी होगा, फिर हम एक बार विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं, ये विंडो खुला रहेगा.
4: चोरी और सीना जोरी, ये वो परिवार है जिसके एक नहीं पांच पांच बच्चे एक साथ नीट निकालते हैं, देश के अलग अलग मेडिकल कॉलेज में दाखिला भी ले लेते हैं. इस विलक्षण पढ़ाकू परिवार की विस्तृत जानकारी हम आपको लगातार देते रहे हैं. जमवा रामगढ़ के इस परिवार पर एक बार फिर नजर डाल लीजिए, जिसकी हर शाख पर एक भविष्य का डॉक्टर है. गिरफ्तार मांगीलाल बिवाल के बेटे विकास को पिछले साल यानी 2025 की नीट परीक्षा पास करके सवाई माधोपुर मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला. मांगीलाल बिवाल की बेटी प्रगति को दौसा मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला. इन दोनों का तीसरा भाई जो जीवित नहीं, उस घनश्याम बिवाल के बच्चे पलक बिवाल को एसएमएस मेडिकल कॉलेज में नीट निकालकर एडमिशन मिला. दूसरी बेटी सानिया बिवाल को मुंबई मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल जाता है और गिरफ्तार दिनेश बिवाल की बेटी गुंजन को बनारस मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला था. यानी पांच बच्चे इस घर से नीट निकाल लेते हैं. राजस्थान के इस बिवाल परिवार से इस केस की तह में जाने का रास्ता जांच एजेंसियों को मिल तो गया है, कई और जानकारियां भी सीबीआई के हाथ लगी है. पहली ये कि नासिक के शुभम खैरनार ने प्रश्न पत्र लीक किया. 29 अप्रैल को उसने प्रश्न पत्र का पीडीएफ यश यादव को भेजा.
5: यश यादव से प्रश्न पत्र मांगीलाल और दिनेश के हाथों तक पहुंचा। ये भी खुलासा हुआ है कि तीन विषयों के 600 प्रश्नों का सेट भेजा गया था।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
8: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.

एमएपीएम मोदी का भूतपूर्व स्वागत। राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद के साथ तेल गैस से जुड़े कई महत्वपूर्ण समझौते। पीएम ने कहा, मुश्किल वक्त में यूएई ने रखा भारतीयों का ख्याल। पेपर लीक कांड के बाद पहली बार सामने आया शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। कहा, 21 जून को होगा नीट का री एग्जाम। परीक्षा के लिए मिलेगा 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम, कोई फीस नहीं लेंगे। अगले साल से कंप्यूटर से होगा नीट का इम्तिहान, खत्म होगा ओएमआर शीट। पेपर माफिया को जड़ से खत्म करने का ऐलान। धर्मेंद्र प्रधान का बयान, एनटीए की कमियां सुधार कर रहेंगे। देश को महंगाई का तगड़ा झटका। पेट्रोल डीजल की कीमतों में 3-3 रुपए की बढ़ोतरी। सीएनजी 2 रुपए प्रति किलो महंगी। बढ़ती महंगाई के खिलाफ पूरे विपक्ष का हल्ला बोल। ब्रिक्स समिट में ईरान के विदेश मंत्री अराग्ची से जयशंकर की मुलाकात। मीटिंग के बाद विदेश मंत्री का पोस्ट, पश्चिम एशिया के हालात और आपसी हितों पर हुई बात।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। और जैसे आपसे कहा था कि दोपहर दो बजते ही न्यूज रूम लाइव में हम आपके सामने हाजिर होंगे, तो न्यूज रूम लाइव में आपको बता देते हैं कि आज की सबसे बड़ी खबरें क्या रहने वाली है। आज सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विदेश दौरे पर जाएंगे तो क्या होगा, उसके बारे में बताएंगे। लेकिन तेल की कीमतों में कहां कहां उछाल आया। 2 रुपए पेट्रोल, 2 रुपए डीजल महंगा, 3 रुपए पेट्रोल, 3 रुपए डीजल महंगा हो गया है। और इसके साथ ही और भी कितना असर इसका देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ दिनों में, ये हम आपको बताएंगे। साथ ही दूसरी खबर हम आपको बता देते हैं कि आज न्यूज रूम लाइव में हम दूसरी खबर के बारे में बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई दौरे पर, एनर्जी सिक्योरिटी मिशन से जुड़े हुए कितने समझौते होने जा रहे हैं और इसका आने वाले वक्त में भारत पर क्या असर पड़ेगा, कितना फायदा मिलेगा, ये भी हम आपको बताएंगे। और तीसरी खबर आज की हम आपको बता देते हैं कि आज की तीसरी बड़ी खबर क्या रहने वाली है। तीसरी बड़ी खबर पेपर लीक पर, अब धर्मेंद्र प्रधान का पहली बार बयान सामने आया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आने वाले वक्त के लिए कैसे सुधार की बात उन्होंने कही है, ये भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही जो आज की चौथी बड़ी खबर होने वाली है वो भी हम आपको बता दें। अब से कुछ देर बाद, ज्यादा वक्त नहीं है, थोड़ी देर बाद भोजशाला मामले में फैसला आने वाला है, आधे घंटे बाद। और बहुत लंबा विवाद मध्य प्रदेश के धार का ये चला आ रहा है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, वो बड़ी खबर हम आपको बता दें। कोलकाता से ये बड़ी खबर आ रही है जहां पर जुमे की नमाज के बाद काफी हंगामा देखने को मिला। शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने थे और उन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही कह दिया था कि सड़क पर नमाज नहीं होगी, लेकिन कोलकाता में कुछ ऐसी तस्वीरें देखी कि अब हंगामा होता हुआ कोलकाता में दिखाई दे रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। और बताया जा रहा है कोलकाता के राजा बाजार में नारे तकबीर और अल्लाह अकबर के नारे भी लगे। सड़क पर नमाज पढ़ने की जिद को लेकर पुलिस से बहस हुई और बहस में सुना जा सकता है कि यहाँ पर काफी कुछ कहा जा रहा है। शुभेंदु सरकार ने ऐलान किया था कि नमाज अब सड़कों पर नहीं होगी, लेकिन आज राजा बाजार में नमाज के लिए लोग सड़कों पर आ गए। पुलिस एक्शन में आई तो फिर झड़प हुई, नारेबाजी शुरू हो गई। सड़कों पर जो लोग नमाज अदा करने आए थे उनको हटाने के जब कोशिश पुलिस की तरफ से की गई, कोलकाता पुलिस की तरफ से, तब वहां हंगामा हो गया और उसके बाद झड़प की स्थिति। देखिए कितनी भीड़ यहां पर मौजूद है। ये कोलकाता का राजा बाजार इलाका है जहां पर पहले सड़क पर नमाज हुआ करती थी, लेकिन सरकार बदली उसके बाद से काफी कुछ नियम कायदे कानून भी बदल गए हैं। देखिए आपको याद होगा कि शनिवार को शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उसके बाद ये पहला जुमा था और पहले जुमे में तस्वीरें देखी जा रही। तापस सेन गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तापस, मुख्यमंत्री पद की शपथ जैसे ही शुभेंदु अधिकारी ने ली, पहले जुमे की नमाज, जमकर हंगामा होता हुआ दिखाई दे रहा है, सरकार क्या कदम उठा रही है आने वाले वक्त के लिए?
1: जी देखिए, सरकार नई सरकार पावर में आने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने साफ तौर पे कह दिया था कि सड़क पर नमाज या फिर कोई भी धार्मिक किसी भी धर्म का हो वो सड़क पे नहीं कर सकते। और आज जुम्मे की नमाज थी और यहाँ राजा बाजार में भारी तादाद में लोग आते हैं और सड़क पे वो नमाज अदा करते हैं, लेकिन पूरे कोलकाता में शांतिपूर्ण तरीके से आज का दिन बीता है। लेकिन राजा बाजार में कुछ लोग सड़क पे आ गए थे और वो जिद पर अड़े हुए थे कि वो अपना नमाज अदा करेंगे तो सड़क पे ही करेंगे। मैं आपको ये चित्र दिखाता हूँ, यहाँ इस रास्ते से बाया एक मस्जिद आता है, वहां लोग नमाज पढ़ने के लिए रुके थे बड़े तादाद में, लेकिन पुलिस ने उन्हें मना किया था। लेकिन उसके बाद पुलिस के साथ कहासुनी हुई और उसके बाद स्थिति काफी तनावपूर्ण बन गई थी और उसके बाद पुलिस भारी मात्रा में सुरक्षा बलों को तैनात किया। और यहाँ पे देख सकते हैं कि सीआरपी के फोर्स भी यहाँ पर आ चुके हैं। फिलहाल जो स्थिति है वो काबू में है और इस समय शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे ट्रैफिक का आवाजाही भी शुरू हो चुका है। और जो पुलिस की ओर से बताया जा रहा है कि जो उपद्रवी थे उन्हें चिन्हित करने का काम हो रहा है, जो भी कोई इस तरीके का काम किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि सरकार का ये मैंडेट है पुलिस को कि किसी भी सूरत पे कोई भी सड़क पे कोई भी धार्मिक स्थल धार्मिक कार्यक्रम ना किया जाए। सिर्फ चुनिंदे दिनों को छूट दी गई है तो उसके
0: लेकिन
1: सामने
0: तापस ये तो एक जगह की तस्वीर है ना, ये तो राजा
1: आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे
0: ठीक है। लेकिन तापस आप हमारे साथ बने रहिए, जब भीड़ वहां पर थी पुलिस उनको हटा रही थी, नारेबाजी कैसे हो रही थी जरा वो एक बार सुनते देखिए। नारेबाजी आपने सुनी कोलकाता की सड़कों पर, राजा बाजार का इलाका बताया जा रहा है। तापस हमारे साथ बने हुए। तापस ये तो एक जगह की बात है ना, लेकिन कोलकाता में और आसपास जो पश्चिम बंगाल के जो और भी कई शहर हैं वहां पर हमने देखा है कि इस तरह से नमाज होती रही है। अब एक फैसला सरकार का, अब उसको अमल में लाना तो हंगामा हो सकता है, तो बाकी जगहों से क्या कुछ ऐसी खबरें तस्वीर आई हैं?
1: जी देखिए, बाकी पूरे राज्य में आज जुम्मा का दिन रहा है और शांतिपूर्ण तरीके से जुम्मा का नमाज अदा किया गया है, लेकिन सड़क पे नहीं बल्कि मस्जिद पे अदा किया गया था। और मैं वापस ये बात कहता हूँ, ये सिर्फ मुसलमान धर्म के लिए नहीं था, ये हिंदू धर्म के लिए भी था। कोई भी धर्म के लोग सड़क पे आके अपना पूजा या इबादत नहीं कर सकते, उसके लिए जगह ठीक किया हुआ है, वहां पर वो करे। लेकिन यहाँ कुछ लोग भावुक हो गए थे और उसके बाद वो सड़क पे आ गए, और क्योंकि वो सालों से यहाँ सड़क पे नमाज अदा किया करते थे, तो पुलिस ने जब इन्हें मना किया तो फिर पुलिस के साथ कहीं कहा सुनी हो गई थी, और उसके बाद यहाँ पर

0: फ्रेमवर्क पर समझौता हुआ। इससे पहले अबुधाबी पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जो आप इस वक्त तस्वीरों में देख रहे हैं। अब रिपोर्ट्स जो बता रही हैं कि यूएई एयरफोर्स के F-16 फाइटर जेट्स ने प्रधानमंत्री के विमान को एस्कॉर्ट किया। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई और दोनों देशों के बीच LPG सप्लाई को लेकर अहम समझौते हुए। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, रक्षा सहयोग, वाडिनार में शिप रिपेयर क्लस्टर से जुड़े MOU भी साइन हुए।
1: युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। जल्द से जल्द शांति और स्थिरता की बहाली के लिए भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। ब्रदर, हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को निरंतर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जनवरी में आपकी भारत यात्रा के दौरान हमने आपस से सहयोग को क्वालिटेटिवली अपग्रेड करने पर सहमति जताई। इतने कम समय में भी हमने सभी विषयों में उल्लेखनीय प्रगति की। दोनों टीमों के बीच भी करीबी संपर्क रहा। आज जिस तरह की परिस्थिति है इसमें भारत और यूएई की स्ट्रेटेजिक साझेदारी इसका महत्व कई गुना बढ़ गया है। अब आने वाले समय में हर क्षेत्र में साथ मिलकर के आगे बढ़ते रहेंगे।
0: नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। अब हमारे सहयोगी जो कि विदेशी मामलों के एक्सपर्ट भी हैं, प्रणय उपाध्याय हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रणय, ये बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 5 देशों का जो दौरा है उसमें पहला पड़ाव यूएई और कई समझौते कितने मायने रखते हैं, जरा गुणागणित समझाइए।
2: देखिए मानशु, बेहद छोटा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण ये दौरा कहा जा सकता है। और अगर आप देखें प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा का जिसका जिक्र आपने किया, वो ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। इसकी टाइमिंग, इसकी प्रासंगिकता आप समझ सकते हैं। इस समय जबकि भारत के अंदर लोग ऊर्जा संकट को लेकर चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ऐसे में महत्वपूर्ण समझौते का होना कि भारत को लॉन्ग टर्म LPG सप्लाई यूएई करेगा, साथ ही भारत के स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व के अंदर यूएई और अपना निवेश बढ़ाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण और राहत देने वाले संदेश के तौर पर इसे और समझौते के तौर पर देखा जा सकता है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से यदि देखा जाए तो यूएई 4th सबसे बड़ा साझेदार है। साथ ही भारत के स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व के अंदर भी 2018 से देखें के बाद से देखें तो सबसे पहले भारत के रणनीतिक जो ऑयल समझौता है या ऑयल रिजर्व्स हैं उसके अंदर निवेश करने वाला यूएई एक देश है। उसके लिहाज से, उसके अलावा न केवल भारत की ऊर्जा सुरक्षा बल्कि भारत की आर्थिक सुरक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है, भारत की निवेश सुरक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। इन तमाम पहलुओं के लिहाज से यदि देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी की
0: प्रणय। अब पेट्रोल डीजल की बात कर लेते हैं। जब आज सुबह आप लोग उठे होंगे तो जोर का झटका जोर से ही लगा होगा। ₹3 पेट्रोल, ₹3 डीजल बढ़ चुके हैं और पहले XP एक्स्ट्रा प्रीमियम पर बढ़े थे ₹2, लेकिन अब पेट्रोल डीजल जो आप लोग डलवाते हैं उस पर बढ़ चुके हैं। तो यानी इसका मतलब क्या है, जनता की जेब पर हमला, खाना पीना घूमना ये सब महंगा होगा। अब क्यों ये सब क्यों हो रहा है तो इसको समझना होगा। भारत पर ईरान युद्ध का असर दिखाई दे रहा है। हॉर्मुज समुंदर में आप कह सकते हैं जो बवंडर आया हुआ है उसका असर अब अलग अलग जगह देखने को मिलेगा, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं और इसका असर पूरी दुनिया ही नहीं अब भारत में भी पड़ने लगा है। तो चलिए हम आपको गुणागणित समझा देते हैं कि आखिर हुआ क्या है। पेट्रोल डीजल ₹3 महंगा हुआ है और इस महंगाई का असर अब जगह जगह देखने को मिल भी रहा है और हो सकता है कि ये शुरुआत हो, आने वाले वक्त में और ज्यादा दाम बढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति में आना है, तो करीबन 28 से 30 रुपए अभी और बढ़ा।

0: होंगे तो ये कुछ हालात हैं। अब आप यहाँ पर ऐसे समझिए, पेट्रोल डीजल 3 रुपए महंगा हो गया है। अब दिल्ली में आप समझिए, दिल्ली में जो 97 रुपए अब नए दाम ये हो गए हैं, पहले थे 94.77, यानी 3 रुपए बढ़ गए। मुंबई में 106 रुपए पहुंच गए हैं, चेन्नई में 103 रुपए पहुंच गए हैं, और कोलकाता में आएंगे तो 108.74 रुपए प्रति लीटर आपको पेट्रोल मिलेगा, जो कि पहले था 105.45 रुपए प्रति लीटर। ये हालात पेट्रोल और डीजल के बारे में हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले पेट्रोल जो 3 रुपए यहाँ पर महंगा हो गया है, डीजल के भी यहाँ पर आप देखिए पेट्रोल के पुराने दाम 94.77 रुपए। ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, चार जगहों की तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन बाकी जगह भी 3 रुपए बढ़ गए हैं। अगर कहीं पर 100 है तो वो 103 हो गया है, कहीं पर अगर 95 था तो वो 98 हो गया है। पेट्रोल और डीजल में कुछ यही हालात हुए हैं। लेकिन अब आप सोचिए, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, सुबह सुबह उठे पेट्रोल पंप पर पहुंचे तो पता पड़ा कि पेट्रोल डीजल महंगा है, तो धक्का तो लगेगा। तो आम लोग जो पेट्रोल भराने वहां पहुंचे थे, उनका क्या कहना है वो जरा सुन लेते हैं।
1: पेट्रोल बढ़ेगा, सीएनजी बढ़ेगी, सब चीज बढ़ेगी, तो सामान का भी ऐसा भी बढ़ेगा, क्योंकि जो सामान अगर दूर से आता तो उसका पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप 1 रुपया बढ़ाएंगे तो वो 3 रुपये बढ़ाएंगे।
2: बिल्कुल, हम लोग तैयार हैं, मोदी जी के लिए खड़े हैं, ठीक है। और रेट तो अभी और भी बढ़ेंगे, बट ठीक है, मोदी जी ने कुछ सोच रखा होगा, बस उसी हिसाब से मोदी जी के साथ ही खड़े हैं।
3: मतलब आप लोगों को भी अंदाजा था कीमतें तो बढ़ने वाली हैं।
2: बढ़नी है सर, और लगभग 20 रुपए से ऊपर जाएगा ये।
4: इतना हमें डायरेक्टली नहीं पड़ेगा, बट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट काफी ज्यादा है। हाँ। वो तो हम सबको ही पता है, जो बाकी कमोडिटीज है उन पे जो प्राइसेस बढ़ने वाले हैं,
3: घर के राशन से लेके सब्जियां तक।
4: एग्जैक्टली, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसपे इम्पैक्ट नहीं आएगा।
5: बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा, प्रधानमंत्री के जो मिशन है उसको ध्यान में रखा जाएगा।
6: तो उम्मीद थी कि महंगाई बढ़ सकती है।
5: हाँ, बिल्कुल बढ़ सकती है, इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने ये कदम उठाया है।
7: असर तो पड़ ही रहा है, बहुत असर पड़ रहा है।
8: कल दूध के दाम भी बढ़े, आज के दाम बढ़ गए,
7: दूध के भी दाम बढ़ गए।
9: महंगाई की फुल मार रहेगी। देखिए, अभी तो बड़ा लोगों में वो माहौल है कि आगे चल के कोई और ना समस्या आ जाए, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा।
0: लोगों को डर सता रहा है कि आने वाले वक्त में और भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से क्या क्या असर यहाँ पर होगा, चलिए ये हम आपको बता देते हैं। लेकिन अभी आप देखिए, चुनाव खत्म, महंगाई बम, पेट्रोल डीजल 3 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। ये 15 मई की बात की जा रही है, यानी 2026 आज 3 रुपए प्रति लीटर ये महंगा हो गया है। अब यही तो विपक्ष भी कह रहा है कि चुनाव खत्म, महंगाई आपने बढ़ा दी, 2 रुपए प्रति किलो महंगी सीएनजी भी हो गई है, ये भी आज की तारीख की बात की जा रही है। पेट्रोल डीजल 3 रुपए महंगा, सीएनजी 2 रुपए प्रति किलो अब महंगी हो गई है। अगर आप ये सोच रहे हैं कहीं रियायत है, तो अभी ऐसा नहीं है। 14 मई 2026 आपको याद होगा, 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ था। क्या हुआ था? अमूल दूध, चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, बच्चों को देते हैं, तो वो भी महंगा हो चुका है। ये अमूल दूध की बात की जा रही है, ये 14 तारीख की। 13 तारीख को क्या हुआ था, उससे एक दिन पहले सोना चांदी आयात शुल्क 6 से 15% कर दिया था। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपील कर ही चुके हैं कि 1 साल तक मत खरीदिए, क्या ही चला जाएगा। उससे पहले आ जाइए, 1 मई को क्या हुआ था, नीला सिलेंडर आपको याद है, जिसके लिए लूट मची हुई थी। 19 किलोग्राम का कमर्शियल सिलेंडर सीधे 993 रुपए महंगा कर दिया था। इतनी बढ़ोतरी देखकर लोग हाहाकार करने लगे थे। एलपीजी, जो छोटू सिलेंडर जिसको कहा जा रहा था 5 किलो का, 1 मई को वो भी 261 रुपए बढ़ गया था। ये था 5 किलो का, नीला वाला 19 किलो का। 20 मार्च को क्या हुआ था, 2 रुपए से 2 रुपए 30 पैसे तक महंगा हुआ था प्रीमियम पेट्रोल, जो XP95 आप डलाते हैं ना, 12 लीटर वाला वो। चेतन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चेतन, आम लोगों से जुड़ा हुआ मैं सवाल पूछना चाह रहा हूं, 3-3 रुपए तो यहां पर बढ़ा ही दिया पेट्रोल डीजल के दाम, क्या अभी के हालात को ध्यान में रखते हुए ये माना जा सकता है? आम लोगों का सवाल है कि और महंगाई अभी होगी, दाम और बढ़ेंगे?
10: देखिए, पूरा जो दारोमदार है वो डिपेंड करता है कि ग्लोबल ऑयल प्राइसेस अभी कैसे चलने वाले हैं। अब कुछ भी $80 के ऊपर क्रूड ऑयल जाता है तो हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को काफी नुकसान होना शुरू हो जाता है और वो सस्टेनेबल नहीं होता। अभी हम देख रहे हैं क्रूड ऑयल प्राइस जो है 100 से $105 के बीच में हॉवर अराउंड कर रहा है और 120 तक जा चुका है। आने वाले समय में अगर ये प्राइसेस रहे 100-105 में, तो आने वाले समय में कोई बड़ी बात नहीं है कि थोड़ा सा बिक्री और हो सकती है पेट्रोल डीजल प्राइसेस के बारे में। लेकिन आपको बता दूं जल्द से जल्द बैक क्या हो सकता है। आप लोग जो सब्जी और ग्रोसरी FMCG प्रोडक्ट्स, वो सब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट से लिंक्ड होती है। अगर डीजल जो बैकबोन होता है हमारी इकोनॉमी का, स्पेशली एग्रीकल्चर इकोनॉमी का, उसके चलते भी अगर प्राइस बढ़े तो हम कंज्यूमर्स को भी और पैसे देने पड़ेंगे। कस्टमर को भी अगर डिमांड मिलेगी, सप्लाई मिलेगी, तो डेफिनेटली उसका प्रीमियम हमको देना पड़ेगा। जो FMCG प्रोडक्ट जैसे बिस्किट, शैम्पू, सोप, पैकेज प्रोडक्ट, स्पेशली पेरिशेबल कमोडिटीज जो ठंडे कोल्ड चेन ट्रक्स में चलते हैं, उन पे भी काफी
0: मतलब अभी अगर आप ये सोच रहे हैं कि हालात सामान्य हो जाएंगे तो ये थोड़ा सा मुश्किल सा लग रहा है। ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब ये सब हो क्यों रहा है? क्योंकि कच्चे तेल क्रूड ऑयल महंगा होता जा रहा है। अब जब ईरान युद्ध हुआ था, ईरान युद्ध से पहले क्या दाम थे? $70 प्रति बैरल। ये दाम थे, अब ये बढ़कर कितने हो गए हैं, $100 से ऊपर, सेंचुरी मार गए हैं। आजकल खिलाड़ियों की सेंचुरी लगे ना लगे, लेकिन क्रूड ऑयल की सेंचुरी हो गई है, $100 प्रति बैरल से ऊपर ये दाम हो गए हैं, और इसीलिए तेल कंपनियों को हो रहा था बहुत ज्यादा घाटा, तो उन्होंने बढ़ा दिए दाम। अब हालांकि सरकार की सहमति थी आने वाले वक्त में ये और भी ज्यादा हो सकता है। अब तेल कंपनियों का घाटा, आप सोचिए पेट्रोल पर ₹28 प्रति लीटर तेल कंपनियों को घाटा हो रहा है, तो डीजल पर ₹32 प्रति लीटर अभी पेट्रोल कंपनियों को घाटा हो रहा है, और इसी घाटे को कम करने के लिए हो सकता है, देखिए पक्का नहीं है लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिन में और ज्यादा यहां पर अब बढ़ जाए। चलिए एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री आज मीडिया के सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और यूजी नीट को लेकर उन्होंने अपने बात रखी कि आने वाले वक्त में नकल माफिया को जड़ से खत्म करना चाहते हैं वो, जिस तरह से पेपर लीक होता है ये जो कोशिश की जाती है इसको पूरी तरह से खत्म करना है, और इसी के चलते आज प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, घोषणा की कि अगले साल से नीट यूजी परीक्षा कंप्यूटर आधारित फॉर्मेट यानी CBT मोड में आयोजित की जाएगी। छात्रों को उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार स्वच्छ, निष्पक्ष और सुरक्षित परीक्षा सिस्टम के प्रति प्रतिबद्ध है, और अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति या समूह को बख्शा नहीं जाएगा। अब देखिए ये भी तय हो गया है कि अब री एग्जाम 21 जून को होंगे, 3 मई को आयोजित परीक्षा के बाद सामने अनियमितताओं की समीक्षा के बाद ये तारीखों की घोषणा की गई है। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री, सवाल तो उनसे और भी पूछे गए थे कि पिछले साल भी ऐसा कुछ हुआ था क्या, तो उसके बारे में उन्होंने बहुत स्पष्ट जानकारी नहीं दी, लेकिन अब हम आपको समझाते हैं नीट पर प्रधान बातें हम आपको बता रहे, पेपर लीक पर, परीक्षा माफिया के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात उन्होंने की, उन्होंने कहा ये लड़ाई जारी रहेगी और जब तक उखाड़ नहीं देंगे जड़ से तब तक हम शांत नहीं होते। कुछ कमांड चेन टूट गई, गलती मानते हैं कि हाँ गलती तो हुई है, शिक्षा मंत्री कह रहे हैं गलती तो हुई और ये जो चूक हुई है ये हम मानते भी हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि आगे ये गड़बड़ी ना हो। NTA बहुत काबिल लीडरशिप में है, उन्होंने कहा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, किसी भी गलती पर हम लोग जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं और इसीलिए बख्शा किसी को नहीं जाएगा। राधा कृष्ण कमेटी सिफारिशें यहां पर लागू की गई हैं, यह भी बताया गया, जानकारी दी गई, किसी भी अफवाहों पर ध्यान ना दे। जब 2025 के बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि किसी भी अफवाहों पर ध्यान ना दे। अब 21 जून को फिर से नीट टेस्ट होगा, ये तारीख बहुत ध्यान रख लीजिए। दिवेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। दिवेश, नीट पर धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी बात रखी लेकिन छात्रों के मन में वही सवाल है जो अभी तक नहीं हो पाया, कि आने वाले वक्त में हम ये मान के चलें कि होगा एक ऐसा सिस्टम बनेगा जो बिल्कुल इस पर रोक लगाएगा।
11: हिमांशु आपको बता दे 2024 में पेपर लीक हुआ था, अब जो खुलासा सामने आया है तो ऐसा लग रहा है 2025 में भी पेपर लीक हुआ, क्योंकि बिवाल फैमिली जो है, जो राजस्थान का परिवार है जो इसमें आरोपी भी हैं इस नीट पेपर लीक केस में, उन्होंने 2025 में भी पेपर खरीदा और अब 2026 में भी लीक हो गया। लाखों लाखों एस्पिरेंट्स, लाखों बच्चे हैं जिन्होंने ये परीक्षा दी और उन्हें अब फिर से ये परीक्षा देनी पड़ रही है, तो मुश्किलें तो आ रही हैं और कहीं ना कहीं सिस्टम में चूक हुई है, इसी वजह से ये पेपर लीक हुआ है। पर सवाल ये उठता है कि क्या अब NTA ऐसा सिस्टम बना पाएगी? धर्मेंद्र प्रधान जी ने जरूर कहा है कि अब कंप्यूटर,
0: लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं और वही सवालों के जवाब चाहिए और इस बात की गारंटी भी चाहिए कि आने वाले वक्त में बच्चों के, छात्रों के साथ, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहे आज तक।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
13: मॉर्निंग पीपल वेक अप फॉर पीस एंड क्वाइट। McDonald's breakfast people, we wake up for the sweet rush of getting that warm, delicious breakfast right before it ends.
14: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's, limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Ba-da-ba-ba-ba.
15: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
16: TuneIn's How To A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
17: TuneIn has got your favorite podcast. From sports to special interests, did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
18: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
19: Sokudo.

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: सर, म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे एक सवाल पूछना था।
2: सॉरी सर, मार्केट की बात करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना था।
3: ऐसे सवाल मुझे डिस्टर्ब ही नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड्स की कोई भी बात हो ना, मैं शांति को साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड में आपकी शांति और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस दोनों बनी रहनी चाहिए। अपने लॉन्ग टर्म गोल से फोकस हटाने का
4: नहीं,
3: और म्यूचुअल फंड से
4: सही।
5: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
6: ये मिट्टी सिर्फ फसल नहीं उगाती, देश का भविष्य भी बनाती है, और इस भविष्य को संभालते हैं ये हाथ, हमारे देश के असली हीरो के हाथ, जिनके हाथ की ताकत है क्रिस्टल के उत्पाद। तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल के उत्पाद। देश का किसान, देश का हीरो।
7: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
8: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
9: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
10: और वही कहाँ गए थे घूमने?
11: जीके मैक्स।
12: वैसे रोहन, पढ़ाई में कैसा है?
11: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
13: जेके वॉल मैक्स।
11: बेस्ट पेंट
13: जेके मैक्स।
11: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
14: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
15: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
16: AU
17: सोच बदलो और बैंक भी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: यार
3: ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
4: इसमें माइक्रो फाइबर है।
3: माइक्रो फाइबर यानी
4: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
3: हमारे सीमेंट में नहीं है?
4: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
5: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
6: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके।
7: डायरेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
8: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
9: हर चेहरा सिर्फ एक नाम नहीं होता, उसके पीछे होती है एक कहानी। कभी सुर्खियों में, कभी सवालों में, हम बताते हैं उस चर्चा का सच। चर्चित चेहरा देखना न भूले सोमवार से शुक्रवार शाम ठीक 7 बजे सिर्फ और सिर्फ न्यूज तक पर।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा। इन एसोसिएशन विद
11: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एकजे, द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।
12: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
13: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all of your favorite music, news, sports, and more all in one place. Hear all of the audio you love, whether you're a music lover, interested in what's going on around the world.
14: We know that Hamas has agreed to a deal at some point, and
13: or want to catch your team's live play-by-play. It's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
12: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
15: EU करेंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। EU
16: सोच बदलो और बैंक भी।
7: Like I said before, we better hold the sins.
2: यार
3: ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
4: इसमें माइक्रो फाइबर है।
3: माइक्रो फाइबर यानी
4: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
3: हमारे सीमेंट में नहीं है?
4: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
5: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
6: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
1: Punjab National Bank, Bharose ka Prateek.
2: समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े. समर कूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल.
0: हिंट, बड़े आराम से.
2: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस.
3: 23 और 29 अप्रैल वोटिंग.
4: 90% क्रॉस कर गई बंगाल की वोटिंग.
5: ये बढ़ा हुआ मतदान आखिर किस तरफ जाएगा?
3: 4 मई काउंटिंग.
4: भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी पीछे हो गई है
6: रुझानों में बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए.
3: 8 मई सीएम का ऐलान.
7: शुभेंदु अधिकारी बंगाल के मुख्यमंत्री होंगे.
8: 9
3: मई शपथ.
9: शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते थे.
3: यूट्यूब पर सबसे ज्यादा व्यूअर्स, सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा एंगेजमेंट, सर्च में नंबर 1, गूगल ट्रेंड्स में नंबर 1, लाइव स्ट्रीम में सबसे आगे. टीवी हो, डिजिटल हो, यूट्यूब हो या सोशल मीडिया, हर प्लेटफॉर्म पर आज तक रहा चुनाव में सबसे आगे. चुनाव मतलब सिर्फ आज तक.
10: You and I have known each other now for a long time. In fact, the longest relationship of our two countries that any president and president has had. And that's to me an honor. We've had a fantastic relationship. We've gotten along. When there were difficulties, we worked it out. I would call you and you would call me. And whenever we had a problem, people don't know, whenever we had a problem, we worked that out very quickly. We're going to have a fantastic future together. Such respect for China, the job you've done. You're a great leader. I say it to everybody. You're a great leader. Sometimes people don't like me saying it, but I say it anyway because it's true. I only say the truth.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

लखनऊ में पेट्रोल के दाम 2.84 रुपए और डीजल के दामों में 3.01 रुपए की वृद्धि। आम जनता को अब पेट्रोल 97.55 रुपए प्रति लीटर और डीजल 90.82 रुपए प्रति लीटर उपलब्ध होगा। इसके साथ ही सीएनजी के दामों में भी बढ़ोतरी की गई। लखनऊ में सीएनजी के दाम में 2 रुपए की बढ़ोतरी। अखिलेश यादव ने तस्वीर के जरिए तंज कसते हुए कहा, आगे बढ़ना है तो साइकिल ही विकल्प है। अमित शाह से योगी की मुलाकात के बाद आज मंत्रियों विभागों के बंटवारे के आसार। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से भी मुख्यमंत्री योगी की मुलाकात। विभागों के बंटवारे में देरी को लेकर अखिलेश यादव ने कसा तंज, कहा क्या उनके विभागों की पर्ची भी ऊपर से आएगी। महाराजगंज में सीएम योगी ने 208 करोड़ रुपए की 79 से ज्यादा विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जनसभा को संबोधित किया। संबोधन के दौरान सीएम योगी ने विपक्ष और पिछली सरकारों पर साधा निशाना, कहा पहले की सरकार केवल कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए देती थी पैसे। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी आज दिल्ली में शीर्ष नेताओं से करेंगे मुलाकात। प्रदेश टीम को लेकर शीर्ष नेतृत्व के साथ चर्चा संभव। पंकज चौधरी आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर सकते हैं। प्रदेश संगठन में नई टीम और संभावित बदलावों पर चर्चा की संभावना। समाजवादी पार्टी प्रवक्ता राजकुमार भाटी द्वारा ब्राह्मण समाज पर दी गई टिप्पणी पर भड़की मायावती, अखिलेश यादव से माफी मांगने और पश्चाताप करने की अपील। समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए मायावती ने कहा, सर्व समाज का हित सिर्फ बीएसपी में ही सुरक्षित, बीएसपी यूज एंड थ्रो की नीति नहीं अपनाती। योगी सरकार का बड़ा फैसला, प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वालों के परिजनों को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का फैसला, अधिक फसल क्षति पर मुआवजे का भी आदेश। सहारनपुर में गाड़ियां छोड़ रिक्शे पर निकले बीजेपी विधायक मुकेश चौधरी, वीडियो वायरल हो रहा है। डीट पेपर लीक मामले में लखनऊ यूनिवर्सिटी में छात्रों ने किया प्रदर्शन, कहा लगातार पेपर लीक से छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही सरकार। गोरखपुर में तरबूज और मैगी बनी जानलेवा, एक ही गांव के 9 लोग बीमार होकर पहुंचे अस्पताल। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गंगा नदी में नाव पर बैठकर नॉनवेज पार्टी करने के 8 आरोपियों की जमानत मंजूर की, बाकी 6 आरोपियों की जमानत अर्जी पर 18 मई को होगी सुनवाई। इफ्तार पार्टी करने वाले 14 आरोपियों को 16 मार्च को गिरफ्तार किया गया था, बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष ने दर्ज कराई थी FIR। इटावा में शॉपिंग मॉल की लिफ्ट 50 मिनट तक फंसे रहे लोग, 2 बच्चों समेत 7 लोग रहे कैद, वीडियो आया सामने। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में शाहरुख नाम के एक युवक ने नाम बदलकर हिंदू नाबालिग को भगाया, युवती पर बनाया धर्म परिवर्तन करने का दबाव।

0: देखिए अब हम ये कह सकते हैं कि आखिरकार ईरान की जंग ने दुनिया भर का बैंड बजाना शुरू कर दिया है। 39 दिन की जंग, कितने लंबे वक्त से सीज फायर की बात कही जा रही है, लेकिन अब इसका असर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन पर दिखा अब पूरी दुनिया पर दिख रहा है। और अब लंबे वक्त बाद भारत में कहा गया था कि पेट्रोल डीजल पर इसका असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आखिरकार पड़ने लगा है। अब बहुत लंबे वक्त बाद ही सही, अब पेट्रोल डीजल पर 3-3 रुपए बढ़ गए हैं, सीएनजी भी 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ गई, और आने वाले वक्त में हो सकता है दाम और भी बढ़े।
1: वेतन बढ़ नहीं रहे, रेट बढ़ी जा रहे हैं मार्केट के अंदर हर एक आइटम के, और जो बढ़ा है ठीक है, और बढ़ेगा तो कुछ नहीं होगा।
2: इस ट्रंप ने ऐसी आग लगाई है कि ईरान की जंग में पूरी दुनिया का तेल निकलने लगा है, और हिंदुस्तान में अब लोगों की जेब भी जलने लगी है, क्योंकि एक साथ भारत में शुक्रवार की सुबह सीएनजी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए। पेट्रोल मात्र 3 रुपए लीटर महंगा हुआ है, डीजल भी मात्र 3 रुपए महंगा हुआ है, सीएनजी भी मात्र 2 रुपए किलो महंगी हुई है। कहां तो तेल कंपनियां रोज हजारों करोड़ रुपए का अंडर रिकवरी झेल रही हैं। इसकी भरपाई के लिए पेट्रोल डीजल 30 से 32 रुपए लीटर तक महंगा करना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ 3-3 रुपए की बढ़ोतरी को लेकर देश की जनता की प्रतिक्रिया क्या है सुन लीजिए।
3: तो महंगाई तो बढ़ती ही जा रही है हर तरह से, खर्चे बहुत ज्यादा ही होते जा रहे हैं, आम आदमी क्या करे समझ ही नहीं आ रहा है।
4: बढ़ोतरी तो सीएनजी वाले कर रहा है, गाड़ी वाले कर रहा है, कमाई में तो कमी हो रहा है।
5: इतना हमें डायरेक्टली नहीं पड़ेगा, बट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट काफी ज्यादा है। हाँ। वो तो हम सबको ही पता,
6: पेट्रोल बढ़ेगा, सीएनजी बढ़ेगी, सब चीज बढ़ेगी, तो सामान का भी ऐसा भी बढ़ेगा।
7: महंगाई तो बढ़ गया है, इट इज अ प्रॉब्लम फॉर एवरीवन, तो इम्प्रूव होना चाहिए।
8: साइकिल चलानी पड़ेगी भाई, अभी पैदल चलना पड़ेगा, क्या करेंगे, इतनी महंगाई में हालत खराब है। अपने को एक बार खाने को नहीं हो रहा है, गाड़ी कहाँ से चलाएगा।
1: सर देखो, सैलरियां बढ़ नहीं रही है, वेतन बढ़ नहीं रहे, रेट बढ़ी जा रहे हैं मार्केट के अंदर हर एक आइटम के, पेट्रोल गैस इतनी प्रॉब्लम है,
9: मुश्किल है इस टाइम पे ना। अभी जॉब में भी उतना है नहीं है कि बंदा कितना करता रहे।
10: महंगाई की मार तो है ही है, खासकर मिडिल क्लास आदमी पे, पर मजबूरी है, ये वार चल रही है, उसका असर तो पड़ेगा सबको।
11: ये तो देख ही रहे हैं, 5-6 साल से तो चढ़ ही रहा है। कहाँ 10 साल पहले 60 रुपए, 54 रुपए था, अभी समझ लीजिए 110 भी पार होने वाला है।
12: जिस हिसाब से जंग चल रहा है इस वक्त, हालात खराब है इस वक्त, तो बढ़ने की तो उम्मीद थी, लेकिन चलो 3 रुपए तो मेरे ख्याल में 12 रुपए का इम्पैक्ट नहीं पड़ गया, आम लोग ज्यादा सफर कर रहे हैं उससे।
2: पेट्रोल डीजल गैस की महंगाई का असर देश के बड़े शहरों के लोगों में मिला जुला देखने को मिल रहा है, लेकिन एक हिंदुस्तान छोटे शहरों और गाँव वाले इलाकों का भी है, जहां पहले से पेट्रोल डीजल गैस का किफायत से इस्तेमाल करने को मजबूर लोग अब इस महंगाई में असहज दिख रहे हैं।
1: जो बढ़ा है ठीक है, और बढ़ेगा तो कुछ नहीं होगा।
13: क्यों ऐसा क्यों, कभी पॉकेट में असर नहीं पड़ेगा?
1: पॉकेट का असर पड़ेगा, देश में मोदी है तो सब मुमकिन है।
14: सडनली 2-3 में आके बोल देंगे कि फ्यूल कम खर्चा करें, या तो इंजन कम खर्चा करें, गैस कम खर्चा करें, तो सब परेशानी बढ़ जाता है। अगर कुछ भी अगर प्रधानमंत्री जी बोलते हैं तो आदमी दूसरा ट्रैक पे चला जाता है।
2: पेट्रोल डीजल की महंगाई का अंदेशा देशवासियों को तभी से होने लगा था जब से पीएम मोदी ने किफायत के साथ तेल के इस्तेमाल की अपील की थी और देश के नेताओं के काफिले छोटे होने लगे थे। मंत्रियों, विधायकों, सांसदों की बाइक, रिक्शे, साइकिल की सवारी की तस्वीरें सामने आने लगी थीं, और इसका असर ये हुआ कि गुजरात में बनासकांठा, महिसागर, सूरत से वलसाड़ तक, और यूपी में नोएडा, गाजियाबाद, वाराणसी से कानपुर तक, बिहार में पटना से समस्तीपुर, तो हरियाणा में सोनीपत से फरीदाबाद और राजस्थान।
0: और एक बड़ी खबर आपको, बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, भोजशाला विवाद पर कोर्ट की तरफ से बहुत बड़ा फैसला आया है। हिंदू पक्ष की तरफ से जो मांग थी उसको स्वीकार किया गया है, और ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। हिंदू पक्ष की मांग को मंजूर कर दिया गया है, भोजशाला टेम्पल, या हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया। एएसआई की रिपोर्ट पे हाईकोर्ट ने विश्वास जताया है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट दी गई थी उस पर अब विश्वास जताया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, एसआई की रिपोर्ट पे हाईकोर्ट ने विश्वास जताया है और हिंदू पक्ष की मांग को मंजूर किया गया है। भोजशाला मंदिर जो विवाद चला आ रहा था उस पर हिंदुओं के पक्ष में फैसला हुआ है और बहुत लंबे वक्त से इस पर सभी की नजर थी कि आखिर क्या फैसला सुनाया जाएगा। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित ऐतिहासिक और विवादित भोजशाला परिसर को लेकर आज पूरे देश की निगाहें इंदौर हाईकोर्ट की खंडपीठ पर टिकी थी और जब फैसला आया तो हिंदू पक्ष में यह फैसला सुनाया गया। धार भोजशाला पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का यह बड़ा फैसला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई की तरफ से किए गए वैज्ञानिक सर्वे की रिपोर्ट दाखिल होने के बाद अदालत ने आज अपना फैसला सुनाया। और हालांकि आसपास बहुत संवेदनशील इलाके को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया था लेकिन हिंदू पक्ष की मांग को मंजूर किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोजशाला को मंदिर करार दिया है, एएसआई की रिपोर्ट पर विश्वास जताया है और ये कहा है कि धार भोजशाला मंदिर है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। हिंदुओं को पूजा का अधिकार दिया गया, ये भी ऐसी खबर अभी इस वक्त आ रही है। ये बड़ी अहम जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। धार भोजशाला विवाद केवल जमीन के एक टुकड़े का विवाद नहीं बल्कि आस्था, इतिहास और पुरातात्विक साक्ष्यों की एक ये जटिल गुत्थी थी जिस पर अब कोर्ट की तरफ से हिंदू पक्ष के पक्ष में फैसला।
15: ये जो मूर्ति है देखिए, ये वो मूर्ति है, उस मूर्ति की कॉपी है जो भोजशाला में स्थापित थी गर्भगृह में और जो जिसे तोड़ा गया था और बाद में इसे माता सरस्वती की इस मूर्ति को लंदन में ले जाया गया था और लंदन से मुख्य म्यूजियम में वहां रखी हुई है। तो हमने अपनी याचिका में इस बात की मांग करी हुई है कि जो लंदन की जो मूर्ति है जो म्यूजियम में रखी है माता भोज बागदेवी की भोजशाला की, उसको वहां पे ला करके गर्भगृह में स्थापित किया जाए। तो ये प्रतीकात्मक रूप से अभी मूर्ति है लेकिन जब फैसला आ जाएगा, अभी फैसला आने वाला है, हमारे पक्ष में आएगा फैसला, हमको पूरा विश्वास है।
16: अभी मूर्ति जो है कहां से बनवाई है?
15: ये मूर्ति माता बागदेवी की मूर्ति हर घर में आपको मिलेगी, हर भक्त के घर में मिलेगी मूर्ति आपको। जी बिल्कुल, बनवा के रखी गई थी हर भक्त के घर में माता बागदेवी, क्योंकि हमारा संकल्प इतना प्रबल है कि हर भक्त इस मूर्ति की पूजा करता है अपने घर में। और क्योंकि ये अभी वास्तविक रूप से
0: वक्त की आपको बता रहे हैं, भोजशाला मस्जिद विवाद पर कोर्ट का फैसला आता है। भोजशाला मंदिर मस्जिद जो विवाद चला आ रहा था और अब इसको हिंदू पक्ष के पक्ष में ये फैसला सुनाया गया है। रवीश पाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े। रवीश, क्या जानकारी आ पा रही है, क्या कहा कोर्ट की तरफ से?
17: देखिए अभी इसके मामले में फाइनल जजमेंट आना बाकी है लेकिन जो अभी तक वहाँ पे हुई है वहाँ पे कोर्ट ने ये मान लिया है कि जो एएसआई ने अपनी रिपोर्ट पेश की है वो तथ्यात्मक है और हाईकोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट पर भरोसा जताया है और ये कहा है।
18: देखिए आज भोजशाला के केस में माननीय देखिए आज
19: कोई को लगा लो वो दोनों
18: देखिए आज आराम से थोड़ा सा शांति रखिए। देखिए आज भोजशाला के केस में ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट का बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया है जिसमें ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट ने जो एएसआई का 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर है उसको पार्शली क्वैश किया है और हिंदू समाज के लोगों को वहां पे पूजा पाठ का अधिकार दिया है। कोर्ट ने भोजशाला कॉम्प्लेक्स को राजा भोज का माना है, एक सरस्वती स्कूल माना है लर्निंग का। साथ ही साथ इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भोजशाला के केस में जो हमारी मांग थी कि वहां से लंदन के म्यूजियम से मूर्ति वापस लाई जाए, कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर करे और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो मुस्लिम पक्ष हैं वो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं जो रिस्पोंडेंट नंबर 8 है मौला कमालुद्दीन की तरफ से और उनको अल्टरनेट लैंड देने के लिए सरकार उस पर विचार करे। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने यहाँ पे हमें पूजा पाठ का अधिकार दिया है, मैनेजमेंट के लिए सरकार को कहा है कि वो इसके मैनेजमेंट के लिए चीजें देखे और जो एएसआई का ऑर्डर था 7 अप्रैल 2003 का जो यहाँ पे नमाज की अनुमति देता था उसको कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। अब वहाँ पे सिर्फ पूजा होगी, उस पूरे परिसर का जो स्वरूप है वो एक हिंदू मंदिर का स्वरूप माना है कोर्ट ने, सरस्वती मंदिर का माना है।
20: आज भी नमाज हुई सर वहाँ पर?
18: ये आज आखिरी दिन था क्योंकि अब आज कोर्ट का ऑर्डर आ गया है।
20: कमाल मौलाना परिसर को लेकर के क्या कहा गया है?
18: पूरे कमाल मौला जो ये भोजशाला परिसर है
20: बाहर का जो एक और कमाल
18: नहीं, उसके लिए कुछ नहीं कहा गया, वो तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर भी नहीं था। कोर्ट ने मौला कमालुद्दीन को ये कहा है कि वो अल्टरनेट लैंड के लिए सरकार को प्रत्यावेदन दे सकते हैं और सरकार उसको कंसिडर करेगी। मतलब मूल बात यह है कि इस पूरे परिसर को जो हमारी मांग थी, हमारे हर एक आर्ग्यूमेंट को कोर्ट ने माना है और इसके स्वरूप को एक हिंदू मंदिर का परिसर घोषित किया।
19: मुस्लिम ट्रस्ट का किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है उसमें?
18: नहीं, कोई अधिकार नहीं है। और मुस्लिम ट्रस्ट के लिए कोर्ट ने कहा है कि अगर वो चाहें तो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं और अल्टरनेट लैंड देने के लिए धार के अंदर कहीं भी सरकार उसको कंसिडर करे।
19: अल्टरनेट लैंड दी जाएगी?
18: नहीं, कोर्ट ने ये कहा है, जो कोर्ट का वर्ड है मैं वो बता रहा हूँ कि अल्टरनेट लैंड के लिए वो प्रत्यावेदन देंगे, चाहे वक्फ बोर्ड की तरफ से, चाहे मौलाना कमालुद्दीन की तरफ से, और फिर उसको सरकार कंसिडर करे।
19: राम मंदिर में किया गया था उसी तरह?
18: जी जी जी जी सर, कोर्ट ने ये कहा है। देखिए, जो कोर्ट की वर्ड से मैं वो बता रहा हूँ,
19: मस्जिद के लिए मतलब अलग जगह दी जाएगी?
18: उन्होंने कहा दी जाएगी नहीं,
19: अगर मांग की जाती
18: तो सरकार उसको कंसिडर करेगी, ये कहा है।
19: कितने पेज का सर ये डिसीजन है? और
18: ये तो अब अपलोड होगा तो पता चलेगा, पर काफी बल्कि ये ऑर्डर है। और जो हमारी मूल मांग थी कि ये पूरा परिसर एक हिंदू मंदिर का परिसर है, उसको कोर्ट ने पूरा हमारे सारे आर्गुमेंट्स को माना है और उसको अलाउ किया।
0: जुड़ रहे हैं रवीश, अभी विष्णु शंकर जैन को सुन रहे थे, ऐतिहासिक फैसला बताया गया। आपके पास और क्या जानकारी आ रही है कोर्ट से?
21: देखिए अभी के बट
0: रवीश, सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए दोबारा हम हमारे सहयोगी रवीश से जुड़ेंगे। लेकिन अभी आप विष्णु शंकर जैन को सुन रहे थे, जिनका कहना था कि बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला ये है। संजय शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। संजय, कोर्ट के फैसले को किस तरह से समझे? हिंदुओं के पक्ष में ये फैसला गया है और ये कहा गया है कि वहां पर पूजा के लिए सारी जो जिम्मेदारी है वो सरकार का दायित्व है।
22: ये कोर्ट का ये फैसला अयोध्या फैसले की याद दिलाता है, जिसमें अयोध्या।
0: अच्छा, मैं एक बार फिर मैं आता हूँ संजय, दोबारा आपके पास आता हूँ। लेकिन रवीश इस वक्त मौके से हमारे साथ में जुड़े, रवीश क्या जानकारी आप आ रही है आपके पास? रवीश सुन पा रहे हैं आप?
23: जी जी, तो आपको बता दें इस वक्त जो है फैसला आ चुका है हाई कोर्ट की तरफ से। माँ वाग्देवी का मंदिर इसे बताया है, एसआई की रिपोर्ट पे अपनी मोहर लगाई है हाई कोर्ट ने। और शहर काजी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है क्योंकि नमाज पढ़ के निकले हैं और मुस्लिम समाज के भी तमाम लोग यहाँ मौजूद है। हम शहर काजी से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वो देखिए पुलिस यहाँ पे मौजूद है, तमाम लोग यहाँ मौजूद है और शहर काजी जो है वो यहाँ पे अपनी बात सामने रख रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्हें ये फैसला स्वीकार नहीं है। हमारे साथ मौजूद है शहर काजी, हम उनसे बात करते हैं क्योंकि यहाँ पे मौजूद है। शहर काजी से बात करने से तस्वीर आप देख रहे हैं, लगातार हम यहाँ पे बात करने की कोशिश कर रहे थे शहर काजी से, लेकिन पुलिस ने फिलहाल रोक लिया। लेकिन चलते चलते उन्होंने एक बात बोली है कि वो इसको स्वीकार नहीं करते हैं और ये जो समय है नमाज खत्म हुई है जुमे की और उसके बाद तमाम लोग बाहर निकले हैं। पुलिस ने यहाँ पे जबरदस्त सुरक्षा इंतजाम किए हुए थे और जैसे ही शहर काजी बाहर निकले और पत्रकारों ने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्हें फिलहाल रोक दिया गया है। पुलिस ने यहाँ एक दीवार बना दी है पुलिस कर्मियों की और अब आगे शहर काजी से बात करने से फिलहाल रोक दिया गया है। लेकिन हम आपको तस्वीर दिखाते हैं भोजशाला के बाहर की। यही वो विवाद था जिसने लंबे समय से शहर को एक तरीके से रंग में रंग दिया था पूरी तरीके से। आज अब जो फैसला आ गया है हाई कोर्ट का, इंदौर बेंच का, और उसने मान लिया है कि एसआई ने जो साइंटिफिक सर्वे किया था करीब 98 दिनों तक भोजशाला परिसर में रह के, उसमें जो फाइंडिंग्स उन्होंने पाई थी, जो मंदिर के प्रमाण पाए थे, मूर्तियां पाई थी, शिलालेख पाए थे, उस पर आज हाईकोर्ट ने मोहर लगा दी है और उसके बाद तमाम लोग यहाँ पे मौजूद है, आज बातें कर रहे हैं। आपके फैसले के बारे में सुना कुछ कहेंगे?
3: क्या?
4: मस्जिद है, मस्जिद मस्जिद।
3: तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, ये तस्वीरें हैं फिलहाल, अभी नमाज खत्म हुई है, निकल ही रहे लोग। शहर काजी से तो बात नहीं करने दी गई है, इसके बाद भी चलिए। तो अभी आप देखिए नमाज खत्म होकर निकल ही रहे लोग, लेकिन इन सबके बीच में जैसे हमने आपको बताया कि ये वो समय होता है इस शहर के लिए जो सबसे चुनौतीपूर्ण होता है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है ये शहर जब भी बात भोजशाला की आती है। और अब लंबे समय बाद ये जो पूरा विवाद था ये खत्म होता दिख रहा है, जब हाईकोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट पर अपनी मुहर लगा दी है। देखना यह है कि क्या मुस्लिम पक्ष है।
0: ठीक है, ठीक है, ठीक है। संजय जी हमारे साथ में इस वक्त जुड़े हुए हैं। संजय जी अब जरा बताइए इस पूरे मामले में डिटेल में, कब से मामला चला आ रहा था, एएसआई की तरफ से क्या रिपोर्ट पेश की गई है जिसके आधार पर आज एक बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से दिया गया।
22: कोर्ट का, हाईकोर्ट के इंदौर बेंच का ये फैसला है जिसमें ये कहा गया है, इसको अयोध्या के फैसले की याद दिलाता है। अयोध्या का फैसला भी ऐसा था कि मंदिर का परिसर वो हिंदुओं के मिल्कियत घोषित किया गया था और रामलला को उसका अधिकारी बनाया गया था, और ये कहा गया था कि 5 एकड़ जमीन मुस्लिम पक्षकार चाहें और अर्जी दें तो उन्हें अयोध्या के आसपास कहीं पर अलॉट की जा सकती है। वैसा ही उसी तर्ज पर यह फैसला भी आया है जिसमें कहा गया कि कमाल मौला मस्जिद के लिए अगर वो अर्जी दाखिल करते हैं तो सरकार उसको कंसीडर कर सकती है। तो कुल मिलाकर ये फैसला, ये काफी पुराना विवाद है और ये मतलब सदियों पुराना विवाद है जिसमें मुस्लिम पक्षकारों का ये कहना है कि वो कमाल मौला मस्जिद का हिस्सा है और दरगाह का हिस्सा है, और वहीं पर हिंदू पक्षकार इसे वाघ देवी का मंदिर बता रहे हैं। जिस समय राजा भोज की राजधानी थी धार नगरी, तो राजा भोज ने यहाँ पर, चूंकि उनको देवी वाग्देवी सरस्वती का आशीर्वाद वरदान प्राप्त था और वो यहीं उसकी साधना भी करते थे, और यहीं वो प्राचीन ऐतिहासिक और पौराणिक मंदिर है जहाँ वाग्देवी का मंदिर है, जहाँ पर जो सरस्वती की प्रतिमा थी वो प्रतिमा अंग्रेज उठाकर ले गए थे और मुस्लिम पक्षकारों ने वहाँ पर दावा किया।
0: आपको रोकता हूँ एक बार फिर से, रवीश का रुख करते हैं जो कि इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। रवीश बताइए आपके आस पास इस वक्त क्या कुछ तस्वीरें देखी जा रही है, हो क्या रहा है वहाँ?
3: देखिए यहाँ पे अचानक से हलचल बढ़ गई है और वही आज से ही मालूम चला कि हाईकोर्ट का फैसला आ गया है और हाईकोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट पर अपनी मोहर लगाई है जिसमें यहाँ पुराने शिलालेख और जो आकृतियाँ अंदर मौजूद थी जिन्हें सनातन धर्म की आकृतियाँ माना गया था, और कमल के फूल हो या तमाम दूसरी चीजें हों, तो उससे जैसे ही यहाँ पे जानकारी मिली तो जो शहर काजी वो यहाँ से बाहर निकले, लेकिन आप देख सकते हैं जो पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद हैं उन्होंने यहाँ पे शहर काजी से बात किसी को भी नहीं करने दी है। और ये जो फैसला होता है ये इतना ज्यादा संवेदनशील होता है धार शहर के लिए कि यहाँ पे जैसे ही इसकी भनक लगी है कि एक पक्ष के खिलाफ जो यहाँ पे जुमे की नमाज अदा करने आ जा रहा था उनके खिलाफ ये फैसला गया हाईकोर्ट का, तो यहाँ से तुरंत नमाज पूरी करके जो शहर काजी और उनके समर्थक जो है वो यहाँ से रवाना हो गए हैं। बाकी आमजन जो है वो एक एक करके बाहर निकल रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ पे पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। ये आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी यहाँ पे और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात हैं, और मंदिर के दोनों तरफ, भोजशाला के दोनों तरफ यहाँ पे आपको पुलिसकर्मियों से लेकर के महिला पुलिसकर्मी और तमाम वो लोग मौजूद होंगे। हम आपको दूसरी तरफ का भी हिस्सा दिखाते हैं, आप देखिए, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, मैदानी हालात क्या है। जैसे ही यहाँ पे फैसला आया है उसके बाद यहाँ पे पुलिस का एक वज्र वाहन जो है वो आ गया है, और ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये ठीक भोजशाला परिसर के बाहर की तस्वीर है जहाँ पे फिलहाल ये पुलिस का वज्र वाहन जो है वो यहाँ पे मौजूद है। आंसू गैस के गोले जो है वो लोड है यहाँ पे, अगर कोई यहाँ पे माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो फिर उसका भी जवाब दिया जाएगा, और ये तस्वीरें साफ तौर पर गवाही दे रही है। आप देख सकते हैं लगातार पुलिस की सीटियों की आवाज़ें यहाँ पे आ रही हैं, और ये इसीलिए क्योंकि पुलिस यहाँ किसी को रुकने नहीं दे रही है। अब अगर कोई यहाँ पे कोशिश भी कर रहा है तो फिर पुलिस उन्हें आगे बढ़ा दे रही है। लेकिन इस बीच में अब एक नई तस्वीर सामने आई है, हिंदू समाज के लोग इकट्ठे हो गए हैं यहाँ पे जिन्होंने सुना क्या क्या फैसला देखिए आप लोगों ने उम्मीद थी आपको
0: खुद हिंदू पक्ष के अधिवक्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। विष्णु शंकर जी, कोर्ट की तरफ से क्या अहम टिप्पणी की गई और आप इसे कैसे अपनी जीत मानते हैं, कितनी बड़ी जीत मानते हैं? चलिए दोबारा जुड़ेंगे विष्णु शंकर जैन से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने कहा था कि जो भी आर्गुमेंट हिंदू पक्ष की तरफ से रखे गए थे उन सभी आर्गुमेंट को कोर्ट की तरफ से माना गया है और ये भी कहा गया है कि अब यहाँ पर सुरक्षा को बढ़ाया जाए, पूजा का अधिकार यहाँ पर दिया जाए, जैसा कि कहा गया है। रवीश हमारे साथ में बने हुए हैं, रवीश कंटिन्यू कीजिए। एक बार फिर से विष्णु शंकर जैन हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विष्णु शंकर जी, कितनी बड़ी जीत आप इसे मानते हैं और कोर्ट की तरफ से क्या ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया?
5: देखिए, मुझे लगता है कि राम मंदिर के बाद ये दूसरा ऐसा फैसला है जो बहुत ही ऐतिहासिक है और इस फैसले में जो हमारी मांग थी कि इस पूरे परिसर का जो स्वरूप है, धार्मिक चरित्र है, वो एक हिंदू मंदिर का चरित्र है, माँ सरस्वती माँ वाग देवी की जगह है, ये बात, ये आर्ग्यूमेंट हमारा कोर्ट ने अक्षर अक्षर इसको माना है। साथ ही साथ कोर्ट ने यहाँ पे हमें पूजा पाठ का अधिकार दिया है और जो यहाँ पे गलत ढंग से नमाज होती थी कोर्ट ने उस आदेश को खारिज कर दिया, निरस्त दिया है। साथ ही साथ कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह भी कहा है कि जो माँ वाग देवी माँ सरस्वती की प्रतिमा आज ब्रिटिश म्यूजियम में रखी हुई है उसको भी वापस लाने के लिए जो हम लोगों ने प्रत्यावेदन दिया है उसको सरकार कंसिडर करे। और कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो मुस्लिम पक्ष यहाँ पे नमाज अदा करता चला आया है तो उनको धार शहर के अंदर ही कोई ऑल्टरनेट लैंड देने के लिए अगर वो ऐसा प्रत्यावेदन देते हैं, रिप्रेजेंटेशन देते हैं, तो सरकार उस पर विचार करे।
0: हाँ, विष्णु जी एक बात बता दीजिए, क्योंकि आपने ये कहा कि आपकी तरफ से जो भी आर्गुमेंट दिया गया कोर्ट की तरफ से उसे माना गया है, अब ESI की रिपोर्ट में क्या था, इस भोजशाला जिसको आप लोग मंदिर कह रहे थे क्या कुछ सबूत पाए गए थे जिसको कोर्ट ने भी माना है?
5: आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ASI ने इस जगह का पूरा एक साइंटिफिक स्टडी कंडक्ट किया ऑनरेबल जस्टिस धर्माधिकारी के 11 मार्च के ऑर्डर के बल पे और उसके बाद ASI ने यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा कि ये जो पूरा परिसर है ये एक हिंदू मंदिर का परिसर है। यहाँ पे अलग अलग ASI को चिन्ह मिले, निशान मिले जो हिंदू मंदिर की में होते हैं, बहुत सारी ऐसे शिलालेख मिले, बहुत सारे ऐसे चिन्ह मिले, निशान मिले, माँ सरस्वती ओम सरस्वती नमः, गणेश जी की मूर्तियां प्रतिमा, तीर्थंकर की मूर्तियां प्रतिमा, ये सारी चीजें ASI को अपने सर्वे के रिपोर्ट में मिली और फिर ASI ने एक कंक्लूसिव 2100 पन्ने की रिपोर्ट दी 98 डेज का सर्वे करने के बाद जिसमें ASI ने ये बात सिद्ध की कि हाँ ये पूरा परिसर एक हिंदू मंदिर का परिसर है। तो मैं इस फैसले को एक बहुत ही ऐतिहासिक बहुत बड़ा फैसला मानता हूँ और राम मंदिर के बाद ये दूसरा ऐसा एक फाइनल निर्णय है जो हाईकोर्ट की तरफ से आया है।
0: मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या विरोध जताया गया, वो आगे क्या उच्च अदालत की ओर जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट की तरफ?
5: अब देखिए मुस्लिम पक्ष उच्च अदालत की तरफ जाएंगे कि नहीं ये बात तो आप उनसे पूछिएगा, पर जहाँ तक हमारा सवाल है हमारी रिसर्च एकदम स्ट्रांग है और इंदौर हाईकोर्ट से आज हम जीते हैं और देखते हैं आगे लीगल कार्रवाई किसकी तरफ से क्या होती है।
0: विष्णु जी, हमने ये देखा है कि और भी कई मामलों में जिसकी आप पैरवी कर रहे हैं वहां पर भी आपने कहा है कि कोर्ट आपकी बात को सुन रहा है, वो सबूत देख रहा है जो आपने कोर्ट में पेश किए हैं, क्या आने वाले और भी कई ऐसे केसेस हैं जिनकी आप पैरवी कर रहे हैं वहां पर भी आपको लगता है कि ये फैसला एक मिसाल छोड़ सकता है?
5: बिल्कुल ज्ञान व्यापी का पैरवी चल रही है, मथुरा कृष्ण जन्मभूमि की पैरवी चल रही है, बंगाल में अदीना जो आदिनाथ मंदिर है जिसे अदीना मस्जिद कहा जाता है उसकी पैरवी चल रही है, विदिशा में जो हमारा बीजा मंडल का मंदिर है उसकी पैरवी चल रही है, कुतुब मीनार ताजमहल इन सारी जगहों की पैरवी चल रही है और समय आने पे कोर्ट के माध्यम से अपने लीगल आर्ग्यूमेंट के आधार पे हमें पूरी उम्मीद है कि हम सारी जगहों को मुक्त करा पाएंगे।
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए विष्णु शंकर जैन। और आगे इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं और क्या हालात इस वक्त बने हर एक तस्वीर आपको दिखाते रहेंगे, फिलहाल यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं इस वक्त की बड़ी खबर यानी हेडलाइंस।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
7: एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

बोचाला की कानूनी जंग में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत। हाईकोर्ट ने बोचाला को मंदिर माना। अदालत की दो टूक, मंदिर होने के तमाम सबूत मौजूद। पेपर लीक कांड के बाद पहली बार सामने आया शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। कहा 21 जून को होगा नीट का री एग्जाम। परीक्षा के लिए मिलेगा 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम, कोई फीस नहीं लेंगे। महंगाई का तगड़ा झटका, पेट्रोल डीजल की कीमतों में 3-3 रुपए का इजाफा। सीएनजी 2 रुपए प्रति किलो महंगी। बढ़ती महंगाई के खिलाफ पूरे विपक्ष का हल्ला बोल। यूएई में पीएम मोदी का अभूतपूर्व स्वागत। राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद के साथ तेल गैस से जुड़े कई महत्वपूर्ण समझौते। पीएम ने कहा मुश्किल वक्त में यूएई ने रखा भारतीयों का ख्याल। ब्रिक्स समिट में ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची से जयशंकर की मुलाकात। मीटिंग के बाद विदेश मंत्री का पोस्ट, पश्चिम एशिया के हालात और आपसी हितों पर हुई बात।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ, मैं नेहा बाथम। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं जो कि एमपी के धार से आ रही है। यहाँ पर धार भोजशाला को लेकर इंदौर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि परिसर हिंदू मंदिर है। हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की मांग पर दायर याचिका पर यह फैसला दिया है। एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि यह बड़ा फैसला एमपी हाईकोर्ट की तरफ से, जिसे हिंदू पक्ष ने इसका स्वागत किया है। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच अपना फैसला सुनाते हुए उन्होंने कहा कि मुस्लिम पक्ष अलग जमीन की मांग कर सकता है, लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट रूप से यह माना है कि भोजशाला का मूल स्वरूप एक संस्कृत अध्ययन केंद्र था जिसे परमार वंश के राजा भोज ने स्थापित किया था। यानी कि अब इस भोजशाला को एक मंदिर मान लिया गया है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई की सर्वे रिपोर्ट और ऐतिहासिक दस्तावेजों पर विचार करने के बाद यह माना गया है कि यह स्थान ऐतिहासिक रूप से राजा भोज की ओर से निर्मित एक संस्कृत शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो कोर्ट के फैसले की मुख्य बातें भी आपको बताते चले। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि ऐतिहासिक साहित्य और साक्ष्य ये साबित करते हैं कि इस विवादित क्षेत्र का मूल चरित्र भोजशाला के रूप में था, जो राजा भोज के समय संस्कृत सीखने का केंद्र था। इसके अलावा बेंच ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि स्थान पर हिंदू पूजा की निरंतरता कभी खत्म नहीं हुई। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए।
1: देखिए, आज भोजशाला के केस में ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट का बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया है, जिसमें ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट ने जो एएसआई का 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर है उसको पार्शली क्वैश किया है और हिंदू समाज के लोगों को वहां पे पूजा पाठ का अधिकार दिया है। कोर्ट ने भोजशाला कॉम्प्लेक्स को राजा भोज का माना है, एक सरस्वती स्कूल माना है लर्निंग का। साथ ही साथ इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भोजशाला के केस में जो हमारी मांग थी कि वहां से लंदन के म्यूजियम से मूर्ति वापस लाई जाए, कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर करे। और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो मुस्लिम पक्ष हैं वो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, जो रिस्पॉन्डेंट नंबर 8 है मौला कमालुद्दीन की तरफ से, और उनको अल्टरनेट लैंड देने के लिए सरकार उस पर विचार करे। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने यहाँ पे हमें पूजा पाठ का अधिकार दिया है। मैनेजमेंट के लिए सरकार को कहा है कि वो इसके मैनेजमेंट के लिए चीजें देखे। और जो एएसआई का ऑर्डर था 7 अप्रैल 2003 का, जो यहाँ पे नमाज की अनुमति देता था, उसको कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। अब वहाँ पे सिर्फ पूजा होगी, उस पूरे परिसर का जो स्वरूप है वो एक हिंदू मंदिर का स्वरूप माना है कोर्ट ने, सरस्वती मंदिर का माना है। देखिए, भोजशाला के केस में आज माननीय इंदौर हाईकोर्ट का बहुत ही अहम और ऐतिहासिक फैसला आया है। माननीय इंदौर हाईकोर्ट ने इस पूरे परिसर को एक हिंदू मंदिर का परिसर घोषित किया है, उसको माना है। साथ ही साथ यहाँ पे हिंदुओं को पूजा पाठ का अधिकार दिया है। और जो 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर था

0: गई थी जी। बोलिए।
1: तो अब नमाज पढ़ने की अनुमति भी नहीं है, इसके साथ ही वहां पर पूजा अर्चना की जा सकती है। लेकिन जिस तरीके से राजा भोज के ऐतिहासिक कई सारी स्मृतियों का विवरण भी दिया गया इस रिपोर्ट में, ये कहा गया कि इसके साक्ष्य मौजूद हैं, वो एक बड़ा आधार बना इस फैसले का।
0: यस देखिए, इतिहास जितने पुराने इतिहास है, जो हमारे ग्रंथ हैं, राजा भोज समय की जीवनी है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे है, धार्मिक ग्रंथ है, समय समय पर जो लोग आए हैं देखा है वो है, 1902 का उत्खनन है, सब मिलाते हुए कोई नहीं पाया कि हिंदू मंदिर था और हिंदू मंदिर है, इसीलिए फिर से अलाउ की गई है और मुसलमानों को वहां नमाज पढ़ने से रोक दिया गया है।
1: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हरिशंकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वरिष्ठ वकील हरिशंकर जैन जी को आप सुन रहे थे। इस बीच धार में मेरे सहयोगी रवीश पाल सिंह मौजूद हैं, उनकी वहीं से ये रिपोर्ट देखिए।
2: कटिया जी
3: बाहर निकले हैं,
4: जय जय जम, खाली कर दो रास्ते।
3: कैसा फैसले को देखते हो और आप कब आप लोग प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रहे हो?
5: बहुत बहुत अच्छा फैसला है, न्यायमूर्ति जो है उनने बहुत अच्छा फैसला दिया, उनका स्वागत करते हैं हम बहुत बहुत। और कई वर्षों के बाद हमारे कई बुजुर्गों ने इस बहुत साल के लिए प्राण दिए हैं, उनका बहुत प्राण।
6: देखिए, माननीय न्यायालय का फैसला बहुत ही सराहनीय है और न्यायालय ने तथ्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर फैसला दिया है। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष को सुनने के बाद में न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय दिया है और ये फैसला हिंदू पक्ष के उसमें आया है, तो हम भी माननीय न्यायालय इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसी को आधार बनाते हुए कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के प्रकरण में मान जमा करेंगे, क्योंकि वहां पर न्यायालय ने।
1: और अब रुक करेंगे हमारी खास पेशकश, महंगाई का ट्रिपल अटैक।
7: सीएनजी बढ़ेगी, सब चीज बढ़ेगी तो सामान का भी ऐसा भी बढ़ेगा,
8: महंगाई की फुल मार रहेगी। देखिए, आम आदमी को असर तो ज्यादा पड़ेगा ही पड़ेगा मैम, सबकी इनकम पे फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा ना।
9: गवर्नमेंट के पास भी ऑप्शन लेस है,
10: मोदी जी के लिए खड़े हैं, ठीक है, और रेट तो अभी और भी बढ़ेंगे।
1: तो आज से ही आम आदमी पर महंगाई का ट्रिपल अटैक हुआ है। वैश्विक ऊर्जा कीमतों में उछाल के चलते पेट्रोल और डीजल के दाम में 3-3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी गई है, साथ ही सीएनजी के दाम 2 रुपए प्रति किलो बढ़ा दिए गए हैं। बीते कई दिन से इस बात की आशंका थी कि मध्य पूर्व में युद्ध संकट के चलते अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे दबाव को कम करने के लिए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जा सकते हैं। आंकड़ों के मुताबिक महंगे कच्चे तेल और गैस की वजह से हर दिन करीब 1,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है अर्थव्यवस्था पर, जिससे ये संकट और गहरा रहा है। अब तेल कंपनियों के घाटे को कम करने के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई गई हैं। उधर हॉर्मुज संकट का अब तक समाधान नहीं निकल सका है, ऐसे में अगर इस संकट का जल्द कोई हल नहीं निकलता तो मुश्किल और ज्यादा बढ़ सकती है। तो आज सुबह सुबह बढ़ी हुई कीमतों का झटका लोगों को लगा और जिसका डर था वही हुआ, पेट्रोल डीजल सीएनजी तीनों के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए का इजाफा देखा।
11: वेतन बढ़ नहीं रहे, रेट बढ़ी जा रहे हैं मार्केट के अंदर हर एक आइटम के, जो बढ़ा है ठीक है और बढ़ेगा तो कुछ नहीं होगा।
12: बहुत असर पऊगा जी, असी तो फार्मिंग करते हैं, साढ़े तो बहुत ज्यादा प्रेशर पऊगा जी,
13: मजबूरी है, ये वार चल रही है, उसका असर तो पड़ेगा सबको।
14: करीब 2 साल की लंबे अंतराल के बाद तेल कंपनियों ने आखिरकार बड़ा झटका दे ही दिया। सुबह सुबह गाड़ी स्टार्ट करते ही जेब पर महंगाई का तगड़ा झटका लगा। पेट्रोल डीजल के नए दाम आज से लागू हो चुके हैं और इस बार सीधा 3 रुपए का बड़ा उछाल आया है। इसके साथ ही सीएनजी भी

0: 2 रुपए प्रति किलो तक महंगी हो गई है।
1: बढ़ोतरी तो सीएनजी वाले कर रहे हैं, गाड़ी वाले कर रहे हैं, कमाई में तो कमी हो रहा है।
2: इतना हमें डायरेक्टली नहीं पड़ेगा बट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट काफी ज्यादा है, वो तो हम सबको ही पता है।
0: ये बढ़ोतरी आम आदमी के घर के बजट का बैलेंस बिगाड़ने का डर बढ़ा रही है, क्योंकि इसके बाद न केवल अपना निजी वाहन चलाना महंगा होगा बल्कि कैब बस समेत पेट्रोल डीजल और सीएनजी से चलने वाले पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी महंगा होने की आशंका है। साफ है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों का ये बढ़ता ग्राफ गाड़ियों तक सीमित नहीं रहेगा, इसका सीधा असर हर उस सामान पर पड़ेगा जिसे आप खाते पीते या इस्तेमाल करते हैं।
3: तो महंगाई तो बढ़ती ही जा रही है, हर तरह से खर्चे बहुत ज्यादा ही होते जा रहे हैं, आम आदमी क्या करे समझ ही नहीं आ रहा है।
0: इस बढ़ोतरी की मुख्य वजह मिडिल ईस्ट का तनाव है। ईरान और अमेरिका के बीच जंग के हालात बनने से पहले क्रूड ऑयल $70 पर था, जो उछलकर $100 प्रति बैरल के पार चला गया है। सरकार पहले ये दलील दे रही थी कि पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका में कीमतें 15-20% बढ़ गईं, लेकिन भारत में बोझ नहीं डाला गया। लेकिन तेल कंपनियों को हो रहे भारी भरकम नुकसान के बाद देश में भी तेल के दाम बढ़ना तय था। कंपनियां अभी भी पेट्रोल डीजल पर 25-30 रुपए प्रति लीटर का नुकसान झेल रही हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो अगर ग्लोबल एनर्जी मार्केट में सप्लाई का संकट बना रहा तो आने वाले दिनों में कीमतें और बढ़ सकती हैं, जिससे आम आदमी पर महंगाई की मार और पड़ सकती है। आज तक ब्यूरो।
4: तो सभी खास पैनलिस्ट इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्सपर्सन सिद्धार्थ यादव जी मौजूद हैं, डॉली शर्मा जी कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, प्रोफेसर अरुण कुमार जी अर्थशास्त्री हैं, आशुतोष जी पॉलिटिकल एनालिसिस हैं, और इसके साथ ही प्रोफेसर बेजॉन मिश्रा जो कि कंज्यूमर पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, और प्रोफेसर दीप्ति तनेजा जो कि प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले सिद्धार्थ जी, आपसे शुरुआत करते हुए, क्या जो ये 3 रुपए पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा हुआ है, ये इजाफे की पहली किश्त माने धीरे धीरे करके कंज्यूमर को झटका दिया जा रहा है?
5: देखिए नेहा जी, मुझे लगता है कि जो वैश्विक संकट पूरे दुनिया पर आया हुआ है उसकी जानकारी देश के सभी लोगों को है। पूरी दुनिया देख पा रही है कि कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुल पा रहा है, युद्ध की स्थिति बनी हुई है, और उसके कारण से तेल को लेकर के खास तौर पर पूरी दुनिया में कंस्ट्रेंट है। हमारी सरकार ने लगभग 2.5 महीने तक उस तनाव को देश की जनता से बचाया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व ने भारत को एक ऐसे देश के रूप में बताया जहां पर दुनिया के अंदर 20 से लेकर के 100% के दाम बढ़ रहे थे, पर भारत में उसका कोई इंपैक्ट नहीं आया। 2024 से लेकर अब तक लगभग हमारी जो दाम थे वो बराबर रहे, और इंपैक्ट को कर्टेल करने के लिए 10-10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी सरकार ने कम भी करी। अब क्योंकि इसका इंपैक्ट लंबा है, और हम लोग सब जो यहां भी लोग मौजूद हैं सब शिक्षित लोग हैं, भारत अब एक बहुत प्रगतिशील शिक्षित देश है जो सब चीजों को जानता है, इसका इंपैक्ट क्योंकि बड़ा है, उसका कुछ ना कुछ इंपैक्ट कंज्यूमर तक भी आएगा। प्रधानमंत्री जी ने देश के अभिभावक के नाते देश के सभी लोगों से अपील करी है कि हम ऑयल पर अपनी डिपेंडेंसी, उसका कंजम्पशन कुछ कम करें, हम इंपोर्ट्स में जो बड़ा गोल्ड इंपोर्ट होता है हम उसका कंजम्पशन कुछ कम करें, हम उसको खरीदने से बचें, फॉरेन ट्रेवल से बचें। ये चीजें वो हैं कि हमको देश के नाते सब लोगों को एक साथ मिलकर के इस वैश्विक संकट के साथ लड़ाई लड़नी है। हमारी सरकार ने जो प्रभाव देश की जनता पर 2.5 महीने पहले आ सकता था और बड़ा प्रभाव हो सकता था, ये 3 रुपए आज जो तेल का दाम बढ़ा है।
4: सर चुनाव चल रहे थे ना डॉली जी,
5: चुनाव ये तो बहुत कन्वीनियंट पोजीशन हुई कहने की,
4: प्रधानमंत्री ने अपील करी,
5: चुनाव के कारण चीजें नहीं होती, देश के कारण
4: अपील करी उन्होंने। आपको लग रहा था एक बेस सेट किया जा रहा था, लोगों को थोड़ा कंफर्टेबल किया जा रहा था ताकि जिस तरह का इजाफा हो उस पर लोग थोड़ा सा वाकिफ हो जाए, पहले से एंटिसिपेट कर ले, और चुनाव होते होते ये अनाउंसमेंट हो गया?
6: देखिए बंगाल में चुनाव था और कई जगह चुनाव था और पूरा अमली जामा और हर चीज वहां लगानी थी, तो तब तक वैश्विक संकट और पूरे विश्व का संकट नहीं था। लेकिन अब चुनाव खत्म हो गया तो प्रधानमंत्री जी को भी याद आया कि देश में संकट चला है। यही प्रधानमंत्री जी, इनकी जरा एक वीडियो मैं सुनाना चाहूंगी, बच्चों ध्यान से सुनना, 2014 से जो प्रधानमंत्री जी के बयान शुरू हुए थे और अब अच्छे दिन।
5: वॉल्यूम बढ़ाइए।
7: 60 महीने दीजिए, 60 महीने
4: 14 का बयान।
7: मैं आपको सुख चैन की जिंदगी दूंगा, ये वादा करने आया। मैंने सिर्फ
4: 16 का बयान
7: 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाई।
8: क्या जरूरत है अगर वीडियो भी सुना,
7: अगर 30 दिसंबर के बाद
8: अपने मुंह से बता दीजिए ना क्या कहना चाहते हैं।
4: 30 दिसंबर के बाद कोई कमी रह जाए,
7: मेरी गलती निकल जाए,
4: कोई गलती निकल जाए,
7: कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए,
8: पूरी करिए पूरी इच्छा।
7: आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा
4: ठीक है। ठीक है, डॉली जी समय की थोड़ी कमी है।
3: ऐसा ही बयान 23 में
4: ठीक है, 2-3 बयान हो करना। अब अपनी बात रखिए, अब अपनी बात रखिए।
3: 25 और फिर 26 देखो सुन नहीं पा रहे, यही तो प्रॉब्लम है कि विपक्ष की सुनते नहीं है।
4: वक्त की कमी रहती है, सभी पायलट बोलेंगे।
3: जब हमने कहा था सिलेंडर की किल्लत हो रही है,
8: सुनाएंगे तो सुनेंगे,
3: आज दिक्कत हो रही है, आज वॉर की वजह से ये परेशानी आ रही है, तो कह रहे थे विपक्ष जो है अफवाह फैला रहा है। जब हम लाइनें दिखा रहे थे सिलेंडर की, तो यही चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे विपक्ष क्या कर रहा है, अफवाह फैला रहा है। अगर हम आज भी कहेंगे तो ये देशभक्त हो जाएंगे और हम अफवाह फैला रहे हैं। सच्चाई प्रधानमंत्री जी ने देश को बताई, बंगाल के चुनाव से पहले संसद में बताई। उत्तर देने की जल्दी इतनी मत करिए, पहले मुझे बोलने
8: उत्तर नहीं दे।
3: उसके बाद अब आज जो महंगाई की मार पड़ रही है ना, वो आपके नेताओं पर नहीं पड़ती। जब आप विधायक खरीदते और पूरे के पूरे रिजॉर्ट खरीदकर अपने विधायकों को खरीद बेच कर सरकार गिराते तब नहीं गिरती, लेकिन महंगाई तब होती है क्योंकि महंगाई की मार आम जनता के घर पर जाती है। दूध जब महंगा होता है, सिलेंडर जब महंगा होता है, जब और बाकी चीजें महंगी होती है। मेरे बेटे के ट्यूशन टीचर ने कहा फोन करके, मैडम 4,000 में सिलेंडर मिल रहा है, आप फीस बढ़ा दो। ये हर घर की मुझे लगता है आज दिक्कत है। तो आज उस दिक्कत से कैसे बचा जाए, सरकार वो बताए। पापा वॉर रुकवा देंगे तो आप पापा हॉर्मोन्स खुलवा दे।
8: हो गया, अभी ताली बजा दे, क्या करें?
3: नहीं नहीं, ताली
8: बजा दो उनके लिए।
4: हम लोग ये वर्ड उपयोग ना करें।
8: अब मैं उत्तर दे देता हूँ। सरकार से कुछ प्रश्न पूछा गया, 10 सेकंड तो दीजिए,
4: मैं आप पर आऊंगी।
8: आप सरकार का प्रश्न है, वो भी उत्तर हम नहीं दे पाएंगे तो कौन देगा?
4: बेजोन जी, मेरा आपसे सवाल है, जब कंजम्पशन किसी चीज का कम करने के लिए कहा जाए और इसकी अपील 2 बार की गई कि आप विदेश यात्रा से बचें, आप ईंधन की कम खपत करें, वर्क फ्रॉम होम करें, जो खाने का तेल है वो कम खाएं, ये किस तरह का संकेत इकोनॉमी के लिए देता है? क्या ये एक नेगेटिव संकेत है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अगर आप कम करने को कहते हैं?
9: नहीं, नेगेटिव नहीं है, बिल्कुल नेगेटिव नहीं है। ये एक्चुअली एक जागरूकता लाने की बात है। लोगों के अंदर ये समझना चाहिए कि जब कोई भी संकट आता है तो हम लोग को सबको एकत्रित होकर एक साथ फेस करना होगा उसको। और केवल हम खाली सरकार करेंगे तो नहीं होगा। सरकार का केवल अकेले की जिम्मेदारी नहीं है। सरकार कौन है? आप लोग सब हैं सरकार, ये समझ लीजिए। ये पॉलिटिकल भाषा में मत आइए आप लोग।
4: ठीक है, नेगेटिव संकेत नहीं है। अब सिद्धार्थ जी आप अपना जवाब दीजिए, क्योंकि हमने चुनाव से पहले ये सुना था और ये युद्ध का संकट तो फरवरी एंड से चल रहा है, फरवरी एंड से लेकर अब मई में हम आ गए हैं, अचानक से ये संकट आया है या फिर आपके पेट्रोलियम मंत्री ने ये संकट माना ही नहीं? पर्याप्त ईंधन था, बार बार लगातार हर प्रेस कॉन्फ्रेंस वो यही कह रहे थे।
5: देखिए, सबसे पहले जब मैं कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता की बात सुन रहा था, कोई भी परिवार में आर्थिक संकट आ जाए ना तो एक पड़ोसी जरूर होता है जो तुरंत आकर के उसका मजा लेने लगता है। देखो देखो इनके पास पैसे खत्म हो रहे हैं, देखो देखो इनके पास समस्या आ रही है, देखो देखो
4: गाली बीच में नहीं आ रहा। जब वो बोल रहे थे भाई, वो एक
5: शिक्षा मंत्री भाई, मैच्योरिटी से भी डिबेट हो सकती है कि नहीं हो सकती, शांति से डिबेट हो सकती है।
3: शिक्षा मंत्री शिक्षा पे बात पेट्रोल पे बात नहीं करेगा।
4: अरे जवाब तो लेने दीजिए,
3: क्या करेंगे हिंदू मुस्लिम?
5: मैं देखो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने तो इन पर बात करी, मैं इनके बात कर रहा हूँ, बढ़िया सुनना नहीं चाहते। अब इनको सुनने में समस्या है। आप बोल लीजिए 10-12 20
3: वो भी विपक्ष को सवाल नहीं उठाना चाहिए।
5: ज्यादा आने की आदत हो
4: डॉली जी, सिद्धार्थ जी का जवाब भी तो सुनिए, दोनों एक साथ बोलेंगे तो
5: ज्यादा
4: कैसे
5: आना है?
3: नीट पे बोल,
5: सुन लिया आपके नेता ने,
4: राहुल
5: जी सुन रहे हैं अभी, सुन लिया। मैं एक तो आग्रह करूंगा, बहुत गंभीर विषय, हम मैच्योरिटी से भी डिबेट कर सकते हैं। मैं भी जब इनकी बात सुन रहा था, बिल्कुल ऐसा ही आदत है, एक पड़ोसी जरूर कहता है देखो देखो मजा लेने लगता है। ये समय चटकारे लेने का नहीं है। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि 2.5 महीने पहले बढ़ा देना चाहिए था? सरकार ने ये आर्थिक बोझ देश की जनता पर नहीं आए 2.5 महीने तक उसको रिजिस्ट किया, गलत किया, ये कहना चाह रही है कांग्रेस पार्टी।
3: जब तक आप रिजिस्ट, अरे फिर से आपको मिर्ची गिरती है,
5: मेरी एक लाइन में इतनी तेज मिर्ची लगती है कूदने लग जाते हैं। अभी हॉर्मुज पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में,
3: पहले गिरती थी।
5: अरे सुन लीजिए भैया, सुन लीजिए, हॉर्मुज गए होंगे वहां से टैंकर निकलवाने। समस्या दूसरी है, देखिए समस्या ये है, आज के समय पर जैसा सर ने अभी कहा, ये किसी भी देश के लिए मेरे पास ये आंकड़े हैं हर देश के। मैं आपको उदाहरण के लिए बता देता हूं, फिलीपींस 53%, श्रीलंका 41%, साउथ अफ्रीका 63%, कनाडा 32%, न्यूजीलैंड 88%, थाईलैंड 32%, बेल्जियम 30%, वियतनाम 50%। इतने दाम बढ़े हैं, हर देश की लिस्ट है। गल्फ के बाहर कोई प्रोग्रेसिव इकॉनमी, मैं 10 सेकंड पूरा कर रहा हूं, आप प्रश्न पूछ लीजिएगा।
4: हमारा फटा कम है, वो ऐसा,
5: ये तो कोई बात नहीं है। तो हम लोग
4: कोई इकॉनमी की बात करिए, अपनी इकॉनमी में अर्थव्यवस्था के लिहाज से क्या ये ईंधन के दाम बढ़ाना सही है और क्या ये पहली किश्त है? मैंने आपसे ये सवाल पूछा था जिसका आपने सीधे तौर पर जवाब नहीं दिया।
5: मैंने जवाब दिया, आपको पसंद आया हो, आपको पसंद आया हो, मैं जवाब दे देता हूं।
10: हम लोग
5: वो कर रही है डॉली जी, आपका भी काम कर रही है, मैं दे रहा हूं उत्तर। हम लोग मिल्की वे गैलेक्सी के बाहर नहीं है नेहा जी, हम लोग इसी दुनिया में रहते हैं। ये कैसी बात हुई, पूरी दुनिया बढ़ा रही है, 99% देशों ने हमसे ज्यादा बढ़ा दिया, भारत में उसकी तुलना मत करिए। क्यों मत करिए? ये संकट कोई भारत का संकट है? ये संकट कोई भारत लाया हुआ संकट है? वैश्विक संकट में मैच्योरिटी से देश को सामने आना है, भारत मैच्योरिटी से काम कर रहा है। ये प्रिएम्प्टिव मेजर्स हैं, मैं फिर दोहराता हूं, आपके दर्शकों को पता होना चाहिए, ये क्राइसिस के मेजर्स नहीं है। और भारत 2013 वाला भारत नहीं है जहां फिजिकल डेफिसिट 6% हो, इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ हो, फॉरेन एक्सचेंज ना हो। हम लोग मैच्योर हैं, मजबूत हैं और मजबूती से इसको लड़ेंगे।
10: और राजस्थान के शिक्षा मंत्री कहते हैं छोटी सी बात,
4: प्रोफेसर अरुण जवाब देंगे, प्रीएम्प्टिव मेजर है सर या फिर आनन फानन में लिया गया एक आकस्मिक कदम जिसे कहते हैं?
11: देखिए, इसके लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा। जब ये युद्ध शुरू हुआ था तो उसके दो चीजें हमें समझनी पड़ेंगी, एक तो एनर्जी की शॉर्टेज और दूसरा क्रूड सिर्फ एनर्जी नहीं है, इसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं, उन सब की भी शॉर्टेज है, सल्फर भी निकलता है इसमें से, फर्टिलाइजर भी इससे निकलता है वगैरह। तो जब इसकी शॉर्टेज होगी, क्योंकि दुनिया में 20% जो क्रूड और जो ये गैस आती थी वो रुक गई, तो शॉर्टेज तो होगी ही होगी।
4: 3 रुपए सर बस शुरुआत है ना, अभी
11: ये शुरुआत है। लेकिन अभी ये भी प्रॉब्लम है कि जो शुरू में हम एक्सपोर्ट करते थे 20%, 25%, वो रोक देना चाहिए था, नहीं तो हमारी शॉर्टेज बढ़ जाएगी। क्योंकि हमें पता है 15% कम आ रहा था जो मार्च के महीने में, जो पहले साल के मार्च के तुलना में, तो एक तो वो कम आ रहा है और 25% एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये 40% जो क्रूड हमारे अपने इस काम के लिए इस्तेमाल होना चाहिए था वो हम किसी और काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो शॉर्टेज जल्दी होगी। तो इसलिए अब 2.5 महीने में जो हमारे स्टॉक्स थे, जो कहा जा रहा था 40-50 दिन के, वो खत्म होने लगेंगे। जब वो खत्म होंगे तो हालात बहुत बिगड़ जाएंगे, इसलिए हमको शुरू में ही कुछ कदम लेने चाहिए थे। और अभी मैं कह रहा हूँ 73 दिन हमने बहुत लेट कर दिया, क्योंकि अब जो आने वाली स्थिति है वो बहुत ज्यादा खराब हो सकती है अगर हमारे
4: क्रूड के तो मानी नहीं लेट हुआ, उन्होंने कहा कि ये तो जनता की भलाई थी कि हमने इतनी
5: लेट किया। देखिए, हमारी सरकार अगर रेजिस्ट कर सकती थी तो हमने किया, क्षमता थी इसलिए किया,
4: इन्होंने टाइम
5: उसको कंटेन कर सकते थे इसलिए किया,
4: अपील करके
5: क्षमता ही नहीं होता है तो कैसे करते, कांग्रेस की तरह थोड़ी
11: सर हमारे ऊपर अब ज्यादा पड़ेगा क्योंकि हमने सही समय पर कदम नहीं लिया। अभी अगर देखें तो 80 देशों में उन्होंने पहले हफ्ते में मार्च में कदम उठाए, उन्होंने कहीं उन्होंने दाम की दाम बढ़ाए, कहीं उन्होंने राशनिंग किया, कहीं उन्होंने 4 दिन का वर्क वीक, क्योंकि सभी जानते थे कि लंबा चलेगा। अगर ये 10 दिन की बात होती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर ये ऑलरेडी 75 दिन हो गए और अभी तो पता नहीं और कितना चलेगा, और अगर आज भी खुलता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज तो कम से कम 3-4 महीने लगेंगे वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने में, तो आपकी परेशानी बढ़ती जाएगी और शॉर्टेज आपकी ज्यादा हो जाएगी क्योंकि आपने उसको रोका नहीं था। तो सही समय कदम उठाना बेहतर है बनिस्पत उसके कि उस समय हम नहीं करें और बाद में।
4: जी, वार्निंग बेल्स बज गई हैं या फिर ये एक प्रीएम्प्टिव मेजर जैसा कि सिद्धार्थ जी बता रहे हैं?
12: अगर इसको प्रीएम्प्टिव मेजर्स करें तो फिर क्राइसिस मेजर्स क्या होगा, मुझे तो समझ में नहीं आता है। मैं एक चीज जरूर समझता हूं कि जब अगर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट तय कर रहे हैं और अगर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड के दौरान बढ़े हैं, तो जब $60 था तब हमारे यहां 90-95 रुपए का पेट्रोल क्यों बिक रहा था? अगर आज 110 के आसपास है तो आप कह रहे हैं कि ठीक है हमको बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन जब $60 से कम पर बिक रहा था पेट्रोल, कच्चा तेल बिक रहा था, तब हमारे और आपकी जेब से 90-95 रुपए, 100 रुपए क्यों लिए जा रहे थे? सीधी सी बात यह है कि कायदे से पेट्रोल डीजल के दाम सरकार तय नहीं करती, सरकार क्रेडिट ले रही, कायदे से मार्केट तय करती है। लेकिन चूंकि सरकार का इतना जबरदस्त शिकंजा है कि ये बेचारी कंपनियां सांस भी नहीं ले सकती, इसलिए इनके ऊपर यह दबाव था कि मार्केट के हिसाब से आप पेट्रोल डीजल के दाम देश के अंदर सस्ता मत करो। अगर सस्ता किया होता तो आज ये हालत नहीं होती।
4: क्या आप आंकड़े बता सकते हैं हमारे दर्शकों को?
5: दो बातें अभी आशुतोष जी ने
4: पिछले दो क्वार्टर्स का ही बता दीजिए।
12: क्या चीज?
5: दो
4: तेल कंपनियों को कितना घाटा हुआ?
5: मैं दो बातें पहले आशुतोष जी ने कही और वो बिल्कुल बिना ईमानदारी के कही, मैं पहले उनको बता देता हूँ। पहला, आशुतोष जी ने कहा कि तेल कंपनियां जो हैं सरकार क्रेडिट ले रही है, तेल कंपनियां खुद इसको करती हैं। आशुतोष जी, हमेशा से नहीं करती हैं, हमारी सरकार ने आकर के इसको मार्केट फ्री किया। उससे पहले ऑयल बॉन्ड्स देकर के, सब्सिडी देकर के 1,34,000
12: नहीं तय करती। मैं आपसे पूछ रहा
5: हूं, अरे भैया सुनिए आशुतोष जी, आप 2014 के बाद नहीं पैदा हुए आशुतोष जी, आप 14 से पहले भी थे यहाँ।
12: मैं आपसे पूछ रहा हूँ,
5: काम हमारी सरकार ने किया, आप उसको भी ईमानदारी से,
12: मैं आपसे छोटा सा सवाल पूछ रहा
5: हूँ आशुतोष जी,
12: पेट्रोल डीजल के दाम मार्केट तय करता है या सरकार तय करती है, बताइए आप।
5: आशुतोष जी, मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, मैंने बोला कि आप ईमानदारी से नहीं बोल रहे हैं। जो काम हमारी सरकार ने किया वो हम पर ही बता रहे हैं।
4: आप झूठ नहीं बोल रहे हैं पर सच भी नहीं बोल रहे हैं।
5: ईमानदारी से नहीं बोल रहे हैं, ईमानदारी से नहीं बोल रहे हैं।
12: मैंने आपसे सीधा सा सवाल पूछा,
5: उत्तर भी सुनेंगे। पेट्रोल
12: डीजल, एक मिनट, हां आलम जवाब दे दीजिए ना।
5: आम आदमी वाले
12: पेट्रोल डीजल के दाम मार्केट तय करती है, सरकार तय करती है?
5: आप पार्टी वाले फॉर्म में आ गए।
12: अरे भाई, आप मेरे पर
5: आरोप लगा रहे हैं। क्वेश्चन पूछा, मेरे को
12: उत्तर, मैंने आपसे जब से पूछ रहा हूं आपसे बता, हां आलम जवाब दीजिए ना।
10: $60 प्रति बैरल था तो आपने 90 क्यों दिया?
12: पेट्रोल डीजल का दाम सरकार तय करती है, मार्केट तय करती है? आप बोल दीजिए सरकार तय करती है, मार्केट तय करता है? आप जवाब नहीं दे रहे।
4: आशुतोष जी, आप
12: मेरी ईमानदारी पर सवाल खड़े कर, भारतीय जनता पार्टी वालों के साथ प्रॉब्लम ही यही है। मुझे देखते हैं,
5: हमारी बताएंगे अपनी, कोई प्रॉब्लम नहीं।
12: इनका ब्लड बॉइल करने लगा है, जैसे आप उसको देखते हैं ब्लड बॉइल करने लगा।
4: का ये था कि मार्केट तय करती है पेट्रोल डीजल के दाम या सरकार तय?
5: देखिए, अभी उन्होंने जो प्रश्न पूछा और जिस बात पे वो बहुत ऐसा है जो रहे हैं, मैं उसका उत्तर
12: देता हूं। नहीं, नहीं हो रहा, मैंने आपसे सवाल पूछा।
5: ये आम आदमी पार्टी का मंच नहीं है, मैं
12: केजरीवाल नहीं हूं। आप उसे पूछिए ना,
5: मैं अरविंद केजरीवाल
12: डीजल के दाम
5: मेरे पे क्यों चढ़
12: जाता है, सरकार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? पूछिए जरा इनसे,
4: जवाब दे रहे हैं वो।
5: मैं केजरीवाल हूँ क्या? मेरे पे चढ़ जा रहा
12: हूँ ना,
5: हद हो गई। मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ,
12: मैं नरेंद्र मोदी नहीं हूँ।
5: उनको सुनने तो दीजिए,
12: मैं नरेंद्र मोदी नहीं, हर्षित का क्रेडिट लूंगा।
5: नहीं नहीं, आप नरेंद्र मोदी,
12: नरेंद्र मोदी नहीं, हर्षित का क्रेडिट
5: लूंगा, मुझे पता है। अब
12: लेकिन सरकार तय करती है नहीं तय करती है, बता दीजिए मुझे।
4: अब ठीक है, एक लाइन में जवाब दीजिए, सरकार तय करती है या मार्केट फोर्सेस?
5: निश्चित तौर सरकार नहीं तय करती, ये हमारी सरकार ने आकर के किया, बस इतनी बात थी।
12: मान लिया,
5: ये ईमानदारी बोलते तो
12: प्रधानमंत्री जी क्यों क्रेडिट ले रहे हैं? क्रेडिट ले रहे,
5: अरे
12: तब आप क्यों क्रेडिट ले रहे हैं भाई? अगर सरकार तय नहीं कर
5: सकती है तो
12: आप क्रेडिट क्यों ले रहे हैं?
5: अब आशुतोष
4: नहीं लड़ेंगे
5: अब, मैं उत्तर दे रहा हूं। अब आपने एक प्रश्न पूछा और दर्शकों को पता होना चाहिए कि अगर बैरल के दाम कम थे तो सरकार ज्यादा क्यों लेती थी। 2013 में जब हम सरकार में 14 में आए, हमारे पास 1,34,423 करोड़ के ऑयल बॉन्ड छोड़ के गए थे वो जो बीच में बैठे, क्योंकि 2010 से पहले आप हंसिए मत, मैं बहुत गंभीर बात बोल रहा हूं, बजट में से प्रोविजन ना करके आप सब्सिडी दे देकर ऑयल कंपनीज पर प्रेशर बढ़ा बढ़ाकर आप अगली सरकार को दे गए। आपको पता था हम तो जा रहे हैं ये ठीकरा फोड़ेंगे अगले साल। 83,000 करोड़ इंटरेस्ट में भरा हमने उस पैसे का,
10: 83,000 करोड़
5: उसका केवल इंटरेस्ट दिया है हमने, उसका प्रिंसिपल हम लास्ट ईयर तक चुका रहे हैं। अब आप चाहेंगे, अब मिर्ची लग गई इनको एक्सपोज हुए तो, अब आप चाहेंगे कि जब हम सत्ता में थे हम 7,25,000 करोड़ का ऑयल बॉन्ड छोड़ गए, पर ये जब सत्ता में आए अब ये उसका पैसा, ये तो इन्हीं के,
10: अरे नोटबंदी की लाइन लगा दो।
12: प्रधानमंत्री जी का बड़ा शानदार बयान था जब 2014 में प्रधानमंत्री बने, क्योंकि तब अचानक अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पेट्रोल डीजल के दाम कम हो गए, $100 से बढ़ के करीब 60 पे आए। बोले मैं तो बड़ा नसीब वाला हूं। अब मनमोहन जी बदनसीब वाले थे तो मैं क्या करूं?
5: अब मैं उत्तर,
12: अब अगर पेट्रोल भी डीजल के दाम 100 से ज्यादा हो रहे तो कौन नसीब वाला है, कौन बदनसीब वाला है?
4: कांग्रेस गठबंधन बनाए आपने,
5: मैं 10 सेकंड उत्तर दे रहा हूं। अरे तो हमारे सब जीती है यहाँ पे, सब इसमें कोई इतनी आपत्ति की तो बात नहीं थी। मैं 10 सेकंड उत्तर दे रहा हूं। 2013 में कौन सा युद्ध था जो भारत पर इतना डेफिसिट आया वो बता दें आशुतोष जी,
8: कौन से गलत के साथ आज तो युद्ध चल रहा है, आज तो युद्ध चल रहा है
13: राष्ट्रीय मार्केट में, बताइए ना।
8: अरे कौन सी
13: राष्ट्रीय मार्केट में पेट्रोल डीजल के दाम क्या थे,
8: प्रधानमंत्री का दाम क्या था, प्रधानमंत्री तो मनमोहन सिंह भी थे,
13: आप बताइए ना।
8: मनमोहन सिंह ने बात बोली थी कि पैसे पेड़ पे थोड़ी उगते हैं। जब 2013 में मनमोहन सिंह कह रहे थे सोना मत खरीदिए, तेल का कंजम्पशन कम करिए, कौन सा युद्ध था दुनिया में, ये ईमानदारी मत छोड़िए।
13: मार्केट में क्या दाम था,
8: समस्या ये है भाई,
13: अंतरराष्ट्रीय मार्केट में क्या दाम था,
8: ये जिनको आप देख रहे हैं ये मार्केट में क्या दाम था, ये चटकारे लेने वाले लोग हैं,
13: चटकारे नहीं,
8: चटकारे लेकर के देश को पीछे धकेल रहे
13: हैं।
8: एक साथ आइए, क्राइसिस का है, वैश्विक संकट का समय है, पूरी दुनिया झेल रही है, हम पूरा देश एक साथ आके लड़ लेंगे, क्या हो जाएगा इसको, उसमें उन्होंने साथ
4: आपके पास इतने सारे आंकड़े हैं, आंकड़ों से जवाब दीजिए ना, अगर फैक्ट्स हैं इतने सारे आप में देख रहे हो, इतना
13: बता दीजिए, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम क्या
4: जरूरत है,
8: बताइए। मैं आप आंकड़ा बताता हूँ, ये इन्होंने बोला कि हमने 2013 में क्या था, मैंने आपको 1,34,423 करोड़ के ऑयल बॉन्ड बताए, 83,000 करोड़ का हमने उस पर इंटरेस्ट दिया, मैंने वो बताया। अब फिजिकल डेफिसिट सुन लीजिए, 2009-10 में क्या था, 6.4%, आज क्या है, 4%, क्यों भाई, कौन सा क्राइसिस,
4: रुपी कितना था, बताइए
8: रुपी बताता हूँ, 2013 के अंदर 20% डेप्रिशिएट हुआ, आज हमारे डिफेंस पर
4: डॉलर की
8: आप बात कर रहे हैं, उसकी आप बात कर रहे हैं उसकी, जब एक वैश्विक संकट पूरी दुनिया को घेरे खड़ा है, भारत अगर उसको रेजिस्ट कर रहा है, 2.5 महीने तक दाम नहीं बढ़ा रहा, तो आपका आर्गुमेंट है पहले दिन दाम बढ़ाना था,
4: हाई पे है, गोल्ड सिल्वर ऑल टाइम हाई पर है,
8: एक साल में 20% डेप्रिशिएट होने वाला साल 2026 नहीं है, वो 2013 था, एक साल में 20% स्टेडी इंक्रीज अगर होगा, आज हमारे पास 650 का फिजिकल डेफिसिट, हमारे पास फॉरेक्स है, फॉरेन एक्सचेंज कितना था आपके समय में,
13: मैं जवाब दे दूं,
8: 300
13: मैं जवाब दे दूं,
8: क्यों भाई,
13: एक
8: तब कौन सा संकट था, तो ये जो ईमानदारी आप छोड़ते हैं वो समस्या है।
4: दीप्ती जी का अटॉर्नी नहीं आया, दीप्ती जी
13: आप
4: नहीं है, बहुत देर से सुन रहे हैं, वेट कर रही है सर,
13: छोटी सी बात,
4: आपकी छोटी नहीं होती ना, आपकी छोटी नहीं होती,
13: फॉरेन छोटी नहीं होती,
8: सुन लीजिए यार,
4: एक बार सुन लीजिए,
8: सुन क्या बात है,
13: चलिए सुन,
4: दीप्ती जी का अटॉर्नी नहीं आया, दीप्ती जी आप
8: टिकट थोड़ी ली है,
14: मैं 40 मिनट बाद बोली हूँ, पहले मुझे बोल लेने दीजिए, आंकड़ों का ना एक हम ना इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स में आप सब पढ़े लिखे बच्चे हो, कहते हैं इट इज लाइक अ मिनी स्कर्ट, आगे इट हाइड्स मोर शोज मोर, वो सब आप अपने आप जोड़ लीजिए, तो यहाँ पे ना आंकड़ों को बिल्कुल इसी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, कुछ चीज आपको बताई जा रही है और जो रेलेवेंट चीजें हैं वो छुपाई जा रही हैं, तो मैं आपको सिर्फ आंकड़ों के आधार पे
4: फॉर यू गए सिद्धार्थ जी बताइए,
14: फॉर यू टू डिसाइड कि क्या सही है क्या नहीं है आप डिसाइड करना, आपने सर जो सवाल पूछे वो सब उसमें जवाब है, मैं आपको बताती हूँ आपके जो पेट्रोल के दाम थे 2004 में आप लोग देते थे 33 रुपए प्रति लीटर, 2008 तक बढ़ते बढ़ते वो हो गए थे 45.5 रुपीज पर लीटर, क्योंकि क्रूड के दाम बढ़ रहे थे। अब आता है 2008 में एक वैश्विक संकट, ऑयल शॉक जिसको कहते हैं हम, वहां पे पेट्रोल के फाइनेंशियल क्राइसिस था सर, जिसकी वजह से ऑयल शॉक भी आया था, मैं कंप्लीट कर लूं सर, तो $67 पर बैरल से $147 पर बैरल पहुंच गया था, इसलिए मैंने उसको ऑयल शॉक का नाम दिया, जिसके चलते इमीडिएट इंपैक्ट क्या किया सरकार ने, 5.5 रुपए आपके पेट्रोल के दाम 2 हफ्ते के अंदर बढ़ा दिए, फैक्ट्स स्टैटिस्टिक्स आप सबके पास गूगल है चेक कर लीजिए। 2011 में फिर क्या हुआ, तब तक पेट्रोल के दाम आपके बढ़ चुके थे 58 पे आ चुके थे, तब $95 पर बैरल पहुंचा $125 पर बैरल, एकदम आपके दाम बढ़ाए गए 10 रुपए, 58 से ये पहुंचा 68। फिर उसके बाद 2013 में सीरिया वाला आया, सिर्फ और सिर्फ $110 पर बैरल से $115 पर बैरल पहुंचा, तब भी आपके तेल के दाम 3 रुपए बढ़ा दिए गए, क्योंकि तब करंट अकाउंट डेफिसिट हमारी इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत अनकंट्रोलेबल था। अब आते हैं 2022 पे, जब रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, इलेक्शंस की बात आप कर रहे थे ना, टाइमिंग्स की बात आप कर रहे थे, रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो 24 फरवरी 2022 को शुरू हुआ, $78 से $130 पे पर बैरल पहुंचा, हमने एक महीने तक सरकार ने आपको कुशन दिया, फिर उसके बाद मई 2022 में 10 रुपए, पहले अप्रैल 2022 में 10 रुपए बढ़ाया और मई 2022 में 8 रुपए कम कर दिया एक्साइज के चलते। आपके सवाल का जवाब की
13: नहीं,
14: एक्साइज भी एक मिनट,
4: आप करंट सिनेरियो,
13: मैं एक सवाल आपसे
4: पूछूं,
14: तो अब मैं सिर्फ आपको बच्चों इतना बता रही हूँ, मई 2022 में फरवरी में यूपी का चुनाव होके चुका था, कोई चुनाव आ नहीं रहा था, 2022 दिसंबर में दिल्ली और गुजरात के चुनाव थे, तो मई में ऐसा क्या करने की जरूरत पड़ी थी? अब जो आपने कहा कि ऑयल बॉन्ड्स प्रेजेंट सिनेरियो पे भी ढाई महीने तक आपको कुशन मिला, ढाई महीने तक आपके रेट नहीं बढ़े। आपने कहा कि जब वैश्विक तेल कम हुआ था तो क्यों नहीं हुआ? जैसे सिद्धार्थ भाई ने बताया, ऑयल बॉन्ड्स 1.3 लाख करोड़ के ऑयल बॉन्ड्स थे जिसकी भुगतान 2026 मार्च तक हुई 3.5 लाख बिलियन डॉलर देकर, 2 लाख बिलियन डॉलर आपने इंटरेस्ट दिया। दूसरी चीज, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, जो हम विकसित भारत की बात करते हैं, 3 लाख करोड़ आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होता था 2014 तक, और वो जाके 17 लाख करोड़ हुआ। तो जो टैक्स आपसे वसूला,
15: मेरा छोटा सा सवाल, मेरा छोटा सा सवाल है कि जब 60 डॉलर प्रति बैरल था तब वो पास ऑन क्यों नहीं हुआ कंज्यूमर?
14: एग्जैक्टली वही तो बता रही हूँ,
15: बताइए एक लाइन में।
14: एक तो ऑयल बॉन्ड्स के इंटरेस्ट देने थे, और आपको विकसित भारत के रस्ते पे जो मैंने आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का बताया, 3 लाख करोड़ जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट जो हमारा लागत थी वो 17 लाख करोड़ पे पहुंची। 2% ऑफ GDP से हमने 4.4% ऑफ GDP को इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाया बिटवीन 2014 टू 2020। उस समय करंट अकाउंट डेफिसिट था 4.8% और अब करंट अकाउंट डेफिसिट था 1.2%।
15: तो अभी बेहतर स्थिति में,
14: बिल्कुल ये मैक्रो इकोनॉमिक
15: स्थिति में, तो फिर ये करने की जरूरत क्यों?
14: अभी तो ढाई महीने बाद करने की जरूरत पड़ी ना, क्योंकि अब 1000 करोड़ प्रतिदिन का कंपनीज को नुकसान भी हो रहा था।
15: चलिए कुछ ऑडियंस के सवाल भी ले लेते हैं।
14: ये सब फैक्ट्स हैं,
15: बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज से इम्पैक्ट होंगे और उन्हीं से जानते हैं कि आखिरकार ये जो 3 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल डीजल बढ़ गया है उसका कितना और कैसा इम्पैक्ट होगा, और क्या आप ये सोचते हैं या मानते हैं कि और ज्यादा ये बढ़ सकता है?
16: जी मैम, मेरा
15: क्या नाम है?
16: मेरा नाम उमंग दुबे हुआ, मैं जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ। मैम मेरा सवाल डॉली मैम से, जो कांग्रेस का यहाँ पे स्टैंड रख रही हैं। मैम जैसे कि अभी जो वैश्विक संकट चल रहा है, आपको यहाँ पे सरकार का सहयोग करना चाहिए। आप सरकार को डांट डपट रहे हैं, आप सरकार को कुछ आइडिया दीजिए कि आप ये बेटरमेंट कर सकते हैं। लेकिन आप मैम 1,44,000 की आईफोन लेकर के आप बात कर रही हैं कि मतलब
15: उस पर मत जाइए। नहीं अपना सवाल
16: नहीं, लेकिन ये देखिए कि अगर कोई आदमी गरीब हो वो इतना महंगा फोन कैसे ले सकता है, और आप इतनी महंगी सामान को लेकर के तब आप महंगाई के ऊपर आप ड्रामा कर रहे हैं, ये तो गलत है ना।
15: जवाब दीजिए,
6: आपकी जेब में क्या है? यू शुड नॉट से लाइक दैट। आपकी जेब में क्या है? नीट पर्चा लीक क्या 22 लाख बच्चों की समस्या नहीं है? अरे भैया मुझे
14: आपके नोट्स,
6: आप एक सेकंड, मेरे नोट्स भी रेडी है, मेरा सब कुछ रेडी है। अगर
14: आप से क्यों डिबेट कर रहे हो?
6: एक सेकंड मैम,
14: आर वी डिस्कसिंग नीट हियर राइट?
6: डिड आई स्पीक व्हेन यू आर स्पीकिंग?
14: एम आई डिड आई स्पीक व्हेन यू आर स्पीकिंग? माय सिंपल,
15: दीप्ति जी जवाब दे दीजिए, सवाल का जवाब दे दीजिए।
14: डिस्कसिंग नीट हियर?
6: नो नो,
15: सवाल का जवाब दे दीजिए।
6: यू अरे और भी सवाल लेने मुझे?
14: नो नो नो नो,
6: 20 लाख स्टूडेंट फ्यूचर ऑफ 20 लाख स्टूडेंट।
15: और भी सवाल, और भी सवाल,
6: सिलेंडर
15: डॉली जी जब इस बात का जवाब दीजिए।
6: हाँ बिल्कुल देती हूँ। जब हम बोलते हैं कि सिलेंडर के लिए कतारें लगी हैं, इंतजाम करिए, इसी डिबेट में थी, इसी मंच पे थी, एंकर दूसरे थे, तो इन्हीं के प्रवक्ता यहाँ आकर कह रहे थे हम अफवाह फैला रहे हैं।
14: तो बिल्कुल आप झूठ,
6: हम ये कह रहे थे
14: तो कहा था 75 दिन का
6: ये देखिए,
13: ठीक है
15: चलिए अगले सवाल से जवाब नहीं देना चाह रही
6: हूँ। सिलेंडर के दाम नहीं बढ़े,
15: मोदी जी आप जवाब देंगे?
13: आप जवाब ही देंगे?
15: एक सेकेंड, डिबेट में सवाल लेते हैं,
13: ईमानदारी पे सवाल,
15: जनता है, जनता के सवाल भी
13: करेंगे। असत्य बोल रही है, कोई तरीका बात करने का, तरीका कोई बात करने का?
15: आशुतोष जी,
13: आशुतोष जी गलत, आप
15: अरे मोदी जी को जवाब देने दीजिए।
14: आशुतोष
15: ठीक है,
6: लोकतंत्र में विपक्ष का क्या काम है? आप जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं,
15: विपक्ष का काम है सवाल पूछना। चलिए आप
13: मेरा नाम नरेश कुमार है, मेरा सवाल,
15: एक सेकेंड सवाल ले लीजिए, मछली बाजार नहीं है
13: ये लोगों की भाषा। मेरा नाम नरेश कुमार है, मेरा सवाल मेरी सरकार से है क्योंकि मैंने BJP को वोट किया है। हाँ, जो जो जो सरकार आज जनता को खर्च कम करने के लिए बोल रही है वो पश्चिमी बंगाल के चुनाव में 151 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। ये तो वही बात,
15: ये तो वाजिब सवाल है,
13: ये तो वही बात हुई ना कि बिल्ली सोच में खा के अजगर में चली, तो इस पे क्या कहना?
15: भव्य आयोजन हुआ सिद्धार्थ जी, खर्चा हुआ उसमें, इतने राज्यों के मुख्यमंत्री आए उसमें खर्चा हुआ, सब प्राइवेट जेट चॉपर से आए उसपे खर्चा हुआ, तब नहीं एक्सपेंडिचर हो रहा था।
9: देखिए मोदी जी एक
15: बस एक सवाल
8: मैं उत्तर दे देता हूँ।
9: मोदी जी एक एग्जांपल क्रिएट कर सकते थे इस इलेक्शन में अपनी पार्टी के खर्चे को कम करके।
15: इसी महंगाई जवाब दीजिए।
8: देखिए मुझे लगता है
15: उत्तराखंड जाके
8: अरे भाई मुझे ऐसा लगता है और राहुल गांधी वाले
15: मैं झोला लेके चलूंगा।
8: राहुल गांधी वाले
15: एक सेकंड डॉली जी
8: 2014 के बाद 54 देश जाने 60 करोड़ खर्च करके पूरे विदेश अपने आप को विदेशों में घूमने वाले राहुल गांधी ना समझाएं। पर आपका सवाल का उत्तर दे रहा हूं मैं तो सुनना पड़ेगा 10 सेकंड सुनना पड़ेगा। देखो सवाल पे सवाल नहीं हो सकता सवाल पर उत्तर होता है।
15: मैंने पूछ लिया आपका सवाल एक सेकंड
8: मुझे पूछ लिया। सवाल का कोई पार्ट ऐसा नहीं है जो समझ नहीं आया आपको उत्तर सुनना पड़ेगा ना। आप सवाल पे सवाल नहीं पूछ सकते। देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं जो लीड बाय एग्जांपल करने का काम कर रहे हैं। अगर अपने सिक्योरिटी को भी कॉम्प्रोमाइज करके कॉन्वॉय को कट डाउन करने का काम किया तो प्रधानमंत्री जी ने किया। उसके प्रेरणा लेकर के देश भर के अगर मुख्यमंत्रियों ने काम करने का काम किया तो प्रधानमंत्री ने काम किया। आज दिल्ली के अंदर मेट्रो मंडे बनाया जा रहा है। आज दिल्ली के अंदर जो ऑयल कंजम्पशन का
15: गुजरात में 100 गाड़ियों के साथ रोड शो किया।
8: अरे किसने किया? आपके नेता कर रहे हैं। राहुल गांधी निकल रहे हैं घर से बाहर 20 गाड़ियां लेकर के। आप नहीं इस देश के नागरिक। आप नहीं रुक सकते। आपको जाना विदेशों में। हमने चुनाव में क्या किया वो ठीक है। आप चुनावों में मस्कट घूम रहे थे। क्यों घूम रहे थे? ये कोई बात हुई?
15: अरे दो दो लोग बोलेंगे कैसे सुनाई देगा।
8: बारी तो मेरी थी पर मैंने तो इनके ऊपर नहीं बोला।
15: आप डाइवर्ट हो गए ना कि जनता एक गाड़ी से चले।
8: सरकार अपनी
15: क्वेश्चन नहीं अलाउड है।
8: काउंटर
15: क्वेश्चन नहीं करना मैं हूं
8: उसके लिए। देश भर का कंजम्पशन कम हो उसके अनुपात में कोई भी खर्च छोटा है।
15: लेकिन इस बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का उछला है। हमारी खास पेशकश खास चर्चा जारी रहेगी क्योंकि जेब पर एक बड़ा डेंट। क्या उसके लिए तैयार है हम और क्या 3 रुपए बढ़ोतरी सिर्फ एक पहली किश्त है। टिकते रहिए आज तक।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: यार
2: ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
3: इसमें माइक्रो फाइबर है.
2: माइक्रो फाइबर यानी
3: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत.
2: हमारे सीमेंट में नहीं है.
3: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है.
4: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़. ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
5: जेके वॉल मैक्स
3: बेस्ट पेंट।
6: जेके मैक्स।
7: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स खुशियों के रंग।
8: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद। जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके।
9: Like I said before, we better hold the sins.
10: Director, the taste of success.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो सुबह केसरी।
1: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
2: जीके मैक्स।
3: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
2: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
4: जेके वॉल मैक्स
2: बेस्ट पेंट।
5: जेके मैक्स।
6: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स खुशियों के रंग।
3: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
7: इसमें माइक्रो फाइबर है।
3: माइक्रो फाइबर यानी
7: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
3: हमारे सीमेंट में नहीं है।
7: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
8: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
9: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद। जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके।
10: करेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
11: हम सिखाएंगे आपको मास कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट बनने का हुनर। ज्वाइन कीजिए इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट।
12: रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
13: ग्यारह मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
14: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
15: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
13: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
16: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
14: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
13: जहां खबर वहां खबरदार।
17: कुछ लोग बोल रहे हैं वार सिचुएशन है, ये तो पूरा वर्ल्ड का सिचुएशन है। तो हम लोग जानते हैं वर्ल्ड सिचुएशन है, लेकिन कोई प्लानिंग नहीं था। दूसरा, 2014 से क्या वार सिचुएशन चल रहा है? 2014 कंपेयर कीजिए प्राइस को। 2014 ये भाजपा गवर्नमेंट आने से पहले क्या था, आज क्या है? और दूसरा, स्टेट में ये जो अपोजिशन था।
18: हमारा अंदेशा है कि आज हिंदुस्तान एक भारी आर्थिक संकट से गुजर रहा है और मैं देश की सरकार से अपील करूंगा कि जो भी सत्य है वो आप देशवासियों को बताइए। ये देशवासी भी उस देश के उतने ही नागरिक हैं जितने कोई सरकार का मंत्री या प्रधानमंत्री। ये बात सब समझ रहे थे कि 5 राज्यों के चुनावों के बाद तेल, पेट्रोल के, डीजल के दाम जो है बढ़ेंगे, और मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में और बढ़ेंगे, और बार बार पेट्रोल डीजल के दाम 2-2, 5-5 रुपए करके आगे बढ़ाए जाएंगे।

0: बकैतों में श्रेष्ठतम, असफल डकैतों के सरताज, मास्टरों के मास्टर, यक्ष युधिष्ठिर, पक्षीराज गरुड़ और काग भुशुंडी के कॉम्बो, बतरस के तीरंदाज अवधुजा सर के साथ।
1: भैया हम झूठ सुनी थे, हमारे दहिया जर जाती। नहीं कहते लोग।
0: जीवरा संताप लग जाते हैं। सर आप कुछ लाइसेंसी रखे हैं कुछ?
2: नहीं, नहीं है, पहले से पड़ा है।
1: जो आदमी बैठ के बना लेता है उसको लाइसेंस लेने की क्या जरूरत है।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
1: एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: In association with
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो

0: विपक्ष की बड़ी जीत, हाई कोर्ट ने माना सरस्वती का है मंदिर, अब नमाज पढ़ने की मनाही, सरकार ने अलग जमीन की मांग कर सकता है मुस्लिम पक्ष। पेपर लीक कांड के बाद पहली बार सामने आए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कहा 21 जून को होगा नेट का री एग्जाम, परीक्षा के लिए मिलेंगे 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम, कोई फीस नहीं लगेगी। देश को महंगाई का तगड़ा झटका, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3-3 रुपए की बढ़ोतरी, सीएनजी 2 रुपए प्रति किलो महंगी हुई, बढ़ती महंगाई के खिलाफ पूरे विपक्ष का हल्ला बोल। यूएई के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी का शानदार स्वागत, राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद के साथ तेल गैस समेत कई अहम समझौते, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुश्किल वक्त में यूएई ने रखा भारतीयों का ख्याल। ब्रिक्स समिट में ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची ने जयशंकर से की मुलाकात, कहा युद्ध बंद होने तक हॉर्मूज में हालात सामान्य नहीं हो सकते, अमेरिका पर हमें भरोसा नहीं।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोको।
0: नमस्कार, रणभूमि में आपका बहुत बहुत स्वागत है, मैं हूं आपके साथ सुमित चौधरी। रणभूमि में आज आपको सबसे पहले सबसे बड़ी खबर बताते हैं जो मध्य प्रदेश से आ रही है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के धार गौशाला को लेकर बड़ा फैसला सुनाया, हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ये परिसर हिंदू मंदिर है, हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की मांग पर दायर याचिका पर अपना फैसला सुनाया है। एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ने सदियों पुराने इस विवाद पर अपनी मोहर लगाते हुए साफ कर दिया है कि विवादित गौशाला का धार्मिक स्वरूप और चरित्र सिर्फ और सिर्फ देवी बागदेवी का मंदिर ही है। कोर्ट ने इसे राजा भोज के काल का सांस्कृतिक अध्ययन केंद्र और मां सरस्वती का पावन स्थान माना है। अदालत ने अपने फैसले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई के उस पुराने आदेश को पूरी तरीके से रद्द कर दिया है जिसके तहत मुस्लिम पक्ष को शुक्रवार को दिए गए नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने माना है कि ऐतिहासिक और वैज्ञानिक साक्ष्य चीख चीख कर ये कह रहे हैं कि ये स्थान शुरू से ही एक हिंदू मंदिर रहा है, अब इस पूरे परिसर के संरक्षण और देखभाल की पूरी जिम्मेदारी एएसआई के हाथ में होगी। इस फैसले का एक और अहम पहलू लंदन के म्यूजियम में रखी गई मां सरस्वती की प्रतिमा से भी जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वो लंदन में इस ऐतिहासिक प्रतिमा को वापस लाने के लिए किए गए आवेदनों पर गंभीरता से विचार करे ताकि बाग देवी एक बार फिर से अपने मूल जगह पर स्थापित की जा सके। वहीं धार्मिक अधिकार के संतुलन को देखते हुए हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर मुस्लिम पक्ष धार जिले में मस्जिद निर्माण के लिए जमीन की मांग करता है तो राज्य सरकार कानून के दायरे में रहकर उसकी इस विचार यानी उसकी इस मांग पर विचार कर सकती है। जैन समाज के दावों को भी कोर्ट ने सुना लेकिन अंततः ऐतिहासिक साहित्य के आधार पर इसे सरस्वती सदन के रूप में ही मान्यता दी गई। यानी इलाहाबाद आप कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए अब इसे मंदिर माना है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रवीश पाल सिंह भी जुड़ गए हैं धार से, उनका रुख कर लेते हैं। रवीश, आप लगातार यहां पर कई दिनों से पहले भी आप रिपोर्ट कर चुके हैं, सुबह से आप लगातार बता रहे थे कि यहां के ताजा हालात क्या है, फैसला आ जाने के बाद वहां की तस्वीरें कैसी हैं एक बार दिखाइए और इस समय क्या कुछ कहा जा रहा है मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष की तरफ से। रवीश,
3: चेक
0: रवीश, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो एक बार फिर से मैं कहूंगा कि आप वहां पे तस्वीरें दिखाएं और फैसला जाने के बाद मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष की तरफ से क्या कहा जा रहा है।
3: हेलो,
4: दिस मॉस्क नेक्स्ट टू द टूम्ब ऑफ द चिश्ती सेंट।
0: और देखिए आपको रवीश का दोबारा से रुख करेंगे लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं क्या कहा हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन की तरफ से।
5: देखिए आज भोशाला के केस में ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट का बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया है, जिसमें ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट ने जो एएसआई का 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर है उसको पार्शली क्वैश किया है और हिंदू समाज के लोगों को वहां पे पूजा पाठ का अधिकार दिया है। कोर्ट ने भोजशाला कॉम्प्लेक्स को राजा भोज का माना है, एक सरस्वती स्कूल माना है लर्निंग का। साथ ही साथ इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भोजशाला के केस में जो हमारी मांग थी कि वहां से लंदन के म्यूजियम से मूर्ति वापस लाई जाए, कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर करे। और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो मुस्लिम पक्ष है वो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, जो रिस्पोंडेंट नंबर 8 है मौला कमालुद्दीन की तरफ से, और उनको अल्टरनेट लैंड देने के लिए सरकार उस पर विचार करे। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने यहाँ पे हमें पूजा पाठ का अधिकार दिया है, मैनेजमेंट के लिए सरकार को कहा है कि वो इसके मैनेजमेंट के लिए चीजें देखे। और जो एएसआई का ऑर्डर था 7 अप्रैल 2003 का, जो यहाँ पे नमाज की अनुमति देता था, उसको कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। अब वहाँ पे सिर्फ पूजा होगी। उस पूरे परिसर का जो स्वरूप है वो एक हिंदू मंदिर का स्वरूप माना है कोर्ट ने, सरस्वती मंदिर का माना है।
6: इंदौर हाईकोर्ट में 6 अप्रैल से इस मामले की लगातार सुनवाई हुई, बीच में जो छुट्टियां पड़ी वो अलग है, और फिर उसके बाद आज इंदौर हाईकोर्ट ने इसमें बहुत ही ऐतिहासिक फैसला दिया है। राम मंदिर के जजमेंट के बाद ये दूसरा ऐसा फाइनल निर्णय है जो हाईकोर्ट से आया है, और आज इतने दिन की सुनवाई और 2022 से लगातार 4 साल की इस लीगल कार्रवाई के बाद आज ये बात सिद्ध हुई है, स्पष्ट हुई है कि जो भोजशाला का पूरा परिसर है वो राजा भोज द्वारा बनाया गया था। ये
7: विष्णु शंकर जैन को आप सुन रहे थे, वकील थे हिंदू पक्ष की तरफ से। अब सीधा रुख करते हैं रवीश पाल सिंह, एक बार फिर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। रवीश, वहां का इस समय ताजा हालात कैसे हैं और खास तौर पर क्या कुछ कहा गया है हिंदू पक्ष या मुस्लिम पक्ष की तरफ से फैसला जाने के बाद?
8: देखिए, यहाँ पे हिंदू पक्ष जमकर होली मना रहा है। हम आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं, ये देखिए रंगे हुए हैं सब, भगवा रंग में रंगे हुए हैं हिंदू पक्ष के लोग और ये जमकर होली मना रहे हैं। ये देखिए, ये सड़कें जो है भोजशाला के ठीक सामने की सड़क जो है ये भगवा रंग में रंग गई है, क्योंकि हिंदू पक्ष जो है यहाँ पे एक दूसरे को रंग लगा करके खुशियां मना रहा है इस पूरे फैसले की। ये बताइए आप लोग एक दूसरे को आज ये रंग लगा रहे हैं, होली मना रहे हैं।
9: बहुत बड़ा पर्व है आज, सब समस्या का समाधान हो गया। बस दो ही लाइन,
10: हमने यहाँ पर लाठी खाई है, हमने यहाँ गोली खाई है, हमारे इष्ट मित्रों को हमने लाठी खाते हुए देखी है। यहाँ पर 2006 2013 2003 हमने वो दिन देखे जहाँ हिंदू हमारे साथ प्रताड़ित हुआ है, लटकाए हमने, हम जानते हैं यहाँ कैसे क्या हुआ है। पर यहाँ हमको
9: बलवा रासू का ऐसे कई धाराओं से दंडित कराए हिंदू समाज को, आज पूरा समाज खुश है।
10: होली दिवाली आज हमारे लिए यही है, आज होली भी आज ही है, दिवाली भी आज ही है, सबसे बड़ा दिन है हमारे लिए।
8: तस्वीर दिखाते हैं हम आपको, देखिए किस तरीके से यहाँ जश्न मन रहा है। ये आप देख सकते हैं एक दूसरे के ऊपर रंग लगाया जा रहा है और ये रंग उड़ा करके जो है यहाँ पे जो हिंदू पक्ष है वो इस पूरे फैसले पर अपनी खुशी जता रहा है। और इनके चेहरे देखिए, सबके चेहरे इस वक्त आपको रंगे हुए दिख जाएंगे। ये देखिए एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं, मुंह मीठा करा रहे हैं, और ये तस्वीरें हैं भोजशाला के बाहर की, उस भोजशाला की जिसे एक तरीके से मध्य प्रदेश का अयोध्या कहा जाता था, जो विवाद यहाँ इतने सालों से था उसको देखते हुए और मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए। लेकिन आज जब फैसला इनके पक्ष में आया है तो ये खुद को रोक नहीं पाए और भोजशाला के ठीक बाहर फिलहाल एक दूसरे का मुंह मीठा करा करके और रंग लगा करके इस फैसले के प्रति अपनी खुशी जता रहे हैं हिंदू पक्ष के लोग।
7: बिल्कुल रवीश, एक और बात, क्योंकि करीबन 242 पन्नों के जजमेंट के अंदर कुछ स्पेसिफिकेशन जजमेंट में दी गई है, जिसमें खास तौर पे कोर्ट ने एएसआई की उन रिपोर्ट्स को आधार मानते हुए बताया कि देखिए जिस तरीके के वहां पर जानवरों के साइंस मिले, जो करीबन 100 से ज्यादा जो पिलर मिले उस पर जो नक्काशी थी या जो चीजें थी वो साफ तौर पर ये दिखा रही है कि ये सिर्फ मंदिर हो सकता है। क्या एएसआई की रिपोर्ट को ही कोर्ट ने मुख्य आधार माना है, इन्हीं फाइंडिंग्स को लेकर कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया?
8: बिल्कुल, कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ एएसआई की जो रिपोर्ट थी, क्योंकि कोर्ट के कहने पे ही, कोर्ट के आदेश पे ही एएसआई को यह सर्वे का अधिकार दिया गया था और करीब 98 दिनों तक एएसआई ने इस साइंटिफिक सर्वे को अंजाम दिया था इसी भोजशाला के बाहर। हम आपको दिखाते हैं ये जो भोजशाला का परिसर है, यहाँ से एएसआई की टीम अंदर जाती थी, क्योंकि हम उस वक्त आए थे जब एएसआई की टीम यहाँ पहली बार पहुंची थी सर्वे के लिए। तो ये वो गेट है
11: जिस गेट से एसआई की टीम अंदर दाखिल हुई थी, और जो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे वो सामने अगर आप हिस्सा देखें तो यहाँ से होते हुए टीम जाती थी और अंदर जो भोजशाला का परिसर है वहां से जो चिन्ह है, प्रमाण है, वो इकट्ठे किए जाते थे। और वहां पे ये बताया गया था कि दीवारों पे जो नक्काशी है, जो वास्तु शिल्प है अंदर की, जो शिलालेख है, और साथ ही में कुछ ऐसे प्रतीक चिन्ह हैं जो साफ तौर पर इशारा करते हैं कि किसी वक्त में यहाँ पे सनातन पद्धति से पूजा होती थी, तो उसी को आधार बनाया है हाईकोर्ट ने और उसी के आधार पे फैसला भी सुनाया है। हालांकि कुछ देर पहले हमने जो मुस्लिम पक्ष है, जो शहर काजी है धार के वकार सादिक, उनसे भी बात की, वो इसे सिरे से खारिज कर रहे हैं।

0: मंदिर में रह सकते हैं। क्या इस फैसले का को लेकर जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही जा रही है, क्या यह कानूनी लड़ाई एक बार फिर से लंबी खींचेगी या फिर अभी जो को हाई कोर्ट ने आदेश दिया यथास्थिति जो स्टेटस को है वो वैसे ही मेंटेन रहेगा?
1: आपके इस एक सवाल में बहुत सारे सवाल हैं। पहला सवाल तो ये कि जो एएसआई ने रिपोर्ट दी है या जो राम अयोध्या का फैसला था, अयोध्या के फैसले में इस फैसले में काफी अंतर है। एक तो अयोध्या के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत दिए गए जो विशेष अधिकार है सुप्रीम कोर्ट का 142, उसके तहत पूर्ण न्याय करते हुए 5 एकड़ जमीन मुस्लिम पक्षकारों को देने की बात कही थी। लेकिन इसमें इन्होंने ये कहा है कि मुस्लिम पक्षकार, चूंकि उस समय यह कहा था कि अयोध्या का जो विवादित ढांचा था वो गिराया जाना गलत था, लेकिन यहाँ कोई विवादित ढांचा गिराने की बात नहीं है। लेकिन कोर्ट ने ये कहा है, जो खंडपीठ है हाई कोर्ट के इंदौर पीठ की, उसने कहा है कि मुस्लिम पक्षकार चाहें तो विकल्प के तौर पर सरकार से अपील कर सकते हैं, सरकार उनके आवेदन पर विचार करेगी। दूसरा ये कि एएसआई का सर्वेक्षण हुआ, इसके अलावा खुद ये पहला ऐसा दुर्लभ मौका है जिसमें हाई कोर्ट के जजेस उन्होंने खुद जाकर मौका मुआयना किया और वहां धार के जो भोजशाला परिसर है उसमें खुद जाकर चीजें देखी। तो यानी कानून के आलोक में, रिपोर्ट के आलोक में और जमीनी हकीकत को देखते हुए देखने के बाद अदालत ने फैसला दिया है। और जहां तक रही बात सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की, कोई भी किसी भी कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। तो मुस्लिम पक्षकारों के पास ये अधिकार है और वो यहाँ अवश्य आएंगे। जहां तक हमारी जो लोग संभावित पैरवी कर सकते हैं मुस्लिम पक्षकारों की, उन वकीलों से हमारी बात हुई है।
0: संजय जी आप बने रहिए हमारे साथ। संजय जी हम लगातार एक बार फिर से रवीश का रुख कर लेते हैं क्योंकि वहां की क्या इस समय हालात हैं, किस तरीके से वहां पे खुशी है। एक बार फिर से रवीश, अगर आप वो तस्वीरें दिखा सके और वहां पर मौजूद लोगों से बातचीत कर सके तो।
2: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी ये तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। देखिए किस तरीके से खुशी है, एक दूसरे को वीडियो कॉल ये देश विदेश में कर रहे हैं, चेहरे पे रंग लगा हुआ है और ये वीडियो कॉल करके दूसरों को दिखा रहे हैं बाहर की क्या यहाँ के हालात है। ये बताइए आज क्या इस फैसले के बाद लग रहा है आपको, अब यहाँ पे अगला कदम आप लोगों का क्या होने वाला है, क्योंकि आप लोग तो बार बार कह रहे थे कि प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए।
3: आज हाईकोर्ट के निर्णय अनुसार भोजशाला माँ का मंदिर करार दिया गया है और हम सभी हाईकोर्ट के निर्णय से प्रसन्न है। हिंदू समाज यहाँ पर आपने देखा होगा अभी कि तमाम हिंदू समाज ने जश्न मनाया, मिठाई बांटी, होली खेली। बस यही हम जल्द से जल्द माँ विराजमान हो भोजशाला में, यही हम कामना करते हैं। जय भोजशाला।
2: और ये देखिए हम आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं यहाँ पे और जम करके यहाँ पे जश्न मना रहा हूँ। चेहरे देखिए आप सबके पूरे लाल रंग से रंगे हुए, भगवा रंग से रंगे हुए चेहरे हैं ये। और ये खुशी जो है ये हिंदू पक्ष की वो खुशी है जिसके लिए इनका कहना है कि इन्होंने लंबी लड़ाइयां लड़ी इसके लिए। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, ये देखिए चेहरे देखिए इनके पूरे तरीके से रंगे हुए हैं। क्या कहेंगे तो ये फिलहाल यहाँ पे जो हिंदू पक्ष की तरफ से जो प्रमुख लोग हैं वो सब यहाँ इकट्ठे हैं। लेकिन इन सब के बीच में हम ये तस्वीर दिखाते हैं, ये तमाम उन युवाओं की, उन नौजवानों की है जो लगातार यहाँ पे मांग कर रहे हैं। ये महिलाएं देखिए, हमने पुरुषों का तो दिखाया गया, देखिए मंदिर के अंदर महिलाओं का जोश देखिए। ये हिंदू पक्ष की महिलाएं हैं, ये इनके भी चेहरे रंगे हुए हैं, ये खुशी देखिए। हम महिलाओं का पक्ष पहली बार सामने आएगा इसमें। आप लोग लगातार मंदिर पे बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ कर रही थी, सुंदरकांड का पाठ कर रहे थे, लेकिन अब ये फैसला आया है, पुरुष तो बाहर होली खेल रहे हैं, आप लोग के बीच में क्या माहौल है यहाँ?
4: बहुत, हम तो बहुत खुश हैं कि हमारी माँ जल्दी से जल्दी आ गई और हमारे पक्ष में फैसला हो गया। बस हमारे रोज
5: ये ऐतिहासिक दिन है, बहुत खुशी का दिन है कि हमारे भोजशाला का जो फैसला है वो आ गया। वैसे तो कोर्ट और इसकी जरूरत नहीं थी, हर दीवार हर मंदिर मूर्तियाँ चिक चिक के कह रही थी कि यह हमारा मंदिर है, पर जो भी है चलो ठीक है, आज खुशी का दिन है। ये तो अभी झांकी है, ये तो अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है,
2: कोई एक अलग चीज है। लेकिन हम बात करेंगे, आप लोग बताइए, आप लोगों ने आज रंग लगाया एक दूसरे को कि कितना बड़ा मौका है आप लोगों का।
4: कई साल का जो इंतजार था, माँ जो लंदन में बैठे हैं वो आज हमारे धार में आने के लिए पूरी तरह से तैयार है और मंदिर हमारा बनेगा।
2: कब बनेगा?
4: बस बहुत जल्दी
6: का प्रमाण आ गया है और सत्य की विजय हुई है। भाई साहब तो अत्यंत, देखो आप धार में हर्षोल्लास है और विजय हुई है तो मंदिर भी जल्दी बनेगा। भारत माता की जय।
5: आज भोजशाला के बाद
2: आप देख सकते हैं ये तस्वीर काफी है ये बताने के लिए कि धार के लोगों के लिए, धार के बाशिंदों के लिए इस फैसले की अहमियत क्या है।

0: हो महिलाएं हो
1: रवीश,
0: जैसे ही ये फैसला आया है ये एक दूसरे को रंग लगा करके इस तरीके से भजनों पे झूम करके इस फैसले पर अपनी खुशी जता रहे हैं। पुरुष बाहर होली खेल रहे हैं, महिलाएं अंदर भजन गा रही हैं और मध्य प्रदेश का अयोध्या जिस विवाद को कहा जाता था आखिरकार हाईकोर्ट ने आज उस पर पहला फैसला देते हुए इन तमाम लोगों के बरसों पुराने संघर्ष को एक जीत की मोहर आज दे दी है, ऐसा इनका कहना और यही खुशी।
1: रवीश एक और बात, क्योंकि लगातार हमारे दर्शक जो
0: साफ तौर पर देखी जा सकती है,
1: बिल्कुल रवीश हमारे जो दर्शक लगातार आपको देख रहे हैं सुन रहे हैं वहां पर क्या, एक बार अगर आप पूरे प्रीमिसेस को परिसर को दिखा सके मंदिर को जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर एक बार फिर से आप कैमरे का मूवमेंट करें दिखाएं कि वहां पर क्या इस समय तस्वीर है और कौन कौन से प्रीमिसेस के अंदर कहां कहां पे लोग इस समय मौजूद है अगर आप दिखा सके तो।
0: देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दूं परिसर के भीतर तो प्रवेश वर्जित रहता है, वहां पर सिर्फ मंगलवार को और शुक्रवार को इजाजत होती है। मंगलवार को हिंदू पक्ष पूजा करने जाता है और शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष नमाज पढ़ने जाता है। नमाज पढ़ने के अलावा अंदर किसी को प्रवेश की इजाजत नहीं होती। और अभी भी अगर हम आपको परिसर की दिखाएं जहां हम ये मौजूद है ये भोशाला परिसर के ठीक सामने की तस्वीर है, हम आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जहां से भोशाला के अंदर आपको प्रवेश मिलता है, क्योंकि भोशाला जो परिसर है वो तकरीबन 500 मीटर अंदर है यहां से। लेकिन अब आप देखिए जैसे ही फैसला आया यहां पे पुलिस ने तैयारियां शुरू कर दी है, बैरिकेड्स आने शुरू हो गए हैं, पहले से ही काफी बैरिकेड थे लेकिन अब यहां पे सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा किया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, सीधी तस्वीरें हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं भोशाला परिसर से। और जैसे कि आपने कहा कि परिसर के भीतर से हम आपको तो नहीं दिखा सकते, अंदर इजाजत नहीं होती है, ये आप देख सकते हैं शामिए ने लगा करके इसको पूरा ढक दिया गया है। लेकिन हम आपको एक छोटी सी झलक यहां से दिखाते हैं, दूर से हम यहां से आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, इससे आपको थोड़ा अंदाजा लग जाएगा, ज्यादा अंदर आगे नहीं जाने दिया जाएगा। ये देखिए आप, ये पूरा कवर है और ये जो आप हरा झंडा देख रहे हैं उससे दाईं तरफ अगर आप देखें तो आपको एक भगवा ध्वज दिखेगा। ये जो भगवा ध्वज जिस तरफ लगा हुआ है उसके भीतर ये जो आप देख रहे हैं दीवारें ऊंची ऊंची करीब 20 फीट ऊंची दीवारें हैं, ये यही वो यज्ञशाला है, यही वो परिसर है जिसे हाईकोर्ट ने आज मंदिर माना है। इसके भीतर आपको बता दें कि चारों तरफ करीब सैकड़ों खंभे हैं और उन खंभों पे जो शिलालेख है जो आकृतियां बनी हुई हैं उसे हाईकोर्ट के आदेश के बाद जब एएसआई ने सर्वे के लिए यहां चुना था 98 दिनों तक उसकी टीम यहां रही थी तो उन तमाम शिलालेखों का उल्लेख किया गया, उसकी कॉपी रिपोर्ट तैयार की गई और उसके बाद हाईकोर्ट के जज जो हैं वो बकायदा इंदौर से यहां पहुंचे थे भोशाला में, उन्होंने आकर के हाईकोर्ट में जो सबमिट की गई थी रिपोर्ट एएसआई की तरफ से उस रिपोर्ट को खुद उन्होंने फिजिकली वेरीफाइड किया था हाईकोर्ट के जजेस ने। और उसके बाद इस मामले में 6 अप्रैल से रेगुलर हियरिंग शुरू होती है जो 12 मई को खत्म होती है और आज जाकर के इस पे फैसला आता है। तो ये सिर्फ एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर ही नहीं बल्कि खुद जो जजेस है उन्होंने आकर के उस रिपोर्ट को पहले खुद यहां देखा, एएसआई की रिपोर्ट पे जो दिया गया था वर्णन क्या वो वर्णन यहाँ के शिलालेखों से मेल खाता है या नहीं, जहां पे कमल की आकृति बनाने की बात एएसआई ने कही थी वो यहाँ मौजूद है या नहीं, संस्कृत में श्लोक यहाँ लिखे हैं या नहीं, श्रीराम का नाम माँ वाग्देवी का नाम यहाँ लिखा है या नहीं, ये तमाम चीजें खुद जजेस ने आकर के देखी और उसके बाद ही इस फैसले को आज उन्होंने सामने रखा। लेकिन जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं,
1: रवीश पाल सिंह लगातार हमारे साथ बने रहिए, आप लगातार रवीश पाल सिंह को जगह दिखा रहे हैं जिसको आधार मानते हुए सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट ने जिसके बाद ये फैसला दिया। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि AIIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया, सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने इस फैसले की तुलना अयोध्या राम मंदिर के फैसले से की है। असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा है कि हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सही फैसला सुनाएगा और इस आदेश को पलट देगा। उन्होंने ये भी लिखा कि ये फैसले में बाबरी मस्जिद जजमेंट की स्तंभ कर देने वाली समानता है। यानी आप देखिए लगातार ओबीसी ये कह रहे हैं कि देखिए अब सुप्रीम कोर्ट से आशा मैं करता हूं कि वो इस फैसले को पलट देगा। पहली प्रतिक्रिया खासतौर पर AIIM की तरफ से आई है, ओबीसी ने कहा है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को रद्द कर देगा ये हमें उम्मीद है। और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इस बड़े फैसले पर हमारी नजर बनी रहेगी, तमाम बड़े पहलू आपको दिखाते रहेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी
3: इलेक्ट्रॉनिक। Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry. TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs, so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
4: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
6: सवारी सोकुडो
7: ये मिट्टी सिर्फ फसल नहीं उगाती, देश का भविष्य भी बनाती है और इस भविष्य को संभालते हैं ये हाथ, हमारे देश के असली हीरो के हाथ, जिनके हाथ की ताकत है क्रिस्टल के उत्पाद। तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल के उत्पाद। देश का किसान, देश का हीरो।
8: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके।
9: करेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
10: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
11: इसमें माइक्रोफाइबर है।
10: माइक्रोफाइबर यानी
11: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
10: हमारे सीमेंट में नहीं है,
11: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
12: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
13: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
14: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
15: जीके मैक्स।
16: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
15: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
16: जेके वॉल मैक्स
15: बेस्ट पेंट,
16: जेके मैक्स।
15: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
17: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
4: 20 साल से इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट देश को दे रहा है बेहतरीन पत्रकार। अगर आपका लक्ष्य भी है पत्रकारिता तो फिर सोचना क्या। रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
5: तेईस और 29 अप्रैल वोटिंग।
6: 90% क्रॉस कर गई बंगाल की वोटिंग।
7: ये बढ़ा हुआ मतदान आखिर किस तरफ जाएगा।
5: 4 मई काउंटिंग।
6: भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी पीछे हो गई हैं।
8: रुझानों में बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए।
5: 8 मई CM का ऐलान।
9: शुभेंदु अधिकारी बंगाल के मुख्यमंत्री होंगे।
5: 9 मई शपथ।
10: शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते थी जे।
5: यूट्यूब पर सबसे ज्यादा व्यूअर्स। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा एंगेजमेंट। सर्च में नंबर 1। गूगल ट्रेंड्स में नंबर 1। लाइव स्ट्रीम में सबसे आगे। टीवी हो डिजिटल हो यूट्यूब हो या सोशल मीडिया हर प्लेटफॉर्म पर आज तक रहा चुनाव में सबसे आगे। चुनाव मतलब सिर्फ आज तक।
11: द एक्शन नेवर स्टॉप्स एंड नीदर डू वी। फ्रॉम ब्रेकिंग अपडेट्स टू मैच एनालिसिस फ्रॉम बिग मोमेंट्स टू बिगर कॉन्वर्सेशन दिस इज वेयर स्पोर्ट्स कम्स अलाइव फास्ट sharp, unfiltered, for the fans who want every update, every story, every headline first. Welcome to Sports Today, your destination for everything sports. Press that bell icon and subscribe now.
12: Presented by पतंजलि गाय का घी। लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
13: इन एसोसिएशन विद
14: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एकजे द नंबर 1 कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।
15: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
16: Feel the good vibes with Roots Reggae. TuneIn is bringing positivity to your ears with the best reggae hits. Stir it up with Bob Marley, Jimmy Cliff, Protégé, and much more. Let Roots Reggae lift your spirits and fill your ears with rhythms and beats of the best. Just search Roots Reggae or tell your device to play Roots Reggae on TuneIn.
17: JK मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद। JK मसाले, जहां स्वाद वहां JK।
18: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
19: इसमें माइक्रो फाइबर है।
18: माइक्रो फाइबर यानी
19: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
18: हमारे सीमेंट में नहीं है।
19: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
20: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।

0: वेतन बढ़ रही रहे, रेट बढ़ी जा रहे हैं मार्केट के अंदर हर एक आइटम के।
1: जो बढ़ा है ठीक है, और बढ़ेगा तो कुछ नहीं होगा।
2: ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪਊਗਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਊਗਾ ਜੀ।
3: ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਪੜੇਗਾ ਸਭਕੋ।
4: ਕਰੀਬ 2 ਸਾਲ ਕੀ ਲੰਬੇ ਅੰਤਰਾਲ ਕੇ ਬਾਅਦ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਓਂ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਬੜਾ ਝਟਕਾ ਦੇ ਹੀ ਦਿਆ। ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ ਗਾੜੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੇ ਹੀ ਜੇਬ ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾ ਤਗੜਾ ਝਟਕਾ ਲਗਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਕੇ ਨਏ ਦਾਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਬਾਰ ਸਿੱਧਾ 3 ਰੁਪਏ ਕਾ ਬੜਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇ ਸਾਥ ਹੀ ਸੀਐਨਜੀ ਵੀ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
5: बढ़ोतरी तो सीएनजी वाले कर रहा है, गाड़ी वाले कर रहा है, कमाई में तो कमी हो रहा है।
6: इतना हमें डायरेक्टली नहीं पड़ेगा बट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट काफी ज्यादा है। हाँ। वो तो हम सबको ही पता है।
4: ये बढ़ोतरी आम आदमी के घर के बजट का बैलेंस बिगाड़ने का डर बढ़ा रही है, क्योंकि इसके बाद न केवल अपना निजी वाहन चलाना महंगा होगा बल्कि कैब बस समेत पेट्रोल डीजल और सीएनजी से चलने वाले पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी महंगा होने की आशंका है। साफ है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों का ये बढ़ता ग्राफ गाड़ियों तक सीमित नहीं रहेगा, इसका सीधा असर हर उस सामान पर पड़ेगा जिसे आप खाते पीते या इस्तेमाल करते हैं।
7: तो महंगाई तो बढ़ती ही जा रही है, हर तरह से खर्चे बहुत ज्यादा ही होते जा रहे हैं। आम आदमी क्या करे समझ ही नहीं आ रहा है।
4: इस बढ़ोतरी की मुख्य वजह मिडिल ईस्ट का तनाव है। ईरान और अमेरिका के बीच जंग के हालात बनने से पहले क्रूड ऑयल $70 पर था, जो उछलकर $100 प्रति बैरल के पार चला गया है। सरकार पहले ये दलील दे रही थी कि पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका में कीमतें 15-20% बढ़ गईं, लेकिन भारत में बोझ नहीं डाला गया। लेकिन तेल कंपनियों को हो रहे भारी भरकम नुकसान के बाद देश में भी तेल के दाम बढ़ना तय था। कंपनियां अभी भी पेट्रोल डीजल पर 25-30 रुपए प्रति लीटर का नुकसान झेल रही हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो अगर ग्लोबल एनर्जी मार्केट में सप्लाई का संकट बना रहा तो आने वाले दिनों में कीमतें और बढ़ सकती हैं, जिससे आम आदमी पर महंगाई की मार और पड़ सकती है। आज तक ब्यूरो।
8: गैस भी महंगा कर दिया, कॉमर्शियल गैस भी महंगा कर दिया, पेट्रोल डीजल भी महंगा कर दिया। तो दरअसल ये सरकार पूरी तरह से देश की जनता को लूटने का काम कर रही है, उसके हित में कोई काम नहीं कर रही है। प्रधानमंत्री जी जो तमाशा करते हैं और उनके नीचे ग्राउंड पे उनका वर्कर उसकी जो रियलिटी देश के सामने रखता है, बस मीडिया इसको सही से दिखाना शुरू कर दे तो मुझे लगता है देश समझ जाए कि सरकार सिर्फ और सिर्फ तमाशे में विश्वास रखती है। उनका मकसद इस क्राइसिस से निपटना नहीं है। क्राइसिस से निपटना होता तो फिर पेट्रोल और डीजल के दाम ना बढ़ाते आप। आपने देश को मझधार में छोड़ा, आप खुद विदेश यात्रा पर निकल गए और दाम आपने सीधे 3 रुपए से ज्यादा बढ़ा दिए।
9: कुल मिलाकर 3 रुपए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए हैं। दुनिया भर में तो बहुत ज्यादा बढ़े हैं। अमेरिका में लगभग 40% बढ़े हैं, यूएई में लगभग 40% बढ़े हैं, जो कि पेट्रोल और क्रूड का प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है। इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में, मलेशिया में, म्यांमार में, हर जगह पे लगभग 30-40% दाम बढ़े। हमारे यहाँ तो बहुत मिनिमम प्रेशर डाला सरकार ने, और जैसे ही कुछ राहत मिलेगी तो फिर वापस हो सकता है सरकार वापस दाम ले।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

पक्ष का सरकार पर हल्ला बोल। भारत और यूएई में तेल गैस समेत कई अहम समझौते। अबू धाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से मिले प्रधानमंत्री मोदी का। मुश्किल वक्त में यूएई ने रखा भारतीयों का ख्याल। ब्रिक्स समिट में ईरान के विदेश मंत्री अराग्ची ने जयशंकर से की मुलाकात। कहा, युद्ध बंद होने तक हॉर्मुज में हालात सामान्य नहीं हो सकते, अमेरिका पर हमें भरोसा नहीं।

ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से रणभूमि में स्वागत है। और सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के यूएई के दौरे को लेकर। दरअसल पांच देशों की यात्रा पर निकले प्रधानमंत्री मोदी का पहला पड़ाव यूएई था, जहां पर एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर कई समझौते किए गए हैं। अब वो यूएई से अपने अगले पड़ाव यानी नीदरलैंड के लिए रवाना हो रहे हैं। उससे पहले भारत यूएई रणनीतिक रक्षा साझेदारी के तहत दोनों देशों के बीच स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर भी समझौता हुआ है। यूएई पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत भी किया गया। ऊर्जा सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की यूएई का ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखाने के, जब उनका ये दौरा खत्म हो रहा था कुछ ही घंटों के लिए वो यूएई पे थे, जहां पर अब वो नीदरलैंड के लिए रवाना हो गए। उनको खुद यूएई के राष्ट्रपति छोड़ने आए, उनको सी ऑफ करने आए। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जब उनको सी ऑफ करने किया जा रहा था तब यूएई के राष्ट्रपति उनके साथ मौजूद थे। कुछ ही घंटों की यात्रा के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी यूएई से नीदरलैंड के लिए रवाना हो गए। करीबन पांच दिनों के पांच देशों के इस दौरे के दौरान सबसे पहला पड़ाव उनका यूएई में था, जहां पर कई महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं कि समझौते भारत और यूएई के बीच में किए गए हैं।

0: प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने ना सिर्फ आप कह सकते हैं तेल और गैस को लेकर, सुरक्षा को लेकर कई महत्वपूर्ण सौदे किए, बल्कि जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फ्रेमवर्क था उसको लेकर भी समझौता किया गया। क्या कुछ प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दौरे को लेकर कहा, आइए आपको सुनाते हैं।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी पर प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। जल्द से जल्द शांति और स्थिरता की बहाली के लिए भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। ब्रदर, हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को निरंतर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जनवरी में आपकी भारत यात्रा के दौरान हमने आपस से सहयोग को क्वालिटेटिवली अपग्रेड करने पर सहमति जताई। इतने कम समय में भी हमने सभी विषयों में उल्लेखनीय प्रगति की। दोनों टीमों के बीच भी करीबी संपर्क रहा। आज जिस तरह की परिस्थिति है इसमें भारत और यूएई की स्ट्रेटेजिक साझेदारी, इसका महत्व कई गुना बढ़ गया। हम आने वाले समय में हर क्षेत्र में साथ मिलकर के आगे बढ़ते रहेंगे।
0: प्रधानमंत्री मोदी लगातार यूएई के इस दौरे को लेकर बता रहे हैं कि कैसे भारत और यूएई आगे बढ़ रहे हैं। चलिए खबरों में, रणभूमि में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पूरी दुनिया पे छाए तेल और गैस के संकट को लेकर।

0: चीन का दौरा खत्म, ट्रंप फिर करेंगे आक्रमण। ईरान का समर्थक, चीन भी दे रहा सिग्नल। इजराइल भी ईरान पर हमले के लिए तैयार। अमेरिका इजराइल की सैन्य मीटिंग में बना ब्लूप्रिंट। ईरान को झुकाएंगे उसी के खुफिया ठिकाने। हमले से पहले ट्रंप को मिला जिनपिंग का भरोसा। अमेरिका का दावा, ईरान को हथियार नहीं देगा ड्रैगन। ट्रंप का फाइनल वॉर, दुनिया को बचाएगा या डुबाएगा।
1: पूरी दुनिया अमेरिका और ईरान युद्ध का खामियाजा भुगत रही, ऊर्जा का संकट महामंदी का खौफ पैदा कर रहा है। दूसरी तरफ दुनिया की एक बड़ी एनर्जी लाइन यानी हॉर्मुज अब भी बंद है। हम आपको चार तस्वीरें सबसे पहले टीवी स्क्रीन पर दिखाते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि महायुद्ध का अगला दौर दस्तक कैसे दे रहा है। भले ही चीन को ईरान का सबसे बड़ा समर्थक माना जाता हो, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बीजिंग में हुई मुलाकात के दौरान दोनों ही नेता इस पर सहमत हुए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलना चाहिए और ईरान की उसे बंद रखने की जिद के अलावा परमाणु कार्यक्रम पर भी कड़ा रुख अमेरिका को नया हमला करने के लिए मजबूर कर सकता है। जहां तक इजराइल मीडिया की बात करे तो ये यकीन किया जा सकता है कि चीन का दौरा खत्म करते ही ट्रंप एक बार फिर से ईरान पर हमला करने का फैसला ले सकते हैं। दूसरी तरफ इजराइल भी हमले के लिए तैयार है। हम आपको चार तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार क्यों इजराइल की मीडिया ये खबरें दे रही है कि देखिए ये दौरा खत्म होने के बाद ही अमेरिका बड़े युद्ध का आगाज कर सकता है। इसराइल को यह साफ तौर पर लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप चीन से वापस लौटते ही ईरान पर फिर से मिलिट्री एक्शन का फैसला लेंगे। ये खबर मुख्य रूप से इजरायली मीडिया के कैन न्यूज के हवाले से आ रही है। इसके अलावा चैनल 12 ने भी इस ऐसी खबरें दी हैं। इन दोनों ही मीडिया चैनलों का दावा है कि इसराइल और अमेरिका दोनों ही नए सिरे से हमले की तैयारी कर चुके हैं। पिछले हफ्ते इसराइल डिफेंस फोर्स और यूएस सेंट्रल कमांड ने युद्ध के नए दौर को लेकर बातचीत की गई थी, स्ट्रैटेजीज को डिसाइड किया गया था और इस बात पर ये दोनों सहमति, या फिर इससे पहले भी आपको याद होगा कि जब 28 फरवरी को युद्ध का आगाज हुआ था उससे पहले भी ऐसे ही मीटिंगें इजराइल और अमेरिकी सेंट्रल कमांड के बीच हुई थी और ये कहा जा रहा है कि ईरान के तेल और गैस के कुओं को निशाना बनाने को लेकर भी बातचीत हुई है। इन हमलों का मकसद तेहरान को बातचीत की मेज पर लौटने और परमाणु कार्यक्रम को लेकर रियायत देने के लिए मजबूर करना है। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच ईरान को लेकर बातचीत हुई है और ट्रंप ने इस बातचीत को लेकर बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान को लेकर उनका और शी जिनपिंग का नजरिया एक जैसा है। ट्रंप ने कहा कि वो दोनों ही नेता चाहते हैं कि मौजूदा संकट समाप्त हो। ट्रंप ने अपने अलावा चीन को लेकर भी दावा किया कि हम नहीं चाहते कि ईरान परमाणु हथियार बनाए। ट्रंप ने कहा कि शी जिनपिंग भी चाहते हैं कि हॉर्मुज खुले। डोनाल्ड ट्रंप ने शी जिनपिंग के मुंह पर ही ईरान को संती बताया और कहा कि वो कोई भी बेवकूफी कर सकते हैं, इसलिए उनके पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए।
2: We did discuss Iran. We feel very similar in Iran. We want that to end. We don't want them to have a nuclear weapon. We want the straits open. We're closing it now. They closed it, then we closed it on top of them. But we want the straits open, and we want them to get it ended because it's a crazy thing. They're a little bit crazy, and that's no good. Can't have it. They cannot have a nuclear weapon.
1: और अपने चीन दौरे के बीच ही डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को एक इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में उन्होंने चीन की ओर से ईरान को दी जा रही सैन्य मदद पर बड़ा दावा किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने माने तो शी जिनपिंग ने उनसे कहा है कि चीन अब ईरान की हथियार और साजो सामान से मदद नहीं करेगा। ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरान को लेकर चीन के राष्ट्रपति का बहुत सख्त बयान दिया गया है। यानी डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि अब चीन जो है वो मान गया है कि वो ईरान को कोई सैन्य मदद, कोई लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं देगा।
2: We discussed it. When you say support, they're not
3: fighting a war with us or anything.
4: No.
3: He said he's not going to give military equipment. That's a big statement. He said that today. That's a big statement. He said that strongly. But at the same time, he said, you know, they buy a lot of their oil there, and they'd like to keep doing that. He'd like to see Hormuz Strait opened. I said, well, we didn't stop it. They did it, and then we stopped them. You know, sort of interesting. He joked. He said, you know, it's sort of, they stopped it, then you stopped them. But they'd like to see it opened.
1: वहीं फॉक्स न्यूज को दिए अपने इंटरव्यू में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर और सनसनीखेज बयान भी दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका एक बार फिर से ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर सकता है। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान अपनी सेना को परमाणु ठिकानों पर फिर से भेजता है तो अमेरिका एक ही काम कर सकता है कि वो कुछ बमों से उन पर हमला कर देगा। आपको बता दें कि अमेरिका उन परमाणु ठिकानों पर दिन रात नजर बनाए हुए है। वहीं ईरान के हाथ वो संवर्धित यूरेनियम नहीं लग रहा जो उसने अपने परमाणु ठिकानों पर हमले के दौरान छुपा रखा था। इसकी वजह से पूरा का पूरा पहाड़ी उस पर गिर पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि देखिए, वो सारा का सारा एनरिच यूरेनियम उन पहाड़ियों के नीचे दब चुका है और उस तक पहुंचने की तकनीक जो है सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और चीन के पास ही है।
3: I would rather get it, but we have our eyes on it. You know, we know exactly what's happening there. We had the other day, there was a man that tried to get into the chute. You know, we saw there was a door that was blown to smithereens. And we know everything that's happening. If they ever moved on, and I told them that, if they have send a force over there to try where I see somebody's trying, all we'll do is just hit it with a couple of bombs, and that's going to be the end of that. They won't do it. I said, we have 9 cameras on that site, on those 3 sites, 24 hours a day. We know exactly what's happening.
1: अब आपको इस दौरे का एक और रोचक पहलू दिखाते हैं। दरअसल चीन दौरे से पर रवाना होने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान को बातचीत की टेबल पर लाने के लिए उन्हें चीन की मदद की जरूरत नहीं है। लेकिन चीन दौरा खत्म करने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन ने ईरान को समझौते के लिए राजी करने में शी जिनपिंग ने मदद की पेशकश की है। यानी अब लगातार डोनाल्ड ट्रंप पहले तो बात से नकारते रहे लेकिन अब फिर कह रहे हैं कि उन्होंने पेशकश की है और अमेरिका चाहता है कि चीन जो है वो मध्यस्थता करे।
3: He did offer, he said, if I can be of any help at all, I would like to be of help.
4: Because, he did say that.
3: Yeah, he did say that. And look, anybody that buys that much oil has obviously got some kind of a relationship with him. But he said, I would love to be a help. If I can be of any help whatsoever, he'd like to see the Hormuz Strait open. He said, if I can be of any help whatsoever, I would like to help.
1: ट्रंप ने शी जिनपिंग के सामने फिर से फॉक्स न्यूज से बातचीत में बड़े दावे किए लेकिन उन दावों की पोल एक अमेरिकी पत्रकार ने ही खोल दी। अमेरिकी पत्रकार और व्हाइट हाउस संवाददाता केली बेयर ने कहा कि चीन अमेरिका का जो साझा बयान जारी किया गया है उसमें ईरान का कहीं नाम ही नहीं है। केली बेयर ने कहा है कि हॉर्मूज को खोलने और मध्यपुर में संकट का जो जिक्र है लेकिन ईरान को लेकर कहीं भी कुछ भी नहीं कहा गया। ऐसे में या तो ट्रंप बढ़ चढ़कर दावे कर रहे हैं या फिर अमेरिका को कुछ बातों को आधिकारिक और स्वीकार नहीं करना चाहते। चलिए इस बड़ी खबर पर नजर आएगी, वक्त है छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

0: कमांड चेन में कहीं ना कहीं ब्रीच हुई है। किसी को इस बार बख्शा नहीं जाएगा। अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से।
1: नीट पेपर लीक से छात्र गुस्से में है। गुस्सा उस व्यवस्था के खिलाफ जो एक साफ सुथरी परीक्षा भी नहीं करवा सकती। गुस्सा उस सिस्टम के खिलाफ भी है जिसने 22 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। नीट पेपर लीक मामले में बढ़ते आक्रोश के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर देर रात अहम बैठक हुई, जिसमें उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी, माध्यमिक शिक्षा सचिव संजय कुमार, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह, सीबीएसई के अध्यक्ष राहुल सिंह, नवोदय विद्यालय समिति और केंद्रीय विद्यालय संगठन के आयुक्त समेत दूसरे कई बड़े अधिकारी मौजूद थे। करीब 2 घंटे तक चली इस बैठक के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान खुद मीडिया के सामने आए।
0: अभी एनटीए ने नीट यूजी का नई परीक्षा की तिथि घोषणा किया है। 21 जून को री एग्जामिनेशन की डेट घोषणा की है।
1: तो परीक्षा की नई तारीख भी आ गई है, नोट कर लीजिए। 21 जून 2026 को नीट यूजी की पुनः परीक्षा होगी। 14 जून को एडमिट कार्ड जारी होंगे। छात्रों को एग्जाम सिटी चुनने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया जाएगा। परीक्षा कक्ष में 15 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा ताकि छात्र आसानी से ओएमआर शीट भर सकें। साथ ही इस बार छात्रों से वसूली गई पूरी परीक्षा फीस भी एनटीए वापस करेगा। इसके अलावा अगले साल नीट की परीक्षा ऑनलाइन करने का फैसला लिया गया है। 2027 से नीट भी सीबीटी बोर्ड में होगा।
0: परीक्षा कैंसिल के दिन एनटीए ने एक निर्णय तुरंत कहा था कि हम जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे। हम उसमें एनटीए वचनबद्ध है और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी 0 फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए हम उसकी दायित्व ले रहे हैं। अगले साल से परीक्षा इसकी जो मूल जड़ है ओएमआर, अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी।
1: शिक्षा मंत्री ने साफ किया कि धांधली में शामिल किसी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो सिस्टम के अंदर का हो, बाहर का हो या फिर कोई और। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले कानून से बच नहीं पाएंगे। नीट पेपर लीक मामले में एनटीए भी आरोपों के घेरे में है। 22 लाख से ज्यादा मेडिकल उम्मीदवारों का भविष्य दांव पर है। शिक्षा मंत्री ने देश को आश्वस्त किया कि पेपर लीक को रोकने के लिए हर कदम उठाए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री भले ही आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन उन छात्रों का क्या जो सालों साल मेहनत करते हैं, ईमानदारी से डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, लेकिन सिस्टम की नाकामी उनकी मेहनत पर पानी फेर देती है। 21 जून तक देश के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय हो जाएगा। विपरीत परिस्थितियों में परीक्षा केंद्र तक पहुंचना भी छात्रों के लिए नई चुनौती होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए राज्य सरकारों से बात करेंगे ताकि छात्रों को कम से कम असुविधा हो। अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक।

0: आधार भोजशाला विवाद में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत। हाईकोर्ट ने माना सरस्वती का मंदिर अलग जमीन की मांग कर सकता है मुस्लिम पक्ष। ओवैसी बोले अयोध्या जैसा फैसला। पेपर लीक के बाद पहली बार सामने आए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। कहा 21 जून को होगा नीट का री एग्जाम, अगले साल से ऑनलाइन होगी परीक्षा। वैश्विक संकट का भारत पर भी असर। पेट्रोल डीजल की कीमतों में 3-3 रुपए की बढ़ोतरी। सीएनजी भी 2 रुपए प्रति किलो महंगी। विपक्ष का हल्ला बोल। भारत और यूएई में तेल गैस समेत कई अहम समझौते। अबू धाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से मिले पीएम मोदी। नीदरलैंड्स के लिए रवाना प्रधानमंत्री। ब्रिक्स समिट में ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची से जयशंकर की मुलाकात। कहा युद्ध बंद होने तक हॉर्मुज में हालात सामान्य नहीं हो सकते। अमेरिका पर हमें भरोसा नहीं।
1: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health का सच in association with
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल मध्य प्रदेश के इंदौर हाईकोर्ट के फैसले पर है। फैसला आया है कि मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला का जो संरक्षित धरोहर था वो वाग्देवी सरस्वती का मंदिर कमाल मौला मस्जिद नहीं है। इंदौर हाईकोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई के रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला सुनाया कि संरक्षित धरोहर मंदिर ही है और इसीलिए 2003 में एएसआई ने जो वहां नमाज पढ़ाने का प्रावधान शुरू किया था उसे भी रद्द किया जाता है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद धार में हिंदू गुट की ओर से जश्न मनाया जा रहा है, जबकि कमल मौला मस्जिद कमेटी के लोग इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला क्या करवट लेगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इससे पहले भी एएसआई से सर्वे को रोकने की मांग को लेकर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जा चुका था और वहां उसे निराशा ही हाथ लगी। लेकिन मुस्लिम पक्ष का तर्क है कि धार का मामला एक सिविल सूट है, लिहाजा हाईकोर्ट में पीआईएल पर सुनवाई के बजाय सिविल कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी चाहिए। अब इन दलीलों को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया, लेकिन हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद एक सियासत फिर से शुरू हो गई है। पुराने धरोहरों के एएसआई का सर्वे कराकर उनके धार्मिक चरित्र पर फैसले हो रहे हैं। मुस्लिम पक्ष की ओर से यह सवाल लगातार उठाया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने तो कहा है कि यह तो फैसला अयोध्या की जजमेंट की तरह ही दिखाई दे रहा है। तो इस मसले पर क्या कानूनी बारकाइयां है और सियासत का इस पर क्या रुख रहेगा, इन्हीं मसलों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखते हैं।

0: निकल रहा है।
1: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सबूतों, इतिहास के तथ्यों, गवाहों और मौके पर मौजूद हालात को देखते हुए इंदौर के हाई कोर्ट ने ऐलान कर दिया कि भोजशाला में जिस मंदिर को दशकों से कमाल मौला की मकबरे और मस्जिद के तौर पर बताया जा रहा था, वो मस्जिद नहीं, मंदिर ही है।
2: इंदौर हाई कोर्ट में 6 अप्रैल से इस मामले की लगातार सुनवाई हुई, बीच में जो छुट्टियां पड़ी वो अलग है, और फिर उसके बाद आज इंदौर हाई कोर्ट ने इसमें बहुत ही ऐतिहासिक फैसला दिया है। राम मंदिर के जजमेंट के बाद ये दूसरा ऐसा फाइनल निर्णय है जो हाई कोर्ट से आया है, और आज इतने दिन की सुनवाई और 2022 से लगातार 4 साल की इस लीगल कार्रवाई के बाद आज ये बात सिद्ध हुई है, स्पष्ट हुई है कि जो भोजशाला का पूरा परिसर है वो राजा भोज द्वारा बनाया गया था। ये एक माँ वागदेवी, माँ सरस्वती का स्कूल रहा है, स्कूल ऑफ संस्कृत लर्निंग रहा है, उनका मंदिर रहा है, और जो यहाँ पे मुस्लिम समाज के लोग गलत ढंग से नमाज अदा करते आए हैं वो 7 अप्रैल 2003 के ऑर्डर को, उस भाग को कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है, और हमारे जितने आर्गुमेंट थे कोर्ट ने उस बात को एक्सेप्ट किया है। और जो माँ सरस्वती, माँ वागदेवी की आज प्रतिमा ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में रखी हुई है, कोर्ट ने यह भी कहा है सरकार से कि वो उसको कंसिडर करें कि उसको वापस लाया जा सके। साथ ही साथ अगर कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को ये लिबर्टी दी है कि अगर वो सरकार के सामने प्रत्यावेदन देते हैं नमाज के लिए और मस्जिद के लिए ऑल्टरनेट लैंड का, तो सरकार उसको कंसिडर करेगी धार क्षेत्र के अंदर।
1: इंदौर हाई कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने कहा है, हमने देखा है कि उस जगह पर हिंदू पूजा लगातार होती रही, हालांकि समय के साथ इसे रेगुलेट किया गया। हमने पाया है कि उस जगह का ऐतिहासिक साहित्य राजा भोज से जुड़े संस्कृत सीखने के सेंटर के तौर पर स्थापित होता है, इससे धार में देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर होने का पता चलता है, इसीलिए उस इलाके का धार्मिक चरित्र भोजशाला माना जाता है जिसमें देवी वागदेवी सरस्वती का मंदिर है। ASI के सर्वे रिपोर्ट में मिले सबूतों के हवाले से इंदौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि भोजशाला देवी सरस्वती का मंदिर है, लिहाजा 2023 में जारी ASI की तरफ से नमाज पढ़ने वाला सर्कुलर रद्द किया जाता है। मंदिर का बचाव और संरक्षण ASI के पास होगा। मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य धार जिले में मस्जिद बनाने के लिए जमीन देने की अर्जी पर विचार कर सकता है।
3: माँ की मुक्ति और उसके गौरव की पुनर्स्थापना का दिन जो इसका इंतजार किया जा रहा था वो बहुत नजदीक आ गया है।
4: जिन हिंदू कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर संघर्ष किया, लाठी डंडे खाए, आज उन्हें भी ये जीत जो है ये उन्हीं के नाम है।
5: आज पूरा समाज खुश है।
6: होली, दिवाली आज हमारे लिए, यही आज होली भी आज ही है, दिवाली भी आज ही है, सबसे बड़ा दिन है हमारे लिए।
1: 11वीं सदी की वो धरोहर जिसकी शक्ल वक्त के गर्द में ऐसी बदल दी गई कि उसके वजूद को लेकर अदालत तक सबूतों की लड़ाई लड़नी पड़ी। जिस जमाने में यहाँ कभी वाग देवी की आराधना उपासना होती थी, वहाँ हवन कुंड वजू खाना बन गया था, गर्भगृह में मौलाना बैठते थे, सरस्वती कूप अक्कल का कुआं बन गया था। लेकिन अदालत के इंसाफ के तराजू में जब पत्थर दरो दीवारों से बोलते सबूत तौले गए तो पता चला कि राजा भोज के जमाने से मंदिर की शक्ल में मौजूद इमारत मुस्लिम आक्रमणकारियों के जमाने में मकबरा और मस्जिद की शक्ल में बदल दी गई थी। हालांकि अदालत में मुस्लिम पक्ष ने दलील दी थी कि खिलजी काल के ऐतिहासिक रिकॉर्ड और उस समय के खातों में धार में किसी भी सरस्वती मंदिर को तोड़ने का जिक्र नहीं है। वकील ने 1935 में धार के पुराने शासक की तरफ से जारी किए गए एक ऐलान की वैलिडिटी का भी जिक्र किया जिसमें मुस्लिम समुदाय को उस जगह पर नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई थी। हालांकि अदालत ने माना कि स्मारक को 1904 में ही धरोहर के रूप में ASI ने संरक्षित घोषित कर रखा था। इससे पहले जब मामला अदालत में पहुंचा था तो अदालत ने ASI से सर्वे कराया था जो 10 भागों में कुल 2089 पन्नों की दस्तावेजी रिपोर्ट थी। इसमें भोजशाला परिसर में किए गए 98 दिनों के सर्वे की रिपोर्ट थी। रिपोर्ट में कई पुरातात्विक और धार्मिक साक्ष्यों का उल्लेख किया गया। सर्वे रिपोर्ट में पता चला कि परिसर में भगवान शिव, विष्णु, वासुकी नाग और गणेश सहित कई प्राचीन मूर्तियां और शिल्प थे जिनका केमिकल ट्रीटमेंट कर उन्हें वैज्ञानिक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया। सबसे सनसनीखेज खुलासा ये था कि भोजशाला में 16 तलघर यानी सबटेरेनियन स्ट्रक्चर्स थे जिनका उल्लेख दस्तावेज में विस्तार से किया गया। इसके अलावा सर्वे में ये भी प्रमाण मिला कि कमाल मौला मस्जिद के निर्माण में भोजशाला के प्राचीन अवशेषों का उपयोग किया गया था। 98 दिनों की मेहनत से तैयार की गई ASI की रिपोर्ट अब इस विवाद की दिशा तय करने वाली साबित हुई। इन तमाम सबूतों और गवाहों को देखते हुए हाई कोर्ट ने इसे मंदिर घोषित किया। हालांकि मुस्लिम पक्ष अब सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की आस लगाए हुए है। रवीश पाल सिंह, धार आज तक।
0: तो इस पूरे मामले की एक एक बड़ा इतिहास भी है इसमें और कई कानूनी पेचीदगियां भी है। कई लोग इस बात को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं कि दिसंबर 2024 में जब संभल का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी अदालत, निचली अदालत, सर्वे कराने की मांग को मान नहीं सकता और उसके आदेश भी ना दिए जाए। लेकिन इसके बावजूद जनवरी 2026 में इस पूरे मामले में सर्वे के आदेश एएसआई को जो दिए गए थे वो सुप्रीम कोर्ट ने मान लिए। क्या कारण थे इस पर भी चर्चा होगी और इस फैसले के बाद, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद बाकी जो डिस्प्यूटेड साइट्स सामने आ रही है वहां पर इसका असर क्या पड़ेगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सैयद असीम वकार, एआईएमआईएम के प्रवक्ता, इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से इस पर पहले ही अपनी प्रतिक्रिया दी जा चुकी है। उनका कहना है कि जिस तरीके से बाबरी मस्जिद का फैसला आया था उसी तर्ज पर कहीं ना कहीं भोजशाला या कमल मौला मस्जिद जो इससे पहले कहा जाता था उसका भी फैसला उसी तरीके से आया है। आशुतोष हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे। इसके पॉलिटिकल मायने क्या होंगे उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ कई सारे ऐसे मुद्दे जो फिलहाल अलग अलग अदालतों में अटके पड़े हुए हैं उस पर भी हम चर्चा कर सकते हैं। डॉक्टर एम एच खान, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, भी चर्चा में शामिल होंगे। थोड़ी देर में विनोद बंसल और विष्णु जैन, जो दरअसल इस पूरे मामले में वकील थे, वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे। तीन सवाल मैं इस पैनल के सामने रखूंगा। पहला सवाल, क्या धार की भोजशाला में मंदिर तोड़कर मस्जिद मकबरे बने थे? क्योंकि एसआई का कहना है कि हाँ, वहां पर मंदिर था और मस्जिद उस पर बनाया गया था और इसीलिए वो पहले मंदिर था, इस बात को हाईकोर्ट ने मान लिया है। दूसरा सवाल, क्या धार की भोजशाला विवाद सिविल मामला है? क्योंकि मुस्लिम पक्ष बार बार ये कह रहा है कि ये तो टाइटल सूट होना चाहिए, ये सिविल मामला होना चाहिए, सिटी सिविल कोर्ट में ये मामला जाना चाहिए, जबकि इस पूरे मामले पर जो फैसला हुआ है वो रिट पिटिशन के आधार पर, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के आधार पर फैसला लिया गया है। तीसरा अहम सवाल, क्या एएसआई सर्वे के बहाने धरोहरों के धार्मिक चरित्र बदलने के आरोप सही है? क्योंकि जिस तरीके से बाबरी मस्जिद के मामले में एएसआई का सर्वे कराया गया था, अब इस मामले में एएसआई का सर्वे कराकर बाकायदा यह कहा गया कि ये जो मॉन्यूमेंट है ये हिंदू मंदिर था और इसीलिए हाईकोर्ट ने भी इसे हिंदू मंदिर करार दिया है। इसमें कई पेचीदगियां हैं, इस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले सैयद वसीम वकार जी, आपका इस पर क्या कहना होगा? क्योंकि देखिए, बाकायदा कानून का सहारा लेते हुए ये सारी चीजें की गई है। कानून में आपको पता है कि इससे पहले भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत किसी भी स्ट्रक्चर का धार्मिक चरित्र बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो एएसआई प्रोटेक्टेड साइट्स है उसको इससे, इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया और इसी के आधार पर हाईकोर्ट ने भी यहां पर फैसला लिया है। अब ये एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट मंदिर कहलवाएगा, इस तरीके के कई मॉन्यूमेंट हमें पूरे देश भर में दिखाई देंगे।
7: देखिए, आपने मुझे बुलाया, मैं आ गया, लेकिन जब न्यायालय में आप कुछ प्रूफ ना कर पाए उसके बाद भी अगर आपके हक में फैसला आ रहा है तो फिर हम लोग के बोलने का फायदा क्या है? आपने भी कहा कि इससे पहले भी बाबरी मस्जिद का फैसला, बाबरी मस्जिद के फैसले में साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह कहा था कि निर्मोही अखाड़े का मुकदमा खारिज, उनके पास कोई सबूत नहीं। विश्वहिंदु परिषद का मुकदमा खारिज, उनके पास कोई सबूत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिला कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिला कि सन 1200 ईस्वी से 1500 ईस्वी के बीच में उस जमीन के ऊपर जहां बाबरी मस्जिद कोई स्ट्रक्चर था,

0: तो हमसे बड़ा कब्जेदार कौन है? अगर आप कब्जे के आधार पर पिछला फैसला दे सकते हैं तो कब्जे के आधार पर यह फैसला क्यों नहीं दिया जा रहा है? आप अपने ही फैसले को खारिज कर देते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कब्जे के आधार पर फैसला दे दिया था बाबरी मस्जिद के खिलाफ।
1: असीम बकार साहब, इस मामले के तथ्य मैं आपके सामने रखूंगा और ये चर्चा आगे लेके जाऊंगा, लेकिन इस बीच एक खबर ये भी आ रही है क्योंकि मुस्लिम पक्ष पहले कह चुका है कि हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। हिंदू पक्षकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल किया है कि हमारी बात सुने बिना इस पर कोई भी फैसला ना किया जाए, तो हिंदू पक्ष की बात भी सुनी जाए और उसके बाद ही इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाए, ये हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया और उन्होंने कैविएट भी सुप्रीम कोर्ट के भीतर फाइल की हुई है। असीम बकार साहब, एक बार फिर हमारे साथ विनोद बंसल और रतन शारदा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार मैं फर्क बताता हूं आपको, जो बाबरी मस्जिद वाला मामला है और भूतशाला वाला मामला है उसमें आपको मैं फर्क बताता हूं। जो बाबरी मस्जिद वाला मामला है वो टाइटल सूट था, वो सिविल कोर्ट में फाइल किया गया था, वो सिविल सूट वहां पर फाइल किया गया था टाइटल के आधार पर। भूतशाला वाले मामले में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आर्टिकल 226 के आधार पर फाइल किया गया था और उसमें दलील यह रखी गई थी, मांग यह रखी गई थी कि हम एएसआई का सर्वे कराकर हम करेक्शन करवाना चाहते हैं, जो स्टेट के अंदर स्टेट के पास जो रिकॉर्ड्स है उसमें हम करेक्शन करवाना चाहते हैं, नंबर एक। और दूसरा, एएसआई के कब्जे में ये पूरा मॉन्यूमेंट है, इसका जो डिस्क्रिप्शन लिखा गया है इस स्ट्रक्चर के बाहर उसमें भी हम सुधार करना चाहते हैं। तो सबसे बड़ा फर्क जो इसके भीतर है वो ये है, असीम बकार साहब, कानूनी लड़ाई में एक बाईपास कर दिया गया है जो बाबरी मस्जिद का जजमेंट है या फिर जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसके, उसको एक अलग तरीके का ये पूरा पिटिशन है। असीम बकार साहब, बाबरी मस्जिद से इसकी तुलना शायद नहीं हो पाएगी।
0: नहीं नहीं, बाबरी मस्जिद की तुलना तो किसी से नहीं हो पाएगी। मैंने आपसे कहा कि बाबरी मस्जिद में किसी चीज का कोई प्रूफ ना होने के बाद भी आपने मंदिर मान लिया। सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा था कि मंदिर के सबूत नहीं है, मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई, वो मस्जिद है, उसके बाद भी उसको मंदिर मान लिया गया। इससे बढ़िया फैसला कहां सुना होगा आपने? आप फैसले की क्या बात कर रहे हैं भाई? मसला आपने कहा कब्जे, मैंने बहुत पॉइंट की बात की है। आशुतोष जी बैठे हैं यहां पर, मैं इसलिए उनको इंडिकेट कर रहा हूं, इसलिए उनका नाम ले रहा हूं कि वो मुझे लगता है निष्पक्ष बोलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के मामले में कहा कि रामलला विराजमान का कब्जा था 1949 की 21-22 दिसंबर की रात से, कब्जे के आधार पर दे दिया गया। तो यहां तो धार में जो कमाल मौला मस्जिद है इसमें 1305 से मुसलमानों का कब्जा है, तो 1305 से कब्जा और 1949 से कब्जा, तो जोड़ ला लिया जरा किसका कब्जा बड़ा है।
1: मैं आपको एक बार फिर बताने की कोशिश कर रहा हूं
0: किसका कब्जा ताकतवर है।
1: अभी विष्णु जैन आएंगे तो वो आपको कानूनी बात भी बता देंगे, लेकिन मैं एक बार फिर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये मामला अलग है असीम बकार साहब, ये मामला अलग है, ये टाइटल सूट नहीं है। जिस टाइटल सूट के आधार पर जो फैसला लिया गया बाबरी मस्जिद वाले मामले में, वो फैसला यहां पर उस तरीके से नहीं हुआ है। ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के तौर पर रिट पिटिशन के आधार पर ये फैसला हुआ है।
0: विनोद बंसल जी, आपसे
1: क्या आपको लगता है कि यही
0: बात बता दूं आपसे?
1: हाँ जी, जल्दी से, उसके बाद विनोद बंसल जी
0: बता दूं आपसे।
1: जी असीम जी,
0: साहिल भाई एक बहुत अहम बात बता दूं, साहिल भाई एक बहुत अहम बात बता दूं आपसे। 1935 में 1935 में अंग्रेजों की तरफ से एक बोर्ड लगा दिया गया था कमाल मौला मस्जिद के करीब 3 किलोमीटर पहले, और उस पर लिखा गया था भूतशाला। तो उस वक्त जो वहां के शासक थे उन्होंने कहा था नहीं नहीं, बोर्ड लगाने से कुछ नहीं होता है, ये मस्जिद ही है, मस्जिद ही रहेगी, यहां नमाज होती है, नमाज होती रहेगी, बोर्ड लगाने से कुछ नहीं होता है। उस वक्त के मुसलमानों को चाहिए था बोर्ड उखाड़ के फेंक देते, यह गलती उस वक्त के मुसलमानों की है। और उस वक्त के मुसलमानों ने अगर यह काम कर दिया होता तो आज ये मुकदमा ना झेलना पड़ रहा होता।
1: आप अगर
0: कहा गया है कि लम्हों ने खता की थी,
1: जो डिस्क्रिप्शन एएसआई के तरफ से बाहर लिखा गया था वो डिस्क्रिप्शन हमें बदलना है, ये कहकर ये रिट पिटीशन फाइल हुई और जो हाईकोर्ट ने मंजूर किया है। विनोद बंसल जी, ये एक डायवर्जन आपको मिल गया अभी अलग अलग तरीके से। संभल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा था कि किसी भी तरीके से सर्वे नहीं हो सकता, कोई भी कोर्ट सर्वे का आदेश ना दे, लेकिन यहां पर रिट पिटीशन के आधार पर आपने सर्वे करवाया है आपके पक्ष ने, क्या आप इसी तरीके से मामले खुलेंगे?
2: दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। देखिए ये मामला क्योंकि कोर्ट का है और माननीय न्यायालय ने दिया है,

0: सब मुद्दों पर, जिन मुद्दों पर डिबेट को छेड़ा जा रहा है, मुझे लगता है कि वो बेमानी है, चाहे राम जन्म से जुड़ा हुआ हो या बोसा वाला हो। देखिए, एक बड़ा सफेद झूठ एक नेशनल टीवी चैनल पर, आज तक जैसे चैनल पर बोला गया है, और इस पर न तो आपने काउंटर किया, न ही बोलने वाले ने सोचा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। उन्होंने बोला राम जन्मभूमि मामले में ये विश्व प्रदूषण मुद्दा ही था, इनमें खारिज हो गया। अरे भाई, मुझे बड़ा हंसी आ रही थी जब ये बोल रहे थे और आप सुन भी रहे थे कि राम जन्मभूमि मामले में विश्व प्रसिद्ध कोई मुद्दा ही था ही नहीं, हमने तो पिटीशन दायर किया ही नहीं, तुम्हारा पिटीशन रिजेक्ट होने का अर्थ क्या है? ये आज तक जैसे चैनल पर भी ये झूठ चला जाए अनअटेंडेड, ये मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। एनीवे, सारी जी बात यह है कि देखिए, आज जो है वो जीत हुई है किसी हिंदू की नहीं, किसी मुसलमान की नहीं, ये भारतीय संस्कृति की, सत्य की, न्याय की और भारत के संविधान की जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है, वो सांस्कृतिक केंद्र की जीत हुई है जो महान एक आध्यात्मिक परंपरा और ज्ञान का केंद्र था। मैं कहूंगा कि इसमें इसमें किसी मंदिर की मुक्ति नहीं हुई, माँ भागमय देवी की पूजा के लिए हमें स्थान तो मिला, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम सिर्फ हम ही पूजा करेंगे, आप भी आकर पूजा कर सकते हैं, कोई मना नहीं है किसी के लिए। दूसरी बात ये कि जो संस्कृत संस्कृति का जो महान केंद्र था, उस केंद्र को ध्वस्त करने की मानसिकता किसकी थी भाई? आखिरकार मुगल आक्रांताओं और विदेशी घुसपैठियों के साथ में ये कब तक खड़े रहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को सालों बीत गए, भव्य दिव्य मंदिर बन गया, अभी भी वो बाबर बाबर चला गया, बाबरी चली गई, लेकिन बाबरी मानसिकता नहीं गई, कमाल की बात है। ये कब तक ढोते रहेंगे, कब तक चलता रहेगा? और एक बात आपने जो अंत में पूछी मेरे से कि आखिरकार ये सिलसिला कब तक चलेगा, तो भैया ऐसा है, जब तक ये मानसिकता जिंदा जिंदा रहेगी ना, और जब तक असल सच्चाई सच्चाई पर पर्दा डाला जाता रहेगा, तब तक समाज जो खड़ा रहेगा, सच्चाई के पक्ष में निर्णय आते रहेंगे, और ये जो दबाने ढकाने और उसको सच्चाई को रोकने की कोशिश जो लोग करते रहेंगे, उनके गाल पर ऐसे ही तमाचा लगता रहेगा। मैं कहूंगा ये जीत जो है ना, संपूर्ण भारत की जीत है। मैं कहता हूँ जीत अगर इनकी भी है, अगर ये अपने आप को भारतीय मानते हैं, तो भारत की संस्कृति में विश्वास करते हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ देखिए, ये विष्णु शंकर जैन जैसे जो प्रसिद्ध वकील जिन्होंने पूरा जीवन इन सब चीजों में लगा दिया, मैं नमन करता हूँ इस न्याय तंत्र के।
1: विष्णु जैन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि कानून के भीतर जो लड़ाई लड़ाई जा रही थी वो विष्णु जैन वहां पर लड़ रहे थे। विष्णु जैन जी यहाँ पर AIIMM के प्रवक्ता है और वो बाबरी मस्जिद का जिक्र कर रहे हैं। ओवैसी साहब बाबरी मस्जिद का जिक्र कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद जैसा ही फैसला यहां पर हुआ है, लेकिन मैंने उनके सामने कुछ अलग मुद्दा रखा हुआ है। देखिए विष्णु जैन जी, आपने कानून का पूरा बाईपास कर लिया है, जिस तरीके से बाबरी मस्जिद का जजमेंट था या दिसंबर 2024 में संभल वाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा था कि आप कोई भी अदालत सर्वे का ऑर्डर ना दे किसी भी तरीके से। आपने तो रिट पिटिशन फाइल करवा दी, आपने तो मांग करवा दी कि हमें तो बस ASI का डिस्क्रिप्शन चेंज करवाना है, आपने तो कह दिया कि स्टेट के रिकॉर्ड्स में उस मॉन्यूमेंट का जो जिक्र किया गया है उसमें हमको बदलाव करवाना है, और उसी के आधार पर आपने हाईकोर्ट से फैसला भी लेकर आ गए। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी बोधशाला वाले मामले को एक अलग तरीके से ट्रीट किया और कह दिया कि नहीं, यहां पर सर्वे हो सकता है। दिसंबर 2024 का अपना ही ऑर्डर बाईपास करवा दिया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। बड़ी कमाल की तरफ से आपने पूरा एक ये कानून के पेचीद कानून का इस्तेमाल करके अलग तरीके से आपने ये पूरा मामला किया हुआ है, एक नया द्वार खोल दिया आपने। विष्णु जैन जी,
2: नहीं नहीं देखिए, ऐसा है जिस तरह से आप डिस्क्राइब कर रहे हैं वैसी चीज नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो पूरा एरिया है, लॉ की बात करते हैं एकदम प्योर लॉ की, और कोई मुझे कंट्रडिक्ट करे लॉ पे कि क्या चीज मैं गलत बोल रहा हूँ।
1: मैंने कहा वो कानूनन सही है कि नहीं है,
2: नहीं मैं आपको कुछ और बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपने अपने ढंग से व्याख्या की है। मैं कुछ लीगल पहलू आपके दर्शकों के लिए आपके चैनल पर रखना चाहता हूँ, आपका एक प्रतिष्ठित चैनल है। सेक्शन 4 सबक्लॉज 3 सबक्लॉज ए ये कहता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वहां पे लागू नहीं होगा जो ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, ठीक है। सेक्शन 4(3) है 1904 का एक्ट, और अगर 1958 का एक्ट कहीं ऑपरेट करता है तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होगा। नाउ साहिल, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1958 का जो नेशनल मॉन्यूमेंट एक्ट है उसकी एंट्री नंबर 90 में भोशाला का ये कॉम्प्लेक्स दर्ज है। 1904 के एक्ट में भोशाला का कॉम्प्लेक्स दर्ज हुआ था, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो यहाँ पे लागू होता ही नहीं। दूसरी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैं बहुत आपके सामने ज्ञान की बातें रख रहा हूँ, ये सारी बातें इंदौर हाईकोर्ट ने भी देखी और सुप्रीम कोर्ट ने भी देखी। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के मामले से टैग किया था, और उसके बाद जब ये पूरी लीगल निटिग्रिटीज देखी गई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को रिमांड किया इंदौर हाईकोर्ट में फाइनल निर्णय के लिए। सुप्रीम कोर्ट के उसी बैच ऑफ पिटीशन से। तो 12 दिसंबर का ऑर्डर ओवरराइड नहीं हुआ है, सेम बैच ऑफ पिटीशन में कोर्ट ने इस मामले को एक एक्सेप्शन माना। पॉइंट जी आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा,
1: क्यों एक्सेप्शन माना विष्णु जैन जी, क्यों एक्सेप्शन माना?
2: क्योंकि यहाँ पे ये नेशनल मॉन्यूमेंट घोषित है 1951 एक्ट में और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में,
1: और ये टाइटल शूट भी नहीं है,
2: ये टाइटल शूट नहीं है। आप एक मिनट, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में लिखा हुआ एक्ट लागू नहीं होगा। सेक्शन 4(3) है, पढ़िए, जिसमें लिखा है एक्ट लागू नहीं होगा अगर कोई ऐसा ही प्रोटेक्टेड स्मारक है, तो अगर कोई ऐसा प्रोटेक्टेड जगह है वहां प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता। यही स्थिति संभल में भी है, यही स्थिति आपकी अदीना मस्जिद में भी है, यही स्थिति कुतुब मीनार में भी है, यही स्थिति कृष्ण जन्मभूमि में भी है। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई आस्था के आधार पर फैसला हो गया जी। आपको यह समझना पड़ेगा, एएसआई ने यहाँ पे 98 डेज की साइंटिफिक स्टडी कंडक्ट की साहिल, और 98 डेज की साइंटिफिक स्टडी एएसआई ने जब रिपोर्ट सबमिट की कोर्ट के सामने, 2100 पन्ने की रिपोर्ट सबमिट की है एएसआई ने कोर्ट के सामने, जिसमें सरस्वती सदन, ओम सरस्वती नमः, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां, जो अभी आप खंभे अपनी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, ये सारे खंभे एएसआई ने कहा कि एक हिंदू मंदिर के खंभे हैं, ये सारे पिलर पिलास्टर, ये पूरा जो आप आज मंडप दिखा रहे हैं, ये मेरे हिंदू मंदिर का मंडप है, और इसी जगह को गलत ढंग से कन्वर्ट करके एक मस्जिद का शेप देने की कोशिश की गई। मैं आपके दर्शकों से पूछना चाहता हूं, विष्णु जैन को भूल जाइए, लीगल तर्कों को भूल जाइए, ये जो पूरा प्रांगण आज तक की स्क्रीन पर चल रहा है, क्या कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि ये एक इस्लामिक आर्किटेक्चर है? क्या कोई? और यही बात एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में कही है कि ये सारे पिलर्स, पिलास्टर जहाँ पे हिंदू देवी देवताओं के चित्र हैं, संस्कृत के निशान हैं, संस्कृत की निशाएं हैं, ये सब एक हिंदू मंदिर की तरफ इशारा।
1: आपने एक अहम मुद्दा यहां पर रखा हुआ है, क्योंकि जब से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में लागू किया गया था, तब से इस बात को लेकर बार बार चर्चा हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में उसे चैलेंज भी किया गया है, अभी भी उस मामले पर सुनवाई चल रही है, कोई फैसला उस पर आया नहीं है। लेकिन यह बात बिल्कुल सही है कि जो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स है उसे इस कानून से बाहर रखा गया है, और ऐसे ज्यादातर स्ट्रक्चर्स पूरे देश में दिखाई देंगे कि जो इस चीज से बाहर है। लेकिन मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, जो रिट पिटीशन फाइल किया गया था हाईकोर्ट के भीतर, उस रिट पिटीशन में आपकी जो प्ली थी, आपकी जो मांग थी, क्या वो ये नहीं थी कि हमें तो करेक्शन करना है स्टेट के रिकॉर्ड्स में इस मॉन्यूमेंट के बारे में जो लिखा गया उसका, नंबर एक। नंबर दो, एएसआई के का जो डिस्क्रिप्शन है इस मॉन्यूमेंट के सामने या इस स्ट्रक्चर के सामने, उस डिस्क्रिप्शन में हमको सुधार करना है, यही आपकी प्ली थी यहाँ पर?
2: नहीं, ये हमारी प्ली विदिशा बीजा मंडल में, सॉरी, नहीं, थोड़ा आपको शायद रिसर्च टीम ने गलत बता दिया, ये विदिशा बीजा मंडल के केस में हमारी प्ली है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, कोई बात नहीं, होता है ऐसा मिक्सअप। 7 अप्रैल 2003 का आदेश है साहिल जी, एएसआई का, 7 अप्रैल 2003 का। उस आदेश में एएसआई ने ये कहा कि यहाँ पे मंगलवार को हिंदू समाज के लोग पूजा पाठ कर सकते हैं और फ्राइडे को इसी जगह
1: और वसंत पंचमी को भी कर सकते हैं,
2: नमाज अदा कर सकते। हमने सिर्फ इस आदेश को चुनौती दी और हमारी दूसरी मांग ये थी कि यहाँ पे एक ट्रस्ट बना के स्कीम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बनाई जाए, और तीसरी मांग ये थी कि जो माँ वाग देवी, माँ सरस्वती की ओरिजिनल प्रतिमा ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में रखी गई है, उसको वापस लाया जाए। अब कोर्ट ने आज क्या किया, कोर्ट ने 7 अप्रैल 2003 के आदेश में जिसमें नमाज पढ़ने का ऑर्डर था उसको रद्द कर दिया, सेट असाइड कर दिया, हमें एक्सक्लूसिव राइट ऑफ वर्शिप दे दिया गया, और कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि जो वहां से मूर्ति लाने की बात है उस पर गौर करें और उस पर जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है उस पर कंसिडर करें।
1: असीम वकार साहब, यही तो बात मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा था, आप इसे बाबरी मस्जिद से जोड़कर बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये पूरा मामला ही अलग तरीके से रखा गया है कोर्ट के सामने, जो आप बात रखने की कोशिश कर रहे हैं वैसा मामला है ही नहीं है। असीम वकार साहब,
3: मैंने सर, आप हर तरीके से मुसलमानों के खिलाफ आदेश कराते रहिए और बाद में हर मामले को अलग अलग बताते रहिए। मैंने आपसे कहा कि जो अभी मैंने आपके सामने बातें रखी या जो बातें बाबरी मस्जिद के फैसले में सामने आई, क्या आप उन बातों से इनकार कर सकते हैं? चलिए, अगर आपकी एक बात मैं मान भी लूं, तो क्या बाबरी मस्जिद के मामले में जहां न्यायालय ने खुद ही एक्सेप्ट किया कि मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई, मंदिर के कोई सबूत नहीं है, बाबरी मस्जिद के वजूद से इनकार नहीं किया जा सकता, क्या उस बात को अगर मानिए आप, तो क्या बाबरी मस्जिद को मुसलमानों से छीन कर हिंदुओं को देना चाहिए था? मैं आपके
1: नहीं, यहाँ तो गौशाला की चर्चा हो रही है ना असीम मकार जी,
3: आप खुद ही कह रहे हैं तो सब कुछ आपके खिलाफ आ चुका है, फिर भी आप हमारी मस्जिद लिए ले रहे हैं।
1: नहीं गौशाला, अरे भोजशाला की बात हो रही है ना यहाँ पर। अभी विष्णु जैन वहां पर बता रहे थे कि एएसआई का रिपोर्ट क्या है भोजशाला के मामले में। इस भोजशाला के रिपोर्ट पर आप बताइएगा, बाबरी के बारे में फैसला आ चुका है, बेंच ने उस पर फैसला दिया हुआ है, अब भोजशाला के बारे में बताइएगा, भोजशाला में एएसआई का रिपोर्ट यहाँ पर वो बता रहे।
3: नहीं, एएसआई के रिपोर्ट का हवाला बहुत दिन तक हिंदू पक्षकारों ने टेलीविजन पर बैठकर दिया था, इसी एएसआई की बात हुई थी, मैं भी उस डिबेट में रहता था, और आखिर में जब पुलिंदा खुला तो उसमें एएसआई फेल हो गई, एएसआई के सारे झूठ पकड़े गए, और उसके बाद भी मुसलमानों से मस्जिद खच्ची।
1: इंदौर हाईकोर्ट ने तो एएसआई के रिपोर्ट को ही सही माना है,
3: इसी एएसआई की बात,
1: एएसआई के रिपोर्ट को ही सही माना है असीम मकार जी,
3: बाबरी मस्जिद
1: एएसआई के रिपोर्ट को ही सही माना है उन्होंने,
3: नहीं माना है सर
1: डॉक्टर एम एच खान
3: आपके मानने से थोड़ी ना
1: असीम बकार तो बाबरी मस्जिद
3: बचा है, सुप्रीम कोर्ट बचा है
1: डॉक्टर एम एच खान, यहाँ पर तो भोजशाला के भीतर मामला अलग है, यहाँ पर एएसआई का रिपोर्ट साफ शब्दों में कहता है कि ये तो मंदिर था और इसी के आधार पर हाईकोर्ट फैसला दे रहा है। अब मुस्लिम पक्ष इस हाईकोर्ट के फैसले को मानेगा, एएसआई के रिपोर्ट को मानेगा, या आपके पास कुछ और इस पर दलील है आपके तरफ से?
3: मैंने अभी आपसे आवाज म्यूट कर, सुप्रीम कोर्ट जाने दीजिए, सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी, सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं क्या होता है।
4: सुन लीजिए
1: डॉक्टर एम एच खान बात कर रहे हैं, असीम बकार जी एम एच खान बात कर जी।
4: मैं कह रहा हूं कि एक तो सुप्रीम कोर्ट की बात आप सुन लीजिए, जब पश्चिम बंगाल में एसआईआर हुआ था तो 70 लाख लोगों को वोट डालने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया और कहा कि अगली बार वोट डाल देना, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और जहां तक बाबरी मस्जिद का मामला है उसको मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था मुस्लिम पक्ष के पास भी कोई सबूत नहीं है और न हिंदू पक्ष के पास कोई सबूत है, मैं 142 धारा के अंतर्गत ये फैसला सुना रहा हूं जो सुप्रीम कोर्ट के जज को मिला हुआ है, 142 धारा के अंतर्गत आपने फैसला सुना दिया और एक महीने के अंदर आप सुप्रीम कोर्ट के सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जज को आपने राज्यसभा में भेज दिया। अरे भाई आपके पीछे नहीं बोलना था मैं,
0: ये कुछ नहीं बोला,
4: ये नमाजवादी पार्टी
0: को आपके बोलने का साहस नहीं है, एक पार्टी का सदर जो है ना जी बैरिस्टर है इंग्लैंड का, लेकिन कोर्ट में नहीं गया कभी भी इस हिंसक मामलों में, लेकिन जो
1: लेकिन एम एच खान जी भोजशाला वाले मामले पर बताइएगा, भोजशाला मामले पर बताइएगा, एक मिनट विनोद बंसल जी, एक मिनट, यहाँ पर तो कानून की बहस होगी, प्लीज एम एच खान जी आपकी बात खत्म करिएगा, भोजशाला वाले मामले पर बताइएगा, यहाँ पर तो एएसआई का रिपोर्ट भी है जो हाईकोर्ट मान रहा है।
4: आपसे आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे, आप तो सुनील बंसल की बात बोलिए, आपने मुझे बोलने के लिए कहा वो बीच में कूद पड़े, क्यों कूद रहे हैं?
1: बोलिए ना, आप ही का बोल रहा हूं,
4: गलत है ये, नहीं नहीं ये क्यों बोल रहे हैं बीच में, ये क्यों बोलेंगे बीच में, ये कौन होते हो बोलने वाले, तुम कौन होते हो बोलने वाले,
1: भाई बीच में मत बोलिएगा, आपके पास भी मैं आऊंगा, देखिए समय खत्म हो जाएगा, प्लीज जरा प्लीज विनोद बंसल जी को जरा शांत करिए, एम एच खान जी आपकी बात खत्म करिए प्लीज,
4: कभी जब तहजीब उदारे में रहिए, आप हमको बोलने के लिए कहा गया है मैं बोलूंगा,
1: एम एच खान जी आपकी बात खत्म करिएगा, भोजशाला वाले मुद्दे पर आपकी बात खत्म करिए।
4: मैं कह तो रहा हूं कि भोजशाला मुद्दे पे अगर सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे लोग तो वही फैसला आएगा जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला पश्चिम बंगाल के एसआईआर में आया था, क्या चीज करेंगे आप, क्या कर लेंगे आप जो चाहे जो कर सकते हैं, आप 142 धारा का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो देखो यार बेकार की बात है मत करो भाई, अरे यार तुम चले जाओ श्रीलंका, चले जाओ नेपाल, चले जाओ नेपाल, चले जाओ ना तुम, हम तो हमारे देश के अंदर लड़ने की क्षमता थी, देश को लड़के आजादी दिलाई है, तुमने जेल में
1: विष्णु जैन जी के साथ, यहाँ तो एम एच खान कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाने के बावजूद भी कुछ नहीं होगा
4: करके, और
1: वो अलग तरीके से कॉन्फिडेंट यहाँ पर नजर आ रहे, अदालत पर भरोसा नहीं है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तभी इसी तरीके से फैसला होगा।
2: देखिए जिस तरह से जो हमारे काफी वरिष्ठ हैं और जिस तरह से वो इस मामले को प्रेजेंट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कुछ नहीं होगा, मैं ये बात तो नहीं कह सकता हूं, पर मैं अपने लीगल रिसर्च के आधार पर ये कह सकता हूं, और मुझे पूरा यकीन है कि अगर सुप्रीम कोर्ट आएंगे तो वहां से, क्योंकि हमारा लीगल केस बहुत स्ट्रांग है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई इंटरफेरेंस होना चाहिए। ये इसको अलग ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं, एक उसके खिलाफ, एक एक सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ अविश्वास प्रस्तुत कर रहे हैं, और मैं लीगल रिसर्च के आधार पर कह रहा हूं कि हमारा केस लोअर कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में बहुत मजबूत है। इन दोनों बातों में भाव का फर्क है, इनका भाव अलग है, मेरा भाव अलग है।
4: आपका भाव तो सिर्फ है आपका भाव जो है, आप विष्णु जैन का भाव जो है वो हिंदू मुसलमान को लड़ाने के है, देश की एकता अच्छा, को लड़ाने का नहीं है।
2: मैं एक सवाल पूछ लूं,
4: मुसलमान सब एक रहे
2: जो एमएच खान साहब से, मैं एक सवाल पूछ लेता हूं, मैं अगर मैं ये लड़ाने की बात,
1: ठीक है, जरा एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं,
2: मैं एक सवाल
1: खान साहब जरा एक सवाल पूछना चाहते हैं, विष्णु जैन जी आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, विष्णु जैन जी पूछिए पूछिए।
2: आपकी स्क्रीन पे ये पूरा प्रांगण दिख रहा है, क्या आप इसको माँ सरस्वती का स्थान नहीं मानते? अगर आप मेरे यज्ञ कुंड में थूक रहे हैं, संस्कृत की रिचाई मिटा रहे हैं, मेरी माँ वाग देवी की मूर्ति के हाथ काट दिए, तोड़ दिया गया, तो क्या उसको रेस्टोर करने का मेरा अधिकार नहीं है? और मैंने कोई हिंसा तो की नहीं, मैं अपनी बात कोर्ट में रख रहा हूँ। सर मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, काफी सर एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, मैं फिर उसके बाद आप रख लीजिएगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं कि मैं हिंदू मुसलमान को लड़ाने की बात कर रहा हूँ, मुझे आप बताइए कौन सी ऐसी मस्जिद है जहाँ पे हिंदू समाज के लोग जाके पूजा कर सकते हैं, और कौन सी ऐसी मंदिर है जहाँ पे मुस्लिम समाज के लोग आके नमाज पढ़ सकते हैं? और यहाँ पे एक मिक्स्ड ऑर्डर दिया था एएसआई ने 7 अप्रैल 2003 को, जहाँ पे मंगल को हमें पूजा का अधिकार और फ्राइडे को नमाज का अधिकार, इसको करेक्ट करने के लिए हम कहते, और आपकी तरफ से सलमान खुर्शीद साहब भी पेश हुए थे। तो ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ सुनवाई का मौका नहीं मिला, इंदौर हाईकोर्ट ने करीब 1.5 महीने तक इस मामले की सुनवाई की। तो आप यहाँ पे कुछ भी कह सकते हैं कि जी हम लड़ाने का काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, और आप ये नहीं देख रहे हैं कि आज आप किसके स्ट्रेंथ में बैटिंग कर रहे हैं। आज जो खिलजी ने यहाँ पे आक्रांता की, जो अलग अलग मुगल काल के में और जो स्लेव डायनेस्टी के लोग आए जिन्होंने मेरे मंदिर को तोड़ा, मेरी आस्था अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया, आज उसको पुनः वापस लाने के लिए, उस अन्याय को मिटाने के लिए लड़ाई है। पर मुझे बड़ा आश्चर्य है कि आप इसको खिलाफ ले रहे हैं।
1: एमएच खान,
4: आप देखिए जो बातें आप कर रहे हैं, उस बातों में हम उसको कंडम करते हैं। जिसने मूर्ति का हाथ तोड़ा, जिसने मूर्ति को खंडित किया, जिसने और कोई काम किया, वो इस्लाम के खिलाफ है, वो हम नहीं उसको सपोर्ट करते हैं। हम सपोर्ट करते हैं उस चीज को कि जो आदि काल से चली आ रही है चीजें, उसको आप क्यों कुरेद रहे हो? आप क्या करना चाहते हो? आप हर महीने यही काम करना चाहते हो? अब उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है तो आप ये काम करना शुरू कर दिया आपने। पहले आपने जो है, जो 5 राज्यों का चुनाव था तो आप चुपचाप बैठे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, अब आपने दूसरा काम शुरू कर दिया। अरे भाई, कोई मर्डर का केस भी लड़ोगे जैन साहब? कोई मर्डर का केस भी लड़ोगे कि खाली मंदिर का केस लड़ोगे? मंदिर मस्जिद का केस लड़ोगे? खाली मंदिर मस्जिद का केस लड़ोगे? कभी कभी कभी मुसलमानों के लिए भी तो खड़े हो जाओ, कभी
2: क्रिश्चियन
4: के लिए खड़े हो जाओ, कभी सरदारों के लिए खड़े हो जाओ।
1: विष्णु जैन जी
4: साहब, ये संविधान,
1: विष्णु जैन जी जल्दी से जवाब, फिर रतन शर्मा जी के पास चलूंगा।
4: मुसलमान को नहीं चलेगा।
2: देखिए, आप मुझे बताइए कि इन्होंने इसको पॉलिटिसाइज कर दिया। ये मामला जो है, आपको पता होना चाहिए, इंदौर हाईकोर्ट में मौलाना कमालुद्दीन ने याचिका दायर की थी, कब पता साहिल जी? 2019 में। अंतर सिंह ने याचिका दायर की थी उससे पहले, और जो काजी जकीउल्लाह है उन्होंने याचिका दायर की थी 2003 में। जो हमारी याचिका हमने दायर की थी 11 मई 2022 को। तो ये 20 साल का अंतराल कैसे चुनाव के हिसाब से चलता रहा? आप सर कैसी बातें कर रहे हैं? शायद लीगल ब्रीफिंग इस मामले में ले लीजिए कि ये केस कब से चल रहा है। दूसरी बात है, आप ये कह रहे हैं कि भाई हम इसको कंडेम करते हैं, आप कह रहे हैं कंडेम करते हैं, तो ये कंडेम आज तक के चैनल पे बैठ के तो होगा नहीं। आप कोर्ट में आइए और कहिए कि हाँ जी ये गलत हो रहा है, और इस गलत को सही करिए। यहाँ पे कंडेम करने से होता नहीं। सर मैं आपके बीच में नहीं बोला, एक मिनट सर, मैं आपके बीच में नहीं बोला,
4: गलत
2: सर मैं आपके बीच में नहीं बोला, मुझे मेरी बात रखने दीजिए। फिर उसके बाद मेरे
4: गलत है,
2: जो हमारे वरिष्ठ है खान साहब, उन्होंने कहा, अरे एक मिनट सर, मेरे को सर, हाँ तो आपने गलती की है, ये गलती हमारे साथ की गई है,
4: गलत है।
2: एक मिनट साहिल जी, इन्होंने कहा कि मर्डर केस,
1: मामला यहाँ पर आशुतोष और रतन शारदा जी, मामला यहाँ पर राजनीतिक दृष्टि से भी देखा जा रहा है। देखिए, यहाँ पर दो राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं, AIMIM और डॉक्टर एमएच खान समाजवादी पार्टी की तरफ से। बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से कोई इस मुद्दे पर बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन रतन शारदा जी, बार बार घूम फिर कर यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि जो बाबरी मस्जिद के मामले में हुआ, उसके बाद ये कहा जा रहा था कि अब ये रोक देना चाहिए, अब जो हो गया वो हो गया। लेकिन ये मामला कहीं और ट्विस्ट होते हुए नजर आ रहा है, संभल का मामला निकल रहा है, भोजशाला जो इसका जिक्र कर रहे हैं 2019 में, इससे पहले ही पिटीशन हो चुका है, एक के बाद एक मामले निकल रहे हैं यहाँ पर।
5: साहिल जी, इस सारे बवाल का जड़ वो हमारे यहाँ खुद को इस्लाम के नेता कहने वालों की समस्या है। उन्होंने आज भी अपने आप को जो हमलावर थे उनके साथ जोड़ा, उनको अपने आप को भारतीय मुसलमान नहीं गिना, जिन्होंने किया वो तो भारतीय नहीं थे, वो तो हमलावर थे, तो उनको उनको बचाने के लिए हमारे लोग क्यों तड़प रहे हैं। दूसरी बात, अगर इनको अगर ये यहाँ पर न्याय व्यवस्था पर इतना बड़ा प्रश्न उठा दे इन्होंने, इन्होंने कहा SIR भी गलत है, इन्होंने कह दिया सुप्रीम कोर्ट में हमें न्याय नहीं मिलेगा, मतलब इनका सबसे बड़ा जो आक्षेप है कि हमको यहाँ मुसलमानों को न्याय नहीं मिलता, इससे बड़ा पाखंड, इससे बड़ा झूठ, इससे बड़ा अनास्था प्रकट करने का और कोई कारण बन नहीं सकता। मैं एक केवल वाक्य बोलूंगा, जहां तक ASI का मामला, आप बीच मत बोलिए, खान साहब चुप रहिए, आपका मैं जो बोलना बोलने दिया, साहिर इनको कंट्रोल करिए,
1: खान साहब बीच में नहीं प्लीज, हो गया बहुत देर के बाद, रतन शारदा जी को वक्त मिला, प्लीज बीच में नहीं, प्लीज किसी को बीच में मत बोलने दीजिएगा, रतन शारदा बात
5: करिए, टॉलरेंस यहां मत दिखाइए। दूसरी बात,
1: प्लीज जरा शांत
5: कराइए, किताब है मेरे पास 900 पेज की किताब है, किताब 900 पेज की, जिसके अंदर केवल ASI के आर्कियोलॉजिकल सबूत के ऊपर राम मंदिर के बारे में लिखा गया है। मैं पढ़ूंगा नहीं, ये पढ़ सकते हैं। एक बात कहूंगा, एग्जीक्यूशन अनकवर्ड एन एक्सटेंसिव स्ट्रक्चर मोर देन ट्वाइस द साइज ऑफ डिस्प्यूटेड वन, द एग्जीक्यूटर्स आल्सो रिट्रीव्ड अ वैरायटी ऑफ हिंदू मोटिव्स एंड आर्टिफैक्ट्स अनडाउटेडली यूज फॉर टेम्पल आर्किटेक्चर। अब मैं आता हूं मेन मुद्दे पे। इन्होंने कहा कि ये तो 13वीं शताब्दी से पूजा कर रहे थे यहाँ पर, भाई साहब राजा भोज 11वीं शताब्दी के थे, 10,055 के आसपास के, उसके 300 साल बाद आपने उसमें कब्जा किया, तो ये कब नियम हो गया कि कब्जा करने वाला कहेगा मेरी संपत्ति है, अगर मैं जाऊंगा कोर्ट में तो कोर्ट हमें ये कहेगा कि जिसने कब्जा कर लिया उसकी हो गई, तुम साइड में हो जाओ, ये कौन सा न्याय होता अगर ऐसा होता।
1: मेरा सवाल रतन शारदा जी आपके लिए कुछ और है, क्योंकि इसके जो फैक्ट्स है वो ASI के तरफ से रखे गए, विष्णु जैन ने वो फैक्ट सारे हाईकोर्ट के सामने रखे गए और उसी के आधार पर आज फैसला भी आ चुका है।
5: यहाँ
1: मैं आपका ध्यान एक स्टेटमेंट के तरफ खींचना चाहता हूँ, जिसपे बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद ये कहा गया था कि अब इस तरीके के विवाद नहीं होने चाहिए,
5: सही है,
1: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तरफ से कहा गया था,
5: ठीक है,
1: क्या ये विवाद आगे बढ़ते रहेंगे रतन शारदा जी, सवाल इस बात को लेकर
5: कहना है,
1: भोजशाला के बाद
5: 1100 साल उत्तर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम अन्याय भारतीय पे हुए, लाखों लोगों की जाने गई, हजारों मंदिर तोड़े गए, संघ ने राम मंदिर का मुद्दा उठाया, काशी विश्वनाथ का मुद्दा आया, जब ज्ञानवापी का मुद्दा उठा उसको इन्होंने रोक दिया, इन्होंने कहा ज्ञानवापी का ये शिवलिंग ने ये फरवारा है, उसके कारण एक महिला आज भी प्रताड़ित जीवन जी रही है। इन्होंने कहा, इनको मैं बता दूं, याद करा दूं, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा है, जैनियों का वहां पर पाठशाला थी, विष्णु जैन सामने बैठे हैं और वहां पर इन 2.5 दिन में जितना तोड़ सके तोड़ा, उसको मस्जिद बना दी, क्या ये वापिस करेंगे? तो अगर हिंदुओं के जख्म में नमक छिड़कने का काम करना है तो ऐसा उपाय नहीं है। जहां तक संघ की बात है, संघ ने ये 3 मुद्दे उठाए, अगर इनको जरा भी इनके दयानतदारी होती, तो 3 मंदिर दे देते, मामला आगे न बढ़ता। अब हिंदू जाग चुका है, संघ का कंट्रोल नहीं है, हिंदू समाज को रोक नहीं सकते,
1: मतलब मामला नहीं रुकेगा,
5: में जाता है
1: ये शुरुआत है,
5: ये तो नहीं चलेगा,
1: देखिए
5: ये दादागिरियां नहीं चलेगी इसकी, खान साहब की ये दादागिरी।
6: मुझे लगता है कि इस पैनल पर मौजूद सारे लोगों को
1: जी, रतन चादरा जी आपकी बात जल्दी खत्म करिए, उसके बाद उस पर आशुतोष का भी जवाब लेता
5: है। जागा हुआ है, संघ ने एक बात कही थी 3 मंदिर दे दो हम आगे बात नहीं करेंगे, उन्होंने नहीं दी, दयानतदारी नहीं दिखाई। आज अगर इस समाज को, हिंदू समाज को लगता है कि कानून का उपयोग करके मैं अपनी जगह वापिस ले सकता हूं, तो आपको क्या लगता है संघ के कहने से रुक जाएगा मामला? अगर इनमें दयानतदारी होती और हर रोज टीवी पे आके इस तरह के न्याय व्यवस्था
1: के संघ के कंट्रोल में नहीं है, इस सारी चीज को रोकना है,
5: बातें नहीं करते तो मामला नहीं बढ़ता, कोई दोष सामने वाले का भी है कि अगर हिंदू खुद को घूमेगा।
6: देखिये ये मामला बहुत संवेदनशील मामला है और मैं इस पैनल में मौजूद सब लोगों से गुजारिश करूंगा, चाहे हिंदू या मुसलमान, इसको संवेदनशीलता के साथ इसको डील करना चाहिए और ना प्रोवोकेटिव बातें नहीं करनी चाहिए। इस पूरे मामले में जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है वो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, उसकी धारा 3 और 4 स्पष्ट तौर पर कहती है कि 15 अगस्त 1947 को जो भी रिलीजियस प्लेस जिस भी तरीके का था उसको उसी तरीके से रखा जाना चाहिए और उसको बदलने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। अब ये हमारे देश का कानून कहता है, उसमें राम मंदिर के मसले को एक्सेप्शन किया गया था। सर मैं रतन रतन जी
1: खत्म करने दीजिए
6: रतन जी,
1: मैंने
6: रतन जी अभी आप खान साहब को इसी बात पर टोक रहे थे, अब आप मुझे टोक रहे हैं। मैंने तो आपके हवाले नहीं बोला ना
1: रतन जी, सामने वो कानून है आशुतोष जी, उसमें फर्क सिर्फ इतना है कि जो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स है उसे इस कानून के दायरे से दूर रखा गया और इसीलिए तो ये सारे मॉन्यूमेंट्स चर्चा में आ रहे हैं आज की स्थिति में।
6: साहिल मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं, मैं रतन जी से भी गुजारिश करूं, मैं बड़ा सम्मान करता हूं, मुझे बोलने से मैंने किसी बीच में नहीं बोला। मैं ये कह रहा था कि जब ये कानून बना तो संसद के द्वारा कानून बना और उसमें स्पष्ट था कि किसी भी धार्मिक जो जो जो पूजा स्थल है उसके चरित्र को उसके करेक्टर को नहीं बदलना चाहिए। ये कानून था, ये कानून बना जिस पर पूरे देश की सहमति है, इस पर किसी को असहमति तो नहीं हो सकती ना। अब उसके बाद जब आप कह रहे हैं कि आईएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है तो या तो ये तय कर लीजिए कि ये धार्मिक स्थल है या फिर आईएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। आप ये भी कहेंगे कि मंदिर है, वो कहेंगे ये मस्जिद है, तो अगर अगर मंदिर मस्जिद का विवाद है तो फिर 1991 का कानून इस पे लागू होता है और उसके हिसाब से भी फैसला होना चाहिए। दूसरी बात, जब हम अभी रतन जी ने कहा कि भाई तीन चीजें हमने मांगी,
1: तो यही उठाया जा रहा है ना कि एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट जो है वो मंदिर है या मस्जिद है।
6: नहीं नहीं नहीं,
1: इसी मामले को लेकर तो कोर्ट जा रहे हैं वो।
6: साहिल आप सेलेक्टिवली नहीं कर सकते इस बात को, आईएसआई प्रोटेक्टेड है, मॉन्यूमेंट है। मैं कहता हूं ये लड़ाई तो धार्मिक हो गई ना भाई, ये कह रहा कि मंदिर है, दूसरा कह रहा मस्जिद है। उनका कहना है कि मस्जिद को तोड़ मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई, तो धार्मिक मुद्दा हो गया। जब ये पूजा स्थल का सवाल खड़ा हो गया तब भी 1991 का कानून लागू होगा। दूसरे एक मिनट, दूसरी बात, मैं रतन जी को याद दिलाना चाहूंगा कि जब संभल का सवाल खड़ा हुआ था तो खुद आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों खोजना। तीसरी बात, अगर हमलावरों ने आके तोड़ा था तो ऐसे बहुत सारे बौद्ध मंदिर हैं, जैन मंदिर हैं, जिनको तोड़ा गया। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, स्वामी विवेकानंद ने इसके बारे में जिक्र किया है, तोड़ा गया, तो क्या उनके भी अतीत में जाए?
1: कब्जा तो एएसआई के पास ही रहेगा,
6: बौद्ध जैन
1: आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास ही इस पूरे मॉन्यूमेंट का कब्जा रहेगा, इस पूरे धरोहर का कब्जा एएसआई के पास ही रहने वाला है, वो किसी पक्ष के पास नहीं जाएगा।
6: साहिल फिर मैं कहता हूं, तो फिर ये धार्मिक मुद्दा नहीं होना चाहिए ना। फिर विष्णु जैन जी को ये नहीं कहना चाहिए कि
1: रतन शारदा
6: आए थे उन्होंने तोड़ दिया।
1: रतन शारदा
7: मैं केवल 10 सेकंड लूंगा, विष्णु
1: कह रहे हैं कि धार्मिक मुद्दा मत बनाइएगा।
7: ये जो बौद्ध और जैन मंदिर तोड़ने की बातें हो रही हैं,
2: आप मेरे मंदिर के अंदर आके नमाज पढ़ रहे हो तो मेरा लीगल राइट है।
6: नहीं, आपको कैसे पता ये मंदिर है?
2: मेरे को नहीं,
6: वो तो 15 अगस्त 1907
2: को पता है, एएसआई को पता है। आपको ये बात समझनी चाहिए, एएसआई को पता है कि ये जगह मंदिर है। पहली बात समझिए आशुतोष जी, देखिए आप जो आप अभी फोन पर दिखा रहे हैं ना, आप उसी फोन पर जो दिखा रहे हैं, जरा सेक्शन 4-3 है पढ़िए दर्शकों के लिए। सर
6: मैं पढ़ दूं
7: खंडन कर लूं इनका,
6: मैं पढ़ देता
7: आशुतोष जी, खंडन कर लूं मैं आपका। देखिए
1: मेरा समय सचमुच में मेरा समय आउट ऑफ टाइम, पूरा समय के आगे मेरा समय पूरा निकल जा रहा है, बहुत ही माफ करिए सभी गेस्ट का, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन समय मेरा खत्म हो रहा है। एक बात तो तय है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा, लेकिन कानून के आधार पर आज की स्थिति में मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट ने यह फैसला सुना दिया है कि बोधशाला का जो भी स्ट्रक्चर है वो पूरा हिंदू मंदिर है और वहां पर हिंदू अपनी पूजा कर सकते हैं, जबकि मुस्लिम पक्ष के लिए अलग जमीन का प्रावधान हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया। अब सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई में क्या होता है, कई सारे कानूनी मुद्दों पर क्या बहस होती है, उस पर ध्यान रखेंगे। लेकिन फिलहाल अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद भी अलग अलग खबरें चलती रहेगी, आप देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
3: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
5: इसमें माइक्रोफाइबर है।
4: माइक्रोफाइबर यानी
5: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
4: हमारे सीमेंट में नहीं है?
5: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
6: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
7: और वही कहाँ गए थे घूमने?
8: जीके मैक्स।
9: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
8: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
9: जेके वॉल मैक्स
8: बेस्ट पेंट,
9: जेके मैक्स।
8: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
10: ये मिट्टी सिर्फ फसल नहीं उगाती, देश का भविष्य भी बनाती है, और इस भविष्य को संभालते हैं ये हाथ, हमारे देश के असली हीरो के हाथ, जिनके हाथ की ताकत है क्रिस्टल के उत्पाद। तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल के उत्पाद। देश का किसान, देश का हीरो।
3: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके।
4: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
5: इसमें माइक्रोफाइबर है।
4: माइक्रोफाइबर यानी
5: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
4: हमारे सीमेंट में नहीं है?
5: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
6: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
1: Punjab National Bank, Bharose ka Prateek.
2: समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े. समर कूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल.
0: हिंट, बड़े आराम से.
2: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस.
3: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश.
4: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है. 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं.
5: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं.
3: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर.
6: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ.
4: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ. हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा.
3: जहां खबर वहां खबरदार.

0: का फ्लैग मार्च निकल रहा है।
1: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सबूतों, इतिहास के तथ्यों, गवाहों और मौके पर मौजूद हालात को देखते हुए इंदौर के हाई कोर्ट ने ऐलान कर दिया कि भोजशाला में जिस मंदिर को दशकों से कमाल मौला की मकबरे और मस्जिद के तौर पर बताया जा रहा था, वो मस्जिद नहीं मंदिर ही है।
2: इंदौर हाई कोर्ट में 6 अप्रैल से इस मामले की लगातार सुनवाई हुई, बीच में जो छुट्टियां पड़ी वो अलग है, और फिर उसके बाद आज इंदौर हाई कोर्ट ने इसमें बहुत ही ऐतिहासिक फैसला दिया है। राम मंदिर के जजमेंट के बाद ये दूसरा ऐसा फाइनल निर्णय है जो हाई कोर्ट से आया है, और आज इतने दिन की सुनवाई और 2022 से लगातार 4 साल की इस लीगल कार्रवाई के बाद आज ये बात सिद्ध हुई है, स्पष्ट हुई है कि जो भोजशाला का पूरा परिसर है वो राजा भोज द्वारा बनाया गया था। ये एक माँ वागदेवी, माँ सरस्वती का स्कूल रहा है, स्कूल ऑफ संस्कृत लर्निंग रहा है, उनका मंदिर रहा है, और जो यहाँ पे मुस्लिम समाज के लोग गलत ढंग से नमाज अदा करते आए हैं उस 7 अप्रैल 2003 के ऑर्डर को, उस भाग को कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है, और हमारे जितने आर्गुमेंट थे कोर्ट ने उस बात को एक्सेप्ट किया है, और जो माँ सरस्वती माँ वाग देवी की आज प्रतिमा ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में रखी हुई है, कोर्ट ने यह भी कहा है सरकार से कि वो उसको कंसिडर करें कि उसको वापस लाया जा सके। साथ ही साथ अगर कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को ये लिबर्टी दी है कि अगर वो सरकार के सामने प्रत्यावेदन देते हैं नमाज के लिए और मस्जिद के लिए ऑल्टरनेट लैंड का, तो सरकार उसको कंसिडर करेगी धार क्षेत्र के अंदर।
1: इंदौर हाई कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने कहा है, हमने देखा है कि उस जगह पर हिंदू पूजा लगातार होती रही, हालांकि समय के साथ इसे रेगुलेट किया गया। हमने पाया है कि उस जगह का ऐतिहासिक साहित्य राजा भोज से जुड़े संस्कृत सीखने के सेंटर के तौर पर स्थापित होता है, इससे धार में देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर होने का पता चलता है, इसीलिए उस इलाके का धार्मिक चरित्र भोजशाला माना जाता है जिसमें देवी बाग देवी सरस्वती का मंदिर है। ASI के सर्वे रिपोर्ट में मिले सबूतों के हवाले से इंदौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि भोजशाला देवी सरस्वती का मंदिर है, लिहाजा 2023 में जारी ASI की तरफ से नमाज पढ़ने वाला सर्कुलर रद्द किया जाता है। मंदिर का बचाव और संरक्षण ASI के पास होगा। मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य धार जिले में मस्जिद बनाने के लिए जमीन देने की अर्जी पर विचार कर सकता है। 11वीं सदी की वो धरोहर जिसकी शक्ल वक्त के गर्द में ऐसी बदल दी गई कि उसके वजूद को लेकर अदालत तक सबूतों की लड़ाई लड़नी पड़ी। जिस जमाने में यहाँ कभी वाग देवी की आराधना उपासना होती थी, वहाँ हवन कुंड वजू खाना बन गया था, गर्भगृह में मौलाना बैठते थे, सरस्वती कूप अक्कल का कुआं बन गया था। लेकिन अदालत के इंसाफ के तराजू में जब पत्थर दरो दीवारों से बोलते सबूत तौले गए तो पता चला कि राजा भोज के जमाने से मंदिर की शक्ल में मौजूद इमारत मुस्लिम आक्रमणकारियों के जमाने में मकबरा और मस्जिद की शक्ल में बदल दी गई थी। हालांकि अदालत में मुस्लिम पक्ष ने दलील दी थी कि खिलजी काल के ऐतिहासिक रिकॉर्ड और उस समय के खातों में धार में किसी भी सरस्वती मंदिर को तोड़ने का जिक्र नहीं है। वकील ने 1935 में धार के पुराने शासक की तरफ से जारी किए गए एक ऐलान की वैलिडिटी का भी जिक्र किया जिसमें मुस्लिम समुदाय को उस जगह पर नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई थी। हालांकि अदालत ने माना कि स्मारक को 1904 में ही धरोहर के रूप में ASI ने संरक्षित घोषित कर रखा था। इससे पहले जब मामला अदालत में पहुंचा था तो अदालत ने ASI से सर्वे कराया था जो 10 भागों में कुल 2089 पन्नों की दस्तावेजी रिपोर्ट थी। इसमें भोजशाला परिसर में किए गए 98 दिनों के सर्वे की रिपोर्ट थी। रिपोर्ट में कई पुरातात्विक और धार्मिक साक्ष्यों का उल्लेख किया गया। सर्वे रिपोर्ट में पता चला कि परिसर में भगवान शिव, विष्णु, वासुकी नाग और गणेश सहित कई प्राचीन मूर्तियां और शिल्प थे जिनका केमिकल ट्रीटमेंट कर उन्हें वैज्ञानिक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया। सबसे सनसनीखेज खुलासा ये था कि भोजशाला में 16 तलघर यानी सबटेरेनियन स्ट्रक्चर्स थे जिनका उल्लेख दस्तावेज में विस्तार से किया गया। इसके अलावा सर्वे में ये भी प्रमाण मिला कि कमाल मौला मस्जिद के निर्माण में भोजशाला के प्राचीन अवशेषों का उपयोग किया गया था। 98 दिनों की मेहनत से तैयार की गई ASI की रिपोर्ट अब इस विवाद की दिशा तय करने वाली साबित हुई। इन तमाम सबूतों और गवाहों को देखते हुए हाई कोर्ट ने इसे मंदिर घोषित किया। हालांकि मुस्लिम पक्ष अब सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की आस लगाए हुए है। रविशपाल सिंह, धार, आज तक।

बिहार भोजशाला विवाद में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत, हाईकोर्ट ने माना सरस्वती का मंदिर अलग जमीन की मांग कर सकता है मुस्लिम पक्ष, ओवैसी बोले अयोध्या जैसा निर्णय। पेपर लीक के बाद पहली बार सामने आए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कहा 21 जून को होगा नीट का री एग्जाम, अगले वर्ष से ऑनलाइन होगी परीक्षा। पीएम मोदी की अपील पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्णय, अब सोमवार शुक्रवार को होगी वर्चुअल सुनवाई, कार पुलिंग को भी तरजीह।

0: तेल गैस समेत कई महत्वपूर्ण समझौते अबू धाबी में। पीएम मोदी का शानदार स्वागत, अब नीदरलैंड्स के लिए रवाना प्रधानमंत्री मोदी।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: महंगाई मार तो है, खासकर मिडिल क्लास आदमी पे।
1: हमें नहीं समझ आ रही भी, हाँ सरकार कर क्या रही है।
2: हम लोग तैयार हैं, मोदी जी के लिए खड़े हैं।
3: जनता पे ही असर पड़ लिया, किस पर पड़ लिया?
4: हाँ ये पैसे गलत कराए इन्होंने, पेट्रोल पे पैसे बढ़ाए हैं।
5: ऑलमोस्ट को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है।

0: नमस्कार, हल्ला बोल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तालियों के साथ यहाँ मौजूद युवाओं का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है जो आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। दिखाइए इन तमाम चेहरों को, देश के युवा हैं जो आज सवाल दागेंगे। नेता यहाँ पर मंच पर पहुंच चुके हैं, लेकिन उनका परिचय कराएं उससे पहले आपका विषय से परिचय कराते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 उपायों पर देश में तेजी से अमल हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई का अपना दौरा पूरा कर लिया है और अब 5 देशों की अपनी यात्रा के दूसरे पड़ाव यानी नीदरलैंड्स के लिए वो रवाना हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यूएई यात्रा से भारत के विदेश मंत्रालय ने 7 आउटकम्स गिनाए, मैं उन्हें आपको बताऊं। उससे पहले आप अपनी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री के यूएई दौरे की जो हाइलाइट्स हैं वो देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब यूएई पहुंचे तो उनकी अगवानी करने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान अबू धाबी एयरपोर्ट पर खुद पहुंचे। दोनों नेता एक दूसरे से गले मिले और उनके बीच एक चर्चा हुई, बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी की यूएई में गार्ड ऑफ ऑनर भी उनको दिया गया और सबसे खास तस्वीर है प्रधानमंत्री के विमान को यूएई के वायुसेना के F-16 विमानों से एस्कॉर्ट भी मिला। कूटनीति के जो भारी मुद्दे आज पूरे देश में जिस पर चर्चा हो रही है, उसी के साथ साथ पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी जो इजाफा हुआ है उस पर भी चर्चा है। लेकिन यह तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, यूएई का F-16 फाइटर जेट अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमान की सुरक्षा कर रहा था तो यह सिर्फ प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए नहीं था बल्कि यह भारत और यूएई के रिश्तों पर भी एक मुहर थी, दोस्ती का प्रतीक था। प्रधानमंत्री ने यूएई के सम्मान का खास जिक्र किया।
1: मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और जैसा आपने कहा मैं अपने दूसरे घर आया हूं, ये शब्द ये भाव मेरे जीवन की बहुत बड़ी पूंजी है। आज भी जिस प्रकार से आपकी वायुसेना के जहाजों ने एस्कॉर्ट किया, ये भारत के लोगों का सम्मान है।
0: तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच प्रतिनिधि स्तर की बातचीत हुई, दोनों देशों के बीच समझौते हुए दस्तखत हुए हैं। 7 आउटकम्स जो है वो विदेश मंत्रालय ने बताया है, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तालियों के साथ स्वागत कीजिए डॉक्टर अजय आलोक, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। प्रोफेसर अजय उपाध्याय जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता शामिल हो रहे हैं, थोड़ा तालियां बजा लीजिए। अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आनंद दुबे जी प्रवक्ता शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे साथ डीयू की प्रोफेसर जुड़ रही हैं, प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली प्रोफेसर दीप्ति तनेजा। तो चर्चा हम शुरुआत करें उससे पहले आपको बताते हैं पहला आउटकम जो विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि भारत के पेट्रोलियम रिजर्व को लेकर अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक रणनीतिक साझेदारी पर दस्तखत हुए हैं। दूसरा आउटकम एलपीजी सप्लाई पर रणनीतिक साझेदारी तय की गई है। तीसरा आउटकम रणनीतिक रक्षा साझेदारी पर समझौता, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप यूएई और भारत का। हमारे दर्शक ये जानते होंगे लगभग 35 से 40% आबादी दुबई शहर में जो यूएई में है वहां पर इंडियंस रहते हैं, तो आप समझिए कि कितना भारतीय समुदाय जो वहां पर है वो कितना बड़ा है और कितना वहां पर ताकत रखता है। चौथा आउटकम जो इस दौरे से हुआ है गुजरात के वाडिनार में, बताया जा रहा है कि वाडिनार में जो शिप रिपेयर क्लस्टर है उस पर एक समझौता किया गया है। पांचवा आउटकम शिप रिपेयर में जो आपस में दोनों के बीच में कैसे एक डेवलपमेंट पर समझौता किया जाए और साझेदारी की जाए। छठा आउटकम 8 सुपर कंप्यूटर क्लस्टर हब्स बनाने पर समझौता किया गया है और सातवां आउटकम है भारत में यूएई का $5 अरब का निवेश। तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। यूएई के साथ समझौतों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हॉर्मूज पर भारत का स्टैंड भी साफ किया है जो आज पूरे विश्व को सुनना चाहिए, खासतौर पर भारत में।
1: ब्रदर, पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी पर प्राथमिकता दी है। हॉर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है।
0: लेकिन इससे पहले आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अंदर 7 ऐसी बातें गिनाई हैं जिसमें हम कैसे पेट्रोल डीजल की खपत को देश में कम करें, गोल्ड 1 साल तक नहीं खरीदें, विदेश 1 साल तक यात्रा नहीं करें, 7 ऐसे सुझाव उन्होंने देशवासियों को दिए। लेकिन इधर 7 आउटकम की बात हो रही है यूएई के साथ। लेकिन अब बात होगी उन पेट्रोल डीजल की कीमतों में जो वृद्धि है। पश्चिम एशिया के युद्ध से बनी परिस्थितियां ऐसी हैं जिसे हर देश को झेलना पड़ रहा है। हम आपको अलग अलग शहरों की तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर युद्ध के 76 दिनों बाद भारत ने पहली बार पेट्रोल और डीजल में दाम बढ़ाए हैं। 3-3 रुपए की बढ़ोतरी दोनों में ही हुई है, पेट्रोल में भी डीजल में भी। इस बढ़ोतरी से दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 97 रुपए 77 पैसे पहुंच गई है जबकि डीजल की कीमत 90 रुपए 67 पैसे पहुंच गई है। देश के अन्य शहरों में राज्यों में लगने वाले वैट के आधार पर कीमतों में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अंतर जरूर देखा जाएगा। वो कीमतें भी हम लगातार आपको शो में दिखाते रहेंगे। लेकिन अभी तक पेट्रोल डीजल की बिक्री पर तेल कंपनियों को जानते हैं रोजाना कितना नुकसान हो रहा था। 1,000 करोड़ रुपयों का नुकसान पेट्रोल कंपनियों को हो रहा था। अप्रैल से जून तिमाही में 1 लाख करोड़ और 20 लाख रुपए के नुकसान की आशंका है। यानी आप सोचिए अगर एक दिन में ऐसा उनको नुकसान हो रहा था तो क्या आने वाले वक्त में उनकी परिस्थिति होती। क्योंकि एक बात तय है, हॉर्मूज में जो स्थिति बनी हुई है वो ओवरनाइट जादू से ठीक नहीं होने वाली है। अगर हॉर्मूज खुल भी जाता है तो पूरे सप्लाई चेन को व्यवस्थित रूप से चलने में काफी दिन लग सकते हैं। यानी 3 रुपए की बढ़ोतरी से कंपनियों के नुकसान की पूरी भरपाई अभी नहीं होने वाली है, लेकिन एक शुरुआत जरूर होगी। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं, उससे पहले आपको सुनाते हैं क्योंकि इस 3 रुपए की बढ़ोतरी पर विपक्ष ने सरकार की लूट से कहा है। राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट में लिखा, गलती मोदी सरकार की, कीमत जनता चुकाएगी। 3 रुपए का झटका आ चुका, बाकी वसूली किश्तों में की जाएगी। सुनिए,
2: अमृत काल में आपका स्वागत है और इस अमृत काल में महंगाई मैन अपना चाबुक चला रहे हैं, मोदी जी आपसे वसूली कर रहे हैं, आपकी जेब पर डाका डाल रहे हैं। इस अमृत काल में आज की तारीख में देश में पेट्रोल और डीजल के दाम 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए गए हैं। असलियत यह है कि जब आपकी जेब पर डाका डाला जा रहा है, जब आप पर महंगाई का चाबुक चलाया जा रहा है, तब दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जो अपने लोगों को राहत दे रहे हैं। और अब तक आप सब लोग समझ चुके हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी एनर्जी सिक्योरिटी का सरेंडर अमेरिका के सामने कर दिया है। हम किससे कितना तेल खरीदेंगे, उसका हमारे दामों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका फैसला नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार नहीं, अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं।
0: तो विपक्ष सरकार को घेर रहा है। अभी दोनों आपस में कुछ बातचीत भी कर रहे थे लेकिन वो कैमरे ने कैप्चर नहीं किया होगा। लेकिन लोग क्या कह रहे हैं, मायने तो ये रखता है कि देश की जनता क्या सोच रही है। मिक्स्ड फीलिंग्स है। हमारे सहयोगी अलग अलग शहरों में जो हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं, उन्होंने महंगाई के इस बोझ पर जनता क्या सोच रही है उनसे बातचीत की है, जल्दी से सुन लीजिए।
3: पेट्रोल बढ़ेगा, सीएनजी बढ़ेगी, सब चीज बढ़ेगी, तो सामान का भी ऐसा भी बढ़ेगा, क्योंकि जो सामान अगर दूर से आता है तो उसका पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप 1 रुपए बढ़ाएंगे तो वो 3 रुपए बढ़ाएंगे।
4: बिल्कुल, हम लोग तैयार हैं, मोदी जी के लिए खड़े हैं, ठीक है। और रेट तो अभी और भी बढ़ेंगे, बट ठीक है, मोदी जी ने कुछ सोच रखा होगा, बस उसी हिसाब से मोदी जी के साथ ही खड़े हैं।
5: मतलब आप लोगों को भी अंदाजा था कीमतें तो बढ़ने वाली हैं।
4: बढ़नी है सर, और लगभग 20 रुपए से ऊपर जाएगा ये।
6: इतना हमें डायरेक्टली नहीं पड़ेगा बट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट काफी ज्यादा है। हाँ। वो तो हम सबको ही पता है,
4: मोदी जी के साथ ही खड़े हैं।
5: मतलब आप लोगों को भी अंदाजा था कीमतें तो बढ़ने वाली हैं।
4: बढ़नी है सर, और लगभग 20 रुपए से ऊपर जाएगा ये।
6: इतना हमें डायरेक्टली नहीं पड़ेगा बट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट काफी ज्यादा है। हाँ। वो तो हम सबको ही पता है, जो बाकी कमोडिटीज है उनपे जो प्राइसेस बढ़ने वाले हैं,
5: घर के राशन से लेके सब्जियां तक।
6: एग्जैक्टली कोई ऐसी चीज नहीं है जिसपे इम्पैक्ट नहीं आएगा।
7: बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा, प्रधानमंत्री के जो मिशन है उसको ध्यान में रखा जाएगा।
8: तो उम्मीद थी कि

0: कीमतें बढ़ा दी, सबने इसको मौके की तरह इस्तेमाल किया कि कैसे वो कीमतें बढ़ा दें। और भारत में अगर इतने पीरियड का कुशन मिला है, आपको सिर्फ और सिर्फ संकट में भी मौका देखना है क्या?
1: एक कहावत हमारे यहाँ है कि खेत खाए गदहा और मार खाए जुलाहा, यही हाल हो गया है। इस देश में सस्ता जब तेल रसा से मिल रहा था, नयारा और रिलायंस एक कंपनी है जो सस्ता तेल रसा से लेकर के और यूरोपियन मार्केट में बेचा और 30 लाख करोड़ से ज्यादा का रुपया कमाया है, अभी तक उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। वो उस समय जब सबसे सस्ता 70 से 80 बल्कि 70 से कम था, जब पिछले 4 साल पहले तक तेल इंटरनेशनल मार्केट में $70 प्रति बैरल, तब भारत के एक भी व्यक्ति को, जितने यहां बैठे हैं या जो सुन रहे हैं, किसी को एक पाई का लाभ नहीं हुआ, दाम में कटौती नहीं की गई। किसको लाभ हुआ? कंपनियों को लाभ हुआ। देश की सरकार ने लोगों के जेब से 44 लाख करोड़ रुपए, कितना? 44 लाख करोड़ रुपए की लूट मचाई 10 साल के अंदर। आज ज्ञान क्या दे रहे हैं? अमेरिका में बढ़ गया, इंडोनेशिया में बढ़ गया, वहां तुर्की में बढ़ गया, भैया आपके यहां क्या क्यों नहीं बढ़ा? सच्चाई यह है, 4 मई की बात इन्होंने सच की है, 4 मई से पहले सब चंगा से था क्योंकि चुनाव था। 4 मई के बाद चुनाव जैसे खत्म हुआ, मोदी जी को एक बड़ी आत्मज्ञान हुई, भाई त्यागी पुरुष हैं, उन्होंने कहा त्याग करो, अब आप लोगों को त्याग करना होगा। त्याग कहा उन्होंने, खाने का तेल, पकाने का तेल, चलने का तेल, जनता का तेल, त्याग करो। त्याग करना है आपको, सोना चांदी से मोह माया क्यों रखना भाई, गहने होने में उलझने का क्या मतलब, उसका भी त्याग करो। विदेशी यात्रा में जाने की क्या जरूरत है, जो छात्र विदेश में पढ़ रहे हैं वो लौट आए, त्याग करो, देश के लिए त्याग करना होगा। और जहां तक त्याग की बात है, खेतों में किसानों का तो दाम, आमदनी बढ़ी नहीं, यूरिया नहीं मिल रहा है, नेचुरल अब खाद की जरूरत है, तो आप नेचुरल गोमूत्र यूरिनल जो भी है उसको अपना नेचुरल अपनाइए, स्वाद अच्छा रहेगा। ये मोदी जी ने कहा है और इसको स्वीकारना पड़ेगा, अब देश के हित में है ये। अब आप लोग कह रहे हैं कि चार,
0: सुनिए, हजार करोड़ रुपए का
1: अरे भाई हम आप थोड़े इतना, हम लोग देखिए लिख उकल आते हैं, लास्ट है बटे तनिषा और समय ज्यादा ना ले हम। नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री भाई, उन्होंने यदि कोई बात कहा,
0: ये
1: कोई
0: आपका
1: बात
0: पॉइंट
1: कहा
0: था।
1: तो उसको तो मानना पड़ेगा,
0: ये आपका पॉइंट
1: त्याग
0: था।
1: त्याग उन्होंने कोई आज से नहीं किया, आप कहिएगा कि त्याग तो ऐसा नहीं,
0: मेरे लिए ताली बजा रहे हैं,
1: ऐसा नहीं कि जनता
0: आपके लिए नहीं बजा रहे हैं,
1: नहीं आपके लिए ही ताली बजाते हैं।
0: अरे उनको फर्क नहीं पड़ता कितनी बार एक ही बात
1: की बात है, रुकिए ना, त्याग दिला खा रहे हैं महामानव जी का। महामानव जी ने ऐसा नहीं है कि जनता से कहा है त्याग, उन्होंने त्याग करवाया है, देखिए ना अपने मित्रों के लिए। आज ही खबर आई है और उन्हीं के चैनल से खबर पब्लिश हो रही है मुदानी जी के लिए कि वहां पे केस बंद हुआ है, उसके बदले ऑपरेशन सिंदूर भी का भी त्याग, उसके बदले आपने सबने सुना किस तरह से सस्ता रसा से तेल मिल रहा था, अमेरिका ने कहा था उस समय रोक दो,
0: ठीक है,
1: तो उसका भी त्याग कर दिया।
0: प्रोफेसर साहब, हजार करोड़ रुपए का नुकसान
1: ट्रेड डील का भी कर दिया है,
0: सवाल
1: अभी
0: तो सुनिए,
1: ट्रेड डील में किसानों के हित का त्याग करने का काम किया मोदी जी ने, कम त्याग किया, मोदी जी का आदत है त्याग करने का। विदेश जा रहे हैं तो लोग को पेट में दर्द हो रहा है, भाई मोदी जी विदेश जाएंगे नहीं क्या? 2 विमान है 8x16,000 करोड़ का, यहां रखे पार्ट पुर्जा उसका खराब हो जाएगा, उसको भी तो बनवाना पड़ेगा, तो वहां गए और नॉर्वे में जा रहे हैं, ये तो सब कहानी बन रही है। नॉर्वे में ग्रीन एनर्जी देख लीजिएगा, ग्रीन एनर्जी पर बैन लगा हुआ है मोदी जी पर,
0: अनुराग जी देख रहे हैं कि सारा पॉइंट यही बोल रहे हैं तो मैं क्या बोलूंगा,
1: उसको भी
0: हजार करोड़ रुपए का नुकसान तेल कंपनियों को रोजाना हो रहा है।
1: त्याग को याद रखना होगा,
0: अजय जी
1: आपको हमको भी त्याग करना होगा।
0: आज क्या खा के आए हैं?
1: बस पे चलिए त्याग कीजिए,
0: आपका घर का राशन तो ठीक चल रहा है,
1: मेट्रो में चलिए त्याग कीजिए,
0: दुबे जी भी ऐसे देख रहे हैं
1: तो घर के अंदर रहिए,
0: दुबे जी भी साइड से देख रहे हैं,
1: चलिए बाहर।
0: अरे एक लखनऊ एक मुंबई से आया है शो के लिए, उनको भी बोलने दीजिए, चलिए जवाब दीजिए, ये जब सवाल ही नहीं पूछने दिया।
2: अपने अपने 3 मिनट के वक्तव्य में मैं उम्मीद करता था कि हमारे कांग्रेस पार्टी उनके प्रवक्ता देश के लिए खड़े होंगे, देश के लिए कुछ अच्छा देंगे, कुछ अच्छा सुझाव देंगे, लेकिन ना, सिर्फ मोदी विरोध और मोदी जलन के अलावा कुछ नहीं, निहायत जलन खोटा है ये लोग। 44 करोड़ कहने 44 लाख करोड़ हम लोग खा गए, ये देश में जो एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, ये राफेल खरीदे जा रहे हैं, ये हमारे भारतीय सेना को बुलेट प्रूफ मिल रहे हैं, ये लखनऊ सूट मिल रहे हैं, ये कहां से पैसा आया? हम नहीं खाए भाई साहब, तेल उधार खरीदने की आदत हमें नहीं थी, आप में थी, ऑयल बॉन्ड खरीद के देश को कर्जे में डुबा दिया, चुका हम रहे गए वहां ये 44

0: लाख करोड़। बकवास करते हैं, ये एक सब एक सजेशन नहीं आया कि इस पे हम क्या कर सकते हैं। ओमान गए थे राहुल गांधी, अभी राहुल गांधी जी ओमान गए थे, क्यों नहीं ओमान ने बात किया कि युद्ध कैसे खत्म किया जाए, किससे मिलने गए थे ओमान, और ये प्राइवेट विजिट थी जिससे जवाब नहीं देते। बकवास करने के लिए खाली यहाँ पे आ गया।
1: अनुराग जी बोलेंगे, तीन लोग हैं, तीन लोग हैं अनुराग जी, आपस में बात कर ले, उधर देखिए ना, वरना नहीं हो गया आपका, नहीं नहीं ये सब आप मीठा बन रहे हैं, हमको पता है। चलिए अनुराग जी माइक उठाइए,
2: देखिए सवाल है,
1: अलग टैक्टिक करने लगे धीरे से ऐसे करते हैं।
2: अरे हम लोग बोल
1: तीन लोग हैं,
2: सुनिए
1: अनुराग जी तीन बातें, अरे सुनिए तो सवाल तो सुनिएगा ना, भाषण तो करना नहीं है, तीन सवाल है। देश किसी भी देश के पास उसका फॉरेक्स यानी जो विदेशी मुद्रा भंडार यानी सिंपल भाषा में डॉलर वो सीमित होता है, जो अभी हमारे पास 700 अरब डॉलर के आसपास है, जो कि नेचुरल मतलब उसमें कोई संकट की स्थिति नहीं है। लेकिन उसी डॉलर से हम क्या क्या विदेश से खरीदते हैं, फ्यूल यानी पेट्रोल डीजल कच्चा तेल जो भी हम खरीदते हैं, फर्टिलाइजर जो किसानों के लिए अनिवार्य है, उसी से हम सोना अन्य दवाइयां भी खरीदते हैं। तो अगर सोने को एक साल तक छोड़ देंगे तो हमारे पास एक कुशन रहेगा कि हम भाई कच्चे तेल के निर्यात में या खरीद में या फिर फर्टिलाइजर की खरीद में कोई दिक्कत ना आए। अगर ये सब उपाय सुझाए जा रहे हैं, 1000 करोड़ रुपए का तेल कंपनियों को रोज नुकसान हो रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें?
2: सवाल ये है कि हमने तो सुना था जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी तो मेक इन इंडिया होगा, तो जब सब मेक इन इंडिया अगर हो गया होता तो आज शायद हमें इतनी इंपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। आज आयात का व्यापार घाटा कितना है, 240 अरब डॉलर, ये हम घाटे में जी रहे हैं, क्या घाटा है। और उसके बाद आज देखिए, जब भी हम चीजें खरीदते हैं, चाहे सोना खरीदें चाहे तेल खरीदें,
0: अनुराग जी
2: डॉलर में खरीदना पड़ता है।
0: गोल्ड को मेक इन इंडिया कैसे करेंगे जरा बता दीजिए,
2: बीच में नहीं बोला मैंने आपका सम्मान किया,
0: गोल्ड को मेक इन इंडिया कैसे करेंगे बता दीजिए, छात्र जानना चाहते हैं।
2: अगर इस तरह से होगी तो मैं आपके बीच में बोल सकता था, मैंने समय मेरी बात सुनिए, बीच में डिस्टर्ब करने से कोई आनंद आ रहा है क्या, आनंद आ रहा है क्या, तुमने देश को महंगाई में ढकेल के आनंद आ रहा है क्या, नहीं देश को महंगाई में ढकेल के आनंद आ रहा है क्या, सवाल बात कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो देश की सच्ची बात को जनता के सामने जाना नहीं देना चाहते। आज डॉलर की क्या कीमत है बताइए, रुपए के मुकाबले कहां पहुंच गया है, 95 रुपए पे पहुंच गया है। और ये सोना और कच्चा तेल हम खरीदते हैं तो डॉलर में खरीदते हैं ना, इसके मतलब हमारा रुपया कितना कमजोर हो रहा है। अगर रुपया मजबूत होता तो शायद हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही होती, लेकिन आपने ऐसा होने नहीं दिया। ऊपर से बातें कर कह रहे हैं, अभी अंजना जी ने मुझसे सवाल पूछा कि भाई 1000 करोड़ रुपया का नुकसान हो रहा है कंपनियों को, तो कंपनियों को जब फायदा हो रहा था 2015 में तो कच्चा तेल 52 रुपए प्रति बैरल था, तब तो आपने पेट्रोल के दाम तो कम नहीं किए थे पेट्रोल डीजल के, तब तो कंपनियां कमा रही थी। 2016 में 44 यहां पे डॉलर प्रति बैरल था, तब पेट्रोल डीजल का दाम कम नहीं हुआ, तब तो कंपनियां कमा रही थी, तब कंपनियों ने क्यों नहीं वहां पे पेट्रोल डीजल का दाम कम किया सरकार ने, मैं पूछना चाहता हूं। और कोरोना काल में तो सबसे निम्न स्तर पर था, 42 यहां पे 42 डॉलर प्रति बैरल मिल रहा था, तब भी आपने कम नहीं किया, तब कंपनियां कमा रही थी। कंपनियां कमाएंगी तो ठीक, अब जरा सा थोड़ी कंपनी को दिक्कत आई है तो सजा जनता भुगतेगी, तब सरकार नहीं भुगतेगी, तब सजा जनता भुगतेगी अगर कंपनी को नुकसान हो रहा है। लेकिन कंपनी को फायदा होता है तब सरकार चुप्पी साध जाती है, ये देश के अंदर हो रहा है, कमाल की बात है। आप सारी महंगाई, एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाए, देखिए कैसे कमाल के लोग हैं, इनसे बातें करो, मैं थोड़ा सा हट रहा हूं मुद्दे से। नीट का पेपर लीक हुआ, रद्द हुआ, बच्चे ने सुसाइड कर लिया। जब सवाल पूछा जाता है कि लखीमपुर के बच्चे ने सुसाइड किया, जिम्मेदार कौन, तो पता क्या बोलेंगे, 70 साल से तो आपकी सरकार थी, तभी 70 साल जाते हैं, 20 साल पीछे जाते हैं, सवाल उठता है आप जिम्मेदारी से हर महंगाई। जब चुनाव हो रहा था, लास्ट बोला, जब चुनाव हो रहा था पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, असम में, पौंडीचेरी में, ये वहां केरलम में क्या कर रहे थे पता आपको, हेलीकॉप्टर दौड़ रहे थे, जहाज घूम रहे थे, तब फ्यूल खर्च हो रहा था, रैलियां हो रही थी, काफले निकल रहे थे, तब क्यों चिंता नहीं आई। अरे भाई सरकार की जिम्मेदारी होती है कि पहले से अपने लिए सरकार की जिम्मेदारी होती है दूर अंदेशक लगा लेना कि ईरान का युद्ध चल रहा है, कल हम तकलीफ में आएंगे। विपक्ष बार बार बोल रहा था कि आप इसको कंट्रोल कीजिए, चुनाव बाद में देख लेंगे, पहले राष्ट्र बचाना है, लेकिन आपने इसकी चिंता नहीं की, आप चुनाव की चिंता करते रहे, चुनाव जीत लिए, आपने ओथ ले ली, उसके बाद कह रहे हैं अब महंगाई बढ़ानी है, तब जाके डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया, और हम कह रहे थे कि डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ेगा चुनाव के बाद, तब ये क्या कह रहे थे,
0: सबसे पहली बात
2: का काम है झूठ फैलाना, विपक्ष का काम है झूठ फैलाना, विपक्ष आपको आगाह कर रहा था, विपक्ष की बात नहीं माने, आज डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े, आम आदमी इसकी सजा भुगतेगा, आपका क्या है,
0: बस हो गया ना,
1: जवाब दीजिए जल्दी, जवाब दीजिए छोटा सा जवाब, क्योंकि दुबे जी और मैडम।
0: अरे विपक्ष विपक्ष करे, विपक्ष बोलना तो सीखिए पहले।
2: विपक्ष मैंने बोला
0: जी, एक बार बताता हूँ सुनिए। सबसे पहली बात, मेक इन इंडिया बोला, मेक इन इंडिया पेट्रोल कैसे मेक इन इंडिया करेंगे और गोल्ड कैसे मेक इन इंडिया करेंगे? आलू घुसा गोल्ड निकालो, आलू घुसा गोल्ड निकालो, मेक इन इंडिया हो गया क्या? दिमाग से ऊपर का बात करते हैं लोग। पेट्रोलियम कंपनी का प्रॉफिट, पेट्रोलियम कंपनी कौन सी है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम किसकी है? सरकारी सार्वजनिक कंपनी है।
2: आ तो फिर जनता
0: की कंपनी नहीं
2: है? कच्चा चल सस्ता मिल रहा था, सस्ता नहीं किया पेट्रोल, और अभी रोने लग गए। कमाल की बात कर रहे हो, रोने का छोड़िए, जनता की बात कीजिए।
1: फडणवीस जी मोटरसाइकिल से पहुंचे विधानसभा,
2: साइकिल पे चलेंगे सब लोग अब, साइकिल पे
1: आप तो चलते नहीं, साइकिल पे
2: चलना पड़ेगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ, इनके कुछ नेता चलने लगे हैं, बीजेपी के चलने लगे। अच्छा, आने वाले दिनों में सभी को साइकिल पे चलना पड़ेगा।
1: हम सारे लोग, कितने लोग हैं? लगभग 200-300 लोग हैं।
2: आपको मंजिल तक पहुंचाएंगे, आपको स्वास्थ्य भी अच्छा रखेगी।
1: गुरु जी को ले जाएंगे अभी बाहर,
2: आना पड़ेगा
1: कैमरे के साथ ले जाएंगे, और इनकी गाड़ी आपको दिखाएंगे। गाड़ी नहीं होती है, गाड़ी होती है इनकी, जिससे ये आए होंगे।
2: भगवान भगवान करे आपके मुंह में घी शक्कर, भगवान करे आपके मुंह में घी शक्कर। बोल तो रहा हूँ
1: दुबे जी, मोर्चा संभालिए, और पहले बता दीजिए किधर से बैटिंग करने वाले हैं। आजकल आप बहुत राष्ट्रवाद के नाम पर इधर झुके झुके से नजर आते हैं, लेकिन ये 3-3 रुपए की जो लोगों की बोझ पर असर पड़ रहा है सीधा।
3: अंजना जी, अंजना जी नमस्ते। एक गाने से शुरू करता हूँ, गाने के बोल है, हम पागल नहीं है भैया, न हमारा दिमाग खराब है, हम सिर्फ दुखी तब होते हैं जब ये भाजपाई कहते हैं सरकार हमारी है समस्या तुम्हारी है, तब दुख होता है कि अरे भैया भैया सरकार में आप आए हो, दुख दुख आपने हमें दिया है, हम आपसे सवाल भी नहीं पूछ सकते। तो भाजपाइयों की बात बहुत है निराली, इनको सूखे में दिखता है हरियाली, इनके आंसू है घड़ियाली, और ये विपक्ष को कहते हैं कि हम लोग हैं बवाली और मवाली। नहीं मेरे भाई, हम लोग करेंगे इस देश की रखवाली। प्रधानमंत्री जी कहते थे, भाइयों और बहनों ये जो रुपया है ना, ये लुढ़क रहा है, लुढ़क रहा है, और 2026 में रुपया सो रहा है, रुपया 95 पार हो गया। अगर जब मनमोहन सिंह जी ने सत्ता आपको सौंपी थी और वो 60 रुपए का जो डॉलर था वो अगर आपने 40 में किया होता, ये आनंद दुबे आपके पैरों में अजय भाई ऐसे नतमस्तक हो जाता, नतमस्तक हो जाता। लेकिन नहीं, नहीं, आपने आपने हमारे सपनों को तोड़ा है। आपने हमें क्या कहा मालूम है? लड़ाई शुरू हुई 28 फरवरी से, मार्च गया, अप्रैल गया, और मोदी साहब कह रहे थे, भाइयों और बहनों 4 मई ममता गई। अरे ममता तो गई, लेकिन जब आया 10 मई तब आपकी चिंता बढ़ गई, तब तब समझ में आया। अच्छा, कि अब तेल अब नहीं मिलेगा।
1: दुबे जी बड़े अच्छे स्टार हैं, तो आपकी मिमिक्री तो हम लोगों ने देख ली, थोड़ा अपने नेता की भी करके सुनाइए। डर लगता है क्या? डर लगता है,
0: वो बात नहीं है,
1: डर लगता है, एक सेकंड, डर लगता है,
0: डर नहीं लगता,
1: तो करके दिखाइए,
0: प्रैक्टिस ही नहीं कर पा।
1: अरे उनके स्टाइल की भी नकल हो जाए जरा।
0: हमारा कहना यह है मेरे भाइयों और बहनों,
1: बड़ा सवाल यह है कि जब हाँ पूरा कर लीजिए,
0: जब जब इस देश पर संकट आएगा, इस देश के लिए खून देने के लिए विपक्ष आएगा। ऑपरेशन सिंदूर हुआ,
1: क्या चाहिए आपका?
0: एक मिनट,
2: क्यों नहीं चाहिए?
0: एक मिनट अंजना जी, हमें सबसे पहले आपत्ति, हमें सबसे पहले आपत्ति,
2: विपक्ष देश के साथ खड़ा है।
0: एक मिनट, हमें आपत्ति यह है कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में काहे कमी की गई भाई। हमने कहा था क्या, हम लोग भूखे रहेंगे, उपवास करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो प्रधानमंत्री देश के हैं, वो एसपीजी की जो ब्लू बुक होती है वो जो कहेगी वो हम मानेंगे। हम साइकिल पे चलेंगे, हम मेट्रो में चलेंगे, पैदल चलेंगे, घोड़े पे चलेंगे,
2: नेता भी चलें, ऐसा नहीं, हम तो चलेंगे साइकिल पे, वो भी चलें, दिक्कत ये है ना, वो गाड़ी पे चलेंगे और हम लोग साइकिल पे चलते रहेंगे,
0: साइकिल
2: की भी तो जिम्मेदारी।
1: जल्दी से माइक उठाइए और बताइए कि एक्चुअली जब इकोनॉमिक्स के नजरिए से हम देखें, एक तो ये संकट हमारा लाया हुआ नहीं है, हॉर्मूज और जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं उसकी वजह से जो परिस्थिति बनी है, भारत को कैसे मुकाबला करना चाहिए? क्योंकि ये बात सच है कि काफिले में गाड़ी कम करने से कितना असर होगा नहीं होगा हम नहीं जानते, लेकिन पूरे देश में एक मूवमेंट की जरूरत है।
4: बिल्कुल नमस्कार अंजना जी, सभी को पैनलिस्ट को भी, यहाँ बैठे दर्शकों को और टीवी के दर्शकों को भी। दुबे जी आपने बहुत बढ़िया बात बोली कि मैं आप ही की बात से शुरुआत करूंगी। बहुत बढ़िया बात बोली कि संकट था इनका, झेलें ये। आप उससे पहले की कड़ी कैसे भूल गए? संकट था अमेरिका और ईरान का, झेल रहा है पूरा देश, ये पूरा विश्व, ये कड़ी आप भूल जाते हो। पार्शल एमनीशिया के साथ यहाँ आते हो भाई, वो कड़ी भी तो जोड़ लो, वो सबसे अहम कड़ी तो वही है। उसी कड़ी में आपको समझाती हूँ बच्चों, अगर इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन, और आप ही ने आनंद दुबे जी बहुत अच्छा अपने वक्तव्य में ही अपना जवाब दे दिया कि चिंता भरी 10 मई को, दाम बढ़े हैं 15 मई को, चिंता भरी 10 मई को, बिल्कुल, क्योंकि 10 मई का वो दिन था जिस दिन लग रहा था कि ईरान और अमेरिका की जो पीस टॉक है वो फाइनलाइज हो जाएगी, उस दिन हॉर्मूज खुल जाएगा, लेकिन नहीं खुला। तब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि अब भैया जनता तुम अपना इकोनॉमिक पैट्रियोटिज्म
2: तो नहीं खबर है।
4: सर मैं आपके बीच में तो नहीं बोली थी ना,
2: नहीं, मैंने नहीं खबर
4: नहीं बोली थी ना,
2: नहीं, मैंने खबर नहीं बताया,
4: खबर नहीं, नहीं आप थोड़ा रिसर्च करके आओ सर। 10 मई को टॉक्स फाइनलाइज होने की कगार पे थी, खैर वो पाकिस्तान से होने नहीं पाल वाली थी, वो एक अलग बात है क्योंकि चाइना में जाना था। तो 10 मई का जवाब आनंद जी ने बहुत सही दिया। अब मैं आपको इकोनॉमिक परिप्रेक्ष्य से समझाती हूँ। अगर इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन हम इतना कर रहे हैं तो 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन और रशिया का युद्ध शुरू हुआ था। तब हमारे जो पेट्रोल, जो क्रूड ऑयल है, उसके दाम बढ़े थे $78 से $130। और 24 फरवरी के बाद 22 मार्च को जाके सरकार ने ₹10 आपका पेट्रोल का दाम बढ़ाया, लेकिन 15 मई को वो वापस ₹8 घटा दिया। अब 15 मई 2022 को ये लोग तो सारे नेता लोग हैं, ये बताएंगे कौन सा इलेक्शन था,
2: नेता के बगल वाले
4: होने वाले हैं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं मेरे मुंह में घी शक्कर। अब तो मैं आपको बताती हूँ कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इन सब राज्यों के चुनाव फरवरी 2022 में होके चुके थे और दिसंबर 2022 में आने थे दिल्ली, गुजरात और हिमाचल के। तो भाई साहब ऐसा मई 2022 में क्या था जो दाम घटाने पड़े? और अंजना जी इसी का ही, 2011 में $95 से $125 हुआ पर बैरल, तब अचानक सरकार ने एक हफ्ते के अंदर अंदर 58 से 68 रुपीस पेट्रोल का दाम बढ़ाया। तो तब भाई साहब वैश्विक संकट क्यों भूल जाते हो? ये सब इतिहास में क्यों झांकती?
2: अच्छा हुआ बढ़ा दिया, क्या कहना चाह रहे हैं?
4: मैं ये कहना चाह रही
2: हूं, कहना चाह रहे हैं कि महंगाई होगी, अच्छा हो गया।
4: मैं आप ही के बात का जवाब दे रही हूं।
2: नहीं, जवाब ही नहीं दे रहे हैं आप, बीजेपी की तरफ से
4: आप तो प्रवक्ता की तरह बोल रहे हैं। अनुराग जी स्टॉप दिस,
2: नहीं नहीं
4: स्टॉप दिस, जो आपके हां में हां ना मिला है वो बीजेपी का हो गया। लेट अस स्पीक ऑन, सवाल पूछा कि प्रॉफिट क्यों कंपनियों को दिया। 2024 में ये जो सारी पीएसयूज थी, हाईएस्ट प्रॉफिट अंजना जी इन्होंने कमाया $81,000 पर एनम का। और अभी आप जान रहे हो, आप ही ने बोला ₹1,000 करोड़ का प्रतिदिन नुकसान हो रहा है, 60 दिन में वही $60,000 करोड़ हो गया। तो ये जो 81,000 करोड़ था, इससे आपके टैक्सेस हुए, जो अभी आलोक भाई साहब ने बात बताई, रफेल आया, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, सब कुछ हुआ, 3 लाख करोड़ रुपए की लागत इंफ्रास्ट्रक्चर पे होती थी, वो 17 लाख करोड़ रुपए।
2: मैंने बोला था जब कच्चे दाल के कच्चे तेल के दाम कम थे, जब प्रॉफिट कमाया था तब क्या हुआ?
4: बता तो रही हूँ, यही तो बता रही हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर 3 लाख करोड़।
2: ऐसा नहीं होता है कि चिट भी मेरी पट भी मेरी, आप कमा भी लेंगे, उसके बाद आप जनता को राहत नहीं देंगे। आज जब क्रूड ऑयल का दाम बढ़ जाएगा तो फिर जनता के ऊपर डाल देंगे, ऐसा नहीं होगा, दोनों तरफ नहीं चलती है बात।
4: आइए, दो तीन सवाल जल्दी जल्दी ले रहा, माइक छोड़ दीजिए।
5: मेरा नाम श्रियांश मलिक है, मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब $60 था बैरल, तब कंपनीज को कितना प्रॉफिट हो रहा था वो नहीं बता रहा जा रहा है।
4: अब उन्होंने वही बता रहे,
5: अब बताया ना मैम ने, जब था वो, जब किसी ने उस पर बात नहीं की, अब जब इसकी बात आ रही है कि कंपनीज को इतना घाटा हो रहा है, तब इस बात को उठाया जा रहा है।
6: प्राइवेट कंपनी जो कमाई है।
7: मैम मेरा नाम अक्षत वाजपेयी है, मेरा कहना ये है, जो आज पेट्रोल के ऊपर इतनी बहसबाजी कर रहे हैं, क्या उन्होंने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोई रोड मैप दिया आज तक?
4: किससे चाहिए आपको रोड मैप?
7: मैम जो विपक्ष है हमारा, जो अभी ऑपोजिशन है, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ कि जब उनका उनकी सरकार थी,
4: मतलब प्रोफेसर साहब से पूछ रहे हैं, ठीक है इधर से जल्दी है, जल्दी पूछे।
8: मैम मेरा नाम ऋषिका शर्मा है, मेरा क्वेश्चन है कि जब 2010 और 2014 में भी कांग्रेस के रूल थे, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, तब भी प्राइसेस बढ़े गए थे इंटरनेशनल पॉलिटिकल टेंशन्स के वजह से, तो ये ब्लेम करना कि बीजेपी के आने के बाद अभी प्राइसेस बढ़ रहे, उस टाइम भी बढ़े गए थे। और
4: छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे, जल्दी से
9: मैम मैम विपक्ष से सवाल है, जब देश ऐसे विपरीत परिस्थितियों में पलता है तो ये विपक्ष के लोग अगेंस्ट क्यों हो जाते हैं इंस्टेड ऑफ के साथ आगे काम करना चाहिए?
10: मेरा ये कहना है कि ये जो बात मेरे मित्र ने कही ये बिल्कुल सही थी, लेकिन विपक्ष अभी जैसे डरा रहा है कि साइकिल से जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। जब कोविड आया था तो मास्क लगाना एक प्रिवेंटिव मेजर था, और अभी पीएम ने यही कहा है कि आप अभी कम ट्रेवल कीजिए।
1: सुझाव दिया है। तीन सवाल इधर से फिर उधर आ रही, छोटे से जल्दी से।
11: सवाल जो है आपसे है अजय आलोक जी, आपने कहा कि मोदी जी का बहुत वर्चस्व है, कल ही वेडनेसडे को हमारा जहाज कार्गो शिप उसको ड्रोन अटैक में वो ध्वस्त हो गया और सिंक हो गया, और आपने आपकी तीन बार से सरकार है, आपने एक बार भी अपने इंश्योरेंस कंपनी जो अपने देश की कंपनी होती है आपने नहीं बनाया है, आपने 12 मई 2026 को जाके BMIP बनाया है, तो अभी तक आप कहाँ थे?
1: ठीक है जल्दी से
11: जब बात हुई थी उस टाइम पे 12 आवर्स के लिए जब देश में पेट्रोल पंप्स बंद होते थे तो उस टाइम पे क्राइसिस भी इतने हाई लेवल के नहीं थे, तो अब जब एक्चुअल हाई लेवल के क्राइसिस हैं तब इतना तो सपोर्ट कर सकते हैं ना?
12: फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे 2013 पीछे नंबर, उन्होंने कहा था कि गोल्ड आप खरीदना बंद कर दीजिए, जबकि कोई क्राइसिस नहीं थी उस समय। हमारे जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह ने कि पैसा पेड़ पे नहीं लगता है, तो अब तो क्राइसिस है तो अपोजिशन को उसको साथ देना चाहिए ना कि भड़कना चाहिए।
13: जब हम गोल्ड नहीं खरीदेंगे तो इतने कारीगर हैं, इतने जो वेस्ट बंगाल से आते हैं वो सब कहाँ जाएंगे, उनका क्या होगा?
1: जो लोग काम करते हैं जिनकी दुकानें हैं उनका क्या?
14: इकोनॉमिक पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करने के बजाय अगर आप किसी भी पार्टी को टारगेट कर रहे हो तो वो तो गलत है ना?
15: मैं दो बातें कहना चाह रहा हूँ।
1: पढ़ाते हैं?
15: नहीं पढ़ता हूँ।
1: आप भी पढ़ रहे
15: हैं? राज कॉलेज में पॉडकास्ट स्टूडेंट हूँ।
1: सर क्या बात है सर, तो कमाल ही कर दिया सर।
15: मैं वैसे तो माननीय मोदी जी के हर कदम के साथ हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आज का ग्रामीण भारत है और पहले का भी, क्या उसको फोकस करके कोई योजना बनाई गई है? मैं खुद गांव से आता हूँ।
1: जल्दी आइए, नीचे आइए। हाँ जल्दी, माइक मैंने पकड़ा है,
16: सॉरी। तो मैं तो फेवर में बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि एक फैमिली की बॉन्डिंग जैसे होती है, तो अगर फादर या ब्रेडविनर नहीं अरेंज कर पा रहा, प्रोएक्टिवली वो सिक्योर करना पड़ता है, फैमिली को करना चाहता है, तो वो कुछ बातें फैमिली से बोलता है कि बच्चों ये करो ये करो। तो
17: जैसे कि सर ने बोला कि गोल्ड और पेट्रोलियम को मेक इन इंडिया नहीं कर सकते, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप मेक इन इंडिया कर क्या रहे हो फिर? किसान को और मजदूर को कहीं नहीं दिख रहा आपका मेक इन इंडिया। अगर ये मेक इन इंडिया सही में होता तो आप देखिए ना, $112 अरब का चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट है, और अगर मैं सरकार के खर्च के कंपेयर में बता दूं तो ये 21% होता है, तो फिर भाई मेक इन इंडिया हो क्या रहा है? दिख तो नहीं रहा।
18: जुमला बनता है जुमले,
14: ठीक है। मेरा कहना ये है कि अभी हाल ही में हमारे देश में 5 राज्यों में चुनाव हुए, उस टाइम पे तो खूब जेट आए, एरोप्लेन आए, सब कुछ हुआ, पर चुनाव शपथ के 2 दिन बाद ऐसा क्या हो गया?
10: हाँ, मेरा सवाल ये है कि 1965 में जब भुखमरी आई तब लाल बहादुर शास्त्री जी ने खुद पहले अन्न छोड़ा, हफ्ते में एक दिन खाना छोड़ा, उसके बाद उन्होंने लोगों से अपील करी। आज जब मतलब मोदी जी ने जब 7 अपीलें की उसमें से एक अपील थी कि हमें विदेश जाना कम करना चाहिए, आज सुबह सुबह ही वो विदेश निकल गए।
1: लग रहा है वो घूमने गए?
10: घूमने नहीं गए, लेकिन
1: आपको लग रहा है वो घूमने गए?
10: लेकिन उन्होंने एक चीज और कही थी।
1: मैं आपसे पूछ रही
10: हूं। नहीं नहीं, वो उनका काम है।
1: तो फिर, और वो UAE गए हैं, वहां पर वो मीटिंग करके 3 घंटे में अगले देश चले गए।
19: मेरा सवाल अजय आलोक जी से, युद्ध शुरू होने से पहले ही रुपया 90 तक पहुंच गया था प्रति डॉलर, और अभी भी लगातार रुपया डॉलर के प्रति गिर रहा है, तो क्या 100 रुपए प्रति डॉलर का शतक इनके कार्यकाल में ही हो जाएगा या उसके लिए हमको समय मिलेगा?
1: सेंचुरी लगाने वाले हैं क्या अजय आलोक जी? जवाब दीजिए। चलिए आप इसे शुरू करते हैं, क्योंकि इधर के जो सवाल थे वो आप ही के लिए थे। देखिए बच्चे भी ये सवाल पूछ रहे हैं, 4 मई प्रॉब्लम आई।
0: देखिए कोई 4 मई प्रॉब्लम नहीं आई, प्रॉब्लम अभी आया नहीं है, प्रॉब्लम आने की आशंका है जिसकी बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं। आशान्वित होना देश में हमेशा सबको चाहिए, और डिप्रेसिव थॉट की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, समस्या का समाधान होना चाहिए ना कि समस्या को बढ़ाने का प्रयास होना चाहिए। फर्क हम उनमें और हम में यही है।
1: जहां तक गिरता हुआ रुपया है,
0: हम बार बार ये कह रहे हैं, कैलकुलेट कीजिए, हमारा सबसे बड़ा रीजन है गिरता हुआ रुपया का, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अगर हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व घटेगा हमारा रुपया गिरेगा। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में क्या ये जायज है कि पिछले एक साल में 38 बिलियन डॉलर से 71 बिलियन डॉलर हम सिर्फ गोल्ड इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारा रुपया गिरेगा क्योंकि हम 135 बिलियन डॉलर का अप्रोक्सीमेटली ऑयल एक्सपोर्ट कर इंपोर्ट कर रहे हैं, जो करना ही हमें, कोई उपाय नहीं हमारे पास। मैंने बोला ना तेल तो प्रोड्यूस कर नहीं सकते, अपनी आदतों पे कंट्रोल कर सकते हैं। गोल्ड की नहीं, मैडम ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी कि एक करोड़ कारीगर है, मैं मानता हूँ एक से डेढ़ करोड़ कारीगर उनका क्या होगा? बहुत जल्दी रिजर्व बैंक पॉलिसी लेके आ रही है, हम लोग गोल्ड रिसाइकलिंग शुरू कर सकते हैं। एक अनुमान के तहत बता दूं, भारत में इस वक्त 30,000 करोड़ टन सोना बैंक में रखा हुआ है। 30,000, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ ज्वेलरी, ज्वेलरी का हटा दीजिए, तो सिर्फ बिस्किट और कॉइन के फॉर्म में अप्रोक्सीमेटली 5,000 टन सोना है। अगर उसको हम निकाल कर रिसाइकल कर सके तो सारे मजदूरों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, हमें गोल्ड इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। विजन होना चाहिए ना, तो वहाँ विजन नहीं है ना।
1: ठीक है, मैं चली जाती हूँ सर, आप लोग लड़ लीजिए, इतना शौक है लड़ने का।
18: बहुत अच्छा प्रश्न किया है,
1: जो कह रहे हैं कि विपक्ष क्यों नहीं ऐसे वक्त पर, ये संकट
18: एकदम संकट के समय पूरा देश, एक एक नागरिक, पक्ष और विपक्ष नहीं, सभी लोग साथ हैं और रहेंगे। लेकिन जब सहयोग की बात आएगी तो सभी लोग, आप और जनता सब सहयोग करेगी, और जवाबदेही तय कौन करेगा? सरकार में जो है उसी की जवाबदेही होगी ना। लाभ होगा तो प्राइवेट लोगों को लाभ होगा, लाभ का प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, और जब हानि होगी तो लॉस का। चुप रहिए, बीच में नहीं बोला, अभी गलत बात,
2: बीच में नहीं।
18: और जब हानि होगी तो उसका लॉस जो होगा उसका सबको जो है राष्ट्रीयकरण हो जाएगा। ये चल रहा है, ये पॉलिसी चल रही है इस देश में। 65% जो तेल अभी है बाहर से, जो तेल आ रहा है 65% हमारे उपयोग में है, और 35% अभी भी है प्राइवेट कंपनी देश से विदेश भेज रही है रिफाइनिंग करके और उसका लाभ कमा रही है। क्यों नहीं मोदी जी को पहले उसको रोकना चाहिए था? इस देश में देश के लोगों का तो तेल आप बढ़ा रहे हो, उनका तेल कर रहे हो, और ये प्राइवेट कंपनी न्यारा और रिलायंस का क्यों नहीं? कितना लाभ हुआ? आज जब जरूरत संकट में है उसको भी उसका लाभ का जो चीजें होनी चाहिए, 16,00,000 करोड़ रुपए का जो आपने राइट ऑफ किया उसको प्राइवेट कारपोरेट को क्यों किया? कारपोरेट टैक्स 1,45,000 करोड़ आपने क्यों कम कर दिया? 12% विश्व में दो देशों का करेंसी सबसे ज्यादा डिवेल्यूएट हुआ है एक साल में, तुर्की है और दूसरा भारत है। इस पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? 12% डिवेल्यूएट हुआ, इसके कारण इकोनॉमी की क्राइसिस हो रही है, और ये आज की नहीं है, ये साल भर के अंदर पूरा गिरा है। अभी $38 बिलियन जो है इस देश से लोग लेकर के चले जा रहे हैं, FII निकल गए सिर्फ एक महीने में।
1: फॉरेन रिजर्व को एक प्रोटेक्ट करने का ये भी तरीका है ना, कि आप अपने विदेशी मुद्रा भंडार में अगर रुपया ऐसे ही गिरता रहेगा, एक डीवैल्यू होता रहेगा, तो जाहिर तौर पर आपका डॉलर ज्यादा खर्च होगा।
18: सरकार क्यों नहीं इस बात को कर रही है?
1: सरकार क्या कर रही है कि हम डॉलर के मुकाबले अपने रुपया को रोकें जिस तरह से गिर रहा है?
4: अजय जी, मैं अजय जी के बातों का ही जवाब दूंगी। अजय जी, आप मुस्कुराते हुए जब पूछ रहे थे ना तो ज्यादा लॉजिकल बातें कर रहे थे, जब आपने गुस्से में बोलना शुरू किया ना तो अपनी ही बातों में आप उलझ गए। तो आपने जो ये सवाल पूछा, अगर 10 साल में डीवैल्यू हुआ है तो वो 10 साल
18: के अंदर 12%।
4: अरे भाई बोलने तो दो, मैं नहीं बोली थी ना बीच में अजय जी, अब मुस्कुरा के जवाब दे देती हूँ अगर देना चाहते हो तो। भाई बता रही हूँ 10% हुआ था जब वैश्विक संकट नहीं था, और अब वैश्विक संकट है बेटा। आपने जो सवाल पूछा अजय जी,
18: आप इकोनॉमिस्ट,
4: अरे भाई
18: आप प्रोफेसर भी हैं,
4: अरे भाई तो जवाब ही तो दे रही हूँ प्रोफेसर भाई, मुझे बोलने दो।
18: अरे भाई
4: प्रोफेसर वर्सेस प्रोफेसर हो गया। जब आपने स्टूडेंट्स क्या करें, जब आपने पूछा कि क्या मेक इन इंडिया कर रहे हैं, वही वहीं से जवाब आ जाता है। मैं आपको उसका आंकड़ों में ही समझाती हूँ। करेंट अकाउंट डेफिसिट, जो आप दे रहे हो वर्सेस जो आप ले रहे हो। जब हमने 2014 में सरकार शुरू हुई थी, करेंट अकाउंट डेफिसिट था बेटा 4.8%। तब हम जो था वो ज्यादा ले रहे थे, और इतना मतलब हमारा डेफिसिट इतना बड़ा था, और अब 27 फरवरी को हमारा डेफिसिट था 1.2%। तो मेक इन इंडिया से ही तो वो बना के बाहर दिया। अब जो चीजें ले रहे हैं वो तो यहाँ है ही नहीं ना, तेल, गोल्ड, ये सब कैसे प्रोड्यूस कर ले? जैसे भाई ने कहा, अच्छा सोने से थोड़ी, नहीं नहीं मैं अभी
2: हो गया, जल्दी है, टाइम ही कम है।
4: नहीं, चलो बोल दीजिए,
2: आप देखिए, अब सवाल ये है,
4: तो अजय जी की बात का जवाब ये था, अजय जी की बात का जवाब ये था, वो तेल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उस पे टैक्स कमा रहे हैं, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ कर रहे हैं।
2: सवाल ये है, चलिए आपकी बात मान ली, गोल्ड आप नहीं बना पाते यहाँ पे, आप तेल, कच्चा तेल यहाँ नहीं
4: पैदा कर पाते। एक मिनट सुनिए ना,
2: बात
4: को
2: बोलने दीजिए, अरे बोलने दीजिए भाई, अभी आधी बात, चलिए माना आपकी, अरे सुन तो लीजिए भाई, देखिए माना आपकी बात, लेकिन आप कहते हो ईवी गाड़ियां चलेंगी। आप कम से कम अगर यहाँ से किसी भी हाईवे पे चले जाओ, आपने चार्जिंग पॉइंट भी नहीं लगा पाए, ये भी नहीं लगा पाते क्या आप? इसमें भी क्या हमको, एक बात सुनिए, वो भी नहीं लगा पाए आज तक। आप चले जाए किसी हाईवे पे चले जाएगा, ईवी गाड़ी आप ले लीजिए तो आप मेरी बात सुनो। और 75%
0: दिल्ली से उसका यार
2: फिर बीच में हल्ला मचाने से कोई फायदा नहीं है।
1: चलो बोल दीजिए,
2: पोल खोलूंगा, रुको अभी
1: खोल दो, पोल खोल दो,
2: इनका पोल खोलने दो, उसके बाद उसके। अरे देखो मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप सुन लीजिए मेरी बात। सबको पता है कि ईवी गाड़ी आप जब पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो ईवी गाड़ी पे चलने की आप नसीहत देंगे? ईवी गाड़ी पे लोग चलेंगे तो ईवी गाड़ी कैसे चलेगी? आपको पता है कि उसके चार्जिंग पॉइंट कहाँ कहाँ है? और उसके ऊपर 70-75% उसमें जो बैटरी में चार्ज होने के लिए लिथियम कोबाल्ट निकल जो उसमें लगता है ना, वो भी चाइना से इंपोर्ट करना पड़ता है। आपने ऐसी कौन सी चीज की है देश के अंदर में जो देश को मेड इन इंडिया करते रहे? आप तो और तो चाइना से क्या नहीं इंपोर्ट करते बताइए? आप कपड़े तक इंपोर्ट करने लगे हो, सोचो आप हर चीज चाइना से इंपोर्ट कर रहे हो, जैसे उसने बताया भी उन्होंने, तो हर चीज आप विदेश से इंपोर्ट कर रहे हो। और जब आप आए थे तब क्या कहते थे? मेक इन इंडिया होगा, डिजिटल इंडिया होगा।
1: आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ हल्ला बोल में जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
6: जीके मैक्स।
7: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
6: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
7: जेके वॉल मैक्स
6: बेस्ट पेंट,
7: जेके मैक्स।
6: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
8: यार
9: ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
10: इसमें माइक्रो फाइबर है।
9: माइक्रो फाइबर यानी
10: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत,
9: हमारे सीमेंट में नहीं है,
10: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
11: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
12: सर हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है,
13: पर मार्केट की समझना बाउंसर जा रही है।
12: आप कैसे कर लेते हो?
14: मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ।
13: म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो, और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो, तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का
15: नहीं,
13: और म्यूचुअल फंड्स है
15: सही।
16: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
17: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं,
18: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना,
19: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
20: बहुत टायर्ड हो गई।
21: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
22: लायन डेट नट बाइट्स।
23: Character, the taste of success.
24: Like I said before, we better own the sins.
9: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
10: इसमें माइक्रो फाइबर है।
9: माइक्रो फाइबर यानी
10: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत,
9: हमारे सीमेंट में नहीं है,
10: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
11: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
1: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके।
25: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
26: 23 और 29 अप्रैल वोटिंग,
27: 90% क्रॉस कर गई बंगाल की वोटिंग।
28: ये बढ़ा हुआ मतदान आखिर किस तरफ जाएगा?
26: 4 मई काउंटिंग,
27: भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी पीछे हो गई हैं
29: रुझानों में, बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए।
26: 8 मई CM का ऐलान,
27: शुभेंदु अधिकारी बंगाल के मुख्यमंत्री होंगे।
26: 9 मई शपथ,
30: शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते थे।
26: यूट्यूब पर सबसे ज्यादा व्यूअर्स, सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा एंगेजमेंट, सर्च में नंबर 1, गूगल ट्रेंड्स में नंबर 1, लाइव स्ट्रीम में सबसे आगे। टीवी हो, डिजिटल हो, यूट्यूब हो या सोशल मीडिया, हर प्लेटफॉर्म पर आज तक रहा चुनाव में सबसे आगे। चुनाव मतलब सिर्फ आज तक।

0: इंडिया में रहना है तो मोदी जी कहना है।
1: कहना ही है भाई, इतनी चुनाव क्या है, जनता जनता करेगी ना। इतनी जो चुनाव मतलब एक होता है कि भाई बोल दिए आ रहे हैं, वे ये तो अश्वमेघ चल रहा है मोदी जी का
2: ये तो ये
0: आप आईएस निकाल लिए होते
1: तो हम अभी फरारी काट रहे होते। अगर हम आईएस बन जाते मेरे पास जांच चल रही होती।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
4: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस,
5: एकजे, द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।
6: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations, like today's hits. Classic rock. Coffee house. And more. Stream non-stop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
7: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: यार
3: ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
4: इसमें माइक्रोफाइबर है।
3: माइक्रोफाइबर यानी
4: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
3: हमारे सीमेंट में नहीं है?
4: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
5: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
6: सर हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है,
7: पर मार्केट की समझना बाउंसर जा रही है।
6: आप कैसे कर लेते हो?
8: मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ।
7: म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो,
8: तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का
9: नहीं
7: और म्यूचुअल फंड्स है
9: सही।
10: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
11: JK मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद। JK मसाले, जहां स्वाद वहां JK।

0: वेतन बढ़ रही रहे, रेट बढ़ी जा रहे हैं मार्केट के अंदर हर एक आइटम के।
1: जो बढ़ा है ठीक है, और बढ़ेगा तो कुछ नहीं होगा।
2: ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪਊਗਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਊਗਾ ਜੀ।
3: ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਪੜੇਗਾ ਸਭ ਕੋ।
4: ਕਰੀਬ 2 ਸਾਲ ਕੀ ਲੰਬੇ ਅੰਤਰਾਲ ਕੇ ਬਾਅਦ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਬੜਾ ਝਟਕਾ ਦੇ ਹੀ ਦਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਗਾੜੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੇ ਹੀ ਜੇਬ ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾ ਤਗੜਾ ਝਟਕਾ ਲਗਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਕੇ ਨਏ ਦਾਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿੱਧਾ 3 ਰੁਪਏ ਕਾ ਬੜਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇ ਸਾਥ ਹੀ CNG ਵੀ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
5: बढ़ोतरी तो CNG वाले कर रहा है, गाड़ी वाले कर रहा है, कमाई में तो कमी हो रहा है।
6: इतना हमें डायरेक्टली नहीं पड़ेगा बट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट काफी ज्यादा है। हाँ। वो तो हम सबको ही पता है।
4: ये बढ़ोतरी आम आदमी के घर के बजट का बैलेंस बिगाड़ने का डर बढ़ा रही है, क्योंकि इसके बाद न केवल अपना निजी वाहन चलाना महंगा होगा बल्कि कैब बस समेत पेट्रोल डीजल और CNG से चलने वाले पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी महंगा होने की आशंका है। साफ है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों का ये बढ़ता ग्राफ गाड़ियों तक सीमित नहीं रहेगा, इसका सीधा असर हर उस सामान पर पड़ेगा जिसे आप खाते पीते या इस्तेमाल करते हैं।
7: तो महंगाई तो बढ़ती ही जा रही है, हर तरह से खर्चे बहुत ज्यादा ही होते जा रहे हैं। आम आदमी क्या करे समझ ही नहीं आ रहा है।
4: इस बढ़ोतरी की मुख्य वजह मिडिल ईस्ट का तनाव है। ईरान और अमेरिका के बीच जंग के हालात बनने से पहले क्रूड ऑयल $70 पर था, जो उछलकर $100 प्रति बैरल के पार चला गया। सरकार पहले ये दलील दे रही थी कि पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका में कीमतें 15-20% बढ़ गईं, लेकिन भारत में बोझ नहीं डाला गया। लेकिन तेल कंपनियों को हो रहे भारी भरकम नुकसान के बाद देश में भी तेल के दाम बढ़ना तय था। कंपनियां अभी भी पेट्रोल डीजल पर 25-30 रुपए प्रति लीटर का नुकसान झेल रही हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो अगर ग्लोबल एनर्जी मार्केट में सप्लाई का संकट बना रहा तो आने वाले दिनों में कीमतें और बढ़ सकती हैं, जिससे आम आदमी पर महंगाई की मार और पड़ सकती है। आज तक ब्यूरो।
8: गैस भी महंगा कर दिया, कॉमर्शियल गैस भी महंगा कर दिया, पेट्रोल डीजल भी महंगा कर दिया। तो दरअसल ये सरकार पूरी तरह से देश की जनता को लूटने का काम कर रही है, उसके हित में कोई काम नहीं कर रही है। प्रधानमंत्री जी जो तमाशा करते हैं और उनके नीचे ग्राउंड पे उनका वर्कर उसकी जो रियलिटी देश के सामने रखता है, बस मीडिया इसको सही से दिखाना शुरू कर दे तो मुझे लगता है देश समझ जाए कि सरकार सिर्फ और सिर्फ तमाशे में विश्वास रखती है। उनका मकसद इस क्राइसिस से निपटना नहीं है। क्राइसिस से निपटना होता तो फिर पेट्रोल और डीजल के दाम ना बढ़ाते आप। आपने देश को मझधार में छोड़ा, आप खुद विदेश यात्रा पर निकल गए और दाम आपने सीधे 3 रुपए से ज्यादा बढ़ा दिए।
9: कुल मिलाकर 3 रुपए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए हैं। दुनिया भर में तो बहुत ज्यादा बढ़े हैं। अमेरिका में लगभग 40% बढ़े हैं, UAE में लगभग 40% बढ़े हैं, जो कि पेट्रोल और क्रूड का प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है। इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में, मलेशिया में, म्यांमार में, हर जगह पे लगभग 30-40% दाम बढ़े। हमारे यहाँ तो बहुत मिनिमम प्रेशर डाला सरकार ने, और जैसे ही कुछ राहत मिलेगी तो फिर वापस से हो सकता है सरकार वापस दाम ले।
10: कुछ लोग बोल रहे हैं वार सिचुएशन है, ये तो पूरा वर्ल्ड का सिचुएशन है। तो हम लोग जानते हैं वर्ल्ड सिचुएशन है, लेकिन कोई प्लानिंग नहीं था। दूसरा, 2014 से क्या वार सिचुएशन चल रहा है? 2014 कंपेयर कीजिए प्राइस को 2014, ये भाजपा गवर्नमेंट आने से पहले क्या था, आज क्या है। और दूसरा, स्टेट में ये जो अपोजिशन था,
11: हमारा अंदेशा है कि आज हिंदुस्तान एक भारी आर्थिक संकट से गुजर रहा है, और मैं देश की सरकार से अपील करूंगा कि जो भी सत्य है वो आप देशवासियों को बताइए। ये देशवासी भी उस देश के उतने ही नागरिक हैं जितने कोई सरकार का मंत्री या प्रधानमंत्री। ये बात सब समझ रहे थे कि 5 राज्यों के चुनावों के बाद तेल, पेट्रोल के, डीजल के दाम जो है बढ़ेंगे, और मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में और बढ़ेंगे, और बार बार पेट्रोल डीजल के दाम 2-2, 5-5 रुपए करके आगे बढ़ाए जाएंगे।

0: आधार भोजशाला विवाद में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत। हाईकोर्ट ने माना सरस्वती का मंदिर अलग जमीन की मांग कर सकता है मुस्लिम पक्ष, ओवैसी बोले अयोध्या जैसा फैसला। नीट पेपर लीक कांड का सीबीआई का बड़ा एक्शन, मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी पुणे से गिरफ्तार। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का ऐलान, 21 जून को होगा नीट का री एग्जाम। पीएम मोदी की अपील पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब सोमवार और शुक्रवार को होगी वर्चुअल सुनवाई, कारपूलिंग को तरजीह। कोलकाता में फैक्ट्री पर बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट लगाई अंतरिम रोक, 22 जून को अगली सुनवाई, प्रशासन पुलिस ने किया था साझा एक्शन। भारत और यूएई में तेल गैस समेत कई अहम समझौते, आबूधाबी में पीएम मोदी का शानदार स्वागत, अब नेदरलैंड्स के लिए रवाना है प्रधानमंत्री।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शंखनाद, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। शो की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है। पुणे से ये गिरफ्तारी हुई है। आरोपी पीवी कुलकर्णी लातूर के दयानंद कॉलेज में केमिस्ट्री के रिटायर्ड प्रोफेसर है, जो की एनटीए की ओर से परीक्षा प्रक्रिया के हिस्सा थे। इस शख्स ने पुणे में अपने आवास पर कुछ छात्रों को इकट्ठा करके क्लास ली। इस विशेष कोचिंग क्लास के दौरान उसने छात्रों को प्रश्न, उनके विकल्प और सही उत्तर बोलकर लिखवाए। छात्रों ने अपनी नोटबुक में हाथ से लिखे गए ये प्रश्न नीट परीक्षा के वास्तविक प्रश्न पत्र से पूरी तरीके से मेल खाते हैं। तो एक बड़ी गिरफ्तारी, केमिस्ट्री के रिटायर्ड प्रोफेसर कुलकर्णी गिरफ्तार हो गए हैं। एनटीए की परीक्षा प्रक्रिया का हिस्सा है वो, और ये मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं इस पूरे लीक मामले में। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अरविंद, इन तक कैसे सीबीआई और पुलिस के हाथ पहुंचे?
1: देखिए नेहा, जितनी भी गिरफ्तारियां हुई थी उनसे पूछताछ के बाद ताबड़तोड़ सीबीआई का एक्शन चल रहा था, लेकिन जो बड़ी कामयाबी मिली थी वो मिली थी जब मनीषा वाघमेरे को अरेस्ट किया गया, और उससे पूछताछ के बाद और जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सीज किए गए थे उसके बाद किंगपिन, वन ऑफ द किंगपिन तक पहुंची है सीबीआई की टीम। जो पीवी कुलकर्णी केमिस्ट्री का ये प्रोफेसर है, इसकी गिरफ्तारी है, और ये अभी की अब तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी माना जाएगा, क्योंकि 2024 में भी जो नीट का एग्जाम लीक हुआ था उसमें भी जो छुटभैया एक तरीके से कहें जो पेपर लीक करने वाले जो एक कड़ी थी वहीं तक पहुंची थी, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक किंगपिन और खास तौर से जो एनटीए की एग्जाम की प्रक्रिया का हिस्सा था ये प्रोफेसर, उसको अरेस्ट किया गया है। और जांच में ये पता चला है कि पुणे में मनीषा वाघमारे के साथ मिलकर एक स्पेशल क्लास चलाई गई जिसमें स्टूडेंट आए थे, और उसके बाद उस क्लास में जो सवाल और जवाब लिखवाए गए वही 3 तारीख को पेपर में आए थे। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, जो लीक पेपर था उसमें 35 केमिस्ट्री के सवाल थे, और माफ करिएगा 45 और 45 जो केमिस्ट्री के सवाल थे वो पूरा मैच हुआ था एक्चुअल पेपर से। तो इसलिए पीवी जो कुलकर्णी जो केमिस्ट्री का ये प्रोफेसर है इसे गिरफ्तार किया गया है, और सीबीआई का कहना है कि ये किंगपिन है। और जैसा कि जो शिक्षा मंत्री, उन्होंने भी कहा था कि कड़ी कार्रवाई होगी, और जो सीबीआई की टीम थी जब ये पेपर लीक का मामला आया तो सीधे एनटीए के दफ्तर में पहुंची थी, और कल आज तक नहीं सबसे पहले रिमांड पेपर की कॉपी दिखाई थी जिसमें सीबीआई ने अदालत में दलील दी थी 5 आरोपियों की पुलिस कस्टडी रिमांड लेने के लिए कि जो एनटीए के अंदर या जो अधिकारी हैं उनको गिरफ्तार करना है। और आज ही ये बड़ा खुलासा हुआ है कि एनटीए के एग्जाम
0: बड़ा खुलासा तो हुआ है, लेकिन अरविंद ये भी बताइए क्या यही वो बड़ा नाम है जिसका बार बार पहले जो गिरफ्तारियां हुई जिन लोगों की वो कह रहे थे, या फिर कोई और है बड़ा नाम?
1: देखिए ये एक बड़ा नाम जरूर है, लेकिन और बड़े नाम हो सकते हैं, क्योंकि देखिए जो पेपर है वो और केमिस्ट्री के अलावा और भी जो सब्जेक्ट के पेपर है वो लीक हुए हैं, और इस तरह के बार बार कयास लगाए जा रहे थे। बड़ी गिरफ्तारी हम इसलिए कह रहे हैं नेहा क्योंकि पहले भी नीट का पेपर लीक हुआ था, लेकिन जो पेपर माफिया थे वही पकड़े जाते थे, और उस दौरान कभी ये बात आती थी कि जो ट्रंक है उसको तोड़ करके पेपर लीक हुआ, लेकिन इस बार शक के दायरे में एनटीए और एनटीए की पूरी प्रक्रिया थी। और जो ये पीवी कुलकर्णी गिरफ्तार हुआ है ये किंगपिन बताया जा रहा है, और जो एग्जाम प्रक्रिया है उसका ये हिस्सा था, इसलिए ये जो गिरफ्तारी है वो बड़ी मानी जा रही है। तो पीवी कुलकर्णी को अरेस्ट किया गया है किंगपिन, इसके सीबीआई ने बताया है, और जो खुलासा किया है वो काफी चौंकाने वाला है। साथ ही साथ ये भी बता दूं कि जो लीक पेपर आया था जो गैस पेपर में, ये जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये समझ में आया था कि जो पेपर था गैस पेपर में 45 जो केमिस्ट्री के जो सवाल जवाब थे वो मैच किए थे असली पेपर से, इसलिए ये बड़ा खुलासा है और इसमें बड़ी गिरफ्तारी माना जा रहा है।
0: ठीक है, मुनीश पांडे मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। मुनीश, सीबीआई के आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं? जो एनटीए के डीजी हैं वो तो किसी भी तरीके से मुंह खोलने को तैयार नहीं है, पता नहीं वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कुछ लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पूरे सिस्टम को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या फिर एनटीए को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद सवाल यही बना हुआ है कि क्या ये बड़ा नेक्सस और इससे जुड़े कुछ लोग पिछले साल भी जब नीट हुई थी उसमें कॉमन है, यानी कि उस लीक में भी जुड़े हुए थे, मसलन पीवी कुलकर्णी।
2: जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से एनटीए की जो चीफ है वो आज सुबह कैमरे से बचते हुए नजर आए, सवालों के घेरे में जरूर एनटीए था। और 2024 में नया जब सीबीआई ने इस पूरे मामले की जांच की थी, जब बिहार में पेपर लीक हुआ था, तो सीबीआई के ऊपर और सवाल इसी के लिए खड़े हो रहे थे क्योंकि सीबीआई ने उस समय भी यही कहा था कि हमने किंगपिन को गिरफ्तार किया हुआ है, हमने नेटवर्क को बस्ट किया हुआ है। 44 लोगों को उस मामले में गिरफ्तार किया गया था, 5,500 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की गई थी, लेकिन फिर से पेपर लीक हुआ। तो कहीं ना कहीं सवाल तो ये खड़े हो रहे थे कि क्या सच में सीबीआई के उस सतह तक नहीं पहुंच पा रही है जहां से ये पूरा का पूरा पेपर लीक हो रहा था। एक बार सीबीआई जरूर ये दावा कर रही है इस बार कि उन्होंने जो किंग पिन है यानी कि मुख्य सरगना जो है उसे गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे जो लोग हैं उनका यही कहना है कि क्या यही किंग पिन है या फिर इस मामले में कोई और भी बड़ा शख्स शामिल है। तो अभी भी जो चुनौती है सीबीआई के सामने वो उस तय तक पहुंचने की है जहां से ये साफ हो पाए कि क्या एनटीए का यही वो शख्स है जिसने की पेपर लीक किया हुआ है या कोई और बड़ा शख्स है जो अभी तक सीबीआई के सामने नहीं आया। तो कुल मिलाकर अभी भी नेहा सवाल अभी वहीं पे खड़ा है,
0: ठीक है,
2: क्या ये सच में।
0: दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। वहीं आज की बड़ी खबर मध्यप्रदेश के भोजशाला से, जहां पर इंदौर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा कि भोजशाला की जो संरक्षित धरोहर थी वो वाग देवी सरस्वती का मंदिर है, ना कि कमाल मौला की मस्जिद। कोर्ट ने एसआई एक्ट के प्रावधानों के साथ साथ अयोध्या मामले को भी आधार बनाया और हाईकोर्ट ने इस फैसले के बाद धार में हिंदू गुट की ओर से जश्न मनाया जा रहा है, जबकि कमाल मौला मस्जिद कमेटी के लोग इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कर रहे हैं।

0: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सबूतों, इतिहास के तथ्यों, गवाहों और मौके पर मौजूद हालात को देखते हुए इंदौर के हाईकोर्ट ने ऐलान कर दिया है कि भोजशाला में जिस मंदिर को दशकों से कमाल मौला के मकबरे और मस्जिद के तौर पर बताया जा रहा था, वो मस्जिद नहीं मंदिर ही है।
1: जो यहाँ पे मुस्लिम समाज के लोग गलत ढंग से नमाज अदा करते आए हैं, उस 7 अप्रैल 2003 के ऑर्डर को, उस भाग को कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है। और हमारे जितने आर्गुमेंट थे कोर्ट ने उस बात को एक्सेप्ट किया है। और जो माँ सरस्वती माँ वाघ देवी की आज प्रतिमा ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में रखी हुई है, कोर्ट ने यह भी कहा है सरकार से कि वो उसको कंसिडर करें कि उसको वापस लाया जा सके।
2: पूरी अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग मिली, लेकिन वजह सिर्फ ये है कि एएसआई के तथ्यों को पुख्ता मानकर और उस पे फैसला देना वो कहीं एक हद तक सैटिस्फेक्शन नहीं देता है।
0: इंदौर हाईकोर्ट की 2 जजों की बेंच ने कहा है कि हमने देखा है कि उस जगह पर हिंदू पूजा लगातार होती रही है, हालांकि समय के साथ इसे रेगुलेट किया गया। हमने पाया है कि उस जगह का ऐतिहासिक साहित्य राजा भोज से जुड़े संस्कृत सीखने के सेंटर के तौर पर स्थापित होता है, इससे धार में देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर होने का पता चलता है। इसलिए उस इलाके का धार्मिक चरित्र भोजशाला माना जाता है, जिसमें देवी बाघ देवी सरस्वती का मंदिर है। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में मिले सबूतों के हवाले से इंदौर हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि भोजशाला देवी सरस्वती का मंदिर है, लिहाजा 2003 में जारी एएसआई की ओर से नमाज पढ़ने वाला सर्कुलर रद्द किया जाता है। मंदिर का बचाव और संरक्षण एएसआई के पास रहेगा। मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य धार जिले में मस्जिद बनाने के लिए जमीन देने की अर्जी पर विचार कर सकता है।
3: माँ की मुक्ति और उसके गौरव की पुनर्स्थापना का दिन जो इसका इंतजार किया जा रहा था वो बहुत नजदीक आ गया है।
4: जिन हिंदू कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर संघर्ष किया, लाठी डंडे खाए, आज उन्हें भी ये जीत जो है ये उन्हीं के नाम है।
5: आज पूरा समाज खुश है।
6: होली दिवाली आज हमारे लिए यही है। आज होली भी आज ही है, दिवाली भी आज ही है, सबसे बड़ा दिन है हमारे लिए।
0: 11वीं सदी की वो धरोहर जिसकी शक्ल वक्त के गर्द में ऐसी बदल गई थी कि उसके वजूद को लेकर अदालतों तक सबूतों की लड़ाई लड़नी पड़ी। जिस जमाने में जहां कभी बाघ देवी की आराधना उपासना होती थी, वहां हवन कुंड वजू खाना बन गया था। गर्भगृह में मौलाना बैठते थे, सरस्वती कूप अक्कल का कुआं बन गया था। लेकिन अदालत के इंसाफ के तराजू में जब पत्थरों दरों दीवारों से बोलते सबूत तौले गए तो पता चला कि राजा भोज के जमाने से मंदिर की शक्ल में मौजूद इमारत मुस्लिम आक्रमणकारियों के जमाने में मकबरा और मस्जिद की शक्ल में बदल दी गई थी। हालांकि अदालत में मुस्लिम पक्ष ने दलील दी थी कि खिलजी काल के ऐतिहासिक रिकॉर्ड और उस समय के खातों में धार में किसी भी सरस्वती मंदिर को तोड़ने का जिक्र नहीं है। वकील ने 1935 में धार के पुराने शासक द्वारा जारी किए गए एक ऐलान की वैलिडिटी का भी जिक्र किया, जिसमें मुस्लिम समुदाय को उस जगह पर नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई थी। हालांकि अदालत ने माना कि स्मारक को 1904 में ही धरोहर के रूप में एएसआई ने संरक्षित घोषित कर रखा था। इससे पहले जब मामला अदालत में पहुंचा था तो अदालत ने एएसआई

0: सड़क पे नमाज अदा किया करते थे, तो पुलिस ने जब इन्हें मना किया तो फिर पुलिस के साथ कहीं कहा सुनी हो गई थी और उसके बाद यहाँ पर भारी तादाद में लोग इकट्ठा हो गए थे। लेकिन बाद में पुलिस फोर्स आई, पुलिस के जो अफसर थे मौजूद, वो लोग उन लोगों ने स्थिति को काबू करने के लिए अलग अलग समय पर बातचीत किया और 15 से 20 मिनट के अंदर जो स्थिति है उसे पूरी तरीके से काबू कर लिया गया था। और फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सीआरपीएफ को डिप्लॉय किया गया, सेंट्रल फोर्सेज पश्चिम बंगाल में सड़क के दोनों तरफ सीआरपीएफ को डिप्लॉय रखा गया है ताकि स्थिति किसी तरीके से दोबारा ना बिगड़े।
1: समन्वय अधिकारी इस हालत में किए हैं तो कोई बात नहीं है, हम लोगों को नमाज अदा करना है और जुम्मत है 8 बजे तक नमाज में हमारा कोई बात नहीं है, हम तो 5 बजे तक नमाज पढ़ने वाले मस्जिद में भरना चाहिए और 8 बजे की नमाज के लिए हम लोग लड़ाई नहीं करना चाहिए।
2: नमाज के पढ़ने के लिए तो अंदर से इमाम साहब ऐलान कर दिया, भाई सब मस्जिद में जगह आ जाओ, अगर जरूरत पड़ी दूसरी जमात होगा, दो जमात होगा, हंगामा करने और ये सब करने रोड में पढ़ना बंद कर दो। तब पहली जुमा थोड़ा संभालने में परेशानी हुई, अंदर जुमा से हो जाएगा इंशाल्लाह। अब देखिए सरकार लिया तो उसके हम लोग तायद करेंगे, खत्म पर सरकार ने जो जो फैसला लिया है उसके ऊपर हम लोग अमल करने की कोशिश करेंगे और लोगों को जो हमारे कौम के लोग उसको भी समझाया जाएगा।
3: और बात आज सुबह सुबह देशवासियों की जेब पर पड़े डेंट की, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया गया। साथ ही मुंबई की तर्ज पर दिल्ली में सीएनजी की कीमतों में भी 2 रुपए का इजाफा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल 97 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर हो गया है, डीजल की कीमत 90 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर हो गई है, जिससे लेकर अब विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश में है। 4 मेट्रो शहरों की आज पेट्रोल और डीजल के दाम हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा दाम आप कोलकाता में देख सकते हैं, 108 रुपए 74 पैसे 3 रुपए बढ़ोतरी के बाद।
4: अमृतकाल में आपका स्वागत है और इस अमृतकाल में महंगाई मैन अपना चाबुक चला रहे हैं, मोदी जी आपसे वसूली कर रहे हैं, आपकी जेब पर डाका डाल रहे हैं। इस अमृतकाल में आज की तारीख में देश में पेट्रोल और डीजल के दाम 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए गए हैं। असलियत यह है कि जब आपकी जेब पर डाका डाला जा रहा है, जब आप पर महंगाई का चाबुक चलाया जा रहा है, तब दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जो अपने लोगों को राहत दे रहे हैं। और अब तक आप सब लोग समझ चुके हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी एनर्जी सिक्योरिटी का सरेंडर अमेरिका के सामने कर दिया है। हम किससे कितना तेल खरीदेंगे, उसका हमारे दामों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका फैसला नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार नहीं, अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं।
5: वो आज देश के अंदर जो संकट है वो हमारे जरिए बनाया हुआ संकट नहीं है, वो संकट पूरे दुनिया में जो अमेरिका ईरान इजराइल वॉर के वजह से जो आर्थिक संकट पूरे दुनिया में है उसके अनुपात में यहाँ पे थोड़ा सा दाम बढ़ा है और जनता इसको समझती है। कांग्रेस जिस तरह की भाषा बोल रही है, प्रधानमंत्री के लिए महंगाई मैन कहना, इस तरह के शब्द का उपयोग करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है।
6: प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कही है, ईंधन की आपूर्ति के सप्लाई चेन को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास है। दुनिया के अंदर बड़े बड़े देशों में डीजल पेट्रोल एलपीजी के दाम कई कई गुना बढ़ गए हैं, भारत ने अब तक नियंत्रित करके रखा है। लेकिन हमें विपक्ष के नकारात्मक राजनीति और नकारात्मक नैरेटिव का शिकार नहीं होना है। अगर देश हित में कोई निर्णय लिया जाता है तो हमें प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़ा होना होगा, देश के साथ खड़ा होना होगा। याद रखना, देश से बढ़कर के कोई नहीं, कोई देश से बढ़कर के नहीं हो सकता। जो देश हित में होगा और जो देश का नेतृत्व कहेगा, जो प्रधानमंत्री मोदी जी कहेंगे, हम उनके साथ खड़े होंगे। यह एक संगनाद हर भारतीय के मुंह से निकलना चाहिए।
3: और योगी जी की कैबिनेट में अब पेच फंस गया है। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर दिल्ली दौरे के 24 घंटे के भीतर नए मंत्रियों के विभाग पर अभी तक फैसला ही नहीं हो पाया। आपको याद होगा कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और ये माना जा रहा था कि जल्द पोर्टफोलियो बंटवारा हो सकता है। 10 मई को 6 नए मंत्रियों ने शपथ ली थी। ये कल की तस्वीर आप देख रहे हैं, जब दिल्ली पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह से मुलाकात की। लेकिन अब पोर्टफोलियो को लेकर बात बन नहीं रही है, पोर्टफोलियो को लेकर पेच फंस गया है। यूपी में नए मंत्रियों के मंत्रालय बंटवारे पर अब संशय बन गया है। 10 मई को इन्होंने सभी ने शपथ ली।

0: थी। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। हिमांशु, इस भेंट के बावजूद ये पेज फंस गया, क्या वजह है?
1: देखिए बिल्कुल, क्योंकि ये माना जा रहा है, क्योंकि कल योगी आदित्यनाथ आए, उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और नितिन नवीन से मुलाकात की, और क्योंकि विभागों को कैसे बांटा जाए इसको लेकर मीटिंग होनी थी और संगठनात्मक कई चीज़ों पे बैठक थी, लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी जो है वो अभी तक विभागों का जो है आवंटन यानी कि एलोकेशन नहीं हुआ है, और ये माना जा रहा है कि पब्लिक रिलेशन और PWD और साथ ही साथ ऊर्जा विभाग को लेकर जो है वो पेच फंसा हुआ है, और इसको सुलझाने की कोशिश जो है पार्टी आलाकमान के तरफ से भी की जा रही है, और योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो सलाह दी गई थी, जो एडवाइस आई थी, उन पर भी जो है वो विचार किया जा रहा है।
0: तो कौन कौन से नाम है जिनको लेकर अभी संशय बना हुआ है, फ्रंट रनर्स कौन है दोनों मंत्रालय के लिए?
1: देखिए PWD जो मंत्रालय है वो मुख्यमंत्री के पास है, और उनके साथ साथ जो है पब्लिक रिलेशन का जो डिपार्टमेंट है वो भी मुख्यमंत्री के पास है, और ऊर्जा डिपार्टमेंट जो है वो AK शर्मा के पास है। तो इन तीन मंत्रालयों को लेकर जो है किसको कौन सा विभाग दिया जाए उसको लेकर अभी जो है वो बातचीत चल रही है, और ये मान के चला जा सकता है क्योंकि 6 दिन जो है वो हो चुके हैं मंत्रिमंडल के विस्तार को, और अभी तक पेच फंसा हुआ है, 24 घंटे से ज्यादा हो गया है। योगी आदित्यनाथ ने BJP अध्यक्ष नितिन नवीन और गृह मंत्री से मुलाकात की थी, ये माना जा रहा था कि कल देर रात या आज जो है विभागों का जो है वो एलोकेशन हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं पेच जो है वो फंसा हुआ है।
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। इसी के साथ शंखनाद में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एक्जे द नंबर 1 कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: Morning people wake up for peace and quiet. McDonald's breakfast people, we wake up for the sweet rush of getting that warm, delicious breakfast right before it ends.
1: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
2: Ba-da-ba-ba-ba.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
4: Hot Mics with Billy Bush streaming on TuneIn, your front row seat to the American zeitgeist. Get engaged on sports, politics, entertainment, tech, pop culture, hosted by yours truly. It's funny, it's honest, provocative, unfiltered takes and real talk. No fluff with guests like Megyn Kelly and Dr. Phil, Candace Owens, Jack Osborne, Will Arnett, Charlie Sheen, all engaging personalities who actually say what everyone else is afraid to. On the go, catch the show live or on demand on the TuneIn app. At home and want to listen on your connected device, just say, play Hot Mics with Billy Bush on TuneIn. If you missed the live show or want to catch up, listen on demand with the Hot Mics with Billy Bush podcast, available whenever you want.
5: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's classic rock hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
6: जब अपना कोई मूव किसी को मूव करता है ना यार, फील आ जाती है।
7: भाई तू अपना है, तेरा सफर मुझे भी करना है। तूने प्रूफ कर दिखाया यार, एनीबॉडी कैन ड्रीम।
6: मुझे लगा मैं नहीं, पूरा का पूरा मूवमेंट चल रहा है।
8: ब्रीदेबल फैब्रिक्स, ऑसम कंफर्ट, एफर्टलेस स्टाइल, एडी फ्रॉम द हाउस ऑफ अरविंद।
9: अर्जुन कुछ भी पढ़े मेमोरी में नहीं रहता।
10: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
11: लायन डेट नट बाइट्स।
12: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
13: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
14: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
15: सोच बदलो और बैंक भी।
16: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
17: जीके मैक्स।
18: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
17: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
18: जेके वॉल मैक्स
17: बेस्ट पेंट,
18: जेके मैक्स।
17: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ JK Maxx Paints.
19: JK Maxx Paints. खुशियों के रंग।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले ढूंढ नहीं पाएगा।
3: प्रिया कैसा लगा मेरा स्टंट?
4: विक्रम एक हिंट तो देते।
5: विक्रम
4: हिंट
6: बड़े आराम से।
7: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
8: इसमें माइक्रोफाइबर है।
7: माइक्रोफाइबर यानी
8: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
7: हमारे सीमेंट में नहीं है?
8: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
9: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
10: सर म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे एक सवाल पूछना था।
11: सॉरी सर, मार्केट की बात करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना था।
12: ऐसे सवाल मुझे डिस्टर्ब ही नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड्स की कोई भी बात होना मैं शांति को साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड में आपकी शांति और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस दोनों बनी रहनी चाहिए। अपने लॉन्ग टर्म गोल से फोकस हटाने का
13: नहीं,
12: और म्यूचुअल फंड से सही।
14: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
15: करेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
16: यानी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
17: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
18: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
19: JK मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद। JK मसाले, जहां स्वाद वहां JK।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: Like I said before, we better hold the sins.
2: JK मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है. ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद. JK मसाले, जहां स्वाद वहां JK.
3: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना. कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत. कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो.
4: ये मिट्टी सिर्फ फसल नहीं उगाती, देश का भविष्य भी बनाती है. और इस भविष्य को संभालते हैं ये हाथ, हमारे देश के असली हीरो के हाथ, जिनके हाथ की ताकत है क्रिस्टल के उत्पाद. तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल के उत्पाद. देश का किसान, देश का हीरो.
5: मुख्य समाचार. मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है और धूप में सीधा काम करने को टालिए.
6: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रही है.

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
1: Punjab National Bank, Bharose ka Prateek.
2: समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े. समर कूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल.
0: हिंट, बड़े आराम से.
2: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस.
3: यार
4: ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
5: इसमें माइक्रो फाइबर है.
4: माइक्रो फाइबर यानी
5: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत.
4: हमारे सीमेंट में नहीं है.
5: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है.
6: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़. ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है.
7: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश.
8: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है. 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं.
9: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं.
7: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर.
10: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ.
8: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ. हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा.
7: जहां खबर वहां खबरदार.
0: इन एसोसिएशन विद
11: मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील.
2: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
7: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश.
8: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है. 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं.
9: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं.
7: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर.
10: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ.
8: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ. हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा.
7: जहां खबर वहां खबरदार.
12: गैस भी महंगा कर दिया, कॉमर्शियल गैस भी महंगा कर दिया, पेट्रोल डीजल भी महंगा कर दिया. तो दरअसल ये सरकार पूरी तरह से देश की जनता को लूटने का काम कर रही है, उसके हित में कोई काम नहीं कर रही है. प्रधानमंत्री जी जो तमाशा करते हैं और उनके नीचे ग्राउंड पे उनका वर्कर उसकी जो रियलिटी देश के सामने रखता है, बस मीडिया इसको सही से दिखाना शुरू कर दे तो मुझे लगता है देश समझ जाए कि सरकार सिर्फ और सिर्फ तमाशे में विश्वास रखती है. उनका मकसद इस क्राइसिस से निपटना नहीं है. क्राइसिस से निपटना होता तो फिर पेट्रोल और डीजल के दाम ना बढ़ाते आप. आपने देश को मझधार में छोड़ा, आप खुद विदेश यात्रा पर निकल गए और दाम आपने सीधे 3 रुपए से ज्यादा बढ़ा दिए.
13: कुल मिलाकर 3 रुपए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए. दुनिया भर में तो बहुत ज्यादा बढ़े हैं. अमेरिका में लगभग 44% बढ़े हैं, यूएई में लगभग 40% बढ़े हैं, जो कि पेट्रोल और क्रूड का प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है. इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में, मलेशिया में, म्यांमार में, हर जगह पे लगभग 30-40% दाम बढ़े. हमारे यहाँ तो बहुत मिनिमम प्रेशर डाला सरकार ने, और जैसे ही कुछ राहत मिलेगी तो फिर वापस हो सकता है सरकार वापस दाम ले.

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं विशेष, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड को पुणे से गिरफ्तार कर लिया। इस वक्त की बड़ी खबर यही है, आरोपी पीवी कुलकर्णी लातूर के दयानंद कॉलेज में केमिस्ट्री के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, जो कि एनटीए की ओर से परीक्षा प्रक्रिया के हिस्सा थे। इस शख्स ने पुणे में अपने आवास पर कुछ छात्रों को इकट्ठा करके क्लास ली। इस विशेष कोचिंग क्लास के दौरान उसने छात्रों को प्रश्न, उनके विकल्प और सही उत्तर बोलकर लिखवाए। छात्रों की अपनी नोटबुक में हाथ से लिखे गए ये प्रश्न नीट परीक्षा के वास्तविक प्रश्न पत्र से पूरी तरीके से मेल खाते। बहुत बड़ी गिरफ्तारी नीट पेपर लीक मामले में मानी जा रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। राजस्थान से अपडेट यह है कि मांगीलाल और दिनेश बिवाल के एमबीबीएस कर रहे सभी बच्चे अपने अपने कॉलेज छोड़कर गायब हो गए। पलक जयपुर से सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। प्रगति पंडित नवल किशोर मेडिकल कॉलेज दौसा में पढ़ाई कर रही थी। सोनिया मुंबई और गुंजन बनारस मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही है। विकास बिवाल सवाईमाधोपुर मेडिकल कॉलेज से पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। पिछले साल नीट 2025 में पांचों पास होकर सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे थे। एक ही परिवार के पांच बच्चे हैं, ये कजन्स हैं और इसमें अब ज्यादातर जो है वो लापता हो गए हैं, क्योंकि जैसे ही लीक का खुलासा हुआ इनको पता था कि जिस तरीके से इन्होंने एडमिशन लिया है वो अवैध है, क्योंकि इन्होंने नकल करके परीक्षा पास की थी। इसी बिवाल परिवार की एक और बेटी पलक बिवाल जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज की छात्रा है, लेकिन वो भी दो दिन से मेडिकल कॉलेज नहीं जा रही है। हमारे संवाददाता शरद कुमार ने कॉलेज के एडिशनल प्रिंसिपल से बात की, सुनिए।
5: पलक बिवाल बैच 2025 यूजी स्टूडेंट है और जब बैच 2025 फर्स्ट एमबीबीएस ने एंट्रेंस लिया था तब से ही पलक बिवाल हैं और वो रेगुलर स्टूडेंट हैं वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि वो बहुत छुट्टियां ले रही हैं, रेगुलर स्टूडेंट हैं। पिछले दो दिन से नहीं आ रही, मगर
6: कुछ वजह बताइए नहीं आने
5: की। देखिए, यूजली बच्चे अगर कोई छुट्टी लेते हैं तो उसकी वजह कई बार बताते हैं, कई बार नहीं बताते। तो अभी फिलहाल उसने कोई एप्लीकेशन नहीं दी जिसमें उसने मेंशन किया हो कि मैं इस कारण से छुट्टी ले रही हूँ, बस वो नहीं आ रही दो दिन से।
6: पढ़ाई में कैसी है?
5: पढ़ाई में मैंने, क्योंकि मुझसे पूछा गया पहले भी, तो मैंने इंटरनल मार्क्स उनके इंक्वायर किए थे क्योंकि ऑफिस बंद हो चुके थे तब तक, लेकिन एनाटमी में जो उनका परफॉर्मेंस है वो हल्का सा अबव एवरेज है। आप ये नहीं कह सकते कि पढ़ाई में बिल्कुल बेकार हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे बिल्कुल लेजिमेट एग्जाम्स होते हैं जिसमें थरो इन्विजिलेशन होता है। तो उस हिसाब से पलक एक अच्छी स्टूडेंट है, बहुत अच्छी तो नहीं कह सकते पर हाँ अबव एवरेज है।
4: शरद मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शरद, इन बच्चों को मालूम था कि जांच के तार उन तक पहुंचेंगे, उनसे भी पूछताछ की जाएगी, इसलिए समय रहते गायब हो गए। अब क्या ये फोन सर्विलांस के माध्यम से ट्रेस हो सकते हैं या फिर अब जाहिर तौर पर फोन भी ऑफ हो गए, थोड़ी सी देर हो गई ये लगता है?
6: देखिए, जिस तरह से मांगीलाल ने खुलासा किया है, मुझे लग रहा है कि इन बच्चों को लेकर अब बहुत ज्यादा सीबीआई जो है वो नहीं सोच रही है, क्योंकि पिता ने हमारे सूत्रों के अनुसार कह दिया है कि हमने पेपर लाया था, तो पहले ही जब वो एक्सेप्ट कर रहा है कि हम पेपर लेकर आए थे तो बहुत ज्यादा इसमें गुंजाइश बनती नहीं है कि उनसे क्या जाँच किया जाए। हाँ, ये जरूर है कि उन्हें भनक लग गई थी और जैसे ही भनक लगी कि पिता ने ये खुलासा कर दिया है और भाई विकास गिरफ्तार हो गया है, ये वहां से चले गए हैं, बाकी भी सारे जो जहां जहां थे वहां से चले गए हैं। मगर जिस तरह से कल कोर्ट में, दिल्ली कोर्ट में सीबीआई ने कहा है कि मांगीलाल, ये खैरनार ने कहा कि मांगीलाल का फोन आया था यश को कि उसे पेपर चाहिए, तो इसका मतलब कि ये आपस में कई सालों से जानते हैं और अच्छा नेटवर्क है इनका। ये पहली बार का नेटवर्क नहीं है जिसे तलाश रही है सीबीआई। अब जिस तरह से प्रोफेसर कुलकर्णी का अरेस्ट हुआ है, वो कहा जा रहा है कि लातूर में एक कोचिंग भी चलाते थे, तो एनटीए ने कोचिंग चलाने वाले को पेपर सेटर या फिर परीक्षा का हिस्सा कैसे बनाया, ये एनटीए पर बड़ा सवाल है, जिसकी वजह से सीबीआई जांच करना चाहती थी कि बिना एनटीए के किसी व्यक्ति के जानकारी हुए ये काम हो नहीं सकता है। एनटीए से ही कोई बता सकता है कि फला व्यक्ति पेपर सेट कर रहा है, या फिर एनटीए से ही ये जानकारी मिल सकती है कि इसको हम पेपर सेटर रख लेते हैं तो पेपर लीक करने में आसानी होगी। अब केमिस्ट्री के कहा जा रहा है सीबीआई की तरफ से कि पेपर सेटर पकड़ा गया है, मगर अब तो पूरा का पूरा एनटीए ही घेरे में आ गया कि ऐसे किसी व्यक्ति को एनटीए के परीक्षा का हिस्सा कैसे बनाया जा सकता है जो निजी कोचिंग संचालक है। ये यानी कि पूरी परीक्षा कॉम्प्रोमाइज थी और ये पहले से हो रहा था। धर्मेंद्र प्रधान जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि साइबर अटैक की दुनिया में, साइबर क्राइम की दुनिया में बहुत मुश्किल है। यहाँ जो गौर करने वाली बात है ना, यहाँ कि साइबर की कोई दिक्कत नहीं है, सारा वन टू वन यहाँ से पेपर ट्रांसफर हुआ है, कोचिंग में बैठ कर समझाया गया है, साइबर क्राइम का यूज नहीं हुआ है, पुराने अपने तरीके को ही यूज किए हैं।
4: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और इससे पहले आज शिक्षा मंत्री की तरफ से नीट परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान हो गया। शिक्षा मंत्री पहली बार मीडिया के सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने देश को बताया कि वो कैसे इस पेपर लीक कांड की जांच करवा रहे हैं और आगे ऐसा ना हो उसके लिए क्या कर रहे हैं। लेकिन ये दावे हर साल होते हैं और फिर से पेपर लीक हो जाता है।
2: कमांड चेन में कहीं ना कहीं ब्रीच हुई है, इसको हम स्वीकार करते हैं। गैस पेपर की आड़ पे क्वेश्चंस बाहर गया, सीबीआई गहरा तक जाएगी, किसी को इस बार बख्शा नहीं जाएगा।
7: आखिरकार सरकार ने मान लिया कि इस बार की नीट की परीक्षा के पेपर लीक हुए थे। सरकार ने परीक्षा में बहुत से बदलाव भी किए, लेकिन सवाल बरकरार है कि उन 23 लाख छात्रों का क्या होगा जिन्होंने इस साल परीक्षा दी, उनकी बरसों की मेहनत का क्या होगा। सरकार के पास इन सवालों का कोई संतोषजनक जवाब नहीं है। नीट की परीक्षा अब 21 जून को होगी, छात्रों को फिर से अप्लाई नहीं करना होगा और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं दिया जाएगा। पहले से जमा फीस वापस की जाएगी, नए एडमिट कार्ड 14 जून से जारी किए जाएंगे और छात्र पसंद का परीक्षा सेंटर भी चुन पाएंगे। इसके अलावा दोबारा परीक्षा में 25 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम भी लगेगा।
2: हम नहीं चाहते थे कोई गलत कैंडिडेट एजुकेशन माफियाओं के षड्यंत्र से कोई भी सही छात्र की अधिकार वंचित हो जाए, इसीलिए हम बड़ी जिम्मेवारी के साथ, हमने कहा था हम जीरो टॉलरेंस की अप्रोच में चलते हैं। ये दुर्घटना हुई, इसीलिए हमने पहला हमारे निर्णय हुआ कि हम परीक्षा को इस बार रद्द करते हैं। हमने 12 तारीख को परीक्षा को रद्द किया, 21 जून को री एग्जामिनेशन की डेट घोषणा की है।
7: सरकार भले ही छात्रों को कंपनसेट करने के लिए फीस वापसी भी कर रही हो और ये भी ऐलान कर रही हो कि ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था भी सरकार ही करेगी, लेकिन जिनकी वर्षों की मेहनत बर्बाद हुई है उनका क्या होगा, इसका कोई जवाब नहीं। सरकार ने आज माना कि 7 मई को गड़बड़ी का पता चला और फिर 12 मई को फिर से परीक्षा करवाने का फैसला लिया गया। इससे पहले 3 मई को 23 लाख छात्रों ने परीक्षा दी। 3 मई को नीट यूजी की परीक्षा देश के 512 और विदेश के 14 शहरों में हुई थी। इसके लिए 5400 से ज्यादा एग्जाम सेंटर बनाए गए।
2: 3 मई को एग्जामिनेशन हुई, 7 मई तक एनटीए को एनटीए की ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन सिस्टम पे कहीं से आपत्ति आई, गैस पेपर में ऐसे कुछ प्रश्न आए हैं जो इस बार की क्वेश्चन शीट्स में था। तुरंत ही हम लोगों की वहाँ चर्चा हुई, एनटीए ने और सरकार ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तुरंत उसको प्रारंभिक थोड़ा इंक्वायरी किया, एजेंसियों को दे दिया, भारत सरकार की एजेंसियों को दे दिया। भारत सरकार एजेंसी संबंधित दो तीन राज्यों के साथ जुड़ा हुआ विषय था प्रथम दृष्टिया में, राज्यों की एजेंसियों से संपर्क किया और 12 तारीख तक यानी 8 को सुबह प्रक्रिया एक प्रकार से 7 रात को शुरू हुई, 8 को ही शुरू हुई, 8, 9, 10, 11 तीन चार दिन में जब हमको स्पष्टता हुई, हम कन्फर्म हुए हैं कि इस बार गैस पेपर की आड़ पे क्वेश्चंस बाहर गया है।
7: सरकार ने यह भी फैसला किया है कि अगले साल से नीट की परीक्षा ऑनलाइन होगी ताकि इस तरह की गड़बड़ियों से बचा जा सके। इस पर भी सवाल है कि क्या सरकार के पास एक साथ लाखों छात्रों का एग्जाम करवाने के लिए पर्याप्त संसाधन और टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये अगले साल का सवाल है। इस साल तो सवालों के घेरे में वो एनटीए है जिसे इतना सब कुछ होने के बाद भी शिक्षा मंत्री क्लीन चिट दे रहे हैं।
2: अनेक सुझाव आए हैं, अनेक सुधार की सुझाव है और सुधार में मानता हूं कंटिन्यूअस विषय है। सुधार कोई अल्टीमेट नहीं होती है, सुधार जो हम ओपन माइंड में एनटीए उस विषय में अभी तो एनटीए बहुत योग्य व्यक्ति के हाथ में है, हमारे सचिव की बहुत अनुभव भी उस विषय में है। मैं मानता हूँ हमें एनटीए को सुप्रीम कोर्ट की आदेश कारण एनटीए बनी है। एनटीए हर एक साल 1 करोड़ बच्चों की एग्जामिनेशन कराती है अमूमन। एनटीए और निर्भुल हो, एनटीए में जीरो एरर हो, जीरो यानी जीरो एरर हो, ये हमारी दायित्व है और भारत की व्यवस्था उसको करके रहेगी।
7: सरकार भले ही कितना भी आश्वासन दे लेकिन वो छात्र आशंकित हैं जिन्होंने परीक्षा देनी है। वो सवाल उठा रहे हैं कि इस बात की क्या गारंटी है कि इस बार परीक्षा ठीक से आयोजित होगी और पेपर लीक नहीं होगा।
8: तैयारी करने में पेपर लीक हो जाता है तो मतलब बहुत सी तकलीफ होती है कि हाँ मतलब इतना मेहनत करके बच्चा अपना 100% दिया है तो मतलब कहीं ना कहीं मतलब लगता है इसी की सिस्टम की लापरवाही है और ऐसा मतलब फ्यूचर में ना हो, मतलब ये हम कहना चाहेंगे।
9: तैयारी तो अच्छी थी और सोचा था इस बार हो जाएगा कहीं ना कहीं, पर पेपर कैंसिल होने के बाद ये था कि ठीक है पेपर हुआ है, पर अभी पेपर कैंसिल होने के बाद ये भी है कि टाइम मिला 1 महीने और, 1 महीने थोड़ा सा अच्छे से तैयारी करके नेक्स्ट बार और अच्छा करेंगे, दोबारा ना हो, क्योंकि ये होता है जो बच्चे कुछ बच्चे तो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं।
10: हम यही चाहते हैं कि मतलब इस तरीके की लापरवाही ना की जाए, किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ ना किया जाए कि कोई इतना मतलब दूर दराज से आता है तैयारी करने के लिए और फिर ये दिन देखने को मिलता है।
7: सवाल उन छात्रों का भी है जिन्होंने बरसों से मेहनत की डॉक्टर बनने के लिए लेकिन सिस्टम की नाकामी ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया।
4: सवाल ये है कि ये आरोपी पिछले कितने वक्त से ये सब कुछ कर रहे थे और अब तक ये पकड़े क्यों नहीं गए? ऐसा कैसे हो सकता है कि एक शख्स के अपने परिवार के 5 बच्चे एक साथ MBBS में एडमिशन करवाएं?

0: नीट पेपर लीक केस की जांच में सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। महाराष्ट्र के लातूर से राजस्थान के जयपुर तक सीबीआई की अलग अलग टीमें कड़ियों को जोड़ने में जुटी हैं। बिवाल परिवार सीबीआई के रडार पर है। इस बीच बहुत बड़ा खुलासा हुआ। मांगीलाल और दिनेश पहले भी नीट का पेपर लीक कर आगे बेच चुके हैं। पूछताछ में आरोपियों ने खुद ये बात स्वीकार की। पिछले साल नीट 2025 में बेवाल परिवार के सभी 5 बच्चों को नीट का पेपर परीक्षा से पहले मिल गया था। 2025 में बेवाल परिवार ने 65 लाख में पेपर लिया और आगे बेचा। ये लोग नीट का पेपर महाराष्ट्र नेटवर्क से खरीदते थे और आगे बेचते थे। हरियाणा का यश यादव भी सीकर में रहकर पढ़ता था और इसी दौरान मांगीलाल परिवार के संपर्क में आया। मांगीलाल का बेटा विकास बेवाल भी इस पेपर लीक नेटवर्क की अहम कड़ी है। अब ये बात साफ हो चुकी है कि 2025 में बेवाल परिवार के जिन 5 बच्चों ने नीट क्रैक किया उनके पास पेपर पहले था। मांगीलाल बेवाल की बेटी प्रगति बेवाल दौसा मेडिकल कॉलेज में MBBS कर रही है। पंडित नवल किशोर शर्मा मेडिकल कॉलेज से वो प्रथम वर्ष के साथ छात्रा है, लेकिन पेपर लीक में जब उसके परिवार वाले गिरफ्तार हुए तो प्रगति बेवाल ने कॉलेज जाना छोड़ दिया। कॉलेज प्रशासन ने बताया कि प्रगति बेवाल छुट्टी की एप्लीकेशन देकर चली गई है। बेवाल परिवार के वो टॉपर बच्चे जिन्होंने 2025 में नीट क्रैक किया था वो भी दायरे में है। इस बीच सीबीआई की एक टीम ने जयपुर में बेवाल परिवार के घर पर धावा बोला।
1: नीट पेपर लीक 2026 में गिरफ्तार आरोपी मांगीलाल, दिनेश और विकास के घर सीबीआई की टीम पहुंची है। आप देख सकते हैं किस तरह से घर में पूछताछ हो रही है, जांच हो रही है। यहां आसपास जो इनके घर में गाड़ियां थी उन गाड़ियों की भी तलाशी ली गई है। इसके अलावा भी जो सामान है उन सारे सामान की भी तलाशी ली जा रही है, पूछताछ हो रही है। अब इस तरह से निकल रहे हैं। क्या आप लोगों ने देखा, कुछ पाया यहां? कुछ आप लोगों ने जांच में?
2: विशेष में रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर, दिखते रहिए आज तक।

0: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
1: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry. TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
4: जब अपना कोई मूव किसी को मूव करता है ना यार, फील आ जाती
5: है। भाई, भाई तू अपना है, तेरा सफर मुझे भी करना है। तूने प्रूव कर दिखाया यार, एनीबडी कैन ड्रीम।
4: मुझे लगा मैं नहीं, पूरा का पूरा मूवमेंट चल रहा है।
6: ब्रीदेबल फैब्रिक्स, ऑसम कंफर्ट, एफर्टलेस स्टाइल, एडी फ्रॉम द हाउस ऑफ अरविंद।
7: अर्जुन कुछ भी पढ़े मेमोरी में नहीं रहता।
8: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स बादाम पिस्ता काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
9: लायन डेट नट बाइट्स।
10: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
11: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
12: सोच बदलो और बैंक भी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
2: इसमें माइक्रो फाइबर है।
1: माइक्रो फाइबर यानी
2: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
1: हमारे सीमेंट में नहीं है?
2: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
3: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
4: सर म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे एक सवाल पूछना था।
5: सॉरी सर, मार्केट की बात करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना था।
6: ऐसे सवाल मुझे डिस्टर्ब ही नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड्स की कोई भी बात हो ना, मैं शांति को साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड में आपकी शांति और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस दोनों बनी रहनी चाहिए। तो अपने लॉन्ग टर्म गोल से फोकस हटाने का
7: नहीं,
6: और म्यूचुअल फंड से
7: सही।
8: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
9: The taste of success.
10: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
11: GK Maxx.
12: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
11: GK Maxx. Best putty.
13: JK Wall Maxx.
11: Best paint.
12: JK Maxx.
11: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन most beautiful walls के लिए सिर्फ JK Maxx paints. JK Maxx. JK Maxx paints. खुशियों के रंग.
14: Like I said before, we better hold the sins.
15: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके।
16: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
17: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का स्तर बहुत ही ज्यादा होने वाला है और धूप में सीधा काम करने को टालिए।
18: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रही।
19: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
20: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
21: 15 दिन पहले से पूरे देश में बंट रहा था, NTA को पता नहीं।
19: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
22: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
20: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
19: जहां खबर वहां खबरदार।
23: इन एसोसिएशन विद मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।
24: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: नीट पेपर लीक कांड में सीबीआई का बड़ा एक्शन, मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी पुणे से गिरफ्तार, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का ऐलान, 21 जून को होगा नीट का री एग्जाम। धार भोजशाला विवाद में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत, हाईकोर्ट ने माना सरस्वती का मंदिर अलग जमीन की मांग कर सकता है मुस्लिम पक्ष, ओवैसी बोले अयोध्या जैसा फैसला। यूपी में नए मंत्रियों के शपथ के 6 दिन भी फंसा मंत्रालय बंटवारे पर पेच, सूत्रों के अनुसार पीडब्ल्यूडी, जनसंपर्क और ऊर्जा विभाग पर उलझा मामला, कल दिल्ली में अमित शाह और नितिन नवीन से मिले थे योगी आदित्यनाथ। पीएम मोदी के अपील पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, अब सोमवार और शुक्रवार को होगी वर्चुअल सुनवाई, कार पूलिंग को भी तरजीह। भारत और यूएई में तेल गैस समेत कई अहम समझौते, अबू धाबी से $5 अरब निवेश पर मुहर, अब नेदरलैंड्स के लिए रवाना प्रधानमंत्री मोदी।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.

0: के 8 बज रहे हैं, वक्त है बड़ी खबरों से आपको खबरदार करने का। एक तरफ महंगाई है, दूसरी तरफ ईरान अमेरिका की लड़ाई है, तीसरी तरफ धर्म की खींचतान है, और फिर चौथी तरफ पेपर लीक की खाई। इन सब के बीच खड़ा है देश का आम आदमी, उनका परिवार, बच्चे, जिनसे जुड़ी हर खबर से आज आपको खबरदार करेंगे। सबसे पहले बताएंगे कि सोना, चांदी, दूध, तेल, पेट्रोल, डीजल, गैस के बाद अब क्या महंगा होने का नंबर है। इसके बाद हॉर्मूज बंदी का पक्का इलाज क्या यूएई से लाएंगे प्रधानमंत्री मोदी? अगर हां तो वो इलाज क्या है? भोजशाला, जिस पर कहा जा रहा है कि फैसला आया है अयोध्या वाला, आज की बड़ी खबर, इंदौर हाईकोर्ट ने कह दिया कि वो कमाल मौला मस्जिद नहीं, वाग देवी मंदिर है, तो ओवैसी फिर से सवाल उठाने लगे। और 2025 में भी क्या नीट का पेपर लीक था? इसके साथ ही एक बार की इस बार की नीट लीक का प्रोफेसर कौन है, ये सब आपको बताएंगे। अब सीधे आपकी जेब, आपके किचन, आपके घर, आपकी बचत, आपके बजट की बात। दुनिया में युद्ध संकट का काला धुआं, जिससे इस हफ्ते लगातार प्रधानमंत्री पूरे देश को सतर्क करते आए। उस संकट से निकली महंगाई की सीरीज चलने लगी है। 1 मई को कमर्शियल सिलेंडर महंगा हुआ, 13 मई को सोना महंगा हुआ, 14 मई को दूध के दाम बढ़ गए, आज 15 मई को पेट्रोल 3 रुपए बढ़ गया, डीजल भी 3 रुपए प्रति लीटर महंगा हो चुका है। इसके बाद सीएनजी की कीमत 2 रुपए किलो बढ़ जाती है। इन सबके बीच गुरुवार को थोक महंगाई दर 42 महीने में सबसे ज्यादा हो चुकी है। खाने के तेल की कीमत हर तरह के 2 से 6% तक 2 महीने के भीतर बढ़ चुकी है। अब सबका सवाल है कि महंगाई की इस संकट सीरीज में अगला नंबर क्या होगा, अगली कौन सी चीज है जो महंगी होगी। 48 घंटे में महंगाई की चौतरफा मार, लेकिन कहा जा रहा है कि यह शुरुआत है, आगे और क्या महंगा होगा, क्योंकि पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की महंगाई मतलब 3 तिगाड़ा और इनके आगे आपके बजट का हिसाब बिगाड़ा वाली तस्वीर है। तेल महंगा हुआ है तो खाने पीने की सभी जरूरी चीजें जैसे फल, सब्जी, दूध, साथ ही परिवहन सेवाएं तुरंत महंगी हो जाती हैं। दूध तो पहले ही महंगा हो चुका है, ये सब इसीलिए क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तेल सीएनजी के दाम से बढ़ जाता है। साथ ही ऑटो, टैक्सी, कैब, बस, स्कूल वैन, ऑनलाइन डिलीवरी, घर बनाना, खेती की लागत तक महंगी हो जाती है, जिसका असर फिर धीरे धीरे आपकी जेब तक पहुंचने लगता है। तो क्या कल फिर किसी नई महंगाई की खबर आएगी? जैसे 48 घंटे के भीतर पेट्रोल, सोना, दूध महंगा हो चुका है।
1: महंगाई की फुल मार रहेगी। देखिए,
2: जो सामान अगर दूर से आता तो उसका पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आप 1 रुपया बढ़ाएंगे तो वो 3 रुपए बढ़ाएंगे।
3: आम लोग ज्यादा सफर कर रहे हैं, उससे
4: वेतन बढ़ नहीं रहे, रेट बढ़ी जा रहे हैं,
5: महंगाई की मार तो है, खासकर मिडिल क्लास आदमी पे
6: खर्चे बहुत ज्यादा ही होते जा रहे हैं। आम आदमी क्या करे समझ ही नहीं आ रहा है।
7: हो सकता है मोटरसाइकिल छोड़कर साइकिल पे आ जाए।
0: अब रोज सुबह उठते ही महंगाई की नई खबर आने लगी, वजह ईरान युद्ध है, असर आप तक। शुक्रवार की सुबह पेट्रोल डीजल की महंगाई की खबर के साथ हुई। 4 महानगरों में पेट्रोल डीजल का नया दाम देखें और अपनी जेब का गणित लगाइए, क्योंकि दिल्ली में पेट्रोल 97.77 रुपए प्रति लीटर हो गया, मुंबई में 106 तो कोलकाता में 108 रुपए के पार चला गया, डीजल भी 3-3 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया। जिस जनता को बहुत दिनों से केवल ये सुनने को मिल रहा था कि अब दाम बढ़ने वाला है, तब दाम बढ़ने वाला है, वो मानसिक रूप से क्या इस बढ़ोतरी के लिए तैयार हो गई थी? क्योंकि इजाफा जहां पहले कहा जाता रहा कि ज्यादा होगा, वो अभी 3 रुपए ही बढ़ा।
3: जिस हिसाब से जंग चल रहा है इस वक्त, हालात खराब है इस वक्त, तो बढ़ने की तो उम्मीद थी, लेकिन चलो 3 रुपए तो मेरे ख्याल में 12 रुपए का इम्पैक्ट नहीं पड़ गया। आम लोग ज्यादा सफर कर रहे हैं उससे, तो अगर इतना तो चलेगा तो, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए इसे।
8: मजबूरी है, ये वार चल रही है, उसका असर तो पड़ेगा सबको, तो प्रिकॉशन चाहिए हर आदमी को, प्रिकॉशन ले, थोड़ा कर्व करे हर चीज के लिए।
9: हाँ, हमें पता है, हमारे देश का भी देखना चाहिए कि देश का में जो पेट्रोल और डीजल का हमें यूज थोड़ा कमती करना चाहिए, क्योंकि बाहर तो क्राइसिस हो रहा है, जो बाहर जो वॉर हो रहा है, तो उसके लिए थोड़ा तो हमें ही कंट्रोल में रखना चाहिए। एक्चुअली
10: हम लोग तैयार हैं, मोदी जी के लिए खड़े हैं, ठीक है, और रेट तो अभी और भी बढ़ेंगे, बट ठीक है, मोदी जी ने कुछ सोच रखा होगा।
0: इधर दाम बढ़ा, उधर राहुल गांधी का वार आया।
11: राहुल गांधी ने पोस्ट किया कि गलती मोदी सरकार की, कीमत जनता चुकाएगी, 3 रुपए का झटका आ चुका है, बाकी वसूली किस्तों में की जाएगी।
0: अमृत काल में आपका स्वागत है और इस अमृत काल में महंगाई मैन अपना चाबुक चला रहे हैं, मोदी जी आपसे वसूली कर रहे हैं, आपकी जेब पर डाका डाल रहे हैं। इस अमृत काल में आज की तारीख में देश में पेट्रोल और डीजल के दाम 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए गए हैं। असलियत यह है कि जब आपकी जेब पर डाका डाला जा रहा है, जब आप पर महंगाई का चाबुक चलाया जा रहा है, तब दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जो अपने लोगों को राहत दे रहे हैं।
12: 3 रुपए पे इतना ज्यादा हाइक तो सरकार को कोसने के अलावा कुछ आता है? ये नहीं देखा कि 1700 करोड़ रुपए का रोज नुकसान देके 2.5 महीने का हम लोगों ने कवर दिया है इस देश को, और मात्र 3 रुपए बढ़ा है मिनिमल, जो कि अगर हालात सामान्य हो गए, जिस दिशा में प्रोग्रेस हो रही है तो सामान्य हो जाएगा, लेकिन इनको आदत है देश में अव्यवस्था फैलाने की। पेट्रोल डीजल बढ़ गया, महंगाई की मार हो गई, ये हो गया, अरे पूरा विश्व अफेक्टेड है।
11: अखिलेश यादव ने इसे कार्टून के साथ पोस्ट किया, पीएम की तेल कम खर्च वाली अपील का कार्टून लगाकर लिखा, आगे बढ़ना है तो साइकिल ही विकल्प है।
13: जब पेट्रोल डीजल का दाम न्यूनतम स्तर पर था उस समय आपने बेनिफिट दिया नहीं, डिड नॉट पास ऑन टू द कंज्यूमर्स। जो रशिया से तेल खरीदा गया सस्ते, जिसके लिए इतना बवाल हो, उसका कोई फायदा देश को मिला नहीं, आपके मित्रों को मिला। अभी जो पेट्रोल का एक्सपोर्ट पर एक्साइज ड्यूटी है आपने उसको कट डाउन कर दिया, लेकिन देश के गरीब जनता पर आपने थोप दिया। इस बात को साबित करता है कि आपके जहन में भी कहीं भी देश और कॉमन मैन नहीं रहता है, आपके जहन में वही आपके मित्र रहते हैं जिनके लिए आप काम करते हैं।
14: आज देश के अंदर जो संकट है वो हमारे जरिए बनाया हुआ संकट नहीं है, वो संकट पूरे दुनिया में जो अमेरिका ईरान इजराइल वॉर के वजह से जो आर्थिक संकट पूरे दुनिया में है उसके अनुपात में यहाँ पे थोड़ा सा दाम बढ़ा है और जनता इसको समझती है। कांग्रेस जिस तरह की भाषा बोल रही है, प्रधानमंत्री के लिए महंगाई मैन कहना, इस तरह के शब्द का उपयोग करना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है।
11: अब सवाल है कि क्या 3 रुपए अभी बढ़ा है तो आगे तेल के दाम और बढ़ेंगे? पेट्रोल डीजल सीएनजी का दाम जो बढ़ा है, महंगाई में अब अगला नंबर किसका है? पेट्रोल डीजल सीएनजी के दाम बढ़ने से आप पर इसका कितना असर होगा?
0: अब सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर 3 रुपए की महंगाई जो आज तेल में आई है, ये आगे क्या और बढ़ेगी? अगर हाँ तो कितनी? क्योंकि पूरी दुनिया में युद्ध के 76 दिन बाद भी तनाव खत्म नहीं हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद होने से पूरी दुनिया को एनर्जी शॉक लगा है। इस शॉक के कारण जब कच्चे तेल की कीमत $100 के ऊपर लगातार बनी हुई है, तो इसी कच्चे तेल से पेट्रोल डीजल को बनाने में कितना खर्चा तेल कंपनियों का है और क्या कीमत है, इसका एक मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो पेट्रोल पर दावा है कि अब भी तेल कंपनियों को 12.73 रुपए प्रति लीटर का घाटा आ रहा है, जबकि डीजल पर दावा है कि 13.83 रुपए प्रति लीटर का घाटा अब भी है। अब सवाल है कि अगर यह घाटा पेट्रोल डीजल पर 3 रुपए दाम बढ़ाने के बाद भी है तो क्या भविष्य में तेल कंपनियां अगली किश्त महंगाई की ला सकती हैं?
15: अगर क्रूड ऑयल के दाम ऊपर बनते हैं तो इन ऑयल मार्केटिंग कंपनी जिनके पास 90% शेयर है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, इनकी अंडर रिकवरी जिसको हम कहते हैं वो अंडर रिकवरी होती रहेगी, यानी कि ये घाटे में रहेंगी। एक अनुमान के अनुसार 1000 करोड़ रुपए प्रतिदिन का इनको इस हाइक से पहले घाटा हो रहा था। 3 रुपए वाकई पर्याप्त नहीं है, परंतु मैं समझता हूं सरकार ने ऑयल मार्केटिंग कंपनी से बहुत सी समझदारी से बहुत थोड़ा अमाउंट कंज्यूमर के ऊपर पास ऑन किया है। परंतु अगर लगातार क्रूड ऑयल के दाम अंतरराष्ट्रीय मार्केट में इसी प्रकार ऊपर बने रहे या और ऊपर गए तो ऐसी और भी वृद्धि देखने को मिल सकती है, लोगों को तैयार रहना पड़ेगा।
16: पर चूंकि हम 90% तेल आयात करते हैं तमाम दुनिया के देशों से और कोई भी सस्ता तेल आपको आप देने को राजी नहीं है, इवन रूस से भी अब सस्ता तेल नहीं आ पा रहा है, तो ऐसे में कंपनियां, उनका दावा है कि उनका घाटा बहुत हो रहा है, और घाटे तो हैं उसमें तो कोई, जब तेल की कीमत बढ़ रही है, युद्ध से पहले तेल $72-74 पर बैरल मिलता था, आज आपको $110-112 पर बैरल, बल्कि इंडियन बास्केट की कीमत उससे भी ज्यादा है। अभी 3-1 रुपए बढ़ा है, लेकिन मुझे लगता है आने वाले दिनों में जब मैं अपने हिसाब किताब या कैलकुलेशन करता हूँ तेल के पूरा जो सप्लाई चेन है, तो मुझे लगता है कि अभी तो कीमत और बढ़ेगी।
0: 15 मई को डॉलर के मुकाबले 30 पैसे गिरकर 95 रुपए 94 पैसे के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया है। सारे एक्सपर्ट इस बात का दावा कर रहे हैं कि तेल कंपनियों को अपना घाटा अगर पूरा करना है तो तेल की कीमत बढ़ानी ही पड़ सकती है, और तब इसका क्या आम आदमी की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली 60% चीजों पर असर होगा?
15: देखिए, पेट्रोल तो जो लोग अपने गाड़ी में या बाइक में इस्तेमाल करते हैं उन पे तो सीधा असर होगा ही होगा, परंतु डीजल में खास बात यह है कि डीजल क्योंकि आवाजाही के लिए प्रयोग किया जाता है, इसको मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट जो होती है उसमें प्रयोग किया जाता है, तो इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट, इसको हिंदी में बोले तो हम श्रृंखलाबद्ध तरीके से ये सभी सामान पर असर करता है। खाने पीने का सामान हो, फल हो, सब्जी हो, व्हाइट गुड्स हो, कंज्यूमेबल गुड्स हो, आप जितनी भी जिंदगी में चीजें इस्तेमाल करते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट की जाती है, उन सबका दाम इससे बढ़ता है क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स इस बोझ को लोगों के ऊपर पास ऑन कर देते हैं। तो मैं समझता हूं हमारी होलसेल प्राइस इंडेक्स जो ऑलरेडी 8.3 पर आई है अभी कल ही, वो और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो अपने 12-13 महीने के हाई पर आई 3.48, उसका और ज्यादा ऊपर आने का अनुमान लगता है इस पेट्रोल डीजल की वृद्धि से।
16: जब भी कच्चे तेल की कीमत बढ़ती है या पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ती है तो हमारी जीवन के अंदर 60% जो चीजें प्रयोग करते हैं वो कहीं ना कहीं तेल से आता है, चाहे आपकी दीवारों पे लगा हुआ रंग हो, या घर में प्लास्टिक हो, या आपके हाथ में मोबाइल फोन हो, या आपका टेलीविजन सेट हो, या जमीन में आपके जो टाइल्स लगती हैं चाहे वो हो, यहाँ तक कि खाने की जो दवाइयां होती हैं वो कहीं ना कहीं वो तेल से बनती हैं। तो हमारे 60% तमाम दे रोजाना की जिंदगी में जो चीजें यूज होती हैं, जिसमें आपकी सड़क का टार भी है वगैरह सब शामिल है, तो वो तो कहीं ना कहीं उसी से आती है, तेल से आती है। जब तेल की कीमत बढ़ेगी तो जाहिर है इन सारी चीजों की कीमत भी बढ़ती है, तो मतलब हमारी कुल मिला के जो रोजाना की जिंदगी है वो थोड़ी महंगी हो जाती है।
0: 76 दिन युद्ध के बीच चुके हैं, अब तक सरकार ने खुद ही एक्साइज ड्यूटी घटाकर तेल कंपनियों का घाटा और कीमत बढ़ने से रोकना संभालना चाहा, लेकिन अब कहा जा रहा है कि जो वैश्विक संकट है उसमें यह संभव नहीं। सरकार ये भी कहती है कि 23 फरवरी 2026 से 15 मई 2026 के बीच दुनिया के ज्यादातर देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारत के मुकाबले अधिक इजाफा हुआ है। एक हिसाब हमने निकाला जो कहता है कि अमेरिका में 46-48% तक तेल का दाम पहले बढ़ चुका है, चीन में 25-27%, तो फ्रांस में 22-30% तक इजाफा पेट्रोल डीजल के दाम में हो चुका है। ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा, जापान, हर जगह 10% से लेकर 30% तक तेल की कीमत पहले ही बढ़ाई जा चुकी है। पाकिस्तान में तो कहा गया पेट्रोल की कीमत 60% तक बढ़ाई गई है। बांग्लादेश में भी यही हाल है, बस भारत में अब जाकर करीब 3 रुपए का इजाफा पेट्रोल डीजल के दाम में हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले 10 मई को और फिर 11 मई को हैदराबाद से वडोदरा तक आकर 2 बार देश से अपील की, कहा कि तेल बचाइए क्योंकि ये संकट बड़ा है, बचाएंगे तभी बच पाएंगे। इसके बाद देश भर में तमाम केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्री सब काफिला कम करने लगे, कोई स्कूटर से चलने लगा, कोई मेट्रो से चलने लगा, लेकिन इस बीच एक मंत्री ऐसे भी रहे जिन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की अपील से बड़ा उनका अपना काफिला है, अपना भौकाल है।
17: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें,
18: लेकिन मंत्री जी को तो लगता है कि नसीहत चूल्हे में जाए, बस भौकाल ना घटने पाए। वो मंत्री जिन्होंने इधर शपथ ली और उधर

0: सुधारने का काम करेंगे।
1: लेकिन प्रधानमंत्री की अपील, मुख्यमंत्री की दलील इन सबसे बड़ी निकली। उत्तर प्रदेश में नए नवेले बनाए गए मंत्री हंसराज विश्वकर्मा की लाल बत्ती पाने वाली वीआईपी फील। मंत्री जी का नाम हंसराज विश्वकर्मा, नए नए राज्य मंत्री बने हैं, जिसकी कामना में न जाने कितनी परिक्रमा काशी से लखनऊ तक की होगी। मंत्री पद मिला तो नया ऑफिस मिला, नया ऑफिस मिला तो नई चकाचक कुर्सियां मिली। मोदी योगी का आभार करके मंत्री हंसराज ने भरोसा दिया, बस अब से हर समस्या का समाधान करूंगा।
2: उत्तर प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री आदरणीय योगीनाथ जी और वाराणसी के सांसद देश के सबसे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। निश्चित तौर पर इतना से अच्छा कोशिश करूंगा कि इस कार्यालय से जितने लोगों का कहीं भी कोई किसी प्रकार का उनको समस्या हो तो समस्या का बकायदे जो है उसका समाधान किया जाए।
1: लखनऊ से समाधान की बात करके मंत्री हंसराज विश्वकर्मा का काफिला वाराणसी पहुंचा। तब तक प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की अपीलें हवा हो चुकी थी। दर्जनों गाड़ियां लेकर मंत्री का काफिला पहुंचता है, लंबा जाम लगा मिलता है। हद तब हो जाती है जब बुलडोजर तक लाकर नए नए मंत्री पद पर विराजे हंसराज विश्वकर्मा पर समर्थक फूल बरसा देते हैं। ऐसा जाम काशी की सड़कों पर लगा जिसमें अपना काफिला लगाकर तो तेल मंत्री और उनके समर्थक फूंकते ही रहे। आम आदमी जो प्रधानमंत्री की सलाह सुनकर कारपूल करके या दोपहिया वाहन से निकला होगा उसका भी तेल फूकवा दिया, जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद महंगाई की आग की तपिश महसूस कर रहा है।
3: जेब पे बोझ तो पहले से ही है, देख रहे हैं भरी दोपहरी में हम लोग परेशान है, चल रहे हैं अपना जॉब चला रहे हैं, उसमें और इजाफा लोग कर दिए हैं।
4: महंगाई पे जोर आ रहा है,
5: मुश्किल तो होगा,
6: बजट गड़बड़ाएगा,
7: गड़बड़ाएगा भैया,
8: महंगाई बढ़ेगी।
9: ये जो महंगाई है हम लोग जेब के ऊपर ज्यादा ही पड़ता जा रहा है, क्योंकि हम लोग की सैलरी तो लिमिटेड है।
1: मतलब जनता की जेब महंगाई से जलती रहे और मंत्री हंसराज विश्वकर्मा पीएम की अपील नहीं सुनते तो विपक्ष सवाल उठाता है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने सोशल मीडिया पर डाला कि काशी की सड़कों पर कुछ महीनों के मेहमान मंत्री का अहंकार देखिए, सैकड़ों गाड़ियों का काफिला, धुआं उड़ाती सत्ता की हनक और घंटों जाम में फंसी काशी की जनता। खबरदार करता सवाल समझिए, जब मध्य प्रदेश में पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष सौभाग्य सिंह सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ उज्जैन से भोपाल पहुंचे, पीएम की अपील को मानने से इनकार कर दिया तो उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी हुआ। पाठ्य पुस्तक निगम के दफ्तर जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। क्या अब यूपी में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में ही मोदी की अपील को धुआं करने वाले नए मंत्री हंसराज विश्वकर्मा को पार्टी नोटिस जारी करेगी? क्या इन पर भी कार्रवाई होगी?
10: और अब आपको नीट पेपर लीक मामले में अभी की बड़ी खबर से खबरदार करते हैं। दावा है कि पेपर लीक के मास्टरमाइंड को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई ने पुणे से पीवी कुलकर्णी नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। ये वो शख्स है जो बताया जा रहा है एनटीए की परीक्षा प्रक्रिया का हिस्सा था और अप्रैल के आखिरी हफ्ते में ये दावा है कि लीक पेपर लेकर एक कोचिंग क्लास में लोगों को उसके सवाल सॉल्व करा रहा है। दावा है कि पीवी कुलकर्णी नाम के इस आरोपी ने का जो प्रोफाइल है वो एक केमिस्ट्री लेक्चरर है और खबर ये भी है कि ये कोचिंग चलाता था। तो सवाल है कि फिर एनटीए ने इसे कैसे नीट परीक्षा का हिस्सा बनाया? क्या यही वो शख्स है जो प्रक्रिया तोड़कर पेपर निकाल कर ले गया, या फिर ये भी कुरियर का काम करता है उस नेटवर्क का जिसने देश की पूरी परीक्षा प्रणाली को फेल कर दिया? ध्यान दीजिए एक बात पर, इस बार नीट के पेपर में केमिस्ट्री के भी 45 सवाल उसी गेस्ट पेपर में लीक थे जो 7 राज्यों में बटा था और ये मास्टरमाइंड भी केमिस्ट्री का ही लेक्चरर है। हमारे साथ हमारे 3 संवाददाता इस समय जुड़ रहे हैं क्योंकि इस पूरे मामले को समझने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि ये लीक सामने आया राजस्थान से, जहां पर हमारे संवाददाता शरद कुमार हमारे साथ हैं, दिव्येश पुणे से हमारे साथ हैं क्योंकि जब तार जाकर जुड़े तो वहीं पर जुड़े, और अरविंद ओझा जो कि ये पूरी जांच इस समय सीबीआई की तरफ से हो रही है। तो अरविंद, सबसे पहले ये बताइए कि जिसकी गिरफ्तारी हुई है, अभी तक हम ये देख रहे थे एक बड़े आदमी का जिक्र आया और जितने लोग अभी तक पकड़े गए थे वो सब कोई बड़ा आदमी का प्रोफाइल था नहीं, क्या हम समझे कि ये जो अब जो आरोपी पीवी कुलकर्णी को बताया जा रहा है ये मुख्य आरोपी मेन आदमी हो सकता है या अभी भी उस व्यक्ति की तलाश है?
11: देखिए, अभी भी उस व्यक्ति की तलाश जरूर है क्योंकि जो केमिस्ट्री के

0: के जो 45 नंबर, जैसा हमने दर्शकों को बताया, 45 जो वो जो आंसर थे वो मैच कर गए थे। सीबीआई की टीम ने जो पीवी कुलकर्णी है इसको किंग पिन बताया है, और जो सबसे बड़ी बात है, जो आधिकारिक तौर पर जो बयान सीबीआई ने दिया है उसमें ये साफ बताया है कि जो पेपर है वो एक्सेस किया था पीवी कुलकर्णी ने, और उसके बाद फिर एक स्पेशल क्लास चलाई गई, कोचिंग क्लास मनीषा वाघमेरे की मदद से, और उसके बाद फिर वहां पर जो आंसर बताए गए वही लीक पेपर, वो जो पेपर आए थे एक्चुअल पेपर उसमें थे, तो सीधे सीधे जो किंग पिन है वो बताया गया है। लेकिन जो बड़ी बात ये भी है इसमें कि जो एंट्री है अब उस पर सीधे सीधे सवाल उठ गया, क्योंकि सीबीआई ने बताया है कि जो कुलकर्णी है वो जो एनटीए की एग्जाम प्रक्रिया है उसका हिस्सा है। तो कल जिस तरह से अदालत में जब 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, सीबीआई ने उनको पेश किया था अदालत में, बताया था कि दरअसल पुलिस कस्टडी रिमांड की इसलिए जरूरत है क्योंकि ये जांच करना है सीबीआई को कि एनटीए के वो कौन अधिकारी है या वो कौन ऑफिसर है जो इस लीक में शामिल है, और उसके ठीक एक दिन बाद पीवी कुलकर्णी की गिरफ्तारी होती है, किंग पिन बताया जाता है, और जो सबसे बड़ी बात है कि जो एनटीए की एग्जाम प्रोसेस है उसका ये हिस्सा है। तो सीधे सीधे जो एनटीए की जो एग्जाम प्रक्रिया है उस पर भी सवाल खड़े होते हैं।
1: दिवेश, चूंकि गिरफ्तारी पुणे से हुई है इसीलिए वहां पर हम समझना चाहते हैं कि किस तरीके से एनटीए से जुड़ाव, इस प्रक्रिया से जुड़ाव, और साथ में कोचिंग इंस्टीट्यूट भी।
2: जी आपको बता दें कि पीवी कुलकर्णी एक रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, ये केमिस्ट्री पढ़ाते थे दयानंद कॉलेज लातूर में, उसके बाद वो रिटायर हो गए थे। रिटायरमेंट के बाद वो प्राइवेट कोचिंग क्लास चलाते थे। एनटीए ने उन्हें अपनी पेपर सेट करने की प्रक्रिया का हिस्सा कैसे बनाया, इस पर एक बड़ा सवाल उठता है कि पेपर सेट करने के लिए एक रिटायर्ड प्रोफेसर को लाया जाता है। ठीक है, यहां तक सब कुछ ठीक है, पर आप वो प्रोफेसर जो प्राइवेट कोचिंग क्लासेस ले रहा है, वो नीट के एस्पिरेंट्स को कोचिंग दे रहा है, उसको आप कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं, उसको किस तरीके से इन्वॉल्व किया गया? लातूर में ये कोचिंग क्लास लेते थे, पुणे जाकर कोचिंग क्लास लेते थे, लातूर और पुणे दोनों ही जगह कोचिंग क्लास लेते थे, और सीबीआई के मुताबिक मनीषा वाघमारे के साथ मिलकर इन्होंने आखिरी हफ्ते, अप्रैल के आखिरी हफ्ते में, मैंने मई 3 तारीख को नीट की परीक्षा हुई है और अप्रैल के आखिरी हफ्ते में इन्होंने बच्चों की कोचिंग ली है, जहां पर जो सवाल सेट हुए 600 मार्क्स के सवाल, जो सवाल सेट हुए उन्हीं सवाल उन्हें स्टूडेंट्स को बताए, एस्पिरेंट्स को बताए, और उसके बाद उन सवालों के जवाब भी डिक्टेट किए जिनको बच्चों ने नोट डाउन किया है, और उन्हीं सवालों का जवाब उन्होंने परीक्षा पे जाकर दिया। बच्चे तो खुश हो गए कि ठीक है, हमें जिस बात की प्रिपरेशन की गई थी वो मैच हो गए हैं सवाल। पर यहां पर पूरा नेटवर्क सामने आता है, मनीषा वाघमारे से पीवी कुलकर्णी के संबंध, मनीषा वाघमारे के संबंध धनंजय लोखंडे से, धनंजय लोखंडे का संबंध शुभम खैरनार से, शुभम खैरनार ने यश यादव को पेपर दिया और यश यादव ने राजस्थान की बिवल परिवार को पेपर दिया। ये है पूरा नेटवर्क जो अभी तक सामने आया है। आगे जाकर और कितने लोग जुड़ेंगे वो पता नहीं, पर अभी तक जो मेन किंग पिन है वो पीवी कुलकर्णी सामने आ रहे हैं, क्योंकि वो एनटीए के द्वारा पेपर सेट करने तक का, उन्होंने पेपर सेट करने के बाद,
1: हालांकि अगर वाकई जो बातें आप लोग कह रहे हैं सही है कि अगर किंग पिन भी कहा जाए तो इसमें एनटीए के किरदार को भी खंगालना होगा कि आखिर कैसे इस तरह की चीज हुई कि जो कोचिंग सेंटर चला रहे हैं उनको पेपर सेट करने की जिम्मेदारी दी जा रही है। शरद, चूंकि सारी चीजें निकली राजस्थान से हैं और वो परिवार, बिवाल परिवार जिसके साथ 2025 का भी एक मामला जुड़ जाता है कि उस समय सबसे ज्यादा बच्चे वहां के उनके क्वालिफाई कर गए नीट परीक्षा में, वहां पर जांच इस समय किस स्थिति में?
3: देखिए श्वेता, ये जांच जो है पूरी एसओजी ने 4-5 दिनों में कर सीबीआई को दे दिया था। सीबीआई ने जांच लेते ही एक घंटे के अंदर जो प्रेस विज्ञप्ति जारी किया उसमें उन्होंने एनटीए पर सवाल उठाए थे और अगले दिन एनटीए पर छापा मारा था। कहीं न कहीं एनटीए से ये पेपर लीक हो रहा था ऐसा मानना था एसओजी का, और इसीलिए ये जाना जा रहा था कि ये तो सारे कुरियर हैं, चाहे राजस्थान के दिनेश हो या फिर महाराष्ट्र वाले हों। अब बड़ा सवाल यही है कि कौन सा व्यक्ति है जो कोचिंग संचालक को पेपर सेटर बनाया, या फिर पेपर सेटर होने की जानकारी बाकी लोगों को दिया कि यही व्यक्ति है, ये तो चलिए केमिस्ट्री के 45 के 45 सवाल बनाए, फिजिक्स केमिस्ट्री जियोलॉजी बॉटनी सभी के 45 45 सवाल ही आते हैं नीट में, और ये 45 के 45 के चले इंचार्ज हो गए केमिस्ट्री के, जियोलॉजी और बॉटनी के 45 45 वाले कहाँ हैं? क्या वो भी किसी कोचिंग के हिस्सा हैं? इसलिए मास्टरमाइंड क्या कोई और है? कितना पैसा इन्होंने कमाया है या फिर कोई और नेटवर्क है जो पैसा कमा रहा है? जो कह रहा है बिवाल परिवार कि हम पहले भी ये आउट कर चुके हैं, तो साफ साफ उसने कहा है, सीबीआई ने दिल्ली वाले कोर्ट में भी ये कहा है कि ये पहले से जानकार हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, ये नेटवर्क पुराना है, ये तो उसका भाई दिनेश जो बीजेपी से छुटभैया नेता था वो लालच में पड़ गया, और उसका बेटा ऋषि लालच में पड़ गया, जो सेट पैटर्न था नेटवर्क का उससे डेविएट हुए और पकड़े गए, वरना ये तो एक फुल प्रूफ धंधा चल ही रहा था। अब वही बड़ा सवाल है, जैसे कि धर्मेंद्र प्रधान को भी क्या एनटीए गुमराह कर रहा है? धर्मेंद्र प्रधान आए, सबसे ज्यादा फोकस रहा उनको साइबर क्राइम का जमाना एक चैलेंज है, यहां तो ट्रेडिशनल मेथड से पेपर आउट हो रहे हैं, कोचिंग में सॉल्व कराए जा रहे हैं, कुरियर नेटवर्क से आगे भेजा जा रहा है, ये साइबर क्राइम के आड़ में क्या एनटीए कुछ बचाना चाह रहा है? मुझे लग रहा है कि एनटीए की सफाई अब जरूरी है, 24 हो गया, 25 हो गया, 26 हो गया, ये आउटसोर्सिंग का जो खेल है वो भी एक बड़ा चैलेंज है एनटीए के लिए।
1: कोई बड़ा प्रशिक्षण दिया जाता है, कहा जाता है बैक टू बेसिक्स, आप अगर बुनियादी सवालों को हल कर लेंगे तो आप उस पूरे सब्जेक्ट को समझ जाएंगे। मुझे लगता है शरद आपकी ये बात, आपकी ये सलाह बहुत जरूरी है कि उन बुनियादी सवालों को अगर सुलझा लिया जाए कि किस तरीके से उस पारंपरिक तरीके से एक पूरे लीक को अंजाम दिया जा रहा था, तो आने वाले सालों में भी, आने वाली परीक्षाओं में भी बहुत मदद हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद ओझा, शरद कुमार और दिवेश सिंह इस पूरी जानकारी के लिए। सवाल इस पूरे नेटवर्क को तोड़ने का है, जो बहुत जरूरी है, जरूरी इसीलिए क्योंकि केवल 2024 या 2026 यानी इस साल ही नहीं बल्कि पिछले साल भी नीट का पेपर लीक होने का दावा हो रहा है। दावा करने वाले इसी साल के आरोपी,
4: तो आदमी को पकड़ लेना, बिना वो बताए पकड़ लेना। मेरा बेटा बेटा दिया नीट का पर लिया गया, इतने मार्क्स नहीं आए और किसी ने पसा दिया है, किसी की शादी से अच्छी ना चाहिए ना चाहिए।
5: क्या 2024 और 2026 की तरह 2025 में भी नीट का पेपर देश में लीक हुआ था? इस साल नीट पेपर लीक के बाद फिर से परीक्षा की नई तारीख 21 जून का ऐलान होने के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं। सीधा सवाल होता है, क्या 2025 में भी नीट का पेपर लीक हो गया था?
6: पेपर लीक के आरोपियों ने कहा है कि पिछले साल भी पेपर आउट था।
7: मैं कम से कम अफवाह में हम ना जाए, कोई विषय में हम अफवाह में ना जाए, हम सब जिम्मेदार हैं, आप सब राष्ट्रीय मीडिया हो, आप सबकी दायित्व है।
5: लेकिन अगर 2025 का पेपर लीक नहीं हुआ तो फिर पिछले साल इसी परीक्षा को पास करके सवाई माधोपुर मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे विकास बिवाल को सीबीआई ने क्यों पकड़ा है? 2025 में अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो फिर पिछले साल नीट परीक्षा पास करके दौसा के मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने वाली प्रगति बिवाल गायब क्यों है? 2025 में अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो फिर नीट परीक्षा पिछले साल पास करके जयपुर के सवाई मानसिंह कॉलेज में पढ़ने वाली पलक बिवाल गायब क्यों हो गई? 2025 में पेपर लीक नहीं हुआ तो फिर मुंबई के मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने वाली सानिया बिवाल अचानक क्यों छिपने लगी? 2025 में अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो फिर नीट पिछले साल पास करके बीएचयू मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने वाली गुंजन बिवाल कहां गायब हो गई है? पेपर लगातार लीक नहीं हो रहा है तो फिर इस बार नीट का पेपर लीक कराने का अब तक का सबसे बड़ा आरोपी दिनेश बिवाल का बेटा ऋषि बिवाल कहां गायब है? देश के 4 मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेकर पिछले साल से पढ़ रहे एक ही राजस्थान के बिवाल परिवार के 4 बेटे बेटियों की इस वक्त की फरारी सबसे बड़ा सस्पेंस बन चुकी है। इस सवाल को जन्म देती है, क्या 2025 का नीट का पेपर भी लीक हो गया था?
8: क्या नीट 2025 में संदेह के घेरे में था? कि
7: नहीं, तो नहीं नहीं
8: सर, इसलिए सवाल ये पूछा मैंने।
7: देखो मैं असम्पशन पे कोई उत्तर नहीं दूंगा, एजेंसियां काम कर रही है उनको करने दो।
5: देश के शिक्षा मंत्री जो इसी साल के नीट पेपर लीक की सीबीआई जांच करवा रहे हैं और छात्र छात्राओं को भरोसा देते हैं कि आगे गड़बड़ी नहीं होने देंगे, वो पिछले साल किसी भी तरह के पेपर लीक के दावे को खारिज करते हैं। लेकिन शंका, दावा, आरोप सब इसलिए क्योंकि इस बार पेपर लीक कराने वाले बिवाल ब्रदर यानी दिनेश और मांगीलाल इनके जो 5 बच्चे पिछली बार नीट क्लियर करके टॉप में गिने जाने वाले सरकारी कॉलेज में दाखिला लेते हैं, उन सब की माँ और परिवार वाले कहते हैं कि हर साल पेपर लीक होता आ रहा था।
4: इतना दिन से पेपर लीक हो रहा है, आज दुश्मन बन रहा है, कई साल दो बच्चा पेपर दिया जाए, दो बच्चा पेपर देर के नहीं, किस पेपर में भी
9: 2024 में भी लीक होगा।
4: बेटो चले मारो ऋषि,
9: कई बार हलवा कोरे
4: मारो बेटो, पहली बार नीट को पेपर दियो जा, नीट का पेपर में पहली बार नहीं कोई मारा बेटा को पसा बगल आग रहा है, खेगा मैं दिन
3: खेंगे। आपकी बेटी भी दिया थे?
4: मेरे बेटा दिया है मेरा नीट का पेपर, उसके
3: इस बार बेटा दिया है ना?
4: हाँ मेरा बेटा पेपर दिया नीट का, पर मेरे बेटे के इतने मार्क्स नहीं आए और किसी ने पसा दिया मेरे आदमी को।
3: बेटी भी किसी बार दिया है?
9: किसी ने फसा
4: दिया है हमारे बच्चों ने पिछली बार, 3-4 बच्चों ने।
9: किसी की शादी से
4: किसी की शादी, सारा उनको छोड़ रहा हूँ, पाचा पड़ गया सारा, इतना
3: सूत्रों के अनुसार बांगीलाल बिवाल ने एसओजी से पूछताछ के दौरान कहा था कि वो पिछले साल भी नीट का पेपर लेकर आया था और अपने परिवार के सभी 5 बच्चों को दिया था। ऐसे में जांच एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती है कि इस पुराने नेटवर्क को खंगाला जाए। अब तक राजस्थान में जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं वो एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानते हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा से गिरफ्तार लोग भी पहले से एक दूसरे के साथ संपर्क में थे और पुराने नेटवर्क में काम कर रहे थे।
5: जो परिवार कहता है कि पहले भी पेपर लीक होता है, उसी परिवार से पिछले साल एक साथ 5-5 बच्चे जो नीट पास करते हैं, उनकी शिक्षा का रिकॉर्ड इस स्तर का नहीं मिला है कि वो नीट में इतना नंबर पा जाए कि टॉप के सरकारी कॉलेज में दाखिला भी मिल जाए। इससे पहले 2 उदाहरण से समझ लीजिए, आगे हम और विस्तार से बताएंगे। विकास बिवाल 2025 की नीट परीक्षा पास करके सवाई माधोपुर मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने वाला आरोपी मांगीलाल बिवाल का बेटा 12वीं में केवल 55% नंबर पाया था, और जिस बेटे के लिए इस बार दिनेश बिवाल ने पेपर लीक कराया वो तो 12वीं की परीक्षा में ग्रेस मार्क से पास हुआ, केवल 50% नंबर लेकर आया। इस बार जिस बेटे के लिए नीट पेपर राजस्थान में दिनेश बिवाल ने लीक कराया है, ये उसकी 12वीं की मार्कशीट है जो कहती है कि हिंदी में 32 नंबर पाकर ग्रेस मार्क लेके किसी तरह पास होने वाला वो बेटा फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 51, 58, 62 नंबर ला पाया था। ऐसे बच्चों के लिए पेपर लीक कराने वाला परिवार जो कहता है कि पिछले साल भी पेपर लीक हुआ, क्या उसके पूरे नेटवर्क को भविष्य के लिए CBI खत्म कर पाएगी?
3: इस पूरे नेटवर्क का मुखिया कौन है इसके बारे में नीचे के कुरियर नेटवर्क को पता नहीं है। अब CBI के सामने बड़ी चुनौती है कि ये पता लगाए कि कहां से ये पेपर निकल रहा है और इसके एंड यूजर और बेनिफिशियरी कौन कौन है और कितने बड़े पैमाने पर ये पेपर बिक रहा है। कोचिंग के पूरे रैकेट को भी खंगाला जा रहा है। कैमरामैन सलमा के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक।
1: पिछले साल जो बिवाल परिवार के 5 बेटा बेटी नीट क्लियर किए हैं, इनकी पढ़ाई का रिकॉर्ड देखिए। गिरफ्तार मांगीलाल बिवाल के बेटे विकास को पिछले साल यानी 2025 की नीट परीक्षा पास करके सवाई माधोपुर मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला था। ये 12वीं में 55% नंबर पाया। नीट 2024 में ये 270 नंबर केवल पाया था, लेकिन पिछले साल दावा है कि लीक पेपर से दाखिला ले लिया। मांगीलाल बिवाल की बेटी प्रगति को पिछले साल दौसा मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला, 12वीं में 91% नंबर मिले थे और नीट 2024 में 332 नंबर ही ला पाई थी। तीसरा भाई जो जीवित नहीं, उस घनश्याम बिवाल की बेटी पलक बिवाल को SMS मेडिकल कॉलेज में नीट निकालकर एडमिशन मिला, 12वीं में 89% नंबर मिले थे और नीट 2024 में 512 नंबर ला पाई थी। दूसरी बेटी सानिया बिवाल को मुंबई मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला, 12वीं में 89% नंबर मिले थे और नीट 2024 में 360 नंबर ही ला पाई थी। और गिरफ्तार दिनेश बिवाल की बेटी गुंजन को BHU मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला था, ये 12वीं में 70% नंबर पाई थी और नीट 2024 में 355 नंबर ला पाई थी। लेकिन अगले साल ये सारे बच्चे नीट निकाल लेते हैं, जरूरी है कि जांच का दायरा फैलाया जाए। गैस और तेल के संकट के बीच आज PM मोदी UAE पहुंचे, जहां उन्होंने UAE के साथ LPG सप्लाई को लेकर समझौता किया। PM जब UAE की वायु सीमा में पहुंचे तो उन्हें UAE के F-16 लड़ाकू विमानों ने एस्कॉर्ट किया। इस वक्त PM का UAE जाना अपने आप में बहुत अहम माना जा रहा है कि 1.5 घंटे के इस दौरे से भारत और UAE पहले से और करीब आएंगे। दोनों देशों के रिश्ते समुंदर से ज्यादा गहरे होंगे। हॉर्मूज बंद करके ईरान यूएई पर हमले कर रहा है। हॉर्मूज के दाम पर ईरान अमेरिका और खाड़ी देशों को ब्लैकमेल कर रहा है। यूएई ने इसका इलाज खोज निकाला है। इसी के तहत यूएई ने ओपेक से निकलने का फैसला किया और अब वो एक पाइपलाइन पर काम कर रहा है। भारत को लेकर भी खबर है कि वो समुद्र के अंदर तेल और गैस की सप्लाई के पाइपलाइन बिछाने जा रहा है, जिसके पूरे होने पर हॉर्मूज की टेंशन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। हॉर्मूज पर निर्भरता में काफी कमी आएगी। ऐसे में भारत यूएई से जितना चाहे उतना तेल आयात कर सकेगा। इसकी एक वजह यूएई का ओपेक और ओपेक प्लस से निकलना है, जिसके बाद यूएई के ऊपर कोटा उत्पादन की कोई सीमा नहीं होगी।

0: 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी का यह 8वां यूएई दौरा है। यूएई पर ईरान के हमलों के बीच प्रधानमंत्री का वहां जाना और यूएई एयरफोर्स के F-16 फाइटर जेट्स का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमान को एस्कॉर्ट करना न सिर्फ इस रिश्ते की अहमियत को बताता है बल्कि 5 देशों के दौरे में सबसे पहले यूएई जाना इस बात की घोषणा है कि भारत यूएई के साथ था, है और रहेगा।
1: यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया है ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। ब्रदर, इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और विजडम का परिचय दिखाया है यह बहुत ही सराहनीय है।
0: अबुधाबी पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का गार्ड ऑफ ऑनर से स्वागत किया गया। लेकिन सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी के यूएई के 1.5 घंटे के दौरे से भारत को क्या मिला? वे इतने कम वक्त के लिए यूएई क्यों गए? भारत और यूएई किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जो भविष्य में हॉर्मूज का पक्का इलाज साबित होगा? इन सवालों का जवाब प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच हुए अहम समझौते से मिलता है जिसके केंद्र में भारत की ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित करना है।
1: ब्रदर, हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को निरंतर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जनवरी में आपकी भारत यात्रा के दौरान हमने आपस से सहयोग को क्वालिटेटिवली अपग्रेड करने पर सहमति जताई। इतने कम समय में भी हमने सभी विषयों में उल्लेखनीय प्रगति की।
0: भारत और यूएई के बीच स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व समझौता हुआ है जो सबसे महत्वपूर्ण है। इससे भारत में ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी, तेल भंडार मजबूत होंगे और एलपीजी एलएनजी की स्टोरेज में मदद मिलेगी। एलपीजी सप्लाई को लेकर हुए समझौते से एलपीजी की सप्लाई मजबूत होगी। स्ट्रेटजिक डिफेंस पार्टनरशिप समझौते से दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग, तकनीक साझा करने और सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। गुजरात के वाडनार पोर्ट में शिप रिपेयर क्लस्टर बनाने की सहमति से शिपिंग और तटीय ढांचा मजबूत होगा, मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा यूएई ने भारत में $5 बिलियन निवेश करने का फैसला लिया है। तो सिर्फ 1.5 घंटे के यूएई दौरे में नरेंद्र मोदी ने भविष्य में किसी भी ऊर्जा संकट से निपटने की तैयारियों को पुख्ता करने वाले समझौते किए। आगे कभी भारत की ऊर्जा जरूरतें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने से प्रभावित ना हो, इसके लिए भारत सरकार की बड़ी तैयारी करने को लेकर एक रिपोर्ट आई है जिसका निचोड़ ये है कि ओमान से भारत तक समुद्र के नीचे एक गैस पाइपलाइन बनाई जाएगी। भारत और ओमान के बीच प्रस्तावित मिडिल ईस्ट इंडिया डीप वाटर पाइपलाइन 2000 किलोमीटर लंबी होगी। इसके जरिए गैस ओमान से सीधे भारत में गुजरात के तट तक पहुंचेगी। इससे भारत को रोजाना करीब 31 मिलियन क्यूबिक मीटर नेचुरल गैस डिलीवर होगी। ये पाइपलाइन देश में डिमांड को पूरी करने में मदद कर सकती है। इस पर 40,000 करोड़ रुपए खर्च आने का अनुमान है और इसे पूरा करने में 5 से 7 साल लग सकते हैं। बड़ी बात यह है कि यूएई ने अपनी तेल कंपनियों को पश्चिम पूर्व पाइपलाइन परियोजना का काम जल्द से जल्द पूरा करने का आदेश दिया है ताकि 2027 तक गुजरात की निर्यात क्षमता को बढ़ाया जा सके। यूएई ने हाल ही में दुनिया के बड़े तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक को छोड़ने का ऐलान किया है। यूएई ने 2027 तक अपना क्रूड ऑयल उत्पादन बढ़ाकर 50 लाख बैरल प्रतिदिन करने की योजना बनाई है। मतलब यूएई अपने यहाँ से गैस और तेल निकालने की क्षमता को डबल कर रहा है। वहीं भारत की तरफ से इस गैस तेल को हॉर्मूज बाईपास करके लाने के प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है ताकि भविष्य में अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद करे तो भारत में गैस तेल की कमी ना हो। मतलब दोनों देशों के बीच संकट के समय में भविष्य को सुरक्षित करने पर काम हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके भारत यूएई रिश्तों को मजबूत और भरोसेमंद बताया। उन्होंने कहा कि भारत और यूएई की दोस्ती बहुत मजबूत है। नरेंद्र मोदी ने बताया कि दोनों देश बेहतर भविष्य के निर्माण के लक्ष्य के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। यूएई से भारत अपनी जरूरत का 40% एलपीजी गैस आयात करता है, जिसके आने वाले दिनों में न सिर्फ बढ़ने बल्कि बिना किसी रुकावट के पहुंचना सुरक्षित होगा।
2: अब आपको आज की दो बड़ी खबर भी बताते हैं। पहली खबर है धार के भोजशाला से जुड़ी। इस मामले में आज इंदौर हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। अदालत ने कहा कि भोजशाला एक हिंदू मंदिर है। अदालत ने हिंदुओं के पूजा के अधिकार को मानते हुए उनके पक्ष में फैसला सुनाया। दूसरी खबर पश्चिम बंगाल से जुड़ी है, जहां सड़क पर जुमे की नमाज करने वालों को प्रशासन ने हटा दिया। जिस भोजशाला को विद्या की काशी कहा जाता था, उस भोजशाला को एमपी हाईकोर्ट ने प्राचीन संस्कृत अध्ययन केंद्र और सरस्वती मंदिर मानते हुए हिंदू पक्ष के समर्थन में फैसला सुनाया। एएसआई की रिपोर्ट में यह सिद्ध हो गया था कि भोजशाला मंदिर और शिक्षा का बड़ा केंद्र था, जिसे 11वीं सदी में राजा भोज के समय बनवाया गया था, जो सरस्वती सदन के रूप में प्रसिद्ध था, जहां वेद, संस्कृत, व्याकरण, दर्शन और प्राकृत भाषाओं की शिक्षा दी जाती थी।
3: जो बरसों से किया जा रहा संघर्ष था, मां की मुक्ति और उसके गौरव की पुनर्स्थापना का दिन जो इसका इंतजार किया जा रहा था, वो बहुत नजदीक आ गया है। आज इस भोजशाला को, जो कि वास्तव में सरस्वती का मंदिर था, उसको कानूनी रूप से मां का मंदिर घोषित हुआ है। ये बहुत ही हर्ष की बात है और हिंदू समाज आज प्रफुल्लित है। आज वो दिल से खुश है कि वर्षों का उसके मेहनत का परिणाम आज सबके सामने आया है।
4: भोजशाला के इस मंदिर में अब सिर्फ मंगलवार को ही पूजा नहीं होगी, हिंदू पक्ष यहाँ रोज पूजा कर पाएगा। अदालत ने माना है कि ये एक मंदिर है, न कि कमाल मौला मस्जिद। इंदौर हाई कोर्ट का ये आदेश हिंदू पक्ष के उन लोगों की जिंदगी का सबसे बड़ा पल है, जो वर्षों से इसे लेकर संघर्ष करते रहे।
5: कैसा फैसले को देखते हो और अब कब आप लोग प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रहे हो?
6: बहुत बहुत अच्छा फैसला है। न्यायमूर्ति जो है, उनने बहुत अच्छा फैसला दिया, उनका स्वागत करते हैं हम बहुत बहुत। और कई वर्षों के बाद हमारे कई बुजुर्गों ने इस भोजशाला के लिए प्राण दिए हैं, उनका बहुत प्राण इसमें लगे हैं। हमारे ऐसी युवा पीढ़ी जो आज भोजशाला परिसर में खड़ी,
5: आप क्या करेंगे? आप
6: अब यहाँ पर भोजशाला में बहुत ही वाग देवी बहुत जल्द आएगी और विराजमान होगी।
7: यह एक ऐतिहासिक फैसला जो आज उच्च न्यायालय के द्वारा मिला है, ये हिंदू समाज के लिए एक बहुत ही बड़ी जीत है।
4: दशकों से हिंदू पक्ष भोजशाला को मंदिर बताता रहा, इसके लिए उन्होंने 1995 में पहली बार कानूनी लड़ाई शुरू की और अब जाकर जीत हुई। इंदौर हाईकोर्ट ने एएसआई के सर्वे, ऐतिहासिक तथ्यों, गवाहों और परिसर के मौजूद हालात को देखते हुए अपना फैसला सुनाया। ऐलान किया कि भोजशाला में जिस मंदिर को दशकों से कमाल मौला के मकबरे और मस्जिद के तौर पर बताया जाता रहा, वो मस्जिद नहीं बल्कि सरस्वती मंदिर है।
8: वो जो भोजशाला है वहाँ नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, वो राजा भोज का मंदिर है। एक चीज, मुस्लिम चाहे तो एक आवेदन कर सकते हैं राज्य सरकार को, तो राज्य सरकार उनको जगह दे सकती है मस्जिद के लिए। एक चीज स्पष्ट हो गई। दूसरी चीज, एएसआई के अधीन ये संपत्ति दी है, एएसआई चाहे तो उसको रेगुलर रूप से हिंदुओं को दे दे, वहाँ की जो व्यवस्था है वो एएसआई को दी है।
4: साल 1995 में दोनों पक्षों के बीच मामूली विवाद के बाद प्रशासन ने भोजशाला में मंगलवार को पूजा और शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत दी, जिसके बाद ये मामला अदालत में लड़ा जाता रहा। इंदौर हाईकोर्ट के दो जजों की बेंच ने इस विवाद पर फैसला सुनाते हुए कहा, हमने देखा है कि उस जगह पर हिंदू पूजा लगातार होती रही है। हमने पाया है कि उस जगह का ऐतिहासिक साहित्य राजा भोज से जुड़े संस्कृत सीखने के केंद्र के तौर पर इसे स्थापित करता है। इससे धार्मिक देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर होने का पता चलता है, इसलिए उस इलाके का धार्मिक चरित्र भोजशाला माना जाता है, जिसमें देवी वाग देवी सरस्वती का मंदिर है।
8: पूरे कमाल मौला जो भोजशाला परिसर है
9: बाहर का, जो इधर कमाल मौला
8: नहीं, उसके लिए कुछ नहीं कहा गया, वो तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर में नहीं था।
9: कोर्ट ने मौलक कमालुद्दीन को ये कहा है कि वो अल्टरनेट लैंड के लिए सरकार को प्रत्यावेदन दे सकते हैं और सरकार उसको कंसिडर करती है। मतलब मूल बात यह है कि इस पूरे परिसर को जो हमारी मांग थी, हमारे हर एक आर्गुमेंट को कोर्ट ने माना है और इसके स्वरूप को एक हिंदू मंदिर का परिसर घोषित किया।
4: अदालत ने अपने आदेश में ASI सर्वे रिपोर्ट से मिले सबूतों का हवाला दिया, जिसमें ये बात भी कही गई कि कमाल मौला मस्जिद को बनाने में बोधशाला के प्राचीन अवशेषों का इस्तेमाल किया गया।
10: कि जो ASI है, जो पूरा भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण है, उसकी रिपोर्ट से अन्य साक्ष्य जो रखे गए, जो हमारे द्वारा ऐतिहासिक साक्ष्य रखे गए और राम मंदिर जजमेंट के समय जो दोनों ही धर्मों के जो कानूनी पहलू रखे गए कि हिंदू लॉ के हिसाब से एक बार जो मंदिर स्थापित हो जाता है वो हमेशा मंदिर रहता है और मुस्लिम लॉ के हिसाब से भी किसी कब्जा करी हुई जगह पे एक वैलिड मस्जिद नहीं बनाया जा सकता, इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए माननीय न्यायालय ने तय करा कि ये जो जगह है, ये जो मंदिर है, ये बोधशाला एक सरस्वती माँ का मंदिर है।
2: रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप रहिए खबरदार।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: Where the software engineer meets the cool UI/UX designer, meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
3: AU करेंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
4: सोच बदलो और बैंक भी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: सर हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है,
3: पर मार्केट की समझना बाउंसर जा रही है।
2: आप कैसे कर लेते हो?
4: मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ।
5: म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो, तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का
6: नहीं
5: और म्यूचुअल फंड्स है
6: सही।
7: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
8: जब अपना कोई मूव किसी को मूव करता है ना यार, फील आ जाती
9: है। अरे भाई भाई तू अपना है, तेरा सफर मुझे भी करना है। तूने प्रूफ कर दिखाया यार, anybody can dream।
8: मुझे लगा मैं नहीं, पूरा का पूरा मूवमेंट चल रहा है।
10: ब्रीदेबल फैब्रिक्स, ऑसम कंफर्ट, एफर्टलेस स्टाइल, AD फ्रॉम द हाउस ऑफ अरविंद।
11: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
12: इसमें माइक्रो फाइबर है।
11: माइक्रो फाइबर यानी
12: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत,
11: हमारे सीमेंट में नहीं है,
12: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
13: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
11: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
12: इसमें माइक्रो फाइबर है।
11: माइक्रो फाइबर यानी
12: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत,
11: हमारे सीमेंट में नहीं है,
12: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
13: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
14: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले, ढूंढ नहीं पाएगा।
15: प्रिया कैसा लगा मेरा स्टंट?
16: विक्रम एक हिंट तो देते।
17: विक्रम
16: हिंट
15: बड़े आराम से।
18: ओह नो, बहुत बोर लग रहा है।
19: Take a date, not bites.
20: No added sugar, preservative के बिना। Dates, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया Lion Dates Nut Bites.
19: Lion Date Nut Bites.
21: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
22: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
23: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
24: डायरेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
25: लाइक आई सेड बिफोर, वी बेटर होल्ड दिस इन।
26: JK मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद। JK मसाले, जहां स्वाद वहां JK।
27: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
28: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions. Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.
29: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn. You can stream all the podcasts you already love right on TuneIn. Available on your smartphone, on your tablet, and even on your connected devices. There's so much to explore, like mind-blowing facts about your world.
30: So they were disallowed from speaking their language.
29: In-depth conversations with A-list celebrities.
31: No, I was ready to go. You know, after I wanted to fulfill my contract.
29: True crime podcasts you just can't stop listening to.
32: Others escape justice to live and die in infamy.
0: These
29: individuals. Plus the news and sports content you crave in podcast form.
1: Couldn't run in a straight line very quickly and didn't have much of an arm. His arm is stronger now.
29: So whether you want to save your go-to shows for later by subscribing and listening offline, or you want to discover a whole slate of new podcasts to be obsessed with, TuneIn is your destination. True crime, sports, lifestyle, culture, news, and so much more. TuneIn is Podcast Central. Hear them all here.
2: Feel the good vibes with Roots Reggae. TuneIn is bringing positivity to your ears with the best reggae hits. Stir it up with Bob Marley, Jimmy Cliff, Protégé, and much more. Let Roots Reggae lift your spirits and fill your ears with rhythms and beats of the best. Just search Roots Reggae or tell your device to play Roots Reggae on TuneIn.
3: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer, to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
2: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
3: इसमें माइक्रोफाइबर है.
2: माइक्रोफाइबर यानी
3: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत.
2: हमारे सीमेंट में नहीं है.
3: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है.
4: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़. ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है.
5: ओह नो, बहुत बोर लग रहा है.
6: Take a date, not bites.
7: No added sugar, preservative के बिना. Dates, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया. Lion Dates Nut Bites.
6: Lion Date Nut Bites.
8: JK मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है. ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद. JK मसाले, जहां स्वाद वहां JK.
9: ये मिट्टी सिर्फ फसल नहीं उगाती, देश का भविष्य भी बनाती है. और इस भविष्य को संभालते हैं ये हाथ, हमारे देश के असली हीरो के हाथ, जिनके हाथ की ताकत है क्रिस्टल के उत्पाद. तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल के उत्पाद. देश का किसान, देश का हीरो.
10: और वही कहाँ गए थे घूमने?
9: जीके मैक्स.
11: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
9: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
11: जेके वॉल मैक्स
9: बेस्ट पेंट,
11: जेके मैक्स.
9: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स. जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग.
12: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना. कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत. कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो.
13: केंट से पानी होता है 100% प्योर.
14: केंट आरो प्योरिटी दिखाता भी है.
13: केंट देता है सबसे शुद्ध पानी.
15: मुख्य समाचार. मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है और धूप में सीधा काम करने को टालिए.
16: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रही.

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: तो खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आगे देखिए ब्लैक एंड व्हाइट अंजना के साथ और हरदम रहिए खबरदार।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि क्या देश में तेल की कीमतें आपका पसीना छुड़ाने वाली हैं और 3 रुपए महंगा हुआ ये तेल देश में कितनी महंगाई बढ़ाने वाला है। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है बल्कि आपकी रसोई, आपका बजट, इन सब पर सीधा हमला है। इसलिए आपको महंगाई के नए दौर के लिए कमर कस लेनी चाहिए। तेल महंगा यानी भाड़ा महंगा मतलब सामान की कीमतें महंगी, इसके साथ ही आपका आना जाना महंगा। आज सरकार युद्ध की वजह से सप्लाई चेन, कच्चे तेल की कीमतों का की बात कह रही है, लेकिन आम आदमी महंगाई को लेकर डरा हुआ है। इसके बाद आपको बताएंगे कि जब देश में नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद और ईदगाह है तो फिर सड़क पर नमाज पढ़ने की जिद क्यों। पश्चिम बंगाल की नई सरकार ने सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी तो कुछ लोग इसके विरोध में उतर आए, जबकि अदालतें बार बार कह चुकी हैं कि सड़क पर नमाज कोई मौलिक अधिकार नहीं है। लेकिन वोट बैंक की पॉलिटिक्स, तुष्टिकरण की राजनीति ने लोगों के दिमाग में यह बिठा दिया है कि उनकी परंपराएं देश के कानून से ऊपर हैं। इसके साथ ही आपको मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बारे में बताएंगे, जहां भोजशाला में मस्जिद मंदिर के विवाद का अंत करते हुए कोर्ट ने इसे मंदिर माना है। अब यहां मुस्लिमों को नमाज पढ़ने का अधिकार नहीं मिलेगा, हालांकि वो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। और आखिर में आपको बताएंगे कि क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाइना के दौरे को लेकर सफेद झूठ बोल रहे हैं। ट्रंप अपनी चीन यात्रा को बड़ी कामयाबी बता रहे हैं, लेकिन हकीकत इसके उलट नजर आती है। ईरान से लेकर ताइवान के मुद्दे तक उनके दावों की पोल खुद उनके विदेश मंत्री मार्को रूबियो खोल रहे हैं। यही नहीं, बीजिंग में शी जिनपिंग की फाइल में ताक झांक करते ट्रंप का एक वीडियो भी अब वायरल है, जिससे उनकी भारी किरकिरी हो रही है। लेकिन आज सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि भारत हिंदू मुसलमान की राजनीति से चलेगा या भारत संविधान और कानून के हिसाब से चलेगा। एक तरफ पश्चिम बंगाल है, जहां मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सड़कों पर खुले में नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी है, जिसका खूब विरोध भी हो रहा है। पश्चिम बंगाल के मुस्लिम ये कह रहे हैं कि जब पहले उन्हें सड़कों पर नमाज पढ़ने से नहीं रोका गया तो अब बीजेपी की नई सरकार ऐसा क्यों कर रही है। दूसरी तरफ है कर्नाटक, जहां कांग्रेस की सरकार ने स्कूल कॉलेजेस में निर्धारित यूनिफॉर्म के साथ छात्रों को हिजाब, जनेऊ, पगड़ी, शिवमाला और रुद्राक्ष पहनने की अनुमति दी है। कर्नाटक सरकार ने पिछली बीजेपी सरकार के उस आदेश को रद्द किया है जिसमें मुस्लिम छात्राओं के स्कूलों में हिजाब पहनने पर रोक लगाई गई। अब इन दोनों फैसलों को बराबर रख कर देखिए और ये समझने की कोशिश कीजिए कि बंगाल और कर्नाटक में अंतर क्या है। हकीकत में इन दोनों राज्यों में कोई अंतर नहीं है। अगर सड़कों पर नमाज पढ़ने से रोकने को कांग्रेस बीजेपी की सांप्रदायिक राजनीति मानती है तो वही कांग्रेस अपने राज्य में मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने की इजाजत दे देती है। और इस पूरी राजनीति में लॉ ऑफ द लैंड, यानी लॉ ऑफ द लैंड अपना मतलब खो देता है। लॉ ऑफ द लैंड का मतलब क्या होता है कि देश ना तो धर्म के हिसाब से चलेगा, ना जाति के हिसाब से चलेगा, ना भीड़ के हिसाब से चलेगा, ना नेताओं के हिसाब से चलेगा, सिर्फ कानून के हिसाब से चलेगा। लेकिन सोचिए, वोट बैंक की राजनीति में ये लॉ ऑफ द लैंड दिखता कहां है। अलग अलग मामलों में कई निचली अदालतें, 6 राज्यों के हाईकोर्ट्स और यहां तक कि इस देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट भी ये कह चुका है कि सड़क पर नमाज पढ़ने को धार्मिक आजादी का मौलिक अधिकार नहीं माना जा सकता। अब कानून के हिसाब से हमारी सरकारों को ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए थी जिसमें नमाज में भी कोई खलल ना ही पड़े और कानून का भी पालन हो, लेकिन क्या हमारी सरकारों ने ऐसा किया? पिछले 15 सालों से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार थी। उनकी सरकार का यह कर्तव्य था कि वो अपने वोट बैंक की चिंता ना करें, कानून का पालन करा दे। मुसलमानों को यह समझाया जाता कि सड़कों पर नमाज पढ़ना कानून के अनुकूल नहीं है और सरकार उनके लिए कानून के हिसाब से व्यवस्था बनाएगी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मुसलमानों को सालों साल सड़कों पर बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी कानूनी दखल के नमाज पढ़ने की खुली छूट दी और इसका नतीजा यह हुआ कि आज जब बंगाल में सरकार बदल चुकी है और बीजेपी की नई सरकार कानून के मुताबिक लोगों को सड़कों पर नमाज पढ़ने से रोक रही है तो बहुत सारे मुस्लिम ये कह रहे हैं कि उनसे उनका हक छीना जा रहा है, जो उनका अधिकार है ही नहीं। वो उनका हक उन्हें बता दिया गया है। ये सोच सिर्फ इसलिए बनी क्योंकि पिछली सभी सरकारें वोट बैंक के लिए इस पर मौन रही। आज अब कोलकाता में पुलिस की तरफ से ये कहा गया कि कानून अन सड़कों पर बिना अनुमति धार्मिक गतिविधि या नमाज पढ़ना गलत है और पुलिस इसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, तो बड़ी संख्या में मुसलमान हंगामा करने लगे। इनमें कई मुसलमानों ने धार्मिक नारे लगाए, कुछ लोगों ने पुलिस को पीछे धकेलने की कोशिश भी की। विवाद इतना बढ़ गया कि जुमे की नमाज पढ़ने गए लोग ये कहने लगे कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की मनमर्जी नहीं चलेगी, सड़क पर नमाज को कोई रोक नहीं सकता। आप पहले इन तस्वीरों को देखिए और फिर हम आपको बताएंगे कि गलती इन लोगों की नहीं है, गलती उस वोट बैंक पॉलिटिक्स की है जो धर्म को कानून से बड़ा बना देती है। अब इन तमाम मुसलमानों को लगता है कि सड़कों पर नमाज पढ़ना इनका संवैधानिक अधिकार है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारा कानून, हमारा संविधान, हमारी अदालतें यही कहती हैं कि बिना अनुमति सार्वजनिक जगहों पर धार्मिक गतिविधि मान्य नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी ये लोग इसलिए इसे अपना अधिकार मानते हैं क्योंकि अब तक इन्हें कभी भी ऐसा करने से रोका नहीं गया, कानून का हवाला इनके सामने रखा ही नहीं गया। आप फरवरी 2026 के इस वीडियो को देखिए, जब कोलकाता में इन्हीं सड़कों पर नमाज के लिए एक मुख्य सड़क को बंद तक कर दिया गया था और इसके कारण बहुत सारे लोगों को घंटों जाम में फंस कर रहना पड़ा, और ये वीडियो उस वक्त शुभेंदु अधिकारी ने ही शेयर किया था। अब अगर पहले पश्चिम बंगाल में सरकारें मुसलमानों को सड़कों पर नमाज पढ़ने से नहीं रोकती थी और आज अगर उन्हें रोका जा रहा है, तो इन लोगों का ये कहना स्वाभाविक है कि अगर ये गलत था तो पहले क्यों नहीं रोका, और अगर पहले नहीं रोका तो आज क्यों रोका जा रहा है। यानी यहां गलती सरकारों की है जो वोट के चक्कर में कानून को मुट्ठी भर एक तरह से अपनी मुट्ठी में ले लेते हैं और कानून को छुट्टी पर भेज देते हैं, जबकि दुनिया के ज्यादातर देशों में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जिस सऊदी अरब में मक्का और मदीना है जहां इस्लाम धर्म की नींव रखी गई, वहां सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर खुले में नमाज पढ़ना प्रतिबंधित है। यूएई मुस्लिम देश है, वहां भी सड़कों पर, फुटपाथ पर, सार्वजनिक जगहों पर आप नमाज नहीं पढ़ सकते, गैर कानूनी है, इलीगल। और अगर इसके बाद भी कोई ऐसा करता है तो उस पर 1,000 दिरहम यानी 26,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। यूएई में, एक मुस्लिम देश में अगर आप सार्वजनिक जगह पर नमाज पढ़ते हैं तो 26,000 का जुर्माना लग सकता है। हर साल हमारे देश के हजारों मुसलमान यूएई के दुबई और अबूधाबी जैसे शहर घूमने जाते हैं, लेकिन वो वहां कभी भी सड़कों पर नमाज पढ़ने की जिद नहीं करते, वहां के कानून का पालन करते हैं। लेकिन हमारे देश भारत में जब इन्हीं कानूनों का हवाला देकर सड़कों पर नमाज पढ़ने से रोका जाता है तो लोग सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि भारत में मुसलमान खतरे में है। हाल ही में आपने देखा होगा कि हमारे देश में कई मुसलमानों ने ईरान के समर्थन में रैलियां निकाली, इसके लिए बाकायदा चंदा इकट्ठा किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस ईरान का हमारे देश में समर्थन किया जाता है, वहां भी सड़कों और फुटपाथ पर खुले में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। इसके अलावा फ्रांस, कनाडा, अमेरिका, इटली, जर्मनी, जापान, चाइना, दक्षिण कोरिया, बिना अनुमति सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, और वहां अगर ऐसा कोई करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, यानी लॉ ऑफ द लैंड का पालन किया जाता है, बस इतना है। यानी सबको यही बताया जाता है कि उन्हें कानून के हिसाब से चलना होगा, और वहां कानून कानून होता है, ये किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं माना जाता है और ना ही किसी भी राजनीतिक पार्टी की वोट बैंक पॉलिटिक्स की जेब में रहता है। लेकिन हमारे देश में कानून को सभी सरकारें अपनी सुविधा अपने वोट बैंक के हिसाब से लागू करती हैं, इसीलिए आपको अलग अलग दिख रहा है, बंगाल में अलग हो रहा है, कर्नाटक में अलग हो रहा है। इसके कारण बहुत सारे लोगों को लगने लगता है कि सड़क पर नमाज पढ़ना गलत नहीं है, उनका अधिकार है।
1: समन्वय अधिकारी इस हालत में किए तो कोई बात नहीं है, हम लोग तो नमाज अदा करना है।
2: अब देखिए, सरकार लिया तो उसके हम लोग तायद करेंगे, खत्म। सरकार ने जो जो फैसला लिया है उसके ऊपर हम लोग अमल करने की कोशिश करेंगे, और लोगों को जो हमारे कौम के लोग उसको भी समझाया जाएगा।
3: बहुत सारे दिनों से यहाँ पे रिलीजियस प्रैक्टिस, चाहे जो भी धर्म का हो, मुसलमान रोड पे नमाज पढ़ते थे, हमारे हिंदू भाई पिंडाल लगाते और पूजा करते थे, सब लोग रोड पे ही इस तरह से करते थे। अभी गवर्नमेंट रिफॉर्म हुआ है, नई गवर्नमेंट आई है, नई गवर्नमेंट आने के बाद में उस लॉ को इम्प्लीमेंट कर रही है।
4: मुख्यमंत्री जी बोल दिए हैं कि नियम को फॉलो करना होगा, इसमें कोई धर्म का विषय नहीं है। आप मुस्लिम मत बोलिए, आप हिंदू मत बोलिए, आप सिख के लिए भी वो ये होगा, एक ही आइन है, और क्रिश्चियन के लिए भी एक ही आइन है। रास्ते में पब्लिक को असुविधा करके कोई काम नहीं किया जाएगा।
5: रास्ता है नमाज छोड़ बेना सब
6: मस्जिद है, मदर नमाज पढ़ो, रास्ता है ट्रैफिक अटक गया तो चलो करा जाए।
0: आज एक सवाल ये भी है कि भारत में सड़कों पर नमाज पढ़ने की जिद क्यों की जाती है। इंडोनेशिया के बाद पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदें भारत में ही हैं, जिनकी अनुमानित संख्या है 4 लाख से ज्यादा। अगर अल्पसंख्यक मंत्रालय और वक्फ बोर्ड के आंकड़े भी देखें तब भी हमारे देश में जो रजिस्टर्ड मस्जिद है, रजिस्टर्ड दरगाहों की संख्या 1.5 लाख से ज्यादा है। इनमें सबसे ज्यादा 44,367 मस्जिदें उत्तर प्रदेश में है, जबकि पश्चिम बंगाल में मान्यता प्राप्त मस्जिदों और दरगाहों की संख्या बहुत कम, सिर्फ 1,608 है। पश्चिम बंगाल में बिना रजिस्ट्रेशन वाली मस्जिदें 30,000 से ज्यादा मानी जाती हैं, छोटी मस्जिदों का तो कोई हिसाब नहीं। लेकिन इसके बावजूद बंगाल में सड़कों पर सबसे ज्यादा नमाज पढ़ी जाती है, जिसे अब सरकार रोक रही है। यहां आप इस बात को भी समझिए कि मुसलमान सड़कों पर नमाज पढ़ते क्यों हैं। इस्लाम धर्म में सभी मुसलमानों के 5 फर्ज बताए गए हैं, जिनमें एक फर्ज को सलात यानी नमाज कहते हैं, और इस्लाम धर्म में सभी मुस्लिम्स के लिए दिन में 5 बार नमाज

हर जिले में स्थित भोजशाला का नाम राजा भोज के नाम पर पड़ा है, जो माँ सरस्वती के अनन्य भक्त थे और माँ सरस्वती को हिंदू धर्म में विद्या, बुद्धि और ज्ञान की देवी माना गया है। ऐतिहासिक साक्ष्यों में उल्लेख मिलता है कि साल 1034 में राजा भोज ने यहाँ नालंदा और तक्षशिला जैसे एक संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी, जिसे बाद में भोजशाला के नाम से जाना गया। और क्योंकि इस भोजशाला में माँ सरस्वती की प्रतिमा को स्थापित किया गया था, इसलिए हिंदुओं ने इस स्थान को माँ सरस्वती का पवित्र मंदिर माना। हालांकि जिस तरह बख्तियार खिलजी ने 12वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला कराया और आज उसके रूइंस की तस्वीर आप देख रहे हैं, ठीक उसी तरह साल 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने भारतीय सनातन संस्कृति को मिटाने के लिए भोजशाला को ध्वस्त करा दिया। इसके बाद साल 1401 में दिलावर खान गौरी ने भोजशाला के एक हिस्से में बाकायदा मस्जिद का निर्माण करा दिया, जिसे कमाल मौला मस्जिद कहा गया। जबकि साल 1514 में महमूद शाह खिलजी ने यहां एक और मस्जिद का निर्माण कराया, जिसे लाट मस्जिद कहा गया। इनमें भी कमाल मौला मस्जिद मालवा क्षेत्र के एक सूफी संत कमाल मौला को समर्पित थी, लेकिन अलग अलग दौर के सर्वेक्षण में इस बात को शामिल किया गया कि यह मस्जिद उसी क्षेत्र में बनाई गई जहां प्राचीन मंदिर है और भोजशाला का महाविद्यालय हुआ करता था। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग वहां पर गए हैं, लेकिन जब आप जाएंगे तो आपको साक्षात सब कुछ दिख जाएगा। अब ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 123 साल पुरानी रिपोर्ट भी यही बताती है कि इस मस्जिद के अंदर मौजूद कई प्रतीक, कई शिलालेखों से यही प्रतीत होता है कि यह मस्जिद एक हिंदू मंदिर के स्थल पर बनाई गई और इसमें भी उन अवशेषों का इस्तेमाल बाकायदा किया गया जो मंदिर को तोड़कर इकट्ठा किए गए थे। मंदिर के टूटे हुए अवशेषों से मस्जिद बनाई गई, यह साफ दिखता है। इसी रिपोर्ट में आगे यह भी लिखा था कि मस्जिद के जिस कक्ष में मुसलमानों द्वारा नमाज पढ़ी जाती थी, उस कक्ष के दो स्तंभों पर संस्कृत वर्णमाला और हिंदू प्रतीक पाए थे और कुछ दीवारों पर संस्कृत के बाकायदा वहां शिलालेख मौजूद है, जिससे यह बात साबित होती है कि जिस जगह मस्जिद बनी वहां पहले मंदिर हुआ करता था। और सोचिए, यह रिपोर्ट कोई बीजेपी या मोदी सरकार में नहीं आई है, यह रिपोर्ट 123 साल पुरानी है और अंग्रेजों ने खुद बताया था कि जब उन्होंने भोजशाला में सर्वे के लिए खुदाई करवाई थी, तब वहां उन्हें मां सरस्वती की एक प्रतिमा मिली थी, जिसे वो अपने साथ लंदन ले गए और आज भी यह प्रतिमा लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में रखी गई है। दुर्भाग्य देखिए, और इस प्रतिमा को जैन धर्म से जुड़ा हुआ भी माना जाता है। साल 2024 में भी कोर्ट के आदेश पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भोजशाला का एक सर्वे किया था, जिसमें 31 सिक्के मिले थे और इनमें कई सिक्के 10वीं शताब्दी के, 11वीं शताब्दी के थे, जब भारत में एक भी मस्जिद का निर्माण नहीं हुआ था। और अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इसी आधार पर धार की भोजशाला को मंदिर माना है। यह अयोध्या के बाद दूसरा ऐसा मामला है जिसमें अदालत ने हिंदू पक्ष के दावे को सही माना। और इस फैसले के बाद अब बड़ा सवाल यह है कि क्या बाकी मामले में भी ऐसा फैसला आएगा। मैं आपको जरा बड़ी स्क्रीन पर दिखाना चाहती हूं, जिससे आपको समझ में आएगा। इस वक्त मंदिर मस्जिद से जुड़े कुल 10 ऐसे मामले हैं जो अलग अलग जगहों पर अदालतों में चल रहे हैं। क्या यहां पर भी, अब देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला पहले दिया जाता था, लेकिन जिस तरह से अब फैसले आ रहे हैं तो माना जा रहा है। सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं यूपी, जहां शाही जामा मस्जिद संभल यूपी का, ये जो आप देख रहे हैं यहां पर, तो सबसे पहले तो यही है शाही जामा मस्जिद संभल उत्तर प्रदेश, जहां पर मस्जिद मंदिर विवाद जो है वो कोर्ट में इस वक्त चल रहा है। अब अगला दिखा दीजिए, एक एक करके हम आपको 10 जो अलग अलग इस वक्त विवाद कोर्ट्स में चल रहे हैं वो अपने स्क्रीन पर दिखाना चाहते हैं। इसके बाद है ज्ञानवापी मस्जिद, आपने देखा होगा वहां पर एक वजूखाना था जहां पर पानी था, अब वहां पर एक शिवलिंग मिला है। अब हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि ये शिवलिंग है, वही मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि ये शिवलिंग नहीं है और वहां पर बाकायदा पानी भरा हुआ था और वजू किया जाता था नमाज के पहले। तो ये दूसरा यानी ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी यूपी, ये मामला भी इस वक्त कोर्ट में चल रहा है। अब तीसरा आपको दिखा देते हैं, क्योंकि जब आप देखेंगे तीसरा, तो श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद
मथुरा उत्तर प्रदेश।

0: जो लोग अयोध्या के इतिहास को जानते हैं, जो जानते हैं संघ और जो विश्व हिंदू परिषद है और जो तमाम ऐसे संगठन थे, उनका ये नारा था कि काशी मथुरा अभी बाकी है। तो उस नजरिए से अगर आप देखिए तो अयोध्या अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो काशी भी हमने आपको दिखा दिया और उसके बाद हमने आपको मथुरा भी दिखा दिया। एक और मामला अटाला मस्जिद जौनपुर उत्तर प्रदेश का है, जहां पर ये भी मामला, तो उत्तर प्रदेश के चार मामले हमने आपको दिखा दिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मुगलों ने, मुगल आक्रांताओं ने जब हमला किया तो उत्तर भारत में ही सबसे ज्यादा उन्होंने मंदिरों को तोड़ा है। दक्षिण भारत में कई ऐसे मंदिर खूबसूरत आज भी प्राचीन वही पत्थर में उकेरे हुए, उसी तरह से जस के तस पड़े हुए हैं, लेकिन उत्तर भारत में सबसे ज्यादा मंदिरों को तोड़ा गया। तो ये भी एक और मामला जो इस वक्त कोर्ट में चल रहा है अटाला मस्जिद का। अब शमसी जामा मस्जिद बदायूं उत्तर प्रदेश का, ये मामला भी कोर्ट में पहुंचा हुआ है। देखिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या कहता है, वो यही कहता है कि भाई 91 के पहले जितने मंदिर जो बने हुए हैं, जो भी उनका धार्मिक जो रूप है उसको बरकरार रखना है। लेकिन चाहे अयोध्या का फैसला हो और अब भोजशाला की बात की गई है, तो आप उसे समझ रहे हैं कि एक परिवर्तन आ रहा है। तो क्या वो हम देखेंगे, ये सब हम आपको बताएंगे। अगला दिखा दीजिए। इसके बाद है टीले वाली मस्जिद लखनऊ उत्तर प्रदेश की, ये तो राजधानी लखनऊ में है, टीले वाली मस्जिद लखनऊ यूपी की, ये भी मामला इस वक्त फिलहाल कोर्ट में चल रहा है। तो ये एक और मामला है। इधर दिल्ली का एक मामला है कुवत उल इस्लाम मस्जिद का, राजधानी दिल्ली में, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, और ये मामला भी इस वक्त कोर्ट के देखरेख में चल रहा है, वहां पर सुनवाई हो रही है। मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला कमल मौला मस्जिद, जिसकी हमने आपको बात की, पूरी कहानी सुनाई है, लेकिन अभी भी सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आता है वही अंतिम फैसला माना जाएगा। तो ये मध्य प्रदेश का एक मामला। इसके साथ अजमेर शरीफ दरगाह अजमेर राजस्थान में जो आप देख रहे हैं, ये भी मामला सब जुडिस है, इस पर भी केस चल रहा है, मस्जिद मंदिर विवाद है, तो इस पर भी इंतजार करना होगा। तो कुल मिलाकर हमने आपको दिखा दिए सारे मामले। एक कर्नाटक का मलाली जुमा मस्जिद मंगलुरु कर्नाटक का मामला है जो इस वक्त चल रहा है, और ये भी एक और विवाद है जो इस पूरे केस में चल रहा है। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि मस्जिद मंदिर विवाद ये पूरा है क्या, और कैसे अभी भी कई सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनको लेकर एक विवाद की स्थिति लगातार बनी हुई है। और ये हमने आपको दिखा दिया है कितनी मस्जिदों के नीचे मंदिरों का दावा है। तो ये डेटा बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि दावे बहुत सारे हैं। अब इसमें से कितने में कोर्ट से मामला जाता है, 299 उत्तर प्रदेश के सिर्फ मामले हम आपको बता रहे हैं। कर्नाटक में आइए 199, उसके बाद आ जाइए तमिलनाडु में 175, अब आइए इधर गुजरात में 170 मामले, 170 राजस्थान में, 170 और मध्य प्रदेश में 151। तो इतने सारे मामले हैं, इन सब की सुनवाई और इन सब का निपटारा कैसे होगा और कहां तक मुमकिन है, ये भी एक प्रश्न इस पूरे मामले में पूछा जाता है। तो कुल मिलाकर ये जो विवाद है, लंबे वक्त से ये विवाद चल रहे हैं और इन सब का जो एक बैकग्राउंड है वो हमने आपको देने की कोशिश की। अब ये बातें आज से नहीं बल्कि कई सालों से उठ रही हैं, जिसे देखते हुए साल 1991 में कांग्रेस की सरकार एक ऐसा वर्शिप एक्ट लेकर आई जिसने अयोध्या मामले को छोड़कर बाकी सभी मामलों में धार्मिक स्थलों पर 15 अगस्त 1947 की यथास्थिति लागू कर दी, जिससे हिंदू पक्ष ने अपने प्राचीन मंदिरों पर दावा करने का कानूनी अधिकार खो दिया। जो अभी मैंने आपको कहा था उसमें एक करेक्शन है, 1991 वर्शिप एक्ट है ये, लेकिन उससे 1947 में जो यथास्थिति थी उसको बरकरार रखने की बात कर दी गई थी इस एक्ट के जरिए, कि भाई 47 में उस स्ट्रक्चर का जो भी धार्मिक उसका कैरेक्टर था, अगर वो मस्जिद थी तो अब वो मस्जिद ही रहेगी, आप उसको बदल नहीं सकते हैं। 1991 में वो ये वर्शिप एक्ट लेकर आए थे, अगर 1947 में वो मस्जिद थी तो मस्जिद ही रहेगी। तो ये एक बहुत बड़ी बाधा के तौर पर आया क्योंकि कोर्ट में आप जाइए भी तो सामने वाला जो पक्ष था वो ये कहता था कि भाई 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लगेगा, 1947 के पहले अगर इसका कैरेक्टर ये था तो वही रहेगा, आप उसपे बदल नहीं सकते हैं। लेकिन कोर्ट्स इसके विपरीत फैसले सुना रही हैं। उस वक्त जब ये कानून आया था तब बीजेपी इसमें अयोध्या के साथ काशी मथुरा के मामले को भी अपवाद की सूची में डलवाना चाहती थी, लेकिन जब कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया तो बीजेपी ने विपक्ष में रहते हुए इस कानून का विरोध किया। वोटिंग के दौरान उसके सांसद वॉकआउट करके बाहर चले गए। इससे ये सवाल भी उठता है कि उस दौर में इस कानून का विरोध करने वाली बीजेपी क्या काशी और मथुरा जैसे मामलों के लिए इस कानून को रद्द करेगी, और क्या इन मामलों में भी हिंदू पक्ष के लिए कानूनी रास्ता खुलेगा, क्योंकि हिंदू पक्ष के लिए सबसे बड़ा अड़चन माना जाता है।
1: आज इस भोजशाला को, जो कि वास्तव में सरस्वती का मंदिर था, उसको कानूनी रूप से माँ का मंदिर घोषित हुआ है, ये बहुत ही हर्ष की बात है और हिंदू समाज आज प्रफुल्लित है।
2: न्यायमूर्ति जो है उनने बहुत अच्छा फैसला दिया, उनका स्वागत करते हैं हम बहुत बहुत। और कई वर्षों के बाद हमारे कई बुजुर्गों ने इस भोजशाला के लिए प्राण दिए हैं,
3: हमारे बुजुर्ग बलिदानकारी कई वर्षों से जिन्होंने इसके लिए संघर्ष रहे हैं और बलिदान दिया है।
4: न्याय की जीत है और ये जो राजा भोज का समय का जो गौरव था, संस्कृति साहित्य संगीत विज्ञान वेद के लिए यहाँ दूर दूर से लोग आते थे और अध्ययन करते थे, वो गौरव की पुनर्स्थापना हो यही चाहिए।
5: बड़े शानदार ढंग से रखे गए थे तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हाईकोर्ट में हमारी बात नहीं सुनी गई, तो हाईकोर्ट के निर्णय का हम सम्मान करते हैं, लेकिन जहां पर हमारी बात नहीं सुनी गई तो उसको लेकर हम निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
0: जो भोजशाला को लेकर फैसला आया है उस पर मैं बात करना चाह रही हूं। आज इंदौर हाईकोर्ट ने धार में भोजशाला कॉम्प्लेक्स में हिंदुओं के पूजा के अधिकार को स्वीकार किया और माना कि कॉम्प्लेक्स राजा भोज द्वारा बनवाया गया वाग्देवी यानी देवी सरस्वती का मंदिर है। कोर्ट ने एसआई के 2003 के उस ऑर्डर को भी रद्द कर दिया है जिसमें नमाज पढ़ने की इजाजत उस वक्त दी गई थी। ओवैसी बोल रहे हैं कि अयोध्या जैसा फैसला है, कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक जमीन ढूंढने की जो इजाजत, वो इसको सिरे से खारिज कर रहे हैं। आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे और अगर ये मामला बढ़ता है और इस पर हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कुछ लोग करते हैं तो कैसे संभालेंगे?
6: देखिए, मुझे इस बात का संतोष है कि मध्यप्रदेश नहीं, पूरे देश ने आज के इस दौर में बदली की परिस्थिति के साथ, हमारे यहां तो राहिर्म और अस्कान की संस्कृति हजारों साल पुरानी थी और राम मंदिर का उदाहरण इतना अच्छा उदाहरण है कि राम मंदिर के मसले पर जो अंसारी जी ने मुकदमा लड़ा 75 साल तक और उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी तो मैं उसके भूमि पूजन मंदिर के समय में भी रहूंगा, प्राण प्रतिष्ठा में भी रहूंगा और वर्षगांठ में भी रहूंगा। हमारे लिए आदर्श उदाहरण है कि भगवान राम को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन देश के साथ कराया और बगैर हिंदू मुस्लिम कोई किसी प्रकार के विवाद होकर के पूरे दुनिया के सामने आदर्श उदाहरण बना। मुझे भोजशाला में भी मैं अपने प्रदेश के हिंदू मुस्लिम दोनों भाइयों से धन्यवाद के साथ कहना पड़ेगा कि कुछ समय पहले हमारे यहां बसंत पंचमी के दिन शुक्रवार की नमाज का मामला भी था, लेकिन हिंदू मुसलमान ने दोनों ने अपनी अपनी इबादत और अपनी पूजा निर्विघ्न संपन्न की, नहीं तो हमेशा धार में झंझट होती थी, आपस में कई बार विवाद की स्थिति बनती थी। लेकिन वो उदाहरण भी बहुत अच्छा है और मैं मान के चलता हूं ये वापस वही दौर हो सकता है माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अयोध्या में के माध्यम से देश के सामने उत्कृष्ट उदाहरण हिंदू मुस्लिम का पेश किया। मध्यप्रदेश में शांति का टापू है, यहां हिंदू मुस्लिम मिलकर बहुत अच्छे रहते हैं और न्यायालय पर पूरा भरोसा करते हैं। न्यायालय जो निर्णय करता है हम सबके लिए वो बहुत अच्छा है और उसके बावजूद भी यह भी संभावना है कि हम ये अवसर ले लें जब आपस के भाईचारा बढ़ाने के लिए। तो मैं अपने प्रदेश के हिंदू मुसलमान सभी नेताओं से भी निवेदन करूंगा कि जैसा जो करना हो लेकिन हमारा भाईचारा बढ़े, इस तरह के अवसर को जरूर अपने हाथ में लेना चाहिए। मैं बधाई देना चाहूंगा धार के अपने सभी भाई बहनों को जिन्होंने इस सारे निर्णय का स्वागत किया।
0: तो आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को इस विषय पर सुन रहे थे। खैर, आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में प्रति लीटर 3 रुपए की वृद्धि होने से कितनी महंगाई बढ़ने वाली है। इस मुद्दे पर आप सुबह से कई बातें सुन रहे होंगे लेकिन हम आपको आपके काम की जो सबसे जरूरी बात है वो बताना चाहते हैं। सबसे बड़ी पहली बात यह है कि अब आपको आने वाले वक्त में जिस तरह से कीमतें बढ़ाई गई हैं उसका धीरे धीरे जो कैस्केडिंग इफेक्ट होगा आपकी रोजमर्रा के जीवन पर, उसके लिए तैयार हो जाना चाहिए। क्राइसल की एक रिपोर्ट कहती है कि जब पेट्रोल डीजल की कीमतों में प्रति लीटर 5 रुपए की वृद्धि होती है तो इससे माल ढुलाई का किराया लगभग 2.8% बढ़ जाता है। अब इसका अर्थ क्या होगा? माल ढुलाई का मतलब यह हुआ कि आपके शहर आपके इलाके में जो सब्जियां फल रोजमर्रा का सामान ट्रांसपोर्ट के जरिए आता है उसकी लागत यानी कॉस्ट कितनी बढ़ जाती है। और आज सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में जो 3 रुपए की वृद्धि की है उससे भी यही होने वाला है। कैसे वो समझिए, अगर एक बाइक सवार हर महीने से में 30 लीटर पेट्रोल की खपत करता है उसका सिर्फ पेट्रोल का मासिक खर्च 90 रुपया बढ़ेगा। ठीक है, जिन लोगों के पास कार है उनका 100 लीटर पेट्रोल पर हर महीने 300 रुपए का खर्च बढ़ेगा। लेकिन इसी तरह जो सब्जियां आती हैं उनकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ने से वो 2-5% तक महंगी हो सकती हैं। जो सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं वो 7-10% भी महंगी हो सकती हैं, क्योंकि उनके लिए आपको टू एंड फ्रो जल्दी करना पड़ता है। पेट्रोल डीजल महंगा होने से ताजे फल भी 2-4% तक महंगे हो सकते हैं। मौसम से जुड़े फल वो 5-7% महंगे हो सकते हैं। अनाज दाल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगा, अधिकतम 2% महंगी हो सकती है। सीधा असर हम सबकी जेब पर पड़ सकता है। साल 2022 में जब यूक्रेन युद्ध के बाद केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम प्रति लीटर 10 रुपए बढ़ाए थे तब खुदरा महंगाई 8 साल में सबसे ज्यादा हो गई थी और ये 7.8% पर दर्ज की गई है। खुदरा महंगाई का मतलब यह होता है कि रोजमर्रा की जो हम लोग चीजें खरीदते हैं ना सामान, वो आम आदमी को उस वक्त कितनी महंगी मिल रही है। अभी ऐसी स्थिति नहीं है, अभी खुदरा महंगाई दर 3% के आसपास है लेकिन थोक महंगाई दर 8.3 पहुंच गई है। लेकिन खुदरा महंगाई दर की बात हो रही है, इसके अलावा उस वक्त पेट्रोल डीजल महंगा होने से थोक महंगाई ने भी एक नया रिकॉर्ड बना दिया था और उस वक्त कितना हो गया था 15.08, अभी कितना है 8.3। इस बार तो सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जब सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों को बढ़ाया नहीं था तभी थोक महंगाई हो गई 42 महीनों के हाई पर 8.3% पर सर छू लिया था। पिछले साल के मुकाबले अप्रैल महीने में थोक महंगाई पर 5% की दर से बढ़ी और ये 8.3% हो गई। सोचिए ये आंकड़े तब के हैं जब पेट्रोल डीजल महंगा नहीं हुआ था, लेकिन अब तो इसकी भी कीमतें बढ़ चुकी हैं, तो इसका कैस्केडिंग इफेक्ट जो कहते हैं ना उसका असर कॉस्ट ऐड होगा। वो कॉस्ट कहां से आएगा इन चीजों का, माल ढुलाई का, वो हमसे लिया जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जिसने युद्ध के कारण तेल आपूर्ति बाधित होने से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई है, और भारत ने तो बल्कि काफी दिनों तक ऐसा फैसला नहीं लिया। भारत ने युद्ध शुरू होने के 76 दिनों बाद इन कीमतों में इजाफा किया और ये बढ़ोतरी भी 4 सालों यानी 1501 दिनों के बाद हुई है। इससे पहले आखिरी बार 6 अप्रैल 2022 को मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए थे और उसके बाद आज पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है, और इसीलिए हुआ है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत अब $108 के पार हो चुकी है और एक अस्थिरता बनी हुई है। ईरान युद्ध से पहले जानते हैं कितना था, $68 और अब $108 हो गया है। दुनिया के 98 देशों ने मार्च के पहले हफ्ते में ही युद्ध के कारण इन कीमतों को बढ़ा दिया था, तब भारत ने न सिर्फ तेल की किल्लत होने दी बल्कि 14 मई तक इन कीमतों को नहीं बढ़ाया गया। लेकिन अब 3 रुपए की वृद्धि हुई है और कई देशों के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो उसमें कीमत जो है वो कम हुई है। आइए युद्ध के बाद तेल की कीमतें जिस देश में कितनी बढ़ी हैं वो जल्दी से आपको जरा यहाँ पर ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा देना चाहते हैं, क्योंकि सबसे पहले अगर आप देखिएगा, पीला कर लेती हूँ, ये देखिए सबसे ज्यादा कहाँ पर हुआ है, कोई गेसवर्क करने की जरूरत तो है नहीं इसमें, कोई रॉकेट साइंस है नहीं, ये तो भारत का कोई बच्चा भी बता सकता है कि एक ही वो देश है जिसका नाम है पी फॉर पाकिस्तान। 61% के आसपास उन्होंने बढ़ा दिया है पेट्रोल कीमत की कीमत 50.5%। मलेशिया 58%, UAE 52%, अमेरिका 46%, श्रीलंका 38%, नेपाल 38%, 34%, कनाडा, साउथ अफ्रीका 33%, चाइना 25%, फ्रांस 22%। तो ये पूरा आपको यहां से लेकर तमाम देशों का हमने आपको ग्राफ दिखा दिया है जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस देश में कितनी वृद्धि हुई है। अब यहां पर आते हैं जहां पर कम वृद्धि हुई है, उन देशों में आप ब्रिटेन को रख सकते हैं 19.1%, फिर है साउथ कोरिया 19.7% है, 17% के आसपास ऑस्ट्रेलिया में बढ़ा है, इसराइल में 16.7%, बांग्लादेश में भी 16.7%, इटली में 16.2%, जर्मनी में 10.7%, जापान में 9.70% और 3.2% ये भारत का वृद्धि परसेंटेज है जो हम आपको इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर आपके दिखा रहे हैं। तो 3.2% भारत में इजाफा हुआ है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब आप बाकी देशों के से कंपैरिजन करें तो भारत में वृद्धि कम हुई है, लेकिन यह भी सच है कि इस वृद्धि के साथ आने वाले दिनों में कुछ चैलेंजेस का सामना हमें करना पड़ेगा, क्योंकि इस पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत में जो बढ़ोतरी है उससे आने वाले दिनों में बदलाव होंगे बाकी कीमतों पर। और खुदरा महंगाई दर तो हमने आपको बताया 3 कुछ फीसदी है, लेकिन 8.3% के स्तर पर होलसेल महंगाई दर जो है वो इस वक्त पहुंच गई है। 1 लीटर पेट्रोल की जो औसतन कीमत है वो हम आपको तमाम देशों का दिखा रहे हैं, तो इसमें आप इस पर नजर डालिएगा। तो फ्रांस में 227, हमने आपके लिए सब रुपया में कन्वर्ट किया ताकि रुपये में आपको समझ में आए, 227.81 रुपया, मतलब 227.81 रुपया। जर्मनी 219 रुपया, नंबर 2 पर इसकी यहां पर कीमत है। फिर आ गया इटली, इटली में देखिए 216.99 रुपये। ब्रिटेन 203, कनाडा, इसको जरा ब्लू कर लेते हैं तब ये ठीक से समझ में आएगा। कनाडा में देखिए 148.72, मतलब 150 रुपये के आसपास। साउथ कोरिया में भी 146 रुपया है, साउथ कोरिया में। फिलीपींस में 143 रुपया, पाकिस्तान में 142 रुपया, श्रीलंका में 139 रुपया, नेपाल में 135 रुपये, ऑस्ट्रेलिया में 127 रुपये, अमेरिका में 121 रुपये, बांग्लादेश में 108 रुपये, लगभग 109 रुपये है, 103 रुपये के आसपास यहां पर जर्मनी में है, सॉरी जापान में है, और भारत में 101 रुपये पर पेट्रोल की कीमतें फिलहाल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। तो हमने ये कोशिश किया कि हर देश में जब रुपया में हम कन्वर्ट करते हैं तो जो पेट्रोल की कीमत है औसतन 1 लीटर की, वो हम आपको बताएं कि बाकी देशों की तुलना में भारत इन कीमतों में कहां पर है। तो ये हमने आपको नंबर्स बता दिए कि जब आप अमेरिका से लेकर फ्रांस, जर्मनी, इटली सब जगह जाएंगे तो भारत में 101 रुपये उसकी कीमत है। कुल मिलाकर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि होलसेल जो इन्फ्लेशन रेट है उसमें इजाफा है, जो खुदरा महंगाई उसमें है, लेकिन जब आप विश्व के साथ कंपेयर करते हैं तो पेट्रोल की कीमत 101 रुपये के आसपास भारत की है। अब यहां कांग्रेस ये कह रही है कि अगर साल 2016 से 26 तक देखें तो बाकी देशों के मुकाबले मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतें सबसे ज्यादा बढ़ाई हैं, लेकिन यहां हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस आंकड़े में थोड़ी सी चालाकी दिखाई गई है। नरेंद्र मोदी साल 2014 से भारत के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इसमें आंकड़े 2014 के लिए से लिए गए हैं, और अब इस को अगर आप छोड़ दीजिए तो बिना लाग लपेट के असली आंकड़े हम आपके सामने रखना चाहते हैं 1 अप्रैल 2014 से। तो चलिए यहां से आपको हम ये पूरा नंबर दिखाना चाहते हैं। 1 अप्रैल 2004, जब आपको याद हो वाजपेयी सरकार गिरी थी, मनमोहन सिंह की सरकार बनी थी, तो ये 2004 का नंबर है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। 2004 में आपको क्या दिख रहा है, 21.74 रुपये। जो काले रंग से है वो है डीजल की कीमत, जो हरे रंग से है ऊपर में कोने में दिखा दीजिए ये, ताकि उनको रेफरेंस समझ में आ जाए। ये देखिए पेट्रोल की कीमत हरे में है और डीजल की कीमत काले में है। तो ये थी डीजल की कीमत और 33.71 रुपये थी पेट्रोल की कीमत। अब ये जो वृद्धि हुई है, डीजल में 155.2% वृद्धि हुई और वहीं पेट्रोल में 114.4% वृद्धि हुई। और फिर 1 अप्रैल 2014 पर आ जाइए रेफरेंस पॉइंट लेते हुए, 55.49, मतलब 55.49 रुपये पर डीजल था उस वक्त और 72.26 रुपये पर ये था। तो ये था उस वक्त का दोनों का रेफरेंस जिसमें मोदी सरकार सत्ता में आई। अब इसमें आप वृद्धि देखिए, तो वृद्धि आप देखेंगे डीजल की कीमत 90.67 रुपये है, वृद्धि कितनी है 63.4%, यहां पर कितनी थी 155.2 वृद्धि। अब आ जाइए आप पेट्रोल की कीमत में, वृद्धि कितनी है 35.3%, ये हमने अभी का आंकड़ा 15 मई 2026 का निकाला है आपके लिए। तो ये पूरा जो पूरा कार्यकाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 14 से लेकर 26 तक का, 35.3% वृद्धि है पेट्रोल में और तब कितनी थी 114.4% की वृद्धि थी। तो वृद्धि के जब आप परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो ये आंकड़ा सामने नजर आता है। तो 2004 से 2014 तक ये है, 2014 से 2026 तक ये है। 12 साल के कार्यकाल में आप अगर देखें वहां पर 10 साल है और यहां पर 12 साल के कार्यकाल में 63.4% वृद्धि है, और ऐसे ही जब आप देखेंगे तो 12 साल के कार्यकाल में 35.3% की वृद्धि है। चलिए ये डेटा इंटरेस्टिंग था, इसलिए हमने सोचा कि एग्जैक्ट प्राइसेस के साथ फैक्ट्स और नंबर्स के साथ जानकारी आप तक पहुंचनी चाहिए। पेट्रोल डीजल और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स की कीमतें बढ़ने पर कई विपक्षी नेता सरकार को घेर रहे हैं। वो जानते हैं कि ईरान युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में ये कीमतें इस वक्त बढ़ रही हैं क्योंकि सप्लाई बाधित हुई है, और इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम खरीदने की बात की, गोल्ड मत खरीदिए, विदेश नहीं जाने की अपील की। पीएम मोदी की अपील पर विपक्ष के नेता ये कहकर कटाक्ष कर रहे हैं कि देशवासियों को विदेश जाने से मना करने वाले पीएम खुद 5 देशों की यात्रा पर निकले। लेकिन क्या आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा का असली मकसद क्या है? सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन के अंदर 5 देशों का दौरा करेंगे, यानी एक बात तो साफ है कि वो सैर सपाटे के लिए नहीं जा रहे। इन 6 दिनों में वो यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे, इटली का दौरा करेंगे। आज सबसे पहले वो यूएई पहुंचे। पीएम मोदी के विमान एयर इंडिया 1 को यूएई के एयर स्पेस में फाइटर जेट F-16 से एस्कॉर्ट किया गया। तो ये तस्वीरें भी अब आपको दिखाते हैं। F-16 जो है यूएई की, उन्होंने प्रधानमंत्री के विमान को आज एस्कॉर्ट किया, और इसके बाद अबू धाबी के जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का स्वागत खुद यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद ने किया। तो ये जब F-16 एस्कॉर्ट कर रहा था प्रधानमंत्री के विमान को, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। तो यूएई ने एक स्पेशल सम्मान प्रधानमंत्री के लिए रखा था, और ये महत्वपूर्ण दौरा भारत और यूएई की दोस्ती को भी दर्शाता है क्योंकि इसमें कुछ ऐसे समझौते हुए हैं जो ऐतिहासिक है। रिश्ते भी बड़े प्रगाढ़ हैं हमारे, मतलब आप सोचिए कि दुबई जैसे शहर में यूएई में लगभग 35-40% आबादी भारतीयों की है, इतने लोग वहां पर रहते हैं जो भारतीय मूल के हैं। दोनों देशों के बीच दो सबसे बड़े समझौते हुए, पहला ये कि दोनों देश रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करेंगे, और दूसरा ये कि दोनों देशों ने एलपीजी और स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को लेकर एक विशेष MOU साइन किया। रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने का मतलब है कि दोनों देश एक दूसरे से सैन्य तकनीक साझा करेंगे, मिलकर हथियार बनाएंगे, साइबर सुरक्षा पर सहयोग बढ़ाया जाएगा, संयुक्त युद्धाभ्यास होगा, खुफिया जानकारियां साझा की जाएंगी, और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर आ रही चुनौतियों से मिलकर निपटा जाएगा। इसके अलावा दोनों देशों के बीच एलपीजी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को लेकर जो MOU हुआ है उसके तहत भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगा। यूएई वो पहला देश है जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को लेकर भारत का सहयोगी है। साल 2018 में इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच एक समझौता हुआ जिसके तहत यूएई के 58 लाख बैरल से ज्यादा कच्चा तेल भारत के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स में रखे थे, जो नए MOU से बढ़कर अब 3 करोड़ बैरल तक हो जाएंगे, और भारत भी यूएई में अपना SPR बनाएगा। यह कदम रणनीतिक रूप से भारत के लिए फायदेमंद हो सकता है। सिर्फ यही नहीं, यूएई भारत में बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, अन्य वित्तीय संस्थानों में 47,905 करोड़ रुपए का निवेश करेगा, और गुजरात के वाडेनार में शिप रिपेयरिंग क्लस्टर भी बनाएगा। यूएई को इस वक्त भारत जैसे दोस्तों की जरूरत है। अभी कुछ दिन पहले ही उसने कच्चा तेल उत्पादन करने वाले ओपेक संगठन से खुद को अलग किया है। अब उसे अपने देश के कच्चे तेल के लिए भारत जैसे खरीदारों की जरूरत है। इसी साल जनवरी में भारत ने यूएई के साथ LNG खरीद को लेकर 28,737 करोड़ रुपए की डील की थी। अब ईरान युद्ध के बाद यूएई के कच्चे तेल का व्यापार प्रभावित हुआ है, और इसी वजह से भारत यूएई एक दूसरे की मदद कर रहे हैं ताकि दोनों देश इस मुश्किल समय में एक दूसरे के साथ रहें, दोनों देशों को फायदा। प्रधानमंत्री मोदी के यूएई दौरे पर हुई इन डील्स को पाकिस्तान और सऊदी अरब की बढ़ती दोस्ती का करारा जवाब समझा जा रहा है। पिछले साल पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक डिफेंस पैक्ट साइन किया था। इसी के जवाब में भारत यूएई के साथ रणनीतिक संबंधों को और मजबूत कर रहा है। हालांकि एट द कॉस्ट ऑफ सऊदी अरब नहीं है, सऊदी अरब के साथ भी भारत के रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन हम अपनी ऊर्जा जरूरतों को लेकर सुरक्षित देश को करने की कोशिश कर रहे हैं।

0: प्रधानमंत्री मोदी की तरह ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी 3 दिन के लिए चाइना के दौरे पर गए हुए थे। अपनी इस चाइना विजिट को डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ी सफलता की तरह पेश कर रहे हैं। उनका कहना है कि कई मुद्दों पर चाइना के साथ उनकी बातचीत बहुत सकारात्मक रही। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी मीडिया में अपने लोगों को ये बता रहे हैं कि चाइना के साथ कई बड़ी डील्स हुई। ईरान पर अमेरिका के विचारों से चाइना सहमत है और यही नहीं, ताइवान के मामले पर भी सकारात्मक बातचीत हुई है। जबकि सच तो यह है कि अभी तक दोनों पक्षों की तरफ से आधिकारिक रूप से कुछ भी नहीं कहा गया है। न डील्स की बात कही गई, न ताइवान पर कुछ कहा गया, न ईरान पर कोई ठोस सहमति बनी। आरोप लग रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं और उनकी चाइना ट्रिप फ्लॉप रही, अमेरिका को वहां से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इसका सबसे बड़ा उदाहरण ईरान युद्ध पर दिया गया बयान है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ईरान मामले में उनकी मदद करना चाहते हैं। सिर्फ यही नहीं, ट्रंप ने यह भी कहा कि शी जिनपिंग अमेरिका की उस शर्त पर सहमत हैं जिसके तहत ईरान को 20 साल के लिए परमाणु प्रोग्राम बंद करना है। डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा एक झूठ है। अमेरिका के ही विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ही इसका खुलासा किया। एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप ने शी जिनपिंग से क्या मांगा। इस सवाल पर मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के मामले में हमें चाइना की मदद की जरूरत ही नहीं है, हमने उनसे मदद ही नहीं मांगी है।
1: What exactly did President Trump ask President Xi for when it comes to Iran?
2: He didn't ask him for anything. I mean, we're not asking for China's help. We don't need their help.
1: But he raises the issue.
2: We raise the issue to make clear what our position is and to make it clear so they understand. Because, I mean, it's logical we would talk about it given how dominant that issue is. Our position is very clear. Iran cannot have a nuclear weapon.
3: President Xi would like to see a deal, man. He would like to see a deal, man. And he did offer, he said, if I can be of any help at all, I would like to be of help.
4: Because, he did say that.
3: Yeah, he did say that. And look, anybody that buys that much oil has obviously got some kind of a relationship with him. But he said, I would love to be of help. If I can be of any help whatsoever, he'd like to see the Hormuz Strait open. He said, if I can be of any help whatsoever, I would like to help.
0: इसी के साथ ब्लैक एंड व्हाइट में हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार अंजना की विचारधारा, देखते रहिए आज तक।

0: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: TuneIn has got your favorite podcast, from sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
3: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
0: You can stream all the podcasts you already love right on TuneIn. Available on your smartphone, on your tablet, and even on your connected devices. There's so much to explore, like mind-blowing facts about your world.
4: So they were disallowed from speaking their language.
0: In-depth conversations with A-list celebrities.
5: No, I was ready to go. You know, after I wanted to fulfill my contract.
0: True crime podcasts you just can't stop listening to.
6: Others escape justice to live and die in infamy. These
0: plus the news and sports content you crave in podcast form.
7: Couldn't run in a straight line very quickly and didn't have much of an arm. His arm is stronger now.
0: So whether you want to save your go-to shows for later by subscribing and listening offline, or you want to discover a whole slate of new podcasts to be obsessed with, TuneIn is your destination. True crime, sports, lifestyle, culture, news, and so much more. TuneIn is Podcast Central. Hear them all here.
8: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले ढूंढ नहीं पाएगा
9: ए प्रिया कैसा लगा मेरा स्टंट
10: विक्रम एक हिंट तो देते
11: विक्रम
10: हिंट
9: बड़े आराम से
12: कूल फैंस से घर को सजाएं
13: कूल फैंस बिजली बचाएं और कम आवाज करें
12: कूल फैंस घर की शान बढ़ाएं
14: मैं करता हूँ ना
15: मैं करूँगा
16: ओए कार्ड्स की दुकान इतने कार्ड्स कौन रखता है
14: ये ग्लोबल लग्जरी होटल्स के लिए ये स्टे स्पा फाइन डाइनिंग के लिए वर्ल्ड क्लास गोल्फ प्रिविलेजेस के लिए
16: पंजाब नेशनल बैंक का लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड लो एंड गेट अनलिमिटेड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस अनलिमिटेड स्टे डाइनिंग एंड मच मोर
14: क्रिकेट में आप और बैंकिंग में PNB दोनों ही चैंपियन है
16: PNB लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड PNB मेरा अपना बैंक
17: ये थर्ड नहीं 13 डिग्री का केस है
18: माल मैंने चुराया शौचालय के पीछे पीपल के नीचे दबाया
17: हवालात की हवा अच्छे अच्छों को सुधार देती है शुक्ला
19: समर कूल कूलर हवा अच्छी है ठंडक सच्ची है समर कूल लाइफ बनाए वंडरफुल
20: जब अपना कोई मूव किसी को मूव करता है ना यार फील आ जाती है
21: भाई तू अपना है तेरा सफर मुझे भी करना है तूने प्रूफ कर दिखाया यार एनीबॉडी कैन ड्रीम
20: मुझे लगा मैं नहीं पूरा का पूरा मूवमेंट चल रहा है
22: ब्रीदेबल फैब्रिक्स ऑसम कंफर्ट एफर्टलेस स्टाइल एडी फ्रॉम द हाउस ऑफ अरविंद
23: आपके पास दो ऑप्शंस हैं या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो E3 प्रोडक्ट्स ये रिश्ता लंबा चलेगा

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
3: ये मिट्टी सिर्फ फसल नहीं उगाती, देश का भविष्य भी बनाती है, और इस भविष्य को संभालते हैं ये हाथ, हमारे देश के असली हीरो के हाथ, जिनके हाथ की ताकत है क्रिस्टल के उत्पाद। तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल के उत्पाद। देश का किसान, देश का हीरो।
4: केंट से पानी होता है 100% प्योर।
5: केंट आरो प्योरिटी दिखाता भी है।
4: केंट देता है सबसे शुद्ध पानी।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
1: Punjab National Bank, Bharose ka Prateek.
2: समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े, समर कूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल।
0: हिंट, बड़े आराम से
2: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
5: एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।
6: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
7: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
8: ये थर्ड नहीं 13 डिग्री का केस है।
9: माल मैंने चुराया, शौचालय के पीछे पीपल के नीचे दबाया।
8: हवालात की हवा अच्छे अच्छों को सुधार देती है शुक्ला। समर कूल कूलर, हवा अच्छी है ठंडक सच्ची है। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: देखिए आज भोशाला के केस में ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट का बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया है, जिसमें ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट ने जो एएसआई का 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर है उसको पार्शियली क्वैश किया है और हिंदू समाज के लोगों को वहां पे पूजा पाठ का अधिकार दिया है। कोर्ट ने भोशाला कॉम्प्लेक्स को राजा भोज का माना है, एक सरस्वती स्कूल माना है लर्निंग का। साथ ही साथ इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भोशाला के केस में जो हमारी मांग थी कि वहां से लंदन के म्यूजियम से मूर्ति वापस लाई जाए, कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर करे। और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो मुस्लिम पक्ष हैं वो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, जो रिस्पॉन्डेंट नंबर 8 है मौला कमालुद्दीन की तरफ से, और उनको अल्टरनेट लैंड देने के लिए सरकार उस पर विचार करे। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने यहाँ पे हमें पूजा पाठ का अधिकार दिया है, मैनेजमेंट के लिए सरकार को कहा है कि वो इसके मैनेजमेंट के लिए चीजें देखे। और जो एएसआई का ऑर्डर था 7 अप्रैल 2003 का, जो यहाँ पे नमाज की अनुमति देता था, उसको कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। अब वहाँ पे सिर्फ पूजा होगी, उस पूरे परिसर का जो स्वरूप है वो एक हिंदू मंदिर का स्वरूप माना है कोर्ट ने, सरस्वती मंदिर का माना है।
3: माननीय हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया है अभी हमने उसको देखा नहीं है, हम लोग देखेंगे, हमारे वकील उसकी समीक्षा करेंगे। और इसके पूर्व भी जब केस चल रहा था तो हमारे विद्वान सीनियर एडवोकेट सलमान खुर्शीद साहब, शोभा मेनन जी, नूर शेख साहब और वारसी साहब ने अपने आर्गुमेंट रखे थे और बड़े शानदार ढंग से रखे गए थे। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हाईकोर्ट में हमारी बात नहीं सुनी गई। तो हाईकोर्ट के निर्णय का हम सम्मान करते हैं, लेकिन जहाँ पर हमारी बात नहीं सुनी गई तो उसको लेकर हम निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। देखिए बात यह आ रही है कि 2003 का जो आदेश खारिज करने की बात आ रही है वो 2003 में जो आदेश था वो पुष्प और अक्षत ले जाकर जो एक कम्युनिटी को अंदर ले जाने के लिए दिया था, वो आदेश की तो मांग हमने भी की थी कि उसको खारिज किया जाए। लेकिन उसके साथ जो नमाज का आदेश था वो स्पेशली 2003 का आदेश नहीं था, वो नमाज के आदेश में ये लिखा हुआ था कि जिस तरह पहले हो रही है उस तरह अभी भी होती रहेगी, तो उससे हमारी नमाज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम इसकी समीक्षा करेंगे, अगर होगा तो इसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और इग्नोर करना सीखिए, वरना हर राह चलता इंसान आपकी शांति का मालिक बन जाएगा। नमस्कार।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: कांड में सीबीआई का बड़ा एक्शन, मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी पुणे से गिरफ्तार। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का ऐलान, 21 जून को होगा नीट का री एग्जाम। धार भोजशाला विवाद में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत, हाईकोर्ट ने माना सरस्वती का मंदिर। सीएम मोहन यादव ने निर्णय का किया स्वागत, ओवैसी बोले अयोध्या जैसा निर्णय। यूपी में नए मंत्रियों के शपथ के 6 दिन बाद भी मंत्रालयों का बंटवारा नहीं, सूत्रों के अनुसार पीडब्ल्यूडी, जनसंपर्क, ऊर्जा पर फंसा पेच। कल दिल्ली में अमित शाह नितिन नवीन से मिले थे योगी। पीएम मोदी की अपील पर सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय, अब सोमवार शुक्रवार को होगी वर्चुअल सुनवाई, कार पुलिंग को भी प्राथमिकता। भारत और यूएई में तेल गैस समेत कई महत्वपूर्ण समझौते, अबू धाबी से $5 अरब निवेश पर मुहर, अब नीदरलैंड्स के लिए रवाना प्रधानमंत्री मोदी।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी, स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं आज तक पर आप देख रहे हैं दस्तक। आज हमारे देश में महंगाई बॉम्ब फूटा है। जी हां, ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध का असर अब हमारे देश भारत में भी पड़ना शुरू हो गया। एक तो ईरान और अमेरिका के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनातनी कम नहीं हो रही है, और दूसरा ईरान और अमेरिका के बीच कोई डील भी नहीं हो रही। मामला ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर अटका है और इसके कारण से हमारे देश भारत में महंगाई बॉम्ब फूटा है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार यानी कि आज पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें 3 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ा दी हैं। यानी कि महंगाई बॉम्ब में सबसे पहले पेट्रोल बॉम्ब फूटा, इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर के लोगों पर महंगाई का सीएनजी बॉम्ब भी फूटा है। बीच में सीएनजी की कीमत में भी 2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी कर दी गई है, जबकि आम लोगों को किचन में महंगाई का सिलेंडर बॉम्ब भी फूट चुका है। आगे आप देख रहे हैं, घरेलू सिलेंडर 60 रुपए महंगा हो गया है तो कमर्शियल सिलेंडर एक झटके में 993 रुपए इसी महीने महंगा कर दिया गया। पहले यह खबर आप देख चुके हैं, जबकि छोटू सिलेंडर यानी कि 5 किलो वाला सिलेंडर जिसके दाम में भी 261 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। इसके अलावा मदर डेयरी ने दूध के दामों में 2 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी कर दी है और ये दूध बॉम्ब भी फूट गया है। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं हमारी ये रिपोर्ट जो ये बताएगी कि महंगाई के ये बॉम्ब आपकी जेब पर कैसे फटने वाले हैं।

0: महंगाई का बम आपकी जेब पर कैसे फटा? अमेरिका ईरान युद्ध की चिंगारी घर घर तक कैसे आई? हुर्मुज में अमेरिका और ईरान भिड़ रहे हैं, महंगाई का बम फोड़ रहे हैं। तेल, गैस, दूध, सब पर छाई महंगाई, जा रही है गाढ़ी कमाई। लड़े कोई, भरे कोई, युद्ध रुकेगा नहीं, महंगाई घटेगी नहीं।
1: दुर्भाग्य से जिस क्षेत्र से दुनिया के बड़े हिस्से को तेल मिलता है, आज वही क्षेत्र संघर्ष और युद्ध की स्थिति में उलझा हुआ है।
0: हिंट तो पीएम मोदी ने 5 दिन पहले ही दे दी थी, लेकिन असली महंगाई का बम अब फूटा है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें सीधे 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी गई हैं, और इस तरह से पेट्रोल नई दिल्ली में 97.70 रुपए प्रति लीटर, कोलकाता में 108.70 रुपए प्रति लीटर, मुंबई में 106.68 रुपए प्रति लीटर, नोएडा में 97.78 रुपए प्रति लीटर, जयपुर में 107.97 रुपए प्रति लीटर, पटना में 108.55 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है, जबकि डीजल पर भी 3.25 रुपए प्रति लीटर बढ़ने से नई दिल्ली में डीजल 90.67 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है, कोलकाता 95.13 रुपए प्रति लीटर, मुंबई 93.14 रुपए प्रति लीटर, नोएडा 91.02 रुपए प्रति लीटर, जयपुर 93.23 रुपए प्रति लीटर और पटना 94.63 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है। बड़ी बात यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का हल अभी तक नहीं निकला है। ना तो ईरान झुकने को तैयार है और ना ही अमेरिका पीछे हटने को तैयार है। ईरान और अमेरिका के बीच भले ही युद्ध विराम चल रहा हो, लेकिन दोनों देशों के बीच संपूर्ण युद्ध विराम को लेकर अभी तक कोई डील नहीं हुई है, क्योंकि ईरान अपना परमाणु प्रोग्राम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और अमेरिका कह रहा है कि जंग तभी बंद होगी जब ईरान अपना परमाणु प्रोग्राम और एनरिच्ड यूरेनियम पूरी तरह से छोड़ेगा। एक तो ईरान अमेरिका का अड़ियल रवैया, ऊपर से हुर्मुज स्ट्रेट में गुजरात का एक और मालवाहक जहाज डूब गया। हाजी अली नाम का जहाज 13 मई की सुबह ओमान के समुद्री क्षेत्र से गुजर रहा था, तभी इससे कोई ड्रोन या मिसाइल जैसा हथियार टकरा गया। हादसे के बाद जहाज में आग लग गई, हालांकि ओमान कोस्ट गार्ड ने सभी 14 क्रू मेंबर्स को बचा लिया, क्योंकि अभी ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 107 से 108 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल चल रही है। कच्चे तेल से बनने वाले उत्पादों की बात करें तो गैसोलीन, पेट्रोल, डीजल और हीटिंग तेल, जेट इंजन, केरोसिन, ल्यूब्रिकेटिंग तेल और डामर इसी से बनता है। सरकार की तरफ से पहले ही माहौल बना दिया जाता है कि कच्चा तेल महंगा है, तेल गैस लाने में दिक्कत हो रही है, पेट्रोलियम कंपनियां घाटा झेल रही हैं, ताकि पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े तो जनता ज्यादा हायतौबा ना मचाए।
2: महंगाई की मार तो है, खासकर मिडिल क्लास आदमी पे।
3: हमें नहीं समझ आ रही भी, हाँ सरकार कर क्या रही है।
4: दूसरे देशों में जो बढ़ोतरी हुई है उससे तो बहुत ही कम है। मोदी साहब को सपोर्ट करना चाहिए।
5: जो नॉर्मल फैमिली है उसमें 3 रुपए का तो बहुत ज्यादा बजट पे फर्क पड़ेगा।
6: रेट तो अभी और भी बढ़ेंगे, बट ठीक है, मोदी जी ने कुछ सोच रखा होगा, मोदी जी के साथ ही खड़े हैं।
7: पता नहीं सरकार क्या करता है।
3: वो जो बढ़ा है ठीक है, और बढ़ेगा तो कुछ नहीं होगा। देश में मोदी है तो सब मुमकिन है।
8: हाँ, ये पैसे गलत कराए इन्होंने, पेट्रोल पे पैसे बढ़ाए हैं।
9: नुकसान है और किसका नुकसान है, बस जनता पे ही असर पड़ लिया, किस पर पड़ लिया।
0: लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े तो दिल्ली एनसीआर के लोगों पर महंगाई की एक और मार पड़ी है। शुक्रवार सुबह पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के साथ ही सीएनजी की कीमतों में भी 2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी कर दी गई है, जिससे आम लोगों का बजट और बिगड़ गया है। अब सीएनजी के दाम दिल्ली में 79.09 रुपए प्रति किलो, नोएडा में 87.70 रुपए प्रति किलो, गुरुग्राम में 84.12 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, दूध के दामों में 2 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। कंपनी का कहना है कि उत्पादन लागत बढ़ने और बाजार की परिस्थितियों के चलते ये कदम उठाना पड़ा है, जबकि घरेलू गैस सिलेंडर से लेकर कमर्शियल सिलेंडर और छोटू सिलेंडर यानी 5 किलो के सिलेंडर के दाम पहले ही बढ़ा दिए गए हैं। इधर महंगाई का बम फूटा, उधर कांग्रेस ने निशाना साध दिया। सोना भी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से महंगा हो गया है। अब कांग्रेस कह रही है कि चुनाव खत्म और मोदी की वसूली शुरू।
10: अमृत काल में आपका स्वागत है और इस अमृत काल में महंगाई मैन अपना चाबुक चला रहे हैं, मोदी जी आपसे वसूली कर रहे हैं। आपकी जेब पर डाका डाल रहे हैं। जब आप पर महंगाई का चाबुक चलाया जा रहा है, तब दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जो अपने लोगों को राहत दे रहे हैं।
11: 3 रुपए पे इतना ज्यादा हाइक तो सरकार को कोसने के अलावा कुछ आता है?
0: जबकि सरकार का कहना है कि कच्चे तेल की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव के बावजूद 2022 से अब तक ईंधन की कीमतें काफी हद तक स्थिर बनी हुई हैं और सरकार ने पूरे देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित की है। लेकिन सच ये भी है कि अप्रैल में थोक महंगाई दोगुने से ज्यादा बढ़कर 8.30% तक पहुंच गई है। मार्च में ये 3.88% पर थी। अप्रैल में महंगाई 42 महीने में सबसे ज्यादा है। अक्टूबर 2022 में ये 8.39% पर पहुंच गई थी। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने थोक महंगाई के आंकड़े जारी किए। अब आपको बता देते हैं कि डीजल के दाम बढ़ने से आम आदमी की जेब पर महंगाई बम कैसे फूटेगा। माल भाड़ा बढ़ेगा और ट्रक और टेम्पो का किराया बढ़ जाएगा, जिससे दूसरे राज्यों से आने वाली सब्जियां, फल और राशन महंगे हो जाएंगे। खेती की लागत बढ़ेगी। ट्रैक्टर और पंपिंग सेट चलाने के लिए किसानों को ज्यादा खर्च करना होगा, जिससे अनाज की लागत बढ़ेगी। बस, ऑटो का किराया, सार्वजनिक परिवहन और स्कूल बसों के किराए में भी इजाफा देखने को मिल सकता है। जिस तरह से तेल कंपनियां माहौल बना रही हैं कि पेट्रोल डीजल पर 25 से 30 रुपए प्रति लीटर का घाटा हो रहा है, ऐसे में एक्सपर्ट ये भी मान रहे हैं कि अपना घाटा पूरी तरह खत्म करने और ब्रेक इवन यानी नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति में आने के लिए तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल के दामों में और इजाफा कर सकती हैं। आज तक ब्यूरो।
12: महंगाई का संकट गहरा है, लेकिन इसी संकट से हमारे देश को बाहर निकालने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई का छोटा दौरा किया, लेकिन बड़े समझौते किए। वही समझौते जो तेल और गैस के मौजूदा संकट से हमारे देश भारत को बाहर निकालने में मदद करेंगे। आज यूएई और भारत के बीच 5 बड़ी डील सील हुई है, लेकिन 2 बड़े समझौते एलपीजी गैस और क्रूड ऑयल को लेकर ये समझौते हुए। तेल और गैस पर हुई डील का सबसे बड़ा उद्देश्य है मौजूदा संकट से सबक लेते हुए लॉन्ग टर्म प्लान तैयार करना, ताकि भविष्य में कभी भी ऐसी स्थिति बने और ऊर्जा संकट खड़ा हो तो भारत आसानी से उससे निपट सके। और अंत में तेल और गैस पर भारत और यूएई के बीच हुए समझौते को संकट मोचक क्यों माना जा रहा है, कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति नाहयान की दोस्ती ने इस समझौते की पूरी स्क्रिप्ट तैयार की है, आइए हम आपको दिखाते हैं।
13: मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और जैसा आपने कहा, मैं अपने दूसरे घर आया था। ये शब्द, ये भाव मेरे जीवन की बहुत बड़ी पूंजी है। आज भी जिस प्रकार से आपकी वायुसेना के जहाजों ने स्पोर्ट किया, ये भारत के लोगों का सम्मान है।
0: यूएई के F-16 लड़ाकू विमानों ने प्रधानमंत्री मोदी के प्लेन को एस्कॉर्ट किया। यूएई पहुंचने पर पीएम मोदी का गार्ड ऑफ ऑनर से स्वागत किया गया। भारत और यूएई के अफसरों ने पीएम मोदी और यूएई के राष्ट्रपति अल नाहयान की मौजूदगी में 5 समझौतों पर मोहर लगाई। ये तस्वीर भारत यूएई की दोस्ती और पीएम मोदी और नाहयान की पर्सनल केमिस्ट्री की झांकी है। ईरान अमेरिका युद्ध से भारत की एनर्जी सप्लाई चेन बाधित है, तो इसी युद्ध से यूएई का निर्यात प्रभावित है। दोनों ही मुल्कों पर युद्ध की मार है, लिहाजा ऐसे वक्त में पीएम का यूएई दौरा और यूएई के साथ 5 बड़े समझौते हो

0: सप्लाई भारत को बढ़ाई जा सके, इसके लिए भी यूएई ने मदद का हाथ बढ़ाया है। भारत के करीब 45 लाख लोग यूएई में रहते हैं, लिहाजा यूएई भारत के लिए निर्यात का भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और इसीलिए यूएई का भारत के अंदर 5 अरब डॉलर का निवेश का वादा करना भारत की अर्थव्यवस्था के लिए न केवल अहमियत रखता है बल्कि दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत भी करता है। इस रिश्ते को और मजबूती देने के लिए भारत और यूएई ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने का भी फैसला किया है।
1: बड़ी बात यह है कि यूएई की भौगोलिक स्थिति भी ऐसी है कि हॉर्मुज बंद रहा तो भी तेल और गैस की सप्लाई बाधित होने का खतरा कम रहेगा। दूसरी तरफ भारत और यूएई के बीच 2022 में हुए समझौते के बाद दोनों मुल्कों का कारोबार लगातार बढ़ रहा है। यूएई भारत का भरोसेमंद साझेदार है, वो भारत की जरूरत के हिसाब से तेल और गैस भी देगा और भारत में निवेश भी करेगा। अगर यूएई के साथ भारत ने तेल और गैस पर बड़ी डील की तो नॉर्डिक देशों की यात्रा के पीछे पीएम मोदी का मकसद है क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी के साथ साथ भारत में विदेशी निवेश को बढ़ाना।
2: और अब बात नीट पेपर लीक पर हुए कबूलनामे की। पेपर लीक की कड़ियों को आपस में जुड़ने के लिए जांच टीम गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है और इसी कड़ी में पेपर लीक से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण तीन किरदार जांच टीम की गिरफ्त में हैं। पहले किरदार का नाम है लेक्चरर पीवी कुलकर्णी, जिसे सीबीआई ने पेपर लीक करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। दूसरा किरदार है मांगीलाल, जिसने पेपर खरीदा और पेपर लीक रैकेट का राजदार बना। शुरुआती पूछताछ में मांगीलाल ने 2026 से पहले भी नीट का पेपर लीक करने का जुर्म कबूल किया। पूछताछ दौरान मांगीलाल ने नीट पेपर लीक को लेकर ऐसे ऐसे राज उगले जिसने सीबीआई के पैरों तले जमीन खिसका कर रख दी। पूछताछ के दौरान लेक्चरर कुलकर्णी और मांगीलाल ने पेपर लीक करने का गुनाह कबूल कर लिया, लेकिन पेपर लीक सिंडिकेट के गॉडफादर का नाम उगलने को वो तैयार नहीं। अब सीबीआई की पूरी कोशिश है राजदारों से पेपर लीक माफिया का नाम उगलवाने की।
1: नाम लेक्चरर पीवी कुलकर्णी, काम एनटीए का हिस्सा, आरोप नीट का पेपर लीक। पेपर लीक कांड में पुणे के लेक्चरर पीवी कुलकर्णी की आज गिरफ्तारी हुई। दावा यही है कि एनटीए की तरफ से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल पीवी कुलकर्णी ने नीट का पेपर लीक किया। केमिस्ट्री के लेक्चरर कुलकर्णी ने पेपर लीक कैसे किया, इसका खुलासा कैसे हुआ, आपको ये भी थोड़ी देर में बताएंगे। उससे पहले समझिए कुलकर्णी की गिरफ्तारी ने कैसे एनटीए की वर्किंग स्टाइल को कटघरे में खड़ा कर दिया है। क्योंकि कुलकर्णी प्राइवेट कोचिंग चलाता था, इसके बावजूद एनटीए ने उसे परीक्षा की प्रक्रिया का हिस्सा बनाया। सबसे बड़ा सवाल यही है कि एनटीए ने प्राइवेट कोचिंग चलाने वाले कुलकर्णी को परीक्षा की प्रक्रिया से क्यों जोड़ा। प्राइवेट कोचिंग चलाने वाले कुलकर्णी का एनटीए में गॉडफादर कौन है। क्यों नीट की परीक्षा से ठीक पहले एनटीए ने अभिषेक सिंह को डीजी बनाया। क्या पेपर लीक के सिंडिकेट में एनटीए के कई अफसर मिले हुए हैं। क्या एनटीए जैसी संस्था के अंदर पेपर माफियाओं की जड़ें बहुत गहरी हैं। एनटीए सवालों के घेरे में है, एनटीए की वर्किंग स्टाइल कटघरे में है, लेकिन पेपर लीक कांड के चलते परीक्षा रद्द होने के करीब 48 घंटे बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने पहली बार चुप्पी तोड़ी। 13 मई को धर्मेंद्र प्रधान पेपर लीक के सवालों को टाल गए थे, लेकिन 48 घंटे बाद मीडिया के सामने आए, नीट पेपर लीक की जिम्मेदारी ली और साफ गोई से एनटीए को क्लीन चिट दे दी।
3: सामाजिक चुनौती है, राधाकृष्ण कमिटी को पूरा पालन करने के उपरांत भी उस कमांड चेन में कहीं ना कहीं ब्रीच हुई है, इसको हम स्वीकार करते हैं। अभी तो एनटीए बहुत योग्य व्यक्ति के हाथ में है, हमारे सचिव की बहुत अनुभव भी उस विषय में है। मैं मानता हूँ हमें एनटीए को सुप्रीम कोर्ट की आदेश कारण एनटीए बनी है। एनटीए हर एक साल 1 करोड़ बच्चों की एग्जामिनेशन कराती है अमूमन। एनटीए और निर्भुल हो, एनटीए में जीरो एरर हो, जीरो यानी जीरो एरर हो, यह हमारी दायित्व है।
1: अब सीधा सवाल एनटीए को क्लीन चिट देने वाले जिम्मेदारों से है। अगर एनटीए पाक साफ है, एनटीए का कोई कसूर नहीं है, एनटीए में सब कुछ पारदर्शी है, तो प्राइवेट कोचिंग चलाने वाला कुलकर्णी एनटीए की परीक्षा प्रक्रिया का हिस्सा कैसे बना। अब इस सवाल का जवाब केंद्रीय शिक्षा मंत्री को देना है, क्योंकि एनटीए के गड़बड़ झाले का सबसे बड़ा सबूत लेक्चरर कुलकर्णी है। ऐसा क्यों, इसे भी समझिए। शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि पीवी कुलकर्णी ने नीट का पेपर लीक किया जो एनटीए से जुड़ा हुआ था। 3 मई को नीट की परीक्षा हुई, लेकिन अप्रैल 2026 के आखिरी हफ्ते में कुलकर्णी ने पेपर लीक की आरोपी मनीषा वाघमारे की मदद से कुछ छात्रों को जुटाया जो नीट की परीक्षा देने वाले थे। कुलकर्णी ने पुणे स्थित अपने घर पर छात्रों के लिए कोचिंग क्लास चलाई। क्लास में कुलकर्णी ने छात्रों को सवाल और उसके जवाब बताए। ये वही सवाल थे जो

0: नीट के पेपर में सेट किए गए थे। कोचिंग में मौजूद छात्रों ने सवाल और जवाब को अपनी कॉपी में लिखा। पेपर लीक की जांच में पाया गया कि केमिस्ट्री के वही सवाल 3 मई 2026 को हुए नीट यूजी परीक्षा के असली पेपर से पूरी तरह मेल खाते हैं। कुलकर्णी केमिस्ट्री का लेक्चरर है और नीट के सभी 45 सवाल लीक पेपर से मैच करते हैं।
1: दर्शक में हम एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि नेतन्याहू वर्चुअली ट्रंप से कुछ बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। जब ब्रेक के बाद हम दस्तक में लौट कर आएंगे तो आपको बताएंगे। आप देखते रहिए दस्तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस। इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एक्जे द नंबर 1 कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: सर, म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे एक सवाल पूछना था।
1: सॉरी सर, मार्केट की बात करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना था।
2: ऐसे सवाल मुझे डिस्टर्ब ही नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड्स की कोई भी बात हो ना, मैं शांति को साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड में आपकी शांति और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस दोनों बनी रहनी चाहिए। अपने लॉन्ग टर्म गोल से फोकस हटाने का नहीं, और म्यूचुअल फंड से सही।
3: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
3: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
4: इसमें माइक्रोफाइबर है।
3: माइक्रोफाइबर यानी
4: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
3: हमारे सीमेंट में नहीं है,
4: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
5: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
6: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
7: AU सोच बदलो और बैंक भी।
8: और वही कहाँ गए थे घूमने?
9: जीके मैक्स।
10: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
9: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
11: जेके वॉल मैक्स
12: बेस्ट पेंट,
13: जेके मैक्स।
14: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
15: JK Max Paints, खुशियों के रंग।
16: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले, ढूंढ नहीं पाएगा।
17: ए प्रिया, कैसा लगा मेरा स्टंट?
18: विक्रम, एक हिंट तो देते।
19: विक्रम!
18: हिंट।
17: बड़े आराम से।
20: Character, the taste of success.

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: यार
2: ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
3: इसमें माइक्रोफाइबर है.
2: माइक्रोफाइबर यानी
3: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत.
2: हमारे सीमेंट में नहीं है.
3: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है.
4: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़. ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है.
5: JK मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है. ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद. JK मसाले, जहां स्वाद वहां JK.
6: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना. कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत. कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो.
5: JK मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है. ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद. JK मसाले, जहां स्वाद वहां JK.
7: ये मिट्टी सिर्फ फसल नहीं उगाती, देश का भविष्य भी बनाती है. और इस भविष्य को संभालते हैं ये हाथ, हमारे देश के असली हीरो के हाथ, जिनके हाथ की ताकत है क्रिस्टल के उत्पाद. तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल के उत्पाद. देश का किसान, देश का हीरो.
8: कुछ भी खा नहीं पा रहा हूँ, बहुत अपसेट हूँ.
9: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स.
10: लायन डेट नट बाइट्स.
11: मुख्य समाचार. मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है और धूप में सीधा काम करने को टाल दिए.
12: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रहे.
13: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश.
14: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है. 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं.
15: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, NTO को पता नहीं.
13: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर.
16: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ.
14: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ. हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा.
13: जहां खबर वहां खबरदार.
17: इन एसोसिएशन विद
18: मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील.
19: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
20: वेट लाइफस्टाइल के लिए 10 अलग पेजेस क्यों फॉलो करना? हेल्थ, फिटनेस, योगा, मेंटल वेलनेस, सब कुछ एक ही जगह फिट तक. सिंपल टिप्स, एक्सपर्ट इंसाइट्स, रियल कॉन्वर्सेशंस. लाइफ अपग्रेड करो इजी वे. वॉच ओनली ऑन फिट तक YouTube.
13: 23 और 29 अप्रैल वोटिंग.
21: 90% क्रॉस कर गई बंगाल की वोटिंग.
22: ये बढ़ा हुआ मतदान आखिर किस तरफ जाएगा?
13: 4 मई काउंटिंग.
23: भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी पीछे हो गई है
24: रुझानों में बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए.
13: 8 मई CM का ऐलान.
25: शुभेंदु अधिकारी बंगाल के मुख्यमंत्री होंगे.
13: 9 मई शपथ.
26: शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते थे.
13: YouTube पर सबसे ज्यादा व्यूअर्स, सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा एंगेजमेंट, सर्च में नंबर 1, गूगल ट्रेंड्स में नंबर 1, लाइव स्ट्रीम में सबसे आगे. TV हो, डिजिटल हो, YouTube हो या सोशल मीडिया, हर प्लेटफॉर्म पर आज तक रहा चुनाव में सबसे आगे. चुनाव मतलब सिर्फ आज तक.
27: अभी NTA ने नीट UG का नई परीक्षा की तिथि घोषणा किया है. 21 जून को री एग्जामिनेशन की डेट घोषणा की है. मित्रों, मैं 2-3 विषय आपके सामने, आपके माध्यम से देशवासियों के सामने, स्पेसिफिक स्टूडेंट्स और उनके अभिभावकों के सामने रखना चाहता हूं. हमारी सर्वोपरि प्राथमिकता है छात्रों की भविष्य, उनकी परिश्रम के प्रति संवेदनशीलता सरकार की सदैव है। 3 मई को एग्जामिनेशन हुई, 7 मई तक एनटीए को एनटीए की ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम पे कहीं से आपत्ति आई। गेस पेपर में ऐसे कुछ प्रश्न आए हैं जो इस बार की क्वेश्चन शीट्स में था। तुरंत ही हम लोगों की वहाँ चर्चा हुई, एनटीए ने और सरकार ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तुरंत उसको प्रारंभिक थोड़ा इंक्वायरी किया, एजेंसियों को दे दिया, भारत सरकार की एजेंसियों को दे दिया। भारत सरकार एजेंसी संबंधित 2-3 राज्यों के साथ जुड़ा हुआ विषय था प्रथम दृष्टिया में, राज्यों की एजेंसियों से संपर्क किया और 12 तारीख तक यानी 8 को सुबह प्रक्रिया एक प्रकार से 7 रात को शुरू हुई, 8 को ही शुरू हुई, 8, 9, 10, 11 3-4 दिन में जब हमको स्पष्टता हुई, हम कन्फर्म हुए हैं कि इस बार गेस पेपर की आड़ पे क्वेश्चंस बाहर गया है।
0: यू एंड आई हैव नोन ईच अदर नाउ फॉर अ लॉन्ग टाइम, इनफैक्ट द लॉन्गेस्ट रिलेशनशिप ऑफ आवर टू कंट्रीज दैट एनी प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट हैज हैड, एंड इट्स टू मी एन ऑनर। We've had a fantastic relationship. We've gotten along. When there were difficulties, we worked it out. I would call you and you would call me. And whenever we had a problem, people don't know, whenever we had a problem, we worked it out very quickly. We're going to have a fantastic future together. Such respect for China, the job you've done. You're a great leader. I say it to everybody. You're a great leader. Sometimes people don't like me saying it, but I say it anyway because it's true. I only say the truth.
1: Presented by Patanjali Gaay Ka Ghee. Lagaye swad aur sehat ka tadka, har maa ka bharosa, pyar se parosa. In association with
2: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
3: स्वागत एक बार फिर से आपका। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं दस्तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और अब बात हम करेंगे ट्रंप के वॉर गेम की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दिमाग में ईरान पर हमले का नया प्लान घूम रहा है, वही प्लान जिसे लेकर इजरायली मीडिया ने बड़ा दावा किया है। दावे के अनुसार इसराइल में अमेरिका के टॉप सैन्य कमांडर्स की सीक्रेट मीटिंग हुई। मीटिंग में ईरान पर सैन्य हमले के विकल्पों पर लंबी चर्चा हुई। मीटिंग के बाद इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को इसराइली सेना के टॉप ऑफिसर्स ने वॉर रूम में ब्रीफिंग दी और रिपोर्ट की बात मानी तो चीन से लौटने के चंद घंटों के बाद ईरान पर हमले का आदेश ट्रंप दे सकते हैं, जिनसे नेतन्याहू यहां पर बात कर रहे हैं। और बड़ी बात यहां पर यह है कि इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू लगातार ईरान के साथ बातचीत का विरोध कर रहे हैं। इसराइल ये मानता है कि जब तक ईरान का एटमी प्रोग्राम बंद नहीं होता तब तक युद्ध विराम संभव नहीं है।

0: ट्रंप का ऑर्डर आएगा, इसराइल बम बरसाएगा। इसराइल मीडिया का ईरान पर बारूदी दावा। अगले 72 घंटे में ईरान पर फिर हमला संभव है। इसराइल में अमेरिकी टॉप कमांडर की बैठक। ईरान पर नए हमले का पूरा वॉर प्लान तैयार है। चीन से अमेरिका पहुंचेंगे ट्रंप तो कुछ बड़ा होगा। ट्रंप के दिमाग में हमले का नया गेम प्लान। 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था। इसी हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई मारे गए। ईरान पर हमले से ठीक पहले इसराइल में अमेरिकी सेंट्रल कमांड के टॉप अफसरों की इजरायली सेना के टॉप कमांडरों के साथ मीटिंग हुई थी। बैठक में ईरान पर हमले के प्लान पर मुहर लगी थी। एक बार फिर इसराइल में अमेरिकी सेंट्रल कमांड के टॉप अफसरों ने इजरायली सेना के साथ मीटिंग की है। इजरायली मीडिया का दावा है कि मीटिंग ईरान पर नए हमलों को लेकर हुई थी। संभावित चीन से लौटने के चंद घंटों के बाद ईरान पर हमले का आदेश अमेरिकी राष्ट्रपति दे सकते हैं। इजरायली मीडिया चैनल का न्यूज में छपी रिपोर्ट में ईरान पर नए हमले की तैयारी को लेकर दावा किया गया है, तो इसराइल के चैनल 12 न्यूज की रिपोर्ट में भी ऐसी संभावना जताई गई है। दोनों मीडिया रिपोर्ट का दावा यही है कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम नहीं बल्कि महायुद्ध तय है। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से ईरान के एटमी ठिकाने को लेकर दी गई नई धमकी को सुने तो इसराइली मीडिया के दावे में दम नजर आता है, क्योंकि ट्रंप का दावा है ईरान के परमाणु ठिकाने पर वो हमला कर सकते हैं।
1: I would rather get it, but we have our eyes on it. You know, we know exactly what's happening there. We had the other day there was a man that tried to get into the chute. You know, we saw that there was a door that was blown to smithereens, and we know everything that's happening. If they ever moved on, and I told them that if they have send a force over there to try where I see somebody's trying. All we'll do is just hit it with a couple of bombs, and that's going to be the end of that. They won't do it. I said, we have 9 cameras on that site, on those 3 sites, 24 hours a day. We know exactly what's happening.
0: Trump की माने तो ईरान के परमाणु ठिकानों की पहरेदारी अमेरिका लगातार कर रहा है। 24 घंटे ईरान के परमाणु ठिकानों की मूवमेंट को मॉनिटर किया जा रहा है। ट्रंप मानते हैं कि जिन एटमी ठिकानों पर बमबारी की गई थी उन्हीं ठिकानों पर ईरान का 440 किलो एनरिच यूरेनियम मौजूद है। ये वही यूरेनियम है जिसकी वजह से अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील अटकी हुई है। ईरान खुल्लम खुल्ला ऐलान कर चुका है कि अपने परमाणु प्रोग्राम को ना तो वो बंद करेगा और ना ही अमेरिका को अपना 440 किलो एनरिच यूरेनियम सौंपेगा।
2: बातचीत का मतलब ये नहीं है कि कोई एक पक्ष अपनी मांगों को एक तरफा तौर पर दूसरे पक्ष पर थोपे या दूसरे को उन्हें मानने पर मजबूर करे। जहां तक हमारा सवाल है तो ये किसी हालत में नहीं होगा, कम से कम ईरान के मामले में तो बिल्कुल नहीं। हम अमेरिका की अनुचित मांगों के आगे नहीं झुकेंगे।
3: As far as Iran is concerned, you are not going to yield to their maximalist demands.
2: क्योंकि हमें लगता है कि ये नाइंसाफी होगी। ये सब कुछ उसी अन्यायपूर्ण अभियान का हिस्सा है जो ईरान के खिलाफ युद्ध से शुरू हुआ था। ये हमला पूरी तरह से गैरकानूनी था। फिलहाल अमेरिका की ओर से घोषणा की गई है कि वो ईरान के प्रस्ताव से सहमत नहीं है, मगर मुझे लगता है कि पाकिस्तानी मध्यस्थों के जरिए हमें मौजूदा स्थिति की बेहतर जानकारी मिल सकती है।
0: अगर अमेरिका एक बार फिर ईरान पर हमले की तैयारी कर चुका है तो ईरान की सेना भी महायुद्ध के लिए तैयार है। IRGC के पूर्व कमांडर ने ऐलान किया है कि जब तक ट्रंप ईरान की शर्तें नहीं मानेंगे तब तक बातचीत नहीं होगी। इस दौरान अमेरिका ने हमला किया तो ईरान अपनी सैन्य ताकत से ट्रंप की सेना को मिट्टी में मिला देगा। बातचीत के दौरान अमेरिका ने 2 बार ईरान पर सैन्य हमला किया। हमें अमेरिका पर बिल्कुल भरोसा नहीं है और पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि इस हमले में हम सही हैं। अगर युद्ध फिर से शुरू होता है तो हम दुश्मन पर ऐसे भीषण प्रहार करेंगे जो हमने पहले कभी नहीं किए। जब तक सभी मोर्चों पर युद्ध समाप्त नहीं हो जाता, प्रतिबंध नहीं हटा लिए जाते, सीज हुए फंड जारी नहीं कर दिए जाते, युद्ध क्षति की भरपाई नहीं कर दी जाती और हॉर्मुज पर ईरान की संप्रभुता को मान्यता नहीं दी जाती, तब तक आगे कोई बातचीत नहीं होगी। ईरान की सेना का दावा है कि ट्रंप ने अपने मुल्क को वेनेजुएला समझने की गलती की है। ईरान की सेना का दावा है कि ट्रंप ने उनके मुल्क को वेनेजुएला समझने की गलती की है। ये वही गलती है जिसकी कीमत युद्ध में अमेरिका को चुकानी पड़ी। वाशिंगटन वहां हत्या, तख्ता पलट और तोड़फोड़ के माध्यम से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम था, क्योंकि वो वेनेजुएला था, ईरान नहीं। अमेरिका अपने सभी उपकरणों और रक्षा क्षमताओं के बावजूद ईरान के खिलाफ युद्ध में पराजित होगा, क्योंकि सशस्त्र बलों की बहादुरी और दृढ़ता तथा राष्ट्र का समर्थन जो हमेशा मौजूद रहता है इस युद्ध में सहायक होगा और ये इतिहास में दर्ज होगा। मतलब साफ है, अमेरिका के किसी भी संभावित हमले से निपटने के लिए ईरान तैयार है। ये बात अमेरिका को भी पता है कि 40 दिन चले युद्ध के दौरान भी ईरान की मिसाइल शक्ति को अमेरिका तबाह नहीं कर सका। आज तक भी रोक।
4: आइए हमारी संवाददाता सुमित चौधरी के पास आपको लिए चलते हैं। सुमित, ईरान और अमेरिका के बीच पीस डील अटकी हुई है, लेकिन क्या दोनों देश महायुद्ध की तरफ आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? इसराइल और अमेरिका में क्या कुछ चल रहा है? सुमित,
5: बिल्कुल, जंग के इस आगाज को या नए फेज के जंग को लेकर जो खबरें मिल रही हैं वो दोनों तरफ से मिल रही है। इसराइल के कई मीडिया हाउसेस ने खबरें दी हैं कि लगातार जब जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप चीन के अपने दौरे से वापस आएंगे तो वो नए ऑपरेशन की शुरुआत कर सकते हैं, और इसको लेकर IDF के बीच में और सेटकॉम के बीच में यानी सेंट्रल कमांड ऑफ अमेरिका के बीच में भी उनके बड़ी बैठकें हुई, और ये बैठकें वैसी ही हैं जैसे 28 फरवरी के ऑपरेशन से पहले की जा रही थी। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से भी तेहरान टाइम्स की तरफ से रिपोर्ट आई है कि जो ईरान का प्रपोजल था, जो लगातार सीज फायर को लेकर प्रपोजल था, उसको अमेरिका ने रिजेक्ट कर दिया। अमेरिका चाहता है कि ना सिर्फ यूरेनियम बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने पर बातचीत बने। अब ये दोनों ऐसे बड़े बिंदु हैं जो ये दिखाते हैं कि दोनों तरफ से तैयारियां की जा रही है। कल भी हमने आपको बताया कि ईरान ने अपनी जो प्रेजेंस है, खासतौर पर जो अपने स्मॉल कॉम्बैट बोट्स की जो प्रेजेंस है उसकी संख्या को वहां पर बढ़ा दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर लगातार वो अपनी सैन्य मुस्तैदी कर रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप वापस लौटेंगे वो बड़ी तैयारियों के लिए एक बार फिर से अपना एक रिव्यू लेंगे और शायद उसी के बाद अमेरिका नए ऑपरेशन की शुरुआत कर सकता है।
4: और अब बात ट्रंप के चीन दौरे की। जी हां, ट्रंप का चीन दौरा तो समाप्त हो चुका है, लेकिन अब यह दुनिया जानना चाहती है कि इस दौरे पर क्या क्या हुआ, चीन और अमेरिका के बीच क्या डील हुई और किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। दुनिया यह भी जानना चाहती है कि चीन में शी जिनपिंग और ट्रंप के बीच ईरान युद्ध को लेकर क्या बात हुई। तो आइए हम आपको दिखाएं आखिर ट्रंप चीन में क्या क्या समझौते हुए और ट्रंप चीन से शी जिनपिंग से क्या बातचीत करके आए हैं।
6: ट्रंप का चीन दौरा खत्म, क्या डील हुई, क्या बातचीत हुई? ईरान युद्ध को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने जिनपिंग से क्या क्या कहा? क्या जिनपिंग ईरान के परमाणु ताकत बनने के खिलाफ हैं? दो सुपर पावर्स के बीच हाई लेवल बातचीत पर रूस की नजर क्यों? ताइवान और बोइंग विमान पर ट्रंप और जिनपिंग में क्या डील हुई? बीजिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की दो दिन की हाई लेवल बातचीत पूरी होने के बाद ट्रंप का चीन दौरा समाप्त हो गया। दौरे के आखिरी दिन चीन के झोंगनान हाई कैंपस में दोनों नेताओं ने सीमित अधिकारियों के साथ गहन चर्चा की और फिर लंच मीटिंग के जरिए बातचीत को आगे बढ़ाया। आपको बता दें कि झोंगनान हाई बीजिंग में स्थित एक हाई सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स है जहां चीन के शीर्ष नेता रहते और काम करते हैं। इसे चीन की सत्ता का असली केंद्र माना जाता है, कुछ हद तक अमेरिका के व्हाइट हाउस जैसा। यहां राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता अहम फैसले लेते हैं। आमतौर पर ये जगह बाहरी लोगों के लिए पूरी तरह बंद रहती है और विदेशी नेताओं को यहां बुलाना बेहद दुर्लभ माना जाता है। यही कारण है कि ट्रंप ने पूछा कि क्या दूसरे देशों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को भी यहां लाया जाता है, जिस पर शी ने कहा कि बहुत कम और ये बेहद दुर्लभ है। गुरुवार को ट्रंप ने दावा किया कि चीन बोइंग से 200 विमान खरीदेगा और अमेरिकी तेल भी लेगा, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन सच ये भी है कि ट्रंप के पूरे चीन दौरे पर ईरान युद्ध का मुद्दा ही छाया रहा। ईरान दौरे के बीच ही ट्रंप ने फॉक्स न्यूज के सीन हैनिटी को इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में उन्होंने चीन की ओर से ईरान को दी जा रही सैन्य मदद पर बड़ा दावा किया। डोनाल्ड ट्रंप की माने तो शी जिनपिंग ने उनसे कहा है कि चीन अब ईरान की हथियारों और साजो सामान से मदद नहीं करेगा। ट्रंप ने यह भी कहा है कि ये ईरान को लेकर चीन के राष्ट्रपति का बहुत सख्त बयान है।
1: Fighting a war with us or anything?
7: No.
1: He said he's not going to give military equipment. That's a big statement. He said that today. That's a big statement. He said that strongly. But at the same time, he said, you know, they buy a lot of their oil there and they'd like to keep doing that. He'd like to see Hormuz Strait opened. I said, well, we didn't stop it. They did it. And then we stopped them. You know, sort of interesting. He joked. He said, you know, it's sort of, if they stopped it, then you stopped them. But they'd like to see it open.
6: आपको बता दें कि अमेरिका ने आरोप लगाया था कि चीन ईरान को मैन पैड्स और एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम भी सप्लाई कर रहा है।
8: China is preparing to ship weapons to Iran.
9: Well, if China does that, China is going to have big problems, okay?
6: बीजिंग में ट्रंप शी जिनपिंग बातचीत के बाद चीन ने ईरान युद्ध पर अपना रुख साफ कर दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये युद्ध कभी शुरू ही नहीं होना चाहिए था और अब इसे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। साथ ही चीन ने सीज फायर जारी रखने और बातचीत का रास्ता खुला रखने पर जोर दिया। बीजिंग में बातचीत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी नहीं चाहते कि ईरान के पास परमाणु हथियार हों। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने शी से इस मुद्दे पर बात की और उन्हें लगता है कि चीन भी इसी रुख पर है। हालांकि शी ने सीधे जवाब नहीं दिया, लेकिन ट्रंप का मानना है कि वो इस खतरे को समझते हैं।
1: We did discuss Iran. We feel very similar to Iran. We want that to end. We don't want them to have a nuclear weapon. We want the straits open. We're closing it now. They closed it, then we closed it on top of them. But we want the straits open. And we want them to get it ended because it's a crazy thing. They're a little bit crazy. And it's no good. Can't have it. They cannot have a nuclear weapon.
4: आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं अमेरिका वॉशिंगटन। हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहित शर्मा जुड़ चुके हैं। ट्रंप के पूरे बीजिंग दौरे को आप रोहित किस तरह से डिफाइन करेंगे और ईरान पर ट्रंप के दावों को लेकर क्या क्या चर्चा है?
10: आई थिंक जो सबसे पहली चीज है जो इसमें हम देख रहे हैं कि कोई ऐसा बड़ा एग्रीमेंट अनाउंस नहीं हुआ है और आशंका थी कि ऐसा माना जा रहा था कि एक काफी रिपोर्टिंग की गई थी यहाँ पे स्पेशली कि करीब $1 trillion का इन्वेस्टमेंट जो है चाइना से लेने की कोशिश की जाएगी, लेकिन वैसा हमें कुछ देखने को मिला नहीं। हाँ, बोइंग जेट्स की बात हुई है कि करीब 200 के आसपास बोइंग के जेट्स जो है चाइना खरीदेगा, सो ऑब्वियसली यू नो दैट एड्स अप। लेकिन उसके अलावा जो अगर हम मोटा मोटी बात करें तो बीन्स की बात हुई, सोयाबीन्स की, अमेरिकन फार्मर्स जो है रिलाई करते हैं चाइना के ऊपर टू परचेज दो सोयाबीन्स, तो उसको लेके एक अग्रीमेंट है। बीफ को लेके इंपोर्ट करने का कि अमेरिका जो है बीफ को लेके उसमें भी अग्रीमेंट है। और साथ ही साथ आई थिंक एक मेजर विक्ट्री हम ये कह सकते हैं वो ये है कि जो अमेरिकन कंपनीज को रेयर अर्थ एलिमेंट्स चाहिए चाइना से, आई थिंक उस पर कहीं ना कहीं अग्रीमेंट है बना है। और उसी वजह से हमने देखा कि किस तरह से इलॉन मस्क और बाकी के टेक सीईओज एनवीडिया के और बाकी के वहां पे गए थे प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ। तो आई थिंक वो हम कह सकते हैं कि यू नो सॉर्ट ऑफ अग्रीमेंट्स है। लेकिन जो बड़े बड़े मुद्दे हैं और जिस मुद्दों को लेकर हमेशा से एक स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन रहा है दोनों देशों के बीच में, उन पे ज्यादा चीजें नहीं हुई है। जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप को जब पूछा गया कि क्या ताइवान को लेके वो टॉपिक आया कॉन्वर्सेशन में, तो उन्होंने कहा हाँ, उन्होंने कहा शी जिनपिंग ने ताइवान को लेकर चीजें कही और मैंने सुन ली, मैंने रिएक्ट नहीं किया। हमारी पोजीशन जो है वो वैसी ही है। सब सेक्रेटरी रूबियो ने भी कहा कि हमारी पोजीशन नहीं बदली है। आर्म्स को लेकर बात की कि जो शी जिनपिंग ने कहा कि क्या आर्म्स आप देंगे ताइवान को और सपोर्ट करेंगे, तो उस पर भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि मैंने जवाब नहीं दिया। तो बाकी टैरिफ्स को लेके जो हमेशा से एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन रहा है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का, अभी से नहीं पहले अपने एडमिनिस्ट्रेशन से भी, उसको लेके भी यू नो जो टैरिफ ट्रूस हम कह सकते हैं वो बना हुआ है, बरकरार है, उस पर भी कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिला। और साथ ही साथ ईरान को लेके भी जब चर्चा की गई तो ये कहा गया हाँ चाइना भी नहीं चाहता कि मिलिट्री वहां पे यू नो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में रहे या वहां पे टोल टैक्स लगे और एक रेजोल्यूशन होना चाहिए। मोटा मोटी अगर हम देखें तो आई थिंक ये एक अगेन इट इज अगर एक सेंटेंस में कहा जाए तो इट वॉज अ कंटिन्यूएशन ऑफ डायलॉग।
4: बिल्कुल, बहुत धन्यवाद रोहित। रोहित शर्मा हमारी संवाददाता वाशिंगटन से जानकारी दे रहे थे। लेकिन इस समय एक बड़ी खबर आ रही है ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी से। फर्नीचर मार्केट में शाहबेरी में भीषण आग लग गई है। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। शाहबेरी ग्रेटर नोएडा में एक जगह है और यहां फर्नीचर का मार्केट है। लाइन से दुकानें हैं, एक के बाद एक कई यहां पर फर्नीचर के बड़े बड़े इस तरह के गोडाउन हैं और फर्नीचर की शॉप्स हैं, दुकानें हैं और ये आग तेजी से फैली है। एक दुकान में आग लगी, उसके बाद कई दुकानों को इसने अपनी चपेट में ले लिया है। आग की भयावह लपटें और धुएं का उठता गुबार, इसकी भयावहता की कहानी खुद कह रहा है। दूर से ली गई ये तस्वीर आपको दिखा रही है कि आग कितनी भयानक है। ये शाहबेरी में लगी आग है, इस समय आग को बुझाने का काम चल रहा है। फायर ब्रिगेड की कई सारी गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। हालांकि ये संकरा रास्ता है जो अभी आप ट्रैफिक देख रहे हैं, गाड़ियां देख रहे हैं, ये NH9 और ग्रेटर नोएडा को जोड़ने वाला रास्ता है जिसके बीच में शाहबेरी आता है। तो अब यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का पहुंचना भी मुश्किल होता है क्योंकि ट्रैफिक जाम आमतौर पर वैसे भी इस इलाके में रहता है। लेकिन इस समय जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो भयावह तस्वीरें हैं। ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां आग लगी और आग भी फर्नीचर मार्केट में लगी। फर्नीचर मार्केट मतलब लकड़ी का सारा सामान, यहाँ पर फोम होता है, गद्दे होते हैं, लकड़ी का सारा फर्नीचर होता है, जिस कारण यह आग और बुरी तरह से भड़क गई। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिए। शुभरात्रि।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
11: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
12: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
13: The wide world of sports comes alive on TuneIn with top stations, game-changing podcasts, and even live play-by-play. It's your playbook for every league. MLB.
14: Gone! Home run!
13: NHL.
14: Scores!
13: College basketball.
15: He shoots it immediately.
16: He makes it in!
13: Tennis. Golf. And even top motorsports like NASCAR.
17: One lap to go.
13: And IndyCar. No matter what gets your heart racing and fuels your fandom, hear it here on TuneIn.
18: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
19: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
20: इसमें माइक्रोफाइबर है।
19: माइक्रोफाइबर यानी
20: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
19: हमारे सीमेंट में नहीं है,
20: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
21: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
22: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
23: AU सोच बदलो और बैंक भी।
24: सर म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे एक सवाल पूछना था।
25: सॉरी सर, मार्केट की बात करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना था।
26: ऐसे सवाल मुझे डिस्टर्ब ही नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड्स की कोई भी बात होना, मैं शांति को साथ रखता हूँ।
27: म्यूचुअल फंड में आपकी शांति और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस दोनों बनी रहनी चाहिए।
26: वो अपने लॉन्ग टर्म गोल से फोकस हटाने का
0: नहीं
26: और म्यूचुअल फंड है
0: सही।
2: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
3: और वही कहाँ गए थे घूमने?
14: जीके मैक्स।
15: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
14: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी
15: जेके वॉल मैक्स
14: बेस्ट पेंट
15: जेके मैक्स।
14: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स खुशियों के रंग।
16: Like I said before, we better hold this in.
17: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है और धूप में सीधा काम करने को टालिए।
27: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रही।
28: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
29: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
30: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
28: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
31: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
29: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
28: जहां खबर वहां खबरदार।
32: In association with
33: Monte Carlo, it's the way you make me feel.
34: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: इंडिया में रहना है तो मोदी जी कहना है,
1: कहना ही है भाई। इतनी चुनाव क्या है, जनता जनता निक्स करेगी ना। इतनी जो चुनाव मतलब एक होता है कि भाई बोल दिए आ रहे हैं वे, ये तो असुमेह चल रहा है मोदी जी का
2: ये तो
1: अरे
0: आप आईएस निकाल लिए होते
1: तो हम अभी फरारी काट रहे होते। अगर हम आईएस बन जाते मेरे पास जांच चल रही होती।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: Music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
3: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
4: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
5: इसमें माइक्रोफाइबर है।
4: माइक्रोफाइबर यानी
5: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
4: हमारे सीमेंट में नहीं है,
5: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
6: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
7: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है और धूप में सीधा काम करने को टालिए।
8: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रही।
9: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी पर प्राथमिकता दी है। हॉर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। जल्द से जल्द शांति और स्थिरता की बहाली के लिए भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। ब्रदर, हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को निरंतर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जनवरी में आपकी भारत यात्रा के दौरान हमने आपस से सहयोग को क्वालिटेटिवली अपग्रेड करने पर सहमति जताई थी। इतने कम समय में भी हमने सभी विषयों में उल्लेखनीय प्रगति की। दोनों टीमों के बीच भी करीबी संपर्क रहा। आज जिस तरह की परिस्थिति है, इसमें भारत और यूएई की स्ट्रेटेजिक साझेदारी, इसका महत्व कई गुना बढ़ गया है। हम आने वाले समय में हर क्षेत्र में साथ मिलकर के आगे बढ़ते रहेंगे।

0: इंडिया में रहना है तो मोदी जी कहना है।
1: कहना ही है भाई, इतनी चुनाव क्या है, जनता जनता निक्स करेगी ना। इतनी जो चुनाव मतलब एक होता है कि भाई बोल दिए आ रहे हैं, वे ये तो अश्वमेघ चल रहा है मोदी जी का
2: ये तो
0: आप आईएस निकाल लिए होते
1: तो हम अभी फरारी काट रहे होते। अगर हम आईएस बन जाते मेरे पास जान चल रही होती।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: नीट पेपर लीक कांड में सीबीआई का बड़ा एक्शन, मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी पुणे से गिरफ्तार। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का ऐलान, 21 जून को होगा नीट का री एग्जाम। धार भोजशाला विवाद में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत, हाईकोर्ट ने माना सरस्वती मंदिर। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने निर्णय का किया स्वागत, ओवैसी बोले अयोध्या जैसा निर्णय। यूपी में नए मंत्रियों की शपथ के 6 दिन बाद भी मंत्रालयों का बंटवारा नहीं, सूत्रों के अनुसार पीडब्ल्यूडी, जनसंपर्क और ऊर्जा पर फंसा पेच। कल दिल्ली में अमित शाह नितिन नवीन से मिले थे योगी। विदेश यात्रा पर सेस लगाने की खबरों को पीएम ने किया खारिज, कहा अफवाह, ऐसे प्रतिबंधों का सवाल ही नहीं। ग्रेटर नोएडा की शाहबेरी में लगी भीषण आग, फर्नीचर मार्केट जलकर पूरी तरह से खाक, दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। ये समय वारदात देखने का है शम्स के साथ, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से आ गई है। ग्रेटर नोएडा की शाहबेरी में एक बड़ी आग लग गई है और ये आग लगी है फर्नीचर मार्केट में। ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी के फर्नीचर मार्केट में ये आग लगी है, भीषण आग लगी है और दमकल की कई सारी गाड़ियां हैं जो आग बुझाने के काम में जुटी हुई हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी की। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में शाहबेरी एक गांव है और उसकी मुख्य सड़क पर बहुत सारी फर्नीचर की दुकानें हैं, बड़ी बड़ी ये दुकानें हैं, गोडाउन हैं और ये जो गाड़ियों का रैला आप देख रहे हैं ये मुख्य सड़क है जो NH9 और ग्रेटर नोएडा को आपस में जोड़ती है। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता, अरविंद क्या स्थिति है इस समय आग की?
1: पहले एक जो फर्नीचर की शॉप थी, काफी बड़ी शॉप थी, उसमें आग लगी, उसके बाद धीरे धीरे करके 3 से 4 दुकानों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया है। नोएडा फायर डिपार्टमेंट की 8 से 10 गाड़ियां आग बुझाने में के काम में लगी हैं, लेकिन अगर आप देखें तस्वीरों में दूर से ही धुएं का गुबार वो दिख रहा है और यहां पर लाइन से दर्जनों फर्नीचर की मार्केट है आसपास या जो रिहायशी इलाके हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, उन सबके बीच भीषण आग लगी है। लाखों का जो सामान है, जो फर्नीचर है, वो जल करके खाक हो गया है। हालांकि इसमें अभी तक किसी के फंसे होने की जानकारी नहीं है, लेकिन ये आग पहले एक बड़े जो फर्नीचर की शॉप, उसमें गोदाम भी था, उसमें लगी और उसके बाद धीरे धीरे करके विकराल रूप अख्तियार कर लिया। सही बड़ी बात है कि यहाँ पर दर्जनों दुकानें हैं फर्नीचर की, अब जाहिर सी बात है लकड़ी का काम होता है, लेकिन आग बुझाने का यहाँ पर कोई बंदोबस्त नहीं था। पहले भी सवाल उठते रहे और अभी जो भीषण आग लगी हुई है, फायर डिपार्टमेंट की टीम आग बुझाने में लगी हुई है।
0: बहुत धन्यवाद अरविंद आपका। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे, आग अभी पूरी तरह से बुझी नहीं है और क्योंकि फर्नीचर मार्केट है इसलिए आग तेजी से फैली है। और अब देखिए वारदात शम्स के साथ।
2: नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में एक अमीर कारोबारी का दिन दहाड़े कत्ल हो गया। कत्ल की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। चंद घंटों में शूटर भी पकड़ा गया, लेकिन जब शूटर से पूछताछ हुई तो कत्ल के मास्टरमाइंड के तौर पर एक ऐसा चेहरा सामने आया जिसके बारे में सुनकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए, क्योंकि ये शख्स कोई मामूली आदमी नहीं बल्कि एक ऐसा नामी संत था जिसके चाहने वाले लाखों में थे। लेकिन आखिर एक संत कैसे बन गया कत्ल का मास्टरमाइंड? तो आइए देखते हैं एक चौंकाने वाली मर्डर मिस्ट्री।
3: सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे की यह तस्वीरें देखिए। तस्वीरें एक भीड़ भरी सड़क की हैं। जिंदगी अपनी रफ्तार पर है, लोग अपने अपने काम से जा रहे हैं, लेकिन तभी बीच सड़क पर कुछ ऐसा होता है जिसके कुछ ही देर बाद पूरा शहर दहल जाता है। लेकिन क्या आपको इन तस्वीरों में कुछ भी अलग या खास नजर आया? अगर नहीं तो चलिए अब यही तस्वीरें आप हमारी नजर से देखिए। तस्वीरें 11 नवंबर 2025 की हैं। वक्त है सुबह के करीब 11:30 बजे। सड़क पर लोगों की आवाजाही के बीच एक शख्स दूर से स्कूटी पर सवार होकर चला रहा है, और जैसे ही वो कैमरे की फ्रेम में आता है, पीछे से बाइक पर आ रहा एक शख्स बहुत पास से उस स्कूटी सवार को कुछ कहता या करता हुआ दिखता है, और फिर लहरिया कट लगाते हुए वो बाइक सवार स्कूटी वाले से आगे निकल जाता है। पहली नजर में ऐसा लगता है कि शायद बाइक से आगे निकलने वाले आदमी ने स्कूटी वाले को इशारे से कुछ बताने की कोशिश की। बाइक के आगे निकलते ही स्कूटी सवार थोड़ी देर के लिए बीच सड़क पर रुकता है और फिर दोबारा आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बाद जो कुछ होता है वो बिल्कुल अप्रत्याशित है। वो चंद कदम आगे बढ़ते ही अपनी स्कूटी समेत लड़खड़ाते हुए मुंह के बल सड़क पर गिर पड़ता है। आसपास के लोग मदद के लिए आते हैं। पहले तो लोगों को माजरा समझ ही नहीं आता, लेकिन फिर जिस्म से रिश्ते खून और सड़क पर गिरे शख्स की हालत को देखकर ये साफ हो जाता है कि वो किसी बीमारी या एक्सीडेंट की वजह से यहाँ नहीं गिरा, बल्कि उसे गोली मारी गई। जी हाँ, गोली। यकीनन मामला अजीब है। बीच सड़क पर चलती बाइक से कोई चलती स्कूटी सवार को अपनी गोलियों का निशाना बना लो, ऐसा आमतौर पर देखने को नहीं मिलता। लेकिन जो देखने को नहीं मिलता, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में 11 नवंबर 2025 को कुछ वैसा ही हुआ। आनंद फानंद में सड़क पर गिरे शख्स को उठाकर अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद डॉक्टर उसे मुर्दा करार देते हैं। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि शहर के अमीर कारोबारी और बीजेपी लीडर रमेश इनानी थे। जी हाँ, वो रमेश इनानी जिन्हें पूरा शहर उनके नाम से जानता था। लेकिन फिर सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर रमेश इनानी की हत्या क्यों हुई? क्यों किसी ने बीच सड़क पर पीछा करते हुए घात लगाकर उन पर गोलियां चलाई? आखिर उन्हें शूट करने वाला कातिल कौन था? चित्तौड़गढ़ पुलिस ने अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही कातिल की तलाश शुरू कर दी। इत्तेफाक से पुलिस को इस संदिग्ध कातिल के कुछ और सीसीटीवी फुटेज हाथ लगे, जिसमें वो शूटआउट से पहले एक शराब के ठेके के पास बाइक लगाकर शराब खरीदता हुआ दिख रहा था। अब पुलिस के हाथ उसे लेकर कुछ क्लू लग चुके थे। आखिरकार पुलिस की कोशिश रंग लाई और 7 से 8 घंटे गुजरते गुजरते पुलिस ने रमेश इनानी को बीच सड़क पर गोली मारने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। इस शूटर का नाम था मनीष दुबे। मनीष चित्तौड़गढ़ से दूर बनारस का रहने वाला था। अब सवाल यह था कि आखिर मनीष की यूपी से दूर राजस्थान के कारोबारी से ऐसी क्या दुश्मनी थी? तो जब पुलिस ने इसे लेकर सवाल जवाब किए तो उसने पुलिस को एक अजीबोगरीब कहानी सुनाई। मनीष ने कहा कि किसी मोड़ पर रमेश इनानी ने उसका अपमान किया था, जिसका बदला लेने के लिए उसने रमेश इनानी का कत्ल कर दिया। हालांकि पुलिस को उसकी इस कहानी पर यकीन नहीं था।
4: नवंबर 2025 को चित्तौड़गढ़ शहर में एक यहाँ के प्रतिष्ठित नागरिक और व्यापारी श्री रमेश इनानी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, और उस हत्या के तुरंत पश्चात लगभग 6-7 घंटे बाद हमने जो व्यक्ति था उसको अरेस्ट किया था, जिसने इस हत्याकांड को रियर पिस्तौल शूट करके उन्होंने मारा था, उसको हमने अरेस्ट कर दिया था। और जब हमने उसको अरेस्ट किया और उससे जो इंट्रोगेशन किया, तो ये बात शुरू में निकल के आई कि ये तो कोई सामान्य सी घटना थी, लेकिन जब रिमांड की अवधि के दौरान उससे लगातार सस्टेंड इंट्रोगेशन किया गया तो बहुत ही चकित करने वाले खुलासे हमें मिले थे।
3: उधर पुलिस ने शूटर को गिरफ्तार तो कर लिया था, लेकिन मरने वाले कारोबारी के घर वाले लगातार इस बात पर जोर दे रहे थे कि इस कत्ल में गिरफ्तार शूटर तो सिर्फ एक मोहरा भर है। उनका कहना था कि चूंकि रमेश इनानी का करीब 20 सालों से जमीन के एक बड़े हिस्से को लेकर रमताराम नाम के एक तथा कथित संत से विवाद चल रहा था, तो उन्हें इस बात का शक है कि इस वारदात में रमताराम का हाथ हो सकता है। रमताराम जो उन दिनों चित्तौड़गढ़ में रामद्वारा का प्रमुख था और रामस्नेही संप्रदाय से जुड़ा हुआ था, मगर दिक्कत ये थी कि पुलिस के पास रमताराम के खिलाफ तब कोई सबूत नहीं थे।
4: जिस दिन आपको याद होगा कि जब श्री इनानी की बॉडी को उनके परिवारजन लेकर आए थे और उन्होंने एक यहाँ पर छोटा सा आंदोलन भी किया था और ये कहा था कि श्री इनानी का एक पारिवारिक विवाद चल रहा है जमीन को लेकर। उस जमीन में जो लाभान्वित होने वाले व्यक्ति हैं वो यहाँ पर जो राम द्वारा है उसके जो अधिकृत अधिकारी हैं श्री रमताराम, उनको भी तत्काल अरेस्ट किया जाना चाहिए। ये उस भीड़ में और वहाँ के लोगों ने हम पे बहुत दबाव डाला था। उस दिन हम इस बात को बिल्कुल हमने स्पष्ट किया था कि तत् समय तक हमारे पास में ऐसा कोई भी सबूत नहीं था जो शूटर के केवल मात्र कहने से, या तब तक तो ये बात स्टैब्लिश भी नहीं हुई थी कि इस हत्याकांड के पीछे कौन है।
3: हालांकि जब इसके बाद पुलिस ने अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाई तो पुलिस को इस सिलसिले में कई डिजिटल सबूत मिले और कई नए चेहरों का पता चला। इन्हीं में एक चेहरा

0: फर्जी संत ने आखिर ये साजिश रची कैसे? असल में रामद्वारा नाम की संस्था और इनाणी परिवार के बीच करोड़ों की जमीन को लेकर चित्तौड़गढ़ में एक पुराना विवाद चला रहा था। इसी विवाद के सिलसिले में रमेश इनाणी पर पहले भी एक बार जानलेवा हमले की कोशिश हुई थी, लेकिन तब रमेश इनाणी बच गए थे। लेकिन चूंकि तमाम कानूनी लड़ाई के बावजूद उस जमीन पर रमताराम कब्जा नहीं कर पा रहा था, तो आखिरकार रमताराम ने रमेश इनाणी के नाम की सुपारी ही दे डाली।
1: यदि उनको अपनी निर्दोष होने का बहुत ये भ्रम था तो उन्हें तत्काल पुलिस के पास आना चाहिए था और अपनी बात को रखना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। तो आपराधिक कृत्य करने के पश्चात उन्होंने छुपने का, भागने का और कानून से दूरी बनाने का संपूर्ण प्रयास किया, जो ये सिद्ध करता है कि इनकी संलिप्तता इस पूरे प्रकरण में पूरी तरह थी। इसका एक ठोस कारण है कि रामद्वारा में और श्री मृतक इनाणी के परिवारजनों के बीच में एक लंबी सीरीज ऑफ लीगल बैटल रही है, उनके बीच में वाद विवाद मुकदमेबाजी रही है और ये अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है और बेशकीमती जमीन है, जिसके आधार पर ये मेंस रिया एस्टैब्लिश होता है कि उस जमीन के एकाधिकार को लेकर कहीं ना कहीं इस हत्या को अंजाम दिया गया।
0: फिलहाल पुलिस को इस केस में उन लोगों की तलाश है जिन्होंने 6 महीने तक छुपने में एक फर्जी संत की मदद की। पुलिस का मानना है कि कत्ल की साजिश में कुछ और भी बड़े और हाई प्रोफाइल लोग शामिल हो सकते हैं, जिन्हें जल्द कानून की जद में लाया जाएगा। फिलहाल 6 महीने बाद ही सही एक अमीर कारोबारी के कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का मास्टरमाइंड संत गिरफ्तार हो चुका है। लेकिन एक संत के कातिल बनने की इस कहानी ने लोगों को एक बार फिर से हैरान जरूर किया है। ओम प्रकाश, चित्तौड़गढ़, आज तक।
2: यूपी में एक अमीर कारोबारी के घर करोड़ों की डकैती हुई। घर वालों के साथ साथ पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए। हर कोई इस बात पर हैरान था कि आखिर गेट में ताला लगे होने और पूरा घर डिजिटली लॉक होने के बावजूद डकैत इतने आराम से घर के अंदर कैसे घुस गए। और बस इसी मिस्ट्री ने पूरे केस को सॉल्व कर दिया। डकैती की मास्टरमाइंड खुद घर की बेटी निकली।
0: मुरादाबाद के इस मकान में 11 मई की रात एक बड़ी वारदात हुई। 7 से 8 डकैतों के एक गैंग ने शहर के अमीर पीतल कारोबारी इमरान के घर धावा बोलकर गन पॉइंट पर जबरदस्त लूटपाट मचाई। बदमाशों ने करीब 1,20,00,000 रुपए कैश, 6 तोला सोने के गहने और दूसरी कीमती चीजें लूट ली। घर में घुसे बदमाशों ने पिस्टल के दम पर कारोबारी इमरान और उसके 2 जवान बेटों को भी बंधक बना लिया और जाते जाते ये धमकी देकर गए कि अगर किसी ने पुलिस से शिकायत की तो अंजाम बुरा होगा। मगर खुद इमरान से लेकर घर के तमाम लोग इस बात से हैरान थे कि आखिर डकैत आधी रात को घर में घुसे कैसे, क्योंकि एक तो घर के गेट पर ताला लगा होता है, ऊपर से मैनुअल ताले से अलग गेट पर डिजिटल लॉक भी है जिसे सिर्फ अंदर से ही खोला जा सकता है, क्योंकि डिजिटल लॉक का रिमोट घर वालों के पास ही होता है। पुलिस को भी जब डकैती की जानकारी मिली तो उसने मौके का जायजा लिया और ताले और डिजिटल लॉक की इस मिस्ट्री में उलझ गए। अब पुलिस को शक होने लगा कि कहीं इस वारदात में कोई इनसाइडर यानी घर का ही कोई मेंबर तो नहीं। पुलिस ने चुपचाप घर वालों के मोबाइल फोन की डिटेल चेक करने की शुरुआत की। उसे पता चला कि इमरान की 21 साल की बेटी अरीबा का अरशद वारसी नाम के एक लड़के से अफेयर है और घर वाले दोनों की शादी के लिए तैयार नहीं है। इसके बाद पुलिस ने अरशद की लोकेशन ट्रैक करने की शुरुआत कर दी। अरशद के मोबाइल फोन से पुलिस को पुख्ता सबूत मिल गए कि इस डकैती में अरशद का ही हाथ है। साफ हो गया कि अरशद और उसके दोस्त अकेले इस कांड को तब तक अंजाम नहीं दे सकते थे जब तक कि अरीबा उनका साथ न दे। अब पुलिस ने अरीबा से पूछताछ की तो वो टूट गई। उसने बताया कि उसी ने गेट की चाबी बनवाकर अपने आशिक अरशद को दे दी थी और प्लान के मुताबिक आधी रात को डिजिटल लॉक भी अंदर से ओपन कर दिया था। असल में इस प्रेमी जोड़े का प्लान घर से भागकर डकैती के रुपयों से नई जिंदगी की शुरुआत करने का था। डकैती तो हो गई, अरशद को रुपए भी मिल गए, लेकिन इससे पहले कि भागने भगाने का सीन पूरा होता पुलिस ने सारा खेल ही खराब कर दिया। फिलहाल अपने ही घर में डाका डलवा कर बेटी जेल में चक्की पीसने की तैयारी कर रही है। जगत गौतम, मुरादाबाद, आज तक।

0: तो वारदात में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज।
1: Hey, it's Billy Bush. Tune into my show Hot Mics Monday to Thursday at noon Eastern, 9 a.m. Pacific for the latest in politics, entertainment, tech, sports, pop culture and much more. Just tell your device to play Hot Mics on TuneIn to listen.
2: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
4: ग्यारह मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
5: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
6: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
4: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
7: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
5: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
4: जहां खबर वहां खबरदार।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

0: वेतन बढ़ नहीं रहे, रेट बढ़ी जा रहे हैं मार्केट के अंदर हर एक आइटम के।
1: जो बढ़ा है ठीक है, और बढ़ेगा तो कुछ नहीं होगा।
2: ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪਊਗਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਊਗਾ ਜੀ।
3: ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਪੜੇਗਾ ਸਭਕੋ।
4: ਕਰੀਬ 2 ਸਾਲ ਕੀ ਲੰਬੇ ਅੰਤਰਾਲ ਕੇ ਬਾਅਦ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਓਂ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਬੜਾ ਝਟਕਾ ਦੇ ਹੀ ਦਿਆ। ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ ਗਾੜੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੇ ਹੀ ਜੇਬ ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾ ਤਗੜਾ ਝਟਕਾ ਲਗਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਕੇ ਨਏ ਦਾਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਬਾਰ ਸਿੱਧਾ 3 ਰੁਪਏ ਕਾ ਬੜਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇ ਸਾਥ ਹੀ CNG ਵੀ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
5: बढ़ोतरी तो CNG वाले कर रहा है, गाड़ी वाले कर रहा है, कमाई में तो कमी हो रहा है।
6: इतना हमें डायरेक्टली नहीं पड़ेगा बट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट काफी ज्यादा है। हाँ। वो तो हम सबको ही पता है।
4: ये बढ़ोतरी आम आदमी के घर के बजट का बैलेंस बिगाड़ने का डर बढ़ा रही है, क्योंकि इसके बाद न केवल अपना निजी वाहन चलाना महंगा होगा बल्कि कैब बस समेत पेट्रोल डीजल और CNG से चलने वाले पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी महंगा होने की आशंका है। साफ है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों का ये बढ़ता ग्राफ गाड़ियों तक सीमित नहीं रहेगा, इसका सीधा असर हर उस सामान पर पड़ेगा जिसे आप खाते पीते या इस्तेमाल करते हैं।
7: तो महंगाई तो बढ़ती ही जा रही है, हर तरह से खर्चे बहुत ज्यादा ही होते जा रहे हैं। आम आदमी क्या करे समझ ही नहीं आ रहा है।
4: इस बढ़ोतरी की मुख्य वजह मिडिल ईस्ट का तनाव है। ईरान और अमेरिका के बीच जंग के हालात बनने से पहले क्रूड ऑयल $70 पर था, जो उछलकर $100 प्रति बैरल के पार चला गया है। सरकार पहले ये दलील दे रही थी कि पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका में कीमतें 15-20% बढ़ गईं, लेकिन भारत में बोझ नहीं डाला गया। लेकिन तेल कंपनियों को हो रहे भारी भरकम नुकसान के बाद देश में भी तेल के दाम बढ़ना तय था। कंपनियां अभी भी पेट्रोल डीजल पर 25-30 रुपए प्रति लीटर का नुकसान झेल रही हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो अगर ग्लोबल एनर्जी मार्केट में सप्लाई का संकट बना रहा तो आने वाले दिनों में कीमतें और बढ़ सकती हैं, जिससे आम आदमी पर महंगाई की मार और पड़ सकती है। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
2: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
0: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
3: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका मुंबई मेट्रो में। ये समय तो मुंबई मेट्रो का है, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है जो पश्चिम बंगाल से है, जहां अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई है। चुनाव प्रचार में भड़काऊ भाषण और अमित शाह को धमकी देने के मामले में अभिषेक बैनर्जी TMC के नेता ममता बैनर्जी के भतीजे पर केस दर्ज हो गया है। 5 धाराओं में पुलिस ने केस दर्ज किया है, यानी कि अभिषेक बैनर्जी की मुसीबत अब बढ़ सकती है। एक सामाजिक कार्यकर्ता ने शिकायत की थी और उस शिकायत के बाद ये केस दर्ज हुआ है। तो अभिषेक बैनर्जी पर केस दर्ज हो गया है। भड़काऊ भाषण भी उन्होंने दिया था। गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ भी काफी बातें उन्होंने कही थी, जिस पर यह केस दर्ज हुआ है। और इस FIR में 5 धाराएं अलग अलग लगाई गई हैं, जिसमें कुछ धाराएं गंभीर हैं। और इन धाराओं के चलते अभिषेक बैनर्जी की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। देखना यह होगा कि अब इस FIR के बाद पुलिस का क्या एक्शन होता है और किस तरह से पुलिस इस FIR पर कार्रवाई करती है। क्या अभिषेक बैनर्जी से पूछताछ होगी, क्या अभिषेक बैनर्जी पुलिस के सामने हाजिर होंगे, और उसके बाद FIR के बाद पुलिस किस तरह से अपना केस आगे अदालत के सामने रखती है। तो गृह मंत्री अमित शाह को धमकी भी दी थी और धमकी देने का ये आरोप भी था। इस मामले में भी ये FIR दर्ज हुई, मतलब इस FIR में ये भी मामला है कि उन्होंने न सिर्फ भड़काऊ भाषण दिया था बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धमकी भी दी थी। तो 5 धाराएं अलग अलग इस पूरी FIR में अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ दर्ज की गई हैं। और अब मुंबई मेट्रो की खबरें। CBI ने नीट पेपर लीक मामले में पुणे से मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी PV कुलकर्णी लातूर के दयानंद कॉलेज में केमिस्ट्री का लेक्चरर है, जो NTA की ओर से परीक्षा प्रक्रिया का हिस्सा था। इस व्यक्ति ने पुणे में अपने घर पर कुछ छात्रों को इकट्ठा करके उनकी क्लास ली थी। इस दौरान उसने छात्रों को सवाल बताए, उनके विकल्प दिए, सही उत्तर बोलकर लिखवाए और हूबहू वही प्रश्न नीट परीक्षा के वास्तविक पेपर से पूरी तरह से मेल खाए। सवाल यह है कि अभी और कितने बड़े लोग हैं जिनका पर्दाफाश होना बाकी है।

0: नीट पेपर लीक केस में 22 लाख छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाला मास्टरमाइंड अब सीबीआई की गिरफ्त में आ चुका है। हैरानी की बात है कि पुणे से सीबीआई की टीम ने जिस मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है वो लातूर के दयानंद कॉलेज में केमिस्ट्री का लेक्चरर पीवी कुलकर्णी है। नीट पेपर लीक मामले में पीवी कुलकर्णी परीक्षा कराने वाली एजेंसी एनटीए की ओर से परीक्षा प्रक्रिया का हिस्सा था। पेपर लीक केस के मुख्य सूत्रधार पीवी कुलकर्णी ने पुणे में अपने घर पर कुछ छात्रों को इकट्ठा करके क्लास ली थी। इस स्पेशल कोचिंग क्लास के दौरान उसने छात्रों को प्रश्न और उनके विकल्प और सही उत्तर बोलकर लिखवाए थे। छात्रों की अपनी नोटबुक में हाथ से लिखे गए प्रश्न नीट परीक्षा के वास्तविक प्रश्न पत्र से पूरी तरह मेल खाते हैं। पुणे से गिरफ्तार आरोपी मनीषा वाघमारे की पूछताछ के दौरान कुलकर्णी की भूमिका सामने आई थी।
1: नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने महाराष्ट्र से चौथे आरोपी और कहा जा रहा है कि वो किंगपिन है इस पूरे पेपर लीक मामले के, उन्हें अरेस्ट कर लिया है। रिटायर्ड प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी को लातूर से सीबीआई ने अरेस्ट किया है। पीवी कुलकर्णी पहले लातूर दयानंद कॉलेज में केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे और आपको बता दें कि सीबीआई के मुताबिक एनटीए ने जो पेपर सेट किया था नीट 2026 की परीक्षा के लिए, उस पेपर सेटिंग के प्रोसेस में भी पीवी कुलकर्णी शामिल थे। पीवी कुलकर्णी ने मनीषा वाघमारे, जो कि 14 मई को अरेस्ट हुई पुणे से, मनीषा वाघमारे के साथ मिलकर अप्रैल महीने के आखिरी महीने में जो कि करीब एक हफ्ता पहले है नीट परीक्षा के, पहले 3 मई को नीट की परीक्षा हुई थी और नीट की परीक्षा के ठीक एक हफ्ते पहले बहुत से ऐसे बच्चे जो नीट की परीक्षा दे रहे थे उनकी कोचिंग ली थी और उन्हें ये सवाल जो एनटीए के द्वारा सेट किए गए थे, जो नीट परीक्षा 2026 में आने वाले सवाल थे, उन सवालों के लिए प्रिपरेशन करवाया था, उन सवालों के लिए जवाब दिए थे और उन सवालों को इन स्टूडेंट से लिखवाया था। ये बात सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में सामने आई है।
0: पिछले 24 घंटों में सीबीआई ने देश भर में कई जगहों पर तलाशी अभियान चलाया है। इस दौरान सीबीआई ने कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और मोबाइल फोन जब्त किए हैं। 14 मई तक जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे और अहिल्यानगर से कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। इनमें से 5 आरोपियों को पहले ही अदालत में पेश किया जा चुका है और उनसे पूछताछ के लिए उन्हें 7 दिनों की पुलिस हिरासत में लिया गया है। नीट पेपर लीक केस में किरकिरी के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगले साल से नीट की परीक्षा ओएमआर सीट की जगह कंप्यूटर से यानी ऑनलाइन होगी।
2: अगले साल से परीक्षा, इसकी जो मूल जड़ है ओएमआर, अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी। तुलनात्मक ओएमआर से सीबीटी थोड़ा प्रूफ है, थोड़ा प्रोटेक्टेड है, थोड़ा उसको ठीक किया जाए। टेक्नोलॉजी देखो, साइबर क्राइम तो एक बड़ा दुनिया बन चुकी है ना, इसको हम लोग सब नई दुनिया में रह रहे हैं, वो भी वहाँ भी चुनौती है, लेकिन हमारे देश की सिस्टम पे हमें भरोसा करना पड़ेगा और तुलना, ये तो इम्प्रूवमेंट की चीज है।
0: लेक्चरर पीवी कुलकर्णी से पहले पेपर लीक के महाराष्ट्र चैप्टर में कई किरदार सामने आ चुके हैं, जिनमें शुभम खैरनार, धनंजय लोखंडे, मनीषा वाघमारे और डॉक्टर ओंकार शिंगोटे शामिल हैं। यही वो किरदार हैं जिनके आसपास कुलकर्णी ने पेपर लीक की पूरी पटकथा लिखी थी। इस गिरोह का सबसे बड़ा नटवरलाल धनंजय लोखंडे और शुभम खैरनार को माना जा रहा है, जो BAMS का छात्र है लेकिन वो खुद को डॉक्टर बताता था। शुभम खैरनार ने 2021 में मध्य प्रदेश के सीहोर में BAMS में दाखिला लिया था। आज तक की टीम जब सीहोर के उस आयुर्वेदिक कॉलेज में पहुंची तो पता चला कि शुभम कभी कॉलेज गया ही नहीं।
3: 2021 में इन्होंने श्री सत्य साई विश्वविद्यालय में आयुर्वेदा पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया था, जो कि प्रवेश के पश्चात इन्होंने किसी भी शैक्षणिक गतिविधि में अपना पार्टिसिपेशन नहीं दिया और इनको विभाग के द्वारा कई बार कॉल भी किया गया और सूचना भी दी गई, लेकिन ये उसके बाद कॉलेज नहीं आए, ना इन्होंने क्लासेज अटेंड किए और किसी भी प्रकार का इनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं रहा।
0: महाराष्ट्र चैप्टर में अब तक जितने किरदार मिले हैं उनका कहीं ना कहीं मेडिकल पेशे से कोई ना कोई संबंध जरूर है। शुभम खैरनार का पिता डॉक्टर है, खुद शुभम मेडिकल छात्र और काउंसलर है। धनंजय लोखंडे का भाई डॉक्टर है और खुद धनंजय एडमिशन काउंसलर है। मनीषा वाघमारे का पति डेंटिस्ट है और मनीषा एडमिशन काउंसलर के साथ ब्यूटिशियन है। चौथा नाम डॉक्टर ओंकार शिंगोटे का है।
1: अभी तक ये कहा जा रहा है कि पीवी कुलकर्णी ही वो मुख्य कड़ी है जो इस पूरे मामले में पेपर लीक के मामले में शामिल हैं और इन्होंने ही पेपर लीक किया। जो सवाल आने वाले थे, जो 600 मार्क के पेपर आने वाले थे, जो शुभम खैरनार तक पहुंचा, धनंजय लोखंडे तक पहुंचा, यश यादव तक पहुंचा और बिवाल परिवार तक पहुंचा, उस पेपर को लीक करने के मामले में पीवी कुलकर्णी शामिल थे। पीवी कुलकर्णी का ही रोल था, इसीलिए उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। कैमरा पर्सन आशीष धामापुरकर के साथ दिव्येश सिंह, नाशिक, आज तक।
4: मुंबई में कोंकड़ के किसान संगठनों का चलो मुंबई मार्च आज चर्चा का विषय बना रहा। किसानों के इस मार्च को विपक्ष का पूरा समर्थन मिला। नाराज किसान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के घर को घेरने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने गिरगांव चौपाटी पर ही किसानों को रोक दिया। इस दौरान पुलिस और किसानों में जोरदार झड़प भी हुई। पुलिस ने किसान नेता राजू शेट्टी, हर्षवर्धन सपकाल, विनायक राउत जैसे नेताओं को हिरासत में लिया, जिसके बाद स्थिति सामान्य हो पाई।
5: महाराष्ट्र में एक बार फिर किसान आंदोलन की गूंज सुनाई दे रही है। कोंकण के किसानों की बदहाली को लेकर आज मुंबई की सड़कों पर जोरदार संघर्ष दिखा। विपक्षी दलों और किसान संगठनों के चलो मुंबई मार्च को पुलिस ने गिरगांव चौपाटी पर ही रोक दिया। ये मोर्चा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आवास तक जाना था, लेकिन पुलिस ने पहले ही किसान नेता राजू शेट्टी, हर्षवर्धन सपकाल, विनय राउत जैसे लोगों को हिरासत में ले लिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर आम फेंक कर अपना आक्रोश जताया और किसान सड़क पर ही लेट गए, जिसके बाद पुलिस और किसानों के बीच जमकर झड़प हुई।
6: महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र से आम और काजू और किसानों की मांगों को लेकर आज मुंबई के गिरगांव चौपाटी पर आंदोलन होने जा रहा है। हम देख रहे हैं यहाँ पर सांसद यूबीटी शिवसेना के सांसद अरविंद सावंत समेत सीपीएम पार्टी के लोग और कई विपक्षी पार्टी के नेतागण जो है इस आंदोलन में शामिल होने वाले थे। यह आंदोलन जो है ये मुंबई के गिरगांव चौपाटी से शुरू होकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आवाज वर्षा इस बंगले तक जाने का नियोजन था, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पर पुलिस पुख्ता इंतजाम करके खड़ी है और बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में पुलिस यहाँ पर तैनात की गई है। आम या काजू के जो उत्पादक है, जो किसान है, उनकी मांग है कि 1 हेक्टेयर को 5 लाख और 2 लाख रुपए दिया जाए, सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाए, क्योंकि हवा में जो हुए बदलाव है और साथ ही बेमौसम बारिश के वजह से काफी बड़ा नुकसान इन आम के किसानों का हुआ है। लगभग 90% जो पूरी फसल थी वो नष्ट हो गई है।
5: आंकड़े बताते हैं कि बेमौसम बारिश ने कोंकण के 1,31,000 हेक्टेयर क्षेत्र में तबाही मचाई है, जिससे 90% फसल बर्बाद हो गई है। पिछले साल 2,88,661 मीट्रिक टन के मुकाबले इस साल हापुस आम का उत्पादन 80% गिरकर मात्र 50,000 से 60,000 मीट्रिक टन रह गया है। मुंबई एपीएमसी में 17 मार्च 2024 को आम की 39,424 पेटियां आई थी, वहीं इस साल महज 5,728 पेटियां ही पहुंची। किसान सरकार से आम के लिए 5 लाख और काजू के लिए 3 लाख प्रति हेक्टेयर मुआवजे की मांग कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने हिरासत में लिए गए नेताओं को बाद में रिहा कर दिया, लेकिन विपक्ष सरकार पर किसानों की आवाज दबाने का आरोप लगा रहा है।
6: कभी भी आज तक कोंकण क्षेत्र के किसानों ने इस तरह से सड़क पर उतरकर आंदोलन कर कभी सरकार से मांग नहीं की थी। ये पहली बार है, ये ऐतिहासिक संकट आम के किसानों पर आया हुआ है और पहली बार हम देख रहे हैं कि इस तरह से वो आंदोलन करने मुंबई की सड़कों पर उतरे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैनात और इस आंदोलन को फिलहाल तो खारिज कर दिया गया है और सभी नेताओं को जो है वो हिरासत में लिया जा रहा है। कैमरा पर्सन मंदार चौहान के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई, आज तक।
4: पुणे में फिल्मी अंदाज में एक घटना हुई। अस्पताल के भारी भरकम बिल से नाराज होकर एक व्यक्ति ने अस्पताल को ब्लैकमेल करने के लिए नकली बॉम्ब रख दिया। आनंद फानन में एटीएस, बॉम्ब स्क्वाड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। 24 घंटे से अधिक जांच पड़ताल हुई और तब जाकर पता चला कि आरोपी ने नकली बॉम्ब और टाइमर रखा था। नागपुर एटीएस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
7: पुणे दिल्ली के उषा किरण हॉस्पिटल में कथित रूप से बम रखने के मामले में नागपुर एटीएस ने आरोपी को वर्धा जिले के पुलगांव रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया है। शिवाजी राठौड़ नाम का यह आरोपी शालीमार एक्सप्रेस से नागपुर जा रहा था। पुणे के उषा किरण हॉस्पिटल की पहली मंजिल पर ओपीडी के पास रखी गई बम जैसी संदिग्ध वस्तु मिलने के बाद पूरे अस्पताल में हड़कंप मच गया था। लेकिन अब जांच में खुलासा हुआ है कि संदिग्ध वस्तु बम नहीं थी, बल्कि उसे नकली टाइमर, वायर और जिलेटिन से बम जैसा दिखने वाला बनाया गया था। आरोप है कि अस्पताल के भारी भरकम बिल से नाराज होकर शिवाजी राठौड़ ने अस्पताल को ब्लैकमेल करने के लिए नकली बम रखा था।
8: नकली जिलेटिन और टाइमर, इन दोनों को स्टिकिंग करनी थी और जब सेलोटेप को खरीदने गया तब उसे पता चला कि वो स्टिकिंग हो ही नहीं रही है, और इसी के बावजूद उसने अस्पताल के बगल में जो स्टेशनरी थी वहां से एक डबल टेप खरीदी और उसके लिए यूपीआई का 15 रुपए का पेमेंट किया, तभी पुलिस को पहली बार आरोपी का नंबर मिला।
7: पुलिस ने भी साफ कर दिया है कि बरामद की गई डिवाइस बम नहीं है।
9: हडपसर के केस में एक एक्यूज्ड, एक आरोपी को पुलिस ने ताबे में लिया है। ये आरोपी, ये जो इन्वेस्टिगेशन परसों से चल रही थी उसमें सीसीटीवी की जो भी पड़ताल की गई और टेक्निकल जो भी इन्वेस्टिगेशन की गई उससे एक्यूज्ड का नाम कल दोपहर को फाइनल सामने आया था। उसके घर की और उसके दुकान की सर्चेज ली गई थी और उस सर्च के दरमियान जो इसमें डिजिटल वॉच जो इस डिवाइस में यूज हुआ था उसका एम्प्टी केस, कार्टन बॉक्स उसका हमें मिला था जो उसने ऑनलाइन मंगाया था। आरोपी का नाम निष्पन्न होने के बाद अलग अलग टीम्स उसके उसको सर्च कर रही थी, उसके फ्रेंड्स, उसके रिलेटिव्स, उसके जानने वाले सभी की इन्वेस्टिगेशन हुई और फाइनली वो एक्यूज्ड भाग रहा था ट्रेन से। उसको नागपुर में ईटीएस की टीम ने उसको डिटेन किया है, उसको पुणे में लाने के लिए जो आवश्यक प्रोसीजर्स है वो किए जा रहे हैं।
7: शुरुआत में इसे आतंकी साजिश तक माना जा रहा था, तब पुलिस, बम स्क्वाड और एटीएस की टीमें मौके पर पहुंची थी, लेकिन जांच आगे बढ़ी तो पूरी कहानी कुछ और ही निकली। 15 रुपए के यूपीआई ट्रांजैक्शन से शुरू हुई जांच आखिरकार नागपुर तक पहुंची और आखिरकार फर्जी बम रखने वाले आरोपी की गिरफ्तारी हो सकी।
8: नेपाल में आरोपी की बहन रहती है, उसने उसे फोन लगाया और कहा कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। इतना ही नहीं बल्कि उसे पता था कि पुलिस उसे ढूंढ रही है, इसलिए उसने उसका फोन बीच में रास्ते में ही फेंक दिया। लेकिन अहम बात यह है कि जब नागपुर के रेलवे स्टेशन में वो मिला, उससे पहले ही पुलिस अकोला में रुकी थी, उसके बाद एटीएस की टीम वहां चली गई और नागपुर में मिलने के बाद ये सब पर्दाफाश हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि 400 रुपए में जो जुगाड़ किया था उसके लिए लगभग 1000 से ज्यादा पुलिस फोर्स काम पे लग गई और बाद में पता चला कि ना ही वो बम था और ना ही इसमें कोई टेरर एंगल था। कैमरा पर्सन गोपाल हरने के साथ ओंकार वाबले, आज तक पुणे।
4: पेट्रोल और डीजल की कीमत में करीब 3-3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी के बाद मुंबई के पेट्रोल पंप्स पर हमारे संवाददाता दीपेश त्रिपाठी ने जाकर जायजा लिया।
10: पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि देखने को मिली है। पेट्रोल के दाम 3 रुपए 14 पैसे और डीजल के दाम 3 रुपए 11 पैसे से बढ़ा दिए गए हैं। हम इस वक्त मुंबई के पेट्रोल पंप पर हैं जो मुंबई के साइन में स्थित है और यहाँ पर सुबह का समय है इसलिए भीड़ थोड़ी कम है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा भीड़ यहाँ पर देखने को मिलेगी। सर, पेट्रोल के दाम बढ़ गए 3 रुपए से, क्या कहेंगे?
11: महंगाई तो बढ़ गया है, इट इज़ अ प्रॉब्लम फॉर एवरीवन। तो इम्प्रूव होना चाहिए, दाम गिरना चाहिए, उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, लाइक वील बी डूइंग इट।
10: बिल्कुल, तो दामों में थोड़ी कटौती होनी चाहिए, हम लोगों से बात करेंगे। सर, पेट्रोल के दाम 3 रुपए 11 पैसे से बढ़ गए, क्या कहेंगे?
12: कुछ ने टाकी भर के दे दो, बस हो गया।
10: प्रधानमंत्री जी ने अपील भी की थी कि पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, वर्क फ्रॉम होम ज्यादा करें।
12: हाँ, बात तो सही है, तो वर्क फ्रॉम होम अभी चालू का हुआ है।
10: बिल्कुल, तो फिलहाल जिनको जरूरत है वो तो पेट्रोल पंप पे आके पेट्रोल या डीजल भरवा ही रहे हैं, क्योंकि वर्क फ्रॉम जो है अभी तक कई कंपनियों ने लागू नहीं किया, कई ऑफिसेज ने शुरू नहीं किया है। लेकिन फिलहाल मिलीजुली प्रतिक्रियाएं लोगों की देखने को मिल रही हैं इस बढ़े हुए दामों को लेकर। अब देखना होगा आने वाले दिनों पर इस पर क्या असर होता है। कैमरामैन किरण सकपाल के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।
4: मुंबई मेट्रो में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, होते हैं उपस्थित, देखते रहिए आज तक।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
14: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
15: Feel the good vibes with Roots Reggae. TuneIn is bringing positivity to your ears with the best reggae hits. Stir it up with Bob Marley, Jimmy Cliff, Protégé, and much more. Let Roots Reggae lift your spirits and fill your ears with rhythms and beats of the best. Just search Roots Reggae or tell your device to play Roots Reggae on TuneIn.

देखिए, आज भोशाला के केस में, आज भोशाला के केस में ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट का बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया है, जिसमें ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट ने जो एएसआई का 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर है उसको पार्शली क्वैश किया है और हिंदू समाज के लोगों को वहां पे पूजा पाठ का अधिकार दिया है। कोर्ट ने भोशाला कॉम्प्लेक्स को राजा भोज का माना है, एक सरस्वती स्कूल माना है लर्निंग का। साथ ही साथ इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भोशाला के केस में जो हमारी मांग थी कि वहां से लंदन के म्यूजियम से मूर्ति वापस लाई जाए, कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर करे। और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो मुस्लिम पक्ष हैं वो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, जो रिस्पॉन्डेंट नंबर 8 है मौला कमालुद्दीन की तरफ से, और उनको अल्टरनेट लैंड देने के लिए सरकार उस पर विचार करे। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने यहाँ पे हमें पूजा पाठ का अधिकार दिया है, मैनेजमेंट के लिए सरकार को कहा है कि वो उसके मैनेजमेंट के लिए चीजें देखे, और जो एएसआई का ऑर्डर था 7 अप्रैल 2003 का जो यहाँ पे नमाज की अनुमति देता था उसको कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। अब वहाँ पे सिर्फ पूजा होगी, उस पूरे परिसर का जो स्वरूप है वो एक हिंदू मंदिर का स्वरूप माना है कोर्ट ने, सरस्वती मंदिर का माना है।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों पर विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर है। विपक्ष कह रहा है कि चुनाव तक सब ठीक था, लेकिन अचानक सरकार ने जनता के ऊपर बोझ डाल दिया।
2: देखिए, चुनाव खत्म हो गए हैं और जाहिर सी बात है कि जनता की जेब पर डाका तो सरकार को डालना ही था। जब तक चुनाव हो रहे थे पिछले 3 महीने में तो दाम नहीं बढ़ाए गए, लेकिन जैसे ही चुनाव समाप्त हुआ उसके लिए माहौल बनाया प्रधानमंत्री जी ने और देश की जनता के जेब को उन्होंने लूटना शुरू कर दिया। खुद विदेश चले गए और पूरे देश को कह रहे हैं कि विदेशों की यात्राएं मत करिए, और खुद विदेशी यात्रा पर निकल गए। तो दरअसल अपने उद्योगपति दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए, उनकी रिहाई का सौदा करने के लिए उसकी वसूली देश की जनता से की जाएगी। ये वो लोग हैं जो नारा लगा के आए थे कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, और उसके बाद से आज पेट्रोल डीजल कहां ला के खड़ा कर दिया है। जब विश्व बाजार में कच्चा तेल सस्ता था तब तो देश की जनता को उसकी जेब को लूट करके अपने जो पेट्रोल बेचने वाले डीजल बेचने वाले उद्योगपति दोस्त हैं उनको फायदा पहुंचा रहे थे। अब गैस भी महंगा कर दिया, कॉमर्शियल गैस भी महंगा कर दिया, पेट्रोल डीजल भी महंगा कर दिया। तो दरअसल ये सरकार पूरी तरह से देश की जनता को लूटने का काम कर रही है, उसके हित में कोई काम नहीं कर रही है। डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब जिस समय प्रधानमंत्री थे उस समय पेट्रोल और डीजल 58 रुपये 60 रुपये लीटर था, आज जबकि विश्व बाजार में तेल महंगा था। आज जब विश्व बाजार में तेल सस्ता था तब रेट ये था, अब जब थोड़ा सा युद्ध और सारी चीजें शुरू हुई तो चुनाव तक नहीं बढ़ाया। इसका मतलब सरकार अगर चाहे तो रेट ना बढ़े, ये सीधे सीधे डकैती है देश की जनता की जेब से।
1: मुंबई मेट्रो में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
5: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
6: माननीय हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया है अभी हमने उसको देखा नहीं है। हम लोग देखेंगे, हमारे वकील उसकी समीक्षा करेंगे। और इसके पूर्व भी जब केस चल रहा था तो हमारे विद्वान सीनियर एडवोकेट सलमान खुर्शीद साहब, शोभा मेनन जी, नूर शेख साहब और वारसी साहब ने अपने आर्गुमेंट रखे थे और बड़े शानदार ढंग से रखे गए थे। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हाईकोर्ट में हमारी बात नहीं सुनी गई। तो हाईकोर्ट के निर्णय का हम सम्मान करते हैं, लेकिन जहाँ पर हमारी बात नहीं सुनी गई तो उसको लेकर हम निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। देखिए, बात यह आ रही है कि 2003 का जो आदेश खारिज करने की बात आ रही है, वो 2003 में जो आदेश था वो पुष्प और अक्षत ले जाकर जो एक कम्युनिटी को अंदर ले जाने के लिए दिया था, वो आदेश की तो मांग हमने भी की थी कि उसको खारिज किया जाए। लेकिन उसके साथ जो नमाज का आदेश था वो स्पेशली 2003 का आदेश नहीं था। वो नमाज के आदेश में ये लिखा हुआ था कि जिस तरह पहले हो रही है उस तरह अभी भी होती रहेगी, तो उससे हमारी नमाज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम इसकी समीक्षा करेंगे, अगर होगा तो इसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे।
7: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

नीट पेपर लीक कांड में सीबीआई का बड़ा एक्शन, मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी पुणे से गिरफ्तार। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का ऐलान, 21 जून को नीट का री एग्जाम। धार भोजशाला विवाद में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत, हाईकोर्ट ने माना सरस्वती मंदिर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया स्वागत, ओवैसी बोले अयोध्या जैसा निर्णय। विदेश यात्रा पर टैक्स लगाने की खबरों को पीएम मोदी ने किया खारिज, बताया अफवाह, कहा ऐसे प्रतिबंधों का सवाल नहीं। टीएमसी के सांसद अभिषेक बैनर्जी के विरुद्ध कोलकाता में एफआईआर, विधानसभा चुनाव में भड़काऊ भाषण देने, अमित शाह को धमकाने का आरोप, 5 धाराओं में केस। भारत और यूएई में तेल गैस समेत कई महत्वपूर्ण समझौते, अबुधाबी से $5 अरब निवेश पर करार। आज पीएम मोदी के नीदरलैंड्स दौरे पर रिश्तों को मिलेगी नई उड़ान, मोदी पहुंचे नीदरलैंड्स।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। मध्य रात्रि पश्चात रात के 12 बजे हैं और ये समय नॉनस्टॉप 100 यानी कि 100 महत्वपूर्ण खबरों का है। लेकिन इस समय बड़ी खबर आ रही है। खबर ये कि 5 देशों की अपनी यात्रा के दूसरे पड़ाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड्स पहुंच चुके हैं और वहां पर उनका एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले यूएई में प्रधानमंत्री थे और अपने एक छोटे दौरे पर यूएई में उन्होंने महत्वपूर्ण समझौते किए हैं, विशेषकर तेल, ऊर्जा और सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर समझौते किए। जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं यूएई के प्रमुख नाहयान के साथ प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीरें, और उसके बाद प्रधानमंत्री पहुंचे नीदरलैंड्स। देश और दुनिया की 100 महत्वपूर्ण खबरें आइए आपको दिखाते हैं नॉनस्टॉप 100 में।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

नीट पेपर लीक कांड में सीबीआई का बड़ा एक्शन, मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी पुणे से गिरफ्तार, अब तक 8 गिरफ्तार। एनटीए के एग्जाम प्रोसेस में शामिल था कुलकर्णी, केमिस्ट्री लेक्चरर ने घर में सीक्रेट क्लास में सभी को पेपर सॉल्व करवाया। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की दबिश तेज, लातूर के कोचिंग सेंटर निदेशक से पूछताछ, घर पर छापा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का ऐलान, 21 जून को नीट की री परीक्षा होगी, 14 जून को एडमिट कार्ड मिलेंगे। धर्मेंद्र प्रधान बोले, अगले वर्ष से ऑनलाइन होगी परीक्षा, ओएमआर से बेहतर है कंप्यूटर आधारित परीक्षा। धर्मेंद्र प्रधान बोले, परीक्षा के लिए मिलेगा 15 मिनट का अतिरिक्त समय, कोई फीस हम नहीं लेंगे। नीट री एग्जाम को लेकर धर्मेंद्र प्रधान की एक और घोषणा, छात्रों को मिलेगा अपने पसंद के शहर में एग्जाम देने का मौका। सरकार का पेपर माफिया को जड़ से खत्म करने का ऐलान, बोले, छात्रों के भविष्य के साथ कोई समझौता हम नहीं करेंगे। जांच एजेंसियों का मानना है कि नीट पेपर लीक में सारा खेल कोचिंग माफियाओं का, पकड़े गए लोग केवल नेटवर्क का हिस्सा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने नीट यूजी पेपर लीक की कड़ी निंदा की, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला विवाद में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत, हाईकोर्ट ने माना सरस्वती का मंदिर। हाईकोर्ट का बड़ा निर्णय, मुस्लिम पक्ष को भी अलग से मिलेगी जमीन। धार भोजशाला मामले में हिंदू पक्षकार ने कैवियट दाखिल की, कहा, हमें बिना सुने ना आए कोई आदेश। धार भोजशाला में हिंदू पक्ष की जीत पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन बोले, ये अंतिम नमाज थी, अब यहां सिर्फ पूजा होगी। एसआई की रिपोर्ट पर हाईकोर्ट ने विश्वास व्यक्त किया, भोजशाला में संरक्षण जारी रखने की बात। धार भोजशाला पर मिली जीत से हिंदू पक्ष खुश, लोगों ने खूब जश्न मनाया। धार भोजशाला विवाद में अलग अलग जमीन की मांग कर सकता है मुस्लिम पक्ष। ओवैसी ने निर्णय पर आपत्ति व्यक्त कर बताया अयोध्या जैसा। ओवैसी बोले, उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का आदेश रद्द करेगा। कोलकाता में सड़क पर जुमे की नमाज को लेकर हंगामा, पुलिस ने सख्ती दिखाकर नमाज नहीं पढ़ने दी। कोलकाता में फैक्ट्री पर बुलडोजर चला, 22 जून को अगली सुनवाई, पुलिस प्रशासन ने की संयुक्त कार्रवाई। पीएम की अपील पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्णय, सोमवार शुक्रवार को वर्चुअल सुनवाई होगी, 2 दिन वर्क फ्रॉम होम होगा। केरलम के नए सीएम वी डी सतीशन के शपथ ग्रहण में शामिल हो सकते हैं तमिलनाडु के सीएम विजय, 18 को है समारोह। केरलम सीएम के शपथ ग्रहण में नहीं जाएंगे शशि थरूर, सॉरी बोलते हुए कहा कि मैं बॉस्टन में रहूंगा। बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 15 सीनियर आईएएस का ट्रांसफर, श्रम संसाधन विभाग के एसीएस बने सेंथिल कुमार। एडीआर रिपोर्ट का खुलासा, बिहार कैबिनेट के करीब आधे मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज, 90% मंत्री हैं करोड़पति। पीएम मोदी की बचत अपील के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्राइवेट जेट छोड़ दिया, इंडिगो से पुणे से बेंगलुरु की यात्रा की। पुणे में शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सरकार 12.35 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदेगी प्याज। मुंबई में कोंकण के किसान के नेतृत्व में आम काजू किसानों के नुकसान को लेकर चलो मुंबई विरोध मार्च निकाला गया। मुंबई में किसान आंदोलन में कई नेता हिरासत में लिए गए, मुआवजे की मांग कर रहे थे, प्रदर्शन पर तनाव। पुणे अस्पताल में बॉम्ब रखने की धमकी देने वाले को एटीएस की टीम ने वर्धा से गिरफ्तार किया। पेट्रोल डीजल दूध के दाम बढ़ने पर दिल्ली के नेहरू प्लेस में महिला कांग्रेस का प्रदर्शन, केंद्र के खिलाफ नारेबाजी। रायपुर में पेट्रोल डीजल की अफवाह से पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी लाइन, हेल्पलाइन पोस्टर लगाए गए। गाजियाबाद में सनातन संगठनों को एकजुट करने के लिए राष्ट्रीय हिंदू फ्रंट कार्यालय का उद्घाटन, गिरिराज सिंह बोले, शक्ति स्वरूप को भी पहचाने। मोकामा विधायक अनंत सिंह, भोजपुरी गायक गुंजन सिंह की अग्रिम जमानत पर सुनवाई टली, 20 मई को अगली सुनवाई। देवरिया में 2 वर्ष से अवैध रूप से बनाई जा रही थी मस्जिद, मौके पर एसडीएम ने पहुंचकर निर्माण कार्य रुकवा दिया। चंडीगढ़ में राजभवन की ओर मार्च कर रहे किसानों को पुलिस ने रोका, वाटर कैनन आंसू गैस का इस्तेमाल किया। राजकोट में ट्रैफिक जाम हटाने की कार्रवाई में 12 मंदिरों पर बुलडोजर, एक मंदिर को बचाने के लिए लोगों ने रामधुन गाई। राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या में फिल्मी हस्तियों की बड़ी रुचि, रणवीर कपूर ने 3 करोड़ में खरीदी वहां पर जमीन, अमिताभ पहले ही खरीद चुके हैं जमीन। कूनो नेशनल पार्क में छोड़ी गई 2 और मादा चीता, जंगल में घूम रहे चीतों की संख्या बढ़कर हुई 16। जूनागढ़ में लोक कार्यक्रम के दौरान कलाकारों पर नोटों की बारिश, छात्रावास निर्माण के दान में जुटाई गई रकम। गुजरात के नर्मदा में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के पास आदिवासी परिवारों की रसोई हुई धुआंमुक्त, 665 घरों में बायोगैस प्लांट शुरू। देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से 4 धाम यात्रा, 13 लाख श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। वृंदावन पहुंचे प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर, प्रेमानंद जी महाराज का लिया आशीर्वाद। कैलाश खेर में महाराज के सामने भोलेनाथ मीराबाई के भजन गाए। उत्तराखंड का टिहरी गढ़वाल बना एडवेंचर धार्मिक पर्यटन का बड़ा केंद्र, देश विदेश से आ रहे हैं पर्यटक।
भीषण गर्मी में देशभर के लिए राहत की खबर। 26 मई को केरलम में दस्तक दे सकता है मानसून। निर्धारित समय से 6 दिन पहले मानसून इस बार पहुंच रहा है। मानसून के पहले आने से किसानों को फायदा होगा। खरीफ फसलों की बुआई के लिए अनुकूल मौसम रहेगा। केरलम में बारिश का अलर्ट, 2 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट। मानसून सीजन में सामान्य से कम बारिश की आशंका। देश भर में लगभग 80 सेंटीमीटर हो सकती है बारिश। दिल्ली के शाहदरा में रेलवे की पार्किंग में भीषण आग लग गई, कई गाड़ियां जली। नोएडा के सेक्टर 2 में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, धुआं दूर से दिखाई दिया। फरीदाबाद के बदरपुर बॉर्डर के पास विप्रो कंपनी में भी आग लगी, कोई हताहत नहीं। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में आकाशीय बिजली गिरने से घर में आग लगी, महिला झुलसी। चेन्नई में टेक महिंद्रा परिसर में भी लग गई आग, कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, दमकल ने आग को बुझाया। मुंबई के बोरीवली एनेक्स मॉल में आग लगी, 8 से 10 गाड़ियों ने मुश्किल से आग बुझाई। साबरकांठा में भी एक होटल में अचानक से आग लग गई, मोबाइल टावर इलाके में था, बच गया हड़कंप। पटना के पौश इलाके में विधायक के भाई से चेन स्नेचिंग, बदमाश बाइक से आए थे। अलवर में गौवंश के अवशेष मिलने पर बवाल, हिंदू संगठनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। मथुरा में गांजा तस्करी में डायल 112 के सिपाही समेत 2 गिरफ्तार, 2 लाख रुपए बरामद, सिपाही निलंबित। गुजरात के आनंद में इंजीनियरिंग कॉलेज की बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह ढह गई, जोरदार धमाके के साथ जमींदोज। अमरेली में रिहायशी इलाके में घुसा शेर, बाइक सवार का पीछा कर रहा था, लोगों में दहशत। अमरेली में एक गांव में 2 शेर शिकार की तलाश में गलियों तक पहुंचे, बाल बाल बचा युवक, सतर्कता बरतने की लोगों से अपील। महाराष्ट्र के पालघर में फ्लाईओवर पर चांदी से भरी वैन पलटी, 17 करोड़ कीमत की करीब 600 किलो चांदी सड़क पर बिखर गई। महाराष्ट्र के नांदेड़ के स्विमिंग पूल में 9 वर्ष के बच्चे की मौत, हादसे से परिवार में शोक। इटावा में शॉपिंग मार्ट की लिफ्ट में 50 मिनट तक फंसे रहे लोग, 2 बच्चों समेत 7 लोग फंसे। सहारनपुर में रोटी पर थूकने का वीडियो वायरल, होटल कर्मचारी और मालिक दोनों गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में सड़क किनारे कूड़े के ढेर में सरकारी दवाइयों का बड़ा जखीरा मिला, एक्सपायरी और उपयोगी दोनों दवाएं। महाराष्ट्र के जालना में भजन कार्यक्रम के दौरान हार्ट अटैक से कलाकार का निधन, मंच पर गाते गाते मौत। लखनऊ के हजरतगंज में स्कूटी सवार युवक को कार से कुचलने की कोशिश, धमकाने टक्कर मारने का वीडियो वायरल। वेलकम टू द जंगल का टीजर आउट, 34 सितारों की टोली संग अक्षय ने लगाया कॉमेडी का तड़का। भारत में 4 जून को होगा दुरंधर 2 ग्रैंड डिजिटल प्रीमियर, 5 जून को जियो हॉटस्टार पर आप देख लेंगे। तेलुगु फिल्म महाकाली का हिस्सा बने एक्टर रोहित सराफ अजय खन्ना के साथ साउथ में करेंगे डेब्यू। यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में अनुपम खेर को मिला सम्मान, फिल्म कैलरी के लिए चुने गए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। लोकेश कनकराज की बहुचर्चित तमिल फिल्म डीसी का ट्रेलर जारी, वामिका गब्बी और संजना कृष्णमूर्ति हैं। बढ़ते सोने के आयात पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने आयात का अधिकतम लिमिट 100 किलो तय की, एडवांस ऑथोराइजेशन स्कीम के तहत। देश के प्रमुख जलाशयों में पानी का स्तर घटकर कुल क्षमता के करीब 35% तक पहुंचा, हर 5 में से 3 बड़े जलाशय 40% से कम भरे। 11 वर्ष में पहली बार दुनिया में चावल उत्पादन घटने का अनुमान, भारत म्यांमार अमेरिका समेत कई देशों में पैदावार कम होने से कीमतें बढ़ने की आशंका। अमेरिकी टेक कंपनी ओरेकल ने आईआईटी एनआईटी छात्रों को दिए जॉब और इंटर्नशिप ऑफर रद्द कर दिए, हरी छटनी करने वाली कंपनी ने सुस्ती के बीच बढ़ाई चिंता। नियमों का पालन नहीं करने पर आरबीआई ने 150 एनबीएफसी कंपनीज के लाइसेंस रद्द किए, दिल्ली बंगाल में सबसे अधिक कंपनियां। ताइवान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति का बड़ा बयान, ट्रंप बोले मुझे नहीं लगता कि ताइवान को लेकर कोई संघर्ष। ईरान अमेरिका के बीच शांति समझौते की बड़ी उम्मीद, क्योंकि ट्रंप ने शी जिनपिंग के साथ बातचीत के बाद उम्मीद व्यक्त की।

नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि क्या देश में तेल की कीमतें आपका पसीना छुड़ाने वाली हैं और 3 रुपए महंगा हुआ ये तेल देश में कितनी महंगाई बढ़ाने वाला है। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है बल्कि आपकी रसोई, आपका बजट, इन सब पर सीधा हमला है। इसलिए आपको महंगाई के नए दौर के लिए कमर कस लेनी चाहिए। तेल महंगा यानी भाड़ा महंगा, भाड़ा महंगा मतलब सामान की कीमतें महंगी, इसके साथ ही आपका आना जाना महंगा। आज सरकार युद्ध की वजह से सप्लाई चेन, कच्चे तेल की कीमतों का की बात कह रही है, लेकिन आम आदमी महंगाई को लेकर डरा हुआ है। इसके बाद आपको बताएंगे कि जब देश में नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद और ईदगाह है तो फिर सड़क पर नमाज पढ़ने की जिद क्यों। पश्चिम बंगाल की नई सरकार ने सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी तो कुछ लोग इसके विरोध में उतर आए, जबकि अदालतें बार बार कह चुकी हैं कि सड़क पर नमाज कोई मौलिक अधिकार नहीं है। लेकिन वोट बैंक की पॉलिटिक्स, तुष्टिकरण की राजनीति ने लोगों के दिमाग में यह बिठा दिया है कि उनकी परंपराएं देश के कानून से ऊपर हैं। इसके साथ ही आपको मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बारे में बताएंगे, जहां भोजशाला में मस्जिद मंदिर के विवाद का अंत करते हुए कोर्ट ने इसे मंदिर माना है। अब यहां मुस्लिमों को नमाज पढ़ने का अधिकार नहीं मिलेगा, हालांकि वो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। और आखिर में आपको बताएंगे कि क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाइना के दौरे को लेकर सफेद झूठ बोल रहे हैं। ट्रंप अपनी चीन यात्रा को बड़ी कामयाबी बता रहे हैं, लेकिन हकीकत इसके उलट नजर आती है। ईरान से लेकर ताइवान के मुद्दे तक उनके दावों की पोल खुद उनके विदेश मंत्री मार्को रूबियो खोल रहे हैं। यही नहीं, बीजिंग में शी जिनपिंग की फाइल में ताक झांक करते ट्रंप का एक वीडियो भी अब वायरल है, जिससे उनकी भारी किरकिरी हो रही है। लेकिन आज सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि भारत हिंदू मुसलमान की राजनीति से चलेगा या भारत संविधान और कानून के हिसाब से चलेगा। एक तरफ पश्चिम बंगाल है, जहां मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सड़कों पर खुले में नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी है, जिसका खूब विरोध भी हो रहा है। पश्चिम बंगाल के मुस्लिम ये कह रहे हैं कि जब पहले उन्हें सड़कों पर नमाज पढ़ने से नहीं रोका गया तो अब बीजेपी की नई सरकार ऐसा क्यों कर रही है। दूसरी तरफ है कर्नाटक, जहां कांग्रेस की सरकार ने स्कूल कॉलेजेस में निर्धारित यूनिफॉर्म के साथ छात्रों को हिजाब, जनेऊ, पगड़ी, शिवमाला और रुद्राक्ष पहनने की अनुमति दी है। कर्नाटक सरकार ने पिछली बीजेपी सरकार के उस आदेश को रद्द किया है जिसमें मुस्लिम छात्राओं के स्कूलों में हिजाब पहनने पर रोक लगाई गई थी। अब इन दोनों फैसलों को बराबर रखकर देखिए और यह समझने की कोशिश कीजिए कि बंगाल और कर्नाटक में अंतर क्या है। हकीकत में इन दोनों राज्यों में कोई अंतर नहीं है। अगर सड़कों पर नमाज पढ़ने से रोकने को कांग्रेस बीजेपी की सांप्रदायिक राजनीति मानती है तो वही कांग्रेस अपने राज्य में मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने की इजाजत दे देती है। और इस पूरी राजनीति में लॉ ऑफ द लैंड, यानी लॉ ऑफ द लैंड अपना मतलब खो देता है। लॉ ऑफ द लैंड का मतलब क्या होता है कि देश ना तो धर्म के हिसाब से चलेगा, ना जाति के हिसाब से चलेगा, ना भीड़ के हिसाब से चलेगा, ना नेताओं के हिसाब से चलेगा, सिर्फ कानून के हिसाब से चलेगा। लेकिन सोचिए, वोट बैंक की राजनीति में ये लॉ ऑफ द लैंड दिखता कहां है। अलग अलग मामलों में कई निचली अदालतें, 6 राज्यों के हाई कोर्ट्स और यहां तक कि इस देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट भी ये कह चुका है कि सड़क पर नमाज पढ़ने को धार्मिक आजादी का मौलिक अधिकार नहीं माना जा सकता। अब कानून के हिसाब से हमारी सरकार

पड़े और कानून का भी पालन हो। लेकिन क्या हमारी सरकारों ने ऐसा किया? पिछले 15 सालों से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार थी। उनकी सरकार का यह कर्तव्य था कि वो अपने वोट बैंक की चिंता ना करें, कानून का पालन करा दे। मुसलमानों को यह समझाया जाता कि सड़कों पर नमाज पढ़ना कानून के अनुकूल नहीं है और सरकार उनके लिए कानून के हिसाब से व्यवस्था बनाएगी। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मुसलमानों को सालों साल सड़कों पर बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी कानूनी दखल के नमाज पढ़ने की खुली छूट दी। और इसका नतीजा यह हुआ कि आज जब बंगाल में सरकार बदल चुकी है और बीजेपी की नई सरकार कानून के मुताबिक लोगों को सड़कों पर नमाज पढ़ने से रोक रही है, तो बहुत सारे मुस्लिम ये कह रहे हैं कि उनसे उनका हक छीना जा रहा है। जो उनका अधिकार है ही नहीं, वो उनका हक उन्हें बता दिया गया है। ये सोच सिर्फ इसलिए बनी क्योंकि पिछली सभी सरकारें वोट बैंक के लिए इस पर मौन रही। आज अब कोलकाता में पुलिस की तरफ से यह कहा गया कि कानून सड़कों पर बिना अनुमति धार्मिक गतिविधि या नमाज पढ़ना गलत है और पुलिस इसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, तो बड़ी संख्या में मुसलमान हंगामा करने लगे। इनमें कई मुसलमानों ने धार्मिक नारे लगाए, कुछ लोगों ने पुलिस को पीछे धकेलने की कोशिश भी की। विवाद इतना बढ़ गया कि जुमे की नमाज पढ़ने गए लोग ये कहने लगे कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की मनमर्जी नहीं चलेगी, सड़क पर नमाज को कोई रोक नहीं सकता। आप पहले इन तस्वीरों को देखिए और फिर हम आपको बताएंगे कि गलती इन लोगों की नहीं है, गलती उस वोट बैंक पॉलिटिक्स की है जो धर्म को कानून से बड़ा बना देती है। अब इन तमाम मुसलमानों को लगता है कि सड़कों पर नमाज पढ़ना इनका संवैधानिक अधिकार है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारा कानून, हमारा संविधान, हमारी अदालतें यही कहती हैं कि बिना अनुमति सार्वजनिक जगहों पर धार्मिक गतिविधि मान्य नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी ये लोग इसलिए इसे अपना अधिकार मानते हैं क्योंकि अब तक इन्हें कभी भी ऐसा करने से रोका नहीं गया, कानून का हवाला इनके सामने रखा ही नहीं गया। आप फरवरी 2026 के इस वीडियो को देखिए, जब कोलकाता में इन्हीं सड़कों पर नमाज के लिए एक मुख्य सड़क को बंद तक कर दिया गया था और इसके कारण बहुत सारे लोगों को घंटों जाम में फंस कर रहना पड़ा। और ये वीडियो उस वक्त शुभेंदु अधिकारी ने ही शेयर किया था। अब अगर पहले पश्चिम बंगाल में सरकारें मुसलमानों को सड़कों पर नमाज पढ़ने से नहीं रोकती थी और आज अगर उन्हें रोका जा रहा है, तो इन लोगों का यह कहना स्वाभाविक है कि अगर यह गलत था तो पहले क्यों नहीं रोका, और अगर पहले नहीं रोका तो आज क्यों रोका जा रहा है। यानी यहां गलती सरकारों की है जो वोट के चक्कर में कानून को मुट्ठी भर एक तरह से अपनी मुट्ठी में ले लेते हैं और कानून को छुट्टी पर भेज देते हैं, जबकि दुनिया के ज्यादातर देशों में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जिस सऊदी अरब में मक्का और मदीना है, जहां इस्लाम धर्म की नींव रखी गई, वहां सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर खुले में नमाज पढ़ना प्रतिबंधित है। यूएई मुस्लिम देश है, वहां भी सड़कों पर, फुटपाथ पर, सार्वजनिक जगहों पर आप नमाज नहीं पढ़ सकते, गैर कानूनी है, इलीगल।
और अगर इसके बाद भी कोई ऐसा

0: करता है तो उस पर 1,000 दिरहम यानी 26,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। यूएई में, एक मुस्लिम देश में, अगर आप सार्वजनिक जगह पर नमाज पढ़ते हैं तो 26,000 का जुर्माना लग सकता है। हर साल हमारे देश के हजारों मुसलमान यूएई के दुबई और अबू धाबी जैसे शहर घूमने जाते हैं, लेकिन वो वहां कभी भी सड़कों पर नमाज पढ़ने की जिद नहीं करते, वहां के कानून का पालन करते हैं। लेकिन हमारे देश भारत में जब इन्हीं कानूनों का हवाला देकर सड़कों पर नमाज पढ़ने से रोका जाता है तो लोग सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि भारत में मुसलमान खतरे में है। हाल ही में आपने देखा होगा कि हमारे देश में कई मुसलमानों ने ईरान के समर्थन में रैलियां निकाली, इसके लिए बाकायदा चंदा इकट्ठा किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस ईरान का हमारे देश में समर्थन किया जाता है वहां भी सड़कों और फुटपाथ पर खुले में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। इसके अलावा फ्रांस, कनाडा, अमेरिका, इटली, जर्मनी, जापान, चाइना, दक्षिण कोरिया बिना अनुमति सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, और वहां अगर ऐसा कोई करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, यानी लॉ ऑफ द लैंड का पालन किया जाता है। बस इतना है, यानी सबको यही बताया जाता है कि उन्हें कानून के हिसाब से चलना होगा, और वहां कानून कानून होता है, ये किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं माना जाता है और ना ही किसी भी राजनीतिक पार्टी की वोट बैंक पॉलिटिक्स की जेब में रहता है। लेकिन हमारे देश में कानून को सभी सरकारें अपनी सुविधा, अपने वोट बैंक के हिसाब से लागू करती हैं, इसीलिए आपको अलग अलग दिख रहा है। बंगाल में अलग हो रहा है, कर्नाटक में अलग हो रहा है। इसके कारण बहुत सारे लोगों को लगने लगता है कि सड़क पर नमाज पढ़ना गलत नहीं है, उनका अधिकार है।
1: समन्वय अधिकारी इस हालत में किए तो कोई बात नहीं है, हम लोगों को नमाज अदा करना है।
2: अब देखिए, सरकार लिया तो उसके हम लोग तायद करेंगे, खत्म। पर सरकार ने जो जो फैसला लिया है उसके ऊपर हम लोग अमल करने की कोशिश करेंगे, और लोगों को, जो हमारे कौम के लोग, उसको भी समझाया जाएगा।
3: बहुत सारे दिनों से यहाँ पे रिलीजियस प्रैक्टिस, चाहे जो भी धर्म का हो, मुसलमान रोड पे नमाज पढ़ते थे, हमारे हिंदू भाई पिंडाल लगाते और पूजा करते थे, सब लोग रोड पे ही इस तरह से करते थे। अभी गवर्नमेंट रिफॉर्म हुआ है, नई गवर्नमेंट आई है, नई गवर्नमेंट आने के बाद में उस लॉ को इम्प्लीमेंट कर रही है।
4: मुख्यमंत्री जी बोल दिए है कि नियम को फॉलो करना होगा, इसमें कोई धर्म का विषय नहीं है। आप मुस्लिम मत बोलिए, आप हिंदू मत बोलिए, और सिख के लिए भी वो ये होगा, एक ही आइन है, और क्रिश्चियन के लिए भी एक ही आइन है। रास्ते में पब्लिक को असुविधा करके कोई काम नहीं किया जाएगा।
5: रास्ता है नमाज छोड़ देना, सब मस्जिद है नमाज पढ़ो, रास्ता है ट्रैफिक अटके तो छोलो करा जाए।
0: आज एक सवाल ये भी है कि भारत में सड़कों पर नमाज पढ़ने की जिद क्यों की जाती है। इंडोनेशिया के बाद पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदें भारत में ही हैं, जिनकी अनुमानित संख्या है 4 लाख से ज्यादा। अगर अल्पसंख्यक मंत्रालय और वक्फ बोर्ड के आंकड़े भी देखें तब भी हमारे देश में जो रजिस्टर्ड मस्जिद है, रजिस्टर्ड दरगाहों की संख्या 1.5 लाख से ज्यादा है। इनमें सबसे ज्यादा 44,367 मस्जिदें उत्तर प्रदेश में है, जबकि पश्चिम बंगाल में मान्यता प्राप्त मस्जिदों और दरगाहों की संख्या बहुत कम, सिर्फ 1,608 है। पश्चिम बंगाल में बिना रजिस्ट्रेशन वाली मस्जिदें 30,000 से ज्यादा मानी जाती हैं, छोटी मस्जिदों का तो कोई हिसाब नहीं। लेकिन इसके बावजूद बंगाल में सड़कों पर सबसे ज्यादा नमाज पढ़ी जाती है, जिसे अब सरकार रोक रही है। यहां आप इस बात को भी समझिए कि मुसलमान सड़कों पर नमाज पढ़ते क्यों हैं। इस्लाम धर्म में सभी मुसलमानों के 5 फर्ज बताए गए हैं, जिनमें एक फर्ज को सलात यानी नमाज कहते हैं, और इस्लाम धर्म में सभी मुस्लिम्स के लिए दिन में 5 बार नमाज पढ़ना जरूरी माना गया है, और इस नमाज को किसी भी स्थान पर पढ़ा जा सकता है, जिसमें घर का कोई भी कमरा हो सकता है, छत हो सकती है, दफ्तर का कोई कमरा हो सकता है, बस, ट्रेन, सड़क, दूसरे सार्वजनिक स्थान भी हो सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए किसी इबादत गाह की जरूरत नहीं है, उन्हें बस ये ध्यान रखना होता है कि वो जहां भी नमाज पढ़ें वहां नमाज पढ़ते हुए उनका मुंह मक्का के काबा की दिशा में होना चाहिए। जैसे काबा भारत के पश्चिम में है, इसलिए भारत के मुस्लिम पश्चिमी दिशा में मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, और ये नमाज किसी भी स्थान में पढ़ी जा सकती है। आपने देखा होगा कि सामान्य दिनों पर सड़क पर नमाज पढ़ने की तस्वीरें कभी नहीं आती हैं, ये तस्वीरें सिर्फ शुक्रवार यानी जुमे की नमाज पर आती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस्लाम धर्म में जुमे की नमाज या ईद और बकरीद की नमाज को जमात की नमाज माना जाता है, जो अकेले नहीं बल्कि जमात के लोगों के साथ एक समूह में पढ़ी जाती है, और इसी के लिए मस्जिदें बनाई गई। अब समस्या यह है कि जुमे की नमाज मस्जिद में ही पढ़नी होती है, और जब एक साथ बहुत सारे मुस्लिम जुमे की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आते हैं तो वहां भीड़ ज्यादा हो जाती है, और इसके कारण जिन लोगों को मस्जिद में जगह नहीं मिलती उन्हें मस्जिद के बाहर सड़क पर नमाज पढ़नी पड़ती है और सड़क यातायात के लिए बंद कर दी जाती है। सवाल ये है कि ये मस्जिद में कराई जा रही है या जानबूझकर बाहर में कराया जा रहा है। अब ये समस्या पहले मुस्लिम देशों में भी होती थी, लेकिन इसे रोकने के लिए वहां पहले हर मॉल, दफ्तर, पेट्रोल पंप, पार्क में प्रेयर रूम्स बनाए गए और इसके बाद लोगों से कहा गया कि वो सड़कों, फुटपाथ पर नहीं कर सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते। हमें लगता है कि भारत में कानून के हिसाब से सड़क पर नमाज रोकना सही है, लेकिन इसी के साथ साथ इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि जहां पर जो नमाज पढ़ना चाहे उसको जगह मिले। खैर, इस वक्त सड़क पर नमाज को लेकर यह बहस चल रही है। तब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में धार की भोजशाला को हिंदू मंदिर मान लिया है और मुस्लिम पक्ष से यह कहा है कि वो मस्जिद के लिए सरकार से अलग जमीन की मांग कर सकता है। आज हम आपको ये बताएंगे कि इस फैसले का भारत पर क्या असर होगा और क्या अयोध्या और भोजशाला के बाद काशी और मथुरा के मंदिरों पर भी फैसला आएगा, और क्या पूरे भारत में जिन 299 मंदिरों को तोड़कर उन पर मस्जिद बनाने का दावा किया जाता है उन मामलों में भी अब मुस्लिम पक्ष को चुनौती दी जाएगी। ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोजशाला परिसर को हिंदू मंदिर मान लिया है। अदालत ने कहा है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 98 दिनों तक भोजशाला परिसर में जो सर्वे किया उसके साबित होता है कि ये स्थान देवी वागदेवी की आराधना का प्रमुख केंद्र था। हाईकोर्ट ने 2003 में एएसआई द्वारा जारी किए गए उस आदेश को भी रद्द कर दिया जिसमें हिंदू पक्ष के पूजा करने पर उस वक्त रोक लगा दी गई थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हाईकोर्ट ने इस फैसले में अयोध्या मामले को आधार माना, ये कहा कि अदालत सबूत देखती है और सबूत यही बताते हैं कि भोजशाला परिसर में मस्जिद से पहले एक प्राचीन मंदिर हुआ करता था। हालांकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि उसे हाईकोर्ट का यह फैसला स्वीकार नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा और इस फैसले को वहां पर चुनौती देगा। भोजशाला का मामला अयोध्या मामले की तरह काफी संवेदनशील रहा है जहां 2 से ज्यादा बार हिंदू मुसलमानों के दंगे हुए। इन दंगों की वजह यही थी कि मुस्लिम पक्ष भोजशाला परिसर को मस्जिद बताता है और हिंदू पक्ष इसे देवी वागदेवी यानी देवी सरस्वती का मंदिर कहता है। और ऐतिहासिक साक्ष्य, दस्तावेज, पुस्तकें, शिलालेख भी यही दावा करते हैं। असल में मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला का नाम राजा भोज के नाम पर पड़ा है जो मां सरस्वती के अनन्य भक्त थे और मां सरस्वती को हिंदू धर्म में विद्या, बुद्धि और ज्ञान की देवी माना गया है। ऐतिहासिक साक्ष्यों में उल्लेख मिलता है कि साल 1034 में राजा भोज ने यहां नालंदा और तक्षशिला जैसे एक संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी जिसे बाद में भोजशाला के नाम से जाना गया। और क्योंकि इस भोजशाला में मां सरस्वती की प्रतिमा को स्थापित किया गया था इसलिए हिंदुओं ने इस स्थान को मां सरस्वती का पवित्र मंदिर माना। हालांकि जिस तरह बख्तियार खिलजी ने 12वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला कराया और आज उसके रूइंस की तस्वीर आप देख रहे हैं, ठीक उसी तरह साल 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने भारतीय सनातन संस्कृति को मिटाने के लिए भोजशाला को ध्वस्त करा दिया। इसके बाद साल 1401 में दिलावर खान गौरी ने भोजशाला के एक हिस्से में बाकायदा मस्जिद का निर्माण करा दिया जिसे कमाल मौला मस्जिद कहा गया, जबकि साल 1514 में महमूद शाह खिलजी ने यहां एक और मस्जिद का निर्माण कराया जिसे लाट मस्जिद कहा गया। इनमें भी कमाल मौला मस्जिद मालवा क्षेत्र के एक सूफी संत कमाल मौला को समर्पित थी, लेकिन अलग अलग दौर के सर्वेक्षण में इस बात को शामिल किया गया कि यह मस्जिद उसी क्षेत्र में बनाई गई जहां प्राचीन मंदिर है और भोजशाला का महाविद्यालय हुआ करता था। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग वहां पर गए हैं, लेकिन जब आप जाएंगे तो आपको साक्षात सब कुछ दिख जाएगा। अब एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 123 साल पुरानी रिपोर्ट भी यही बताती है कि इस मस्जिद के अंदर मौजूद कई प्रतीक, कई शिलालेखों से यही प्रतीत होता है कि यह मस्जिद एक हिंदू मंदिर के स्थल पर बनाई गई और इसमें भी उन अवशेषों का इस्तेमाल बाकायदा किया गया जो मंदिर को तोड़कर इकट्ठा किए गए थे। मंदिर के टूटे हुए अवशेषों से मस्जिद बनाई गई, ये साफ दिखता है। इसी रिपोर्ट में आगे ये भी लिखा था कि मस्जिद के जिस कक्ष में मुसलमानों द्वारा नमाज पढ़ी जाती थी उस कक्ष के दो स्तंभों पर संस्कृत वर्णमाला और हिंदू प्रतीक पाए थे और कुछ दीवारों पर संस्कृत के बाकायदा वहां शिलालेख मौजूद है, जिससे यह बात साबित होती है कि जिस जगह मस्जिद बनी वहां पहले मंदिर हुआ करता था। और सोचिए, यह रिपोर्ट कोई बीजेपी या मोदी सरकार में नहीं आई है, यह रिपोर्ट 123 साल पुरानी है और अंग्रेजों ने खुद बताया।

और हिंदू प्रतीक पाए थे और कुछ दीवारों पर संस्कृति के माफ कीजिएगा संस्कृत के बाकायदा वहां शिलालेख मौजूद है, जिससे यह बात साबित होती है कि जिस जगह मस्जिद बनी वहां पहले मंदिर हुआ करता था। और सोचिए, यह रिपोर्ट कोई बीजेपी या मोदी सरकार में नहीं आई है, यह रिपोर्ट 123 साल पुरानी है और अंग्रेजों ने खुद बताया था कि जब उन्होंने भोजशाला में सर्वे के लिए खुदाई करवाई थी तब वहां उन्हें मां सरस्वती की एक प्रतिमा मिली थी जिसे वो अपने साथ लंदन ले गए। ऐसा मामला है जिसमें अदालत ने हिंदू पक्ष के दावे को सही माना और इस फैसले के बाद अब बड़ा सवाल यह है कि क्या बाकी मामले में भी ऐसा फैसला आएगा। मैं आपको जरा बड़ी स्क्रीन पर दिखाना चाहती हूं जिससे आपको समझ में आएगा। इस वक्त मंदिर मस्जिद से जुड़े कुल 10 ऐसे मामले हैं जो अलग अलग जगहों पर अदालतों में चल रहे हैं। क्या यहां पर भी, अब देखिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला पहले दिया जाता था लेकिन जिस तरह से फैसले आ रहे हैं तो माना जा रहा है। सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं यूपी, जहां शाही जामा मस्जिद संभल यूपी का ये जो आप देख रहे हैं यहां पर, तो सबसे पहले तो यही है शाही जामा मस्जिद संभल उत्तर प्रदेश, जहां पर मस्जिद मंदिर विवाद जो है वो कोर्ट में इस वक्त चल रहा है। अब अगला दिखा दीजिए, एक एक करके हम आपको 10 जो अलग अलग इस वक्त विवाद कोर्ट्स में चल रहे हैं वो अपने स्क्रीन पर दिखाना चाहते हैं। इसके बाद है ज्ञानवापी मस्जिद, आपने देखा होगा वहां पर एक वजूखाना था जहां पर पानी था, अब वहां पर एक शिवलिंग मिला है। अब हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि ये शिवलिंग है, वही मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि ये शिवलिंग नहीं है और वहां पर बाकायदा पानी भरा हुआ था और वजू किया जाता था नमाज के पहले। तो ये दूसरा यानी ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी यूपी, ये मामला भी इस वक्त कोर्ट में चल रहा है। अब तीसरा आपको दिखा देते हैं क्योंकि जब आप देखेंगे तीसरा तो श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा उत्तर प्रदेश। जो लोग अयोध्या के इतिहास को जानते हैं, जो जानते हैं संघ और जो विश्व हिंदू परिषद है और जो तमाम ऐसे संगठन थे उनका ये नारा था कि काशी मथुरा अभी बाकी है, तो उस नजरिए से अगर आप देखिए तो अयोध्या अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो काशी भी हमने आपको दिखा दिया और उसके बाद हमने आपको मथुरा भी दिखा दिया। एक और मामला अटाला मस्जिद जौनपुर उत्तर प्रदेश का है, जहां पर ये भी मामला, तो उत्तर प्रदेश के चार मामले हमने आपको दिखा दिए क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मुगल आक्रांताओं ने जब हमला किया तो उत्तर भारत में ही सबसे ज्यादा उन्होंने मंदिरों को तोड़ा है। दक्षिण भारत में कई ऐसे मंदिर खूबसूरत आज भी प्राचीन वही पत्थर में उकेरे हुए उसी तरह से जस के तस पड़े हुए हैं, लेकिन उत्तर भारत में सबसे ज्यादा मंदिरों को तोड़ा गया। तो ये भी एक और मामला जो इस वक्त कोर्ट में चल रहा है अटाला मस्जिद का। अब शमसी जामा मस्जिद बदायूं उत्तर प्रदेश का, ये मामला भी कोर्ट में पहुंचा हुआ है। देखिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या कहता है, वो यही कहता है कि भाई 91 के पहले जितने मंदिर जो बने हुए हैं जो भी उनका धार्मिक जो रूप है उसको बरकरार रखना है, लेकिन चाहे अयोध्या का फैसला हो और अब भोजशाला की बात की गई है तो आप उसे समझ रहे हैं कि एक परिवर्तन आ रहा है, तो क्या वो हम देखेंगे ये सब हम आपको बताएंगे। अगला दिखा दीजिए, इसके बाद है टीले वाली मस्जिद लखनऊ उत्तर प्रदेश की, ये तो राजधानी लखनऊ में है, टीले वाली मस्जिद लखनऊ यूपी की, ये भी मामला इस वक्त फिलहाल कोर्ट में चल रहा है। तो ये एक और मामला है। इधर दिल्ली का एक मामला है कुवत उल इस्लाम मस्जिद का राजधानी दिल्ली में, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, और ये मामला भी इस वक्त कोर्ट के देखरेख में चल रहा है, वहां पर सुनवाई हो रही है। मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला कमल मौला मस्जिद, जिसकी हमने आपको बात की पूरी कहानी सुनाई है, लेकिन अभी भी सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आता है वही अंतिम फैसला माना जाएगा। तो ये मध्य प्रदेश का एक मामला, इसके साथ अजमेर शरीफ दरगाह अजमेर राजस्थान में जो आप देख रहे हैं ये भी मामला सब जुडिस है, इस पर भी केस चल रहा है, मस्जिद मंदिर विवाद है तो इस पर भी इंतजार करना होगा। तो कुल मिलाकर हमने आपको दिखा दिए सारे मामले। एक कर्नाटक का मलाली जुमा मस्जिद मंगलुरु कर्नाटक का मामला है जो इस वक्त चल रहा है और ये भी एक और विवाद है जो इस पूरे केस में चल रहा है। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि मस्जिद मंदिर विवाद ये पूरा है क्या और कैसे अभी भी कई सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनको लेकर एक विवाद की स्थिति लगातार बनी हुई है। और ये हमने आपको दिखा दिया है कितनी मस्जिदों के नीचे मंदिरों का दावा है। तो ये डेटा बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि दावे बहुत सारे हैं, अब इसमें से कितने में कोर्ट से मामला जाता है, 299 उत्तर प्रदेश के सिर्फ मामले हम आपको बता रहे हैं। कर्नाटक में आइए 199, उसके बाद आ जाइए तमिलनाडु में 175।

0: अब आइए इधर गुजरात में, गुजरात में 170 मामले, 170, राजस्थान में 170 और मध्य प्रदेश में 151। तो इतने सारे मामले हैं, इन सब की सुनवाई और इन सब का निपटारा कैसे होगा और कहां तक मुमकिन है, ये भी एक प्रश्न इस पूरे मामले में पूछा जाता है। तो कुल मिलाकर ये जो विवाद है, लंबे वक्त से ये विवाद चल रहे हैं और इन सब का जो एक बैकग्राउंड है वो हमने आपको देने की कोशिश की। अब ये बातें आज से नहीं बल्कि कई सालों से उठ रही हैं, जिसे देखते हुए साल 1991 में कांग्रेस की सरकार एक ऐसा वर्शिप एक्ट लेकर आई जिसने अयोध्या मामले को छोड़कर बाकी सभी मामलों में धार्मिक स्थलों पर 15 अगस्त 1947 की यथास्थिति लागू कर दी, जिससे हिंदू पक्ष ने अपने प्राचीन मंदिरों पर दावा करने का कानूनी अधिकार खो दिया। जो अभी मैंने आपको कहा था उसमें एक करेक्शन है, 1991 वर्शिप एक्ट है ये, लेकिन उससे 1947 में जो यथास्थिति थी उसको बरकरार रखने की बात कर दी गई थी इस एक्ट के जरिए, कि भाई 47 में उस स्ट्रक्चर का जो भी धार्मिक उसका कैरेक्टर था, अगर वो मस्जिद थी तो अब वो मस्जिद ही रहेगी, आप उसको बदल नहीं सकते हैं। 1991 में वो ये वर्शिप एक्ट लेकर आए थे, अगर 1947 में वो मस्जिद थी तो मस्जिद ही रहेगी। तो ये एक बहुत बड़ी बाधा के तौर पर आया, क्योंकि कोर्ट में आप जाइए भी तो सामने वाला जो पक्ष था वो ये कहता था कि भाई 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लगेगा, 1947 के पहले अगर इसका कैरेक्टर ये था तो वही रहेगा, आप उस पर बदल नहीं सकते हैं। लेकिन कोर्ट्स इसके विपरीत फैसले सुना रही हैं। उस वक्त जब ये कानून आया था तब बीजेपी इसमें अयोध्या के साथ काशी मथुरा के मामले को भी अपवाद की सूची में डलवाना चाहती थी, लेकिन जब कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया तो बीजेपी ने विपक्ष में रहते हुए इस कानून का विरोध किया। वोटिंग के दौरान उसके सांसद वॉकआउट करके बाहर चले गए। इससे ये सवाल भी उठता है कि उस दौर में इस कानून का विरोध करने वाली बीजेपी क्या काशी और मथुरा जैसे मामलों के लिए इस कानून का आज इस कानून को रद्द करेगी, और क्या इन मामलों में भी हिंदू पक्ष के लिए कानूनी रास्ता खुलेगा, क्योंकि हिंदू पक्ष के लिए सबसे बड़ा अड़चन माना जाता है।
1: इस भोजशाला को जो कि वास्तव में सरस्वती का मंदिर था उसको कानूनी रूप से मां का मंदिर घोषित हुआ है, ये बहुत ही हर्ष की बात है और हिंदू समाज आज प्रफुल्लित है।
2: न्यायमूर्ति जो है उनने बहुत अच्छा फैसला दिया, उनका स्वागत करते हैं हम बहुत बहुत, और कई वर्षों के बाद हमारे कई बुजुर्गों ने इस भोजशाला के लिए प्राण दिए हैं,
3: हमारे बुजुर्ग बलिदानकारी कई वर्षों से जिन्होंने इसके लिए संघर्ष रहे हैं और बलिदान दिया है।
4: न्याय की जीत है और ये जो राजा भोज का समय का जो गौरव था, संस्कृति साहित्य संगीत विज्ञान वेद के लिए यहाँ दूर दूर से लोग आते थे और अध्ययन करते थे, वो गौरव की पुनर्स्थापना हो यही चाहिए।
5: बड़े शानदार ढंग से रखे गए थे तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हाईकोर्ट में हमारी बात नहीं सुनी गई, तो हाईकोर्ट के निर्णय का हम सम्मान करते हैं, लेकिन जहां पर हमारी बात नहीं सुनी गई तो उसको लेकर हम निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
0: जो भोजशाला को लेकर फैसला आया है उस पर मैं बात करना चाह रही हूं। आज इंदौर हाईकोर्ट ने धार में भोजशाला कॉम्प्लेक्स में हिंदुओं के पूजा के अधिकार को स्वीकार किया और माना कि कॉम्प्लेक्स राजा भोज द्वारा बनवाया गया वाग्देवी यानी देवी सरस्वती का मंदिर है। कोर्ट ने एसआई के 2003 के उस ऑर्डर को भी रद्द कर दिया है जिसमें नमाज पढ़ने की इजाजत उस वक्त दी गई थी। ओवैसी बोल रहे हैं कि अयोध्या जैसा फैसला है, कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक जमीन ढूंढने की जो इजाजत, वो इसको सिरे से खारिज कर रहे हैं। आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे और अगर ये मामला बढ़ता है और इस पर हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कुछ लोग करते हैं तो कैसे संभालेंगे?
6: देखिए, मुझे इस बात का संतोष है कि मध्यप्रदेश नहीं पूरे देश ने आज के इस दौर में बदली की परिस्थिति के साथ, हमारे यहां तो राहिरिम और अस्कान की संस्कृति हजारों साल पुरानी थी और राम मंदिर का उदाहरण इतना अच्छा उदाहरण है कि राम मंदिर के मसले पर जो अंसारी जी ने मुकदमा लड़ा 75 साल तक, और उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी तो मैं उसके भूमि पूजन मंदिर के समय में भी रहूंगा, प्राण प्रतिष्ठा में भी रहूंगा और वर्षगांठ में भी रहूंगा। हमारे लिए आदर्श उदाहरण उदाहरण है कि भगवान राम को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन देश के साथ कराया और बगैर हिंदू मुस्लिम कोई किसी प्रकार के विवाद होकर के पूरे दुनिया के सामने आदर्श उदाहरण बना। मुझे भोजशाला में भी अपने प्रदेश के हिंदू मुस्लिम दोनों भाइयों से धन्यवाद के साथ कहना पड़ेगा कि कुछ समय पहले हमारे यहाँ बसंत पंचमी के दिन शुक्रवार की नमाज का मामला भी था, लेकिन हिंदू मुसलमान ने दोनों ने अपनी अपनी इबादत और अपनी पूजा निर्विघ्न संपन्न की, नहीं तो हमेशा धार में झंझट होती थी, आपस में कई बार विवाद की स्थिति बनती थी। लेकिन वो उदाहरण भी बहुत अच्छा है और मैं मान के चलता हूं ये वापस वही दौर हो सकता है माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अयोध्या में के माध्यम से देश के सामने उत्कृष्ट उदाहरण हिंदू मुस्लिम का पेश किया। मध्यप्रदेश में शांति का टापू है, यहां हिंदू मुस्लिम मिलकर बहुत अच्छे रहते हैं और न्यायालय पर पूरा भरोसा करते हैं। न्यायालय जो निर्णय करता है हम सबके लिए वो बहुत अच्छा है और उसके बावजूद भी यह भी संभावना है कि हम ये अवसर ले लें जब आपस के भाईचारा बढ़ाने के लिए। तो मैं अपने प्रदेश के हिंदू मुसलमान सभी नेताओं से भी निवेदन करूंगा कि जैसा जो करना हो लेकिन हमारा भाईचारा बढ़े, इस तरह के अवसर को जरूर अपने हाथ में लेना चाहिए। मैं बधाई देना चाहूंगा धार के अपने सभी भाई बहनों को जिन्होंने इस सारे निर्णय का स्वागत किया।
0: तो आप मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को इस विषय पर सुन रहे थे। खैर आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में प्रति लीटर 3 रुपए की वृद्धि होने से कितनी महंगाई बढ़ने वाली है। इस मुद्दे पर आप सुबह से कई बातें सुन रहे होंगे लेकिन हम आपको आपके काम की जो सबसे जरूरी बात है वो बताना चाहते हैं। सबसे बड़ी पहली बात यह है कि अब आपको आने वाले वक्त में जिस तरह से कीमतें बढ़ाई गई हैं उसका धीरे धीरे जो कैस्केडिंग इफेक्ट होगा आपकी रोजमर्रा के जीवन पर उसके लिए तैयार हो जाना चाहिए। क्राइसल की एक रिपोर्ट कहती है कि जब पेट्रोल डीजल की कीमतों में प्रति लीटर 5 रुपए की वृद्धि होती है तो इससे माल ढुलाई का किराया लगभग 2.8% बढ़ जाता है। अब इसका अर्थ क्या होगा? माल ढुलाई का मतलब यह हुआ कि आपके शहर आपके इलाके में जो सब्जियां फल रोजमर्रा का सामान ट्रांसपोर्ट के जरिए आता है उसकी लागत यानी कॉस्ट कितनी बढ़ जाती है। और आज सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में जो 3 रुपए की वृद्धि की है उससे भी यही होने वाला है। कैसे वो समझिए, अगर एक बाइक सवार हर महीने से में 30 लीटर पेट्रोल की खपत करता है उसका सिर्फ पेट्रोल का मासिक खर्च 90 रुपया बढ़ेगा। ठीक है, जिन लोगों के पास कार है उनका 100 लीटर पेट्रोल पर हर महीने 300 रुपए का खर्च बढ़ेगा। लेकिन इसी तरह जो सब्जियां आती हैं उनकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ने से वो 2-5% तक महंगी हो सकती हैं। जो सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं वो 7-10% भी महंगी हो सकती हैं क्योंकि उनके लिए आपको टू एंड फ्रो जल्दी करना पड़ता है। पेट्रोल डीजल महंगा होने से ताजे फल भी 2-4% तक महंगे हो सकते हैं। मौसम से जुड़े फल वो 5-7% महंगे हो सकते हैं। अनाज दाल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगा अधिकतम 2% महंगी हो सकती है। सीधा असर हम सबकी जेब पर पड़ सकता है। साल 2022 में जब यूक्रेन युद्ध के बाद केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम प्रति लीटर 10 रुपए बढ़ाए थे तब खुदरा महंगाई 8 साल में सबसे ज्यादा हो गई थी और यह 7.8% पर दर्ज की गई है। खुदरा महंगाई का मतलब यह होता है कि रोजमर्रा की जो हम लोग चीजें खरीदते हैं ना सामान वो आम आदमी को उस वक्त कितनी महंगी मिल रही है। अभी ऐसी स्थिति नहीं है, अभी खुदरा महंगाई दर 3% के आसपास है लेकिन थोक महंगाई दर 8.3 पहुंच गई है। लेकिन खुदरा महंगाई दर की बात हो रही है, इसके अलावा उस वक्त पेट्रोल डीजल महंगा होने से थोक महंगाई ने भी एक नया रिकॉर्ड बना दिया था और उस वक्त कितना हो गया था 15.08, अभी कितना है 8.3। इस बार तो सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जब सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों को बढ़ाया नहीं था तभी थोक महंगाई हो गई 42 महीनों के हाई पर 8.3% पर स्तर छू लिया था। पिछले साल के मुकाबले अप्रैल महीने में थोक महंगाई पर 5% की दर से बढ़ी और यह 8.3% हो गई। सोचिए ये आंकड़े तब के हैं जब पेट्रोल डीजल महंगा नहीं हुआ था लेकिन अब तो इसकी भी कीमतें बढ़ चुकी हैं तो इसका कैस्केडिंग इफेक्ट जो कहते हैं ना उसका असर कॉस्ट ऐड होगा। वो कॉस्ट कहां से आएगा इन चीजों का माल ढुलाई का वो हमसे लिया जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जिसने युद्ध के कारण तेल आपूर्ति बाधित होने से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई है और भारत ने तो बल्कि काफी दिनों तक ऐसा फैसला नहीं लिया। भारत ने युद्ध शुरू होने के 76 दिनों बाद इन कीमतों में इजाफा किया और ये बढ़ोतरी भी 4 सालों यानी 1501 दिनों के बाद हुई है। इससे पहले आखिरी बार 6 अप्रैल 2022 को मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए थे और उसके बाद आज पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है और इसीलिए हुआ है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत अब $108 के पार हो चुकी है और एक अस्थिरता बनी हुई है। ईरान युद्ध से पहले जानते हैं कितना था, $68 और अब $108 हो गया है। दुनिया के 98 देशों ने मार्च के पहले हफ्ते में ही युद्ध के कारण इन कीमतों को बढ़ा दिया था। तब भारत ने न सिर्फ तेल की किल्लत होने दी बल्कि 14 मई तक इन कीमतों को नहीं बढ़ाया गया, लेकिन अब 3 रुपए की वृद्धि हुई है और कई देशों के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो उसमें कीमत जो है वो कम हुई है। आइए युद्ध के बाद तेल की कीमतें जिस देश में कितनी बढ़ी हैं वो जल्दी से आपको जरा यहां पर ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा देना चाहते हैं, क्योंकि सबसे पहले अगर आप देखिएगा, पीला कर लेती हूं, ये देखिए सबसे ज्यादा कहां पर हुआ है, कोई गेसवर्क करने की जरूरत तो है नहीं, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं, ये तो भारत का कोई बच्चा भी बता सकता है कि एक ही वो देश है जिसका नाम है पी फॉर पाकिस्तान। 61% के आसपास उन्होंने बढ़ा दिया है पेट्रोल कीमत की कीमत 50%। मलेशिया 58%, यूएई 52%, अमेरिका 46%, श्रीलंका 38%, नेपाल 38%, 34%, कनाडा, साउथ अफ्रीका 33%, चाइना 25%, फ्रांस 22%। तो ये पूरा आपको यहां से लेकर तमाम देशों का हमने आपको ग्राफ दिखा दिया है जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस देश में कितनी वृद्धि हुई है। अब यहां पर आते हैं जहां पर कम वृद्धि हुई है, उन देशों में आप ब्रिटेन को रख सकते हैं 19.1%, फिर है साउथ कोरिया 19.7% है, 17% के आसपास ऑस्ट्रेलिया में बढ़ा है, इसराइल में 16.7%, बांग्लादेश में भी 16.7%, इटली में 16.2%, जर्मनी में 10.7%, जापान में 9.70% और 3.2% ये भारत का वृद्धि परसेंटेज है जो हम आपको इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर आपके दिखा रहे हैं। तो 3.2% भारत में इजाफा हुआ है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब आप बाकी देशों के से कंपैरिजन करें तो भारत में वृद्धि कम हुई है, लेकिन यह भी सच है कि इस वृद्धि के साथ आने वाले दिनों में कुछ चैलेंजेस का सामना हमें करना पड़ेगा, क्योंकि इस पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत में जो बढ़ोतरी है उससे आने वाले दिनों में बदलाव आपके दिखा रहे हैं। तो 3.2% भारत में इजाफा हुआ है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब आप बाकी देशों के से कंपैरिजन करें तो भारत में वृद्धि कम हुई है, लेकिन यह भी सच है कि इस वृद्धि

जब आप बाकी देशों के से कंपैरिजन करें तो भारत में वृद्धि कम हुई है, लेकिन यह भी सच है कि इस वृद्धि के साथ आने वाले दिनों में कुछ चैलेंजेस का सामना हमें करना पड़ेगा, क्योंकि इस पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत में जो बढ़ोतरी है उससे आने वाले दिनों में बदलाव पर आपके दिखा रहे हैं। तो 3.2% भारत में इजाफा हुआ है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब आप बाकी देशों के से कंपैरिजन करें तो भारत में वृद्धि कम हुई है, लेकिन यह भी सच है कि इस वृद्धि के साथ आने वाले दिनों में कुछ चैलेंजेस का सामना हमें करना पड़ेगा, क्योंकि इस पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत में जो बढ़ोतरी है उससे आने वाले दिनों में बदलाव, मतलब 150 रुपए के आसपास। साउथ कोरिया में भी 146 रुपया है, साउथ कोरिया में, फिलीपींस में 143 रुपया, पाकिस्तान में 142 रुपया, श्रीलंका में 139 रुपया, नेपाल में 135 रुपए, ऑस्ट्रेलिया में 127 रुपए, अमेरिका में 121 रुपए, बांग्लादेश में 108 रुपए, लगभग 109 रुपए है, 103 रुपए के आसपास यहाँ पर जर्मनी में है, सॉरी जापान में है, और भारत में 101 रुपए पर पेट्रोल की कीमतें फिलहाल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। तो हमने ये कोशिश किया कि हर देश में जब रुपया में हम कन्वर्ट करते हैं तो जो पेट्रोल की कीमत है औसतन एक लीटर की, वो हम आपको बताएं कि बाकी देशों की तुलना में भारत इन कीमतों में कहां पर है। तो ये हमने आपको नंबर्स बता दिए कि जब आप अमेरिका से लेकर फ्रांस, जर्मनी, इटली सब जगह जाएंगे तो भारत में 101 रुपए उसकी कीमत है। कुल मिलाकर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि होलसेल जो इन्फ्लेशन रेट है उसमें इजाफा है, जो खुदरा महंगाई उसमें है, लेकिन जब आप विश्व के साथ कंपेयर करते हैं तो पेट्रोल की कीमत 101 रुपए के आसपास भारत की है। अब यहां कांग्रेस ये कह रही है कि अगर साल 2016 से 26 तक देखें तो बाकी देशों के मुकाबले मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतें सबसे ज्यादा बढ़ाई हैं, लेकिन यहां हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस आंकड़े में थोड़ी सी चालाकी दिखाई गई है। नरेंद्र मोदी साल 2014 से भारत के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इसमें आंकड़े 2014 के लिए से लिए गए हैं, और अब इस को अगर आप छोड़ दीजिए तो बिना लाग लपेट के असली आंकड़े हम आपके सामने रखना चाहते हैं 1 अप्रैल 2014 से। तो चलिए यहां से आपको हम ये पूरा नंबर दिखाना चाहते हैं। 1 अप्रैल 2004, जब आपको याद हो वाजपेयी सरकार गिरी थी, मनमोहन सिंह की सरकार बनी थी, तो ये 2004 का नंबर है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। 2004 में आपको क्या दिख रहा है, 21 रुपए 74 पैसे, जो काले रंग से है वो है डीजल की कीमत, जो हरे रंग से है ऊपर में कोने में दिखा दीजिए ये ताकि उनको रेफरेंस समझ में आ जाए, ये देखिए पेट्रोल की कीमत हरे में है और डीजल की कीमत काले में है, तो ये थी डीजल की कीमत और 33 रुपए 71 पैसे थी पेट्रोल की कीमत। अब ये जो वृद्धि हुई है डीजल में 155.2% वृद्धि हुई और वहीं पेट्रोल में 114.4% वृद्धि हुई, और फिर 1 अप्रैल 2014 पर आ जाइए रेफरेंस पॉइंट लेते हुए 55.49, मतलब 55 रुपए 49 पैसे पर डीजल था उस वक्त और 72 रुपए 26 पैसे पर ये था। तो ये था उस वक्त का दोनों का रेफरेंस जिसमें मोदी सरकार सत्ता में आई। अब इसमें आप वृद्धि देखिए, तो वृद्धि आप देखेंगे डीजल की कीमत 90 रुपए 67 पैसे है, वृद्धि कितनी है 63.4%, यहां पर कितनी थी 155.2 वृद्धि। अब आ जाइए आप पेट्रोल की कीमत में, वृद्धि कितनी है 35.3%, ये हमने अभी का आंकड़ा 15 मई 2026 का निकाला है आपके लिए, तो ये पूरा जो पूरा कार्यकाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 14 से लेकर 26 तक का, 35.3% वृद्धि है पेट्रोल में और तब कितनी थी 114.4% की वृद्धि थी। तो वृद्धि के जब आप परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो ये आंकड़ा सामने नजर आता है। तो 2004 से 2014 तक ये है, 2014 से 2026 तक ये है, 12 साल के कार्यकाल में आप अगर देखिए वहां पर 10 साल है और यहां पर 12 साल के कार्यकाल में 63.4% वृद्धि है, और ऐसे ही जब आप देखेंगे तो 12 साल के कार्यकाल में 35.3% की वृद्धि है। चलिए ये डेटा इंटरेस्टिंग था, इसलिए हमने सोचा कि एग्जैक्ट प्राइसेस के साथ फैक्ट्स और नंबर्स के साथ जानकारी आप तक पहुंचनी चाहिए। पेट्रोल डीजल और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स की कीमतें बढ़ने पर कई विपक्षी नेता सरकार को घेर रहे हैं, वो जानते हैं कि ईरान युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में ये कीमतें इस वक्त बढ़ रही हैं क्योंकि सप्लाई बाधित हुई है, और इसी वजह से प्रधानमंत्री

नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम खरीदने की बात की, गोल्ड मत खरीदिए, विदेश नहीं जाने की अपील की। पीएम मोदी की अपील पर विपक्ष के नेता ये कहकर कटाक्ष कर रहे हैं कि देशवासियों को विदेश जाने से मना करने वाले पीएम खुद 5 देशों की यात्रा पर निकले। लेकिन क्या आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा का असली मकसद क्या है? सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन के अंदर 5 देशों का दौरा करेंगे। यानी एक बात तो साफ है कि वो सैर सपाटे के लिए नहीं जा रहे। इन 6 दिनों में वो यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे, इटली का दौरा करेंगे। आज सबसे पहले वो यूएई पहुंचे। पीएम मोदी के विमान एयर इंडिया 1 को यूएई के एयर स्पेस में फाइटर जेट F-16 से एस्कॉर्ट किया गया। तो ये तस्वीरें भी अब आपको दिखाते हैं। F-16 जो है यूएई की, उन्होंने प्रधानमंत्री के विमान को आज एस्कॉर्ट किया और इसके बाद अबू धाबी के जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का स्वागत खुद यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद ने किया। तो ये जब F-16 एस्कॉर्ट कर रहा था प्रधानमंत्री के विमान को, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। तो यूएई ने एक स्पेशल सम्मान प्रधानमंत्री के लिए रखा था और ये महत्वपूर्ण दौरा भारत और यूएई की दोस्ती को भी दर्शाता है क्योंकि इसमें कुछ ऐसे समझौते हुए हैं जो ऐतिहासिक है। रिश्ते भी बड़े प्रगाढ़ हैं हमारे। मतलब आप सोचिए कि दुबई जैसे शहर में यूएई में लगभग 35-40% आबादी भारतीयों की है। इतने लोग वहां पर रहते हैं जो भारतीय मूल के हैं। दोनों देशों के बीच दो सबसे बड़े समझौते हुए, पहला ये कि दोनों देश रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करेंगे और दूसरा ये कि दोनों देशों ने एलपीजी और स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को लेकर एक विशेष MOU साइन किया। रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने का मतलब है कि दोनों देश एक दूसरे से सैन्य तकनीक साझा करेंगे, मिलकर हथियार बनाएंगे, साइबर सुरक्षा पर सहयोग बढ़ाया जाएगा, संयुक्त युद्धाभ्यास होगा, खुफिया जानकारियां साझा की जाएंगी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर आ रही चुनौतियों से मिलकर निपटा जाएगा। इसके अलावा दोनों देशों के बीच एलपीजी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को लेकर जो MOU हुआ है उसके तहत भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगा। यूएई वो पहला देश है जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को लेकर भारत का सहयोगी है। साल 2018 में इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच एक समझौता हुआ जिसके तहत यूएई के 58 लाख बैरल से ज्यादा कच्चा तेल भारत के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स में रखे थे, जो नए MOU से बढ़कर अब 3 करोड़ बैरल तक हो जाएंगे और भारत भी यूएई में अपना SPR बनाएगा। ये कदम रणनीतिक रूप से भारत के लिए फायदेमंद हो सकता है। सिर्फ यही नहीं, यूएई भारत में बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, अन्य वित्तीय संस्थानों में 47,905 करोड़ रुपए का निवेश करेगा और गुजरात के वाडेनार में शिप रिपेयरिंग क्लस्टर भी बनाएगा। यूएई को इस वक्त भारत जैसे दोस्तों की जरूरत है। अभी कुछ दिन पहले ही उसने कच्चा तेल उत्पादन करने वाले ओपेक संगठन से खुद को अलग किया है। अब उसे अपने देश के कच्चे तेल के लिए भारत जैसे खरीदारों की जरूरत है। इसी साल जनवरी में भारत ने यूएई के साथ LNG खरीद को लेकर 28,737 करोड़ रुपए की डील की थी। अब ईरान युद्ध के बाद यूएई के कच्चे तेल का व्यापार प्रभावित हुआ है और इसी वजह से भारत यूएई एक दूसरे की मदद कर रहे हैं ताकि दोनों देश इस मुश्किल समय में एक दूसरे के साथ रहे, दोनों देशों को फायदा। प्रधानमंत्री मोदी के यूएई दौरे पर हुई इन डील्स को पाकिस्तान और सऊदी अरब की बढ़ती दोस्ती का करारा जवाब समझा जा रहा है। पिछले साल पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक डिफेंस पैक्ट साइन किया था। इसी के जवाब में भारत यूएई के साथ रणनीतिक संबंधों को और मजबूत कर रहा है। हालांकि एट द कॉस्ट ऑफ सऊदी अरब नहीं है, सऊदी अरब के साथ भी भारत के रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन हम अपनी ऊर्जा जरूरतों को लेकर सुरक्षित देश को करने की कोशिश कर रहे हैं।

0: प्रधानमंत्री मोदी की तरह ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी 3 दिन के लिए चाइना के दौरे पर गए हुए थे। अपनी इस चाइना विजिट को डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ी सफलता की तरह पेश कर रहे हैं। उनका कहना है कि कई मुद्दों पर चाइना के साथ उनकी बातचीत बहुत सकारात्मक रही। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी मीडिया में अपने लोगों को ये बता रहे हैं कि चाइना के साथ कई बड़ी डील्स हुई। ईरान पर अमेरिका के विचारों से चाइना सहमत है और यही नहीं, ताइवान के मामले पर भी सकारात्मक बातचीत हुई है। जबकि सच तो यह है कि अभी तक दोनों पक्षों की तरफ से आधिकारिक रूप से कुछ भी नहीं कहा गया है। न डील्स की बात कही गई, न ताइवान पर कुछ कहा गया, न ईरान पर कोई ठोस सहमति बनी। आरोप लग रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं और उनकी चाइना ट्रिप फ्लॉप रही, अमेरिका को वहां से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इसका सबसे बड़ा उदाहरण ईरान युद्ध पर दिया गया बयान है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ईरान मामले में उनकी मदद करना चाहते हैं। सिर्फ यही नहीं, ट्रंप ने यह भी कहा कि शी जिनपिंग अमेरिका की उस शर्त पर सहमत हैं जिसके तहत ईरान को 20 साल के लिए परमाणु प्रोग्राम बंद करना है। डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा एक झूठ है। अमेरिका के ही विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ही इसका खुलासा किया। एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप ने शी जिनपिंग से क्या मांगा। इस सवाल पर मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के मामले में हमें चाइना की मदद की जरूरत ही नहीं है, हमने उनसे मदद ही नहीं मांगी है।
1: What exactly did President Trump ask President Xi for when it comes to Iran?
2: He didn't ask him for anything. I mean, we're not asking for China's help. We don't need their help.
1: But he raises the issue.
2: We raise the issue to make clear what our position is and to make it clear so they understand. Because, I mean, it's logical we would talk about it given how dominant that issue is. Our position is very clear. Iran cannot have a nuclear weapon.
3: President Xi would like to see a deal, man. He would like to see a deal, man. And he did offer, he said, if I can be of any help at all, I would like to be of help.
4: Because, he did say that.
3: Yeah, he did say that. And look, anybody that buys that much oil has obviously got some kind of a relationship with him. But he said, I would love to be of help. If I can be of any help whatsoever, he'd like to see the Hormuz Strait open. He said, if I can be of any help whatsoever, I would like to help.
0: So, aaj ke liye Black and White mein itna hi. Ab aapse hamari agli mulaqat hogi kal raat 9 baje. Tab tak aap khush rahiye, swasth rahiye, surakshit rahiye. Aur इग्नोर करना सीखिए, वरना हर राह चलता इंसान आपकी शांति का मालिक बन जाएगा। नमस्कार।

ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध का असर अब हमारे देश भारत पर भी पड़ना शुरू हो गया। केंद्र सरकार ने शुक्रवार यानी कि आज पूरे देश में पेट्रोल और डीजल के दाम 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए। इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर में सीएनजी के दाम में भी 2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी कर दी गई। ऐसे में बढ़े हुए दामों का असर अब आपकी हमारी जेब पर होने लगा है।

0: महंगाई का बम आपकी जेब पर कैसे फटा? अमेरिका ईरान युद्ध की चिंगारी घर घर तक कैसे आई? हुर्मुज में अमेरिका और ईरान भिड़ रहे हैं, महंगाई का बम फोड़ रहे हैं। तेल, गैस, दूध सब पर छाई महंगाई, जा रही है गाढ़ी कमाई। लड़े कोई फरे कोई, युद्ध रुकेगा नहीं, महंगाई घटेगी नहीं।
1: दुर्भाग्य से जिस क्षेत्र से दुनिया के बड़े हिस्से को तेल मिलता है, आज वही क्षेत्र संघर्ष और युद्ध की स्थिति में उलझा हुआ।
0: हिंट तो पीएम मोदी ने 5 दिन पहले ही दे दी थी, लेकिन असली महंगाई का बम अब फूटा है।

0: है गाढ़ी कमाई। लड़े कोई हरे कोई, युद्ध रुकेगा नहीं, महंगाई घटेगी नहीं।
1: दुर्भाग्य से जिस क्षेत्र से दुनिया के बड़े हिस्से को तेल मिलता है, आज वही क्षेत्र संघर्ष और युद्ध की स्थिति में उलझा हुआ।
0: हिंट तो पीएम मोदी ने 5 दिन पहले ही दे दी थी, लेकिन असली महंगाई का बम अब फूटा है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें सीधे 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी गई हैं, और इस तरह से पेट्रोल नई दिल्ली में 97.77 रुपए प्रति लीटर, कोलकाता में अणु प्रोग्राम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और अमेरिका कह रहा है कि जंग तभी बंद होगी जब ईरान अपना परमाणु प्रोग्राम और एनरिच्ड यूरेनियम पूरी तरह से छोड़ेगा। एक तो ईरान अमेरिका का अड़ियल रवैया, ऊपर से हुर्मुज स्ट्रेट में गुजरात का एक और मालवाहक जहाज डूब गया। हाजी अली नाम का जहाज 13 मई की सुबह ओमान के समुद्री क्षेत्र से गुजर रहा था, तभी इससे कोई ड्रोन या मिसाइल जैसा हथियार टकरा गया। हादसे के बाद जहाज में आग लग गई, हालांकि ओमान कोस्ट गार्ड ने सभी 14 क्रू मेंबर्स को बचा लिया, क्योंकि अभी ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 107 से 108 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल चल रही है। कच्चे तेल से बनने वाले उत्पादों की बात करें तो गैसोलीन, पेट्रोल, डीजल और हीटिंग तेल, जेट इंजन, केरोसिन, ल्यूब्रिकेटिंग तेल और डामर इसी से बनता है। सरकार की तरफ से पहले ही माहौल बना दिया जाता है कि कच्चा तेल महंगा है, तेल गैस लाने में दिक्कत हो रही है, पेट्रोलियम कंपनियां घाटा झेल रही हैं, ताकि पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े तो जनता ज्यादा हाय तौबा ना मचाए।
2: महंगाई की मार तो है ही, खासकर मिडिल क्लास आदमी पे।
3: हमें नहीं समझ आ रही भी, हाँ सरकार कर क्या रही है।
4: दूसरे देशों में जो बढ़ोतरी हुई है उससे तो बहुत ही कम है, मोदी साहब को सपोर्ट करना चाहिए।
5: जो नॉर्मल फैमिली है उसमें 3 रुपए का तो बहुत ज्यादा बजट पे फर्क पड़ेगा।
6: रेट तो अभी और भी बढ़ेंगे, बट ठीक है, मोदी जी ने कुछ सोच रखा होगा, मोदी जी के साथ ही खड़े हैं।
7: पता नहीं सरकार क्या करता है।
3: वो जो बढ़ा है ठीक है, और बढ़ेगा तो कुछ नहीं होगा, देश में मोदी है तो सब मुमकिन है।
8: हाँ, ये वैसे गलत करा है इन्होंने, पेट्रोल पे पैसे बढ़ाए हैं।
9: नुकसान है और किसका नुकसान है, बस जनता पे ही असर पड़ लिया, किस पर पड़ लिया।
0: लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े तो दिल्ली एनसीआर के लोगों पर महंगाई की एक और मार पड़ी है। शुक्रवार सुबह पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के साथ ही सीएनजी की कीमतों में भी 2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी कर दी गई है, जिससे आम लोगों का बजट और बिगड़ गया है। अब सीएनजी के दाम दिल्ली में 79.09 रुपए प्रति किलो, नोएडा में 87.70 रुपए प्रति किलो, गुरुग्राम में 84.12 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, दूध के दामों में 2 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। कंपनी का कहना है कि उत्पादन लागत बढ़ने और बाजार की परिस्थितियों के चलते ये कदम उठाना पड़ा है। जबकि घरेलू गैस सिलेंडर से लेकर कमर्शियल सिलेंडर और छोटू सिलेंडर यानी 5 किलो के सिलेंडर के दाम पहले ही बढ़ा दिए गए हैं। इधर महंगाई का बम फूटा, उधर कांग्रेस ने निशाना साध दिया। सोना भी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से महंगा हो गया है। अब कांग्रेस कह रही है कि चुनाव खत्म और मोदी की वसूली शुरू।
10: अमृत काल में आपका स्वागत है, और इस अमृत काल में महंगाई मैन अपना चाबुक चला रहे हैं, मोदी जी आपसे वसूली कर रहे हैं, आपकी जेब पर डाका डाल रहे हैं। जब आप पर महंगाई का चाबुक चलाया जा रहा है, तब दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जो अपने लोगों को राहत दे रहे हैं।
11: 3 रुपए पे इतना ज्यादा हाइक तो सरकार को कोसने के अलावा कुछ आता है?
0: जबकि सरकार का कहना है कि कच्चे तेल की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव के बावजूद 2022 से अब तक ईंधन की कीमतें काफी हद तक स्थिर बनी हुई हैं, और सरकार ने पूरे देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित की है। लेकिन सच ये भी है कि अप्रैल में थोक महंगाई 2 गुने से ज्यादा बढ़कर 8.30% तक पहुंच गई है। मार्च में ये 3.88% पर थी। अप्रैल में महंगाई 42 महीने में सबसे ज्यादा है। अक्टूबर 2022 में ये 8.39% पर पहुंच गई थी। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने थोक महंगाई के आंकड़े जारी किए। अब आपको बता देते हैं कि डीजल के दाम बढ़ने से आम आदमी की जेब पर महंगाई बम कैसे फूटेगा। माल भाड़ा बढ़ेगा और ट्रक और टेम्पो का किराया बढ़ जाएगा, जिससे दूसरे राज्यों से आने वाली सब्जियां, फल और राशन महंगे हो जाएंगे। खेती की लागत बढ़ेगी, ट्रैक्टर और पंपिंग सेट चलाने के लिए किसानों को ज्यादा खर्च करना होगा, जिससे अनाज की लागत बढ़ेगी। बस, ऑटो का किराया, सार्वजनिक परिवहन और स्कूल बसों के किराए में भी इजाफा देखने को मिल सकता है। जिस तरह से तेल कंपनियां माहौल बना रही

0: हैं कि पेट्रोल डीजल पर 25 से 30 रुपए प्रति लीटर का घाटा हो रहा है। ऐसे में एक्सपर्ट ये भी मान रहे हैं कि अपना घाटा पूरी तरह खत्म करने और ब्रेक इवन यानी नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति में आने के लिए तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल के दामों में और इजाफा कर सकती हैं। आज तक ब्यूरो।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले 10 मई को और फिर 11 मई को हैदराबाद से वडोदरा तक आकर दो बार देश से अपील की, कहा कि तेल बचाइए क्योंकि ये संकट बड़ा है, बचाएंगे तभी बच पाएंगे। और इसके बाद देश भर में विभिन्न केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्री सब अपना काफिला कम करने में लग गए। कोई स्कूटर से चलने लगा, कोई मेट्रो से चलने लगा, लेकिन इस बीच एक मंत्री ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की अपील से बड़ा उनका अपना काफिला है।
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें।
3: लेकिन मंत्री जी को तो लगता है कि नसीहत चूल्हे में जाए, बस भौकाल ना घटने पाए। वो मंत्री जी ने इधर शपथ ली और उधर तय कर लिया कि देश पर जनता पर जो बोझ पड़ता है पड़े, बस उनके काफिले की गाड़ी ना घटे। वो मंत्री जिन्होंने प्रधानमंत्री के बाद मुख्यमंत्री की भी बात एक कान से सुनी दूसरे से निकाल दी।
4: देश का पैसा बचाना है और देश का पैसा बचा करके इस संकट के, इस वैश्विक संकट से हम अपने देश को बाहरने का काम करेंगे।
3: लेकिन प्रधानमंत्री की अपील, मुख्यमंत्री की दलील इन सबसे बड़ी निकली। उत्तर प्रदेश में नए नवेले बनाए गए मंत्री हंसराज विश्वकर्मा की लाल बत्ती पाने वाली वीआईपी फील। मंत्री जी का नाम हंसराज विश्वकर्मा, नए नए राज्य मंत्री बने हैं, जिसकी कामना में न जाने कितनी परिक्रमा काशी से लखनऊ तक की होगी। मंत्री पद मिला तो नया ऑफिस मिला, नया ऑफिस मिला तो नई चकाचक कुर्सियां मिली। मोदी योगी का आभार करके मंत्री हंसराज ने भरोसा दिया, बस अब से हर समस्या का समाधान करूंगा।
5: उत्तर प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री आदरणीय योगीनाथ जी और वाराणसी के सांसद, देश के सबसे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। निश्चित तौर पर इतना से अच्छा कोशिश करूंगा कि इस कार्यालय से जितने लोगों का कहीं भी कोई किसी प्रकार का उनको समस्या हो तो समस्या का बकायदे जो है उसका समाधान किया जाए।
3: लखनऊ से समाधान की बात करके मंत्री हंसराज विश्वकर्मा का काफिला वाराणसी पहुंचा। तब तक प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की अपीलें हवा हो चुकी थी। दर्जनों गाड़ियां लेकर मंत्री का काफिला पहुंचता है, लंबा जाम लगा मिलता है। हद तब हो जाती है जब बुलडोजर तक लाकर नए नए मंत्री पद पर विराजे हंसराज विश्वकर्मा पर समर्थक फूल बरसा देते हैं। ऐसा जाम काशी की सड़कों पर लगा जिसमें अपना काफिला लगाकर तो तेल मंत्री और उनके समर्थक थूकते ही रहे। आम आदमी जो प्रधानमंत्री की सलाह सुनकर कारपूल करके या दोपहिया वाहन से निकला होगा उसका भी तेल फुकवा दिया। जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद महंगाई की आग की तपिश महसूस कर रहा है।
6: जेब पे बोझ तो पहले से ही है, देख रहे हैं भरी दोपहरी में हम लोग परेशान चल रहे हैं, अपना जॉब चला रहे हैं उसमें और इजाफा ये लोग कर दिए हैं।
7: महंगाई पे जोर आ रहा है,
8: मुश्किल तो होगा ही,
9: बजट गड़बड़ाएगा,
10: बजट गड़बड़ाएगा भैया,
6: महंगाई बढ़ेगी।
11: ये जो महंगाई है हम लोग जेब के ऊपर ज्यादा ही पड़ता जा रहा है क्योंकि हम लोग की सैलरी तो लिमिटेड है।
3: मतलब जनता की जेब महंगाई से जलती रहे और मंत्री हंसराज विश्वकर्मा पीएम की अपील नहीं सुनते तो विपक्ष सवाल उठाता है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने सोशल मीडिया पर डाला कि काशी की सड़कों पर कुछ महीनों के मेहमान मंत्री का अहंकार देखिए, सैकड़ों गाड़ियों का काफिला, धुआं उड़ाती सत्ता की हनक और घंटों जाम में फंसी काशी की जनता। खबरदार करता सवाल समझिए, जब मध्य प्रदेश में पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष सौभाग्य सिंह सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ उज्जैन से भोपाल पहुंचे, पीएम की अपील को मानने से इनकार कर दिया तो उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी हुआ। पाठ्य पुस्तक निगम के दफ्तर जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। क्या अब यूपी में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में ही मोदी की अपील को धुआं करने वाले नए मंत्री हंसराज विश्वकर्मा को पार्टी नोटिस जारी करेगी? क्या इन पर भी कार्रवाई होगी?
1: और अब बात नीट पेपर लीक पर हुए कबूलनामे की। पेपर लीक की कड़ियों को आपस में जोड़ने के लिए जांच टीम गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इस कड़ी में पेपर लीक से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण किरदार जांच टीम की गिरफ्त में। किरदार का नाम है लेक्चरर पीवी कुलकर्णी, जिसे सीबीआई ने पेपर लीक के आरोप में गिरफ्तार किया और यही मुख्य आरोपी है।
0: नाम लेक्चरर पीवी कुलकर्णी, काम एनटीए का हिस्सा, आरोप, नीट का पेपर लीक। पेपर लीक कांड में पुणे के लेक्चरर पीवी कुलकर्णी की आज गिरफ्तारी हुई। दावा यही है कि एनटीए की तरफ से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल पीवी कुलकर्णी ने नीट का पेपर लीक किया। केमिस्ट्री के लेक्चरर कुलकर्णी ने पेपर लीक कैसे किया, इसका खुलासा कैसे हुआ, आपको ये भी थोड़ी देर में बताएंगे। उससे पहले समझिए कुलकर्णी की गिरफ्तारी ने कैसे एनटीए की वर्किंग स्टाइल को कटघरे में खड़ा कर दिया है। क्योंकि कुलकर्णी प्राइवेट कोचिंग चलाता था, इसके बावजूद एनटीए ने उसे परीक्षा की प्रक्रिया का हिस्सा बनाया। सबसे बड़ा सवाल यही है कि एनटीए ने प्राइवेट कोचिंग चलाने वाले कुलकर्णी को परीक्षा की प्रक्रिया से क्यों जोड़ा। प्राइवेट कोचिंग चलाने वाले कुलकर्णी का एनटीए में गॉडफादर कौन है? क्यों नीट की परीक्षा से ठीक पहले एनटीए ने अभिषेक सिंह को डीजी बनाया? क्या पेपर लीक के सिंडिकेट में एनटीए के कई अफसर मिले हुए हैं? क्या एनटीए जैसी संस्था के अंदर पेपर माफियाओं की जड़ें बहुत गहरी हैं? एनटीए सवालों के घेरे में है, एनटीए की वर्किंग स्टाइल कटघरे में है, लेकिन पेपर लीक कांड के चलते परीक्षा रद्द होने के करीब 48 घंटे बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने पहली बार चुप्पी तोड़ी। 13 मई को धर्मेंद्र प्रधान पेपर लीक के सवालों को टाल गए थे, लेकिन 48 घंटे बाद मीडिया के सामने आए, नीट पेपर लीक की जिम्मेदारी ली और साफ गोई से एनटीए को क्लीन चिट दे दी।
7: फिर सामाजिक चुनौती है, राधाकृष्ण कमिटी को पूरा पालन करने के उपरांत भी उस कमांड चेन में कहीं ना कहीं ब्रीच हुए, इसको हम स्वीकार करते हैं। अभी तो एनटीए बहुत योग्य व्यक्ति के हाथ में है, हमारे सचिव की बहुत अनुभव भी उस विषय में है। मैं मानता हूँ हमें एनटीए को सुप्रीम कोर्ट की आदेश कारण एनटीए बनी है। एनटीए हर एक साल 1 करोड़ बच्चों की एग्जामिनेशन कराती है अमूमन। एनटीए और निर्भुल हो, एनटीए में जीरो एरर हो, जीरो यानी जीरो एरर हो, ये हमारी दायित्व है।
0: अब सीधा सवाल एनटीए को क्लीन चिट देने वाले जिम्मेदारों से है। अगर एनटीए पाक साफ है, एनटीए का कोई कसूर नहीं है, एनटीए में सब कुछ पारदर्शी है, तो प्राइवेट कोचिंग चलाने वाला कुलकर्णी एनटीए की परीक्षा प्रक्रिया का हिस्सा कैसे बना? अब इस सवाल का जवाब केंद्रीय शिक्षा मंत्री को देना है, क्योंकि एनटीए के गड़बड़ झाले का सबसे बड़ा सबूत लेक्चरर कुलकर्णी है। ऐसा क्यों, इसे भी समझिए। शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि पीवी कुलकर्णी ने नीट का पेपर लीक किया जो एनटीए से जुड़ा हुआ था। 3 मई को नीट की परीक्षा हुई, लेकिन अप्रैल 2026 के आखिरी हफ्ते में कुलकर्णी ने पेपर लीक की आरोपी मनीषा वाघमारे की मदद से कुछ छात्रों को जुटाया जो नीट की परीक्षा देने वाले थे। कुलकर्णी ने पुणे स्थित अपने घर पर छात्रों के लिए कोचिंग क्लास चलाई। क्लास में कुलकर्णी ने छात्रों को सवाल और उसके जवाब बताए। ये वही सवाल थे जो नीट के पेपर में सेट किए गए थे। कोचिंग में मौजूद छात्रों ने सवाल और जवाब को अपनी कॉपी में लिखा। पेपर लीक की जांच में पाया गया कि केमिस्ट्री के वही सवाल 3 मई 2026 को हुए नीट यूजी परीक्षा के असली पेपर से पूरी तरह मेल खाते हैं। कुलकर्णी केमिस्ट्री का लेक्चरर है और नीट के सभी 45 सवाल लीक पेपर से मैच करते हैं।

0: प्रयोग नहीं बल्कि पेपर लीक गैंग का प्रयोग है। केमिस्ट्री के वही सवाल नीट में आए जो कुलकर्णी ने छात्रों को बताए थे। अब सीबीआई टीम को कुलकर्णी से कई और राज उगलवाने हैं। नीट के प्रश्न पत्र में बायोलॉजी के 90 सवाल भी लीक पेपर से हूबहू मैच हुए, यानी केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सवाल लीक किए गए। तो क्या कुलकर्णी के साथ कई और लोग शामिल हैं? क्या एनटीए की प्रश्न पत्र तैयार करने वाली कमेटी में शामिल कई और एक्सपर्ट पेपर लीक रैकेट से जुड़े हुए हैं? सबसे बड़ा सवाल, कुलकर्णी का गॉडफादर कौन है? पूछताछ के दौरान नीट का पेपर खरीदने वाले मांगीलाल ने कबूल किया है कि पेपर लीक गैंग में कई प्राइवेट कोचिंग सेंटर, एनटीए के बड़े अफसर और कई सफेदपोश शामिल हैं। सवाल यही है कि क्या सीबीआई के हाथ पेपर लीक का सिंडिकेट चलाने वाले मास्टरमाइंड तक पहुंचेंगे? दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ, जयपुर से शरद कुमार, आज तक।
1: जिस भोजशाला को विद्या की काशी कहा जाता था, उस भोजशाला को एमपी हाईकोर्ट ने प्राचीन संस्कृत अध्ययन केंद्र और सरस्वती मंदिर मानते हुए हिंदू पक्ष के समर्थन में अपना निर्णय सुना दिया। एएसआई की
2: जो बरसों से किया जा रहा संघर्ष था, माँ की मुक्ति और उसके गौरव की पुनर्स्थापना का दिन जो इसका इंतजार किया जा रहा था, वो बहुत नजदीक आ गया है। आज इस भोजशाला को, जो कि वास्तव में सरस्वती का मंदिर था, उसको कानूनी रूप से माँ का मंदिर घोषित हुआ है। ये बहुत ही हर्ष की बात है और हिंदू समाज आज प्रफुल्लित है। आज वो दिल से खुश है कि वर्षों का उसके मेहनत का परिणाम आज सबके सामने आया है।
3: भोजशाला के इस मंदिर में अब सिर्फ मंगलवार को ही पूजा नहीं होगी, हिंदू पक्ष यहाँ रोज पूजा कर पाएगा। अदालत ने माना है कि ये एक मंदिर है, न कि कमाल मौला मस्जिद। इंदौर हाई कोर्ट का ये आदेश हिंदू पक्ष के उन लोगों की जिंदगी का सबसे बड़ा पल है जो वर्षों से इसे लेकर संघर्ष करते रहे।
4: कैसा फैसले को देखते हो और अब कब आप लोग प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रहे हो?
5: बहुत बहुत अच्छा फैसला है। न्यायमूर्ति जो है उनने बहुत अच्छा फैसला दिया, उनका स्वागत करते हैं हम बहुत बहुत। और कई वर्षों के बाद हमारे कई बुजुर्गों ने इस बहुत साल के लिए प्राण दिए हैं, उनका बहुत प्राण इसमें लगे हैं। हमारे ऐसी युवा पीढ़ी जो आज बहुत साला परिसर में खड़ी,
4: आप क्या करेंगे आप?
5: अब यहाँ पर बहुत साला में बहुत ही वाग देवी बहुत जल्द आएगी और विराजमान होगी।
6: यह एक ऐतिहासिक फैसला जो आज उच्च न्यायालय के द्वारा मिला है, ये हिंदू समाज के लिए एक बहुत ही बड़ी जीत है।
3: दशकों से हिंदू पक्ष भोजशाला को मंदिर बताता रहा, इसके लिए उन्होंने 1995 में पहली बार कानूनी लड़ाई शुरू की और अब जाकर जीत हुई। इंदौर हाई कोर्ट ने एएसआई के सर्वे, ऐतिहासिक तथ्यों, गवाहों और परिसर के मौजूद हालात को देखते हुए अपना फैसला सुनाया। ऐलान किया कि भोजशाला में जिस मंदिर को दशकों से कमाल मौला के मकबरे और मस्जिद के तौर पर बताया जाता रहा, वो मस्जिद नहीं बल्कि सरस्वती मंदिर है।
7: वो जो भोजशाला है वहाँ नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, वो राजा भोज का मंदिर है। एक चीज, मुस्लिम चाहे तो एक आवेदन कर सकते हैं राज्य सरकार को, तो राज्य सरकार उनको जगह दे सकती है मस्जिद के लिए। एक चीज स्पष्ट हो गई। दूसरी चीज, एएसआई के अधीन ये संपत्ति दी है, एएसआई चाहे तो उसको रेगुलर रूप से हिंदुओं को दे दे, वहाँ की जो व्यवस्था है वो एएसआई को दी है।
3: साल 1995 में दोनों पक्षों के बीच मामूली विवाद के बाद प्रशासन ने भोजशाला में मंगलवार को पूजा और शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत दी, जिसके बाद ये मामला अदालत में लड़ा जाता रहा। इंदौर हाई कोर्ट के दो जजों की बेंच ने इस विवाद पर फैसला सुनाते हुए कहा, हमने देखा है कि उस जगह पर हिंदू पूजा लगातार होती रही है, हमने पाया है कि उस जगह का ऐतिहासिक साहित्य राजा भोज से जुड़े संस्कृत सीखने के केंद्र के तौर पर इसे स्थापित करता है, इससे धार्मिक देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर होने का पता चलता है, इसलिए उस इलाके का धार्मिक चरित्र भोजशाला माना जाता है जिसमें देवी वाग देवी सरस्वती का मंदिर है।
7: पूरे कमाल मौला जो ये भोजशाला परिसर है,
8: बाहर का जो इधर कमाल मौला था,
7: नहीं उसके लिए कुछ नहीं कहा गया, वो तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर में नहीं था। कोर्ट ने मौला कमालुद्दीन को ये कहा है कि वो अल्टरनेट लैंड के लिए सरकार को प्रत्यावेदन दे सकते हैं और सरकार उसको कंसिडर करती है। मतलब मूल बात यह है कि इस पूरे परिसर को, जो हमारी मांग थी, हमारे हर एक आर्गुमेंट को कोर्ट ने माना है और इसके स्वरूप को एक हिंदू मंदिर का परिसर घोषित किया।
3: अदालत ने अपने आदेश में एएसआई सर्वे रिपोर्ट से मिले सबूतों

0: का हवाला दिया, जिसमें ये बात भी कही गई कि कमाल मौला मस्जिद को बनाने में बोधशाला के प्राचीन अवशेषों का इस्तेमाल किया गया।
1: कि जो एएसआई है, जो पूरा भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण है, उसकी रिपोर्ट से अन्य साक्ष्य जो रखे गए, जो हमारे द्वारा ऐतिहासिक साक्ष्य रखे गए, और राम मंदिर जजमेंट के समय जो दोनों ही धर्मों के जो कानूनी पहलू रखे गए कि हिंदू लॉ के हिसाब से एक बार जो मंदिर स्थापित हो जाता है वो हमेशा मंदिर रहता है, और मुस्लिम लॉ के हिसाब से भी किसी कब्जा करी हुई जगह पे एक वैलिड मस्जिद नहीं बनाया जा सकता, इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए माननीय न्यायालय ने तय करा कि ये जो जगह है, ये जो मंदिर है, ये बोधशाला एक सरस्वती माँ का मंदिर है।
0: AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बोधशाला के फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसके आए फैसले में बाबरी मस्जिद के फैसले जैसी समानताएं हैं कहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट इसे सुलझाएगा और हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करेगा।
2: पूरी अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग मिली, लेकिन वजह सिर्फ ये है कि एएसआई के तथ्यों को पुख्ता मानकर और उस पे फैसला देना वो कहीं एक हद तक सैटिस्फेक्शन नहीं देता है।
0: लेकिन बोधशाला में हिंदू पक्ष को यकीन है कि हाई कोर्ट के फैसले से अब उनका इंतजार खत्म होगा और वो मंदिर में पूजा पाठ कर पाएंगे।
3: 1005 से 1054 राजा भोज का काल रहा है, तो ये न्याय की जीत हुई है
4: जी।
3: बस राजा,
4: लेकिन प्रतिक्रिया आप लोगों की ऐसा नहीं लगता कि सामने वाले को
3: नहीं उनका अधिकार है, कानून ने जो अधिकार दिया है, हमारा तो भारतीय संविधान बहुत विशाल है और बहुत बृहद है।
5: हिंदू समाज का उत्साह है, लंबा संघर्ष रहा है बोधशाला के लिए, अलग अलग समय में अलग अलग लोगों ने इसको इस संघर्ष को जिया है। इस बोधशाला मुक्ति के लिए हमारे 3 कार्यकर्ता पुलिस की गोली से शहीद हुए हैं, आज उनको सच्ची श्रद्धांजलि उन लोगों को है। 44 महिलाएं, धार की महिलाएं इंदौर की जेल में 8 दिन तक बंद रही, कई लोग परिवार सहित जेल में गए, उन सबका त्याग तपस्या समर्पण का आज परिणाम निकला है।
0: अदालत ने 11 मार्च को एएसआई को बोधशाला परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का आदेश दिया था, जिसके बाद एएसआई ने 22 मार्च से सर्वेक्षण शुरू किया और 27 जून तक सर्वे का काम चला। 98 दिनों के बाद सर्वे का काम खत्म हुआ और अब अदालत के फैसले ने बोधशाला को मंदिर करार देते हुए यहां पूजा की इजाजत दे दी है। रवीश पाल सिंह, धार, आज तक।
6: बोधशाला को मंदिर घोषित करने के इंदौर हाईकोर्ट के बड़े निर्णय पर ओवैसी ने सवाल उठाया, कहा कि इस निर्णय में बाबरी मस्जिद जैसे निर्णय की समानताएं हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसे सुलझाएगा, हाईकोर्ट के निर्णय को रद्द करेगा।
7: एएसआई ने 1951 में और 1952 में ये क्लैरिफिकेशन दे चुकी है कि ये मस्जिद है, और उस वक्त उन्होंने एएसआई ने रिजेक्ट किया था इसको कि जो वहां पर भोज उत्सव मनाना चाहते थे। 51 और 52 का एएसआई के ऑर्डर है। कोर्ट ने, जैसा मैंने भी कहा, 1935 के धार स्टेट एग्जीक्यूटिव को, स्टेट गजट को नजरअंदाज कर दिया, 1985 के वफ रजिस्ट्रेशन को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया, और जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको भी उन्हें नजरअंदाज कर दिया। और एक और वजह है, यह फैसला जो एरोनियस और गलत है, मुस्लिम साइड ने यह आर्ग्यू किया था कि जो पीआईएल दाखिल की गई थी, रिट पिटीशन में उन्होंने डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट उठाए जो आर्टिकल 226 में नहीं लिए जा सकते, क्योंकि एक्स्ट्रॉर्डनरी ज्यूरिसडिक्शन जो होता है आर्टिकल 226 में, कोर्ट एक ऑर्डर पास नहीं कर सकता डिक्लेरेशन ऑफ पोजेशन और टाइटल के ऊपर।
6: खबर पश्चिम बंगाल की, जहां पर नई सरकार के आदेश पर पहली बार जुमे की नमाज सड़क पर होने की कोशिश हुई, लेकिन पुलिस प्रशासन ने लोगों को ऐसा करने से रोक दिया, जिसका विरोध भी हुआ।
8: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते थी जे।
0: पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद से सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, ये तय हो चुका था। कोलकाता के राजा बाजार में हंगामा इसी बदलाव के विरोध की वजह से हो रहा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई वाली सरकार ने सड़क पर धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने कहा है कि सड़क पर कोई भी धार्मिक कार्यक्रम नहीं होगा, मंदिर या फिर मस्जिद कहीं भी तेज आवाज में लाउड स्पीकर नहीं बजेगा, शुक्रवार को जब राजा बाजार में सड़क पर जुमे की नमाज पढ़ने के लिए लोग जमा होते हैं तो उन्हें पुलिस के कड़े रुख के बाद वापस लौटना पड़ा।
9: डबल नमाज होना चाहिए, रास्ता क्लियर होता है तो ता नुकसान है, फिर वोट आएगा। आज ठंडा है, ठंडा तो बिन जाएगा फिर ठंडा आएगा, ऐसे कानून जब तब के लिए बनेगा।
10: वो नमाज के पढ़ने के लिए तो अंदर से इमाम साहब ऐलान कर दिया, भाई सब मस्जिद में जगह आ जाओ, अगर जरूरत पड़ी दूसरी जमात होगा, दो जमात होगा, हंगामा करने और ये सब करने रोड में पढ़ना बंद कर दो। तब पहली जुमा थोड़ा संभालने में परेशानी हुई, अंदर जुमा से हो जाएगा इंशाल्लाह।
0: कोलकाता पुलिस ने जब सड़क पर नमाज पढ़ने से लोगों को रोका तो उन्होंने उसका विरोध किया। बड़ी तादाद में पुलिस की मौजूदगी के बाद हंगामा हुआ। लेकिन पुलिस ने लोगों को समझाया कि अब ऐसा नहीं हो सकेगा, सड़क पर धार्मिक गतिविधि नहीं हो पाएगी चाहे वो किसी मजहब के हो। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोगों ने पुलिस के मना करने पर हंगामा किया, बाद में पुलिस ने समझा बुझाकर वापस भेजा।
11: आज फर्स्ट जुमा था ये ऑर्डर आने के बाद में, इसलिए लोगों ने कुछ रास्ते पे नमाज इस तरह से हमेशा पढ़ते आए हैं, तो हम लोगों भी ने समझाया और पुलिस भी सपोर्ट किया, जिसके वजह कर पीसफुली तरीके से सब कुछ हो गया। अब आप समझते हैं जब लोग अवेयर नहीं होते हैं तो थोड़ा सा तर्क और वितर्क होता है, तो यही हुआ, बाकी पीसफुली तरीके से सब कुछ यहाँ पे आज का प्रेयर हो गया।
10: सरकार ने जो जो फैसला लिया है उसके ऊपर हम लोग अमल करने की कोशिश करेंगे, आप लोगों को जो हमारे कौम के लोग उसको भी समझाया जाएगा।
0: पश्चिम बंगाल में 9 मई को शुभेंदु अधिकारी ने शपथ ली थी, इसके बाद नमाज को लेकर हंगामे की ये पहली घटना है।
12: ये सिर्फ मुसलमान धर्म के लिए नहीं था, ये हिंदू धर्म के लिए भी था। कोई भी धर्म के लोग सड़क पे आके अपना पूजा या इबादत नहीं कर सकते, उसके लिए जगह ठीक किया हुआ है वहां पर वो करें। लेकिन यहाँ कुछ लोग भावुक हो गए थे और उसके बाद वो सड़क पे आ गए, और क्योंकि वो सालों से यहाँ सड़क पे नमाज अदा किया करते थे, तो पुलिस ने जब इन्हें मना किया तो फिर पुलिस के साथ कहीं कहासुनी हो गई थी और उसके बाद यहाँ पर भारी तादाद में लोग इकट्ठा हो गए थे। लेकिन बाद में पुलिस फोर्स आई, पुलिस के जो अफसर थे मौजूद, वो लोग उन लोगों ने स्थिति को काबू करने के लिए अलग अलग समय पर बातचीत किया और 15 से 20 मिनट के अंदर जो स्थिति है उसे पूरी तरीके से काबू कर लिया गया था। और फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सीआरपीएफ को डिप्लॉय किया गया, सेंट्रल फोर्सेज पश्चिम बंगाल में सड़क के दोनों तरफ सीआरपीएफ को डिप्लॉय रखा गया है।
0: बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद ही उसके नेताओं ने ये कहना शुरू कर दिया था कि वो सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे। इसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने अदालती आदेशों और सार्वजनिक व्यवस्था का हवाला देते हुए सड़क पर धार्मिक आयोजन रोकने के निर्देश दे दिए, ताकि सड़कों को ब्लॉक करने की वजह से लोगों को परेशानी न हो।
6: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

नीट पेपर लीक कांड में सीबीआई का बड़ा एक्शन, मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी पुणे से गिरफ्तार, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का ऐलान, 21 जून को नीट का री एग्जाम। धार भोजशाला विवाद में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत, हाईकोर्ट ने माना सरस्वती मंदिर, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया स्वागत, ओवैसी बोले अयोध्या जैसा निर्णय। देश यात्रा पर टैक्स लगाने की खबरों को पीएम मोदी ने किया खारिज, बताया अफवाह, कहा ऐसे प्रतिबंधों का सवाल नहीं। टीएमसी के सांसद अभिषेक बैनर्जी के विरुद्ध कोलकाता में एफआईआर, विधानसभा चुनाव में भड़काऊ भाषण देने, अमित शाह को धमकाने का आरोप, 5 धाराओं में केस। भारत और यूएई में तेल गैस समेत कई महत्वपूर्ण समझौते, आबूधाबी से $5 अरब निवेश पर करार, आज पीएम मोदी के नीदरलैंड्स दौरे पर रिश्तों को मिलेगी नई उड़ान, मोदी पहुंचे नीदरलैंड्स। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध का असर अब हमारे देश भारत पर भी पड़ना शुरू हो गया। केंद्र सरकार ने शुक्रवार यानी कि आज पूरे देश में पेट्रोल और डीजल के दाम 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए। इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर में सीएनजी के दाम में भी 2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी कर दी गई। ऐसे में बढ़े हुए दामों का असर अब आपकी हमारी जेब पर होने लगा है।

0: महंगाई का बम आपकी जेब पर कैसे फटा? अमेरिका ईरान युद्ध की चिंगारी घर घर तक कैसे आई? हुर्मुज में अमेरिका और ईरान भिड़ रहे हैं, महंगाई का बम फोड़ रहे हैं। तेल, गैस, दूध, सब पर छाई महंगाई, जा रही है गाढ़ी कमाई। लड़े कोई, फरे कोई, युद्ध रुकेगा नहीं, महंगाई घटेगी नहीं।
1: दुर्भाग्य से जिस क्षेत्र से दुनिया के बड़े हिस्से को तेल मिलता है, आज वही क्षेत्र संघर्ष और युद्ध की स्थिति में उलझा हुआ।
0: हिंट तो पीएम मोदी ने 5 दिन पहले ही दे दी थी, लेकिन असली महंगाई का बम अब फूटा है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें सीधे 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी गई हैं, और इस तरह से पेट्रोल नई दिल्ली में 97.77 रुपए प्रति लीटर, कोलकाता में 108.70 रुपए प्रति लीटर, मुंबई में 106.68 रुपए प्रति लीटर, नोएडा में 97.78 रुपए प्रति लीटर, जयपुर में 107.97 रुपए प्रति लीटर, पटना में 108.55 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है, जबकि डीजल पर भी 3.25 रुपए प्रति लीटर बढ़ने से नई दिल्ली में डीजल 90.67 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है, कोलकाता 95.13 रुपए प्रति लीटर, मुंबई 93.14 रुपए प्रति लीटर, नोएडा 91.02 रुपए प्रति लीटर, जयपुर 93.23 रुपए प्रति लीटर और पटना 94.63 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है। बड़ी बात यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का हल अभी तक नहीं निकला है। ना तो ईरान झुकने को तैयार है और ना ही अमेरिका पीछे हटने को तैयार है। ईरान और अमेरिका के बीच भले ही युद्ध विराम चल रहा हो, लेकिन दोनों देशों के बीच संपूर्ण युद्ध विराम को लेकर अभी तक कोई डील नहीं हुई है, क्योंकि ईरान अपना परमाणु प्रोग्राम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और अमेरिका कह रहा है कि जंग तभी बंद होगी जब ईरान अपना परमाणु प्रोग्राम और एनरिच यूरेनियम पूरी तरह से छोड़ेगा। एक तो ईरान अमेरिका का अड़ियल रवैया, ऊपर से हुर्मुज स्ट्रेट में गुजरात का एक और मालवाहक जहाज डूब गया। हाजी अली नाम का जहाज 13 मई की सुबह ओमान के समुद्री क्षेत्र से गुजर रहा था, तभी इससे कोई ड्रोन या मिसाइल जैसा हथियार टकरा गया। हादसे के बाद जहाज में आग लग गई, हालांकि ओमान कोस्ट गार्ड ने सभी 14 क्रू मेंबर्स को बचा लिया, क्योंकि अभी ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 107 से 108 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल चल रही है। कच्चे तेल से बनने वाले उत्पादों की बात करें तो गैसोलीन, पेट्रोल, डीजल और हीटिंग तेल, जेट इंजन, केरोसिन, ल्यूब्रिकेटिंग तेल और डामर इसी से बनता है। सरकार की तरफ से पहले ही माहौल बना दिया जाता है कि कच्चा तेल महंगा है, तेल गैस लाने में दिक्कत हो रही है, पेट्रोलियम कंपनियां घाटा झेल रही हैं, ताकि पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े तो जनता ज्यादा हायतौबा ना मचाए।
2: महंगाई की मार तो है, खासकर मिडिल क्लास आदमी पे।
3: हमें नहीं समझ आ रही भी, हाँ सरकार कर क्या रही है।
4: दूसरे देशों में जो बढ़ोतरी हुई है उससे तो बहुत ही कम है। मोदी साहब को सपोर्ट करना चाहिए।
5: जो नॉर्मल फैमिली है उसपे 3 रुपए का तो बहुत ज्यादा बजट पे फर्क पड़ेगा।
6: रेट तो अभी और भी बढ़ेंगे, बट ठीक है, मोदी जी ने कुछ सोच रखा होगा, मोदी जी के साथ ही खड़े हैं।
7: पता नहीं सरकार क्या करता है।
3: वो जो बढ़ा है ठीक है, और बढ़ेगा तो कुछ नहीं होगा। देश में मोदी है तो सब मुमकिन है।
8: हाँ, ये पैसे गलत कराए इन्होंने, पेट्रोल पे पैसे बढ़ाए हैं।
9: नुकसान है और किसका नुकसान है, बस जनता पे ही असर पड़ लिया, किस पर पड़ लिया।
0: लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े तो दिल्ली एनसीआर के लोगों पर महंगाई की एक और मार पड़ी है। शुक्रवार सुबह पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के साथ ही सीएनजी की कीमतों में भी 2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी कर दी गई है, जिससे आम लोगों का बजट और बिगड़ गया है। अब सीएनजी के दाम दिल्ली में 79.09 रुपए प्रति किलो, नोएडा में 87.70 रुपए प्रति किलो, गुरुग्राम में 84.12 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, दूध के दामों में 2 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। कंपनी का कहना है कि उत्पादन लागत बढ़ने और बाजार की परिस्थितियों के चलते ये कदम उठाना पड़ा है, जबकि घरेलू गैस सिलेंडर से लेकर कमर्शियल सिलेंडर और छोटू सिलेंडर यानी 5 किलो के सिलेंडर के दाम पहले ही बढ़ा दिए गए हैं। इधर महंगाई का बम फूटा, उधर कांग्रेस ने निशाना साध दिया। सोना भी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से महंगा हो गया है। अब कांग्रेस कह रही है कि चुनाव खत्म और मोदी की वसूली शुरू।
10: अमृत काल में आपका स्वागत है और इस अमृत काल में महंगाई मैन अपना चाबुक चला रहे हैं, मोदी जी आपसे वसूली कर रहे हैं। आपकी जेब पर डाका डाल रहे हैं। जब आप पर महंगाई का चाबुक चलाया जा रहा है, तब दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जो अपने लोगों को राहत दे रहे हैं।
11: 3 रुपए पे इतना ज्यादा हाइक तो सरकार को कोसने के अलावा कुछ आता है?
0: जबकि सरकार का कहना है कि कच्चे तेल की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव के बावजूद 2022 से अब तक ईंधन की कीमतें काफी हद तक स्थिर बनी हुई हैं और सरकार ने पूरे देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित की है। लेकिन सच ये भी है कि अप्रैल में थोक महंगाई 2 गुने से ज्यादा बढ़कर 8.30% तक पहुँच गयी है। मार्च में ये 3.88% पर थी। अप्रैल में महंगाई 42 महीने में सबसे ज्यादा है। अक्टूबर 2022 में ये 8.39% पर पहुंच गई थी। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने थोक महंगाई के आंकड़े जारी किए। अब आपको बता देते हैं कि डीजल के दाम बढ़ने से आम आदमी की जेब पर महंगाई बम कैसे फूटेगा। माल भाड़ा बढ़ेगा और ट्रक और टेम्पो का किराया बढ़ जाएगा, जिससे दूसरे राज्यों से आने वाली सब्जियां, फल और राशन महंगे हो जाएंगे। खेती की लागत बढ़ेगी। ट्रैक्टर और पंपिंग सेट चलाने के लिए किसानों को ज्यादा खर्च करना होगा, जिससे अनाज की लागत बढ़ेगी। बस, ऑटो का किराया, सार्वजनिक परिवहन और स्कूल बसों के किराए में भी इजाफा देखने को मिल सकता है। जिस तरह से तेल कंपनियां माहौल बना रही हैं कि पेट्रोल डीजल पर 25 से 30 रुपए प्रति लीटर का घाटा हो रहा है, ऐसे में एक्सपर्ट ये भी मान रहे हैं कि अपना घाटा पूरी तरह खत्म करने और ब्रेक इवन यानी नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति में आने के लिए तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल के दामों में और इजाफा कर सकती हैं। आज तक ब्यूरो।
12: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले 10 मई को और फिर 11 मई को हैदराबाद से वडोदरा तक आकर 2 बार देश से अपील की। कहा कि तेल बचाइए क्योंकि ये संकट बड़ा है, बचाएंगे तभी बच पाएंगे। और इसके बाद देश भर में विभिन्न केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्री सब अपना काफिला कम करने में लग गए। कोई स्कूटर से चलने लगा, कोई मेट्रो से चलने लगा। लेकिन इस बीच एक मंत्री ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की अपील से बड़ा उनका अपना काफिला है।
13: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें।
14: लेकिन मंत्री जी को तो लगता है कि नसीहत चूल्हे में जाए, बस भौकाल ना घटने पाए। वो मंत्री जिन्हों ने इधर शपथ ली और उधर तय कर लिया कि देश पर जनता पर जो बोझ पड़ता है पड़े, बस उनके काफिले की गाड़ी ना घटे। वो मंत्री जिन्होंने प्रधानमंत्री के बाद मुख्यमंत्री की भी बात एक कान से सुनी दूसरे से निकाल दी।
15: देश का पैसा बचाना है और देश का पैसा बचा करके इस संकट के, इस वैश्विक संकट से हम अपने देश को बाहरने का काम करेंगे।
14: लेकिन प्रधानमंत्री की अपील, मुख्यमंत्री की दलील इन सबसे बड़ी निकली। उत्तर प्रदेश में नए नवेले बनाए गए मंत्री हंसराज विश्वकर्मा की लाल बत्ती पाने वाली वीआईपी फील। मंत्री जी का नाम हंसराज विश्वकर्मा, नए नए राज्य मंत्री बने हैं, जिसकी कामना में न जाने कितनी परिक्रमा काशी से लखनऊ तक की होगी। मंत्री पद मिला तो नया ऑफिस मिला, नया ऑफिस मिला तो नई चकाचक कुर्सियां मिली। मोदी योगी का आभार करके मंत्री हंसराज ने भरोसा दिया, बस अब से हर समस्या का समाधान करूंगा।
16: उत्तर प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री आदरणीय योगीनाथ जी और वाराणसी के सांसद, देश के सबसे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। निश्चित तौर पर इतना से अच्छा कोशिश करूंगा कि इस कार्यालय से जितने लोगों का कहीं भी कोई किसी प्रकार का उनको समस्या हो तो समस्या का बकायदे जो है उसका समाधान किया जाए।
14: लखनऊ से समाधान की बात करके मंत्री हंसराज विश्वकर्मा का काफिला वाराणसी पहुंचा। तब तक प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की अपीलें हवा हो चुकी थी। दर्जनों गाड़ियां लेकर मंत्री का काफिला पहुंचता है, लंबा जाम लगा मिलता है। हद तब हो जाती है जब बुलडोजर तक लाकर नए नए मंत्री पद पर विराजे हंसराज विश्वकर्मा पर समर्थक फूल बरसा देते हैं। ऐसा जाम काशी की सड़कों पर लगा जिसमें अपना काफिला लगाकर तो तेल मंत्री और उनके समर्थक फूंकते ही रहे। आम आदमी जो प्रधानमंत्री की सलाह सुनकर कारपूल करके या दोपहिया वाहन से निकला होगा, उसका भी तेल फुकवा दिया। जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद महंगाई की आग की तपिश महसूस कर रहा है।
17: जेब पे बोझ तो पहले से ही है, देख रहे हैं भरी दोपहरी में हम लोग परेशान चल रहे हैं, अपना जॉब चला रहे हैं उसमें और इजाफा ये लोग कर दिए हैं।
18: महंगाई पे जोर आ रहा है,
19: मुश्किल तो होगा।
18: बजट गड़बड़ाएगा
19: गड़बड़ाएगा भैया,
18: महंगाई बढ़ेगी।
20: ये जो महंगाई है हम लोग जेब के ऊपर ज्यादा ही पड़ता जा रहा है, क्योंकि हम लोग की सैलरी तो लिमिटेड है।
14: मतलब जनता की जेब महंगाई से जलती रहे और मंत्री हंसराज विश्वकर्मा पीएम की अपील नहीं सुनते तो विपक्ष सवाल उठाता है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने सोशल मीडिया पर डाला कि काशी की सड़कों पर कुछ महीनों के मेहमान मंत्री का अहंकार देखिए, सैकड़ों गाड़ियों का काफिला, धुआं उड़ाती सत्ता की हनक और घंटों जाम में फंसी काशी की जनता। खबरदार करता सवाल समझिए, जब मध्य प्रदेश में पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष सौभाग्य सिंह सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ उज्जैन से भोपाल पहुंचे, पीएम की अपील को मानने से इनकार कर दिया तो उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी हुआ। पाठ्य पुस्तक निगम के दफ्तर जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। क्या अब यूपी में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में ही मोदी की अपील को धुआं करने वाले नए मंत्री हंसराज विश्वकर्मा को पार्टी नोटिस जारी करेगी? क्या इन पर भी कार्रवाई होगी?
12: और अब बात नीट पेपर लीक पर हुए कबूलनामे की। पेपर लीक की कड़ियों को आपस में जोड़ने के लिए जांच टीम गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इस कड़ी में पेपर लीक से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण किरदार जांच टीम की गिरफ्त में। किरदार का नाम है लेक्चरर पीवी कुलकर्णी, जिसे सीबीआई ने पेपर लीक के आरोप में गिरफ्तार किया और यही मुख्य आरोपी है।
0: नाम लेक्चरर पीवी कुलकर्णी, काम एनटीए का हिस्सा, आरोप नीट का पेपर लीक। पेपर लीक कांड में पुणे के लेक्चरर पीवी कुलकर्णी की आज गिरफ्तारी हुई। दावा यही है कि एनटीए की तरफ से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल पीवी कुलकर्णी ने नीट का पेपर लीक किया। केमिस्ट्री के लेक्चरर कुलकर्णी ने पेपर लीक कैसे किया, इसका खुलासा कैसे हुआ, आपको ये भी थोड़ी देर में बताएंगे। उससे पहले समझिए कुलकर्णी की गिरफ्तारी ने कैसे एनटीए की वर्किंग स्टाइल को कटघरे में खड़ा कर दिया है। क्योंकि कुलकर्णी प्राइवेट कोचिंग चलाता था, इसके बावजूद एनटीए ने उसे परीक्षा की प्रक्रिया का हिस्सा बनाया। सबसे बड़ा सवाल यही है कि एनटीए ने प्राइवेट कोचिंग चलाने वाले कुलकर्णी को परीक्षा की प्रक्रिया से क्यों जोड़ा? प्राइवेट कोचिंग चलाने वाले कुलकर्णी का एनटीए में गॉडफादर कौन है? क्यों नीट की परीक्षा से ठीक पहले एनटीए ने अभिषेक सिंह को डीजी बनाया? क्या पेपर लीक के सिंडिकेट में एनटीए के कई अफसर मिले हुए हैं? क्या एनटीए जैसी संस्था के अंदर पेपर माफियाओं की जड़ें बहुत गहरी हैं? एनटीए सवालों के घेरे में है, एनटीए की वर्किंग स्टाइल कटघरे में है, लेकिन पेपर लीक कांड के चलते परीक्षा रद्द होने के करीब 48 घंटे बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने पहली बार चुप्पी तोड़ी। 13 मई को धर्मेंद्र प्रधान पेपर लीक के सवालों को टाल गए थे, लेकिन 48 घंटे बाद मीडिया के सामने आए, नीट पेपर लीक की जिम्मेदारी ली और साफ गोई से एनटीए को क्लीन चिट दे दी।
21: फिर सामाजिक चुनौती है, राधाकृष्ण कमिटी को पूरा पालन करने के उपरांत भी उस कमांड चेन में कहीं ना कहीं ब्रीच हुई है, इसको हम स्वीकार करते हैं। अभी तो एनटीए बहुत योग्य व्यक्ति के हाथ में है, हमारे सचिव की बहुत अनुभव भी उस विषय में है। मैं मानता हूँ हमें एनटीए को सुप्रीम कोर्ट की आदेश कारण एनटीए बनी है। एनटीए हर एक साल 1 करोड़ बच्चों की एग्जामिनेशन कराती है अमूमन। एनटीए और निर्भुल हो, एनटीए में जीरो एरर हो, जीरो यानी जीरो एरर हो, ये हमारी दायित्व है।
0: अब सीधा सवाल एनडीए को क्लीन चिट देने वाले जिम्मेदारों से है। अगर एनटीए पाक साफ है, एनटीए का कोई कसूर नहीं है, एनटीए में सब कुछ पारदर्शी है, तो प्राइवेट कोचिंग चलाने वाला कुलकर्णी एनटीए की परीक्षा प्रक्रिया का हिस्सा कैसे बना? अब इस सवाल का जवाब केंद्रीय शिक्षा मंत्री को देना है, क्योंकि एनटीए के गड़बड़ झाले का सबसे बड़ा सबूत लेक्चरर कुलकर्णी है। ऐसा क्यों, इसे भी समझिए। शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि पीवी कुलकर्णी ने नीट का पेपर लीक किया जो एनटीए से जुड़ा हुआ था। 3 मई को नीट की परीक्षा हुई, लेकिन अप्रैल 2026 के आखिरी हफ्ते में कुलकर्णी ने पेपर लीक की आरोपी मनीषा वाघमारे की मदद से कुछ छात्रों को जुटाया जो नीट की परीक्षा देने वाले थे। कुलकर्णी ने पुणे स्थित अपने घर पर छात्रों के लिए कोचिंग क्लास चलाई। क्लास में कुलकर्णी ने छात्रों को सवाल और उसके जवाब बताए। ये वही सवाल थे जो नीट के पेपर में सेट किए गए थे। कोचिंग में मौजूद छात्रों ने सवाल और जवाब को अपनी कॉपी में लिखा। पेपर लीक की जांच में पाया गया कि केमिस्ट्री के वही सवाल 3 मई 2026 को हुए नीट यूजी परीक्षा के असली पेपर से पूरी तरह मेल खाते हैं। कुलकर्णी केमिस्ट्री का लेक्चरर है और नीट के सभी 45 सवाल लीक पेपर से मैच करते हैं। ये संयोग नहीं बल्कि पेपर लीक गैंग का प्रयोग है। केमिस्ट्री के वही सवाल नीट में आए जो कुलकर्णी ने छात्रों को बताए थे। अब सीबीआई टीम को कुलकर्णी से कई और राज उगलवाने हैं। नीट के प्रश्न पत्र में बायोलॉजी के 90 सवाल भी लीक पेपर से हूबहू मैच हुए, यानी केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सवाल लीक किए गए। तो क्या कुलकर्णी के साथ कई और लोग शामिल हैं? क्या एनटीए की प्रश्न पत्र तैयार करने वाली कमेटी में शामिल कई और एक्सपर्ट पेपर लीक रैकेट से जुड़े हुए हैं? सबसे बड़ा सवाल, कुलकर्णी का गॉडफादर कौन है? पूछताछ के दौरान नीट का पेपर खरीदने वाले मांगीलाल ने कबूल किया है कि पेपर लीक गैंग में कई प्राइवेट कोचिंग सेंटर, एनटीए के बड़े अफसर और कई सफेदपोश शामिल हैं। सवाल यही है कि क्या सीबीआई के हाथ पेपर लीक का सिंडिकेट चलाने वाले मास्टरमाइंड तक पहुंचेंगे? दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ, जयपुर से शरद कुमार, आज तक।
12: जिस भोजशाला को विद्या की काशी कहा जाता था, उस भोजशाला को एमपी हाईकोर्ट ने प्राचीन संस्कृत अध्ययन केंद्र और सरस्वती मंदिर मानते हुए हिंदू पक्ष के समर्थन में अपना निर्णय सुना दिया। एएसआई की
1: जो बरसों से किया जा रहा संघर्ष था, माँ की मुक्ति और उसके गौरव की पुनर्स्थापना का दिन जो इसका इंतजार किया जा रहा था, वो बहुत नजदीक आ गया है। आज इस भोजशाला को, जो कि वास्तव में सरस्वती का मंदिर था, उसको कानूनी रूप से माँ का मंदिर घोषित हुआ है। ये बहुत ही हर्ष की बात है और हिंदू समाज आज प्रफुल्लित है। आज वो दिल से खुश है कि वर्षों का उसके मेहनत का परिणाम आज सबके सामने आया है।
19: भोजशाला के इस मंदिर में अब सिर्फ मंगलवार को ही पूजा नहीं होगी, हिंदू पक्ष यहाँ रोज पूजा कर पाएगा। अदालत ने माना है कि ये एक मंदिर है, न कि कमाल मौला मस्जिद। इंदौर हाई कोर्ट का ये आदेश हिंदू पक्ष के उन लोगों की जिंदगी का सबसे बड़ा पल है जो वर्षों से इसे लेकर संघर्ष करते रहे।
22: कैसा फैसले को देखते हो और अब कब आप लोग प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रहे हो?
23: बहुत बहुत अच्छा फैसला है। न्यायमूर्ति जो है उनने बहुत अच्छा फैसला दिया, उनका स्वागत करते हैं हम बहुत बहुत। और कई वर्षों के बाद हमारे कई बुजुर्गों ने इस भोजशाला के लिए प्राण दिए हैं, उनका बहुत प्राण इसमें लगे हैं। हमारे ऐसी युवा पीढ़ी जो आज भोजशाला परिसर में खड़ी,
22: आप क्या करेंगे? आप
23: अब यहाँ पर भोजशाला में बहुत ही वाघ देवी बहुत जल्द आएगी और विराजमान होगी।
24: यह एक ऐतिहासिक फैसला जो आज उच्च न्यायालय के द्वारा मिला है, ये हिंदू समाज के लिए एक बहुत ही बड़ी जीत है।
19: दशकों से हिंदू पक्ष भोजशाला को मंदिर बताता रहा, इसके लिए उन्होंने 1995 में पहली बार कानूनी लड़ाई शुरू की और अब जाकर जीत हुई। इंदौर हाईकोर्ट ने एएसआई के सर्वे, ऐतिहासिक तथ्यों, गवाहों और परिसर के मौजूद हालात को देखते हुए अपना फैसला सुनाया। ऐलान किया कि भोजशाला में जिस मंदिर को दशकों से कमाल मौला के मकबरे और मस्जिद के तौर पर बताया जाता रहा, वो मस्जिद नहीं बल्कि सरस्वती मंदिर है।
25: वो जो भोजशाला है वहाँ नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, वो राजा भोज का मंदिर है। एक चीज, मुस्लिम चाहे तो एक आवेदन कर सकते हैं राज्य सरकार को, तो राज्य सरकार उनको जगह दे सकती है मस्जिद के लिए। एक चीज स्पष्ट हो गई। दूसरी चीज, एएसआई के अधीन ये संपत्ति दी है, एएसआई चाहे तो उसको रेगुलर रूप से हिंदुओं को दे दे, वहाँ की जो व्यवस्था है वो एएसआई को दी है।
19: साल 1995 में दोनों पक्षों के बीच मामूली विवाद के बाद प्रशासन ने भोजशाला में मंगलवार को पूजा और शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत दी, जिसके बाद ये मामला अदालत में लड़ा जाता रहा। इंदौर हाई कोर्ट के दो जजों की बेंच ने इस विवाद पर फैसला सुनाते हुए कहा, हमने देखा है कि उस जगह पर हिंदू पूजा लगातार होती रही है, हमने पाया है कि उस जगह का ऐतिहासिक साहित्य राजा भोज से जुड़े संस्कृत सीखने के केंद्र के तौर पर इसे स्थापित करता है, इससे धार्मिक देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर होने का पता चलता है, इसलिए उस इलाके का धार्मिक चरित्र भोजशाला माना जाता है जिसमें देवी वाग देवी सरस्वती का मंदिर है।
25: पूरे कमाल मौला जो भोजशाला परिसर है
26: बाहर का, तो इधर कमाल मौला
25: नहीं, उसके लिए कुछ नहीं कहा गया, वो तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर में नहीं था। कोर्ट ने मौला कमालुद्दीन को ये कहा है कि वो अल्टरनेट लैंड के लिए सरकार को प्रत्यावेदन दे सकते हैं और सरकार उसको कंसिडर करती है। मतलब मूल बात यह है कि इस पूरे परिसर को, जो हमारी मांग थी, हमारे हर एक आर्गुमेंट को कोर्ट ने माना है और इसके स्वरूप को एक हिंदू मंदिर का परिसर घोषित किया।
19: अदालत ने अपने आदेश में एएसआई सर्वे रिपोर्ट से मिले सबूतों का हवाला दिया, जिसमें ये बात भी कही गई कि कमाल मौला मस्जिद को बनाने में भोजशाला के प्राचीन अवशेषों का इस्तेमाल किया गया।
2: कि जो एएसआई है, जो पूरा भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण है, उसकी रिपोर्ट से अन्य साक्ष्य जो रखे गए, जो हमारे द्वारा ऐतिहासिक साक्ष्य रखे गए, और राम मंदिर जजमेंट के समय जो दोनों ही धर्मों के जो कानूनी पहलू रखे गए कि हिंदू लॉ के हिसाब से एक बार जो मंदिर स्थापित हो जाता है वो हमेशा मंदिर रहता है, और मुस्लिम लॉ के हिसाब से भी किसी कब्जा करी हुई जगह पर एक वैलिड मस्जिद नहीं बनाया जा सकता, इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए माननीय न्यायालय ने तय करा कि ये जो जगह है, ये जो मंदिर है, ये भोजशाला है, एक सरस्वती माँ का मंदिर है।
19: AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भोजशाला के फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसके आए फैसले में बाबरी मस्जिद के फैसले जैसी समानताएं हैं कहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट इसे सुलझाएगा और हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करेगा।
3: पूरी अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग मिली, लेकिन वजह सिर्फ ये है कि एएसआई के तथ्यों को पुख्ता मानकर और उस पे फैसला देना वो कहीं एक हद तक सेटिस्फेक्शन नहीं देता है।
19: लेकिन भोजशाला में हिंदू पक्ष को यकीन है कि हाई कोर्ट के फैसले से अब उनका इंतजार खत्म होगा और वो मंदिर में पूजा पाठ कर पाएंगे।
4: 1005 से 1054 राजा भोज का काल रहा है तो ये न्याय की जीत हुई है
22: जी।
4: बस राजा,
22: लेकिन प्रतिक्रिया आप लोगों की ऐसा नहीं लगता कि सामने वाले को
4: नहीं अधिकार है, कानून ने जो अधिकार दिया है, हमारा तो भारतीय संविधान बहुत विशाल है और बहुत बृहद है।
5: हिंदू समाज का उत्साह है, लंबा संघर्ष रहा है भोजशाला के लिए, अलग अलग समय में अलग अलग लोगों ने इसको इस संघर्ष को जिया है। इस भोजशाला मुक्ति के लिए हमारे 3 कार्यकर्ता पुलिस की गोली से शहीद हुए हैं, आज उनको सच्ची श्रद्धांजलि उन लोगों को है। 44 महिलाएं, धार की महिलाएं इंदौर की जेल में 8 दिन तक बंद रही, कई लोग परिवार सहित जेल में गए, उन सबका त्याग तपस्या समर्पण का आज परिणाम निकला है।
19: अदालत ने 11 मार्च को एएसआई को भोजशाला परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का आदेश दिया था, जिसके बाद एएसआई ने 22 मार्च से सर्वेक्षण शुरू किया और 27 जून तक सर्वे का काम चला। 98 दिनों के बाद सर्वे का काम खत्म हुआ और अब अदालत के फैसले ने भोजशाला को मंदिर करार देते हुए यहां पूजा की इजाजत दे दी है। रवीश पाल सिंह, धार आज तक।
12: भोजशाला को मंदिर घोषित करने के इंदौर हाईकोर्ट के बड़े निर्णय पर ओवैसी ने सवाल उठाया, कहा कि इस निर्णय में बाबरी मस्जिद जैसे निर्णय की समानताएं हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसे सुलझाएगा, हाईकोर्ट के निर्णय को रद्द करेगा।
6: एएसआई ने 1951 में और 1952 में ये क्लैरिफिकेशन दे चुकी है कि ये मस्जिद है, और उस वक्त उन्होंने एएसआई ने रिजेक्ट किया था इसको कि जो वहां पर भोज उत्सव मनाना चाहते थे। 51 और 52 का एएसआई के ऑर्डर है। कोर्ट ने, जैसा मैंने भी कहा, 1935 के धार स्टेट एग्जीक्यूटिव को, स्टेट गजट को नजरअंदाज कर दिया, 1985 के वफ रजिस्ट्रेशन को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया, और जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको भी उन्हें नजरअंदाज कर दिया। और एक और वजह है, यह फैसला जो एरोनियस और गलत है, मुस्लिम साइड ने यह आर्ग्यू किया था कि जो PIL दाखिल की गई थी रिट पटिशन में, उन्होंने डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट उठाए जो आर्टिकल 226 में नहीं लिए जा सकते, क्योंकि एक्स्ट्रॉर्डनरी ज्यूरिसडिक्शन जो होता है आर्टिकल 226 में, कोर्ट एक ऑर्डर पास नहीं कर सकता डिक्लेरेशन ऑफ पोजेशन और टाइटल के ऊपर।
12: खबर पश्चिम बंगाल की, जहां पर नई सरकार के आदेश पर पहली बार जुमे की नमाज सड़क पर होने की कोशिश हुई, लेकिन पुलिस प्रशासन ने लोगों को ऐसा करने से रोक दिया, जिसका विरोध भी हुआ।
7: आमी शुभेंदु अधिकारी ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে।
19: पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद से सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, ये तय हो चुका था। कोलकाता के राजा बाजार में हंगामा इसी बदलाव के विरोध की वजह से हो रहा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई वाली सरकार ने सड़क पर धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने कहा है कि सड़क पर कोई भी धार्मिक कार्यक्रम नहीं होगा, मंदिर या फिर मस्जिद कहीं भी तेज आवाज में लाउड स्पीकर नहीं बजेगा। शुक्रवार को जब राजा बाजार में सड़क पर जुमे की नमाज पढ़ने के लिए लोग जमा होते हैं तो उन्हें पुलिस के कड़े रुख के बाद वापस लौटना पड़ा।
8: डबल नमाज होना चाहिए, रास्ता क्लियर होता है तो उतना नुकसान है। फिर वोट आएगा, आज ठंडा है, ठंडा तो फिर जाएगा, फिर ठंडा आएगा, ऐसे कानून जब तब के लिए बनेगा।
9: वो नमाज के पढ़ने के लिए तो अंदर से इमाम साहब ऐलान कर दिया, भाई सब मस्जिद में जगह आ जाओ, अगर जरूरत पड़ी दूसरी जमात होगा, दो जमात होगा, हंगामा करने और ये सब करने रोड में पढ़ना बंद कर दो। तब पहली जुमा थोड़ा संभालने में परेशानी हुई, अंदर जुमा से हो जाएगा इंशाल्लाह।
19: कोलकाता पुलिस ने जब सड़क पर नमाज पढ़ने से लोगों को रोका तो उन्होंने उसका विरोध किया। बड़ी तादाद में पुलिस की मौजूदगी के बाद हंगामा हुआ। लेकिन पुलिस ने लोगों को समझाया कि अब ऐसा नहीं हो सकेगा, सड़क पर धार्मिक गतिविधि नहीं हो पाएगी, चाहे वो किसी मजहब के हो। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोगों ने पुलिस के मना करने पर हंगामा किया, बाद में पुलिस ने समझा बुझा कर वापस भेजा।
10: आज फर्स्ट जुमा था ये ऑर्डर आने के बाद में, इसलिए लोगों ने कुछ रास्ते पे नमाज इस तरह से हमेशा पढ़ते आए हैं, तो हम लोगों भी ने समझाया और पुलिस भी सपोर्ट किया, जिसके वजह कर पीसफुली तरीके से सब कुछ हो गया। अब आप समझते हैं जब लोग अवेयर नहीं होते हैं तो थोड़ा सा तर्क और वितर्क होता है, तो यही हुआ, बाकी पीसफुली तरीके से सब कुछ यहाँ पे आज का प्रेयर हो गया।
9: सरकार ने जो जो फैसला लिया है उसके ऊपर हम लोग अमल करने की कोशिश करेंगे और लोगों को जो हमारे कौम के लोग उसको भी समझाया जाएगा।
19: पश्चिम बंगाल में 9 मई को शुभेंदु अधिकारी ने शपथ ली थी, इसके बाद नमाज को लेकर हंगामे की ये पहली घटना है।
11: ये सिर्फ मुसलमान धर्म के लिए नहीं था, ये हिंदू धर्म के लिए भी था। कोई भी धर्म के लोग सड़क पे आके अपना पूजा या इबादत नहीं कर सकते, उसके लिए जगह ठीक किया हुआ है वहां पर वो करें। लेकिन यहाँ कुछ लोग भावुक हो गए थे और उसके बाद वो सड़क पे आ गए, और क्योंकि वो सालों से यहाँ सड़क पे नमाज अदा किया करते थे, तो पुलिस ने जब इन्हें मना किया तो फिर पुलिस के साथ कहीं कहा सुनी हो गई थी, और उसके बाद यहाँ पर भारी तादाद में लोग इकट्ठा हो गए थे। लेकिन बाद में पुलिस फोर्स आई, पुलिस के जो अफसर थे मौजूद, वो लोग उन लोगों ने स्थिति को काबू करने के लिए अलग अलग समय पर बातचीत किया, और 15 से 20 मिनट के अंदर जो स्थिति है उसे पूरी तरीके से काबू कर लिया गया था। और फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सीआरपीएफ को डिप्लॉय किया गया, सेंट्रल फोर्सेज पश्चिम बंगाल में सड़क के दोनों तरफ सीआरपीएफ को डिप्लॉय रखा गया है।
19: बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद ही उसके नेताओं ने यह कहना शुरू कर दिया था कि वो सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे। इसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने अदालती आदेशों और सार्वजनिक व्यवस्था का हवाला देते हुए सड़क पर धार्मिक आयोजन रोकने के निर्देश दे दिए, ताकि सड़कों को ब्लॉक करने की वजह से लोगों को परेशानी न हो।
12: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

नीट पेपर लीक कांड में सीबीआई का बड़ा एक्शन, मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी पुणे से गिरफ्तार, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का ऐलान, 21 जून को नीट का री एग्जाम। धार भोजशाला विवाद में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत, हाईकोर्ट ने माना सरस्वती मंदिर, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया स्वागत, ओवैसी बोले अयोध्या जैसा निर्णय। विदेश यात्रा पर टैक्स लगाने की खबरों को पीएम मोदी ने किया खारिज, बताया अफवाह, कहा ऐसे प्रतिबंधों का सवाल नहीं। टीएमसी के सांसद अभिषेक बैनर्जी के विरुद्ध कोलकाता में एफआईआर, विधानसभा चुनाव में भड़काऊ भाषण देने, अमित शाह को धमकाने का आरोप, 5 धाराओं में केस। भारत और यूएई में तेल गैस समेत कई महत्वपूर्ण समझौते, अबुधाबी से $5 अरब निवेश पर करार, आज पीएम मोदी के नीदरलैंड्स दौरे पर रिश्तों को मिलेगी नई उड़ान, मोदी पहुंचे नीदरलैंड्स। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध का असर अब हमारे देश भारत पर भी पड़ना शुरू हो गया। केंद्र सरकार ने शुक्रवार यानी कि आज पूरे देश में पेट्रोल और डीजल के दाम 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए। इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर में सीएनजी के दाम में भी 2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी कर दी गई। ऐसे में बढ़े हुए दामों का असर अब आपकी हमारी जेब पर होने लगा है।

0: महंगाई का बम आपकी जेब पर कैसे फटा? अमेरिका ईरान युद्ध की चिंगारी घर घर तक कैसे आई? हुर्मुज में अमेरिका और ईरान भिड़ रहे हैं, महंगाई का बम फोड़ रहे हैं। तेल, गैस, दूध, सब पर छाई महंगाई, जा रही है गाढ़ी कमाई। लड़े कोई, भरे कोई, युद्ध रुकेगा नहीं, महंगाई घटेगी नहीं।
1: दुर्भाग्य से जिस क्षेत्र से दुनिया के बड़े हिस्से को तेल मिलता है, आज वही क्षेत्र संघर्ष और युद्ध की स्थिति में उलझा हुआ है।
0: हिंट तो पीएम मोदी ने 5 दिन पहले ही दे दी थी, लेकिन असली महंगाई का बम अब फूटा है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें सीधे 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी गई हैं, और इस तरह से पेट्रोल नई दिल्ली में 97.77 रुपए प्रति लीटर, कोलकाता में 108.70 रुपए प्रति लीटर, मुंबई में 106.68 रुपए प्रति लीटर, नोएडा में 97.78 रुपए प्रति लीटर, जयपुर में 107.97 रुपए प्रति लीटर, पटना में 108.55 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है। जबकि डीजल पर भी 3.25 रुपए प्रति लीटर बढ़ने से नई दिल्ली में डीजल 90.67 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है, कोलकाता 95.13 रुपए प्रति लीटर, मुंबई 93.14 रुपए प्रति लीटर, नोएडा 91.02 रुपए प्रति लीटर, जयपुर 93.23 रुपए प्रति लीटर और पटना 94.63 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है। बड़ी बात यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का हल अभी तक नहीं निकला है। ना तो ईरान झुकने को तैयार है और ना ही अमेरिका पीछे हटने को तैयार है। ईरान और अमेरिका के बीच भले ही युद्ध विराम चल रहा हो, लेकिन दोनों देशों के बीच संपूर्ण युद्ध विराम को लेकर अभी तक कोई डील नहीं हुई है, क्योंकि ईरान अपना परमाणु प्रोग्राम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और अमेरिका कह रहा है कि जंग तभी बंद होगी जब ईरान अपना परमाणु प्रोग्राम और एनरिच्ड यूरेनियम पूरी तरह से छोड़ेगा। एक तो ईरान अमेरिका का अड़ियल रवैया, ऊपर से हुर्मुज स्ट्रेट में गुजरात का एक और मालवाहक जहाज डूब गया। हाजी अली नाम का जहाज 13 मई की सुबह ओमान के समुद्री क्षेत्र से गुजर रहा था, तभी इससे कोई ड्रोन या मिसाइल जैसा हथियार टकरा गया। हादसे के बाद जहाज में आग लग गई, हालांकि ओमान कोस्ट गार्ड ने सभी 14 क्रू मेंबर्स को बचा लिया, क्योंकि अभी ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 107 से 108 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल चल रही है। कच्चे तेल से बनने वाले उत्पादों की बात करें तो गैसोलीन, पेट्रोल, डीजल और हीटिंग तेल, जेट इंजन, केरोसिन, ल्यूब्रिकेटिंग तेल और डामर इसी से बनता है। सरकार की तरफ से पहले ही माहौल बना दिया जाता है कि कच्चा तेल महंगा है, तेल गैस लाने में दिक्कत हो रही है, पेट्रोलियम कंपनियां घाटा झेल रही हैं, ताकि पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े तो जनता ज्यादा हायतौबा ना मचाए।
2: महंगाई की मार तो है ही है, खासकर मिडिल क्लास आदमी पे।
3: हमें नहीं समझ आ रही भी हाँ सरकार कर क्या रही है।
4: दूसरे देशों में जो बढ़ोतरी हुई है उससे तो बहुत ही कम है, मोदी साहब को सपोर्ट करना चाहिए।
5: जो नॉर्मल फैमिली है उसमें 3 रुपए का तो बहुत ज्यादा बजट पे फर्क पड़ेगा।
6: रेट तो अभी और भी बढ़ेंगे, बट ठीक है, मोदी जी ने कुछ सोच रखा होगा, मोदी जी के साथ ही खड़े हैं।
7: पता नहीं सरकार क्या करता है।
3: वो जो बढ़ा है ठीक है, और बढ़ेगा तो कुछ नहीं होगा, देश में मोदी है तो सब मुमकिन है।
8: हाँ, ये पैसे गलत कराए इन्होंने, पेट्रोल पे पैसे बढ़ाए हैं।
9: नुकसान है और किसका नुकसान है, बस जनता पे ही असर पड़ लिया, किस पर पड़ लिया।
0: लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े तो दिल्ली एनसीआर के लोगों पर महंगाई की एक और मार पड़ी है। शुक्रवार सुबह पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के साथ ही सीएनजी की कीमतों में भी 2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी कर दी गई है, जिससे आम लोगों का बजट और बिगड़ गया है। अब सीएनजी के दाम दिल्ली में 79.09 रुपए प्रति किलो, नोएडा में 87.70 रुपए प्रति किलो, गुरुग्राम में 84.12 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, दूध के दामों में 2 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। कंपनी का कहना है कि उत्पादन लागत बढ़ने और बाजार की परिस्थितियों के चलते ये कदम उठाना पड़ा है। जबकि घरेलू गैस सिलेंडर से लेकर कमर्शियल सिलेंडर और छोटू सिलेंडर यानी 5 किलो के सिलेंडर के दाम पहले ही बढ़ा दिए गए हैं। इधर महंगाई का बम फूटा, उधर कांग्रेस ने निशाना साध दिया। सोना भी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से महंगा हो गया है। अब कांग्रेस कह रही है कि चुनाव खत्म और मोदी की वसूली शुरू।
10: अमृत काल में आपका स्वागत है और इस अमृत काल में महंगाई मैन अपना चाबुक चला रहे हैं, मोदी जी आपसे वसूली कर रहे हैं। आपकी जेब पर डाका डाल रहे हैं। जब आप पर महंगाई का चाबुक चलाया जा रहा है, तब दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जो अपने लोगों को राहत दे रहे हैं।
11: 3 रुपए पे इतना ज्यादा हाइक तो सरकार को कोसने के अलावा कुछ आता है?
0: जबकि सरकार का कहना है कि कच्चे तेल की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव के बावजूद 2022 से अब तक ईंधन की कीमतें काफी हद तक स्थिर बनी हुई हैं और सरकार ने पूरे देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित की है। लेकिन सच ये भी है कि अप्रैल में थोक महंगाई 2 गुने से ज्यादा बढ़कर 8.30% तक पहुंच गई है। मार्च में ये 3.88% पर थी। अप्रैल में महंगाई 42 महीने में सबसे ज्यादा है। अक्टूबर 2022 में ये 8.39% पर पहुंच गई थी। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने थोक महंगाई के आंकड़े जारी किए। अब आपको बता देते हैं कि डीजल के दाम बढ़ने से आम आदमी की जेब पर महंगाई बम कैसे फूटेगा। माल भाड़ा बढ़ेगा और ट्रक और टेम्पो का किराया बढ़ जाएगा, जिससे दूसरे राज्यों से आने वाली सब्जियां, फल और राशन महंगे हो जाएंगे। खेती की लागत बढ़ेगी। ट्रैक्टर और पंपिंग सेट चलाने के लिए किसानों को ज्यादा खर्च करना होगा, जिससे अनाज की लागत बढ़ेगी। बस, ऑटो का किराया, सार्वजनिक परिवहन और स्कूल बसों के किराए में भी इजाफा देखने को मिल सकता है। जिस तरह से तेल कंपनियां माहौल बना रही हैं कि पेट्रोल डीजल पर 25 से 30 रुपए प्रति लीटर का घाटा हो रहा है, ऐसे में एक्सपर्ट ये भी मान रहे हैं कि अपना घाटा पूरी तरह खत्म करने और ब्रेक इवन यानी नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति में आने के लिए तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल के दामों में और इजाफा कर सकती हैं। आज तक ब्यूरो।
12: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले 10 मई को और फिर 11 मई को हैदराबाद से वडोदरा तक आकर 2 बार देश से अपील की। कहा कि तेल बचाइए क्योंकि ये संकट बड़ा है, बचाएंगे तभी बच पाएंगे। और इसके बाद देश भर में विभिन्न केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्री सब अपना काफिला कम करने में लग गए। कोई स्कूटर से चलने लगा, कोई मेट्रो से चलने लगा। लेकिन इस बीच एक मंत्री ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की अपील से बड़ा उनका अपना काफिला है।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें।
13: लेकिन मंत्री जी को तो लगता है कि नसीहत चूल्हे में जाए, बस भौकाल ना घटने पाए। वो मंत्री जी ने इधर शपथ ली और उधर तय कर लिया कि देश पर जनता पर जो बोझ पड़ता है पड़े, बस उनके काफिले की गाड़ी ना घटे। वो मंत्री जिन्होंने प्रधानमंत्री के बाद मुख्यमंत्री की भी बात एक कान से सुनी दूसरे से निकाल दी।
14: देश का पैसा बचाना है और देश का पैसा बचा करके इस संकट के, इस वैश्विक संकट से हम अपने देश को भारने का काम करेंगे।
13: लेकिन प्रधानमंत्री की अपील, मुख्यमंत्री की दलील इन सबसे बड़ी निकली। उत्तर प्रदेश में नए नवेले बनाए गए मंत्री हंसराज विश्वकर्मा की लाल बत्ती पाने वाली वीआईपी फील। मंत्री जी का नाम हंसराज विश्वकर्मा, नए नए राज्य मंत्री बने हैं, जिसकी कामना में न जाने कितनी परिक्रमा काशी से लखनऊ तक की होगी। मंत्री पद मिला तो नया ऑफिस मिला, नया ऑफिस मिला तो नई चकाचक कुर्सियां मिली। मोदी योगी का आभार करके मंत्री हंसराज ने भरोसा दिया, बस अब से हर समस्या का समाधान करूंगा।
15: उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगीनाथ जी और वाराणसी के सांसद, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। निश्चित तौर पर इतना से अच्छा कोशिश करूंगा कि इस कार्यालय से जितने लोगों का कहीं भी कोई किसी प्रकार का उनको समस्या हो तो समस्या का बकायदे जो है उसका समाधान किया जाए।
13: लखनऊ से समाधान की बात करके मंत्री हंसराज विश्वकर्मा का काफिला वाराणसी पहुंचा। तब तक प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की अपीलें हवा हो चुकी थी। दर्जनों गाड़ियां लेकर मंत्री का काफिला पहुंचता है, लंबा जाम लगा मिलता है। हद तब हो जाती है जब बुलडोजर तक लाकर नए नए मंत्री पद पर विराजे हंसराज विश्वकर्मा पर समर्थक फूल बरसा देते हैं। ऐसा जाम काशी की सड़कों पर लगा जिसमें अपना काफिला लगाकर तो तेल मंत्री और उनके समर्थक फूकते ही रहे। आम आदमी जो प्रधानमंत्री की सलाह सुनकर कारपूल करके या दोपहिया वाहन से निकला होगा उसका भी तेल फुकवा दिया। जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद महंगाई की आग की तपिश महसूस कर रहा है।
16: जेब पर बोझ तो पहले से ही है, देख रहे हैं भरी दोपहरी में हम लोग परेशान चल रहे हैं, अपना जॉब चला रहे हैं उसमें और इजाफा ये लोग कर दिए हैं।
17: महंगाई पे जोर आ रहा है,
18: मुश्किल तो होगा ही।
17: बजट गड़बड़ाएगा
18: भैया,
17: महंगाई बढ़ेगी।
19: ये जो महंगाई है हम लोग जेब के ऊपर ज्यादा ही पड़ता जा रहा है, क्योंकि हम लोग की सैलरी तो लिमिटेड है।
13: मतलब जनता की जेब महंगाई से जलती रहे और मंत्री हंसराज विश्वकर्मा पीएम की अपील नहीं सुनते तो विपक्ष सवाल उठाता है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने सोशल मीडिया पर डाला कि काशी की सड़कों पर कुछ महीनों के मेहमान मंत्री का अहंकार देखिए, सैकड़ों गाड़ियों का काफिला, धुआं उड़ाती सत्ता की हनक और घंटों जाम में फंसी काशी की जनता। खबरदार करता सवाल समझिए, जब मध्य प्रदेश में पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष सौभाग्य सिंह सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ उज्जैन से भोपाल पहुंचे, पीएम की अपील को मानने से इनकार कर दिया तो उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी हुआ। पाठ्य पुस्तक निगम के दफ्तर जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। क्या अब यूपी में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में ही मोदी की अपील को धुआं करने वाले नए मंत्री हंसराज विश्वकर्मा को पार्टी नोटिस जारी करेगी? क्या इन पर भी कार्रवाई होगी?
12: और अब बात नीट पेपर लीक पर हुए कबूलनामे की। पेपर लीक की कड़ियों को आपस में जोड़ने के लिए जांच टीम गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इस कड़ी में पेपर लीक से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण किरदार जांच टीम की गिरफ्त में। किरदार का नाम है लेक्चरर पीवी कुलकर्णी, जिसे सीबीआई ने पेपर लीक के आरोप में गिरफ्तार किया और यही मुख्य आरोपी है।
0: नाम लेक्चरर पीवी कुलकर्णी, काम एनटीए का हिस्सा, आरोप नीट का पेपर लीक। पेपर लीक कांड में पुणे के लेक्चरर पीवी कुलकर्णी की आज गिरफ्तारी हुई। दावा यही है कि एनटीए की तरफ से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल पीवी कुलकर्णी ने नीट का पेपर लीक किया। केमिस्ट्री के लेक्चरर कुलकर्णी ने पेपर लीक कैसे किया, इसका खुलासा कैसे हुआ, आपको ये भी थोड़ी देर में बताएंगे। उससे पहले समझिए कुलकर्णी की गिरफ्तारी ने कैसे एनटीए की वर्किंग स्टाइल को कटघरे में खड़ा कर दिया है। क्योंकि कुलकर्णी प्राइवेट कोचिंग चलाता था, इसके बावजूद एनटीए ने उसे परीक्षा की प्रक्रिया का हिस्सा बनाया। सबसे बड़ा सवाल यही है कि एनटीए ने प्राइवेट कोचिंग चलाने वाले कुलकर्णी को परीक्षा की प्रक्रिया से क्यों जोड़ा? प्राइवेट कोचिंग चलाने वाले कुलकर्णी का एनटीए में गॉडफादर कौन है? क्यों नीट की परीक्षा से ठीक पहले एनटीए ने अभिषेक सिंह को डीजी बनाया? क्या पेपर लीक के सिंडिकेट में एनटीए के कई अफसर मिले हुए हैं? क्या एनटीए जैसी संस्था के अंदर पेपर माफियाओं की जड़ें बहुत गहरी हैं? एनटीए सवालों के घेरे में है, एनटीए की वर्किंग स्टाइल कटघरे में है, लेकिन पेपर लीक कांड के चलते परीक्षा रद्द होने के करीब 48 घंटे बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने पहली बार चुप्पी तोड़ी। 13 मई को धर्मेंद्र प्रधान पेपर लीक के सवालों को टाल गए थे, लेकिन 48 घंटे बाद मीडिया के सामने आए, नीट पेपर लीक की जिम्मेदारी ली और साफ गोई से एनटीए को क्लीन चिट दे दी।
20: फिर सामाजिक चुनौती है, राधाकृष्ण कमिटी को पूरा पालन करने के उपरांत भी उस कमांड चेन में कहीं ना कहीं ब्रीच हुई है, इसको हम स्वीकार करते हैं। अभी तो एनटीए बहुत योग्य व्यक्ति के हाथ में है, हमारे सचिव की बहुत अनुभव भी उस विषय में है। मैं मानता हूँ हमें एनटीए को सुप्रीम कोर्ट की आदेश कारण एनटीए बनी है। एनटीए हर एक साल 1 करोड़ बच्चों की एग्जामिनेशन कराती है अमूमन। एनटीए और निर्भुल हो, एनटीए में जीरो एरर हो, जीरो यानी जीरो एरर हो, ये हमारी दायित्व है।
0: अब सीधा सवाल एनडीए को क्लियर

0: करनी एनटीए की परीक्षा प्रक्रिया का हिस्सा कैसे बना? अब इस सवाल का जवाब केंद्रीय शिक्षा मंत्री को देना है, क्योंकि एनटीए के गड़बड़ झाले का सबसे बड़ा सबूत लेक्चरर कुलकर्णी है। ऐसा क्यों, इसे भी समझिए। शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि पीवी कुलकर्णी ने नीट का पेपर लीक किया जो एनटीए से जुड़ा हुआ था। 3 मई को नीट की परीक्षा हुई, लेकिन अप्रैल 2026 के आखिरी हफ्ते में कुलकर्णी ने पेपर लीक की आरोपी मनीषा बागबारे की मदद से कुछ छात्रों को जुटाया जो नीट की परीक्षा देने वाले थे। कुलकर्णी ने पुणे स्थित अपने घर पर छात्रों के लिए कोचिंग क्लास चलाई। क्लास में कुलकर्णी ने छात्रों को सवाल और उसके जवाब बताए। ये वही सवाल थे जो नीट के पेपर में सेट किए गए थे। कोचिंग में मौजूद छात्रों ने सवाल और जवाब को अपनी कॉपी में लिखा। पेपर लीक की जांच में पाया गया कि केमिस्ट्री के वही सवाल 3 मई 2026 को हुए नीट यूजी परीक्षा के असली पेपर से पूरी तरह मेल खाते हैं। कुलकर्णी केमिस्ट्री का लेक्चरर है और नीट के सभी 45 सवाल लीक पेपर से मैच करते हैं। ये संयोग नहीं बल्कि पेपर लीक गैंग का प्रयोग है। केमिस्ट्री के वही सवाल नीट में आए जो कुलकर्णी ने छात्रों को बताए थे। अब सीबीआई टीम को कुलकर्णी से कई और राज उगलवाने हैं। नीट के प्रश्न पत्र में बायोलॉजी के 90 सवाल भी लीक पेपर से हूबहू मैच हुए, यानी केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सवाल लीक किए गए। तो क्या कुलकर्णी के साथ कई और लोग शामिल हैं? क्या एनटीए की प्रश्न पत्र तैयार करने वाली कमेटी में शामिल कई और एक्सपर्ट पेपर लीक रैकेट से जुड़े हुए हैं? सबसे बड़ा सवाल, कुलकर्णी का गॉडफादर कौन है? पूछताछ के दौरान नीट का पेपर खरीदने वाले मांगीलाल ने कबूल किया है कि पेपर लीक गैंग में कई प्राइवेट कोचिंग सेंटर, एनटीए के बड़े अफसर और कई सफेदपोश शामिल हैं। सवाल यही है कि क्या सीबीआई के हाथ पेपर लीक का सिंडिकेट चलाने वाले मास्टरमाइंड तक पहुंचेंगे? दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ, जयपुर से शरद कुमार, आज तक।
1: जिस भोजशाला को विद्या की काशी कहा जाता था, उस भोजशाला को एमपी हाईकोर्ट ने प्राचीन संस्कृत अध्ययन केंद्र और सरस्वती मंदिर मानते हुए हिंदू पक्ष के समर्थन में अपना निर्णय सुना दिया। एएसआई की
2: जो बरसों से किया जा रहा संघर्ष था, माँ की मुक्ति और उसके गौरव की पुनर्स्थापना का दिन जो इसका इंतजार किया जा रहा था, वो बहुत नजदीक आ गया है। आज इस भोजशाला को, जो कि वास्तव में सरस्वती का मंदिर था, उसको कानूनी रूप से माँ का मंदिर घोषित हुआ है। ये बहुत ही हर्ष की बात है और हिंदू समाज आज प्रफुल्लित है। आज वो दिल से खुश है कि वर्षों का उसके मेहनत का परिणाम आज सबके सामने आया है।
3: भोजशाला के इस मंदिर में अब सिर्फ मंगलवार को ही पूजा नहीं होगी, हिंदू पक्ष यहाँ रोज पूजा कर पाएगा। अदालत ने माना है कि ये एक मंदिर है, न कि कमाल मौला मस्जिद। इंदौर हाई कोर्ट का यह आदेश हिंदू पक्ष के उन लोगों की जिंदगी का सबसे बड़ा पल है जो वर्षों से इसे लेकर संघर्ष करते रहे।
4: कैसा फैसले को देखते हो और आप कब आप लोग प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रहे हो?
5: बहुत बहुत अच्छा फैसला है। न्यायमूर्ति जो है उनने बहुत अच्छा फैसला दिया, उनका स्वागत करते हैं हम बहुत बहुत। और कई वर्षों के बाद हमारे कई बुजुर्गों ने इस बहुत साल के लिए प्राण दिए हैं, उनका बहुत प्राण इसमें लगे हैं। हमारे ऐसी युवा पीढ़ी जो आज बहुत साला परिसर में खड़ी,
4: आप क्या करेंगे? आप
5: अब यहाँ पर बहुत साला में बहुत ही वाग देवी बहुत जल्द आएगी और विराजमान होगी।
6: यह एक ऐतिहासिक फैसला जो आज उच्च न्यायालय के द्वारा मिला है, ये हिंदू समाज के लिए एक बहुत ही बड़ी जीत है।
3: दशकों से हिंदू पक्ष भोजशाला को मंदिर बताता रहा, इसके लिए उन्होंने 1995 में पहली बार कानूनी लड़ाई शुरू की और अब जाकर जीत हुई। इंदौर हाईकोर्ट ने एएसआई के सर्वे, ऐतिहासिक तथ्यों, गवाहों और परिसर के मौजूद हालात को देखते हुए अपना फैसला सुनाया। ऐलान किया कि भोजशाला में जिस मंदिर को दशकों से कमाल मौला के मकबरे और मस्जिद के तौर पर बताया जाता रहा, वो मस्जिद नहीं बल्कि सरस्वती मंदिर है।
7: वो जो भोजशाला है वहाँ नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, वो राजा भोज का मंदिर है। एक चीज, मुस्लिम चाहे तो एक आवेदन कर सकते हैं राज्य सरकार को, तो राज्य सरकार उनको जगह दे सकती है मस्जिद के लिए। एक चीज स्पष्ट हो गई। दूसरी चीज, एएसआई के अधीन ये संपत्ति दी है, एएसआई चाहे तो उसको रेगुलर रूप से हिंदुओं को दे दे, वहाँ की जो व्यवस्था है वो एएसआई को दी है।
3: साल 1995 में दोनों पक्षों के बीच मामूली विवाद के बाद प्रशासन ने भोजशाला में मंग

0: मंगलवार को पूजा और शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत दी, जिसके बाद ये मामला अदालत में लड़ा जाता रहा। इंदौर हाई कोर्ट के दो जजों की बेंच ने इस विवाद पर फैसला सुनाते हुए कहा, हमने देखा है कि उस जगह पर हिंदू पूजा लगातार होती रही है। हमने पाया है कि उस जगह का ऐतिहासिक साहित्य राजा भोज से जुड़े संस्कृत सीखने के केंद्र के तौर पर इसे स्थापित करता है। इससे धार्मिक देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर होने का पता चलता है, इसलिए उस इलाके का धार्मिक चरित्र भोजशाला माना जाता है, जिसमें देवी वाग्देवी सरस्वती का मंदिर है।
1: पूरे कमाल मौला जो ये भोजशाला परिसर है,
2: बाहर का जो एक और कमाल मौला
1: नहीं, उसके लिए कुछ नहीं कहा गया। वो तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर में नहीं था। कोर्ट ने मौला कमालुद्दीन को ये कहा है कि वो अल्टरनेट लैंड के लिए सरकार को प्रत्यावेदन दे सकते हैं और सरकार उसको कंसिडर करे। मतलब मूल बात यह है कि इस पूरे परिसर को जो हमारी मांग थी, हमारे हर एक आर्ग्यूमेंट को कोर्ट ने माना है और इसके स्वरूप को एक हिंदू मंदिर का परिसर घोषित किया।
0: अदालत ने अपने आदेश में ASI सर्वे रिपोर्ट से मिले सबूतों का हवाला दिया, जिसमें ये बात भी कही गई कि कमाल मौला मस्जिद को बनाने में भोजशाला के प्राचीन अवशेषों का इस्तेमाल किया गया।
3: कि जो ASI है, जो पूरा भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण है, उसकी रिपोर्ट से अन्य साक्ष्य जो रखे गए, जो हमारे द्वारा ऐतिहासिक साक्ष्य रखे गए और राम मंदिर जजमेंट के समय जो दोनों ही धर्मों के जो कानूनी पहलू रखे गए कि हिंदू लॉ के हिसाब से एक बार जो मंदिर स्थापित हो जाता है वो हमेशा मंदिर रहता है, और मुस्लिम लॉ के हिसाब से भी किसी कब्जा करी हुई जगह पे एक वैलिड मस्जिद नहीं बनाया जा सकता, इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए माननीय न्यायालय ने तय करा कि ये जो जगह है, ये जो मंदिर है, ये भोजशाला एक सरस्वती माँ का मंदिर है।
0: AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भोजशाला के फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसके आए फैसले में बाबरी मस्जिद के फैसले जैसी समानताएं हैं कहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट इसे सुलझाएगा और हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करेगा।
4: पूरी अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग मिली, लेकिन वजह सिर्फ ये है कि ASI के तथ्यों को पुख्ता मानकर और उस पे फैसला देना वो कहीं एक हद तक सेटिस्फेक्शन नहीं देता है।
0: लेकिन भोजशाला में हिंदू पक्ष को यकीन है कि हाई कोर्ट के फैसले से अब उनका इंतजार खत्म होगा और वो मंदिर में पूजा पाठ कर पाएंगे।
5: 1005 से 1054 राजा भोज का काल रहा है, तो ये न्याय की जीत हुई है
6: जी।
5: बस राजा,
6: लेकिन प्रतिक्रिया आप लोगों की ऐसा नहीं लगता कि सामने वाले को
5: नहीं नहीं उनका अधिकार है, कानून ने जो अधिकार दिया है हमारा, तो भारतीय संविधान बहुत विशाल है और बहुत बृहद है।
7: हिंदू समाज का उत्साह है, लंबा संघर्ष रहा है भोजशाला के लिए, अलग अलग समय में अलग अलग लोगों ने इसको इस संघर्ष को जिया है। इस भोजशाला मुक्ति के लिए हमारे 3 कार्यकर्ता पुलिस की गोली से शहीद हुए हैं, आज उनको सच्ची श्रद्धांजलि उन लोगों को है। 44 महिलाएं, धार की महिलाएं इंदौर की जेल में 8 दिन तक बंद रही, कई लोग परिवार सहित जेल में गए, उन सबका त्याग तपस्या समर्पण का आज परिणाम निकला है।
0: अदालत ने 11 मार्च को ASI को भोजशाला परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का आदेश दिया था, जिसके बाद ASI ने 22 मार्च से सर्वेक्षण शुरू किया और 27 जून तक सर्वे का काम चला। 98 दिनों के बाद सर्वे का काम खत्म हुआ और अब अदालत के फैसले ने भोजशाला को मंदिर करार देते हुए यहां पूजा की इजाजत दे दी है। रवीश पाल सिंह, धार, आज तक।
8: खबर पश्चिम बंगाल की, जहां पर नई सरकार के आदेश पर पहली बार जुमे की नमाज सड़क पर होने की कोशिश हुई, लेकिन पुलिस प्रशासन ने लोगों को ऐसा करने से रोक दिया, जिसका विरोध भी हुआ।
9: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते थी जे।
0: पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद से सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, ये तय हो चुका था। कोलकाता के राजा बाजार में यह हंगामा इसी बदलाव के विरोध की वजह से हो रहा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई वाली सरकार ने सड़क पर धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने कहा है कि सड़क पर कोई भी धार्मिक कार्यक्रम नहीं होगा, मंदिर या फिर मस्जिद कहीं भी तेज आवाज में लाउडस्पीकर नहीं बजेगा। शुक्रवार को जब राजा बाजार में सड़क पर जुमे की नमाज पढ़ने के लिए लोग जमा होते हैं, तो उन्हें पुलिस के कड़े रुख के बाद वापस लौटना पड़ा।
10: डबल नमाज होना चाहिए, रास्ता क्लियर होता है तो ता नुकसान है, फिर वोट आएगा। आज ठंडा है, ठंडा तो फिर जाएगा, फिर ठंडा आएगा, ऐसे कानून जब तब तक लिए बनेगा।
11: वो नमाज के पढ़ने के लिए तो अंदर से इमाम साहब ऐलान कर दिया, भाई सब मस्जिद में जगह आ जाओ, अगर जरूरत पड़ी दूसरी जमात होगा, जो जमात होगा हंगामा करने और ये सब करने रोड में पढ़ना बंद कर दो। तब पहली जुमा थोड़ा संभालने में परेशानी हुई, अंदर जुमा से हो जाएगा इंशाल्लाह।
0: कोलकाता पुलिस ने जब सड़क पर नमाज पढ़ने से लोगों को रोका तो उन्होंने उसका विरोध किया। बड़ी तादाद में पुलिस की मौजूदगी के बाद हंगामा हुआ। लेकिन पुलिस ने लोगों को समझाया कि अब ऐसा नहीं हो सकेगा, सड़क पर धार्मिक गतिविधि नहीं हो पाएगी चाहे वो किसी मजहब के हो। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोगों ने पुलिस के मना करने पर हंगामा किया, बाद में पुलिस ने समझा बुझाकर वापस भेजा।
12: आज फर्स्ट जुमा था ये ऑर्डर आने के बाद में, इसलिए लोगों ने कुछ रास्ते पे नमाज इस तरह से हमेशा पढ़ते आए हैं, तो हम लोगों भी ने समझाया और पुलिस भी सपोर्ट किया, जिसके वजह कर पीसफुली तरीके से सब कुछ हो गया। अब आप समझते हैं जब लोग अवेयर नहीं होते हैं तो थोड़ा सा तर्क और वितर्क होता है, तो यही हुआ है, बाकी पीसफुली तरीके से सब कुछ यहाँ पे आज का प्रेयर हो गया।
11: सरकार ने जो जो फैसला लिया है उसके ऊपर हम लोग अमल करने की कोशिश करेंगे, आप लोगों को जो हमारे कौम के लोग उसको भी समझाया जाएगा।
0: पश्चिम बंगाल में 9 मई को शुभेंदु अधिकारी ने शपथ ली थी, इसके बाद नमाज को लेकर हंगामे की ये पहली घटना है।
13: ये सिर्फ मुसलमान धर्म के लिए नहीं था, ये हिंदू धर्म के लिए भी था। कोई भी धर्म के लोग सड़क पे आके अपना पूजा या इबादत नहीं कर सकते, उसके लिए जगह ठीक किया हुआ है वहां पर वो करें। लेकिन यहाँ कुछ लोग भावुक हो गए थे और उसके बाद वो सड़क पे आ गए, और क्योंकि वो सालों से यहाँ सड़क पे नमाज अदा किया करते थे, तो पुलिस ने जब इन्हें मना किया तो फिर पुलिस के साथ कहीं कहा सुनी हो गई थी, और उसके बाद यहाँ पर भारी तादाद में लोग इकट्ठा हो गए थे। लेकिन बाद में पुलिस फोर्स आई, पुलिस के जो अफसर थे मौजूद, वो लोग उन लोगों ने स्थिति को काबू करने के लिए अलग अलग समय पर बातचीत किया, और 15 से 20 मिनट के अंदर जो स्थिति है उसे पूरी तरीके से काबू कर लिया गया था। और फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सीआरपीएफ को डिप्लॉय किया गया, सेंट्रल फोर्सेज पश्चिम बंगाल में सड़क के दोनों तरफ सीआरपीएफ को डिप्लॉय रखा गया है।
0: बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद ही उसके नेताओं ने ये कहना शुरू कर दिया था कि वो सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे। इसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने अदालती आदेशों और सार्वजनिक व्यवस्था का हवाला देते हुए सड़क पर धार्मिक आयोजन रोकने के निर्देश दे दिए, ताकि सड़कों को ब्लॉक करने की वजह से लोगों को परेशानी न हो।
8: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

नीट पेपर लीक कांड में सीबीआई का बड़ा एक्शन, मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी पुणे से गिरफ्तार, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का ऐलान, 21 जून को नीट का री एग्जाम। धार भोजशाला विवाद में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत, हाईकोर्ट ने माना सरस्वती मंदिर, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया स्वागत, ओवैसी बोले अयोध्या जैसा निर्णय। विदेश यात्रा पर टैक्स लगाने की खबरों को पीएम मोदी ने किया खारिज, बताया अफवाह, कहा ऐसे प्रतिबंधों का सवाल नहीं। टीएमसी के सांसद अभिषेक बैनर्जी के विरुद्ध कोलकाता में एफआईआर, विधानसभा चुनाव में भड़काऊ भाषण देने, अमित शाह को धमकाने का आरोप, 5 धाराओं में केस। भारत और यूएई में तेल गैस समेत कई महत्वपूर्ण समझौते, आबूधाबी से $5 अरब निवेश पर करार, आज पीएम मोदी के नीदरलैंड्स दौरे पर रिश्तों को मिलेगी नई उड़ान, मोदी पहुंचे नीदरलैंड्स। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध का असर अब हमारे देश भारत पर भी पड़ना शुरू हो गया। केंद्र सरकार ने शुक्रवार यानी कि आज पूरे देश में पेट्रोल और डीजल के दाम 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए। इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर में सीएनजी के दाम में भी 2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी कर दी गई। ऐसे में बढ़े हुए दामों का असर अब आपकी हमारी जेब पर होने लगा है।

0: महंगाई का बम आपकी जेब पर कैसे फटा? अमेरिका ईरान युद्ध की चिंगारी घर घर तक कैसे आई? हुर्मुज में अमेरिका और ईरान भिड़ रहे हैं, महंगाई का बम फोड़ रहे हैं। तेल, गैस, दूध, सब पर छाई महंगाई, जा रही है गाढ़ी कमाई। लड़े कोई, भरे कोई, युद्ध रुकेगा नहीं, महंगाई घटेगी नहीं।
1: दुर्भाग्य से जिस क्षेत्र से दुनिया के बड़े हिस्से को तेल मिलता है, आज वही क्षेत्र संघर्ष और युद्ध की स्थिति में उलझा हुआ।
0: हिंट तो पीएम मोदी ने 5 दिन पहले ही दे दी थी, लेकिन असली महंगाई का बम अब फूटा है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें सीधे 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी गई हैं, और इस तरह से पेट्रोल नई दिल्ली में 97.77 रुपए प्रति लीटर, कोलकाता में 108.70 रुपए प्रति लीटर, मुंबई में 106.68 रुपए प्रति लीटर, नोएडा में 97.78 रुपए प्रति लीटर, जयपुर में 107.97 रुपए प्रति लीटर, पटना में 108.55 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है, जबकि डीजल पर भी 3.25 रुपए प्रति लीटर बढ़ने से नई दिल्ली में डीजल 90.67 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है, कोलकाता 95.13 रुपए प्रति लीटर, मुंबई 93.14 रुपए प्रति लीटर, नोएडा 91.02 रुपए प्रति लीटर, जयपुर 93.23 रुपए प्रति लीटर और पटना 94.63 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है। बड़ी बात यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का हल अभी तक नहीं निकला है। ना तो ईरान झुकने को तैयार है और न ही अमेरिका पीछे हटने को तैयार है। ईरान और अमेरिका के बीच भले ही युद्ध विराम चल रहा हो, लेकिन दोनों देशों के बीच संपूर्ण युद्ध विराम को लेकर अभी तक कोई डील नहीं हुई है, क्योंकि ईरान अपना परमाणु प्रोग्राम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और अमेरिका कह रहा है कि जंग तभी बंद होगी जब ईरान अपना परमाणु प्रोग्राम और एनरिच्ड यूरेनियम पूरी तरह से छोड़ेगा। एक तो ईरान अमेरिका का अड़ियल रवैया, ऊपर से हुर्मुज स्ट्रेट में गुजरात का एक और मालवाहक जहाज डूब गया। हाजी अली नाम का जहाज 13 मई की सुबह ओमान के समुद्री क्षेत्र से गुजर रहा था, तभी इससे कोई ड्रोन या मिसाइल जैसा हथियार टकरा गया। हादसे के बाद जहाज में आग लग गई, हालांकि ओमान कोस्ट गार्ड ने सभी 14 क्रू मेंबर्स को बचा लिया, क्योंकि अभी ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 107 से 108 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल चल रही है। कच्चे तेल से बनने वाले उत्पादों की बात करें तो गैसोलीन, पेट्रोल, डीजल और हीटिंग तेल, जेट इंजन, केरोसिन, ल्यूब्रिकेटिंग तेल और डामर इसी से बनता है। सरकार की तरफ से पहले ही माहौल बना दिया जाता है कि कच्चा तेल महंगा है, तेल गैस लाने में दिक्कत हो रही है, पेट्रोलियम कंपनियां घाटा झेल रही हैं, ताकि पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े तो जनता ज्यादा हायतौबा ना मचाए।
2: महंगाई की मार तो है, खासकर मिडिल क्लास आदमी पे।
3: हमें नहीं समझ आ रही भी हाँ सरकार कर क्या रही है।
4: दूसरे देशों में जो बढ़ोतरी हुई है उससे तो बहुत ही कम है। मोदी साहब को सपोर्ट करना चाहिए।
5: जो नॉर्मल फैमिली है उसमें 3 रुपए का तो बहुत ज्यादा बजट पे फर्क पड़ेगा।
6: रेट तो अभी और भी बढ़ेंगे, बट ठीक है, मोदी जी ने कुछ सोच रखा होगा, मोदी जी के साथ ही खड़े हैं।
7: पता नहीं सरकार क्या करता है।
3: वो जो बढ़ा है ठीक है, और बढ़ेगा तो कुछ नहीं होगा। देश में मोदी है तो सब मुमकिन है।
8: हाँ, ये पैसे गलत कराए इन्होंने, पेट्रोल पे पैसे बढ़ाए हैं।
9: नुकसान है और किसका नुकसान है, बस जनता पे ही असर पड़ लिया, किस पर पड़ लिया।
0: लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े तो दिल्ली एनसीआर के लोगों पर महंगाई की एक और मार पड़ी है। शुक्रवार सुबह पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के साथ ही सीएनजी की कीमतों में भी 2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी कर दी गई है, जिससे आम लोगों का बजट और बिगड़ गया है। अब सीएनजी के दाम दिल्ली में 79.09 रुपए प्रति किलो, नोएडा में 87.70 रुपए प्रति किलो, गुरुग्राम में 84.12 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, दूध के दामों में 2 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। कंपनी का कहना है कि उत्पादन लागत बढ़ने और बाजार की परिस्थितियों के चलते ये कदम उठाना पड़ा है, जबकि घरेलू गैस सिलेंडर से लेकर कमर्शियल सिलेंडर और छोटू सिलेंडर यानी 5 किलो के सिलेंडर के दाम पहले ही बढ़ा दिए गए हैं। इधर महंगाई का बम फूटा, उधर कांग्रेस ने निशाना साध दिया। सोना भी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से महंगा हो गया है। अब कांग्रेस कह रही है कि चुनाव खत्म और मोदी की वसूली शुरू।
10: अमृत काल में आपका स्वागत है और इस अमृत काल में महंगाई मैन अपना चाबुक चला रहे हैं, मोदी जी आपसे वसूली कर रहे हैं। आपकी जेब पर डाका डाल रहे हैं। जब आप पर महंगाई का चाबुक चलाया जा रहा है, तब दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जो अपने लोगों को राहत दे रहे हैं।
11: 3 रुपया पे इतना ज्यादा हाइप तो सरकार को कोसने के अलावा कुछ आता है?
0: जबकि सरकार का कहना है कि कच्चे तेल की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव के बावजूद 2022 से अब तक ईंधन की कीमतें काफी हद तक स्थिर बनी हुई हैं और सरकार ने पूरे देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित की है। लेकिन सच ये भी है कि अप्रैल में थोक महंगाई 2 गुने से ज्यादा बढ़कर 8.30% तक पहुँच गयी है। मार्च में ये 3.88% पर थी। अप्रैल में महंगाई 42 महीने में सबसे ज्यादा है। अक्टूबर 2022 में ये 8.39% पर पहुंच गई थी। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने थोक महंगाई के आंकड़े जारी किए। अब आपको बता देते हैं कि डीजल के दाम बढ़ने से आम आदमी की जेब पर महंगाई बम कैसे फूटेगा। माल भाड़ा बढ़ेगा और ट्रक और टेम्पो का किराया बढ़ जाएगा, जिससे दूसरे राज्यों से आने वाली सब्जियां, फल और राशन महंगे हो जाएंगे। खेती की लागत बढ़ेगी। ट्रैक्टर और पंपिंग सेट चलाने के लिए किसानों को ज्यादा खर्च करना होगा, जिससे अनाज की लागत बढ़ेगी। बस, ऑटो का किराया, सार्वजनिक परिवहन और स्कूल बसों के किराए में भी इजाफा देखने को मिल सकता है। जिस तरह से तेल कंपनियां माहौल बना रही हैं कि पेट्रोल डीजल पर 25 से 30 रुपए प्रति लीटर का घाटा हो रहा है, ऐसे में एक्सपर्ट ये भी मान रहे हैं कि अपना घाटा पूरी तरह खत्म करने और ब्रेक इवन यानी नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति में आने के लिए तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल के दामों में और इजाफा कर सकती हैं। आज तक ब्यूरो।
12: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले 10 मई को और फिर 11 मई को हैदराबाद से वडोदरा तक आकर 2 बार देश से अपील की। कहा कि तेल बचाइए क्योंकि ये संकट बड़ा है, बचाएंगे तभी बच पाएंगे। और इसके बाद देश भर में विभिन्न केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्री सब अपना काफिला कम करने में लग गए। कोई स्कूटर से चलने लगा, कोई मेट्रो से चलने लगा। लेकिन इस बीच एक मंत्री ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की अपील से बड़ा उनका अपना काफिला है।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें।
13: लेकिन मंत्री जी को तो लगता है कि नसीहत चूल्हे में जाए, बस भौकाल ना घटने पाए। वो मंत्री जी ने इधर शपथ ली और उधर तय कर लिया कि देश पर जनता पर जो बोझ पड़ता है पड़े, बस उनके काफिले की गाड़ी ना घटे। वो मंत्री जिन्होंने प्रधानमंत्री के बाद मुख्यमंत्री की भी बात एक कान से सुनी दूसरे से निकाल दी।
14: देश का पैसा बचाना है और देश का पैसा बचा करके इस संकट के, इस वैश्विक संकट से हम अपने देश को बाहरने का काम करेंगे।
13: लेकिन प्रधानमंत्री की अपील, मुख्यमंत्री की दलील इन सब से बड़ी निकली। उत्तर प्रदेश में नए नवेले बनाए गए मंत्री हंसराज विश्वकर्मा की लाल बत्ती पाने वाली VIP फील। मंत्री जी का नाम हंसराज विश्वकर्मा, नए नए राज्य मंत्री बने हैं, जिसकी कामना में न जाने कितनी परिक्रमा काशी से लखनऊ तक की होगी। मंत्री पद मिला तो नया ऑफिस मिला, नया ऑफिस मिला तो नई चकाचक कुर्सियां मिली। मोदी योगी का आभार करके मंत्री हंसराज ने भरोसा दिया, बस अब से हर समस्या का समाधान करूंगा।
15: उत्तर प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री आदरणीय योगीनाथ जी और वाराणसी के सांसद, देश के सबसे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। निश्चित तौर पर इतना से अच्छा कोशिश करूंगा कि इस कार्यालय से जितने लोगों का कहीं भी कोई किसी प्रकार का उनको समस्या हो तो समस्या का बकायदे जो है उसका समाधान किया जाए।
13: लखनऊ से समाधान की बात करके मंत्री हंसराज विश्वकर्मा का काफिला वाराणसी पहुंचा। तब तक प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की अपीलें हवा हो चुकी थी। दर्जनों गाड़ियां लेकर मंत्री का काफिला पहुंचता है, लंबा जाम लगा मिलता है। हद तब हो जाती है जब बुलडोजर तक लाकर नए नए मंत्री पद पर विराजे हंसराज विश्वकर्मा पर समर्थक फूल बरसा देते हैं। ऐसा जाम काशी की सड़कों पर लगा जिसमें अपना काफिला लगाकर तो तेल मंत्री और उनके समर्थक फूकते ही रहे। आम आदमी जो प्रधानमंत्री की सलाह सुनकर कारपूल करके या दोपहिया वाहन से निकला होगा उसका भी तेल फुकवा दिया। जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद महंगाई की आग की तपिश महसूस कर रहा है।
16: जेब पर बोझ तो पहले से ही है, देख रहे हैं भरी दोपहरी में हम लोग परेशान चल रहे हैं, अपना जॉब चला रहे हैं उसमें और इजाफा ये लोग कर दिए हैं।
17: महंगाई पे जोर आ रहा है,
18: मुश्किल तो होगा।
19: बजट गड़बड़ाएगा
20: भैया,
16: महंगाई बढ़ेगी।
17: ये जो महंगाई है हम लोग जेब के ऊपर ज्यादा ही पड़ता जा रहा है, क्योंकि हम लोग की सैलरी तो लिमिटेड है।
13: मतलब जनता की जेब महंगाई से जलती रहे और मंत्री हंसराज विश्वकर्मा पीएम की अपील नहीं सुनते तो विपक्ष सवाल उठाता है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने सोशल मीडिया पर डाला कि काशी की सड़कों पर कुछ महीनों के मेहमान मंत्री का अहंकार देखिए, सैकड़ों गाड़ियों का काफिला, धुआं उड़ाती सत्ता की हनक और घंटों जाम में फंसी काशी की जनता। खबरदार करता अब सवाल समझिए, जब मध्य प्रदेश में पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष सौभाग्य सिंह सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ उज्जैन से भोपाल पहुंचे, पीएम की अपील को मानने से इनकार कर दिया तो उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी हुआ। पाठ्य पुस्तक निगम के दफ्तर जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। क्या अब यूपी में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में ही मोदी की अपील को धुआं करने वाले नए मंत्री हंसराज विश्वकर्मा को पार्टी नोटिस जारी करेगी? क्या इन पर भी कार्रवाई होगी?
12: और अब बात नीट पेपर लीक पर हुए कबूलनामे की। पेपर लीक की कड़ियों को आपस में जोड़ने के लिए जांच टीम गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इस कड़ी में पेपर लीक से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण किरदार जांच टीम की गिरफ्त में। किरदार का नाम है लेक्चरर पीवी कुलकर्णी, जिसे सीबीआई ने पेपर लीक के आरोप में गिरफ्तार किया और यही मुख्य आरोपी है।
0: नाम लेक्चरर पीवी कुलकर्णी, काम एनटीए का हिस्सा, आरोप नीट का पेपर लीक। पेपर लीक कांड में पुणे के लेक्चरर पीवी कुलकर्णी की आज गिरफ्तारी हुई। दावा यही है कि एनटीए की तरफ से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल पीवी कुलकर्णी ने नीट का पेपर लीक किया। केमिस्ट्री के लेक्चरर कुलकर्णी ने पेपर लीक कैसे किया, इसका खुलासा कैसे हुआ, आपको ये भी थोड़ी देर में बताएंगे। उससे पहले समझिए कुलकर्णी की गिरफ्तारी ने कैसे एनटीए की वर्किंग स्टाइल को कटघरे में खड़ा कर दिया है। क्योंकि कुलकर्णी प्राइवेट कोचिंग चलाता था, इसके बावजूद एनटीए ने उसे परीक्षा की प्रक्रिया का हिस्सा बनाया। सबसे बड़ा सवाल यही है कि एनटीए ने प्राइवेट कोचिंग चलाने वाले कुलकर्णी को परीक्षा की प्रक्रिया से क्यों जोड़ा? प्राइवेट कोचिंग चलाने वाले कुलकर्णी का एनटीए में गॉडफादर कौन है? क्यों नीट की परीक्षा से ठीक पहले एनटीए ने अभिषेक सिंह को डीजी बनाया? क्या पेपर लीक के सिंडिकेट में एनटीए के कई अफसर मिले हुए हैं? क्या एनटीए जैसी संस्था के अंदर पेपर माफियाओं की जड़ें बहुत गहरी हैं? एनटीए सवालों के घेरे में है, एनटीए की वर्किंग स्टाइल कटघरे में है, लेकिन पेपर लीक कांड के चलते परीक्षा रद्द होने के करीब 48 घंटे बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने पहली बार चुप्पी तोड़ी। 13 मई को धर्मेंद्र प्रधान पेपर लीक के सवालों को टाल गए थे, लेकिन 48 घंटे बाद मीडिया के सामने आए, नीट पेपर लीक की जिम्मेदारी ली और साफ गोई से एनटीए को क्लीन चिट दे दी।
18: फिर सामाजिक चुनौती है, राधाकृष्ण कमिटी को पूरा पालन करने के उपरांत भी उस कमांड चेन में कहीं ना कहीं ब्रीच हुई है, इसको हम स्वीकार करते हैं। अभी तो एनटीए बहुत योग्य व्यक्ति के हाथ में है, हमारे सचिव की बहुत अनुभव भी उस विषय में है। मैं मानता हूँ हमें एनटीए को सुप्रीम कोर्ट की आदेश कारण एनटीए बनी है। एनटीए हर एक साल 1 करोड़ बच्चों की एग्जामिनेशन कराती है अमूमन। एनटीए और निर्भुल हो, एनटीए में जीरो एरर हो, जीरो यानी जीरो एरर हो, यह हमारी दायित्व है।
0: अब सीधा सवाल एनटीए को क्लीन चिट देने वाले जिम्मेदारों से है। अगर एनटीए पाक साफ है, एनटीए का कोई कसूर नहीं है, एनटीए में सब कुछ पारदर्शी है, तो प्राइवेट कोचिंग चलाने वाला कुलकर्णी एनटीए की परीक्षा प्रक्रिया का हिस्सा कैसे बना? अब इस सवाल का जवाब केंद्रीय शिक्षा मंत्री को देना है, क्योंकि एनटीए के गड़बड़ झाले का सबसे बड़ा सबूत लेक्चरर कुलकर्णी है। ऐसा क्यों, इसे भी समझिए। शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि पीवी कुलकर्णी ने नीट का पेपर लीक किया जो एनटीए से जुड़ा हुआ था। 3 मई को नीट की परीक्षा हुई, लेकिन अप्रैल 2026 के आखिरी हफ्ते में कुलकर्णी ने पेपर लीक की आरोपी मनीषा बागबारी की मदद से कुछ छात्रों को जुटाया जो नीट की परीक्षा देने वाले थे। कुलकर्णी ने पुणे स्थित अपने घर पर छात्रों के लिए कोचिंग क्लास चलाई। क्लास में कुलकर्णी ने छात्रों को सवाल और उसके जवाब बताए। ये वही सवाल थे जो नीट के पेपर में सेट किए गए थे। कोचिंग में मौजूद छात्रों ने सवाल और जवाब को अपनी कॉपी में लिखा। पेपर लीक की जांच में पाया गया कि केमिस्ट्री के वही सवाल 3 मई 2026 को हुए नीट यूजी परीक्षा के असली पेपर से पूरी तरह मेल खाते हैं। कुलकर्णी केमिस्ट्री का लेक्चरर है और नीट के सभी 45 सवाल लीक पेपर से मैच करते हैं। ये संयोग नहीं बल्कि पेपर लीक गैंग का प्रयोग है। केमिस्ट्री के वही सवाल नीट में आए जो कुलकर्णी ने छात्रों को बताए थे। अब सीबीआई टीम को कुलकर्णी से कई और राज उगलवाने हैं। नीट के प्रश्न पत्र में बायोलॉजी के 90 सवाल भी लीक पेपर से हूबहू मैच हुए, यानी केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सवाल लीक किए गए। तो क्या कुलकर्णी के साथ कई और लोग शामिल हैं? क्या एनटीए की प्रश्न पत्र तैयार करने वाली कमेटी में शामिल कई और एक्सपर्ट पेपर लीक रैकेट से जुड़े हुए हैं? सबसे बड़ा सवाल, कुलकर्णी का गॉडफादर कौन है? पूछताछ के दौरान नीट का पेपर खरीदने वाले मांगी लाल ने कबूल किया है कि पेपर लीक गैंग में कई प्राइवेट कोचिंग सेंटर, एनटीए के बड़े अफसर और कई सफेदपोश शामिल हैं। सवाल यही है कि क्या सीबीआई के हाथ पेपर लीक का सिंडिकेट चलाने वाले मास्टरमाइंड तक पहुंचेंगे? दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ, जयपुर से शरद कुमार, आज तक।
12: जिस भोजशाला को विद्या की काशी कहा जाता था, उस भोजशाला को एमपी हाईकोर्ट ने प्राचीन संस्कृत अध्ययन केंद्र और सरस्वती मंदिर मानते हुए हिंदू पक्ष के समर्थन में अपना निर्णय सुना दिया। एएसआई की
19: जो बरसों से किया जा रहा संघर्ष था, माँ की मुक्ति और उसके गौरव की पुनर्स्थापना का दिन जो इसका इंतजार किया जा रहा था, वो बहुत नजदीक आ गया है। आज इस भोजशाला को, जो कि वास्तव में सरस्वती का मंदिर था, उसको कानूनी रूप से माँ का मंदिर घोषित हुआ है। ये बहुत ही हर्ष की बात है और हिंदू समाज आज प्रफुल्लित है। आज वो दिल से खुश है कि वर्षों का उसके मेहनत का परिणाम आज सबके सामने आया है।
20: भोजशाला के इस मंदिर में अब सिर्फ मंगलवार को ही पूजा नहीं होगी, हिंदू पक्ष यहाँ रोज पूजा कर पाएगा। अदालत ने माना है कि ये एक मंदिर है, न कि कमाल मौला मस्जिद। इंदौर हाई कोर्ट का ये आदेश हिंदू पक्ष के उन लोगों की जिंदगी का सबसे बड़ा पल है जो वर्षों से इसे लेकर संघर्ष करते रहे।
21: कैसा फैसले को देखते हो और अब कब आप लोग प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रहे हो?
22: बहुत बहुत अच्छा फैसला है, न्यायमूर्ति जो है उनने बहुत अच्छा फैसला दिया, उनका स्वागत करते हैं हम बहुत बहुत। और कई वर्षों के बाद हमारे कई बुजुर्गों ने इस भोजशाला के लिए प्राण दिए हैं, उनका बहुत प्राण इसमें लगे हैं। हमारे ऐसी युवा पीढ़ी जो आज भोजशाला परिसर में खड़ी,
21: आप क्या करेंगे? आप
22: अब यहाँ पर भोजशाला में बहुत ही वाघ देवी बहुत जल्द आएगी और विराजमान होगी।
23: यह एक ऐतिहासिक फैसला जो आज उच्च न्यायालय के द्वारा मिला है, ये हिंदू समाज के लिए एक बहुत ही बड़ी जीत है।
20: दशकों से हिंदू पक्ष भोजशाला को मंदिर बताता रहा, इसके लिए उन्होंने 1995 में पहली बार कानूनी लड़ाई शुरू की और अब जाकर जीत हुई। इंदौर हाईकोर्ट ने एएसआई के सर्वे, ऐतिहासिक तथ्यों, गवाहों और परिसर के मौजूद हालात को देखते हुए अपना फैसला सुनाया। ऐलान किया कि भोजशाला में जिस मंदिर को दशकों से कमाल मौला के मकबरे और मस्जिद के तौर पर बताया जाता रहा, वो मस्जिद नहीं बल्कि सरस्वती मंदिर है।
24: वो जो भोजशाला है वहाँ नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, वो राजा भोज का मंदिर है। एक चीज, मुस्लिम चाहे तो एक आवेदन कर सकते हैं राज्य सरकार को, तो राज्य सरकार उनको जगह दे सकती है मस्जिद के लिए। एक चीज स्पष्ट हो गई। दूसरी चीज, एएसआई के अधीन ये संपत्ति दी है, एएसआई चाहे तो उसको रेगुलर रूप से हिंदुओं को दे दे, वहाँ की जो व्यवस्था है वो एएसआई को दी है।
20: साल 1995 में दोनों पक्षों के बीच मामूली विवाद के बाद प्रशासन ने भोजशाला में मंगलवार को पूजा और शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत दी, जिसके बाद ये मामला अदालत में लड़ा जाता रहा। इंदौर हाई कोर्ट के दो जजों की बेंच ने इस विवाद पर फैसला सुनाते हुए कहा, हमने देखा है कि उस जगह पर हिंदू पूजा लगातार होती रही है, हमने पाया है कि उस जगह का ऐतिहासिक साहित्य राजा भोज से जुड़े संस्कृत सीखने के केंद्र के तौर पर इसे स्थापित करता है, इससे धार्मिक देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर होने का पता चलता है, इसलिए उस इलाके का धार्मिक चरित्र भोजशाला माना जाता है जिसमें देवी वाग देवी सरस्वती का मंदिर है।
24: पूरे कमाल मौला जो ये भोजशाला परिसर है,
25: बाहर का जो एक और कमाल मौला
24: नहीं, उसके लिए कुछ नहीं कहा गया, वो तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर में नहीं था। कोर्ट ने मौला कमालुद्दीन को ये कहा है कि वो अल्टरनेट लैंड के लिए सरकार को प्रत्यावेदन दे सकते हैं और सरकार उसको कंसिडर करती है। मतलब मूल बात यह है कि इस पूरे परिसर को, जो हमारी मांग थी, हमारे हर एक आर्गुमेंट को कोर्ट ने माना है और इसके स्वरूप को एक हिंदू मंदिर का परिसर घोषित किया।
20: अदालत ने अपने आदेश में एएसआई सर्वे रिपोर्ट से मिले सबूतों का हवाला दिया, जिसमें ये बात भी कही गई कि कमाल मौला मस्जिद को बनाने में भोजशाला के प्राचीन अवशेषों का इस्तेमाल किया गया।
2: कि जो एएसआई है, जो पूरा भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण है, उसकी रिपोर्ट से अन्य साक्ष्य जो रखे गए, जो हमारे द्वारा ऐतिहासिक साक्ष्य रखे गए, और राम मंदिर जजमेंट के समय जो दोनों ही धर्मों के जो कानूनी पहलू रखे गए कि हिंदू लॉ के हिसाब से एक बार जो मंदिर स्थापित हो जाता है वो हमेशा मंदिर रहता है, और मुस्लिम लॉ के हिसाब से भी किसी कब्जा करी हुई जगह पे एक वैलिड मस्जिद नहीं बनाया जा सकता, इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए माननीय न्यायालय ने तय करा कि ये जो जगह है, ये जो मंदिर है, ये भोजशाला एक सरस्वती माँ का मंदिर है।
20: AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भोजशाला के फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसके आए फैसले में बाबरी मस्जिद के फैसले जैसी समानताएं हैं कहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट इसे सुलझाएगा और हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करेगा।
3: पूरी अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग मिली, लेकिन वजह सिर्फ ये है कि एएसआई के तथ्यों को पुख्ता मानकर और उस पे फैसला देना वो कहीं एक हद तक सेटिस्फेक्शन नहीं देता है।
20: लेकिन भोजशाला में हिंदू पक्ष को यकीन है कि हाई कोर्ट के फैसले से अब उनका इंतजार खत्म होगा और वो मंदिर में पूजा पाठ कर पाएंगे।
4: 1005 से 1054 राजा भोज का काल रहा है तो ये न्याय की जीत हुई है जी। बस राजा
21: भोज। लेकिन प्रतिक्रिया आप लोगों की ऐसा नहीं लगता कि सामने वाले को
4: नहीं उनका अधिकार है, कानून ने जो अधिकार दिया है, हमारा तो भारतीय संविधान बहुत विशाल है और बहुत बृहद है।
5: हिंदू समाज का उत्साह है, लंबा संघर्ष रहा है भोजशाला के लिए, अलग अलग समय में अलग अलग लोगों ने इसको इस संघर्ष को जिया है। इस भोजशाला मुक्ति के लिए हमारे 3 कार्यकर्ता पुलिस की गोली से शहीद हुए हैं, आज उनको सच्ची श्रद्धांजलि उन लोगों को है। 44 महिलाएं, धार की महिलाएं इंदौर की जेल में 8 दिन तक बंद रही, कई लोग परिवार सहित जेल में गए, उन सबका त्याग तपस्या समर्पण का आज परिणाम निकला है।
20: अदालत ने 11 मार्च को एएसआई को भोजशाला परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का आदेश दिया था, जिसके बाद एएसआई ने 22 मार्च से सर्वेक्षण शुरू किया और 27 जून तक सर्वे का काम चला। 98 दिनों के बाद सर्वे का काम खत्म हुआ और अब अदालत के फैसले ने भोजशाला को मंदिर करार देते हुए यहां पूजा की इजाजत दे दी है। रवीश पाल सिंह, धार, आज तक।
12: भोजशाला को मंदिर घोषित करने के इंदौर हाईकोर्ट के बड़े निर्णय पर ओवैसी ने सवाल उठाया, कहा कि इस निर्णय में बाबरी मस्जिद जैसे निर्णय की समानताएं हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसे सुलझाएगा, हाईकोर्ट के निर्णय को रद्द करेगा।
6: एएसआई ने 1951 में और 1952 में ये क्लैरिफिकेशन दे चुकी है कि ये मस्जिद है, और उस वक्त उन्होंने एएसआई ने रिजेक्ट किया था इसको कि जो वहां पर भोज उत्सव मनाना चाहते थे। 51 और 52 का एएसआई के ऑर्डर है। कोर्ट ने, जैसा मैंने भी कहा, 1935 के धार स्टेट एग्जीक्यूटिव को, स्टेट गजट को नजरअंदाज कर दिया, 1985 के वफ रजिस्ट्रेशन को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया, और जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको भी उन्हें नजरअंदाज कर दिया। और एक और वजह है यह फैसला जो एरोनियस और गलत है, मुस्लिम साइड ने यह आर्ग्यू किया था कि जो पीआईएल दाखिल की गई थी, रिट पटिशन में उन्होंने डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट उठाए जो आर्टिकल 226 में नहीं लिए जा सकते, क्योंकि एक्स्ट्रॉर्डनरी ज्यूरिसडिक्शन जो होता है आर्टिकल 226 में, कोर्ट एक ऑर्डर पास नहीं कर सकता डिक्लेरेशन ऑफ पोजेशन और टाइटल के ऊपर।
12: खबर पश्चिम बंगाल की, जहां पर नई सरकार के आदेश पर पहली बार जुमे की नमाज सड़क पर होने की कोशिश हुई, लेकिन पुलिस प्रशासन ने लोगों को ऐसा करने से रोक दिया, जिसका विरोध भी हुआ।
7: आमी शुभेंदु अधिकारी ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে।
20: पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद से सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, ये तय हो चुका था। कोलकाता के राजा बाजार में हंगामा इसी बदलाव के विरोध की वजह से हो रहा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई वाली सरकार ने सड़क पर धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने कहा है कि सड़क पर कोई भी धार्मिक कार्यक्रम नहीं होगा, मंदिर या फिर मस्जिद कहीं भी तेज आवाज में लाउडस्पीकर नहीं बजेगा। शुक्रवार को जब राजा बाजार में सड़क पर जुमे की नमाज पढ़ने के लिए लोग जमा होते हैं तो उन्हें पुलिस के कड़े रुख के बाद वापस लौटना पड़ा।
1: डबल नमाज होना चाहिए, रास्ता क्लियर होता है तो ता नुकसान है। फिर वोट आएगा, आज ठंडा है, ठंडा तो फिर जाएगा, फिर ठंडा आएगा, ऐसे कानून जब तब तक लिए बनेगा।
8: वो नमाज के पढ़ने के लिए तो अंदर से इमाम साहब ऐलान कर दिया, भाई सब मस्जिद में जगह आ जाओ, अगर जरूरत पड़ी दूसरी जमात होगा, दो जमात होगा, हंगामा करने और ये सब करने, रोड में पढ़ना बंद कर दो। तब पहली जुमा थोड़ा संभालने में परेशानी हुई, अंदर जुमा से हो जाएगा इंशाल्लाह।
20: कोलकाता पुलिस ने जब सड़क पर नमाज पढ़ने से लोगों को रोका तो उन्होंने उसका विरोध किया। बड़ी तादाद में पुलिस की मौजूदगी के बाद हंगामा हुआ। लेकिन पुलिस ने लोगों को समझाया कि अब ऐसा नहीं हो सकेगा, सड़क पर धार्मिक गतिविधि नहीं हो पाएगी, चाहे वो किसी मजहब के हो। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोगों ने पुलिस के मना करने पर हंगामा किया, बाद में पुलिस ने समझा बुझा कर वापस भेजा।
9: आज फर्स्ट जुमा था ये ऑर्डर आने के बाद में, इसलिए लोगों ने कुछ रास्ते पे नमाज इस तरह से हमेशा पढ़ते आए हैं, तो हम लोगों भी ने समझाया और पुलिस भी सपोर्ट किया, जिसके वजह कर पीसफुली तरीके से सब कुछ हो गया। अब आप समझते हैं जब लोग अवेयर नहीं होते हैं तो थोड़ा सा तर्क और वितर्क होता है, तो यही हुआ, बाकी पीसफुली तरीके से सब कुछ यहाँ पे आज का प्रेयर हो गया।
8: सरकार ने जो जो फैसला लिया है उसके ऊपर हम लोग अमल करने की कोशिश करेंगे, और लोगों को जो हमारे कौम के लोग उसको भी समझाया जाएगा।
20: पश्चिम बंगाल में 9 मई को शुभेंदु अधिकारी ने शपथ ली थी, इसके बाद नमाज को लेकर हंगामे की ये पहली घटना है।
10: ये सिर्फ मुसलमान धर्म के लिए नहीं था, ये हिंदू धर्म के लिए भी था। कोई भी धर्म के लोग सड़क पे आके अपना पूजा या इबादत नहीं कर सकते, उसके लिए जगह ठीक किया हुआ है, वहां पर वो करे। लेकिन यहाँ कुछ लोग भावुक हो गए थे और उसके बाद वो सड़क पे आ गए, और क्योंकि वो सालों से यहाँ सड़क पे नमाज अदा किया करते थे, तो पुलिस ने जब इन्हें मना किया तो फिर पुलिस के साथ कहीं कहासुनी हो गई थी, और उसके बाद यहाँ पर भारी तादाद में लोग इकट्ठा हो गए थे। लेकिन बाद में पुलिस फोर्स आई, पुलिस के जो अफसर थे मौजूद, वो लोग उन लोगों ने स्थिति को काबू करने के लिए अलग अलग समय पर बातचीत किया, और 15 से 20 मिनट के अंदर जो स्थिति है उसे पूरी तरीके से काबू कर लिया गया था। और फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सीआरपीएफ को डिप्लॉय किया गया, सेंट्रल फोर्सेज पश्चिम बंगाल में सड़क के दोनों तरफ सीआरपीएफ को डिप्लॉय रखा गया है।
20: बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद ही उसके नेताओं ने यह कहना शुरू कर दिया था कि वो सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे। इसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने अदालती आदेशों और सार्वजनिक व्यवस्था का हवाला देते हुए सड़क पर धार्मिक आयोजन रोकने के निर्देश दे दिए, ताकि सड़कों को ब्लॉक करने की वजह से लोगों को परेशानी न हो।
12: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

नीट पेपर लीक कांड में सीबीआई का बड़ा एक्शन, मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी पुणे से गिरफ्तार। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का ऐलान, 21 जून को नीट का री एग्जाम। धार भोजशाला विवाद में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत, हाईकोर्ट ने माना सरस्वती मंदिर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया स्वागत, ओवैसी बोले अयोध्या जैसा निर्णय। विदेश यात्रा पर टैक्स लगाने की खबरों को पीएम मोदी ने किया खारिज, बताया अफवाह, कहा ऐसे प्रतिबंधों का सवाल नहीं। टीएमसी के सांसद अभिषेक बैनर्जी के विरुद्ध कोलकाता में एफआईआर, विधानसभा चुनाव में भड़काऊ भाषण देने, अमित शाह को धमकाने का आरोप, 5 धाराओं में केस। भारत और यूएई में तेल गैस समेत कई महत्वपूर्ण समझौते, अबुधाबी से $5 अरब निवेश पर करार। आज पीएम मोदी के नीदरलैंड्स दौरे पर रिश्तों को मिलेगी नई उड़ान, मोदी पहुंचे नीदरलैंड्स।

ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध का असर अब हमारे देश भारत पर भी पड़ना शुरू हो गया। केंद्र सरकार ने शुक्रवार यानी कि आज पूरे देश में पेट्रोल और डीजल के दाम 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए। इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर में सीएनजी के दाम में भी 2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी कर दी गई। ऐसे में बढ़े हुए दामों का असर अब आपकी हमारी जेब पर होने लगा है।

0: महंगाई का बम आपकी जेब पर कैसे फटा? अमेरिका ईरान युद्ध की चिंगारी घर घर तक कैसे आई? हुर्मुज में अमेरिका और ईरान भिड़ रहे हैं, महंगाई का बम फोड़ रहे हैं। तेल, गैस, दूध, सब पर छाई महंगाई, जा रही है गाढ़ी कमाई। लड़े कोई, भरे कोई, युद्ध रुकेगा नहीं, महंगाई घटेगी नहीं।
1: दुर्भाग्य से जिस क्षेत्र से दुनिया के बड़े हिस्से को तेल मिलता है, आज वही क्षेत्र संघर्ष और युद्ध की स्थिति में उलझा हुआ।
0: हिंट तो पीएम मोदी ने 5 दिन पहले ही दे दी थी, लेकिन असली महंगाई का बम अब फूटा है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें सीधे 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी गई हैं, और इस तरह से पेट्रोल नई दिल्ली में 97.77 रुपए प्रति लीटर, कोलकाता में 108.70 रुपए प्रति लीटर, मुंबई में 106.68 रुपए प्रति लीटर, नोएडा में 97.78 रुपए प्रति लीटर, जयपुर में 107.97 रुपए प्रति लीटर, पटना में 108.55 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है, जबकि डीजल पर भी 3.25 रुपए प्रति लीटर बढ़ने से नई दिल्ली में डीजल 90.67 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है, कोलकाता 95.13 रुपए प्रति लीटर, मुंबई 93.14 रुपए प्रति लीटर, नोएडा 91.02 रुपए प्रति लीटर, जयपुर 93.23 रुपए प्रति लीटर और पटना 94.63 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है। बड़ी बात यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का हल अभी तक नहीं निकला है। ना तो ईरान झुकने को तैयार है और न ही अमेरिका पीछे हटने को तैयार है। ईरान और अमेरिका के बीच भले ही युद्ध विराम चल रहा हो, लेकिन दोनों देशों के बीच संपूर्ण युद्ध विराम को लेकर अभी तक कोई डील नहीं हुई है, क्योंकि ईरान अपना परमाणु प्रोग्राम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और अमेरिका कह रहा है कि जंग तभी बंद होगी जब ईरान अपना परमाणु प्रोग्राम और एनरिच्ड यूरेनियम पूरी तरह से छोड़ेगा। एक तो ईरान अमेरिका का अड़ियल रवैया, ऊपर से हुर्मुज स्ट्रेट में गुजरात का एक और मालवाहक जहाज डूब गया। हाजी अली नाम का जहाज 13 मई की सुबह ओमान के समुद्री क्षेत्र से गुजर रहा था, तभी इससे कोई ड्रोन या मिसाइल जैसा हथियार टकरा गया। हादसे के बाद जहाज में आग लग गई, हालांकि ओमान कोस्ट गार्ड ने सभी 14 क्रू मेंबर्स को बचा लिया, क्योंकि अभी ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 107 से 108 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल चल रही है। कच्चे तेल से बनने वाले उत्पादों की बात करें तो गैसोलीन, पेट्रोल, डीजल और हीटिंग तेल, जेट इंजन, केरोसिन, ल्यूब्रिकेटिंग तेल और डामर इसी से बनता है। सरकार की तरफ से पहले ही माहौल बना दिया जाता है कि कच्चा तेल महंगा है, तेल गैस लाने में दिक्कत हो रही है, पेट्रोलियम कंपनियां घाटा झेल रही हैं, ताकि पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े तो जनता ज्यादा हाय तौबा ना मचाए।
2: महंगाई की मार तो है ही है, खासकर मिडिल क्लास आदमी पे।
3: हमें नहीं समझ आ रही भी हाँ सरकार कर क्या रही है।
4: दूसरे देशों में जो बढ़ोतरी हुई है उससे तो बहुत ही कम है। मोदी साहब को सपोर्ट करना चाहिए।
5: जो नॉर्मल फैमिली है उसमें 3 रुपए का तो बहुत ज्यादा बजट पे फर्क पड़ेगा।
6: रेट तो अभी और भी बढ़ेंगे, बट ठीक है, मोदी जी ने कुछ सोच रखा होगा, मोदी जी के साथ ही खड़े हैं।
7: पता नहीं सरकार क्या करता है।
3: वो जो बढ़ा है ठीक है, और बढ़ेगा तो कुछ नहीं होगा। देश में मोदी है तो सब मुमकिन है।
8: हाँ, ये पैसे गलत करा है इन्होंने, पेट्रोल पे पैसे बढ़ाए हैं।
9: नुकसान है और किसका नुकसान है, बस जनता पे ही असर पड़ लिया, किस पर पड़ लिया।
0: लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े तो दिल्ली एनसीआर के लोगों पर महंगाई की एक और मार पड़ी है। शुक्रवार सुबह पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के साथ ही सीएनजी की कीमतों में भी 2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी कर दी गई है, जिससे आम लोगों का बजट और बिगड़ गया है। अब सीएनजी के दाम दिल्ली में 79.09 रुपए प्रति किलो, नोएडा में 87.70 रुपए प्रति किलो, गुरुग्राम में 84.12 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, दूध के दामों में 2 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। कंपनी का कहना है कि उत्पादन लागत बढ़ने और बाजार की परिस्थितियों के चलते ये कदम उठाना पड़ा है, जबकि घरेलू गैस सिलेंडर से लेकर कमर्शियल सिलेंडर और छोटू सिलेंडर यानी 5 किलो के सिलेंडर के दाम पहले ही बढ़ा दिए गए हैं। इधर महंगाई का बम फूटा, उधर कांग्रेस ने निशाना साध दिया। सोना भी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से महंगा हो गया है। अब कांग्रेस कह रही है कि चुनाव खत्म और मोदी की वसूली शुरू।
10: अमृत काल में आपका स्वागत है और इस अमृत काल में महंगाई मैन अपना चाबुक चला रहे हैं, मोदी जी आपसे वसूली कर रहे हैं। आपकी जेब पर डाका डाल रहे हैं। जब आप पर महंगाई का चाबुक चलाया जा रहा है, तब दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जो अपने लोगों को राहत दे रहे हैं।
11: 3 रुपए पे इतना ज्यादा हाइक तो सरकार को कोसने के अलावा कुछ आता है?
0: जबकि सरकार का कहना है कि कच्चे तेल की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव के बावजूद 2022 से अब तक ईंधन की कीमतें काफी हद तक स्थिर बनी हुई हैं और सरकार ने पूरे देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित की है। लेकिन सच ये भी है कि अप्रैल में थोक महंगाई 2 गुने से ज्यादा बढ़कर 8.30% तक पहुँच गई है। मार्च में ये 3.88% पर थी। अप्रैल में महंगाई 42 महीने में सबसे ज्यादा है। अक्टूबर 2022 में ये 8.39% पर पहुंच गई थी। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने थोक महंगाई के आंकड़े जारी किए। अब आपको बता देते हैं कि डीजल के दाम बढ़ने से आम आदमी की जेब पर महंगाई बम कैसे फूटेगा। माल भाड़ा बढ़ेगा और ट्रक और टेम्पो का किराया बढ़ जाएगा, जिससे दूसरे राज्यों से आने वाली सब्जियां, फल और राशन महंगे हो जाएंगे। खेती की लागत बढ़ेगी। ट्रैक्टर और पंपिंग सेट चलाने के लिए किसानों को ज्यादा खर्च करना होगा, जिससे अनाज की लागत बढ़ेगी। बस, ऑटो का किराया, सार्वजनिक परिवहन और स्कूल बसों के किराए में भी इजाफा देखने को मिल सकता है। जिस तरह से तेल कंपनियां माहौल बना रही हैं कि पेट्रोल डीजल पर 25 से 30 रुपए प्रति लीटर का घाटा हो रहा है, ऐसे में एक्सपर्ट ये भी मान रहे हैं कि अपना घाटा पूरी तरह खत्म करने और ब्रेक इवन यानी नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति में आने के लिए तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल के दामों में और इजाफा कर सकती हैं। आज तक ब्यूरो।
12: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले 10 मई को और फिर 11 मई को हैदराबाद से वडोदरा तक आकर 2 बार देश से अपील की। कहा कि तेल बचाइए, क्योंकि ये संकट बड़ा है, बचाएंगे तभी बच पाएंगे। और इसके बाद देश भर में विभिन्न केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्री सब अपना काफिला कम करने में लग गए। कोई स्कूटर से चलने लगा, कोई मेट्रो से चलने लगा। लेकिन इस बीच एक मंत्री ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की अपील से बड़ा उनका अपना काफिला है।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें।
13: लेकिन मंत्री जी को तो लगता है कि नसीहत चूल्हे में जाए, बस भौकाल ना घटने पाए। वो मंत्री जी ने इधर शपथ ली और उधर तय कर लिया कि देश पर जनता पर जो बोझ पड़ता है पड़े, बस उनके काफिले की गाड़ी ना घटे। वो मंत्री जिन्होंने प्रधानमंत्री के बाद मुख्यमंत्री की भी बात एक कान से सुनी दूसरे से निकाल दी।
14: देश का पैसा बचाना है और देश का पैसा बचा करके इस संकट के, इस वैश्विक संकट से हम अपने देश को बाहरने का काम करेंगे।
13: लेकिन प्रधानमंत्री की अपील, मुख्यमंत्री की दलील इन सबसे बड़ी निकली। उत्तर प्रदेश में नए नवेले बनाए गए मंत्री हंसराज विश्वकर्मा की लाल बत्ती पाने वाली VIP फील। मंत्री जी का नाम हंसराज विश्वकर्मा, नए नए राज्य मंत्री बने हैं, जिसकी कामना में न जाने कितनी परिक्रमा काशी से लखनऊ तक की होगी। मंत्री पद मिला तो नया ऑफिस मिला, नया ऑफिस मिला तो नई चकाचक कुर्सियां मिली। मोदी योगी का आभार करके मंत्री हंसराज ने भरोसा दिया, बस अब से हर समस्या का समाधान करूंगा।
15: उत्तर प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री आदरणीय योगीनाथ जी और वाराणसी के सांसद, देश के सबसे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। निश्चित तौर पर इतना से अच्छा कोशिश करूंगा कि इस कार्यालय से जितने लोगों का कहीं भी कोई किसी प्रकार का उनको समस्या हो तो समस्या का बकायदे जो है उसका समाधान किया जाए।
13: लखनऊ से समाधान की बात करके मंत्री हंसराज विश्वकर्मा का काफिला वाराणसी पहुंचा। तब तक प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की अपीलें हवा हो चुकी थी। दर्जनों गाड़ियां लेकर मंत्री का काफिला पहुंचता है, लंबा जाम लगा मिलता है। हद तब हो जाती है जब बुलडोजर तक लाकर नए नए मंत्री पद पर विराजे हंसराज विश्वकर्मा पर समर्थक फूल बरसा देते हैं। ऐसा जाम काशी की सड़कों पर लगा जिसमें अपना काफिला लगाकर तो तेल मंत्री और उनके समर्थक फूंकते ही रहे। आम आदमी जो प्रधानमंत्री की सलाह सुनकर कारपूल करके या दोपहिया वाहन से निकला होगा, उसका भी तेल फुकवा दिया। जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद महंगाई की आग की तपिश महसूस कर रहा है।
16: जेब पर बोझ तो पहले से ही है, देख रहे हैं भरी दोपहरी में हम लोग परेशान चल रहे हैं, अपना जॉब चला रहे हैं, उसमें और इजाफा ये लोग कर दिए हैं।
17: महंगाई पे जोर आ रहा है,
18: मुश्किल तो होगा ही।
17: बजट गड़बड़ाएगा
18: भैया,
17: महंगाई बढ़ेगी।
19: ये जो महंगाई है हम लोग जेब के ऊपर ज्यादा ही पड़ता जा रहा है, क्योंकि हम लोग की सैलरी तो लिमिटेड है।
13: मतलब जनता की जेब महंगाई से जलती रहे और मंत्री हंसराज विश्वकर्मा पीएम की अपील नहीं सुनते तो विपक्ष सवाल उठाता है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने सोशल मीडिया पर डाला कि काशी की सड़कों पर कुछ महीनों के मेहमान मंत्री का अहंकार देखिए, सैकड़ों गाड़ियों का काफिला, धुआं उड़ाती सत्ता की हनक और घंटों जाम में फंसी काशी की जनता। खबरदार करता सवाल समझिए, जब मध्य प्रदेश में पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष सौभाग्य सिंह सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ उज्जैन से भोपाल पहुंचे, पीएम की अपील को मानने से इनकार कर दिया तो उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी हुआ। पाठ्य पुस्तक निगम के दफ्तर जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। क्या अब यूपी में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में ही मोदी की अपील को धुआं करने वाले नए मंत्री हंसराज विश्वकर्मा को पार्टी नोटिस जारी करेगी? क्या इन पर भी कार्रवाई होगी?
12: और अब बात नीट पेपर लीक पर हुए कबूलनामे की। पेपर लीक की कड़ियों को आपस में जोड़ने के लिए जांच टीम गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इस कड़ी में पेपर लीक से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण किरदार जांच टीम की गिरफ्त में। किरदार का नाम है लेक्चरर पीवी कुलकर्णी, जिसे सीबीआई ने पेपर लीक के आरोप में गिरफ्तार किया और यही मुख्य आरोपी है।
0: नाम लेक्चरर पीवी कुलकर्णी, काम एनटीए का हिस्सा, आरोप नीट का पेपर लीक। पेपर लीक कांड में पुणे के लेक्चरर पीवी कुलकर्णी की आज गिरफ्तारी हुई। दावा यही है कि एनटीए की तरफ से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल पीवी कुलकर्णी ने नीट का पेपर लीक किया। केमिस्ट्री के लेक्चरर कुलकर्णी ने पेपर लीक कैसे किया, इसका खुलासा कैसे हुआ, आपको ये भी थोड़ी देर में बताएंगे। उससे पहले समझिए कुलकर्णी की गिरफ्तारी ने कैसे एनटीए की वर्किंग स्टाइल को कटघरे में खड़ा कर दिया है। क्योंकि कुलकर्णी प्राइवेट कोचिंग चलाता था, इसके बावजूद एनटीए ने उसे परीक्षा की प्रक्रिया का हिस्सा बनाया। सबसे बड़ा सवाल यही है कि एनटीए ने प्राइवेट कोचिंग चलाने वाले कुलकर्णी को परीक्षा की प्रक्रिया से क्यों जोड़ा? प्राइवेट कोचिंग चलाने वाले कुलकर्णी का एनटीए में गॉडफादर कौन है? क्यों नीट की परीक्षा से ठीक पहले एनटीए ने अभिषेक सिंह को डीजी बनाया? क्या पेपर लीक के सिंडिकेट में एनटीए के कई अफसर मिले हुए हैं? क्या एनटीए जैसी संस्था के अंदर पेपर माफियाओं की जड़ें बहुत गहरी हैं? एनटीए सवालों के घेरे में है, एनटीए की वर्किंग स्टाइल कटघरे में है, लेकिन पेपर लीक कांड के चलते परीक्षा रद्द होने के करीब 48 घंटे बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने पहली बार चुप्पी तोड़ी। 13 मई को धर्मेंद्र प्रधान पेपर लीक के सवालों को टाल गए थे, लेकिन 48 घंटे बाद मीडिया के सामने आए, नीट पेपर लीक की जिम्मेदारी ली और साफ गोई से एनटीए को क्लीन चिट दे दी।
20: फिर सामाजिक चुनौती है, राधाकृष्ण कमिटी को पूरा पालन करने के उपरांत भी उस कमांड चेन में कहीं ना कहीं ब्रीच हुए, इसको हम स्वीकार करते हैं। अभी तो एनटीए बहुत योग्य व्यक्ति के हाथ में है, हमारे सचिव की बहुत अनुभव भी उस विषय में है। मैं मानता हूँ हमें एनटीए को सुप्रीम कोर्ट की आदेश कारण एनटीए बनी है। एनटीए हर एक साल 1 करोड़ बच्चों की एग्जामिनेशन कराती है अमूमन। एनटीए और निर्भुल हो, एनटीए में जीरो एरर हो, जीरो यानी जीरो एरर हो, यह हमारी दायित्व है।
0: अब सीधा सवाल एनटीए को क्लीन चिट देने वाले जिम्मेदारों से है। अगर एनटीए पाक साफ है, एनटीए का कोई कसूर नहीं है, एनटीए में सब कुछ पारदर्शी है, तो प्राइवेट कोचिंग चलाने वाला कुलकर्णी एनटीए की परीक्षा प्रक्रिया का हिस्सा कैसे बना? अब इस सवाल का जवाब केंद्रीय शिक्षा मंत्री को देना है, क्योंकि एनटीए के गड़बड़ झाले का सबसे बड़ा सबूत लेक्चरर कुलकर्णी है। ऐसा क्यों, इसे भी समझिए। शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि पीवी कुलकर्णी ने नीट का पेपर लीक किया जो एनटीए से जुड़ा हुआ था। 3 मई को नीट की

0: छात्रों को सवाल और उसके जवाब बताए। ये वही सवाल थे जो नीट के पेपर में सेट किए गए थे। कोचिंग में मौजूद छात्रों ने सवाल और जवाब को अपनी कॉपी में लिखा। पेपर लीक की जांच में पाया गया कि केमिस्ट्री के वही सवाल 3 मई 2026 को हुए नीट यूजी परीक्षा के असली पेपर से पूरी तरह मेल खाते हैं। कुलकर्णी केमिस्ट्री का लेक्चरर है और नीट के सभी 45 सवाल लीक पेपर से मैच करते हैं। ये संयोग नहीं बल्कि पेपर लीक गैंग का प्रयोग है। केमिस्ट्री के वही सवाल नीट में आए जो कुलकर्णी ने छात्रों को बताए थे। अब सीबीआई टीम को कुलकर्णी से कई और राज उगलवाने हैं। नीट के प्रश्न पत्र में बायोलॉजी के 90 सवाल भी लीक पेपर से हूबहू मैच हुए, यानी केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सवाल लीक किए गए। तो क्या कुलकर्णी के साथ कई और लोग शामिल हैं? क्या एनटीए की प्रश्न पत्र तैयार करने वाली कमेटी में शामिल कई और एक्सपर्ट पेपर लीक रैकेट से जुड़े हुए हैं? सबसे बड़ा सवाल, कुलकर्णी का गॉडफादर कौन है? पूछताछ के दौरान नीट का पेपर खरीदने वाले मांगीलाल ने कबूल किया है कि पेपर लीक गैंग में कई प्राइवेट कोचिंग सेंटर, एनटीए के बड़े अफसर और कई सफेदपोश शामिल हैं। सवाल यही है कि क्या सीबीआई के हाथ पेपर लीक का सिंडिकेट चलाने वाले मास्टरमाइंड तक पहुंचेंगे? दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ, जयपुर से शरद कुमार, आज तक।
1: जिस भोजशाला को विद्या की काशी कहा जाता था, उस भोजशाला को एमपी हाईकोर्ट ने प्राचीन संस्कृत अध्ययन केंद्र और सरस्वती मंदिर मानते हुए हिंदू पक्ष के समर्थन में अपना निर्णय सुना दिया। एएसआई की
2: जो बरसों से किया जा रहा संघर्ष था, माँ की मुक्ति और उसके गौरव की पुनर्स्थापना का दिन जो इसका इंतजार किया जा रहा था, वो बहुत नजदीक आ गया है। आज इस भोजशाला को, जो कि वास्तव में सरस्वती का मंदिर था, उसको कानूनी रूप से माँ का मंदिर घोषित हुआ है। ये बहुत ही हर्ष की बात है और हिंदू समाज आज प्रफुल्लित है। आज वो दिल से खुश है कि वर्षों का उसके मेहनत का परिणाम आज सबके सामने आया है।
3: भोजशाला के इस मंदिर में अब सिर्फ मंगलवार को ही पूजा नहीं होगी, हिंदू पक्ष यहाँ रोज पूजा कर पाएगा। अदालत ने माना है कि ये एक मंदिर है, न कि कमाल मौला मस्जिद। इंदौर हाई कोर्ट का ये आदेश हिंदू पक्ष के उन लोगों की जिंदगी का सबसे बड़ा पल है जो वर्षों से इसे लेकर संघर्ष करते रहे।
4: कैसा फैसले को देखते हो और अब कब आप लोग प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रहे हो?
5: बहुत बहुत अच्छा फैसला है। न्यायमूर्ति जो है उनने बहुत अच्छा फैसला दिया, उनका स्वागत करते हैं हम बहुत बहुत। और कई वर्षों के बाद हमारे कई बुजुर्गों ने इस भोजशाला के लिए प्राण दिए हैं, उनका बहुत प्राण इसमें लगे हैं। हमारे ऐसी युवा पीढ़ी जो आज भोजशाला परिसर में खड़ी,
4: आप क्या करेंगे? आप
5: अब यहाँ पर भोजशाला में बहुत ही वाग देवी बहुत जल्द आएगी और विराजमान होगी।
6: यह एक ऐतिहासिक फैसला जो आज उच्च न्यायालय के द्वारा मिला है, ये हिंदू समाज के लिए एक बहुत ही बड़ी जीत है।
3: दशकों से हिंदू पक्ष भोजशाला को मंदिर बताता रहा, इसके लिए उन्होंने 1995 में पहली बार कानूनी लड़ाई शुरू की और अब जाकर जीत हुई। इंदौर हाईकोर्ट ने एएसआई के सर्वे, ऐतिहासिक तथ्यों, गवाहों और परिसर के मौजूद हालात को देखते हुए अपना फैसला सुनाया। ऐलान किया कि भोजशाला में जिस मंदिर को दशकों से कमाल मौला के मकबरे और मस्जिद के तौर पर बताया जाता रहा, वो मस्जिद नहीं बल्कि सरस्वती मंदिर है।
7: वो जो भोजशाला है वहाँ नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, वो राजा भोज का मंदिर है। एक चीज, मुस्लिम चाहे तो एक आवेदन कर सकते हैं राज्य सरकार को, तो राज्य सरकार उनको जगह दे सकती है मस्जिद के लिए। एक चीज स्पष्ट हो गई। दूसरी चीज, एएसआई के अधीन ये संपत्ति दी है, एएसआई चाहे तो उसको रेगुलर रूप से हिंदुओं को दे दे, वहाँ की जो व्यवस्था है वो एएसआई को दी है।
3: साल 1995 में दोनों पक्षों के बीच मामूली विवाद के बाद प्रशासन ने भोजशाला में मंगलवार को पूजा और शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत दी, जिसके बाद ये मामला अदालत में लड़ा जाता रहा। इंदौर हाई कोर्ट के दो जजों की बेंच ने इस विवाद पर फैसला सुनाते हुए कहा, हमने देखा है कि उस जगह पर हिंदू पूजा लगातार होती रही है, हमने पाया है कि उस जगह का ऐतिहासिक साहित्य राजा भोज से जुड़े संस्कृत सीखने के केंद्र के तौर पर इसे स्थापित करता है, इससे धार्मिक देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर होने का पता चलता है, इसलिए उस इलाके का धार्मिक चरित्र भोजशाला माना जाता है जिसमें देवी वाग देवी सरस्वती का मंदिर है।
7: पूरे कमाल मौला जो भोजशाला परिसर है,
8: बाहर का तो

0: कमाल बोला था
1: नहीं, उसके लिए कुछ नहीं कहा गया, वो तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर में नहीं था। कोर्ट ने मौला कमालुद्दीन को ये कहा है कि वो अल्टरनेट लैंड के लिए सरकार को प्रत्यावेदन दे सकते हैं और सरकार उसको कंसिडर करे। मतलब मूल बात यह है कि इस पूरे परिसर को जो हमारी मांग थी, हमारे हर एक आर्ग्यूमेंट को कोर्ट ने माना है और इसके स्वरूप को एक हिंदू मंदिर का परिसर घोषित किया।
2: अदालत ने अपने आदेश में ASI सर्वे रिपोर्ट से मिले सबूतों का हवाला दिया, जिसमें ये बात भी कही गई कि कमाल मौला मस्जिद को बनाने में बोधशाला के प्राचीन अवशेषों का इस्तेमाल किया गया।
3: कि जो ASI है, जो पूरा भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण है, उसकी रिपोर्ट से अन्य साक्ष्य जो रखे गए, जो हमारे द्वारा ऐतिहासिक साक्ष्य रखे गए और राम मंदिर जजमेंट के समय जो दोनों ही धर्मों के जो कानूनी पहलू रखे गए कि हिंदू लॉ के हिसाब से एक बार जो मंदिर स्थापित हो जाता है वो हमेशा मंदिर रहता है और मुस्लिम लॉ के हिसाब से भी किसी कब्जा करी हुई जगह पे एक वैलिड मस्जिद नहीं बनाया जा सकता, इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए माननीय न्यायालय ने तय करा कि ये जो जगह है, ये जो मंदिर है, ये भोजशाला एक सरस्वती माँ का मंदिर है।
2: AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भोजशाला के फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसके आए फैसले में बाबरी मस्जिद के फैसले जैसी समानताएं हैं कहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट इसे सुलझाएगा और हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करेगा।
4: पूरी अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग मिली, लेकिन वजह सिर्फ ये है कि ASI के तथ्यों को पुख्ता मानकर और उस पे फैसला देना वो कहीं एक हद तक सेटिस्फेक्शन नहीं देता है।
2: लेकिन भोजशाला में हिंदू पक्ष को यकीन है कि हाई कोर्ट के फैसले से अब उनका इंतजार खत्म होगा और वो मंदिर में पूजा पाठ कर पाएंगे।
5: 1005 से 1054 राजा भोज का काल रहा है तो ये न्याय की जीत हुई है
6: जी।
5: बस राजा,
6: लेकिन प्रतिक्रिया आप लोगों की ऐसा नहीं लगता कि सामने वाले को
5: नहीं नहीं उनका अधिकार है, कानून ने जो अधिकार दिया है, हमारा तो भारतीय संविधान बहुत विशाल है और बहुत बृहद है।
7: हिंदू समाज का उत्साह है, लंबा संघर्ष रहा है भोजशाला के लिए, अलग अलग समय में अलग अलग लोगों ने इसको इस संघर्ष को जिया है। इस भोजशाला मुक्ति के लिए हमारे 3 कार्यकर्ता पुलिस की गोली से शहीद हुए हैं, आज उनको सच्ची श्रद्धांजलि उन लोगों को है। 44 महिलाएं, धार की महिलाएं इंदौर की जेल में 8 दिन तक बंद रही, कई लोग परिवार सहित जेल में गए, उन सबका त्याग तपस्या समर्पण का आज परिणाम निकला है।
2: अदालत ने 11 मार्च को ASI को भोजशाला परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का आदेश दिया था, जिसके बाद ASI ने 22 मार्च से सर्वेक्षण शुरू किया और 27 जून तक सर्वे का काम चला। 98 दिनों के बाद सर्वे का काम खत्म हुआ और अब अदालत के फैसले ने भोजशाला को मंदिर करार देते हुए यहां पूजा की इजाजत दे दी है। रवीश पाल सिंह, धार, आज तक।
8: खबर पश्चिम बंगाल की, जहां पर नई सरकार के आदेश पर पहली बार जुमे की नमाज सड़क पर होने की कोशिश हुई, लेकिन पुलिस प्रशासन ने लोगों को ऐसा करने से रोक दिया, जिसका विरोध भी हुआ।
9: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते थी जे।
2: पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद से सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, ये तय हो चुका था। कोलकाता के राजा बाजार में हंगामा इसी बदलाव के विरोध की वजह से हो रहा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई वाली सरकार ने सड़क पर धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने कहा है कि सड़क पर कोई भी धार्मिक कार्यक्रम नहीं होगा, मंदिर या फिर मस्जिद कहीं भी तेज आवाज में लाउड स्पीकर नहीं बजेगा। शुक्रवार को जब राजा बाजार में सड़क पर जुमे की नमाज पढ़ने के लिए लोग जमा होते हैं तो उन्हें पुलिस के कड़े रुख के बाद वापस लौटना पड़ा।
10: डबल नमाज होना चाहिए, रास्ता क्लियर होता है तो नुकसान है, फिर वोट आएगा। आज ठंडा है, ठंडा तो फिर जाएगा, फिर ठंडा आएगा, ऐसे कानून जब तब के लिए बनेगा।
11: वो नमाज के पढ़ने के लिए तो अंदर से इमाम साहब ऐलान कर दिया, भाई सब मस्जिद में जगह आ जाओ, अगर जरूरत पड़ी दूसरी जमात होगा, दो जमात होगा, हंगामा करने और ये सब करने रोड में पढ़ना बंद कर दो। तब पहली जुमा थोड़ा संभालने में परेशानी हुई, अंदर जुमा से हो जाएगा इंशाल्लाह।
2: कोलकाता पुलिस ने जब सड़क पर नमाज पढ़ने से लोगों को रोका तो उन्होंने उसका विरोध किया। बड़ी तादाद में पुलिस की मौजूदगी के बाद हंगामा हुआ। लेकिन पुलिस ने लोगों को समझाया कि अब ऐसा नहीं हो सकेगा।
0: सड़क पर धार्मिक गतिविधि नहीं हो पाएगी, चाहे वो किसी मजहब के हो। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोगों ने पुलिस के मना करने पर हंगामा किया, बाद में पुलिस ने समझा बुझाकर वापस भेजा।
12: आज फर्स्ट जुमा था ये ऑर्डर आने के बाद में, इसलिए लोगों ने कुछ रास्ते पे नमाज इस तरह से हमेशा पढ़ते आए हैं, तो हम लोगों भी ने समझाया और पुलिस भी सपोर्ट किया, जिसके वजह कर पीसफुली तरीके से सब कुछ हो गया। अब आप समझते हैं जब लोग अवेयर नहीं होते हैं तो थोड़ा सा तर्क और वितर्क होता है, तो यही हुआ है, बाकी पीसफुली तरीके से सब कुछ यहाँ पे आज का प्रेयर हो गया।
13: सरकार ने जो जो फैसला लिया है उसके ऊपर हम लोग अमल करने की कोशिश करेंगे, आप लोगों को जो हमारे कौम के लोग उसको भी समझाया जाएगा।
0: पश्चिम बंगाल में 9 मई को शुभेंदु अधिकारी ने शपथ ली थी, इसके बाद नमाज को लेकर हंगामे की ये पहली घटना है।
14: ये सिर्फ मुसलमान धर्म के लिए नहीं था, ये हिंदू धर्म के लिए भी था। कोई भी धर्म के लोग सड़क पे आके अपना पूजा या इबादत नहीं कर सकते, उसके लिए जगह ठीक किया हुआ है वहां पर वो करें। लेकिन यहाँ कुछ लोग भावुक हो गए थे और उसके बाद वो सड़क पे आ गए, और क्योंकि वो सालों से यहाँ सड़क पे नमाज अदा किया करते थे, तो पुलिस ने जब इन्हें मना किया तो फिर पुलिस के साथ कहीं कहा सुनी हो गई थी, और उसके बाद यहाँ पर भारी तादाद में लोग इकट्ठा हो गए थे। लेकिन बाद में पुलिस समय पे बातचीत किया और 15 से 20 मिनट के अंदर जो स्थिति है उसे पूरी तरीके से काबू कर लिया गया था, और फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सीआरपीएफ को डिप्लॉय किया गया। सेंट्रल फोर्सेज पश्चिम बंगाल में सड़क के दोनों तरफ सीआरपीएफ को डिप्लॉय रखा गया है।
0: बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद ही उसके नेताओं ने यह कहना शुरू कर दिया था कि वो सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे। इसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने अदालती आदेशों और सार्वजनिक व्यवस्था का हवाला देते हुए सड़क पर धार्मिक आयोजन रोकने के निर्देश दे दिए, ताकि सड़कों को ब्लॉक करने की वजह से लोगों को परेशानी न हो।
8: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

नीट पेपर लीक कांड में सीबीआई का बड़ा एक्शन, मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी पुणे से गिरफ्तार, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का ऐलान, 21 जून को नीट का री एग्जाम। धार भोजशाला विवाद में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत, हाईकोर्ट ने माना सरस्वती मंदिर, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया स्वागत, ओवैसी बोले अयोध्या जैसा निर्णय। देश यात्रा पर टैक्स लगाने की खबरों को पीएम मोदी ने किया खारिज, बताया अफवाह, कहा ऐसे प्रतिबंधों का सवाल नहीं। टीएमसी के सांसद अभिषेक बैनर्जी के विरुद्ध कोलकाता में एफआईआर, विधानसभा चुनाव में भड़काऊ भाषण देने, अमित शाह को धमकाने का आरोप, 5 धाराओं में केस। भारत और यूएई में तेल गैस समेत कई महत्वपूर्ण समझौते, अबूधाबी से $5 अरब निवेश पर करार, आज पीएम मोदी के नीदरलैंड्स दौरे पर रिश्तों को मिलेगी नई उड़ान, मोदी पहुंचे नीदरलैंड्स।

ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध का असर अब हमारे देश भारत पर भी पड़ना शुरू हो गया। केंद्र सरकार ने शुक्रवार यानी कि आज पूरे देश में पेट्रोल और डीजल के दाम 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए। इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर में सीएनजी के दाम में भी 2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी कर दी गई। ऐसे में बढ़े हुए दामों का असर अब आपकी हमारी जेब पर होने लगा है।

0: महंगाई का बम आपकी जेब पर कैसे फटा? अमेरिका ईरान युद्ध की चिंगारी घर घर तक कैसे आई? हुर्मुज में अमेरिका और ईरान भिड़ रहे हैं, महंगाई का बम फोड़ रहे हैं। तेल, गैस, दूध, सब पर छाई महंगाई, जा रही है गाढ़ी कमाई। लड़े कोई, भरे कोई, युद्ध रुकेगा नहीं, महंगाई घटेगी नहीं।
1: दुर्भाग्य से जिस क्षेत्र से दुनिया के बड़े हिस्से को तेल मिलता है, आज वही क्षेत्र संघर्ष और युद्ध की स्थिति में उलझा हुआ।
0: हिंट तो पीएम मोदी ने 5 दिन पहले ही दे दी थी, लेकिन असली महंगाई का बम अब फूटा है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें सीधे 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी गई हैं, और इस तरह से पेट्रोल नई दिल्ली में 97.77 रुपए प्रति लीटर, कोलकाता में 108.70 रुपए प्रति लीटर, मुंबई में 106.68 रुपए प्रति लीटर, नोएडा में 97.78 रुपए प्रति लीटर, जयपुर में 107.97 रुपए प्रति लीटर, पटना में 108.55 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है। जबकि डीजल पर भी 3.25 रुपए प्रति लीटर बढ़ने से नई दिल्ली में डीजल 90.67 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है, कोलकाता 95.13 रुपए प्रति लीटर, मुंबई 93.14 रुपए प्रति लीटर, नोएडा 91.02 रुपए प्रति लीटर, जयपुर 93.23 रुपए प्रति लीटर और पटना 94.63 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है। बड़ी बात यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का हल अभी तक नहीं निकला है। ना तो ईरान झुकने को तैयार है और ना ही अमेरिका पीछे हटने को तैयार है। ईरान और अमेरिका के बीच भले ही युद्ध विराम चल रहा हो, लेकिन दोनों देशों के बीच संपूर्ण युद्ध विराम को लेकर अभी तक कोई डील नहीं हुई है, क्योंकि ईरान अपना परमाणु प्रोग्राम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और अमेरिका कह रहा है कि जंग तभी बंद होगी जब ईरान अपना परमाणु प्रोग्राम और एनरिच यूरेनियम पूरी तरह से छोड़ेगा। एक तो ईरान अमेरिका का अड़ियल रवैया, ऊपर से हुर्मुज स्ट्रेट में गुजरात का एक और मालवाहक जहाज डूब गया। हाजी अली नाम का जहाज 13 मई की सुबह ओमान के समुद्री क्षेत्र से गुजर रहा था, तभी इससे कोई ड्रोन या मिसाइल जैसा हथियार टकरा गया। हादसे के बाद जहाज में आग लग गई, हालांकि ओमान कोस्ट गार्ड ने सभी 14 क्रू मेंबर्स को बचा लिया, क्योंकि अभी ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 107 से 108 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल चल रही है। कच्चे तेल से बनने वाले उत्पादों की बात करें तो गैसोलीन, पेट्रोल, डीजल और हीटिंग तेल, जेट इंजन, केरोसिन, ल्यूब्रिकेटिंग तेल और डामर इसी से बनता है। सरकार की तरफ से पहले ही माहौल बना दिया जाता है कि कच्चा तेल महंगा है, तेल गैस लाने में दिक्कत हो रही है, पेट्रोलियम कंपनियां घाटा झेल रही हैं, ताकि पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े तो जनता ज्यादा हाय तौबा ना मचाए।
2: महंगाई की मार तो है, खासकर मिडिल क्लास आदमी पे।
3: हमें नहीं समझ आ रही भी, हाँ सरकार कर क्या रही है।
4: दूसरे देशों में जो बढ़ोतरी हुई है उससे तो बहुत ही कम है। मोदी साहब को सपोर्ट करना चाहिए।
5: जो नॉर्मल फैमिली है उसमें 3 रुपए का तो बहुत ज्यादा बजट पे फर्क पड़ेगा।
6: रेट तो अभी और भी बढ़ेंगे, बट ठीक है, मोदी जी ने कुछ सोच रखा होगा, मोदी जी के साथ ही खड़े हैं।
7: पता नहीं सरकार क्या करता है।
3: वो जो बढ़ा है ठीक है, और बढ़ेगा तो कुछ नहीं होगा। देश में मोदी है तो सब मुमकिन है।
8: हाँ, ये वैसे गलत करा है इन्होंने, पेट्रोल पे पैसे बढ़ाए हैं।
9: नुकसान है और किसका नुकसान है, बस जनता पे ही असर पड़ लिया, किस पर पड़ लिया।
0: लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े तो दिल्ली एनसीआर के लोगों पर महंगाई की एक और मार पड़ी है। शुक्रवार सुबह पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के साथ ही सीएनजी की कीमतों में भी 2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी कर दी गई है, जिससे आम लोगों का बजट और बिगड़ गया है। अब सीएनजी के दाम दिल्ली में 79.09 रुपए प्रति किलो, नोएडा में 87.70 रुपए प्रति किलो, गुरुग्राम में 84.12 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, दूध के दामों में 2 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। कंपनी का कहना है कि उत्पादन लागत बढ़ने और बाजार की परिस्थितियों के चलते ये कदम उठाना पड़ा है। जबकि घरेलू गैस सिलेंडर से लेकर कमर्शियल सिलेंडर और छोटू सिलेंडर यानी 5 किलो के सिलेंडर के दाम पहले ही बढ़ा दिए गए हैं। इधर महंगाई का बम फूटा, उधर कांग्रेस ने निशाना साध दिया। सोना भी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से महंगा हो गया है। अब कांग्रेस कह रही है कि चुनाव खत्म और मोदी की वसूली शुरू।
10: अमृत काल में आपका स्वागत है और इस अमृत काल में महंगाई मैन अपना चाबुक चला रहे हैं, मोदी जी आपसे वसूली कर रहे हैं, आपकी जेब पर डाका डाल रहे हैं। जब आप पर महंगाई का चाबुक चलाया जा रहा है, तब दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जो अपने लोगों को राहत दे रहे हैं।
11: 3 रुपए पे इतना ज्यादा हाइक तो सरकार को कोसने के अलावा कुछ आता है?
0: जबकि सरकार का कहना है कि कच्चे तेल की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव के बावजूद 2022 से अब तक ईंधन की कीमतें काफी हद तक स्थिर बनी हुई हैं और सरकार ने पूरे देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित की है। लेकिन सच ये भी है कि अप्रैल में थोक महंगाई 2 गुने से ज्यादा बढ़कर 8.30% तक पहुंच गई है। मार्च में ये 3.88% पर थी। अप्रैल में महंगाई 42 महीने में सबसे ज्यादा है। अक्टूबर 2022 में ये 8.39% पर पहुंच गई थी। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने थोक महंगाई के आंकड़े जारी किए। अब आपको बता देते हैं कि डीजल के दाम बढ़ने से आम आदमी की जेब पर महंगाई बम कैसे फूटेगा। माल भाड़ा बढ़ेगा और ट्रक और टेम्पो का किराया बढ़ जाएगा, जिससे दूसरे राज्यों से आने वाली सब्जियां, फल और राशन महंगे हो जाएंगे। खेती की लागत बढ़ेगी। ट्रैक्टर और पंपिंग सेट चलाने के लिए किसानों को ज्यादा खर्च करना होगा, जिससे अनाज की लागत बढ़ेगी। बस, ऑटो का किराया, सार्वजनिक परिवहन और स्कूल बसों के किराए में भी इजाफा देखने को मिल सकता है। जिस तरह से तेल कंपनियां माहौल बना रही हैं कि पेट्रोल डीजल पर 25 से 30 रुपए प्रति लीटर का घाटा हो रहा है, ऐसे में एक्सपर्ट ये भी मान रहे हैं कि अपना घाटा पूरी तरह खत्म करने और ब्रेक इवन यानी नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति में आने के लिए तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल के दामों में और इजाफा कर सकती हैं। आज तक ब्यूरो।
12: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले 10 मई को और फिर 11 मई को हैदराबाद से वडोदरा तक आकर 2 बार देश से अपील की। कहा कि तेल बचाइए क्योंकि ये संकट बड़ा है, बचाएंगे तभी बच पाएंगे। और इसके बाद देश भर में विभिन्न केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्री सब अपना काफिला कम करने में लग गए। कोई स्कूटर से चलने लगा, कोई मेट्रो से चलने लगा। लेकिन इस बीच एक मंत्री ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की अपील से बड़ा उनका अपना काफिला है।
13: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें।
14: लेकिन मंत्री जी को तो लगता है कि नसीहत चूल्हे में जाए, बस भौकाल ना घटने पाए। वो मंत्री जिन्होंने इधर शपथ ली और उधर तय कर लिया कि देश पर जनता पर जो बोझ पड़ता है पड़े, बस उनके काफिले की गाड़ी ना घटे। वो मंत्री जिन्होंने प्रधानमंत्री के बाद मुख्यमंत्री की भी बात एक कान से सुनी दूसरे से निकाल दी।
15: देश का पैसा बचाना है और देश का पैसा बचा करके इस संकट के, इस वैश्विक संकट से हम अपने देश को उभारने का काम करेंगे।
14: लेकिन प्रधानमंत्री की अपील, मुख्यमंत्री की दलील इन सबसे बड़ी निकली। उत्तर प्रदेश में नए नवेले बनाए गए मंत्री हंसराज विश्वकर्मा की लाल बत्ती पाने वाली VIP फील। मंत्री जी का नाम हंसराज विश्वकर्मा, नए नए राज्य मंत्री बने हैं, जिसकी कामना में न जाने कितनी परिक्रमा काशी से लखनऊ तक की होगी। मंत्री पद मिला तो नया ऑफिस मिला, नया ऑफिस मिला तो नई चकाचक कुर्सियां मिली। मोदी योगी का आभार करके मंत्री हंसराज ने भरोसा दिया, बस अब से हर समस्या का समाधान करूंगा।
16: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगीनाथ जी और वाराणसी के सांसद, देश के सबसे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। निश्चित तौर पर इतना से अच्छा कोशिश करूंगा कि इस कार्यालय से जितने लोगों का कहीं भी कोई किसी प्रकार का उनको समस्या हो तो समस्या का बकायदे जो है उसका समाधान किया जाए।
14: लखनऊ से समाधान की बात करके मंत्री हंसराज विश्वकर्मा का काफिला वाराणसी पहुंचा। तब तक प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की अपीलें हवा हो चुकी थी। दर्जनों गाड़ियां लेकर मंत्री का काफिला पहुंचता है, लंबा जाम लगा मिलता है। हद तब हो जाती है जब बुलडोजर तक लाकर नए नए मंत्री पद पर विराजे हंसराज विश्वकर्मा पर समर्थक फूल बरसा देते हैं। ऐसा जाम काशी की सड़कों पर लगा जिसमें अपना काफिला लगाकर तो तेल मंत्री और उनके समर्थक फूंकते ही रहे। आम आदमी जो प्रधानमंत्री की सलाह सुनकर कार पूल करके या दोपहिया वाहन से निकला होगा उसका भी तेल फुकवा दिया, जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद महंगाई की आग की तपिश महसूस कर रहा है।
17: जेब पे बोझ तो पहले से ही है, देख रहे हैं भरी दोपहरी में हम लोग परेशान चल रहे हैं, अपना जॉब चला रहे हैं उसमें और इजाफा ये लोग कर दिए हैं।
18: महंगाई पे जोर आ रहा है,
19: मुश्किल तो होगा ही।
18: बजट गड़बड़ाएगा
19: गड़बड़ाएगा भैया,
18: महंगाई बढ़ेगी।
20: ये जो महंगाई है हम लोग जेब के ऊपर ज्यादा ही पड़ता जा रहा है, क्योंकि हम लोग की सैलरी तो लिमिटेड है।
14: मतलब जनता की जेब महंगाई से जलती रहे और मंत्री हंसराज विश्वकर्मा पीएम की अपील नहीं सुनते तो विपक्ष सवाल उठाता है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने सोशल मीडिया पर डाला कि काशी की सड़कों पर कुछ महीनों के मेहमान मंत्री का अहंकार देखिए, सैकड़ों गाड़ियों का काफिला, धुआं उड़ाती सत्ता की हनक और घंटों जाम में फंसी काशी की जनता। खबरदार करता सवाल समझिए, जब मध्य प्रदेश में पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष सौभाग्य सिंह सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ उज्जैन से भोपाल पहुंचे, पीएम की अपील को मानने से इनकार कर दिया तो उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी हुआ। पाठ्य पुस्तक निगम के दफ्तर जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। क्या अब यूपी में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में ही मोदी की अपील को धुआं करने वाले नए मंत्री हंसराज विश्वकर्मा को पार्टी नोटिस जारी करेगी? क्या इन पर भी कार्रवाई होगी?
12: और अब बात नीट पेपर लीक पर हुए कबूलनामे की। पेपर लीक की कड़ियों को आपस में जोड़ने के लिए जांच टीम गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इस कड़ी में पेपर लीक से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण किरदार जांच टीम की गिरफ्त में। किरदार का नाम है लेक्चरर पीवी कुलकर्णी, जिसे सीबीआई ने पेपर लीक के आरोप में गिरफ्तार किया और यही मुख्य आरोपी है।
0: नाम लेक्चरर पीवी कुलकर्णी, काम एनटीए का हिस्सा, आरोप नीट का पेपर लीक। पेपर लीक कांड में पुणे के लेक्चरर पीवी कुलकर्णी की आज गिरफ्तारी हुई। दावा यही है कि एनटीए की तरफ से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल पीवी कुलकर्णी ने नीट का पेपर लीक किया। केमिस्ट्री के लेक्चरर कुलकर्णी ने पेपर लीक कैसे किया, इसका खुलासा कैसे हुआ, आपको ये भी थोड़ी देर में बताएंगे। उससे पहले समझिए कुलकर्णी की गिरफ्तारी ने कैसे एनटीए की वर्किंग स्टाइल को कटघरे में खड़ा कर दिया है। क्योंकि कुलकर्णी प्राइवेट कोचिंग चलाता था, इसके बावजूद एनटीए ने उसे परीक्षा की प्रक्रिया का हिस्सा बनाया। सबसे बड़ा सवाल यही है कि एनटीए ने प्राइवेट कोचिंग चलाने वाले कुलकर्णी को परीक्षा की प्रक्रिया से क्यों जोड़ा? प्राइवेट कोचिंग चलाने वाले कुलकर्णी का एनटीए में गॉडफादर कौन है? क्यों नीट की परीक्षा से ठीक पहले एनटीए ने अभिषेक सिंह को डीजी बनाया? क्या पेपर लीक के सिंडिकेट में एनटीए के कई अफसर मिले हुए हैं? क्या एनटीए जैसी संस्था के अंदर पेपर माफियाओं की जड़ें बहुत गहरी हैं? एनटीए सवालों के घेरे में है, एनटीए की वर्किंग स्टाइल कटघरे में है, लेकिन पेपर लीक कांड के चलते परीक्षा रद्द होने के करीब 48 घंटे बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने पहली बार चुप्पी तोड़ी। 13 मई को धर्मेंद्र प्रधान पेपर लीक के सवालों को टाल गए थे, लेकिन 48 घंटे बाद मीडिया के सामने आए, नीट पेपर लीक की जिम्मेदारी ली और साफ गोई से एनटीए को क्लीन चिट दे दी।
21: फिर सामाजिक चुनौती है, राधा कृष्ण कमिटी को पूरा पालन करने के उपरांत भी उस कमांड चेन में कहीं ना कहीं ब्रीच हुए, इसको हम स्वीकार करते हैं। अभी तो एनटीए बहुत योग्य व्यक्ति के हाथ में है, हमारे सचिव की बहुत अनुभव भी उस विषय में है। मैं मानता हूँ हमें एनटीए को सुप्रीम कोर्ट की आदेश कारण एनटीए बनी है। एनटीए हर एक साल 1 करोड़ बच्चों की एग्जामिनेशन कराती है अमूमन। एनटीए और निर्भुल हो, एनटीए में जीरो एरर हो, जीरो यानी जीरो एरर हो, ये हमारी दायित्व है।
0: अब सीधा सवाल एनटीए को क्लीन चिट देने वाले जिम्मेदारों से है। अगर एनटीए पाक साफ है, एनटीए का कोई कसूर नहीं है, एनटीए में सब कुछ पारदर्शी है, तो प्राइवेट कोचिंग चलाने वाला कुलकर्णी एनटीए की परीक्षा प्रक्रिया का हिस्सा कैसे बना? अब इस सवाल का जवाब केंद्रीय शिक्षा मंत्री को देना है, क्योंकि एनटीए के गड़बड़ झाले का सबसे बड़ा सबूत लेक्चरर कुलकर्णी है। ऐसा क्यों, इसे भी समझिए। शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि पीवी कुलकर्णी ने नीट का पेपर लीक किया जो एनटीए से जुड़ा हुआ था। 3 मई को नीट की परीक्षा हुई, लेकिन अप्रैल 2026 के आखिरी हफ्ते में कुलकर्णी ने पेपर लीक की आरोपी मनीषा बागबारी की मदद से कुछ छात्रों को जुटाया जो नीट की परीक्षा देने वाले थे। कुलकर्णी ने पुणे स्थित अपने घर पर छात्रों के लिए कोचिंग क्लास चलाई। क्लास में कुलकर्णी ने छात्रों को सवाल और उसके जवाब बताए। ये वही सवाल थे जो नीट के पेपर में सेट किए गए थे। कोचिंग में मौजूद छात्रों ने सवाल और जवाब को अपनी कॉपी में लिखा। पेपर लीक की जांच में पाया गया कि केमिस्ट्री के वही सवाल 3 मई 2026 को हुए नीट यूजी परीक्षा के असली पेपर से पूरी तरह मेल खाते हैं। कुलकर्णी केमिस्ट्री का लेक्चरर है और नीट के सभी 45 सवाल लीक पेपर से मैच करते हैं। ये संयोग नहीं बल्कि पेपर लीक गैंग का प्रयोग है। केमिस्ट्री के वही सवाल नीट में आए जो कुलकर्णी ने छात्रों को बताए थे। अब सीबीआई टीम को कुलकर्णी से कई और राज उगलवाने हैं। नीट के प्रश्न पत्र में बायोलॉजी के 90 सवाल भी लीक पेपर से हूबहू मैच हुए, यानी केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सवाल लीक किए गए। तो क्या कुलकर्णी के साथ कई और लोग शामिल हैं? क्या एनटीए की प्रश्न पत्र तैयार करने वाली कमेटी में शामिल कई और एक्सपर्ट पेपर लीक रैकेट से जुड़े हुए हैं? सबसे बड़ा सवाल, कुलकर्णी का गॉडफादर कौन है? पूछताछ के दौरान नीट का पेपर खरीदने वाले मांगीलाल ने कबूल किया है कि पेपर लीक गैंग में कई प्राइवेट कोचिंग सेंटर, एनटीए के बड़े अफसर और कई सफेदपोश शामिल हैं। सवाल यही है कि क्या सीबीआई के हाथ पेपर लीक का सिंडिकेट चलाने वाले मास्टरमाइंड तक पहुंचेंगे? दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ, जयपुर से शरद कुमार, आज तक।
12: जिस भोजशाला को विद्या की काशी कहा जाता था, उस भोजशाला को एमपी हाईकोर्ट ने प्राचीन संस्कृत अध्ययन केंद्र और सरस्वती मंदिर मानते हुए हिंदू पक्ष के समर्थन में अपना निर्णय सुना दिया। एसआई की
1: जो बरसों से किया जा रहा संघर्ष था, माँ की मुक्ति और उसके गौरव की पुनर्स्थापना का दिन जो इसका इंतजार किया जा रहा था, वो बहुत नजदीक आ गया है। आज इस भोजशाला को, जो कि वास्तव में सरस्वती का मंदिर था, उसको कानूनी रूप से माँ का मंदिर घोषित हुआ है। ये बहुत ही हर्ष की बात है और हिंदू समाज आज प्रफुल्लित है। आज वो दिल से खुश है कि वर्षों का उसके मेहनत का परिणाम आज सबके सामने आया है।
19: भोजशाला के इस मंदिर में अब सिर्फ मंगलवार को ही पूजा नहीं होगी, हिंदू पक्ष यहाँ रोज पूजा कर पाएगा। अदालत ने माना है कि ये एक मंदिर है, ना कि कमाल मौला मस्जिद। इंदौर हाई कोर्ट का ये आदेश हिंदू पक्ष के उन लोगों की जिंदगी का सबसे बड़ा पल है जो वर्षों से इसे लेकर संघर्ष करते रहे।
22: कैसा फैसले को देखते हो और आप कब आप लोग प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रहे हो?
23: बहुत बहुत अच्छा फैसला है, न्यायमूर्ति जो है उनने बहुत अच्छा फैसला दिया, उनका स्वागत करते हैं हम बहुत बहुत। और कई वर्षों के बाद हमारे कई बुजुर्गों ने इस भोजशाला के लिए प्राण दिए हैं, उनका बहुत प्राण इसमें लगे हैं। हमारे ऐसी युवा पीढ़ी जो आज भोजशाला परिसर में खड़ी,
22: आप क्या करेंगे? आप
23: अब यहाँ पर भोजशाला में बहुत ही वाघ देवी बहुत जल्द आएगी और विराजमान होगी।
24: यह एक ऐतिहासिक फैसला जो आज उच्च न्यायालय के द्वारा मिला है, ये हिंदू समाज के लिए एक बहुत ही बड़ी जीत है।
19: दशकों से हिंदू पक्ष भोजशाला को मंदिर बताता रहा, इसके लिए उन्होंने 1995 में पहली बार कानूनी लड़ाई शुरू की और अब जाकर जीत हुई। इंदौर हाईकोर्ट ने एएसआई के सर्वे, ऐतिहासिक तथ्यों, गवाहों और परिसर के मौजूद हालात को देखते हुए अपना फैसला सुनाया। ऐलान किया कि भोजशाला में जिस मंदिर को दशकों से कमाल मौला के मकबरे और मस्जिद के तौर पर बताया जाता रहा, वो मस्जिद नहीं बल्कि सरस्वती मंदिर है।
25: वो जो भोजशाला है वहाँ नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, वो राजा भोज का मंदिर है। एक चीज, मुस्लिम चाहे तो एक आवेदन कर सकते हैं राज्य सरकार को, तो राज्य सरकार उनको जगह दे सकती है मस्जिद के लिए। एक चीज स्पष्ट हो गई। दूसरी चीज, एएसआई के अधीन ये संपत्ति दी है, एएसआई चाहे तो उसको रेगुलर रूप से हिंदुओं को दे दे, वहाँ की जो व्यवस्था है वो एएसआई को दी है।
19: साल 1995 में दोनों पक्षों के बीच मामूली विवाद के बाद प्रशासन ने भोजशाला में मंगलवार को पूजा और शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत दी, जिसके बाद ये मामला अदालत में लड़ा जाता रहा। इंदौर हाई कोर्ट के दो जजों की बेंच ने इस विवाद पर फैसला सुनाते हुए कहा, हमने देखा है कि उस जगह पर हिंदू पूजा लगातार होती रही है, हमने पाया है कि उस जगह का ऐतिहासिक साहित्य राजा भोज से जुड़े संस्कृत सीखने के केंद्र के तौर पर इसे स्थापित करता है, इससे धार्मिक देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर होने का पता चलता है, इसलिए उस इलाके का धार्मिक चरित्र भोजशाला माना जाता है जिसमें देवी वाग देवी सरस्वती का मंदिर है।
25: पूरे कमाल मौला जो ये भोजशाला परिसर है,
26: बाहर का जो इधर कमाल मौला
25: नहीं, उसके लिए कुछ नहीं कहा गया, वो तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर में नहीं था। कोर्ट ने मौला कमालुद्दीन को ये कहा है कि वो अल्टरनेट लैंड के लिए सरकार को प्रत्यावेदन दे सकते हैं और सरकार उसको कंसिडर करती है। मतलब मूल बात यह है कि इस पूरे परिसर को, जो हमारी मांग थी, हमारे हर एक आर्गुमेंट को कोर्ट ने माना है और इसके स्वरूप को एक हिंदू मंदिर का परिसर घोषित किया।
19: अदालत ने अपने आदेश में एएसआई सर्वे रिपोर्ट से मिले सबूतों का हवाला दिया, जिसमें ये बात भी कही गई कि कमाल मौला मस्जिद को बनाने में भोजशाला के प्राचीन अवशेषों का इस्तेमाल किया गया।
2: कि जो एएसआई है, जो पूरा भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण है, उसकी रिपोर्ट से अन्य साक्ष्य जो रखे गए, जो हमारे द्वारा ऐतिहासिक साक्ष्य रखे गए, और राम मंदिर जजमेंट के समय जो दोनों ही धर्मों के जो कानूनी पहलू रखे गए कि हिंदू लॉ के हिसाब से एक बार जो मंदिर स्थापित हो जाता है वो हमेशा मंदिर रहता है, और मुस्लिम लॉ के हिसाब से भी किसी कब्जा करी हुई जगह पे एक वैलिड मस्जिद नहीं बनाया जा सकता, इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए माननीय न्यायालय ने तय करा कि ये जो जगह है, ये जो मंदिर है, ये भोजशाला है, एक सरस्वती माँ का मंदिर है।
19: AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भोजशाला के फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसके आए फैसले में बाबरी मस्जिद के फैसले जैसी समानताएं हैं कहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट इसे सुलझाएगा और हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करेगा।
3: पूरी अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग मिली, लेकिन वजह सिर्फ ये है कि एएसआई के तथ्यों को पुख्ता मानकर और उस पे फैसला देना वो कहीं एक हद तक सेटिस्फेक्शन नहीं देता है।
19: लेकिन भोजशाला में हिंदू पक्ष को यकीन है कि हाई कोर्ट के फैसले से अब उनका इंतजार खत्म होगा और वो मंदिर में पूजा पाठ कर पाएंगे।
4: 1005 से 1054 राजा भोज का काल रहा है तो ये न्याय की जीत हुई है जी। बस राजा,
22: लेकिन प्रतिक्रिया आप लोगों की ऐसा नहीं लगता कि सामने वाले को
4: नहीं नहीं उनका अधिकार है, कानून ने जो अधिकार दिया है, हमारा तो भारतीय संविधान बहुत विशाल है और बहुत बृहद है।
5: हिंदू समाज का उत्साह है, लंबा संघर्ष रहा है भोजशाला के लिए, अलग अलग समय में अलग अलग लोगों ने इसको इस संघर्ष को जिया है। इस भोजशाला मुक्ति के लिए हमारे 3 कार्यकर्ता पुलिस की गोली से शहीद हुए हैं, आज उनको सच्ची श्रद्धांजलि उन लोगों को है। 44 महिलाएं, धार की महिलाएं इंदौर की जेल में 8 दिन तक बंद रही, कई लोग परिवार सहित जेल में गए, उन सबका त्याग तपस्या समर्पण का आज परिणाम निकला है।
19: अदालत ने 11 मार्च को एएसआई को भोजशाला परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का आदेश दिया था, जिसके बाद एएसआई ने 22 मार्च से सर्वेक्षण शुरू किया और 27 जून तक सर्वे का काम चला। 98 दिनों के बाद सर्वे का काम खत्म हुआ और अब अदालत के फैसले ने भोजशाला को मंदिर करार देते हुए यहां पूजा की इजाजत दे दी है। रवीश पाल सिंह, धार आज तक।
12: भोजशाला को मंदिर घोषित करने के इंदौर हाईकोर्ट के बड़े निर्णय पर ओवैसी ने सवाल उठाया, कहा कि इस निर्णय में बाबरी मस्जिद जैसे निर्णय की समानताएं हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसे सुलझाएगा, हाईकोर्ट के निर्णय को रद्द करेगा।
6: एएसआई ने 1951 में और 1952 में ये क्लैरिफिकेशन दे चुकी है कि ये मस्जिद है, और उस वक्त उन्होंने एएसआई ने रिजेक्ट किया था इसको कि जो वहां पर भोज उत्सव मनाना चाहते थे। 51 और 52 का एएसआई के ऑर्डर है। कोर्ट ने, जैसा मैंने भी कहा, 1935 के धार स्टेट एग्जीक्यूटिव को, स्टेट गजट को नजरअंदाज कर दिया, 1985 के वफ रजिस्ट्रेशन को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया, और जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको भी उन्हें नजरअंदाज कर दिया। और एक और वजह है, यह फैसला जो एरोनियस और गलत है, मुस्लिम साइड ने यह आर्ग्यू किया था कि जो पीआईएल दाखिल की गई थी रिट पिटीशन में, उन्होंने डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट उठाए जो आर्टिकल 226 में नहीं लिए जा सकते, क्योंकि एक्स्ट्रॉर्डनरी ज्यूरिसडिक्शन जो होता है आर्टिकल 226 में, कोर्ट एक ऑर्डर पास नहीं कर सकता डिक्लेरेशन ऑफ पोजेशन और टाइटल के ऊपर।
12: खबर पश्चिम बंगाल की, जहां पर नई सरकार के आदेश पर पहली बार जुमे की नमाज सड़क पर होने की कोशिश हुई, लेकिन पुलिस प्रशासन ने लोगों को ऐसा करने से रोक दिया, जिसका विरोध भी हुआ।
7: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते छिजे।
19: पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद से सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, ये तय हो चुका था। कोलकाता के राजा बाजार में यह हंगामा इसी बदलाव के विरोध की वजह से हो रहा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई वाली सरकार ने सड़क पर धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने कहा है कि सड़क पर कोई भी धार्मिक कार्यक्रम नहीं होगा, मंदिर या फिर मस्जिद कहीं भी तेज आवाज में लाउड स्पीकर नहीं बजेगा। शुक्रवार को जब राजा बाजार में सड़क पर जुमे की नमाज पढ़ने के लिए लोग जमा होते हैं तो उन्हें पुलिस के कड़े रुख के बाद वापस लौटना पड़ा।
8: डबल नमाज होना चाहिए, रास्ता क्लियर होता है तो क्या नुकसान है, फिर वोट आएगा। आज ठंडा है, ठंडा तो फिर जाएगा, फिर ठंडा आएगा, ऐसे कानून जब तब के लिए बनेगा।
9: वो नमाज के पढ़ने के लिए तो अंदर से इमाम साहब ऐलान कर दिया, भाई सब मस्जिद में जगह आ जाओ, अगर जरूरत पड़ी दूसरी जमात होगा, दो जमात होगा, हंगामा करने और ये सब करने, रोड में पढ़ना बंद कर दो। तब पहली जुमा थोड़ा संभालने में परेशानी हुई, अंदर जुमा से हो जाएगा इंशाल्लाह।
19: कोलकाता पुलिस ने जब सड़क पर नमाज पढ़ने से लोगों को रोका तो उन्होंने उसका विरोध किया। बड़ी तादाद में पुलिस की मौजूदगी के बाद हंगामा हुआ। लेकिन पुलिस ने लोगों को समझाया कि अब ऐसा नहीं हो सकेगा, सड़क पर धार्मिक गतिविधि नहीं हो पाएगी, चाहे वो किसी मजहब के हो। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोगों ने पुलिस के मना करने पर हंगामा किया, बाद में पुलिस ने समझा बुझा कर वापस भेजा।
10: आज फर्स्ट जुमा था ये ऑर्डर आने के बाद में, इसलिए लोगों ने कुछ रास्ते पे नमाज इस तरह से हमेशा पढ़ते आए हैं, तो हम लोगों भी ने समझाया और पुलिस भी सपोर्ट किया, जिसके वजह कर पीसफुली तरीके से सब कुछ हो गया। अब आप समझते हैं जब लोग अवेयर नहीं होते हैं तो थोड़ा सा तर्क और वितर्क होता है, तो यही हुआ, बाकी पीसफुली तरीके से सब कुछ यहाँ पे आज का प्रेयर हो गया।
9: सरकार ने जो जो फैसला लिया है उसके ऊपर हम लोग अमल करने की कोशिश करेंगे, और लोगों को जो हमारे कौम के लोग उसको भी समझाया जाएगा।
19: पश्चिम बंगाल में 9 मई को शुभेंदु अधिकारी ने शपथ ली थी, इसके बाद नमाज को लेकर हंगामे की ये पहली घटना है।
11: ये सिर्फ मुसलमान धर्म के लिए नहीं था, ये हिंदू धर्म के लिए भी था। कोई भी धर्म के लोग सड़क पे आके अपना पूजा या इबादत नहीं कर सकते, उसके लिए जगह ठीक किया हुआ है वहां पर वो करे, लेकिन यहाँ कुछ लोग भावुक हो गए थे और उसके बाद वो सड़क पे आ गए, और क्योंकि वो सालों से यहाँ सड़क पे नमाज अदा किया करते थे, तो पुलिस ने जब इन्हें मना किया तो फिर पुलिस के साथ कहीं कहा सुनी हो गई थी, और उसके बाद यहाँ पर भारी तादाद में लोग इकट्ठा हो गए थे। लेकिन बाद में पुलिस फोर्स आई, पुलिस के जो अफसर थे मौजूद, वो लोग उन लोगों ने स्थिति को काबू करने के लिए अलग अलग समय पर बातचीत किया, और 15 से 20 मिनट के अंदर जो स्थिति है उसे पूरी तरीके से काबू कर लिया गया था। और फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सीआरपीएफ को डिप्लॉय किया गया, सेंट्रल फोर्सेज पश्चिम बंगाल में सड़क के दोनों तरफ सीआरपीएफ को डिप्लॉय रखा गया है।
19: बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद ही उसके नेताओं ने यह कहना शुरू कर दिया था कि वो सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे। इसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने अदालती आदेशों और सार्वजनिक व्यवस्था का हवाला देते हुए सड़क पर धार्मिक आयोजन रोकने के निर्देश दे दिए, ताकि सड़कों को ब्लॉक करने की वजह से लोगों को परेशानी न हो।
12: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

नीट पेपर लीक कांड में सीबीआई का बड़ा एक्शन, मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी पुणे से गिरफ्तार। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का ऐलान, 21 जून को नीट का री एग्जाम। धार भोजशाला विवाद में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत, हाईकोर्ट ने माना सरस्वती मंदिर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया स्वागत, ओवैसी बोले अयोध्या जैसा निर्णय। विदेश यात्रा पर टैक्स लगाने की खबरों को पीएम मोदी ने किया खारिज, बताया अफवाह, कहा ऐसे प्रतिबंधों का सवाल नहीं। टीएमसी के सांसद अभिषेक बैनर्जी के विरुद्ध कोलकाता में एफआईआर, विधानसभा चुनाव में भड़काऊ भाषण देने, अमित शाह को धमकाने का आरोप, 5 धाराओं में केस। भारत और यूएई में तेल गैस समेत कई महत्वपूर्ण समझौते, अबुधाबी से $5 अरब निवेश पर करार। आज पीएम मोदी के नीदरलैंड्स दौरे पर रिश्तों को मिलेगी नई उड़ान, मोदी पहुंचे नीदरलैंड्स।

ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध का असर अब हमारे देश भारत पर भी पड़ना शुरू हो गया। केंद्र सरकार ने शुक्रवार यानी कि आज पूरे देश में पेट्रोल और डीजल के दाम 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए। इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर में सीएनजी के दाम में भी 2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी कर दी गई। ऐसे में बढ़े हुए दामों का असर अब आपकी हमारी जेब पर होने लगा है।

0: महंगाई का बम आपकी जेब पर कैसे फटा? अमेरिका ईरान युद्ध की चिंगारी घर घर तक कैसे आई? हुर्मुज में अमेरिका और ईरान भिड़ रहे हैं, महंगाई का बम फोड़ रहे हैं। तेल, गैस, दूध, सब पर छाई महंगाई, जा रही है गाढ़ी कमाई। लड़े कोई, भरे कोई, युद्ध रुकेगा नहीं, महंगाई घटेगी नहीं।
1: दुर्भाग्य से जिस क्षेत्र से दुनिया के बड़े हिस्से को तेल मिलता है, आज वही क्षेत्र संघर्ष और युद्ध की स्थिति। दुर्भाग्य से जिस क्षेत्र से दुनिया के बड़े हिस्से को तेल मिलता है, आज वही क्षेत्र संघर्ष और युद्ध की स्थिति में उलझा हुआ।
0: हिंट तो पीएम मोदी ने 5 दिन पहले ही दे दी थी, लेकिन असली महंगाई का बम अब फूटा है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें सीधे 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी गई हैं, और इस तरह से पेट्रोल नई दिल्ली में 97.77 रुपए प्रति लीटर, कोलकाता में 108.70 रुपए प्रति लीटर, मुंबई में 106.68 रुपए प्रति लीटर, नोएडा में 97.78 रुपए प्रति लीटर, जयपुर में 107.97 रुपए प्रति लीटर, पटना में 108.55 रुपए प्रति लीटर तक पहुँच गया है, जबकि डीजल पर भी 3.25 रुपए प्रति लीटर बढ़ने से नई दिल्ली में डीजल 90.67 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है, कोलकाता 95.13 रुपए प्रति लीटर, मुंबई 93.14 रुपए प्रति लीटर, नोएडा 91.02 रुपए प्रति लीटर, जयपुर 93.23 रुपए प्रति लीटर और पटना 94.63 रुपए प्रति लीटर तक पहुँच गया है। बड़ी बात यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का हल अभी तक नहीं निकला है। ना तो ईरान झुकने को तैयार है और ना ही अमेरिका पीछे हटने को तैयार है। ईरान और अमेरिका के बीच भले ही युद्ध विराम चल रहा हो, लेकिन दोनों देशों के बीच संपूर्ण युद्ध विराम को लेकर अभी तक कोई डील नहीं हुई है, क्योंकि ईरान अपना परमाणु प्रोग्राम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और अमेरिका कह रहा है कि जंग तभी बंद होगी जब ईरान अपना परमाणु प्रोग्राम और एनरिच्ड यूरेनियम पूरी तरह से छोड़ेगा। एक तो ईरान अमेरिका का अड़ियल रवैया, ऊपर से हुर्मुज स्ट्रेट में गुजरात का एक और मालवाहक जहाज डूब गया। हाजी अली नाम का जहाज 13 मई की सुबह ओमान के समुद्री क्षेत्र से गुजर रहा था, तभी इससे कोई ड्रोन या मिसाइल जैसा हथियार टकरा गया। हादसे के बाद जहाज में आग लग गई, हालांकि ओमान कोस्ट गार्ड ने सभी 14 क्रू मेंबर्स को बचा लिया, क्योंकि अभी ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 107 से 108 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल चल रही है। कच्चे तेल से बनने वाले उत्पादों की बात करें तो गैसोलीन, पेट्रोल, डीजल और हीटिंग तेल, जेट इंजन, केरोसिन, ल्यूब्रिकेटिंग तेल और डामर इसी से बनता है। सरकार की तरफ से पहले ही माहौल बना दिया जाता है कि कच्चा तेल महंगा है, तेल गैस लाने में दिक्कत हो रही है, पेट्रोलियम कंपनियां घाटा झेल रही हैं, ताकि पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े तो जनता ज्यादा हाय तौबा ना मचाए।
2: महंगाई की मार तो है ही है, खासकर मिडिल क्लास आदमी पे।
3: हमें नहीं समझ आ रही भी हाँ सरकार कर क्या रही है।
4: दूसरे देशों में जो बढ़ोतरी हुई है उससे तो बहुत ही कम है, मोदी साहब को सपोर्ट करना चाहिए।
5: जो नॉर्मल फैमिली है उसमें 3 रुपए का तो बहुत ज्यादा बजट पे फर्क पड़ेगा।
6: रेट
5: फैमिली है उसमें 3 रुपए का तो बहुत ज्यादा बजट पे फर्क पड़ेगा।
6: रेट तो अभी और भी बढ़ेंगे, बट ठीक है, मोदी जी ने कुछ सोच रखा होगा, मोदी जी के साथ ही खड़े हैं।
7: पता नहीं सरकार क्या करता है।
3: वो जो बड़ा है ठीक है,
5: और फैमिली है उसमें 3 रुपए का तो बहुत ज्यादा बजट पे फर्क पड़ेगा।
6: रेट तो अभी और भी बढ़ेंगे, बट ठीक है, मोदी जी ने कुछ सोच रखा होगा, मोदी जी के साथ ही खड़े हैं।
7: पता नहीं सरकार क्या करता है।
3: वो जो बड़ा है ठीक है, और बढ़ेगा तो कुछ नहीं होगा, देश में मोदी है तो सब मुमकिन है।
8: हाँ, ये पैसे गलत कराए इन्होंने, पेट्रोल पे पैसे बढ़ाए हैं।
9: नुकसान है और किसका नुकसान है, बस जनता पे ही असर पड़ लिया, किस पर पड़ लिया।
0: लेकिन पेट्रोल डीजल
3: पड़ेगा तो कुछ नहीं होगा, देश में मोदी है तो सब मुमकिन है।
8: हाँ, ये पैसे गलत कराए इन्होंने, पेट्रोल पे पैसे बढ़ाए हैं।
9: नुकसान है और किसका नुकसान है, बस जनता पे ही असर पड़ लिया, किस पर पड़ लिया।
0: लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े तो दिल्ली एनसीआर के लोगों पर महंगाई की एक और बार पड़ी है। शुक्रवार सुबह पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के साथ ही सीएनजी की कीमतों में भी 2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी कर दी गई है, जिससे आम लोगों का बजट और बिगड़ गया है। अब सीएनजी के दाम दिल्ली में 79.09 रुपए प्रति किलो, नोएडा में 87.70 रुपए प्रति किलो, गुरुग्राम में 84.12 रुपए प्रति किलो तक पहुँच गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, दूध के दामों में 2 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। कंपनी का कहना है कि उत्पादन लागत बढ़ने और बाजार की परिस्थितियों के चलते ये कदम उठाना पड़ा है। जबकि घरेलू गैस सिलेंडर से लेकर कमर्शियल सिलेंडर और छोटू सिलेंडर यानी 5 किलो के सिलेंडर के दाम पहले ही बढ़ा दिए गए हैं। इधर महंगाई का बम फूटा, उधर कांग्रेस ने निशाना साध दिया। सोना भी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से महंगा हो गया है। अब कांग्रेस कह रही है कि चुनाव खत्म और मोदी की वसूली शुरू।
10: अमृत काल में आपका स्वागत है और इस अमृत काल में महंगाई मैन अपना चाबुक चला रहे हैं, मोदी जी आपसे वसूली कर रहे हैं, आपकी जेब पर डाका डाल रहे हैं। जब आप पर महंगाई का चाबुक चलाया जा रहा है, तब दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जो अपने लोगों को राहत दे रहे हैं।
11: 3 रुपए पे इतना ज्यादा हाइक तो सरकार को कोसने के अलावा कुछ आता है?
0: जबकि सरकार का कहना है कि कच्चे तेल की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव के बावजूद 2022 से अब तक ईंधन की कीमतें काफी हद तक स्थिर बनी हुई हैं और सरकार ने पूरे देश में पेट्रोल डीजल और एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित की है। लेकिन सच ये भी है कि अप्रैल में थोक महंगाई 2 गुने से ज्यादा बढ़कर 8.30% तक पहुंच गई है। मार्च में ये 3.88% पर थी। अप्रैल में महंगाई 42 महीने में सबसे ज्यादा है। अक्टूबर 2022 में ये 8.39% पर पहुंच गई थी। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने थोक महंगाई के आंकड़े जारी किए। अब आपको बता देते हैं कि डीजल के दाम बढ़ने से आम आदमी की जेब पर महंगाई बम कैसे फूटेगा। माल भाड़ा बढ़ेगा और ट्रक और टेम्पो का किराया बढ़ जाएगा, जिससे दूसरे राज्यों से आने वाली सब्जियां, फल और राशन महंगे हो जाएंगे। खेती की लागत बढ़ेगी, ट्रैक्टर और पंपिंग सेट चलाने के लिए किसानों को ज्यादा खर्च करना होगा, जिससे अनाज की लागत बढ़ेगी। बस ऑटो का किराया, सार्वजनिक परिवहन और स्कूल बसों के किराए में भी इजाफा देखने को मिल सकता है। जिस तरह से तेल कंपनियां माहौल बना रही हैं कि पेट्रोल डीजल पर 25 से 30 रुपए प्रति लीटर का घाटा हो रहा है, ऐसे में एक्सपर्ट ये भी मान रहे हैं कि अपना घाटा पूरी तरह खत्म करने और ब्रेक इवन यानी नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति में आने के लिए तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल के दामों में और इजाफा कर सकती हैं। आज तक ब्यूरो।
12: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले 10 मई को और फिर 11 मई को हैदराबाद से वडोदरा तक आकर 2 बार देश से अपील की। कहा कि तेल बचाइए क्योंकि ये संकट बड़ा है, बचाएंगे तभी बच पाएंगे। और इसके बाद देश भर में विभिन्न केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्री सब अपना काफिला कम करने में लग गए। कोई स्कूटर से चलने लगा, कोई मेट्रो से चलने लगा। लेकिन इस बीच एक मंत्री ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की अपील से बड़ा उनका अपना काफिला है।
13: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें।
14: लेकिन मंत्री जी को तो लगता है कि नसीहत चूल्हे में जाए, बस भौकाल ना घटने पाए। वो मंत्री जिन्होंने इधर शपथ ली और उधर तय कर लिया कि देश पर जनता पर जो बोझ पड़ता है पड़े, बस उनके काफिले की गाड़ी ना घटे। वो मंत्री जिन्होंने प्रधानमंत्री के बाद मुख्यमंत्री की भी बात एक कान से सुनी, दूसरे से निकाल दी।
15: देश का पैसा बचाना है और देश का पैसा बचा करके इस संकट के, इस वैश्विक संकट से हम अपने देश को उभारने का काम करेंगे।
14: लेकिन प्रधानमंत्री की अपील, मुख्यमंत्री की दलील इन सबसे बड़ी निकली। उत्तर प्रदेश में नए नवेले बनाए गए मंत्री हंसराज विश्वकर्मा की लाल बत्ती पाने वाली वीआईपी फील। मंत्री जी का नाम हंसराज विश्वकर्मा, नए नए राज्य मंत्री बने हैं, जिसकी कामना में न जाने कितनी परिक्रमा काशी से लखनऊ तक की होगी। मंत्री पद मिला तो नया ऑफिस मिला, नया ऑफिस मिला तो नई चकाचक कुर्सियां मिली। मोदी योगी का आभार करके मंत्री हंसराज ने भरोसा दिया, बस अब से हर समस्या का समाधान करूंगा।
16: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगीनाथ जी और वाराणसी के सांसद, देश के सबसे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। निश्चित तौर पर इतना से अच्छा कोशिश करूंगा कि इस कार्यालय से जितने लोगों का कहीं भी कोई किसी प्रकार का उनको समस्या हो तो समस्या का बकायदे जो है उसका समाधान किया जाए।
14: लखनऊ से समाधान की बात करके मंत्री हंसराज विश्वकर्मा का काफिला वाराणसी पहुंचा, तब तक प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की अपीलें हवा हो चुकी थी। दर्जनों गाड़ियां लेकर मंत्री का काफिला पहुंचता है, लंबा जाम लगा मिलता है। हद तब हो जाती है जब बुलडोजर तक लाकर नए नए मंत्री पद पर विराजे हंसराज विश्वकर्मा पर समर्थक फूल बरसा देते हैं। ऐसा जाम काशी की सड़कों पर लगा जिसमें अपना काफिला लगाकर तो तेल मंत्री और उनके समर्थक फूंकते ही रहे। आम आदमी जो प्रधानमंत्री की सलाह सुनकर कारपूल करके या दोपहिया वाहन से निकला होगा उसका भी तेल फुकवा दिया, जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद महंगाई की आग की तपिश महसूस कर रहा है।
17: जेब पे बोझ तो पहले से ही है, देख रहे हैं भरी दोपहरी में हम लोग परेशान चल रहे हैं, अपना जॉब चला रहे हैं उसमें और इजाफा ये लोग कर दिए हैं।
18: महंगाई पे जोर आ रहा है,
19: मुश्किल तो होगा,
20: बजट गड़बड़ाएगा,
21: गड़बड़ाएगा भैया,
22: महंगाई बढ़ेगी।
23: ये जो महंगाई है हम लोग जेब के ऊपर ज्यादा ही पड़ता जा रहा है, क्योंकि हम लोग की सैलरी तो लिमिटेड है।
14: मतलब जनता की जेब महंगाई से जलती रहे और मंत्री हंसराज विश्वकर्मा पीएम की अपील नहीं सुनते तो विपक्ष सवाल उठाता है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने सोशल मीडिया पर डाला कि काशी की सड़कों पर कुछ महीनों के मेहमान मंत्री का अहंकार देखिए, सैकड़ों गाड़ियों का काफिला, धुआं उड़ाती सत्ता की हनक और घंटों जाम में फंसी काशी की जनता। खबरदार करता सवाल समझिए, जब मध्य प्रदेश में पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष सौभाग्य सिंह सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ उज्जैन से भोपाल पहुंचे, पीएम की अपील को मानने से इनकार कर दिया तो उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी हुआ। पाठ्य पुस्तक निगम के दफ्तर जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। क्या अब यूपी में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में ही मोदी की अपील को धुआं करने वाले नए मंत्री हंसराज विश्वकर्मा को पार्टी नोटिस जारी करेगी? क्या इन पर भी कार्रवाई होगी?
12: और अब बात नीट पेपर लीक पर हुए कबूलनामे की। पेपर लीक की कड़ियों को आपस में जोड़ने के लिए जांच टीम गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इस कड़ी में पेपर लीक से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण किरदार जांच टीम की गिरफ्त में। किरदार का नाम है लेक्चरर पीवी कुलकर्णी, जिसे सीबीआई ने पेपर लीक के आरोप में गिरफ्तार किया और यही मुख्य आरोपी है।
0: नाम लेक्चरर पीवी कुलकर्णी, काम एनटीए का हिस्सा, आरोप नीट का पेपर लीक। पेपर लीक कांड में पुणे के लेक्चरर पीवी कुलकर्णी की आज गिरफ्तारी हुई। दावा यही है कि एनटीए की तरफ से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल पीवी कुलकर्णी ने नीट का पेपर लीक किया। केमिस्ट्री के लेक्चरर कुलकर्णी ने पेपर लीक कैसे किया, इसका खुलासा कैसे हुआ, आपको ये भी थोड़ी देर में बताएंगे। उससे पहले समझिए कुलकर्णी की गिरफ्तारी ने कैसे एनटीए की वर्किंग स्टाइल को कटघरे में खड़ा कर दिया है। क्योंकि कुलकर्णी प्राइवेट कोचिंग चलाता था, इसके बावजूद एनटीए ने उसे परीक्षा की प्रक्रिया का हिस्सा बनाया। सबसे बड़ा सवाल यही है कि एनटीए ने प्राइवेट कोचिंग चलाने वाले कुलकर्णी को परीक्षा की प्रक्रिया से क्यों जोड़ा? प्राइवेट कोचिंग चलाने वाले कुलकर्णी का एनटीए में गॉडफादर कौन है? क्यों नीट की परीक्षा से ठीक पहले एनटीए ने अभिषेक सिंह को डीजी बनाया? क्या पेपर लीक के सिंडिकेट में एनटीए के कई अफसर मिले हुए हैं? क्या एनटीए जैसी संस्था के अंदर पेपर माफियाओं की जड़ें बहुत गहरी हैं? एनटीए सवालों के घेरे में है, एनटीए की वर्किंग स्टाइल कटघरे में है, लेकिन पेपर लीक कांड के चलते परीक्षा रद्द होने के करीब 48 घंटे बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने पहली बार चुप्पी तोड़ी। 13 मई को धर्मेंद्र प्रधान पेपर लीक के सवालों को टाल गए थे, लेकिन 48 घंटे बाद मीडिया के सामने आए, नीट पेपर लीक की जिम्मेदारी ली और साफ गोई से एनटीए को क्लीन चिट दे दी।
24: फिर सामाजिक चुनौती है, राधा कृष्ण कमिटी को पूरा पालन करने के उपरांत भी उस कमांड चेन में कहीं ना कहीं ब्रीच हुई है, इसको हम स्वीकार करते हैं। अभी तो एनटीए बहुत योग्य व्यक्ति के हाथ में है, हमारे सचिव की बहुत अनुभव भी उस विषय में है। मैं मानता हूँ हमें एनटीए को सुप्रीम कोर्ट की आदेश कारण एनटीए बनी है। एनटीए हर एक साल 1 करोड़ बच्चों की एग्जामिनेशन कराती है अमूमन। एनटीए और निर्भुल हो, एनटीए में जीरो एरर हो, जीरो यानी जीरो एरर हो, ये हमारी दायित्व है।
0: अब सीधा सवाल एनटीए को क्लीन चिट देने वाले जिम्मेदारों से है। अगर एनटीए पाक साफ है, एनटीए का कोई कसूर नहीं है, एनटीए में सब कुछ पारदर्शी है, तो प्राइवेट कोचिंग चलाने वाला कुलकर्णी एनटीए की परीक्षा प्रक्रिया का हिस्सा कैसे बना? अब इस सवाल का जवाब केंद्रीय शिक्षा मंत्री को देना है, क्योंकि एनटीए के गड़बड़ झाले का सबसे बड़ा सबूत लेक्चरर कुलकर्णी है।

0: यूनिवर्सिटी के वही सवाल नीट में आए जो कुलकर्णी ने छात्रों को बताए थे। अब सीबीआई टीम को कुलकर्णी से कई और राज उगलवाने हैं। नीट के प्रश्न पत्र में बायोलॉजी के 90 सवाल भी लीक पेपर से हूबहू मैच हुए, यानी केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सवाल लीक किए गए। तो क्या कुलकर्णी के साथ कई और लोग शामिल हैं? क्या एनटीए की प्रश्न पत्र तैयार करने वाली कमेटी में शामिल कई और एक्सपर्ट पेपर लीक रैकेट से जुड़े हुए हैं? सबसे बड़ा सवाल, कुलकर्णी का गॉडफादर कौन है? पूछताछ के दौरान नीट का पेपर खरीदने वाले मांगीलाल ने कबूल किया है कि पेपर लीक गैंग में कई प्राइवेट कोचिंग सेंटर, एनटीए के बड़े अफसर और कई सफेदपोश शामिल हैं। सवाल यही है कि क्या सीबीआई के हाथ पेपर लीक का सिंडिकेट चलाने वाले मास्टरमाइंड तक पहुंचेंगे? दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ जयपुर से शरद कुमार आज तक।
1: जिस भोजशाला को विद्या की काशी कहा जाता था, उस भोजशाला को एमपी हाईकोर्ट ने प्राचीन संस्कृत अध्ययन केंद्र और सरस्वती मंदिर मानते हुए हिंदू पक्ष के समर्थन में अपना निर्णय सुना दिया। एएसआई की
2: जो बरसों से किया जा रहा संघर्ष था, माँ की मुक्ति और उसके गौरव की पुनर्स्थापना का दिन जो इसका इंतजार किया जा रहा था, वो बहुत नजदीक आ गया है। आज इस भोजशाला को, जो कि वास्तव में सरस्वती का मंदिर था, उसको कानूनी रूप से माँ का मंदिर घोषित हुआ है। ये बहुत ही हर्ष की बात है और हिंदू समाज आज प्रफुल्लित है। आज वो दिल से खुश है कि वर्षों का उसके मेहनत का परिणाम आज सबके सामने आया है।
3: भोजशाला के इस मंदिर में अब सिर्फ मंगलवार को ही पूजा नहीं होगी, हिंदू पक्ष यहाँ रोज पूजा कर पाएगा। अदालत ने माना है कि ये एक मंदिर है, न कि कमाल मौला मस्जिद। इंदौर हाई कोर्ट का ये आदेश हिंदू पक्ष के उन लोगों की जिंदगी का सबसे बड़ा पल है जो वर्षों से इसे लेकर संघर्ष करते रहे।
4: कैसा फैसले को देखते हो और अब कब आप लोग प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रहे हो?
5: बहुत बहुत अच्छा फैसला है। न्यायमूर्ति जो है उनने बहुत अच्छा फैसला दिया, उनका स्वागत करते हैं हम बहुत बहुत। और कई वर्षों के बाद हमारे कई बुजुर्गों ने इस भोजशाला के लिए प्राण दिए हैं, उनका बहुत प्राण इसमें लगे हैं। हमारे ऐसी युवा पीढ़ी जो आज भोजशाला परिसर में खड़ी,
4: अब क्या करेंगे आप?
5: अब यहाँ पर भोजशाला में बहुत ही वाग देवी बहुत जल्द आएगी और विराजमान होगी।
6: यह एक ऐतिहासिक फैसला जो आज उच्च न्यायालय के द्वारा मिला है, ये हिंदू समाज के लिए एक बहुत ही बड़ी जीत है।
3: दशकों से हिंदू पक्ष भोजशाला को मंदिर बताता रहा, इसके लिए उन्होंने 1995 में पहली बार कानूनी लड़ाई शुरू की और अब जाकर जीत हुई। इंदौर हाई कोर्ट ने एएसआई के सर्वे, ऐतिहासिक तथ्यों, गवाहों और परिसर के मौजूद हालात को देखते हुए अपना फैसला सुनाया। ऐलान किया कि भोजशाला में जिस मंदिर को दशकों से कमाल मौला के मकबरे और मस्जिद के तौर पर बताया जाता रहा, वो मस्जिद नहीं बल्कि सरस्वती मंदिर है।
7: वो जो भोजशाला है वहाँ नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, वो राजा भोज का मंदिर है। एक चीज, मुस्लिम चाहे तो एक आवेदन कर सकते हैं राज्य सरकार को, तो राज्य सरकार उनको जगह दे सकती है मस्जिद के लिए। एक चीज स्पष्ट हो गई। दूसरी चीज, एएसआई के अधीन ये संपत्ति दी है, एएसआई चाहे तो उसको रेगुलर रूप से हिंदुओं को दे दे, वहाँ की जो व्यवस्था है वो एएसआई को दी है।
3: साल 1995 में दोनों पक्षों के बीच मामूली विवाद के बाद प्रशासन ने भोजशाला में मंगलवार को पूजा और शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत दी, जिसके बाद ये मामला अदालत में लड़ा जाता रहा। इंदौर हाई कोर्ट के दो जजों की बेंच ने इस विवाद पर फैसला सुनाते हुए कहा, हमने देखा है कि उस जगह पर हिंदू पूजा लगातार होती रही है, हमने पाया है कि उस जगह का ऐतिहासिक साहित्य राजा भोज से जुड़े संस्कृत सीखने के केंद्र के तौर पर इसे स्थापित करता है, इससे धार्मिक देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर होने का पता चलता है, इसलिए उस इलाके का धार्मिक चरित्र भोजशाला माना जाता है जिसमें देवी वाग देवी सरस्वती का मंदिर है।
7: पूरे कमाल मौला जो ये भोजशाला परिसर है,
8: बाहर का जो इधर कमाल मौला
7: नहीं, उसके लिए कुछ नहीं कहा गया, वो तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर में लिखा। कोर्ट ने मौला कमालुद्दीन को ये कहा है कि वो ऑल्टरनेट लैंड के लिए सरकार को प्रत्यावेदन दे सकते हैं और सरकार उसको कंसिडर करती है। मतलब मूल बात यह है कि इस पूरे परिसर को, जो हमारी मांग थी, हमारे हर एक आर्ग्यूमेंट को कोर्ट ने माना है और इसके स्वरूप को एक हिंदू मंदिर का परिसर घोषित किया।
3: अदालत ने अपने आदेश में एएसआई सर्वे रिपोर्ट से मिले सबूतों का हवाला दिया, जिसमें ये बात भी कही गई कि कमाल मौला

0: मस्जिद को बनाने में भोजशाला के प्राचीन अवशेषों का इस्तेमाल किया गया।
1: कि जो ASI है, जो पूरा भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण है, उसकी रिपोर्ट से अन्य साक्ष्य जो रखे गए, जो हमारे द्वारा ऐतिहासिक साक्ष्य रखे गए, और राम मंदिर जजमेंट के समय जो दोनों ही धर्मों के जो कानूनी पहलू रखे गए कि हिंदू लॉ के हिसाब से एक बार जो मंदिर स्थापित हो जाता है वो हमेशा मंदिर रहता है, और मुस्लिम लॉ के हिसाब से भी किसी कब्जा करी हुई जगह पे एक वैलिड मस्जिद नहीं बनाया जा सकता, इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए माननीय न्यायालय ने तय करा कि ये जो जगह है, ये जो मंदिर है, ये भोजशाला एक सरस्वती माँ का मंदिर है।
0: AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भोजशाला के फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसके आए फैसले में बाबरी मस्जिद के फैसले जैसी समानता है कहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट इसे सुलझाएगा और हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करेगा।
2: पूरी अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग मिली, लेकिन वजह सिर्फ ये है कि ASI के तथ्यों को पुख्ता मानकर और उस पे फैसला देना वो कहीं एक हद तक सेटिस्फेक्शन नहीं देता है।
0: लेकिन भोजशाला में हिंदू पक्ष को यकीन है कि हाई कोर्ट के फैसले से अब उनका इंतजार खत्म होगा और वो मंदिर में पूजा पाठ कर पाएंगे।
3: 1005 से 1054 राजा भोज का काल रहा है तो ये न्याय की जीत हुई है जी। बस राजा
4: भोज। लेकिन प्रतिक्रिया आप लोगों की ऐसा नहीं लगता कि सामने वाले को
3: नहीं उनका अधिकार है, कानून ने जो अधिकार दिया है, हमारा तो भारतीय संविधान बहुत विशाल है और बहुत बृहद है।
5: हिंदू समाज का उत्साह है, लंबा संघर्ष रहा है भोजशाला के लिए, अलग अलग समय में अलग अलग लोगों ने इसको इस संघर्ष को जिया है। इस भोजशाला मुक्ति के लिए हमारे 3 कार्यकर्ता पुलिस की गोली से शहीद हुए हैं, आज उनको सच्ची श्रद्धांजलि उन लोगों को है। 44 महिलाएं, धार की महिलाएं इंदौर की जेल में 8 दिन तक बंद रही, कई लोग परिवार सहित जेल में गए, उन सबका त्याग तपस्या समर्पण का आज परिणाम निकला है।
0: अदालत ने 11 मार्च को ASI को भोजशाला परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का आदेश दिया था, जिसके बाद ASI ने 22 मार्च से सर्वेक्षण शुरू किया और 27 जून तक सर्वे का काम चला। 98 दिनों के बाद सर्वे का काम खत्म हुआ और अब अदालत के फैसले ने भोजशाला को मंदिर करार देते हुए यहां पूजा की इजाजत दे दी है। रवीश पाल सिंह, धार, आज तक।
6: खबर पश्चिम बंगाल की, जहां पर नई सरकार के आदेश पर पहली बार जुमे की नमाज सड़क पर होने की कोशिश हुई, लेकिन पुलिस प्रशासन ने लोगों को ऐसा करने से रोक दिया, जिसका विरोध भी हुआ।
7: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते जे।
0: पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद से सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, ये तय हो चुका था। कोलकाता के राजा बाजार में यह हंगामा इसी बदलाव के विरोध की वजह से हो रहा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई वाली सरकार ने सड़क पर धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने कहा है कि सड़क पर कोई भी धार्मिक कार्यक्रम नहीं होगा, मंदिर या फिर मस्जिद कहीं भी तेज आवाज में लाउड स्पीकर नहीं बजेगा। शुक्रवार को जब राजा बाजार में सड़क पर जुमे की नमाज पढ़ने के लिए लोग जमा होते हैं तो उन्हें पुलिस के कड़े रुख के बाद वापस लौटना पड़ा।
8: डबल नमाज होना चाहिए, रास्ता क्लियर होता है तो ता नुकसान है, फिर वोट आएगा। आज ठंडा है, ठंडा तो फिर जाएगा, फिर ठंडा आएगा, ऐसे कानून जब तब के लिए बनेगा।
9: वो नमाज के पढ़ने के लिए तो अंदर से इमाम साहब ऐलान कर दिया, भाई सब मस्जिद में जगह आ जाओ, अगर जरूरत पड़ी दूसरी जमात होगा, दो जमात होगा, हंगामा करने और ये सब करने रोड में पढ़ना बंद कर दो। तब पहली जुमा थोड़ा संभालने में परेशानी हुई, अंदर जुमा से हो जाएगा इंशाल्लाह।
0: कोलकाता पुलिस ने जब सड़क पर नमाज पढ़ने से लोगों को रोका तो उन्होंने उसका विरोध किया। बड़ी तादाद में पुलिस की मौजूदगी के बाद हंगामा हुआ। लेकिन पुलिस ने लोगों को समझाया कि अब ऐसा नहीं हो सकेगा, सड़क पर धार्मिक गतिविधि नहीं हो पाएगी चाहे वो किसी मजहब के हो। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोगों ने पुलिस के मना करने पर हंगामा किया, बाद में पुलिस ने समझा बुझाकर वापस भेजा।
10: आज फर्स्ट जुमा था ये ऑर्डर आने के बाद में, इसलिए लोगों ने कुछ रास्ते पे नमाज जिस तरह से हमेशा पढ़ते आए हैं तो हम लोगों भी ने समझाया और पुलिस भी सपोर्ट किया, जिसके वजह कर पीसफुली तरीके से सब कुछ हो गया। अब आप समझते हैं जब लोग अवेयर नहीं होते हैं तो थोड़ा सा तर्क और वितर्क होता है, तो यही हुआ है, बाकी पीसफुली तरीके से सब कुछ यहाँ पे आज का प्रेयर हो गया।
11: सरकार ने जो जो फैसला लिया है उसके ऊपर हम लोग अमल करने की कोशिश करेंगे, आज लोगों को जो हमारे कौम के लोग उसको भी समझाया जाएगा।
0: पश्चिम बंगाल में 9 मई को शुभेंदु अधिकारी ने शपथ ली थी। इसके बाद नमाज को लेकर हंगामे की ये पहली घटना है।
12: ये सिर्फ मुसलमान धर्म के लिए नहीं था, ये हिंदू धर्म के लिए भी था। कोई भी धर्म के लोग सड़क पे आके अपना पूजा या इबादत नहीं कर सकते, उसके लिए जगह ठीक किया हुआ है, वहां पर वो करें। लेकिन यहाँ कुछ लोग भावुक हो गए थे और उसके बाद वो सड़क पे आ गए, और क्योंकि वो सालों से यहाँ सड़क पे नमाज अदा किया करते थे, तो पुलिस ने जब इन्हें मना किया तो फिर पुलिस के साथ कहीं कहा सुनी हो गई थी, और उसके बाद यहाँ पर भारी तादाद में लोग इकट्ठा हो गए थे। लेकिन बाद में पुलिस फोर्स आई, पुलिस के जो अफसर थे मौजूद, वो लोग उन लोगों ने स्थिति को काबू करने के लिए अलग अलग समय पर बातचीत किया, और 15 से 20 मिनट के अंदर जो स्थिति है उसे पूरी तरीके से काबू कर लिया गया था। और फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सीआरपीएफ को डिप्लॉय किया गया, सेंट्रल फोर्सेज पश्चिम बंगाल में सड़क के दोनों तरफ सीआरपीएफ को डिप्लॉय रखा गया है, और 15 से 20 मिनट के अंदर जो स्थिति है उसे पूरी तरीके से काबू कर लिया गया था। और फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सीआरपीएफ को डिप्लॉय किया गया, सेंट्रल फोर्सेज पश्चिम बंगाल में सड़क के दोनों तरफ सीआरपीएफ को डिप्लॉय रखा गया है।
0: बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद ही उसके नेताओं ने ये कहना शुरू कर दिया था कि वो सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे। इसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने अदालती आदेशों और सार्वजनिक व्यवस्था का हवाला देते हुए सड़क पर धार्मिक आयोजन रोकने के निर्देश दे दिए, ताकि सड़कों को ब्लॉक करने की वजह से लोगों को परेशानी न हो।
6: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

नीट पेपर लीक कांड में सीबीआई का बड़ा एक्शन, मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी पुणे से गिरफ्तार, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का ऐलान, 21 जून को नीट का री एग्जाम। धार भोजशाला विवाद में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत, हाईकोर्ट ने माना सरस्वती मंदिर, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया स्वागत, ओवैसी बोले अयोध्या जैसा निर्णय। विदेश यात्रा पर टैक्स लगाने की खबरों को पीएम मोदी ने किया खारिज, बताया अफवाह, कहा ऐसे प्रतिबंधों का सवाल नहीं। टीएमसी के सांसद अभिषेक बैनर्जी के विरुद्ध कोलकाता में एफआईआर, विधानसभा चुनाव में भड़काऊ भाषण देने, अमित शाह को धमकाने का आरोप, 5 धाराओं में केस। भारत और यूएई में तेल गैस समेत कई महत्वपूर्ण समझौते, अबुधाबी से $5 अरब निवेश पर करार, आज पीएम मोदी के नीदरलैंड्स दौरे पर रिश्तों को मिलेगी नई उड़ान, मोदी पहुंचे नीदरलैंड्स। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध का असर अब हमारे देश भारत पर भी पड़ना शुरू हो गया। केंद्र सरकार ने शुक्रवार यानी कि आज पूरे देश में पेट्रोल और डीजल के दाम 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए। इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर में सीएनजी के दाम में भी 2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी कर दी गई। ऐसे में बढ़े हुए दामों का असर अब आपकी हमारी जेब पर होने लगा है।

0: महंगाई का बम आपकी जेब पर कैसे फटा? अमेरिका ईरान युद्ध की चिंगारी घर घर तक कैसे आई? हुर्मुज में अमेरिका और ईरान भिड़ रहे हैं, महंगाई का बम फोड़ रहे हैं। तेल, गैस, दूध सब पर छाई महंगाई, जा रही है गाढ़ी कमाई। लड़े कोई, भरे कोई, युद्ध रुकेगा नहीं, महंगाई घटेगी नहीं।
1: दुर्भाग्य से जिस क्षेत्र से दुनिया के बड़े हिस्से को तेल मिलता है, आज वही क्षेत्र संघर्ष और युद्ध की स्थिति में उलझा हुआ।
0: हिंट तो पीएम मोदी ने 5 दिन पहले ही दे दी थी, लेकिन असली महंगाई का बम अब फूटा है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें सीधे 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी गई हैं, और इस तरह से पेट्रोल नई दिल्ली में 97.77 रुपए प्रति लीटर, कोलकाता में 108.70 रुपए प्रति लीटर, मुंबई में 106.68 रुपए प्रति लीटर, नोएडा में 97.78 रुपए प्रति लीटर, जयपुर में 107.97 रुपए प्रति लीटर, पटना में 108.55 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है। जबकि डीजल पर भी 3.25 रुपए प्रति लीटर बढ़ने से नई दिल्ली में डीजल 90.67 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है, कोलकाता 95.13 रुपए प्रति लीटर, मुंबई 93.14 रुपए प्रति लीटर, नोएडा 91.02 रुपए प्रति लीटर, जयपुर 93.23 रुपए प्रति लीटर और पटना 94.63 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है। बड़ी बात यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का हल अभी तक नहीं निकला है। ना तो ईरान झुकने को तैयार है और ना ही अमेरिका पीछे हटने को तैयार है। ईरान और अमेरिका के बीच भले ही युद्ध विराम चल रहा हो, लेकिन दोनों देशों के बीच संपूर्ण युद्ध विराम को लेकर अभी तक कोई डील नहीं हुई है, क्योंकि ईरान अपना परमाणु प्रोग्राम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और अमेरिका कह रहा है कि जंग तभी बंद होगी जब ईरान अपना परमाणु प्रोग्राम और एनरिच्ड यूरेनियम पूरी तरह से छोड़ेगा। एक तो ईरान अमेरिका का अड़ियल रवैया, ऊपर से हुर्मुज स्ट्रेट में गुजरात का एक और मालवाहक जहाज डूब गया। हाजी अली नाम का जहाज 13 मई की सुबह ओमान के समुद्री क्षेत्र से गुजर रहा था, तभी इससे कोई ड्रोन या मिसाइल जैसा हथियार टकरा गया। हादसे के बाद जहाज में आग लग गई, हालांकि ओमान कोस्ट गार्ड ने सभी 14 क्रू मेंबर्स को बचा लिया, क्योंकि अभी ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 107 से 108 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल चल रही है। कच्चे तेल से बनने वाले उत्पादों की बात करें तो गैसोलीन, पेट्रोल, डीजल और हीटिंग तेल, जेट इंजन, केरोसिन, ल्यूब्रिकेटिंग तेल और डामर इसी से बनता है। सरकार की तरफ से पहले ही माहौल बना दिया जाता है कि कच्चा तेल महंगा है, तेल गैस लाने में दिक्कत हो रही है, पेट्रोलियम कंपनियां घाटा झेल रही हैं, ताकि पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े तो जनता ज्यादा हायतौबा न मचाए।
2: महंगाई की मार तो है ही, खासकर मिडिल क्लास आदमी पे।
3: हमें नहीं समझ आ रही भी, हाँ सरकार कर क्या रही है।
4: दूसरे देशों में जो बढ़ोतरी हुई है उससे तो बहुत ही कम है। मोदी साहब को सपोर्ट करना चाहिए।
5: जो नॉर्मल फैमिली है उसमें 3 रुपए का तो बहुत ज्यादा बजट पे फर्क पड़ेगा।
6: रेट तो अभी और भी बढ़ेंगे, बट ठीक है, मोदी जी ने कुछ सोच रखा होगा, मोदी जी के साथ ही खड़े हैं।
7: पता नहीं सरकार क्या करता है।
3: वो जो बढ़ा है ठीक है, और बढ़ेगा तो कुछ नहीं होगा। देश में मोदी है तो सब मुमकिन है।
8: हाँ, ये पैसे गलत करा है इन्होंने, पेट्रोल पे पैसे बढ़ाए हैं।
9: नुकसान है और किसका नुकसान है, बस जनता पे ही असर पड़ लिया, किस पर पड़ लिया।
0: लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े तो दिल्ली एनसीआर के लोगों पर महंगाई की एक और मार पड़ी है। शुक्रवार सुबह पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के साथ ही सीएनजी की कीमतों में भी 2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी कर दी गई है, जिससे आम लोगों का बजट और बिगड़ गया है। अब सीएनजी के दाम दिल्ली में 79.09 रुपए प्रति किलो, नोएडा में 87.70 रुपए प्रति किलो, गुरुग्राम में 84.12 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, दूध के दामों में 2 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। कंपनी का कहना है कि उत्पादन लागत बढ़ने और बाजार की परिस्थितियों के चलते ये कदम उठाना पड़ा है। जबकि घरेलू गैस सिलेंडर से लेकर कमर्शियल सिलेंडर और छोटू सिलेंडर यानी 5 किलो के सिलेंडर के दाम पहले ही बढ़ा दिए गए हैं। इधर महंगाई का बम फूटा, उधर कांग्रेस ने निशाना साध दिया। सोना भी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से महंगा हो गया है। अब कांग्रेस कह रही है कि चुनाव खत्म और मोदी की वसूली शुरू।
10: अमृत काल में आपका स्वागत है, और इस अमृत काल में महंगाई मैन अपना चाबुक चला रहे हैं, मोदी जी आपसे वसूली कर रहे हैं। आपकी जेब पर डाका डाल रहे हैं। जब आप पर महंगाई का चाबुक चलाया जा रहा है, तब दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जो अपने लोगों को राहत दे रहे हैं।
11: 3 रुपए पे इतना ज्यादा हाइक तो सरकार को कोसने के अलावा कुछ आता है?
0: जबकि सरकार का कहना है कि कच्चे तेल की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव के बावजूद 2022 से अब तक ईंधन की कीमतें काफी हद तक स्थिर बनी हुई हैं और सरकार ने पूरे देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित की है। लेकिन सच ये भी है कि अप्रैल में थोक महंगाई 2 गुने से ज्यादा बढ़कर 8.30% तक पहुँच गई है। मार्च में ये 3.88% पर थी। अप्रैल में महंगाई 42 महीने में सबसे ज्यादा है। अक्टूबर 2022 में ये 8.39% पर पहुंच गई थी। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने थोक महंगाई के आंकड़े जारी किए। अब आपको बता देते हैं कि डीजल के दाम बढ़ने से आम आदमी की जेब पर महंगाई बम कैसे फूटेगा। माल भाड़ा बढ़ेगा और ट्रक और टेम्पो का किराया बढ़ जाएगा, जिससे दूसरे राज्यों से आने वाली सब्जियां, फल और राशन महंगे हो जाएंगे। खेती की लागत बढ़ेगी। ट्रैक्टर और पंपिंग सेट चलाने के लिए किसानों को ज्यादा खर्च करना होगा, जिससे अनाज की लागत बढ़ेगी। बस, ऑटो का किराया, सार्वजनिक परिवहन और स्कूल बसों के किराए में भी इजाफा देखने को मिल सकता है। जिस तरह से तेल कंपनियां माहौल बना रही हैं कि पेट्रोल डीजल पर 25 से 30 रुपए प्रति लीटर का घाटा हो रहा है, ऐसे में एक्सपर्ट ये भी मान रहे हैं कि अपना घाटा पूरी तरह खत्म करने और ब्रेक इवन यानी नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति में आने के लिए तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल के दामों में और इजाफा कर सकती हैं। आज तक ब्यूरो।
12: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले 10 मई को और फिर 11 मई को हैदराबाद से वडोदरा तक आकर 2 बार देश से अपील की। कहा कि तेल बचाइए क्योंकि ये संकट बड़ा है, बचाएंगे तभी बच पाएंगे। और इसके बाद देश भर में विभिन्न केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्री सब अपना काफिला कम करने में लग गए। कोई स्कूटर से चलने लगा, कोई मेट्रो से चलने लगा। लेकिन इस बीच एक मंत्री ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की अपील से बड़ा उनका अपना काफिला है।
13: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें।
14: लेकिन मंत्री जी को तो लगता है कि नसीहत चूल्हे में जाए, बस भौकाल ना घटने पाए। वो मंत्री जिन्होंने इधर शपथ ली और उधर तय कर लिया कि देश पर जनता पर जो बोझ पड़ता है पड़े, बस उनके काफिले की गाड़ी ना घटे। वो मंत्री जिन्होंने प्रधानमंत्री के बाद मुख्यमंत्री की भी बात एक कान से सुनी दूसरे से निकाल दी।
15: देश का पैसा बचाना है और देश का पैसा बचा करके इस संकट के, इस वैश्विक संकट से हम अपने देश को बाहरने का काम करेंगे।
14: लेकिन प्रधानमंत्री की अपील, मुख्यमंत्री की दलील इन सबसे बड़ी निकली। उत्तर प्रदेश में नए नवेले बनाए गए मंत्री हंसराज विश्वकर्मा की लाल बत्ती पाने वाली वीआईपी फील। मंत्री जी का नाम हंसराज विश्वकर्मा, नए नए राज्य मंत्री बने हैं, जिसकी कामना में न जाने कितनी परिक्रमा काशी से लखनऊ तक की होगी। मंत्री पद मिला तो नया ऑफिस मिला तो नई चकाचक कुर्सियां मिली। मोदी योगी का आभार करके मंत्री हंसराज ने भरोसा दिया, बस अब से हर समस्या का समाधान करूंगा।
16: उत्तर प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री आदरणीय योगीनाथ जी और वाराणसी के सांसद, देश के सबसे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। निश्चित तौर पर इतना से अच्छा कोशिश करूंगा कि इस कार्यालय से जितने लोगों का कहीं भी कोई किसी प्रकार का उनको समस्या हो तो समस्या का बकायदे जो है उसका समाधान किया जाए।
14: लखनऊ से समाधान की बात करके मंत्री हंसराज विश्वकर्मा का काफिला वाराणसी पहुंचा। तब तक प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की अपीलें हवा हो चुकी थी। दर्जनों गाड़ियां लेकर मंत्री का काफिला पहुंचता है, लंबा जाम लगा मिलता है। हद तब हो जाती है जब बुलडोजर तक लाकर नए नए मंत्री पद पर विराजे हंसराज विश्वकर्मा पर समर्थक फूल बरसा देते हैं। ऐसा जाम काशी की सड़कों पर लगा जिसमें अपना काफिला लगाकर तो तेल मंत्री और उनके समर्थक फूंकते ही रहे। आम आदमी जो प्रधानमंत्री की सलाह सुनकर कारपूल करके या दोपहिया वाहन से निकला होगा, उसका भी तेल फुकवा दिया। जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद महंगाई की आग की तपिश महसूस कर रहा है।
17: जेब पर बोझ तो पहले से ही है, देख रहे हैं भरी दोपहरी में हम लोग परेशान चल रहे हैं, अपना जॉब चला रहे हैं उसमें और इजाफा ये लोग कर दिए हैं।
18: महंगाई पे जोर आ रहा है,
19: मुश्किल तो होगा।
20: बजट गड़बड़ाएगा
21: भैया,
18: महंगाई बढ़ेगी।
19: ये जो महंगाई है हम लोग जेब के ऊपर ज्यादा ही पड़ता जा रहा है, क्योंकि हम लोगों की सैलरी तो लिमिटेड है।
14: मतलब जनता की जेब महंगाई से जलती रहे और मंत्री हंसराज विश्वकर्मा पीएम की अपील नहीं सुनते तो विपक्ष सवाल उठाता है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने सोशल मीडिया पर डाला कि काशी की सड़कों पर कुछ महीनों के मेहमान मंत्री का अहंकार देखिए, सैकड़ों गाड़ियों का काफिला, धुआं उड़ाती सत्ता की हनक और घंटों जाम में फंसी काशी की जनता। खबरदार करता सवाल समझिए, जब मध्य प्रदेश में पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष सौभाग्य सिंह सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ उज्जैन से भोपाल पहुंचे, पीएम की अपील को मानने से इनकार कर दिया तो उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी हुआ। पाठ्य पुस्तक निगम के दफ्तर जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। क्या अब यूपी में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में ही मोदी की अपील को धुआं करने वाले नए मंत्री हंसराज विश्वकर्मा को पार्टी नोटिस जारी करेगी? क्या इन पर भी कार्रवाई होगी?
12: और अब बात नीट पेपर लीक पर हुए कबूलनामे की। पेपर लीक की कड़ियों को आपस में जोड़ने के लिए जांच टीम गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इस कड़ी में पेपर लीक से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण किरदार जांच टीम की गिरफ्त में। किरदार का नाम है लेक्चरर पीवी कुलकर्णी, जिसे सीबीआई ने पेपर लीक के आरोप में गिरफ्तार किया और यही मुख्य आरोपी है।
0: नाम लेक्चरर पीवी कुलकर्णी, काम एनटीए का हिस्सा, आरोप नीट का पेपर लीक। पेपर लीक कांड में पुणे के लेक्चरर पीवी कुलकर्णी की आज गिरफ्तारी हुई। दावा यही है कि एनटीए की तरफ से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल पीवी कुलकर्णी ने नीट का पेपर लीक किया। केमिस्ट्री के लेक्चरर कुलकर्णी ने पेपर लीक कैसे किया, इसका खुलासा कैसे हुआ, आपको ये भी थोड़ी देर में बताएंगे। उससे पहले समझिए कुलकर्णी की गिरफ्तारी ने कैसे एनटीए की वर्किंग स्टाइल को कटघरे में खड़ा कर दिया है। क्योंकि कुलकर्णी प्राइवेट कोचिंग चलाता था, इसके बावजूद एनटीए ने उसे परीक्षा की प्रक्रिया का हिस्सा बनाया। सबसे बड़ा सवाल यही है कि एनटीए ने प्राइवेट कोचिंग चलाने वाले कुलकर्णी को परीक्षा की प्रक्रिया से क्यों जोड़ा? प्राइवेट कोचिंग चलाने वाले कुलकर्णी का एनटीए में गॉडफादर कौन है? क्यों नीट की परीक्षा से ठीक पहले एनटीए ने अभिषेक सिंह को डीजी बनाया? क्या पेपर लीक के सिंडिकेट में एनटीए के कई अफसर मिले हुए हैं? क्या एनटीए जैसी संस्था के अंदर पेपर माफियाओं की जड़ें बहुत गहरी हैं? एनटीए सवालों के घेरे में है, एनटीए की वर्किंग स्टाइल कटघरे में है, लेकिन पेपर लीक कांड के चलते परीक्षा रद्द होने के करीब 48 घंटे बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने पहली बार चुप्पी तोड़ी। 13 मई को धर्मेंद्र प्रधान पेपर लीक के सवालों को टाल गए थे, लेकिन 48 घंटे बाद मीडिया के सामने आए, नीट पेपर लीक की जिम्मेदारी ली और साफ गोई से एनटीए को क्लीन चिट दे दी।
20: फिर सामाजिक चुनौती है, राधाकृष्ण कमेटी को पूरा पालन करने के उपरांत भी उस कमांड चेन में कहीं ना कहीं ब्रीच हुई है, इसको हम स्वीकार करते हैं। अभी तो एनटीए बहुत योग्य व्यक्ति के हाथ में है, हमारे सचिव की बहुत अनुभव भी उस विषय में है। मैं मानता हूँ हमें एनटीए को सुप्रीम कोर्ट की आदेश कारण एनटीए बनी है। एनटीए हर एक साल 1 करोड़ बच्चों की एग्जामिनेशन कराती है अमूमन। एनटीए और निर्भुल हो, एनटीए में जीरो एरर हो, जीरो यानी जीरो एरर हो, ये हमारी दायित्व है।
0: अब सीधा सवाल एनटीए को क्लीन चिट देने वाले जिम्मेदारों से है। अगर एनटीए पाक साफ है, एनटीए का कोई कसूर नहीं है, एनटीए में सब कुछ पारदर्शी है, तो प्राइवेट कोचिंग चलाने वाला कुलकर्णी एनटीए की परीक्षा प्रक्रिया का हिस्सा कैसे बना? अब इस सवाल का जवाब केंद्रीय शिक्षा मंत्री को देना है, क्योंकि एनटीए के गड़बड़ झाले का सबसे बड़ा सबूत लेक्चरर कुलकर्णी है। ऐसा क्यों, इसे भी समझिए। शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि पीवी कुलकर्णी ने नीट का पेपर लीक किया जो एनटीए से जुड़ा हुआ था। 3 मई को नीट की परीक्षा हुई, लेकिन अप्रैल 2026 के आखिरी हफ्ते में कुलकर्णी ने पेपर लीक की आरोपी मनीषा बागबारे की मदद से कुछ छात्रों को जुटाया जो नीट की परीक्षा देने वाले थे। कुलकर्णी ने पुणे स्थित अपने घर पर छात्रों के लिए कोचिंग क्लास चलाई। क्लास में कुलकर्णी ने छात्रों को सवाल और उसके जवाब बताए। ये वही सवाल थे जो नीट के पेपर में सेट किए गए थे। कोचिंग में मौजूद छात्रों ने सवाल और जवाब को अपनी कॉपी में लिखा। पेपर लीक की जांच में पाया गया कि केमिस्ट्री के वही सवाल 3 मई 2026 को हुए नीट यूजी परीक्षा के असली पेपर से पूरी तरह मेल खाते हैं। कुलकर्णी केमिस्ट्री का लेक्चरर है और नीट के सभी 45 सवाल लीक पेपर से मैच करते हैं। ये संयोग नहीं बल्कि पेपर लीक गैंग का प्रयोग है। केमिस्ट्री के वही सवाल नीट में आए जो कुलकर्णी ने छात्रों को बताए थे। अब सीबीआई टीम को कुलकर्णी से कई और राज उगलवाने हैं। नीट के प्रश्न पत्र में बायोलॉजी के 90 सवाल भी लीक पेपर से हूबहू मैच हुए, यानी केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सवाल लीक किए गए। तो क्या कुलकर्णी के साथ कई और लोग शामिल हैं? क्या एनटीए की प्रश्न पत्र तैयार करने वाली कमेटी में शामिल कई और एक्सपर्ट पेपर लीक रैकेट से जुड़े हुए हैं? सबसे बड़ा सवाल, कुलकर्णी का गॉडफादर कौन है? पूछताछ के दौरान नीट का पेपर खरीदने वाले मांगीलाल ने कबूल किया है कि पेपर लीक गैंग में कई प्राइवेट कोचिंग सेंटर, एनटीए के बड़े अफसर और कई सफेदपोश शामिल हैं। सवाल यही है कि क्या सीबीआई के हाथ पेपर लीक का सिंडिकेट चलाने वाले मास्टरमाइंड तक पहुंचेंगे? दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ जयपुर से शरद कुमार आज तक।
12: जिस भोजशाला को विद्या की काशी कहा जाता था, उस भोजशाला को एमपी हाईकोर्ट ने प्राचीन संस्कृत अध्ययन केंद्र और सरस्वती मंदिर मानते हुए हिंदू पक्ष के समर्थन में अपना निर्णय सुना दिया। एएसआई की
18: बरसों से किया जा रहा संघर्ष था, माँ की मुक्ति और उसके गौरव की पुनर्स्थापना का दिन जो इसका इंतजार किया जा रहा था वो बहुत नजदीक आ गया है। आज इस भोजशाला को, जो कि वास्तव में सरस्वती का मंदिर था, उसको कानूनी रूप से माँ का मंदिर घोषित हुआ है। ये बहुत ही हर्ष की बात है और हिंदू समाज आज प्रफुल्लित है। आज वो दिल से खुश है कि वर्षों का उसके मेहनत का परिणाम आज सबके सामने आया है।
21: भोजशाला के इस मंदिर में अब सिर्फ मंगलवार को ही पूजा नहीं होगी, हिंदू पक्ष यहाँ रोज पूजा कर पाएगा। अदालत ने माना है कि ये एक मंदिर है, न कि कमाल मौला मस्जिद। इंदौर हाई कोर्ट का ये आदेश हिंदू पक्ष के उन लोगों की जिंदगी का सबसे बड़ा पल है जो वर्षों से इसे लेकर संघर्ष करते रहे।
22: ऐसा फैसले को देखते हो और अब कब आप लोग प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रहे हो?
23: बहुत बहुत अच्छा फैसला है, न्यायमूर्ति जो है उनने बहुत अच्छा फैसला दिया, उनका स्वागत करते हैं हम बहुत बहुत। और कई वर्षों के बाद हमारे कई बुजुर्गों ने इस बहुत साल के लिए प्राण दिए हैं, उनका बहुत प्राण इसमें लगे हैं। हमारे ऐसी युवा पीढ़ी जो आज बहुत साला परिसर में खड़ी,
22: अब क्या करेंगे आप?
23: अब यहाँ पर बहुत साला में बहुत ही वाग देवी बहुत जल्द आएगी और विराजमान होगी।
24: यह एक ऐतिहासिक फैसला जो आज उच्च न्यायालय के द्वारा मिला है, ये हिंदू समाज के लिए एक बहुत ही बड़ी जीत है।
21: दशकों से हिंदू पक्ष भोजशाला को मंदिर बताता रहा, इसके लिए उन्होंने 1995 में पहली बार कानूनी लड़ाई शुरू की और अब जाकर जीत हुई। इंदौर हाई कोर्ट ने एएसआई के सर्वे, ऐतिहासिक तथ्यों, गवाहों और परिसर के मौजूद हालात को देखते हुए अपना फैसला सुनाया। ऐलान किया कि भोजशाला में जिस मंदिर को दशकों से कमाल मौला के मकबरे और मस्जिद के तौर पर बताया जाता रहा, वो मस्जिद नहीं बल्कि सरस्वती मंदिर है।
25: वो जो भोजशाला है वहाँ नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, वो राजा भोज का मंदिर है। एक चीज, मुस्लिम चाहे तो एक आवेदन कर सकते हैं राज्य सरकार को, तो राज्य सरकार उनको जगह दे सकती है मस्जिद के लिए। एक चीज स्पष्ट हो गई। दूसरी चीज, एएसआई के अधीन ये संपत्ति दी है, एएसआई चाहे तो उसको रेगुलर रूप से हिंदुओं को दे दे, वहाँ की जो व्यवस्था है वो एएसआई को दी है।
21: साल 1995 में दोनों पक्षों के बीच मामूली विवाद के बाद प्रशासन ने भोजशाला में मंगलवार को पूजा और शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत दी, जिसके बाद ये मामला अदालत में लड़ा जाता रहा। इंदौर हाई कोर्ट के दो जजों की बेंच ने इस विवाद पर फैसला सुनाते हुए कहा, हमने देखा है कि उस जगह पर हिंदू पूजा लगातार होती रही है, हमने पाया है कि उस जगह का ऐतिहासिक साहित्य राजा भोज से जुड़े संस्कृत सीखने के केंद्र के तौर पर इसे स्थापित करता है, इससे धार्मिक देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर होने का पता चलता है, इसलिए उस इलाके का धार्मिक चरित्र भोजशाला माना जाता है जिसमें देवी वाग देवी सरस्वती का मंदिर है।
25: पूरे कमाल मौला जो ये भोजशाला परिसर है,
26: बाहर का जो इधर कमाल मौला
25: था, नहीं उसके लिए कुछ नहीं कहा गया, वो तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर में नहीं था। कोर्ट ने मौला कमालुद्दीन को ये कहा है कि वो ऑल्टरनेट लैंड के लिए सरकार को प्रत्यावेदन दे सकते हैं और सरकार उसको कंसिडर करती है। मतलब मूल बात यह है कि इस पूरे परिसर को, जो हमारी मांग थी, हमारे हर एक आर्ग्यूमेंट को कोर्ट ने माना है। इस पूरे परिसर को, जो हमारी मांग थी, हमारे हर एक आर्ग्यूमेंट को कोर्ट ने माना है और इसके स्वरूप को एक हिंदू मंदिर का परिसर घोषित किया।
21: अदालत ने अपने आदेश में एएसआई सर्वे रिपोर्ट से मिले सबूतों का हवाला दिया।
25: इस पूरे परिसर को, जो हमारी मांग थी, हमारे हर एक आर्ग्यूमेंट को कोर्ट ने माना है और इसके स्वरूप को एक हिंदू मंदिर का परिसर घोषित
21: किया। अदालत ने अपने आदेश में ASI सर्वे रिपोर्ट से मिले सबूतों का हवाला दिया, जिसमें ये बात भी कही गई कि कमाल मौला मस्जिद को बनाने में बोधशाला के प्राचीन अवशेषों का इस्तेमाल किया गया।
25: कि जो ASI है, जो पूरा भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण है, उसकी रिपोर्ट से अन्य साक्ष्य जो रखे गए, जो हमारे द्वारा ऐतिहासिक साक्ष्य रखे गए, और राम मंदिर जजमेंट के समय जो दोनों ही धर्मों के जो कानूनी पहलू रखे गए कि हिंदू लॉ के हिसाब से एक बार जो मंदिर स्थापित हो जाता है वो हमेशा मंदिर रहता है, और मुस्लिम लॉ के हिसाब से भी किसी कब्जा करी हुई जगह पे एक वैलिड मस्जिद नहीं बनाया जा सकता, इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए माननीय न्यायालय ने तय करा कि ये जो जगह है, ये जो मंदिर है, ये बोधशाला एक सरस्वती माँ का मंदिर है।
21: AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बोधशाला के फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसके आए फैसले में बाबरी मस्जिद के फैसले जैसी समानता है कहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट इसे सुलझाएगा और हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करेगा।
1: पूरी अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग मिली, लेकिन वजह सिर्फ ये है कि ASI के तथ्यों को पुख्ता मानकर और उस पे फैसला देना वो कहीं एक हद तक सेटिस्फेक्शन नहीं देता है।
21: लेकिन बोधशाला में हिंदू पक्ष को यकीन है कि हाई कोर्ट के फैसले से अब उनका इंतजार खत्म होगा और वो मंदिर में पूजा पाठ कर पाएंगे।
2: 1005 से 1054 राजा भोज का काल रहा है, तो ये न्याय की जीत हुई है जी। बस राजा,
22: लेकिन प्रतिक्रिया आप लोगों की ऐसा नहीं लगता कि सामने वाले को
2: नहीं उनका अधिकार है, कानून ने जो अधिकार दिया है, हमारा तो भारतीय संविधान बहुत विशाल है और बहुत बृहद है।
3: हिंदू समाज का उत्साह है, लंबा संघर्ष रहा है बोधशाला के लिए, अलग अलग समय में अलग अलग लोगों ने इसको इस संघर्ष को जिया है। इस बोधशाला मुक्ति के लिए हमारे 3 कार्यकर्ता पुलिस की गोली से शहीद हुए हैं, आज उनको सच्ची श्रद्धांजलि उन लोगों को है। 44 महिलाएं, धार की महिलाएं इंदौर की जेल में 8 दिन तक बंद रही, कई लोग परिवार सहित जेल में गए, उन सबका त्याग तपस्या समर्पण का आज परिणाम निकला है।
21: अदालत ने 11 मार्च को ASI को बोधशाला परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का आदेश दिया था, जिसके बाद ASI ने 22 मार्च से सर्वेक्षण शुरू किया और 27 जून तक सर्वे का काम चला। 98 दिनों के बाद सर्वे का काम खत्म हुआ और अब अदालत के फैसले ने बोधशाला को मंदिर करार देते हुए यहां पूजा की इजाजत दे दी है। रवीश पाल सिंह, धार, आज तक।
12: बोधशाला को मंदिर घोषित करने के इंदौर हाईकोर्ट के बड़े निर्णय पर ओवैसी ने सवाल उठाया, कहा कि इस निर्णय में बाबरी मस्जिद जैसे निर्णय की समानताएं हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसे सुलझाएगा, हाईकोर्ट के निर्णय को रद्द करेगा।
4: ASI ने 1951 में और 1952 में ये क्लैरिफिकेशन दे चुकी है कि ये मस्जिद है, और उस वक्त उन्होंने ASI ने रिजेक्ट किया था इसको कि जो वहां पर भोज उत्सव मनाना चाहते थे। 51 और 52 का ASI के ऑर्डर है। कोर्ट ने, जैसा मैंने भी कहा, 1935 के धार स्टेट एग्जीक्यूटिव को, स्टेट गजट को नजरअंदाज कर दिया, 1985 के वफ रजिस्ट्रेशन को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया, और जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको भी उन्हें नजरअंदाज कर दिया। और एक और वजह है ये फैसला जो एरोनियस और गलत है, मुस्लिम साइड ने ये आर्ग्यू किया था कि जो PIL दाखिल की गई थी, रिट पिटीशन।
12: खबर पश्चिम बंगाल की, जहां पर नई सरकार के आदेश पर पहली बार जुमे की नमाज सड़क पर होने की कोशिश हुई, लेकिन पुलिस प्रशासन ने लोगों को ऐसा करने से रोक दिया, जिसका विरोध भी हुआ।
5: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते थी जे।
21: पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद से सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, ये तय हो चुका था। कोलकाता के राजा बाजार में हंगामा इसी बदलाव के विरोध की वजह से हो रहा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई वाली सरकार ने सड़क पर धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने कहा है कि सड़क पर कोई भी धार्मिक कार्यक्रम नहीं होगा, मंदिर या फिर मस्जिद कहीं भी तेज आवाज में लाउड स्पीकर नहीं बजेगा। शुक्रवार को जब राजा बाजार में सड़क पर जुमे की नमाज पढ़ने के लिए लोग जमा होते हैं, तो उन्हें पुलिस के कड़े रुख के बाद वापस लौटना पड़ा।
6: डबल नमाज होना चाहिए, रास्ता क्लियर होता है तो नुकसान है। फिर वोट आएगा। आज ठंडा है, ठंडा तो फिर जाएगा, फिर ठंडा आएगा। ऐसे कानून जब तब चलिए बनेगा।
7: वो नमाज के पढ़ने के लिए तो अंदर से इमाम साहब ऐलान कर दिया, भाई सब मस्जिद में जगह आ जाओ, अगर जरूरत पड़ी दूसरी जमात होगा, दो जमात होगा, हंगामा करने और ये सब करने, रोड में पढ़ना बंद कर दो। तब पहली जुमा थोड़ा संभालने में परेशानी हुई, अंदर जुमा से हो जाएगा इंशाल्लाह।
21: कोलकाता पुलिस ने जब सड़क पर नमाज पढ़ने से लोगों को रोका तो उन्होंने उसका विरोध किया। बड़ी तादाद में पुलिस की मौजूदगी के बाद हंगामा हुआ। लेकिन पुलिस ने लोगों को समझाया कि अब ऐसा नहीं हो सकेगा, सड़क पर धार्मिक गतिविधि नहीं हो पाएगी, चाहे वो किसी मजहब के हो। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोगों ने पुलिस के मना करने पर हंगामा किया, बाद में पुलिस ने समझा बुझाकर वापस भेजा।
8: आज फर्स्ट जुमा था ये ऑर्डर आने के बाद में, इसलिए लोगों ने कुछ रास्ते पे नमाज इस तरह से हमेशा पढ़ते आए हैं, तो हम लोगों ने समझाया और पुलिस भी सपोर्ट किया, जिसके वजह कर पीसफुली तरीके से सब कुछ हो गया। अब आप समझते हैं जब लोग अवेयर नहीं होते हैं तो थोड़ा सा तर्क और वितर्क होता है, तो यही हुआ है, बाकी पीसफुली तरीके से सब कुछ यहाँ पे आज का प्रेयर हो गया।
7: सरकार ने जो जो फैसला लिया है उसके ऊपर हम लोग अमल करने की कोशिश करेंगे, आज लोगों को जो हमारे कौम के लोग उसको भी समझाया जाएगा।
21: पश्चिम बंगाल में 9 मई को शुभेंदु अधिकारी ने शपथ ली थी, इसके बाद नमाज को लेकर हंगामे की ये पहली घटना है।
9: ये सिर्फ मुसलमान धर्म के लिए नहीं था, ये हिंदू धर्म के लिए भी था। कोई भी धर्म के लोग सड़क पे आके अपना पूजा या इबादत नहीं कर सकते, उसके लिए जगह ठीक किया हुआ है वहां पर वो करें। लेकिन यहाँ कुछ लोग भावुक हो गए थे और उसके बाद वो सड़क पे आ गए, और क्योंकि वो सालों से यहाँ सड़क पे नमाज अदा किया करते थे, तो पुलिस ने जब इन्हें मना किया तो फिर पुलिस के साथ कहीं कहा सुनी हो गई थी, और उसके बाद यहाँ पर भारी तादाद में लोग इकट्ठा हो गए थे। लेकिन बाद में पुलिस फोर्स आई, पुलिस के जो अफसर थे मौजूद, वो लोग उन लोगों ने स्थिति को काबू करने के लिए अलग अलग समय पर बातचीत किया, और 15 से 20 मिनट के अंदर जो स्थिति है उसे पूरी तरीके से काबू कर लिया गया था। और फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सीआरपीएफ को डिप्लॉय किया गया, सेंट्रल फोर्सेज पश्चिम बंगाल में सड़क के दोनों तरफ सीआरपीएफ को डिप्लॉय रखा गया है।
21: बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद ही उसके नेताओं ने ये कहना शुरू कर दिया था कि वो सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे। इसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने अदालती आदेशों और सार्वजनिक व्यवस्था का हवाला देते हुए सड़क पर धार्मिक आयोजन रोकने के निर्देश दे दिए, ताकि सड़कों को ब्लॉक करने की वजह से लोगों को परेशानी न हो।
12: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

नीट पेपर लीक कांड में सीबीआई का बड़ा एक्शन, मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी पुणे से गिरफ्तार। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का ऐलान, 21 जून को नीट का री एग्जाम। धार भोजशाला विवाद में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत, हाईकोर्ट ने माना सरस्वती मंदिर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया स्वागत, ओवैसी बोले अयोध्या जैसा निर्णय। विदेश यात्रा पर टैक्स लगाने की खबरों को पीएम मोदी ने किया खारिज, बताया अफवाह, कहा ऐसे प्रतिबंधों का सवाल नहीं। टीएमसी के सांसद अभिषेक बैनर्जी के विरुद्ध कोलकाता में एफआईआर, विधानसभा चुनाव में भड़काऊ भाषण देने, अमित शाह को धमकाने का आरोप, 5 धाराओं में केस। भारत और यूएई में तेल गैस समेत कई महत्वपूर्ण समझौते, अबुधाबी से $5 अरब निवेश पर करार, आज पीएम मोदी के नीदरलैंड्स दौरे पर रिश्तों को मिलेगी नई उड़ान, मोदी पहुंचे नीदरलैंड्स। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध का असर अब हमारे देश भारत पर भी पड़ना शुरू हो गया। केंद्र सरकार ने शुक्रवार यानी कि आज पूरे देश में पेट्रोल और डीजल के दाम 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए। इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर में सीएनजी के दाम में भी 2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी कर दी गई। ऐसे में बढ़े हुए दामों का असर अब आपकी हमारी जेब पर होने लगा है।

0: महंगाई का बम आपकी जेब पर कैसे फटा? अमेरिका ईरान युद्ध की चिंगारी घर घर तक कैसे आई? हुर्मुज में अमेरिका और ईरान भिड़ रहे हैं, महंगाई का बम फोड़ रहे हैं। तेल, गैस, दूध, सब पर छाई महंगाई, जा रही है गाढ़ी कमाई। लड़े कोई, भरे कोई, युद्ध रुकेगा नहीं, महंगाई घटेगी नहीं।
1: दुर्भाग्य से जिस क्षेत्र से दुनिया के बड़े हिस्से को तेल मिलता है, आज वही क्षेत्र संघर्ष और युद्ध की स्थिति में उलझा हुआ।
0: हिंट तो पीएम मोदी ने 5 दिन पहले ही दे दी थी, लेकिन असली महंगाई का बम अब फूटा है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें सीधे 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी गई हैं, और इस तरह से पेट्रोल नई दिल्ली में 97.77 रुपए प्रति लीटर, कोलकाता में 108.70 रुपए प्रति लीटर, मुंबई में 106.68 रुपए प्रति लीटर, नोएडा में 97.78 रुपए प्रति लीटर, जयपुर में 107.97 रुपए प्रति लीटर, पटना में 108.55 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है, जबकि डीजल पर भी 3.25 रुपए प्रति लीटर बढ़ने से नई दिल्ली में डीजल 90.67 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है, कोलकाता 95.13 रुपए प्रति लीटर, मुंबई 93.14 रुपए प्रति लीटर, नोएडा 91.02 रुपए प्रति लीटर, जयपुर 93.23 रुपए प्रति लीटर और पटना 94.63 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है। बड़ी बात यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का हल अभी तक नहीं निकला है। ना तो ईरान झुकने को तैयार है और ना ही अमेरिका पीछे हटने को तैयार है। ईरान और अमेरिका के बीच भले ही युद्ध विराम चल रहा हो, लेकिन दोनों देशों के बीच संपूर्ण युद्ध विराम को लेकर अभी तक कोई डील नहीं हुई है, क्योंकि ईरान अपना परमाणु प्रोग्राम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और अमेरिका कह रहा है कि जंग तभी बंद होगी जब ईरान अपना परमाणु प्रोग्राम और एनरिच्ड यूरेनियम पूरी तरह से छोड़ेगा। एक तो ईरान अमेरिका का अड़ियल रवैया, ऊपर से हुर्मुज स्ट्रेट में गुजरात का एक और मालवाहक जहाज डूब गया। हाजी अली नाम का जहाज 13 मई की सुबह ओमान के समुद्री क्षेत्र से गुजर रहा था, तभी इससे कोई ड्रोन या मिसाइल जैसा हथियार टकरा गया। हादसे के बाद जहाज में आग लग गई, हालांकि ओमान कोस्ट गार्ड ने सभी 14 क्रू मेंबर्स को बचा लिया, क्योंकि अभी ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 107 से 108 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल चल रही है। कच्चे तेल से बनने वाले उत्पादों की बात करें तो गैसोलीन, पेट्रोल, डीजल और हीटिंग तेल, जेट इंजन, केरोसिन, ल्यूब्रिकेटिंग तेल और डामर इसी से बनता है। सरकार की तरफ से पहले ही माहौल बना दिया जाता है कि कच्चा तेल महंगा है, तेल गैस लाने में दिक्कत हो रही है, पेट्रोलियम कंपनियां घाटा झेल रही हैं, ताकि पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े तो जनता ज्यादा हायतौबा ना मचाए।
2: महंगाई की मार तो है ही, खासकर मिडिल क्लास आदमी पे।
3: हमें नहीं समझ आ रही भी, हाँ सरकार कर क्या रही है।
4: दूसरे देशों में जो बढ़ोतरी हुई है उससे तो बहुत ही कम है। मोदी साहब को सपोर्ट करना चाहिए।
5: जो नॉर्मल फैमिली है उसमें 3 रुपए का तो बहुत ज्यादा बजट पे फर्क पड़ेगा।
6: रेट तो अभी और भी बढ़ेंगे, बट ठीक है, मोदी जी ने कुछ सोच रखा होगा, मोदी जी के साथ ही खड़े हैं।
7: पता नहीं सरकार क्या करता है।
3: वो जो बढ़ा है ठीक है, और बढ़ेगा तो कुछ नहीं होगा। देश में मोदी है तो सब मुमकिन है।
8: हाँ, ये वैसे गलत करा है इन्होंने, पेट्रोल पे पैसे बढ़ाए हैं।
9: नुकसान है और किसका नुकसान है, बस जनता पे ही असर पड़ लिया, किस पर पड़ लिया।
0: लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े तो दिल्ली एनसीआर के लोगों पर महंगाई की एक और मार पड़ी है। शुक्रवार सुबह पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के साथ ही सीएनजी की कीमतों में भी 2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी कर दी गई है, जिससे आम लोगों का बजट और बिगड़ गया है। अब सीएनजी के दाम दिल्ली में 79.09 रुपए प्रति किलो, नोएडा में 87.70 रुपए प्रति किलो, गुरुग्राम में 84.12 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, दूध के दामों में 2 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। कंपनी का कहना है कि उत्पादन लागत बढ़ने और बाजार की परिस्थितियों के चलते ये कदम उठाना पड़ा है। जबकि घरेलू गैस सिलेंडर से लेकर कमर्शियल सिलेंडर और छोटू सिलेंडर यानी 5 किलो के सिलेंडर के दाम पहले ही बढ़ा दिए गए हैं। इधर महंगाई का बम फूटा, उधर कांग्रेस ने निशाना साध दिया। सोना भी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से महंगा हो गया है। अब कांग्रेस कह रही है कि चुनाव खत्म और मोदी की वसूली शुरू।
10: अमृत काल में आपका स्वागत है और इस अमृत काल में महंगाई मैन अपना चाबुक चला रहे हैं, मोदी जी आपसे वसूली कर रहे हैं। आपकी जेब पर डाका डाल रहे हैं। जब आप पर महंगाई का चाबुक चलाया जा रहा है, तब दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जो अपने लोगों को राहत दे रहे हैं।
11: 3 रुपए पे इतना ज्यादा हाइक तो सरकार को कोसने के अलावा कुछ आता है?
0: जबकि सरकार का कहना है कि कच्चे तेल की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव के बावजूद 2022 से अब तक ईंधन की कीमतें काफी हद तक स्थिर बनी हुई हैं और सरकार ने पूरे देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित की है। लेकिन सच ये भी है कि अप्रैल में थोक महंगाई 2 गुने से ज्यादा बढ़कर 8.30% तक पहुँच गई है। मार्च में ये 3.88% पर थी। अप्रैल में महंगाई 42 महीने में सबसे ज्यादा है। अक्टूबर 2022 में ये 8.39% पर पहुंच गई थी। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने थोक महंगाई के आंकड़े जारी किए। अब आपको बता देते हैं कि डीजल के दाम बढ़ने से आम आदमी की जेब पर महंगाई बम कैसे फूटेगा। माल भाड़ा बढ़ेगा और ट्रक और टेम्पो का किराया बढ़ जाएगा, जिससे दूसरे राज्यों से आने वाली सब्जियां, फल और राशन महंगे हो जाएंगे। खेती की लागत बढ़ेगी। ट्रैक्टर और पंपिंग सेट चलाने के लिए किसानों को ज्यादा खर्च करना होगा, जिससे अनाज की लागत बढ़ेगी। बस, ऑटो का किराया, सार्वजनिक परिवहन और स्कूल बसों के किराए में भी इजाफा देखने को मिल सकता है। जिस तरह से तेल कंपनियां माहौल बना रही हैं कि पेट्रोल डीजल पर 25 से 30 रुपए प्रति लीटर का घाटा हो रहा है, ऐसे में एक्सपर्ट ये भी मान रहे हैं कि अपना घाटा पूरी तरह खत्म करने और ब्रेक इवन यानी नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति में आने के लिए तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल के दामों में और इजाफा कर सकती हैं। आज तक ब्यूरो।
12: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले 10 मई को और फिर 11 मई को हैदराबाद से वडोदरा तक आकर 2 बार देश से अपील की। कहा कि तेल बचाइए, क्योंकि ये संकट बड़ा है, बचाएंगे तभी बच पाएंगे। और इसके बाद देश भर में विभिन्न केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्री सब अपना काफिला कम करने में लग गए। कोई स्कूटर से चलने लगा, कोई मेट्रो से चलने लगा। लेकिन इस बीच एक मंत्री ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की अपील से बड़ा उनका अपना काफिला है।
13: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें।
14: लेकिन मंत्री जी को तो लगता है कि नसीहत चूल्हे में जाए, बस भौकाल ना घटने पाए। वो मंत्री जिन्होंने इधर शपथ ली और उधर तय कर लिया कि देश पर जनता पर जो बोझ पड़ता है पड़े, बस उनके काफिले की गाड़ी ना घटे। वो मंत्री जिन्होंने प्रधानमंत्री के बाद मुख्यमंत्री की भी बात एक कान से सुनी दूसरे से निकाल दी।
15: देश का पैसा बचाना है और देश का पैसा बचा करके इस संकट के, इस वैश्विक संकट से हम अपने देश को बाहरने का काम करेंगे।
14: लेकिन प्रधानमंत्री की अपील, मुख्यमंत्री की दलील इन सबसे बड़ी निकली। उत्तर प्रदेश में नए नवेले बनाए गए मंत्री, अपील मुख्यमंत्री की दलील इन सबसे बड़ी निकली। उत्तर प्रदेश में नए नवेले बनाए गए मंत्री हंसराज विश्वकर्मा की लाल बत्ती पाने वाली वीआईपी फील। अपील मुख्यमंत्री की दलील इन सबसे बड़ी निकली। उत्तर प्रदेश में नए नवेले बनाए गए मंत्री हंसराज विश्वकर्मा की लाल बत्ती पाने वाली वीआईपी फील। मंत्री जी का नाम हंसराज विश्वकर्मा, नए नए राज्य मंत्री बने हैं, जिसकी कामना में न जाने कितनी परिक्रमा काशी से लखनऊ तक की होगी। मंत्री पद मिला तो नया ऑफिस मिला, नया ऑफिस मिला तो नई चकाचक कुर्सियां मिली। मोदी योगी का आभार करके मंत्री हंसराज ने भरोसा दिया, बस अब से हर समस्या का समाधान करूंगा।
16: उत्तर प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री आदरणीय योगीनाथ जी और वाराणसी के सांसद, देश के सबसे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। निश्चित तौर पर इतना से अच्छा कोशिश करूंगा कि इस कार्यालय से जितने लोगों का कहीं भी कोई किसी प्रकार का उनको समस्या हो तो समस्या का बकायदे जो है उसका समाधान किया जाए।
14: लखनऊ से समाधान की बात करके मंत्री हंसराज विश्वकर्मा का काफिला वाराणसी पहुंचा। तब तक प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की अपीलें हवा हो चुकी थी। दर्जनों गाड़ियां लेकर मंत्री का काफिला पहुंचता है, लंबा जाम लगा मिलता है। हद तब हो जाती है जब बुलडोजर तक लाकर नए नए मंत्री पद पर विराजे हंसराज विश्वकर्मा पर समर्थक फूल बरसा देते हैं। ऐसा जाम काशी की सड़कों पर लगा जिसमें अपना काफिला लगाकर तो तेल मंत्री और उनके समर्थक फूंकते ही रहे। आम आदमी जो प्रधानमंत्री की सलाह सुनकर कारपूल करके या दोपहिया वाहन से निकला होगा, उसका भी तेल फुकवा दिया। जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद महंगाई की आग की तपिश महसूस कर रहा है।
17: जेब पे बोझ तो पहले से ही है, देख रहे हैं भरी दोपहरी में हम लोग परेशान चल रहे हैं, अपना जॉब चला रहे हैं उसमें और इजाफा लोग कर दिए हैं।
18: महंगाई पे जोर आ रहा है,
19: मुश्किल तो होगा ही,
20: बजट गड़बड़ाएगा,
21: बजट गड़बड़ाएगा भैया,
22: महंगाई बढ़ेगी।
23: ये जो महंगाई है हम लोग जेब के ऊपर ज्यादा ही पड़ता जा रहा है, क्योंकि हम लोग की सैलरी तो लिमिटेड है।
14: मतलब जनता की जेब महंगाई से जलती रहे और मंत्री हंसराज विश्वकर्मा पीएम की अपील नहीं सुनते तो विपक्ष सवाल उठाता है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने सोशल मीडिया पर डाला कि काशी की सड़कों पर कुछ महीनों के मेहमान मंत्री का अहंकार देखिए, सैकड़ों गाड़ियों का काफिला, धुआं उड़ाती सत्ता की हनन और घंटों जाम में फंसी काशी की जनता। खबरदार करता अब सवाल समझिए, जब मध्य प्रदेश में पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष सौभाग्य सिंह सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ उज्जैन से भोपाल पहुंचे, पीएम की अपील को मानने से इनकार कर दिया तो उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी हुआ। पाठ्य पुस्तक निगम के दफ्तर जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। क्या अब यूपी में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में ही मोदी की अपील को धुआं करने वाले नए मंत्री हंसराज विश्वकर्मा को पार्टी नोटिस जारी करेगी? क्या इन पर भी कार्रवाई होगी?
12: और अब बात नीट पेपर लीक पर हुए कबूलनामे की। पेपर लीक की कड़ियों को आपस में जोड़ने के लिए जांच टीम गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इस कड़ी में पेपर लीक से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण किरदार जांच टीम की गिरफ्त में। किरदार का नाम है लेक्चरर पीवी कुलकर्णी, जिसे सीबीआई ने पेपर लीक के आरोप में गिरफ्तार किया और यही मुख्य आरोपी है।
0: नाम लेक्चरर पीवी कुलकर्णी, काम एनटीए का हिस्सा, आरोप नीट का पेपर लीक। पेपर लीक कांड में पुणे के लेक्चरर पीवी कुलकर्णी की आज गिरफ्तारी हुई। दावा यही है कि एनटीए की तरफ से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल पीवी कुलकर्णी ने नीट का पेपर लीक किया। केमिस्ट्री के लेक्चरर कुलकर्णी ने पेपर लीक कैसे किया, इसका खुलासा कैसे हुआ, आपको ये भी थोड़ी देर में बताएंगे। उससे पहले समझिए कुलकर्णी की गिरफ्तारी ने कैसे एनटीए की वर्किंग स्टाइल को कटघरे में खड़ा कर दिया है। क्योंकि कुलकर्णी प्राइवेट कोचिंग चलाता था, इसके बावजूद एनटीए ने उसे परीक्षा की प्रक्रिया का हिस्सा बनाया। सबसे बड़ा सवाल यही है कि एनटीए ने प्राइवेट कोचिंग चलाने वाले कुलकर्णी को परीक्षा की प्रक्रिया से क्यों जोड़ा? प्राइवेट कोचिंग चलाने वाले कुलकर्णी का एनटीए में गॉडफादर कौन है? क्यों नीट की परीक्षा से ठीक पहले एनटीए ने अभिषेक सिंह को डीजी बनाया? क्या पेपर लीक के सिंडिकेट में एनटीए के कई अफसर मिले हुए हैं? क्या एनटीए जैसी संस्था के अंदर पेपर माफियाओं की जड़ें बहुत गहरी हैं? एनटीए सवालों के घेरे में है, एनटीए की वर्किंग स्टाइल कटघरे में है, लेकिन पेपर लीक कांड के चलते परीक्षा रद्द होने के करीब 48 घंटे बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने पहली बार चुप्पी तोड़ी। 13 मई को धर्मेंद्र प्रधान पेपर लीक के सवालों को टाल गए थे, लेकिन 48 घंटे बाद मीडिया के सामने आए, नीट पेपर लीक की जिम्मेदारी ली और साफ गोई से एनटीए को क्लीन चिट दे दी।
24: फिर सामाजिक चुनौती है, राधाकृष्णन कमेटी को पूरा पालन करने के उपरांत भी उस कमांड चेन में कहीं ना कहीं ब्रीच हुई है, इसको हम स्वीकार करते हैं। अभी तो एनटीए बहुत योग्य व्यक्ति के हाथ में है, हमारे सचिव की बहुत अनुभव भी उस विषय में है। मैं मानता हूँ हमें एनटीए को सुप्रीम कोर्ट की आदेश कारण एनटीए बनी है। एनटीए हर एक साल 1 करोड़ बच्चों की एग्जामिनेशन कराती है अमूमन। एनटीए और निर्भुल हो, एनटीए में जीरो एरर हो, जीरो यानी जीरो एरर हो, ये हमारी दायित्व है।
0: अब सीधा सवाल एनडीए को क्लीन चिट देने वाले जिम्मेदारों से है। अगर एनटीए पाक साफ है, एनटीए का कोई कसूर नहीं है, एनटीए में सब कुछ पारदर्शी है, तो प्राइवेट कोचिंग चलाने वाला कुलकर्णी एनटीए की परीक्षा प्रक्रिया का हिस्सा कैसे बना? अब इस सवाल का जवाब केंद्रीय शिक्षा मंत्री को देना है, क्योंकि एनटीए के गड़बड़ झाले का सबसे बड़ा सबूत लेक्चरर कुलकर्णी है। ऐसा क्यों, इसे भी समझिए। शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि पीवी कुलकर्णी ने नीट का पेपर लीक किया जो एनटीए से जुड़ा हुआ था। 3 मई को नीट की परीक्षा हुई, लेकिन अप्रैल 2026 के आखिरी हफ्ते में कुलकर्णी ने पेपर लीक की आरोपी मनीषा बागबारे की मदद से कुछ छात्रों को जुटाया जो नीट की परीक्षा देने वाले थे। कुलकर्णी ने पुणे स्थित अपने घर पर छात्रों के लिए कोचिंग क्लास चलाई। क्लास में कुलकर्णी ने छात्रों को सवाल और उसके जवाब बताए। ये वही सवाल थे जो नीट के पेपर में सेट किए गए थे। कोचिंग में मौजूद छात्रों ने सवाल और जवाब को अपनी कॉपी में लिखा। पेपर लीक की जांच में पाया गया कि केमिस्ट्री के वही सवाल 3 मई 2026 को हुए नीट यूजी परीक्षा के असली पेपर से पूरी तरह मेल खाते हैं। कुलकर्णी केमिस्ट्री का लेक्चरर

0: जिस भोजशाला को विद्या की काशी कहा जाता था, उस भोजशाला को एमपी हाईकोर्ट ने प्राचीन संस्कृत अध्ययन केंद्र और सरस्वती मंदिर मानते हुए हिंदू पक्ष के समर्थन में अपना निर्णय सुना दिया। एएसआई की
1: जो बरसों से किया जा रहा संघर्ष था, माँ की मुक्ति और उसके गौरव की पुनर्स्थापना का दिन जो इसका इंतजार किया जा रहा था, वो बहुत नजदीक आ गया है। आज इस भोजशाला को, जो कि वास्तव में सरस्वती का मंदिर था, उसको कानूनी रूप से माँ का मंदिर घोषित हुआ है। ये बहुत ही हर्ष की बात है और हिंदू समाज आज प्रफुल्लित है। आज वो दिल से खुश है कि वर्षों का उसके मेहनत का परिणाम आज सबके सामने आया है।
2: भोजशाला के इस मंदिर में अब सिर्फ मंगलवार को ही पूजा नहीं होगी, हिंदू पक्ष यहाँ रोज पूजा कर पाएगा। अदालत ने माना है कि ये एक मंदिर है, ना कि कमाल मौला मस्जिद। इंदौर हाई कोर्ट का ये आदेश हिंदू पक्ष के उन लोगों की जिंदगी का सबसे बड़ा पल है जो वर्षों से इसे लेकर संघर्ष करते रहे।
3: कैसा फैसले को देखते हो और अब कब आप लोग प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रहे हो?
4: बहुत बहुत अच्छा फैसला है। न्यायमूर्ति जो है, उनने बहुत अच्छा फैसला दिया, उनका स्वागत करते हैं हम बहुत बहुत। और कई वर्षों के बाद हमारे कई बुजुर्गों ने इस भोजशाला के लिए प्राण दिए हैं, उनका बहुत प्राण इसमें लगे हैं। हमारे ऐसी युवा पीढ़ी जो आज भोजशाला परिसर में खड़ी,
3: आप क्या करेंगे? आप
4: अब यहाँ पर भोजशाला में बहुत ही वाघ देवी बहुत जल्द आएगी और विराजमान होगी।
5: यह एक ऐतिहासिक फैसला जो आज उच्च न्यायालय के द्वारा मिला है, ये हिंदू समाज के लिए एक बहुत ही बड़ी जीत है।
2: दशकों से हिंदू पक्ष भोजशाला को मंदिर बताता रहा, इसके लिए उन्होंने 1995 में पहली बार कानूनी लड़ाई शुरू की और अब जाकर जीत हुई। इंदौर हाईकोर्ट ने एएसआई के सर्वे, ऐतिहासिक तथ्यों, गवाहों और परिसर के मौजूद हालात को देखते हुए अपना फैसला सुनाया। ऐलान किया कि भोजशाला में जिस मंदिर को दशकों से कमाल मौला के मकबरे और मस्जिद के तौर पर बताया जाता रहा, वो मस्जिद नहीं बल्कि सरस्वती मंदिर है।
6: वो जो भोजशाला है वहाँ नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, वो राजा भोज का मंदिर है। एक चीज, मुस्लिम चाहे तो एक आवेदन कर सकते हैं राज्य सरकार को, तो राज्य सरकार उनको जगह दे सकती है मस्जिद के लिए। एक चीज स्पष्ट हो गई। दूसरी चीज, एएसआई के अधीन ये संपत्ति दी है, एएसआई चाहे तो उसको रेगुलर रूप से हिंदुओं को दे दे, वहाँ की जो व्यवस्था है वो एएसआई को दी है।
2: साल 1995 में दोनों पक्षों के बीच मामूली विवाद के बाद प्रशासन ने भोजशाला में मंगलवार को पूजा और शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत दी, जिसके बाद ये मामला अदालत में लड़ा जाता रहा। इंदौर हाई कोर्ट के दो जजों की बेंच ने इस विवाद पर फैसला सुनाते हुए कहा, हमने देखा है कि उस जगह पर हिंदू पूजा लगातार होती रही है, हमने पाया है कि उस जगह का ऐतिहासिक साहित्य राजा भोज से जुड़े संस्कृत सीखने के केंद्र के तौर पर इसे स्थापित करता है, इससे धार्मिक देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर होने का पता चलता है, इसलिए उस इलाके का धार्मिक चरित्र भोजशाला माना जाता है जिसमें देवी वाग देवी सरस्वती का मंदिर है।
6: पूरे कमाल मौला जो ये भोजशाला परिसर है,
7: बाहर का जो एक और कमाल मौला
6: नहीं, उसके लिए कुछ नहीं कहा गया, वो तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर में नहीं था। कोर्ट ने मौला कमालुद्दीन को ये कहा है कि वो अल्टरनेट लैंड के लिए सरकार को प्रत्यावेदन दे सकते हैं और सरकार उसको कंसिडर करती है। मतलब मूल बात यह है कि इस पूरे परिसर को, जो हमारी मांग थी, हमारे हर एक आर्गुमेंट को कोर्ट ने माना है और इसके स्वरूप को एक हिंदू मंदिर का परिसर घोषित किया।
2: अदालत ने अपने आदेश में एएसआई सर्वे रिपोर्ट से मिले सबूतों का हवाला दिया, जिसमें ये बात भी कही गई कि कमाल मौला मस्जिद को बनाने में भोजशाला के प्राचीन अवशेषों का इस्तेमाल किया गया।
6: कि जो एएसआई है, जो पूरा भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण है, उसकी रिपोर्ट से अन्य साक्ष्य जो रखे गए, जो हमारे द्वारा ऐतिहासिक साक्ष्य रखे गए और राम मंदिर जजमेंट के समय जो दोनों ही धर्मों के जो कानूनी पहलू रखे गए कि हिंदू लॉ के हिसाब से एक बार जो मंदिर स्थापित हो जाता है वो हमेशा मंदिर रहता है, और मुस्लिम लॉ के हिसाब से भी किसी कब्जा करी हुई जगह पे एक वैलिड मस्जिद नहीं बनाया जा सकता, इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए माननीय न्यायालय ने तय करा कि ये जो जगह है, ये जो मंदिर है, ये भोजशाला एक सरस्वती माँ का मंदिर है।
2: AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भोजशाला के फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसके आए फैसले में बाबरी मस्जिद के फैसले जैसी समानताएं हैं कहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट इसे सुलझाएगा और हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करेगा।
8: पूरी अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग मिली लेकिन वजह सिर्फ ये है

0: कि एएसआई के तथ्यों को पुख्ता मानकर और उस पे फैसला देना वो कहीं एक हद तक सेटिस्फेक्शन नहीं देता है।
1: लेकिन बोधशाला में हिंदू पक्ष को यकीन है कि हाई कोर्ट के फैसले से अब उनका इंतजार खत्म होगा और वो मंदिर में पूजा पाठ कर पाएंगे।
2: 1005 से 1054 राजा भोज का काल रहा है तो ये न्याय की जीत हुई है जी। बस राजा,
3: लेकिन प्रतिक्रिया आप लोगों की ऐसा नहीं लगता कि सामने वाले को
2: नहीं उनका अधिकार है, कानून ने जो अधिकार दिया है। हमारा तो भारतीय संविधान बहुत विशाल है और बहुत बृहद है।
4: हिंदू समाज का उत्साह है, लंबा संघर्ष रहा है भोजशाला के लिए, अलग अलग समय में अलग अलग लोगों ने इसको इस संघर्ष को जिया है। इस भोजशाला मुक्ति के लिए हमारे 3 कार्यकर्ता पुलिस की गोली से शहीद हुए हैं, आज उनको सच्ची श्रद्धांजलि उन लोगों को है। 44 महिलाएं, धार की महिलाएं इंदौर की जेल में 8 दिन तक बंद रही, कई लोग परिवार सहित जेल में गए, उन सबका त्याग तपस्या समर्पण का आज परिणाम निकला है।
1: अदालत ने 11 मार्च को एएसआई को भोजशाला परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का आदेश दिया था, जिसके बाद एएसआई ने 22 मार्च से सर्वेक्षण शुरू किया और 27 जून तक सर्वे का काम चला। 98 दिनों के बाद सर्वे का काम खत्म हुआ और अब अदालत के फैसले ने भोजशाला को मंदिर करार देते हुए यहां पूजा की इजाजत दे दी है। रवीश पाल सिंह, धार, आज तक।
5: खबर पश्चिम बंगाल की, जहां पर नई सरकार के आदेश पर पहली बार जुमे की नमाज सड़क पर होने की कोशिश हुई, लेकिन पुलिस प्रशासन ने लोगों को ऐसा करने से रोक दिया, जिसका विरोध भी हुआ।
6: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते जे।
1: पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद से सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, ये तय हो चुका था। कोलकाता के राजा बाजार में यह हंगामा इसी बदलाव के विरोध की वजह से हो रहा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई वाली सरकार ने सड़क पर धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने कहा है कि सड़क पर कोई भी धार्मिक कार्यक्रम नहीं होगा, मंदिर या फिर मस्जिद कहीं भी तेज आवाज में लाउड स्पीकर नहीं बजेगा। शुक्रवार को जब राजा बाजार में सड़क पर जुमे की नमाज पढ़ने के लिए लोग जमा होते हैं तो उन्हें पुलिस के कड़े रुख के बाद वापस लौटना पड़ा।
7: डबल नमाज होना चाहिए, रास्ता क्लियर होता है तो नुकसान है, फिर वोट आएगा। आज ठंडा है, ठंडा तो फिर जाएगा, फिर ठंडा आएगा, ऐसे कानून जब तब तक लिए बनेगा।
8: वो नमाज के पढ़ने के लिए तो अंदर से इमाम साहब ऐलान कर दिया, भाई सब मस्जिद में जगह आ जाओ, अगर जरूरत पड़ी दूसरी जमात होगा, दो जमात होगा, हंगामा करने और ये सब करने रोड में पढ़ना बंद कर दो। तब पहली जुमा थोड़ा संभालने में परेशानी हुई, अंदर जुमा से हो जाएगा इंशाल्लाह।
1: कोलकाता पुलिस ने जब सड़क पर नमाज पढ़ने से लोगों को रोका तो उन्होंने उसका विरोध किया। बड़ी तादाद में पुलिस की मौजूदगी के बाद हंगामा हुआ। लेकिन पुलिस ने लोगों को समझाया कि अब ऐसा नहीं हो सकेगा, सड़क पर धार्मिक गतिविधि नहीं हो पाएगी, चाहे वो किसी मजहब के हो। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोगों ने पुलिस के मना करने पर हंगामा किया, बाद में पुलिस ने समझा बुझा कर वापस भेजा।
9: आज फर्स्ट जुमा था ये ऑर्डर आने के बाद में, इसलिए लोगों ने कुछ रास्ते पे नमाज इस तरह से हमेशा पढ़ते आए हैं, तो हम लोगों ने समझाया और पुलिस भी सपोर्ट किया, जिसके वजह कर पीसफुली तरीके से सब कुछ हो गया। अब आप समझते हैं जब लोग अवेयर नहीं होते हैं तो थोड़ा सा तर्क और वितर्क होता है, तो यही हुआ, बाकी पीसफुली तरीके से सब कुछ यहाँ पे आज का प्रेयर हो गया।
6: सरकार ने जो जो फैसला लिया है उसके ऊपर हम लोग अमल करने की कोशिश करेंगे और लोगों को, जो हमारे कौम के लोग, उसको भी समझाया जाएगा।
1: पश्चिम बंगाल में 9 मई को शुभेंदु अधिकारी ने शपथ ली थी, इसके बाद नमाज को लेकर हंगामे की ये पहली घटना है।
10: ये सिर्फ मुसलमान धर्म के लिए नहीं था, ये हिंदू धर्म के लिए भी था। कोई भी धर्म के लोग सड़क पे आके अपना पूजा या इबादत नहीं कर सकते, उसके लिए जगह ठीक किया हुआ है, वहां पर वो करे। लेकिन यहाँ कुछ लोग भावुक हो गए थे और उसके बाद वो सड़क पे आ गए, और क्योंकि वो सालों से यहाँ सड़क पे नमाज अदा किया करते थे, तो पुलिस ने जब इन्हें मना किया तो फिर पुलिस के साथ कहीं कहा सुनी हो गई थी, और उसके बाद यहाँ पर भारी तादाद में लोग इकट्ठा हो गए थे। लेकिन बाद में पुलिस फोर्स आई, पुलिस के जो अफसर थे मौजूद, वो लोग उन लोगों ने स्थिति को काबू करने के लिए अलग अलग समय पर बातचीत किया और 15 से 20 मिनट के अंदर जो स्थिति है उसे पूरी तरीके से काबू कर लिया गया था। और फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यहां पर सीआरपीएफ को डिप्लॉय किया गया। सेंट्रल फोर्सेज पश्चिम बंगाल में सड़क के दोनों तरफ सीआरपीएफ को डिप्लॉय रखा गया है।
1: बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद ही उसके नेताओं ने यह कहना शुरू कर दिया था कि वो सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे। इसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने अदालती आदेशों और सार्वजनिक व्यवस्था का हवाला देते हुए सड़क पर धार्मिक आयोजन रोकने के निर्देश दे दिए ताकि सड़कों को ब्लॉक करने की वजह से लोगों को परेशानी न हो।
5: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

नीट पेपर लीक कांड में सीबीआई का बड़ा एक्शन, मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी पुणे से गिरफ्तार, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का ऐलान, 21 जून को नीट का री एग्जाम। धार भोजशाला विवाद में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत, हाईकोर्ट ने माना सरस्वती मंदिर, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया स्वागत, ओवैसी बोले अयोध्या जैसा निर्णय। विदेश यात्रा पर टैक्स लगाने की खबरों को पीएम मोदी ने किया खारिज, बताया अफवाह, कहा ऐसे प्रतिबंधों का सवाल नहीं। टीएमसी के सांसद अभिषेक बैनर्जी के विरुद्ध कोलकाता में एफआईआर, विधानसभा चुनाव में भड़काऊ भाषण देने, अमित शाह को धमकाने का आरोप, 5 धाराओं में केस। भारत और यूएई में तेल गैस समेत कई महत्वपूर्ण समझौते, आबूधाबी से $5 अरब निवेश पर करार, आज पीएम मोदी के नीदरलैंड्स दौरे पर रिश्तों को मिलेगी नई उड़ान, मोदी पहुंचे नीदरलैंड्स। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध का असर अब हमारे देश भारत पर भी पड़ना शुरू हो गया। केंद्र सरकार ने शुक्रवार यानी कि आज पूरे देश में पेट्रोल और डीजल के दाम 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए। इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर में सीएनजी के दाम में भी 2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी कर दी गई। ऐसे में बढ़े हुए दामों का असर अब आपकी हमारी जेब पर होने लगा है।

0: महंगाई का बम आपकी जेब पर कैसे फटा? अमेरिका ईरान युद्ध की चिंगारी घर घर तक कैसे आई? हुर्मुज में अमेरिका और ईरान भिड़ रहे हैं, महंगाई का बम फोड़ रहे हैं। तेल, गैस, दूध सब पर छाई महंगाई, जा रही है गाढ़ी कमाई। लड़े कोई भरे कोई, युद्ध रुकेगा नहीं, महंगाई घटेगी नहीं।
1: दुर्भाग्य से जिस क्षेत्र से दुनिया के बड़े हिस्से को तेल मिलता है, आज वही क्षेत्र संघर्ष और युद्ध की स्थिति में उलझा हुआ।
0: हिंट तो पीएम मोदी ने 5 दिन पहले ही दे दी थी, लेकिन असली महंगाई का बम अब फूटा है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें सीधे 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी गई हैं, और इस तरह से पेट्रोल नई दिल्ली में 97.77 रुपए प्रति लीटर, कोलकाता में 108.70 रुपए प्रति लीटर, मुंबई में 106.68 रुपए प्रति लीटर, नोएडा में 97.78 रुपए प्रति लीटर, जयपुर में 107.97 रुपए प्रति लीटर, पटना में 108.55 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है, जबकि डीजल पर भी 3.25 रुपए प्रति लीटर बढ़ने से नई दिल्ली में डीजल 90.67 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है, कोलकाता 95.13 रुपए प्रति लीटर, मुंबई 93 रुपए